0: कितनी अच्छी आरती है, आह क्या लागे मेरा, और लोग भी इतने भाव से गाते कि भगवान विष्णु को नारायण को लगता
1: यही अच्छा भगत है।
0: ऐसे आंख बंद कर क्या लागे
1: महाराज के कहता गाड़ी कहाँ गई है मेरी, चप्पल हिरा गई है मेरी, जेब कट गई है,
0: बताओ। अभी कह रहा था सब तेरा है, अब ये मेरा हो गया, कन्फर्म कर भाई। बिंदु जी थोड़ी हो कि बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा है, ये चेला थोड़ी हो कि तीन तीन लुगाई चलेंगे, पटेल साहब थोड़ी हो, पटेल साहब थोड़ी हो, एक तरफ कहीं रहो। इसके लिए एक सूत्र है हमारे पास बहुत पुराना, बाहर से संसारी रहो अंदर से सन्यासी हो जाओ, बाहर से जगत के रहो अंदर से भगवान के हो जाओ, बस सीधा सा सूत्र है, सीधा सा खेल है। तो दुश्मन है भक्ति के तीन, पहला कुसंग, दूसरा अहंकार और तीसरा आलस। कल करेंगे। और कबीर क्या कहते, काल

0: करता तो आज करे,
1: और आज करता है तो अभी कर। पल में परलय हो जाएगा, कब क्या हो जाए कोई ठिकाना। आलस मत करो भक्ति में, तीन बातों में कभी आलस, एक भगवान के भजन में, एक वैराग्य में और एक दान में, तीन में कोई आलस नहीं। चटपट और अटपट लीला राम की, झटपट समझना आए, जो मन की खटपट मिटे सो चटपट दर्श हो जाए। चटपट करो, तत्क्षण करो, देर मत करो, तुरंत करो मेरे पागलो। आलस बहुत खतरनाक। एक महात्मा नदी के किनारे बैठे थे, पानी बह रहा था। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तीन दिन हुआ, चार दिन हुआ, पांच दिन हुआ, तो एक सेठ वहां से गुजरते, रोज देखता था कि एक महात्मा ये बैठे ही रहते, ना इधर जाते ना उधर आते, ना कुछ करते, बैठे ही रहते, नदी को देखते रहते। तो गांव के लोगों ने जाके उस सेठ ने कहा कि महाराज उस पार जाना है तो हम नाव का प्रबंध कर, और नहीं जाना है तो आप किनारे क्यों बैठे रहते। महात्मा ने कहा हम किनारे इसलिए बैठे रहते हैं कि सोच रहे हैं कि कब नदी का पूरा पानी बह जाए, फिर मैं पार हो जाऊं, उस पार जाऊं। गांव वाले हंसने लगे, बोले ये बहुत पागलपन की बातें हैं, नदी का पानी कभी पूरा जाना ही नहीं, कभी पूरा पानी बहना ही नहीं है, बरसात आएगी फिर पानी बढ़ जाएगा, पर ना छोटी मोटी धार तो चलती रहेगी, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा, और कभी बीच

की मती है, मूर्खता है। महात्मा बोले यही तो हम तुम्हें कहना चाहे। सेठ और गांव वाले थोड़े परेशान हुए, क्या कहना चाह रहे हैं? बोले जैसे तुम सोचते ना सब काम हो जाए फिर बाबा बनेंगे, फिर भजन करेंगे, अब वो कभी होना ही नहीं। पहले तुम सोचते बेटा की शादी हो जाए, बिटिया की शादी हो जाए फिर बाबा बनेंगे, दोनों की शादी हो गई अब बन बाबा, महाराज बनना तो है, थोड़ा नाती का मुंह देख ले फिर बन जाए पक्का, और कोई काम ही नहीं बचा, सब भगवान की कृपा से हो गया, गाड़ी बंगला मकान, बेटा की शादी हो गई, बहू बहुत अच्छी है, रोटी गरम बना के देती है, आनंद है, नाती का मुंह देख ले आनंद आ जाएगा। अब नाती हो गया, बेटी को भी बेटा हो गया, बेटे को भी बेटा हो गया, इधर अब बाबा बन। अच्छा बाबा बनने के लिए बेटे का बेटा बोलता भी है, बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा। तो किसी ने कहा कि अब तो बन, नाती भी बोल रहा है बाबा। बोला महाराज यही तो कंफ्यूजन हो गई। बोले क्या? बोले बेटे का बेटा तो बोलता है बाबा, तब तक बेटी का बेटा आ जाता, वो कहता नाना नाना नाना नाना नाना नाना। अब कंफर्म नहीं हो रहा कि किसकी बात माने, बेटे के बेटा की बात माने कि बेटी के बेटा की बात माने। वो नाना कहता, ये कहता बाबा बाबा बाबा बाबा। ये हम लोगों की प्रवृत्ति है। कबीर की वाणी को याद करो।

भक्ति के ये तीन दुश्मन हैं। पहला शत्रु कुसंग है और कुसंग से बचने का उपाय सत्संग है। आज की कथा भी हमने यहीं से शुरू की थी।

घड़ी भी मिल जाए काम बन जाता। और हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, पंचनाथ में बद्रीनाथ में सत्संग गा रहे हैं, तो हम गा रहे तुम सुन रहे हो, और कितना आनंद लूट रहे हैं, संतों की वाणी सुन रहे, दर्शन और उस जगह पे सुन रहे जहां मोक्ष मिलते हैं। हाँ, पितरों को भी यहां मोक्ष मिलता है। यहां एक जगह है ब्रह्म कपाल, बद्रीनाथ जी में अलकनंदा के किनारे, शायद आप लोग गए हो यहां ब्रह्म कपाल। और अपनी तो छोड़ो, यहां शंकर जी की भी ब्रह्म हत्या का दोष मिटा। हाँ, शंकर जी की भी ब्रह्म हत्या का दोष मिटा। शंकर जी ने जब ब्रह्मा जी का सिर काटा तो वो चिबक गया, ब्रह्म हत्या लग गई। और वो हाथ में सिर चिपका तो पूरे पृथ्वी पर भ्रमण महादेव ने किया, गंगा स्नान जो जो होते हैं सब किया, पर वो सिर नहीं निकला। अंत तो गत्वा घूमते घूमते महादेव जब बद्रीनाथ धाम में आए, यहां अलकनंदा के किनारे जैसी शिला पर पहुंचे, वहां के गुरुत्वाकर्षण ने सिर को नीचे खींच लिया, ब्रह्मा जी का जो सिर चिपका था वो नीचे गिर गया और दोष मुक्त हो गए। भगवान शंकर ने उसी दिन कहा कि ये बहुत अद्भुत भूमि है, किसी का कोई पितर प्रेत बन करके कई वर्षों से परेशान हो रहा हो, गया श्राद्धम पुष्कर पर श्राद्धम खूब कर लिया हो, गया में श्राद्ध पुष्कर में प्रयाग में खूब आपने श्राद्ध कर लिया हो, फिर भी मुक्त ना हो रहा हो, तब चारों धाम में बद्रीनाथ की भूमि में अलकनंदा के किनारे शिला पर खड़े होकर के अलकनंदा जी में प्रेत का तर्पण कर दिया जाए तो वो मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। ऐसी भूमि है। तो हम लोग कितने भाग्यशाली कि शत्रु तीन हैं भक्ति के, कुसंग, अहंकार और आलस। इन तीनों को जो त्याग देता है वो भक्ति को संजो करके रखता है। ये महीना परम पवित्र है और इस परम पवित्र महीने में, पुरुषोत्तम मास के महीने में, भगवान श्री हरि का महीना है और हम लोग भी भगवान हरि के धाम पर। हरि में और हर में अंतर नहीं है, दोनों एक है, हर और हरि दोनों एक। लेकिन वैसे एक बात हम बोले, बद्रीनाथ तो हर का है, कब्जा कर रखा हरि ने,

हाँ, अवैध कब्जा तो नहीं कह सकते, पर है ये हर का। पहले यहां भोले बाबा ही बैठते थे, उनका ही मूल स्थान है। लेकिन एक दिन ठाकुर जी ने सोचा, बढ़िया तप की जगह कौन सी है, सोचा बद्रीनाथ। अब ऐसे तो मिलेगी नहीं, क्योंकि भोले बाबा तो भोले बाबा हैं, अवधूत हैं, फक्कड़ हैं, और ये छोड़ेंगे नहीं। तो भगवान हरि बहुत नाटकी हैं। नाम तो महादेव का नटवर नांगर है, नटवर हैं भगवान, नटराज हैं। हर का नाम नटराज है, हरि का नाम नटवर नागर है, क्योंकि ये भी कम नाटक नहीं करते, बहुत नाटक करते। तो इन्होंने क्या किया कि एक छोटे से बालक का रूप धारण किया भगवान विष्णु ने, बद्रीनाथ आ गए बालक बन के। बद्रीनाथ आए सो तो ठीक है, रोने लगे। तो पार्वती जी ने भीतर से कहा कि कोई बच्चा बैठा है, जरा मैं देख के आऊं। शंकर जी ने हाथ पकड़ा, मत जाना, क्यों, उसको जितना ये छोटा है उतनी खोटा है, इसके चक्कर में बिल्कुल मत पड़ जाना, और इसकी भावनाओं में तो तुम बह ही ना जाना। तो पार्वती जी ने कहा कि बालक है, पता नहीं माँ बाप से बिछुड़ गया, माँ बाप भी नहीं है, दिख नहीं रहे। बोले इसके माँ बाप सच में ही नहीं है, हाँ ये सबका माँ बाप है, मतलब वो मतलब हम बाद में समझाएंगे, जाना मत। पर माँ का तो ममत्व होता है, तो वो जिद पे अड़ गई कि भले ही कैसा भी हो, खोटा हो छोटा हो, बिन माँ बाप मैं माँ हूं। और कोई बालक रोए, ये माँ से देखा नहीं जाता है, गुण होता है, ममत्व का गुण होता है। तो भगवती आदि शक्ति जगत जननी माँ पार्वती बाहर आई, रोता हुआ देखा, ये तो विष्णु जी है, नाटक करके आए, स्नान ध्यान करवाया, भोजन भोजन पवाया, सब ठीक है, कहां के हो, कोई अता पता नहीं बताया। अंततो गत्वा, जब तक भगवान दोनों बाहर स्नान करने गए, तब तक ये भीतर घुस करके दरवाजा बंद कर लिए। जब शंकर जी वापस आए तो दरवाजा भीतर से बंद, बद्रीनाथ जी का, तो पार्वती जी ने कहा कि ये दरवाजा किसने बंद किया। शंकर जी बोले, उसी खोटे ने, छोटे ने, उसने दरवाजा क्यों बंद किया। अरे देवी, वो कोई बालक थोड़ी था, क्षीर सागर के अधिपति है, हमारे प्रिय श्री हरि नारायण थे, उनको ये भूमि चाहिए थी तप के लिए, अब एक काम करो अपने यहां से खिसको। तो बोले क्यों, बोले अब वो यही नहीं और हमको खिसकना चाहिए। तो भगवान यहां से भोले भूत भावन महादेव, बल्कि रामस्य हृदयम शिवा, शिवस्य हृदयम रामः, दोनों के अंदर एक दूसरे। वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में परम शंभु कोई है तो भगवान महादेव है, परम वैष्णव महादेव, पर भगवान की लीला है। तो भगवान शंकर केदारनाथ में बैठ गए और बद्रीनाथ में नारायण बैठ गए। तो हम एक दृष्टि और रखते हैं इस भूमि पर, हर की दृष्टि पर हरि का वास है, हर की भूमि पर हरि का वास है। और देखो, बद्रीनाथ में नाथ शब्द, भगवान पांच नाथ हुए श्री हरि के, पंचनाथ कितने, बोलो बोलो बोलो, जगन्नाथ, रंगनाथ, जगन्नाथ, रंगनाथ, द्वारकानाथ, गोवर्धननाथ और बद्रीनाथ, पांच नाथ श्री हरि के अवतार के पांच नाथ हैं। रंगनाथ, रंगनाथ दक्षिण, और रंगनाथ के, अच्छा पांचों की मुद्रा अलग अलग, रंगनाथ की जो मुद्रा है अनंत सैनम, ये रंगनाथ, तो रंगनाथ में अनंत सैनम, भगवान एकदम आनंद में डूबे हुए शयन कर रहे। लेकिन जगन्नाथ में, वेलकम टू यू, कम हियर माय डियर, इस मुद्रा में, स्वागत की मुद्रा में भगवान दोनों हाथ ऐसे किए खड़े हुए। कभी कभी जगन्नाथ जी को देख करके हमको लगने लगता, वो कह रहे हो कहां भाग रहा, आजा गले लग जा, वो एक कोई फिल्मी गीत है, अब गाएंगे नहीं, आजा गले से, हाँ

दृष्टि है, हा? तुम कोई प्रेम का मत समझ लेना, ये जगन्नाथ जी की दृष्टि से है। रंगनाथ अनंत शयनम, जगन्नाथ स्वागत की दृष्टि से दोनों भोजाए फैलाए हुए कि जगत में कहां डोल रहे, कहां भागोगे जगत में, और कितना भागोगे, और कब तक भागोगे, और क्यों भागोगे। बड़ी देर कर दी, आजा मेरे पास। जीवात्मा का तो शाश्वत सत्य मिलन परमात्मा से ही है। तो पांच नाथ हैं और पांच प्रकार की ठाकुर की कृतियां हैं, पांचों प्रकार की नाथ की अलग अलग दर्शन है। तो रंगनाथ में अनंत शयनम, जगन्नाथ में स्वागतो स्वरूप में, लेकिन द्वारका नाथ में चार भुजानुरात राजा बनकर बैठे हैं। तुम प्रजा हो, हम राजा, वहां राजा की दृष्टि से बैठे। आह क्या द्वारका।

0: तो जगन्नाथ में भगवान स्वागत स्वरूप में बैठे हैं, रंगनाथ में, अनंत सैनम द्वारकानाथ में, राजा की भूमिका में चतुर्भुज रूप धारी। लेकिन गोवर्धन में ये ठाकुर जी सिपाही की दृष्टि से खबरदार रक्षक हैं, यहां भगवान ब्रजवासियों की रक्षा कर रहे हैं, तो यहां रक्षक की दर्शन है। लेकिन बद्रीनाथ में ध्यान के रूप में ठाकुर बैठा हुआ है। तो पृथ्वी पर पंचनाथ हैं, कितने नाथ हैं? पंचनाथ है, जगन्नाथ, रंगनाथ, बद्रीनाथ, गोवर्धननाथ और द्वारकानाथ। अच्छा, बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि अभी हम गुजरात भी जा रहे हैं, राजकोट, पांच छह सात को, तो पंचनाथ हैं मेरे पागलों। कितनी अद्भुत बात है, इन पंचनाथों में हम भू वैकुंठ में बद्रीनाथ में बैठे हुए हैं। अच्छा, एक बात यहां समझना, हम अभी गाड़ी में भी हमें कोई मिला गाड़ी के पहले, और मिलते रहते हैं, तो बहुत से लोग कहने लगते हैं हमारा कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई हमारा है नहीं, है नहीं, अनाथ है, अनाथ है, अनाथ है। एक बात बोले, जब तक इस पृथ्वी पर ये पंचनाथ हैं, सब सनाथ है, सब सनाथ है, जब तक बागेश्वर नाथ है। अच्छा, कितना अद्भुत है, जगन्नाथ बद्रीनाथ का मिलन बागेश्वर नाथ से हो रहा है, इसमें भी नाथ लगा और उसमें भी नाथ लगा। और हमारे बुंदेलखंड में एक कवि गाते थे, दीनानाथ अनाथ का भला मिला संजोग, और यदि अब तुम तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग। आप नाथ हो और हम अनाथ हैं, नहीं नहीं, सनाथ हैं, भगवान के साधक हैं। तो इन पंचनाथों में हम सब बद्रीनाथ में बैठे हुए हैं। हमारे मन में आज विचार आया, हम कभी रंगनाथ नहीं गए। महाराज जी ने दो बार हमको टोका कि आप एक बार रंगनाथ दर्शन करने जाओ, आज तक नहीं गए, पर अब हम बहुत जल्दी रंगनाथ जी के दर्शन करेंगे, अनंत शयनम के दर्शन करेंगे।
1: क्या लक्ष्मी माता की पूजा से कपड़े का व्यापार सुधर जाता है? क्या हनुमान जी की पूजा करने से व्यापार की स्थितियां बेहतर हो जाती हैं? क्या शनिदेव का मंत्र पढ़ने से किसी तरह के व्यापार में फायदा होता है? कैसे बनाएं व्यापार को बेहतर, कैसे पाएं व्यापार में सफलता, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
3: One more, let's go.
2: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get four mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Lebatard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play tune in and start listening.
0: खबरें तो आ रही हैं।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
10: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
11: अहमदाबाद में आज से विश्व की पहली योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का शुभारंभ, अहमदाबाद के एका अरीना में 8 जून तक चलेगी प्रतियोगिता। केरलम पहुंच सकता है दक्षिण पश्चिम मॉनसून, मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटक में भारी बारिश का जताया अनुमान। पर्यटकों को लुभा रहा है पहाड़ों का सुहाना मौसम, नैनीताल में पर्यटकों की भारी भीड़, सड़कों पर लग रहा है लंबा जैम, सैलानियों की बढ़ती भीड़ से स्थानीय कारोबारी खुश। देवभूमि उत्तराखंड में उत्साह से जारी है चारधाम यात्रा, अब तक 29 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए केदारनाथ धाम में, भक्तों की संख्या 10.5 लाख के पार। नोएडा समेत उत्तर प्रदेश के 18 बड़े शहरों में चलेंगी बसें, 1725 नई ई बसों का किया जाएगा संचालन, जेवर एयरपोर्ट तक आसान हो जाएगा सफर। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को मिला ग्रैमी अवार्ड, उस्ताद अमजद अली खान ने किया सम्मानित, द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए सम्मान।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
11: आज केरलम पहुंच सकता है दक्षिण पश्चिम मॉनसून, मौसम विभाग ने जताया मॉनसून के केरलम पहुंचने का अनुमान। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटक में भारी बारिश का जताया अनुमान। मौसम विभाग ने देश भर में भारी बारिश की दी चेतावनी, भीषण गर्मी झेल रहे इलाकों में लोगों को मिली राहत। मौसम विभाग ने देश के उत्तर पश्चिम इलाकों में आंधी बारिश का जताया अनुमान, केंद्रीय और पूर्वी भारत में बारिश आंधी बारिश की संभावना। जनजातीय विकास एजेंसियों को सशक्त बनाने पर चर्चा के लिए दिल्ली में राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन किया। पर्यटकों को लुभा रहा जम्मू कश्मीर का सुहाना मौसम, उत्तर भारत में पड़ रही प्रचंड गर्मी से राहत के लिए छुट्टियां मनाने जम्मू कश्मीर पहुंच रहे लोग। खूब خوبصورت وادیوں، صاف ہوا اور کل کل بہتے پانی کے بیچ چھٹیوں کو یادگار بنانے بیلگام گھاٹی پہنچ رہے ہیں پرٹک. میدانی علاقوں میں گرمی سے راحت پانے کے لیے پہاڑوں کا رخ کر رہے ہیں سیلانی. بڑی سنکھیا میں پرٹکوں کے نینی تال پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے. ہریدوار میں کار سے خطرناک سٹنٹ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد پولیس نے لیا ایکشن، ڈرائیور پر سخت کارروائی، گاڑی بھی ضبط. وشو سائیکل دیوس کے موقع پر جموں کشمیر کے پنچ میں بچوں نے نکالی سائیکل ریلی، بڑی سنکھیا میں بچے اور یوک شامل. وشو سائیکل دیوس کے موقع پر جموں کشمیر کے پنچ میں بچوں نے نکالی سائیکل ریلی، بڑی سنکھیا میں بچے اور یوک شامل. چاردھام یاترا میں اڑ رہی ہے شردھالوں کی بھاری بھیڑ، کیدارناتھ دھام پہنچنے والے شردھالوں کی سنکھیا 10.5 لاکھ کے پار. خراب موسم کے باوجود کیدارناتھ دھام میں شردھالوں کے پہنچنے کا نیا ریکارڈ، روزانہ 15,000 سے زیادہ شردھالو پہنچ رہے ہیں بھگوان کیدار کے دھام. پنجاب کے فرید کوٹ میں اچانک بدل گئی ایک موٹر میکینک کی زندگی، 21 لاکھ روپے کی لاٹری نکلنے سے گھر میں آئی خوشیوں کی بہار. 21 لاکھ روپے کی لاٹری نکلنے سے خوش موٹر میکینک روی نے کیک کاٹ کر لڈو بانٹ کر منائی خوشی. ابھنیتا انوپم کھیر نے فلم انڈسٹری میں پورے کیے 45 سال. اس موقع پر انوپم نے سٹرگل کے دنوں سے لے کر سفل ہونے تک کے سفر پر بات کی. گجرات میں آج وشو کی پہلی یوگاسن اسپورٹس چیمپئن شپ 2026 کا آیوجن کیا گیا. احمد آباد کے ایکا ایرینا میں 8 جون تک چلے گی پرتیوگتا. اس ایتہاسک پرتیوگتا میں 60 سے زیادہ دیشوں کے 500 سے زیادہ ایتھلیٹ شامل ہو رہے ہیں. 7 کیٹیگری میں اپنی کلا ایتھلیٹزم کا کریں گے پردرشن. پرتیوگتا میں پارمپرک یوگاسن کے ساتھ کئی طریقے کی پرتسپرداؤں میں آیوجن ہوگا. ویڈ دا لائن رکھا گیا ہے پہلی وشو یوگاسن کھیل پرتیوگتا کا شبھ. یوگاسن کو پرتسپردھا ویشوک کھیل کے روپ میں استھاپت کرنا اور 2036 کے اولمپک میں شامل کرانے کی دشا میں قدم بڑھانا پرتیوگتا کا مقصد. شام 6:40 پر کارکرم سے ورچولی جڑیں گے پردھان منتری نریندر مودی. پردھان منتری نے کارکرم کے آیوجکوں کو بدھائی اور پرتیبھاگیوں کو شبھ کامنائیں دی. دیش کو کل ملے گی 18,000 کروڑ کے وکاس کاریوں کی سوگات. پردھان منتری مودی سورت میں 18,000 کروڑ کی یوجناؤں کا کریں گے ادگھاٹن، شلانیاس. سورت کے بعد کیندر شاست پردیش دمن پہنچیں گے پردھان منتری نریندر مودی. دمن کو قریب 300 کروڑ روپے کی لاگت سے وکاس کاریوں کی سوگات دیں گے. دمن کو ملے گی نئے ناگرک ہوائی اڈے کی سوگات. کل شام 6 بجے ہوائی اڈے کا ادگھاٹن کریں گے پردھان منتری نریندر مودی. ہوائی اڈے کے بعد 300 بستر والے اسپتال کا بھی ادگھاٹن کریں گے پردھان منتری. لوگوں کو بہتر سواستھ سویدھائیں دینا مقصد. 8ویں بار دمن دورے پر پہنچیں گے پردھان منتری نریندر مودی. پردھان منتری کے دورے کو لے کر دمن میں زبردست تیاریاں. سواگت میں جگہ جگہ لگائے گئے ہیں بڑے بڑے کٹ آؤٹس. تبتی بودھ دھرم گرو دلائی لاما کو ملا بڑا سمان. گریمی ایوارڈ سے کیے گئے سمانت. وشیش آڈیو ایلبم میڈیٹیشن دا ریپلیکیشنز آف ہز ہولینس دا دلائی لاما کے لیے ملا اوارڈ. استاد امزد علی خان نے سمانت کیا. سنگیت جگت میں آسکر کے برابر ہے گریمی اوارڈ. دلائی لاما کو اوارڈ دیتے سمے جانے مانے سنگیت نرماتا اور لیکھک کبیر گل سہگل بھی موجود رہے. اس خاص البم کے نرمان میں بھارتیہ امریکی مول کے کبیر گل سہگل نے سہ نرماتا کے روپ میں نبھائی اہم بھومکا. اوارڈ لیتے ہوئے دلائی لاما نے پوری ٹیم کا جتایا آبھار. کہا سنگیت صرف منورنجن کا نہیں بلکہ یہ آنترک شانتی اور کرونا جگانے کا بھی سشکت مادھیم. بھارت کے ایئر ڈیفنس ہوا اور مضبوط. دیش کو ملا روس میں بنا S-400 ٹرائمف ایئر ڈیفنس سسٹم کا 4th سکواڈرن. भारतीय सेना ने S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम का नाम दिया सुदर्शन चक्र। इस साल नवंबर में आने वाला है S-400 का पांचवा और आखिरी स्क्वाड्रन। भारत ने 2018 में रूस से 5 स्क्वाड्रन S-400 के लिए $5.43 बिलियन में किया था सौदा। वायुसेना के एकीकृत हवाई कमांड और कंट्रोल सिस्टम से जोड़ा गया है S-400 स्वदेशी आकाश और MRSAM के साथ मिलकर बनाता है मजबूत डिफेंस लेयर। S-400 ने पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान निभाई थी अहम भूमिका। 400 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से मिसाइलों और विमानों को नाकाम। इस साल अमरनाथ यात्रा में उपलब्ध नहीं होगी हेलीकॉप्टर सेवा। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया फैसला। पूरा यात्रा मार्ग 1 जुलाई से नो फ्लाइंग जोन घोषित। ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। देसी और विदेशी फ्लाइट ऑपरेशन के लिए 10,000 करोड़ के फंड का ऐलान। दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए केंद्र का बड़ा फैसला। पुराने ट्रकों और बसों को आधुनिक वाहनों से बदलने के लिए 5,000 करोड़ से ज्यादा की योजना को मंजूरी। सरकार ने गाड़ी के लोन पर 5% ब्याज छूट देने का फैसला किया। इससे पुराने वाहन मालिकों को नए वाहन खरीदने में मिलेगी मदद। हरियाणा पुलिस ने लॉन्च किया क्राइम इंटेलिजेंस मॉडल। पिछले 1 दशक में जघन्य अपराधों में शामिल अपराधियों का डेटाबेस तैयार हुआ। नोएडा समेत उत्तर प्रदेश के 18 बड़े शहरों में चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें। कैबिनेट ने 1,725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला किया। यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना मकसद है। इलेक्ट्रिक बसें चलाने से प्रदूषण की कमी आएगी। उत्तर प्रदेश में सरकारी वकीलों को सरकार की सौगात। मानदेय और मासिक भत्तों में 50% तक बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कुल 24 प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया है। आगरा, बरेली और प्रयागराज में नए शहरों के विकास को मंजूरी। एनसीआर में बढ़ने वाले उत्तर प्रदेश के जिलों में गाड़ियों के लिए 1 अक्टूबर से प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र होगा अनिवार्य। गोरखपुर को मिली 71 विकास योजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 208 करोड़ में तैयार औद्योगिक विकास प्राधिकरण की योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स एंड ईडब्ल्यूएस एलआईजी आवासीय परिसर का उद्घाटन किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में लगाया जनता दरबार। लोगों की फरियाद सुनी, जल्द निपटारे के आदेश। भारत और लाओस के बीच कई मामलों पर सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति। विदेश मंत्री एस जयशंकर और लाओस के डिप्टी प्रधानमंत्री ने दिल्ली में कई समझौतों पर दस्तखत किए। मुंबई में 2.5 एकड़ राष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया। दीनदयाल स्पर्श योजना पुरस्कार का भी वितरण।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
7: क्या लक्ष्मी माता की पूजा से कपड़े का व्यापार सुधर जाता है? क्या हनुमान जी की पूजा करने से व्यापार की स्थितियां बेहतर हो जाती हैं? क्या शनिदेव का मंत्र पढ़ने से किसी तरह के व्यापार में फायदा होता है? कैसे बनाएं व्यापार को बेहतर, कैसे पाएं व्यापार में सफलता, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में। व्यापार को बेहतर, कैसे पाएं व्यापार में सफलता, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
12: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
13: To right field, and it will leave.
12: From the first pitch of the season to the stretch run.
13: And that's the ball game.
12: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
5: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे बुध के शुभ योगों के बारे में। बुध के शुभ योग कौन से होते हैं और अगर आपकी कुंडली में बुध से संबंधित शुभ योग हैं तो इनका प्रभाव क्या है, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 4 जून 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, रात के 11:30 तक, नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 7:41 तक, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक, दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 4 जून 2026 दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है वृषभ राशि में, बुध और शुक्र मिथुन राशि में, बृहस्पति कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा धनु राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। देखिए, ज्योतिष में बुध से संबंधित बहुत सारे शुभ योग पाए जाते हैं, लेकिन हम आपको बुध के विशेष शुभ योगों के बारे में बता रहे हैं। पहला जो शुभ योग है बुध का, उसको कहते हैं भद्र योग। कैसे बनता है? बुध जब कुंडली में कन्या राशि में हो, 6 में हो, या मिथुन राशि में हो, 3 में हो, तो भद्र योग बनता है। लेकिन इसके लिए बुध को लग्न से केंद्र में होना चाहिए, केंद्र स्थान में होने पर ही ये योग बनता है। भद्र योग होने से व्यक्ति धनवान और अत्यंत बुद्धिमान बनता है और जिनकी कुंडलियों में भद्र योग होता है उनको खूबसूरती, वाणी, बुद्धि और चतुराई का वरदान मिलता है। नॉर्मली आप देखेंगे कि जो भद्र योग वाले लोग होते हैं, ये वाणी के क्षेत्र में, समझाने और सलाह देने वाले क्षेत्र में, अभिव्यक्त के क्षेत्र में ज्यादा उन्नति करते हैं। इस योग वाले लोग आर्थिक क्षेत्र में, फाइनेंशियल सेक्टर में, कॉरपोरेट सेक्टर में
उच्च पदों पर पाए जाते हैं। भद्रयोग वाले अत्यंत बुद्धिमान होते हैं और अपनी बुद्धि के दम पर जीवन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन भद्रयोग वालों को सलाह दी जाती है कि आप अपनी बुद्धि का दुरुपयोग मत करिए, अपनी बुद्धि से किसी को भी परेशान ना करें। अब बुध के दूसरे शुभ योग की बात करते हैं। बुध का दूसरा शुभ योग है लग्न में बुध। देखिए, बुध किसी भी कुंडली में अगर लग्न में बैठ जाए तो अत्यंत शक्तिशाली होता है। बुध लग्न में दिग्बली हो जाता है, अत्यंत ताकतवर होता है। और लग्न में बैठा हुआ बुध जीवन में अत्यंत शुभ प्रभाव प्रदान करता है। जिन लोगों के लग्न में बुध होता है, सामान्यतः ऐसे लोग अत्यंत बुद्धिमान होते हैं और गणित वाले विषयों के, कैलकुलेटिव विषयों के जानकार होते हैं। जिनके लग्न में बुध होता है, आम तौर पर ऐसे लोग वाणिज्य यानी कॉमर्स, टैक्स, बैंकिंग और वाणी के क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर इस बुध को बृहस्पति का साथ मिल जाए तो व्यक्ति के पास इंट्यूशन आ जाता है, अंतर्ज्ञान आ जाता है। लग्न में अगर बुध बैठेगा तो आप अच्छा बोलेंगे, अच्छा पढ़ेंगे लिखेंगे, आपकी बुद्धि, आपका दिमाग काफी तेज होगा। ऐसे लोगों को नियमित रूप से ध्यान करना चाहिए। और अगर आपको भगवान ने बुद्धिमान बनाया है तो अपनी बुद्धि का दुरुपयोग ना करें, क्योंकि अगर आप अपनी बुद्धि की शक्ति का दुरुपयोग करेंगे तो आगे चल करके जीवन में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बुध के तीसरे शुभ योग की बात भी करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब बुध के तीसरे शुभ योग की बात करते हैं। उसका नाम है बुध आदित्य यानी बुधादित्य योग। कैसे बनता है? देखिए, बुधादित्य योग सबसे ज्यादा कुंडलियों में पाया जाने वाला योग है, क्योंकि बुध ज्यादातर सूर्य के निकट रहता है, इसीलिए अक्सर कुंडलियों में एक साथ हो जाता है। तो बुधादित्य योग सबसे ज्यादा कुंडलियों में पाया जाता है। जब कुंडली में सूर्य और बुध एक साथ होते हैं, एक साथ बैठते हैं, तो बुधादित्य योग कुंडली में बन जाता है। इस योग के होने पर व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान की और धन की प्राप्ति होती है और व्यक्ति अत्यंत पराक्रमी होता है,
बड़ा साहसी होता है अपनी साहस और मेहनत के बल पर जीवन में आगे बढ़ता है। बुधादित्य योग ज्यादातर तभी रिजल्ट देता है या ज्यादातर तभी फलित होता है जब ये केंद्र में या त्रिकोण में बना हो। और बुधादित्य योग में बुध अस्त ना हो। अगर बुधादित्य योग में बुध अस्त हो गया तो सारे परिणाम सूर्य देंगे, फिर बुध का ब्लेंड बुध का होना उसमें कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। अगर कुंडली में परफेक्ट तरीके से बुधादित्य योग बना हो तो व्यक्ति साधारण जगह पर जन्म लेकर भी अत्यंत धनवान हो जाता है, अत्यंत पैसे वाला हो जाता है। और बुधादित्य योग अगर कुंडली के करियर से संबंध बनाए तो बुधादित्य योग वाले लोग अक्सर जीवन में उच्च पदों पर देखे जाते हैं, जीवन में उच्च पदों पर रहते हैं। अगर आपकी कुंडली में बुधादित्य योग है और आप इसका लाभ चाहते हैं तो प्रातः सूर्योदय के पहले उठिए और संभव हो तो सुबह के समय सूर्य को जल चढ़ाइए। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करें तो कुंडली का बुधादित्य योग आपको बेहतर फायदा देगा, जीवन में बेहतर लाभ आप प्राप्त कर सकेंगे। तो आज हमने बात की बुध के शुभ योगों के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य और आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या है लकी टिप। अगर बालों की समस्या से परेशान हैं तो रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिए और भोजन में हरी सब्जियों का प्रयोग ज्यादा करिए, आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 4 जून 2026 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से एक पीला फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
3: अहमदाबाद में आज से विश्व की पहली योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का शुभारंभ। अहमदाबाद के एका अरीना में 8 जून तक चलेगी प्रतियोगिता। आज केरलम पहुंच सकता है दक्षिण पश्चिम मॉनसून। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटक में भारी बारिश का जताया अनुमान। पर्यटकों को लुभा रहा है पहाड़ों का सुहाना मौसम। नैनीताल में पर्यटकों की भारी भीड़, सड़कों पर लग रहा है लंबा जैम। सैलानियों की बढ़ती भीड़ से स्थानीय कारोबारी खुश। देवभूमि उत्तराखंड में उत्साह से जारी है चारधाम यात्रा। अब तक 29 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ धाम में भक्तों की संख्या 10.5 लाख के पार। नोएडा समेत उत्तर प्रदेश के 18 बड़े शहरों में चलेंगी ई बसें। 1725 नई ई बसों का किया जाएगा संचालन। जेवर एयरपोर्ट तक आसान होगा सफर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख।
4: नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
5: नमस्कार।
4: तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कि आज के इस शो में हम चर्चा क्या करने वाले हैं। पंडित जी, आज आपको बताने वाले हैं कि कैसे अलग अलग व्यवसाय में सफलता पाई जा सकती है। अगर आप किसी तरह का कोई व्यापार करते हैं, कपड़े का व्यवसाय करते हैं या कोई और व्यापार आप करते हैं, उसमें अगर आपको दिक्कतें आ रही हैं, उसमें आप सफलता पाना चाहते हैं, तो किन उपायों के जरिए आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ये जानकारी पंडित जी आपको देंगे। आपके सवाल भी आगे शो में हम लेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज के गुड लक मंत्र के बारे में।
5: देखिए, आप जहां भी व्यापार करते हैं, कोई भी व्यापार करते हैं, वहां पर गुलाब के सुगंध की अगरबत्ती जलाइएगा और हर शुक्रवार को एक बार श्री सूक्तम का पाठ करिएगा। रोज शाम को करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम सप्ताह में एक दिन शुक्रवार को अपने व्यापार के स्थान पर बैठ करके माता लक्ष्मी का स्मरण करके श्री सूक्तम का अगर पाठ करेंगे तो आपको लाभ होगा।
4: और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 4 जून 2026 बृहस्पतिवार के पंचांग के बारे में।
5: दिनांक 4 जून 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, रात के 11:30 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं सुबह 7:41 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर आपकी यात्रा जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
4: और चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, व्यवसाय के बारे में आपको बताएंगे, व्यवसाय में आप सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है पंडित जी से कि व्यवसाय से किस्मत और कौन कौन से ग्रहों का संबंध होता है। पंडित जी,
5: जी देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि आप जिस भी तरह का व्यापार करते हैं, अपने व्यापार के स्वभाव, व्यापार की प्रकृति के अनुसार कौन सा उपाय करें जिससे आपको जीवन में सफलता मिले। सबसे पहली बात, आपके व्यापार का आपके भाग्य से, ग्रहों से क्या संबंध है। देखिए, हर तरह के व्यापार, व्यवसाय और कारोबार के पीछे किसी एक ही ग्रह की भूमिका होती है। एक तरह का कारोबार किसी एक ग्रह से कंट्रोल होता है। अगर वो ग्रह अच्छा है तो कारोबार फलता है, फूलता है, और अगर वो ग्रह कमजोर है तो कारोबार या तो बंद हो जाता है या व्यापार में, कारोबार में नुकसान होता है। कभी कभी कारोबार का ग्रह किसी और ग्रह के कारण गड़बड़ हो जाता है। ऐसी दशा में कारोबार में उतार चढ़ाव चलता रहता है। जिस तरह का बिजनेस आप करते हैं, जिस तरह का कारोबार आप करते हैं, उससे संबंधित ग्रह को अगर आप मजबूत करें तो अपने काम को काफी हद तक बेहतर बना सकते हैं। आप जो भी व्यापार करते हैं उससे संबंधित ग्रह कौन सा है आपको ये समझना होगा, और इसके बाद जो व्यापार का मुख्य ग्रह है अगर आप उसको मजबूत करें तो आपको व्यापार में लाभ अवश्य होगा।
4: चलिए पंडित जी से सवाल लेते हैं। पंडित जी, व्यवसाय के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं, वस्त्रों का कोई व्यवसाय करता है, इसको बेहतर बनाना चाहता है, इसमें सफलता पाना चाहता है, तो कौन से उपाय हैं जो आप बताएंगे।
5: अगर आप कपड़ों का बिजनेस करते हैं, वस्त्रों का व्यापार करते हैं, तो इसको कैसे बेहतर बनाएंगे। देखिए, वस्त्रों का व्यापार, कपड़ों का व्यापार बहुत सारे ग्रहों से संबंध रखता है, लेकिन मुख्य रूप से कपड़ों के व्यापार के स्वामी हैं शुक्र। मुख्य रूप से ये शुक्र का व्यवसाय है। इस व्यवसाय में अगर आप हैं और इसको बेहतर करना चाहते हैं तो रोज सुबह और शाम शुक्र के मंत्र का जप करें 108 बार। ओम शुं शुक्राय नमः। एक स्फटिक की सफेद माला अपने गले में धारण करें और हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं और उनसे कृपा की प्रार्थना करें। जहां तक हो सके काले रंग का प्रयोग अपने जीवन में कम करें। यानी अगर आप शुक्र ग्रह को प्रबल करते हैं, शुक्र ग्रह को अगर मजबूत

0: रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। बेवजह की चिंताएं दिख रही हैं, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। करियर की समस्या हल होगी, कोई शुभ सूचना मिल सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। काम में जल्दबाजी ना करें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: चलिए, कपड़ों के व्यापार के बारे में तो पंडित जी ने आपको जानकारी दी। अब जानते हैं पंडित जी से कि अगर आप खाने पीने की चीजों का व्यापार करते हैं, उसमें अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो कौन से उपाय हैं जो आप कर सकते हैं सफलता पाने के लिए पंडित जी?
0: अगर आप फूड का या फूड प्रोडक्ट्स का व्यापार करते हैं, खाने पीने की चीजों के व्यापार में हैं, तो क्या उपाय करें जिससे ये व्यापार बेहतर हो? देखिए, जो फूड ग्रेन्स हैं, जो अनाज है, इसका व्यवसाय मुख्य रूप से बृहस्पति का व्यवसाय है। पका हुआ भोजन आम तौर पर शुक्र से संबंध रखता है, और जो लिक्विड भोजन है, लिक्विड आहार है, सूप है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, शेक्स हैं, जलीय खाद्य पदार्थ के पीछे मुख्य रूप से चंद्र रखता है। और जो लिक्विड भोजन है, लिक्विड आहार है, सूप है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, शेक्स हैं, जलीय खाद्य पदार्थ के पीछे मुख्य रूप से चंद्रमा होता है। वैसे खाद्य पदार्थ का ओवरऑल जो बिजनेस है वो चंद्रमा से नियंत्रित होता है। हर तरह के खाद्य पदार्थ के व्यवसाय में सफलता के लिए भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। अगर आप खाने पीने की चीज का व्यापार करते हैं तो रोज सवेरे और रोज शाम 108 बार एक मंत्र पढ़ेंगे, क्लीन कृष्ण क्लीन, क्लीन कृष्ण क्लीन। ये मंत्र सुबह शाम 108 बार पढ़िए। अपने मस्तक पर रोज सुबह स्नान करके सफेद या पीले चंदन का तिलक लगाइए और हमेशा अपने पास एक पीले रंग का रेशमी रुमाल रखिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें और

0: अगर आप खाद्य पदार्थ का व्यापार करते हो तो इस व्यापार में आपको सफलता अवश्य मिलेगी।
1: चलिए और भी प्रश्न पंडित जी से पूछेंगे, आगे बढ़ते हैं राशिफल के साथ और पंडित जी से जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या वालों के राशिफल में आज क्या लिखा है।
0: कर्क राशि, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, काम के नए अवसर मिलेंगे, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, संतान पक्ष की चिंता हो सकती है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए अब आते हैं आपके सवालों के ऊपर जिसका आपको ही इंतजार रहता है। आपके तमाम सवाल इस शो में आते हैं, तो आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको सूचित कर दें कि आप भी कोई प्रश्न पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो अपने तमाम सवाल इस शो में भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप नोट कर लीजिए। पंडित जी, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
0: जी, आज का पहला प्रश्न भावना ने राजस्थान से लिखा है। 5 मई 1999 का जन्म है, 3:30 दोपहर में, कोटा राजस्थान। ये कह रही हैं कि मेरा डिवोर्स हो रहा है, मेरे बहुत प्रयास के बावजूद मेरी शादी नहीं बच पाई, तो आगे मेरा भविष्य कैसा रहेगा, जीवन कैसा रहेगा। भावना, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और धनु राशि की, महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा मंगल की चल रही है। देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगा कि जब तक ये साल खत्म ना हो जाए तब तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि इस साल में स्वास्थ्य के हालात, पारिवारिक जीवन के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। हालांकि आपकी कुंडली में दूसरे विवाह की संभावना बनती है और साल 2027 के मई के बाद से आपके दूसरे विवाह के योग हैं और आने वाले समय में आपका जीवन बेहतर होगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहने, रोज सुबह और रोज शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बेहतर होगा।
1: और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए दूसरे प्रश्न का भी रुख कर लेते हैं और पंडित जी से ही जान लेते हैं कौन सा है दूसरा प्रश्न। पंडित जी,
0: जी आज का दूसरा प्रश्न ममता गुप्ता जी ने इंदौर से हमें लिखा है। 30 मई 1977 का जन्म है, 7:20 शाम को मथुरा उत्तर प्रदेश। ये पूछ रही हैं कि मेरी करियर की स्थिति कैसी रहेगी और आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। ममता जी, कुंडली आपकी वृश्चिक लग्न की है और तुला राशि की है, महादशा बुध की और अंतर दशा शुक्र की चल रही है। देखिए, करियर के हालात सामान्य हैं, करियर में कोई बड़ा परिवर्तन इस साल के अंत में हो सकता है। उसका समय चल रहा है कि जून के बाद और इस साल के अंत के अंदर कोई बड़ा परिवर्तन आपके करियर में हो। अगले एक साल में धन के हालात बेहतर होंगे, किसी प्रॉपर्टी का फायदा भी आपको हो सकता है। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, आंखों की समस्या का, त्वचा और हड्डियों की समस्या को लेकर सतर्क रहिएगा। एक मोती बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने और रोज शाम के समय माता लक्ष्मी की पूजा करें। विशेषकर रोज शाम को माता लक्ष्मी की अगर आरती करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए पंडित जी से जानते हैं कि अगर कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचता है, ऐसा व्यवसाय करता है, महिलाओं से संबंधित व्यवसाय में वो है, उसमें अगर वो सफलता पाना चाहता है तो कौन से उपाय कर सकता है पंडित जी?
0: देखिए, अगर आप सौंदर्य प्रसाधन यानी कॉस्मेटिक्स का, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का या महिलाओं के जरूरत में आने वाली चीजों का व्यापार करते हैं तो इसे कैसे बेहतर बनाएंगे? देखिए, ये जो कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, महिलाओं के इस्तेमाल की चीजें, इसके पीछे शुद्ध रूप से शुक्र होता है। ये व्यवसाय शुक्र से संबंध रखता है। कहीं कहीं पर इसमें चंद्रमा की भूमिका भी आ जाती है। जैसे जब इसमें खुशबू का प्रयोग आता है, परफ्यूम या डिओड्रेंट्स का प्रयोग आता है, तो चंद्र की भूमिका भी आ जाती है। इस व्यवसाय में अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो अपने कार्य स्थल पर माता लक्ष्मी का एक चित्र या माता लक्ष्मी की एक मूर्ति स्थापित करें। उनको रोज सवेरे गुलाब की सुगंध का इत्र रुई में लगाकर अर्पित करिए काम शुरू करने के पहले, और इसके बाद 108 बार ओम श्रीं श्रियै नमः, ओम श्रीं श्रियै नमः इस मंत्र का जप करें। हर शुक्रवार की शाम को अपने कार्य स्थल पर जो माता लक्ष्मी का चित्र या मूर्ति लगाई है उनको सफेद सुगंधित फूल अर्पित करें तो बहुत अच्छा होगा।
1: चलिए अगला प्रश्न पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, सवाल आपसे ये है कि अगर कोई जमीन निर्माण कार्य या ठेकेदारी आदि का व्यवसाय करता है, उसमें दिक्कतें आ रही हैं, उसमें सफलता पाना चाहता है, तो कौन कौन से उपाय हैं जो आप सफलता के लिए बताएंगे?
0: अगर आप जमीन का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण का काम करते हैं, ठेकेदारी का, कॉन्ट्रैक्टरशिप का काम करते हैं, तो सफलता कैसे पाएंगे? देखिए, ये जो कंस्ट्रक्शन है, ठेकेदारी है, इसके पीछे होता है इस व्यवसाय का मुख्य ग्रह सैटर्न यानी शनि। और जब जमीन की बात होती है, प्लॉटिंग की बात होती है या जमीन से निकलने वाली चीजों की बात होती है, तब इसमें मंगल की भूमिका भी आ जाती है। यानी दो ग्रह इसके कंट्रोलर हैं, मंगल और शनि। इस व्यवसाय में अगर आप सफलता चाहते हैं तो जहां आपने अपना ऑफिस बनाया है, लाल रंग के हनुमान जी का चित्र या उनकी मूर्ति स्थापित करिएगा। रोज सुबह काम की शुरुआत करने के पहले उनके सामने चमेली के तेल का दीपक जलाइएगा और फिर बोल बोल कर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। ऐसा रोज करना है काम की शुरुआत के पहले। और हर मंगलवार को मजदूरों को हलवा पूड़ी बांटिएगा। सुबह दोपहर शाम रात जब भी संभव हो किसी भी साइट पे चले जाएं, अगर आपकी साइट है तो बड़ी अच्छी बात है, वहीं पे जाके मजदूरों में हलवा पूड़ी हर मंगलवार को बांटिएगा। अगर आप ये उपाय करें तो प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, ठेकेदारी ऐसे व्यवसाय में आप सफल होंगे।
1: और चलिए राशिफल पर वापस आते हुए पंडित जी से ही जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु वालों के राशिफल में आज क्या लिखा है। पंडित जी,
0: तुला राशि, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान इस समय बनाए रखें। बेवजह की मानसिक चिंताएं हो सकती हैं। वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, करियर की समस्या दूर होगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, करियर में सफलता मिलेगी, रिश्तों में थोड़ी समस्या हो सकती है। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए पंडित जी से ये जानते हैं कि अगर कोई शख्स शिक्षा व्यवसाय करता है, सलाहकारिता का काम करता है, तो उस कार्य में अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कतें आ रही हैं, उनको दूर करना चाहते हैं, इस कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो पंडित जी क्या किया जाए?
0: देखिए, अगर आप शिक्षा का व्यवसाय करते हैं, आपका विद्यालय है, आपका कोचिंग सेंटर है, कोई शैक्षणिक संस्थान है, आप उसका काम करते हैं, या कंसल्टेंसी का, काउंसलिंग का, सलाहकारिता का व्यापार करते हैं, तो क्या करेंगे? देखिए, शिक्षा, काउंसलिंग, कंसल्टेंसी, ये व्यापार बुध, बृहस्पति और शुक्र से संबंध रखते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये जो व्यापार हैं ये संबंध रखते हैं बृहस्पति से मेनली। अगर आप एजुकेशन का, कंसल्टेंसी, काउंसलिंग का व्यापार करते हैं तो इसमें सफलता के लिए भगवान शिव की उपासना आपको करनी चाहिए। रोज सवेरे शिव जी को सफेद या पीले फूल चढ़ाइए और इसके बाद सुबह के समय 108 बार ओम आशुतोषाय नमः इस मंत्र का जप करिए और जहां भी आप काम करते हैं वहां पर आपके ऑफिस का कलर रंग अगर हल्का पीला हो या सफेद रंग हो तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए पंडित जी से ये जानते हैं कि पंडित जी अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोहे का व्यवसाय करते हैं, कोयले या पेट्रोल आदि का व्यवसाय भी करते हैं, इस व्यवसाय में अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, घाटा हो रहा है, आप सफलता पाना चाहते हैं इस कार्य में, तो फिर कौन से उपाय हैं जो आप बताएंगे इनके लिए?
0: अगर आप लोहे का व्यापार करते हैं, कोयले का व्यापार करते हैं, पेट्रोल या जमीन से निकलने वाली चीजों का व्यापार करते हैं तो क्या उपाय करें? ये जो लोहा, कोयला, पेट्रोल, माइनिंग, ये व्यवसाय शनि का है मुख्यतः और कुछ हद तक मंगल का भी है। इस व्यापार में अगर आप सफलता चाहते हैं तो एक लोहे का छल्ला राइट हैंड की मिडिल फिंगर में दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में पहने, दाहिनी कलाई में राइट कलाई में काला रेशमी धागा बांधें या काली स्ट्रेप वाली घड़ी लगाएं। रोज रात में सोने के पहले स्नान करके या हाथ पैर धोकर स्वच्छ होकर 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और शनिवार को भोजन का दान करें, उसमें जरा सा तिल छिड़क दीजिएगा। तिल युक्त भोजन का दान करना अच्छा होगा। अगर आप ऐसा लंबे समय तक करें तो आपको लोहे, कोयले, पेट्रोल आदि के व्यापार में सफलता मिलेगी।
1: और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बारी आ जाती है राशिफल के अंत की तरफ बढ़ने की और पंडित जी से जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन वालों के भाग्यफल में आज क्या लिखा है।
0: मकर राशि, करियर में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग आपके बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं, काम के दबाव से परेशानी होगी, महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, करियर की बाधाएं समाप्त होंगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए इसी के साथ वापस आते हैं आप यानी दर्शकों के सवालों के ऊपर। पंडित जी से जान लेते हैं कि कौन से दर्शक की समस्या पंडित जी तक पहुंची है। पंडित जी
0: जी अगला प्रश्न आराधना जी ने जमशेदपुर से लिखा है। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पुत्र की जन्म तारीख है 24 जनवरी 2004, 7:40 शाम को, धनबाद, झारखंड। ये पूछ रही हैं कि मेरे पुत्र का भविष्य कैसा रहेगा और उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा आने वाले समय में। आराधना जी, आपके पुत्र की कुंडली है सिंह लग्न की और कुंभ राशि की, महादशा शनि की और अंतर दशा भी शनि की चल रही है। करियर, पढ़ाई, शिक्षा के मामले में दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन सिंह लग्न के लिए शनि की महादशा को अच्छा नहीं माना जाता और यहां शनि की प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मैं कहूंगा कि 2027-28 में इनको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। दुर्घटनाओं की समस्या से और पेट की दिक्कतों से इनको बचना चाहिए। एक इनको मूंगा बनवा के पहनाएं, 12-14 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा धारण करवाएं इनको, और या तो ये स्वयं सुबह शाम राम रक्षा स्तोत्र पढ़ें, या आप इनकी माता जी हैं, इनके लिए सुबह शाम राम रक्षा स्तोत्र पढ़ के इनकी रक्षा की प्रार्थना करें।
1: और चलिए अब वक्त हो गया है आप दर्शकों का अंतिम सवाल इस शो में लेने का। पंडित जी से ही जानते हैं कि अगला प्रश्न कौन से दर्शक का आया है। पंडित जी
0: जी आज का अंतिम प्रश्न निखिल कर्माकर जी ने हमें लिखा है। पश्चिम बंगाल से लिखते हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 26 मार्च 1995, 9:23 रात को, पुरुलिया, पश्चिम बंगाल। ये पूछ रहे हैं कि क्या मेरे बेटे को सरकारी नौकरी मिलेगी या उसे कोई व्यापार करना चाहिए, विवाह कब तक होगा और कैसा रहेगा। निखिल जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है तुला लग्न की और मकर राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतर दशा शनि की चल रही है। देखिए, आपके पुत्र को टेक्निकल फील्ड में, तकनीकी क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी मिलेगी। कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी के फील्ड में अगर ये प्राइवेट नौकरी का प्रयत्न करें तो इनको लाभ होगा और इनका करियर अभी शुरू हो सकता है। जून से लेकर के अक्टूबर के बीच में उसकी दशा चल रही है। विवाह इनका अगले साल होगा। स्वयं की इच्छा से जानी पहचानी लड़की से विवाह करेंगे और वैवाहिक जीवन कुल मिला जुला के ठीक है। इस समय जो इनकी दशा चल रही है, तो जब तक ये साल खत्म नहीं हो जाता तब तक दुर्घटनाओं से, चोट चपेट से बचें, खान पान का बहुत ध्यान रखें। एक अपने पुत्र को ओपल बनवा के पहना दीजिए, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को इनको ओपल पहनाएं। और देखिए, ये तो मंत्र वगैरह जपेंगे नहीं, तो आप इनके पिताजी हैं, आप इनके लिए सुबह शाम दोनों समय 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें, उससे इनकी स्थितियां बेहतर होंगी।
1: और चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से अब जान लेते हैं कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 4 जून को, उनका वक्त कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 4 जून को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन की हानि से बचें, धन के खर्चों पर नियंत्रण रखें। अक्टूबर के बाद से आपके जीवन की स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा और साल के अंत में, यानी जब आपका वर्ष खत्म होगा जून 2027 के आसपास, किसी संपत्ति के लाभ होने के योग बन रहे हैं। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें, ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं आज के शो की जिज्ञासा के बारे में।
0: आज की जिज्ञासा है कि अगर घर से निकलते समय रास्ते में आपको रुमाल मिल जाए कोई गिरा हुआ, या कोई बटन मिल जाए कपड़े का, तो इसका अर्थ क्या है? रास्ते में अगर रुमाल या बटन मिले तो इसको अपने पास रख लेना चाहिए, अच्छा है। ये जीवन में नए रिश्तों के शुरुआत की सूचना है। आप अगर विवाह के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और उसी समय रुमाल या बटन मिल गया तो आपकी शादी जल्दी तय होगी, इस बात की सूचना है।
1: चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं 4 जून 2026 बृहस्पतिवार के शुभ पहर के बारे में।
0: दिनांक 4 जून 2026 दिन बृहस्पतिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में श्री हरि भगवान विष्णु की कपूर से आरती करिएगा, आपके जीवन की पारिवारिक समस्याओं में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 4 जून बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं आज के शो की गुडलक राशि के बारे में।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या करेंगे। आज की गुडलक राशि है मकर। जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपको नियमित रूप से शनि देव की उपासना करनी चाहिए। हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, आपका जीवन बेहतर होगा।
1: चलिए आज के शो के तमाम उपाय और जानकारियां तो पंडित जी ने आपके साथ साझा कर दी हैं। अब बारी आती है महाउपाय के बारे में जान लेने की। तो पंडित जी, आज का महाउपाय, खास उपाय क्या है?
0: जी, देखिए, आप कोई भी व्यापार करते हैं, अगर व्यापार में अच्छी सफलता पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? अगर आप व्यापार में सफलता पाना चाहते हैं तो एक सोने का छल्ला, अगर सोना अफोर्ड नहीं कर पाते तो एक पीतल का छल्ला तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में बृहस्पतिवार को पहन लीजिएगा और पहने रहिएगा। और हर बृहस्पतिवार को किसी निर्धन

0: अगर आप ऐसा निरंतर करते जाएं तो आपके व्यापार की स्थिति स्थिर बनी रहेगी।
1: धन्यवाद।
2: चलिए आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरें लगातार जा रही हैं, आप देखते रहिए GNT। नमस्कार।
3: पंडित शैलेंद्र पांडे दे जीवन को समझने की प्रेरणा और प्लैनेट आयुर्वेदा अर्जुन टी दे दिल को जीवन जीने का जज्बा, क्योंकि ये है हर्बल गुणों से भरपूर चाय भी औषधि भी। आज ही ऑर्डर करें।
4: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
5: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
4: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
5: They score!
4: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: Hey, it's Harry Douglas for Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
1: Third period comes to an end. Game two, headed to overtime.
0: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of the action.
1: They score!
0: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
9: देखिए, डॉग्स की सूंघने की शक्ति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इन दिनों बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी कर रही है। इस स्टार्टअप के जरिए दावा यह किया जा रहा है कि कैंसर के शुरुआती फेज का पता लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही ये तकनीक जो है कैंसर की बहुत सस्ती, सटीक और पेनलेस जांच मुमकिन हो सकती है। तो कैसे डॉग्स की मदद से ये तकनीक काम कर रही है, चलिए जानते हैं।
10: क्या कैंसर की पहचान अब डॉग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर करेंगे? दरअसल बेंगलुरु की एक स्टार्टअप ने ऐसी तकनीक विकसित करने का दावा किया है जो इंसानी शरीर में बीमारी के संकेत पहले पकड़ सकती है। इस अनोखे मॉडल में ट्रेन्ड डॉग्स मरीजों के सैंपल्स को सूंघते हैं, उनकी प्रतिक्रिया को AI सिस्टम रिकॉर्ड और एनालिसिस करता है। दावा है कि इससे कैंसर के शुरुआती संकेतों की पहचान तेजी से और कम लागत में की जा सकती है।
11: I have been working with Dognosis for the past year now, and it's a very interesting concept because it allows for early and easy and a very inexpensive way of detecting early cancers.
10: इस स्टार्टअप का दावा है कि डॉग्स इंसानी शरीर से निकलने वाले बेहद सूक्ष्म गंध संकेतों को पहचान सकते हैं जो कई बार कैंसर जैसी बीमारियों से जुड़े होते हैं। डॉग्स के रिएक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है और फिर AI उस डेटा का विश्लेषण कर कैंसर के संभावित संकेतों की पहचान करने की कोशिश करता है। लेकिन सवाल है कि डॉग्स को सूंघ कर कैंसर का पता आखिर कैसे चलता है? तो इस सवाल का जवाब साफ है, मरीज की सांस और पसीना और दूसरे सैंपल। खास तौर पर ट्रेन डॉग्स इन सैंपल्स को सूंघते हैं।
12: डॉग्स
6: That mask has volatile organic compounds, or VOCs, which essentially have a signal for whether someone has a disease or not. So this face mask comes to our lab, where a team of dogs is evaluating that face mask for these VOC compounds. And they're able to pick it up with their sense of smell and then give us a signal that they're finding it with high accuracy.
10: स्टार्टअप का दावा है कि शुरुआती चरण में कैंसर की पहचान मुमकिन हो सकती है और साथ ही स्क्रीनिंग भी अपेक्षाकृत कम लागत वाली हो सकती है। फिलहाल तो इंसानी शरीर में कैंसर की वक्त रहते पहचान करने वाली ये तकनीक अभी शुरुआती स्टेजेस में है, जिसको लेकर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसी तकनीकों को बड़े पैमाने पर अपनाने से पहले एक बड़े दायरे में क्लिनिकल ट्रायल, मेडिकल वैलिडेशन और रेगुलेटरी परमिशन की जरूरत होगी। यही वजह है कि अभी इस तकनीक को पारंपरिक कैंसर जांच का विकल्प नहीं बल्कि एक संभावित सहायक स्क्रीनिंग टूल के रूप में देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
9: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देशवासियों से फॉरेन ट्रिप की बजाय स्वदेश घूमने की अपील की, तो गुड न्यूज टुडे भी आप लोगों से अपने आसपास की खूबसूरत ऐतिहासिक जगहों की तस्वीरों को शेयर करने की अपील कर रहा है और हम आपको भेजे गए उन वीडियोस को गुड न्यूज टुडे पर लगातार दिखा भी रहे हैं। तो चलिए आज आपको बिहार के बेगूसराय लेकर चलते हैं, जहां का एक ऐतिहासिक राम जानकी मंदिर आस्था और विश्वास की जीती जागती मिसाल है।

0: हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिनी ब्लॉग। तो आपका स्वागत है एक छोटा सा ब्लॉग में घुमा कर विशाल। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे सलोना बड़ी ठाकुरबाड़ी
1: का मुख्य द्वार है, तो मैं इससे अंदर प्रवेश कर रहा हूँ और सामने में ये प्यारा सा महल का यह दृश्य काफी सुंदर दिख रहे हैं, तो मैं इससे अंदर की ओर और बढ़ रहा हूँ।
0: सामने आप देख सकते हैं नागर शैली में निर्मित प्यारा सा लाल पत्थर से नक्काशी गई मंदिर जो ठाकुर जी को समर्पित है। यह मंदिर लगभग 300 साल पुराना है। इसे बनवाने में 16 वर्षों का समय लगा था, जो इस मूर्ति कला और स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना प्रदर्शित करता है।
1: तो आप देख सकते हैं यह मंदिर ठाकुर जी राम लला को समर्पित है। काफी सुंदर पत्थर की नक्काशी मूर्ति स्थापित है अंदर, तो आपको हम नजदीक से दिखा रहे हैं। मंदिर में सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान के साथ अन्य भी भगवान विराजमान है। राम लला का आशीर्वाद लेके अब मैं आगे मंदिर परिसर का भ्रमण करूंगा और आपको भी दिखाऊंगा। तो देखते रहे मंदिर को कितने अद्भुत तरीकों से तराशा गया है। काफी सुंदर कलाकृति आप देख सकते हैं मंदिर की। मंदिर के शिखर की छत पे आ चुका और यहाँ से आपको यह अद्भुत कलाकृतियाँ लाल पत्थर से निर्मित यह मंदिर आपको नजदीक से दिखा रहा हूँ। सामने आप देख सकते हैं पत्थर की बनी हुई गेट है। सब देखने के बाद इस परिसर में स्थित यह तालाब देख रहे हैं, यह काफी सुंदर हरा भरा चारों ओर वृक्ष लगा हुआ है।
2: तो आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प में भागीदार बने। बस आपको सिर्फ इतना सा करना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह आपको नजर आती है, कैमरा उठाइए, व्लॉग बनाइए, फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे। चलिए अब आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस। कुछ वीडियोस आपको हंसाएंगे तो कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
3: गाड़ी में इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं अपन ज्यादा पैसे, थोड़ी कम भी तो होते पैसे, कम पैसे दे लो ना।
4: गाड़ी में आए हैं तो क्या हुआ, अमीर थोड़ी है। इस नन्ही बच्ची की यही बात सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है। लीची खरीदने पहुंची बच्ची बड़े ही आत्मविश्वास के साथ दुकानदार से दाम कम करने की गुजारिश कर रही है।
3: हम अपने साथ के पैसे दे रहे हैं आपको।
4: उसकी मासूम दलीलें और बेबाक अंदाज सुनकर दुकानदार भी मुस्कुरा देता है। छोटी सी उम्र में इतनी समझदारी और बातूनी अंदाज देखकर हर कोई कह रहा है कि आजकल के बच्चे वाकई बड़े स्मार्ट हो गए हैं। भारत घूमने आया ये नन्हा विदेशी मेहमान इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। सड़क पर चलते रिक्शा को देखकर बच्चे की इच्छा हुई कि वो भी इसे चलाकर देखे। फिर क्या था, रिक्शा चालक ने प्यार से हैंडल उसके हवाले कर दिया। रास्ते भर दोनों अंग्रेजी में बात करते रहे और बच्चे ने पूरे उत्साह के साथ रिक्शा चलाने का मजा लिया।
5: So, how are you? I'm fine. How like you feel the rickshaw? It's good? So, it's no hard work? It's okay? But I'm help you. So, what easy for you? I help you. Help you very hard.
4: पीछे बैठी माँ और बड़ा भाई भी इस अनोखे अनुभव का आनंद लेते नजर आए।
5: So, this is the old area, the Silver Mart, Silver Street. Okay, you my dost. You know, dost means friend. It's good friend.
4: स्टोर में खरीदारी के दौरान इस नन्ही सी बच्ची की नज़र एक असली आकार की गुड़िया पर पड़ी और उसने उसे अपनी नई दोस्त मान लिया। बच्ची ने बड़ी सावधानी से गुड़िया को उठाया और ट्रॉली में छिपा कर रख दिया। इतना ही नहीं, उसने साथ खड़े व्यक्ति को चुप रहने का इशारा भी कर दिया। उसकी शरारती हरकतें और मासूम एक्सप्रेशन देख कर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। ये वीडियो इंटरनेट पर लोगों का खूब मनोरंजन कर रहा है। नींद किसी को भी आ सकती है, लेकिन इस नन्ही बच्ची के पास तो खास इंतजाम है। बच्ची जब नींद में होने लगती है तो उसकी पालतू बिल्ली उसके सर को सहारा देती नजर आती है। वहीं बैठा डॉग भी मानो उसकी सुरक्षा में तैनात रहता है। दोनों जानवर जिस तरह बच्ची का ख्याल रखते दिखाई देते हैं, उसे देखकर लोग भी हैरान हैं और भावुक भी। इंसान और जानवर की ये प्यारी दोस्ती हर किसी का दिल जीत रही है। नन्ही बच्ची का दिल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस वीडियो से लगाया जा सकता है। बच्ची बड़े प्यार से एक एक कर गिलहरियों को खाना खिलाती नजर आती है। गिलहरियां भी बिना डरे उसके पास आती हैं और आराम से खाना खाती हैं। हर गिलहरी को पेट भरकर खिलाने के बाद बच्ची के चेहरे पर जो खुशी और संतोष दिखाई देता है, वही इस वीडियो की सबसे खूबसूरत बात है। उसकी मासूम मुस्कान सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है।
6: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. You're listening to CNBC.
8: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
9: Keep it on smooth jazz.
10: This is Roots Reggae
11: exclusively on TuneIn.
12: This is classic hip hop
13: exclusively on TuneIn.
7: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected. The shows, music and news you love anytime you want.
14: पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
15: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
16: और दुर्भाग्य कहता है
17: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है
15: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: Good news today.
15: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर। ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
18: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
14: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
15: असंभव खुद बताता है कि संभव
17: मुझ में ही है।
16: और दुर्भाग्य कहता है
17: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है।
17: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन जी'स गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
2: विश्व की पहली योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का शुभारंभ अहमदाबाद के एका अरीना में 8 जून तक चलेगी प्रतियोगिता।
14: केरल पहुंच सकता है दक्षिण पश्चिम मॉनसून। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में भारी बारिश का जताया अनुमान।
2: पर्यटकों को लुभा रहा है पहाड़ों का सुहाना मौसम। नैनीताल में पर्यटकों की भारी भीड़, सड़कों पर लग रहा है लंबा जाम। सैलानियों की बढ़ती भीड़ से स्थानीय कारोबारी खुश।
14: काशी, विशाखम और तिरुकल्याणम, विशेष रूप से सजाए गए मुरुगन मंदिर, विशेष महाभिषेकम और कंडा पुराण पाठ का आयोजन।
2: नोएडा समेत उत्तर प्रदेश के 18 बड़े शहरों में चलेंगी ई बसें। 1725 नई ई बसों को किया जाएगा संचालन। जेवर एयरपोर्ट तक आसान हो जाएगा सफर।
14: तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को मिला ग्रैमी अवार्ड। उस्ताद अमजद अली खान ने किया सम्मानित। द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के नाम के लिए मिला सम्मान।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत। नमस्कार, सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ वैभव प्राश शुक्ला। नई सुबह, नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर।
14: गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। तो बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर आज की 5 उन खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: तो शुभ समाचार की शुरुआत मॉनसून के साथ होगी, जो आज केरलम में दस्तक देने सकता है। मौसम विभाग की माने तो मॉनसून के लिए हालात अनुकूल नजर आ रहे हैं। आज मॉनसून केरलम के तटीय क्षेत्रों में दस्तक दे सकता है। इधर दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। कहां कैसा रहेगा मौसम आगे आपको बताएंगे।
14: तो साथ ही बात आस्था के साथ पर्यावरण की भी होगी। दिल्ली सरकार ने हाल ही में एक ऐसी योजना पर काम करने का ऐलान किया जिसमें क्षतिग्रस्त और विसर्जन के लिए इधर उधर रखी गई मूर्तियों को सम्मान पूर्वक संग्रहित किया जाएगा और उनका निदान किया जाएगा। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलवाने जा रहे हैं जो पिछले कई वर्षों से यही काम कर रही है। कौन है वो और क्या कुछ खास कर रही है आगे आपको बताएंगे।
2: बिल्कुल गीतिका, देखिए वहीं पर आमिर खान एक बार फिर से दूल्हा बनने जा रहे हैं। 61 साल के आमिर खान 5 जुलाई को अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रेट से शादी करने जा रहे हैं। आमिर खान और गौरी स्प्रेट काफी लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और अब इस कपल ने शादी बंधन में बंधने का फैसला कर लिया है। आमिर खान की ये तीसरी शादी होगी। माना यह जा रहा है कि शाहरुख खान और सलमान खान अपने दोस्त आमिर की शादी के जश्न में शामिल हो सकते हैं और कौन कौन से मेहमान शामिल होंगे आगे आपको बताएंगे।
14: तो साथ ही आपको महाराष्ट्र के अमरावती भी लिए चलेंगे जहां मलखंब का अनोखा रोमांस देखने को मिलेगा। अमरावती के हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की ओर से आयोजित इस समर कैंप के समापन समारोह में छात्रों ने जलती मशाल लेकर मलखंब का प्रदर्शन किया। इसके रंग भी थोड़ी देर में होंगे आपके सामने।
2: यहां देखिए, इसके अलावा बात करेंगे हम श्रेयस अय्यर की भी, जो भारतीय T20 टीम की कप्तानी के रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो चला फटाफट अंदाज में 9 बजे की 9 बड़ी गुड न्यूज देख लेने का।
14: मॉनसून पर गुड न्यूज आ गई है। केरल तट से आज मॉनसून टकराएगा, इसके बाद झमाझम बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। केरल से होते हुए मॉनसून महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में दस्तक देगा। इस बार मॉनसून कई दिनों की देरी से केरल में पहुंच रहा है। आमतौर पर मॉनसून 1 जून को केरल में दस्तक देता है, लेकिन इस बार 4 जून को ये केरल पहुंच रहा है।
2: देश के कई हिस्सों में तेज गर्मी की वजह से इंसान से लेकर बेजुबानों तक को राहत दिलाने की व्यवस्थाएं की गई हैं। इसी कड़ी में गुजरात के सूरत के सरथाना नेचर पार्क में पशु पक्षियों के लिए कूलर, वाटर स्प्रिंकलर्स और फव्वारे लगाए गए हैं। साथ ही साथ उनके बाड़ों में पानी के

0: from Miller.
1: तो तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा को बड़ा सम्मान मिला. दलाई लामा ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किए गए. विशेष ऑडियो एल्बम मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज हाइनेस द दलाई लामा के लिए अवार्ड उनको मिला. उस्ताद अमजद अली खान ने सम्मानित किया.
0: बीसीसीआई ने अक्टूबर में होने वाले टीम इंडिया के न्यूजीलैंड दौरे का शेड्यूल जारी कर दिया. भारतीय टीम अपने इस दौरे पर न्यूजीलैंड के साथ कुल 12 मुकाबले खेलने जा रही है, जिसमें 5 टी20, 5 वनडे और 2 टेस्ट मैच शामिल हैं. 22 अक्टूबर को पहले टी20 मैच से मुकाबले की शुरुआत हो जाएगी. 22, 24, 27, 30 अक्टूबर और 1 नवम्बर को टी20 मुकाबलों के खत्म होने के बाद 4 नवम्बर से वनडे मैच खेले जाएंगे.
1: बंगाली सिनेमा एक बार फिर इतिहास के पन्नों को जीवंत करने जा रहा है. निर्देशक श्रीजीत मुखर्जी की नई फिल्म सम्राट बनाम शरद चंद्र का प्री टीजर जारी हो चुका है. ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह और विचारों की क्रांति को दर्शाने वाली इस फिल्म में अभीर चैटर्जी, मिमी चक्रवर्ती, टोटा रॉय चौधरी अहम भूमिका में नजर आएंगे.

तो देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों में इस समय मौसम के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। कहीं तपिश का असर है तो कहीं पर बेमौसम आंधी तूफान का साया है। इस बीच मौसम वाली गुड न्यूज भी निकल कर आई है। मौसम विभाग की अगर हम माने तो मॉनसून के लिए हालात अनुकूल हो रहा है। आज मॉनसून केरलम में तटीय इलाकों में दस्तक दे सकता है। जाहिर सी बात है, इसके साथ ही देश के बड़े हिस्से में मौसम में तब्दीली होने की अनुमान जताया गया है। खासकर हम देखें तो दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में मानसूनी फुहारें गर्मी से राहत दे सकती हैं। इस बीच देखिए, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। राजधानी समेत उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और आंधी चलने का अनुमान है। कुछ एक जगहों पर अगर हम देखें तो ओले भी गिर सकते हैं। इस बीच मौसम विभाग ने राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने की आशंका जताई है। तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन में, किस प्रकार से मॉनसून जल्द दस्तक दे जाएगा और उसी के साथ भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद जरूर जताई जा रही है।

0: तो मानसून वाली गुड न्यूज ये है कि आज से मानसून केरल के तटीय इलाकों में दाखिल हो रहा है। कल से कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। साथ ही असम मेघालय समेत पूर्वोत्तर राज्यों में भी मानसून बारिश शुरू हो जाएगी।
1: बिल्कुल गीतिका, देखिए तकरीबन एक हफ्ते बाद महाराष्ट्र में मानसून के पहुंचने की संभावना है। अनुमान ये है कि 12 से 15 जून तक पुणे, नागपुर और मुंबई को गर्मी से राहत मिलेगी। अगर मानसून सामान्य गति से आगे बढ़ता है तो 15 जून के आसपास मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के ज्यादातर इलाकों में मानसून की बारिश सराब होगी।
0: तो 15 जून के आसपास मानसून उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में दाखिल हो सकता है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में बरखा रानी मेहरबान हो सकती है। वहीं राजधानी दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में मानसून 3 हफ्ते बाद पहुंचने के अनुमान है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में 20 से 25 जून के आसपास मानसूनी बारिश दस्तक दे सकती है।
1: बिल्कुल, देखिए मानसून आते ही भारत के कई हिस्सों की तस्वीर बदल जाती है, लेकिन एक राज्य ऐसा है जो मानसून के दौरान किसी जन्नत से कम नजर नहीं आता। जी हाँ, हरियाली से ढकी पहाड़ियां, बादलों में खोई घाटियां, फंते झरने केरलम की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा देती है। पहाड़ियों पर धुंध बारिश की जैसा है जो मानसून के दौरान किसी जन्नत से कम नजर नहीं आता। जी हाँ, हरियाली से ढकी पहाड़ियां, बादलों में खोई घाटियां, फंते झरने केरलम की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा देती है। पहाड़ियों पर धुंध बारिश की फुहारों में नहाते चाय बागान और बादलों से घिरी वादियां किसी खूबसूरत पेंटिंग से कम नजर नहीं आती। और यही वजह है कि जब मानसून आता है तो उस खूबसूरत जगह का एहसास करने के लिए और अपनी यादों में कैद करने के लिए बड़ी संख्या में तमाम पर्यटक पहुंचते हैं। मुन्नार की पहाड़ियां मानसून में और भी ज्यादा आकर्षक नजर आती हैं। चाय के बागानों के बीच से गुजरती सड़कें और उन पर गिरती बारिश की बूंदें पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। यहाँ का हर नजारा कैमरे में कैद करने के लायक बन जाता है। वहीं पर वायनाड के जंगलों में बारिश के मौसम में प्रकृति अपने पूरे शबाब पर नजर आती है। घने जंगल, वन

0: जीवों की हलचल और ताजगी से भरी हवा पर्यटकों को एक अलग ही अनुभव देती है। मानसून के दौरान यहाँ के झरने भी अपने पूरे वेग से बहते हैं। हालांकि लगातार बारिश की वजह से कुछ इलाकों में सतर्कता भी जरूरी होती है। प्रशासन पर्यटकों को मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करने की सलाह देता है, लेकिन सावधानी के साथ की गई यात्रा मानसून केरलम का अविस्मरणीय अनुभव बन जाती है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से केरलम में खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है जब मानसून दस्तक देता है, और ऐसे में बड़ी संख्या में तमाम पर्यटक पहुंचते भी हैं, आनंद लेते हैं, लुत्फ लेते हैं, लेकिन थोड़ी सावधानी का भी हमको पालन करना होता है। लेकिन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि इस दृश्य को अगर आप सामने से देखेंगे तो उसको कभी भूल नहीं पाएंगे।
1: तो मौसम विभाग के मुताबिक आज से केरलम में बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा जो अगले 7 दिनों तक यूं ही जारी रह सकता है। इसे देखते हुए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के लिए भी राहत के संकेत दिए हैं।

0: की दस्तक से पहले ही देश के ज्यादातर हिस्सों में प्री मानसून बारिश देखने को मिल रही है, चाहे दक्षिण भारत हो या फिर उत्तर भारत, चाहे पूर्वी भारत हो या पश्चिम भारत। इस प्री मानसून बारिश ने लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी से काफी हद तक राहत पहुंचाई है। एक दिन पहले भी देश के कई राज्यों में आंधी और बारिश देखने को मिली है। इसी बीच मौसम विभाग की ओर से दक्षिण पश्चिम मानसून को लेकर नया अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए हालात अनुकूल हैं और इसके 4 जून तक केरलम पहुंचने के आसार हैं।
1: मानसून जो है लगभग 4 तारीख के आसपास केरला के ऊपर दाखिल होने का पूर्वानुमान किया गया है। वहीं दूसरी तरफ बारिश से बहुत भारी वृष्टिपात यानी कि 7 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक वृष्टिपात केरला में आने वाले 7 दिन तक एक दो स्थानों में देखने को मिलेगा।
0: मौसम विभाग ने इससे पहले केरलम में मानसून के आने की तारीख 25-26 मई बताई थी, लेकिन मानसून के आगे बढ़ने की प्रक्रिया में देरी हुई, जिसके चलते अब इसके अगले कुछ घंटों में पहुंचने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून के आने के साथ ही तमिलनाडु और कर्नाटक में भारी बारिश होने की संभावना है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है।
1: तमिलनाडु और कर्नाटक में भी 6 से 7 दिन के अंदर भारी बारिश यानी कि 7 से लेकर 11 सेंटीमीटर तक वृष्टिपात का पूर्वानुमान किया गया है।
0: मॉनसून वाली गुड न्यूज के साथ ही खबर ये भी है कि एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो रहा है, जिसका असर समूचे उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में देखने को मिल सकता है। ये नया पश्चिमी विक्षोभ राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में मौसम को प्रभावित कर सकता है। इसके चलते आने वाले दिनों में धूल भरी आंधी, गरज चमक और हल्की बारिश देखने को मिल सकती है।
2: 2 दिन के बाद फिर एक और वेस्टर्न डिस्टरबेंस आ रहा है, जिसके कारण हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया, इवन वेस्टर्न हिमालय रीजन, वहाँ रेनफॉल एक्टिविटी चलती रहेगी।
0: लेकिन जिन जगहों पर भीषण गर्मी पड़ रही है, वहाँ गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। इन उपायों के तहत इंसान ही नहीं बल्कि चिड़ियाघर के जानवरों के लिए भी जगह जगह इंतजाम किए गए हैं। सूरत के जू में ऐसे इंतजाम देखने को मिले हैं, जहां वाटर स्प्रिंकलर्स, कूलर और बाड़ों में पानी का छिड़काव लगातार किया जा रहा है और साथ ही खाने में जानवरों को मौसमी फल भी दिए जा रहे हैं।
3: गर्मी का जो है प्रमाण थोड़ा ज्यादा हुआ है, इसलिए अपने जो भी कैप्टिविटी में एनिमल्स रखे वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड, उनको ज्यादा हीट से कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं हो, इसलिए हम लोग हर साल एहतियात के बेस पे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं। वो हिसाब से इस साल भी हम लोगों ने लायन, टाइगर, लेपर्ड और बेर का और ऑस्ट्रिच का जो केज है उसमें ओपन यार्ड में फॉगर का व्यवस्था किया हुआ है। इसके सिवा जो भी ओपन यार्ड में बड़े वाटर बॉडी है उसको फुल भर के रखते हैं, ताकि ज्यादा गर्मी के टाइम में एनिमल्स उसमें अपने बाथ लेके भी अपने बॉडी को कूल कर सके। और एक एक्स्ट्रा केयर में हम लोग उसका जो फीड है उसमें जो बर्ड्स के उसमें ज्यादा जूसी फ्रूट्स रहते हैं वो सब देते हैं, जिससे उसका बॉडी का पानी का लेवल मेंटेन हो और उसको डिहाइड्रेशन का कोई इश्यू नहीं हो। इसके सिवा जो भी खुराक देते हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइट पाउडर और मल्टीविटामिन का टेबलेट देते हैं, वो भी उसके बॉडी में पानी का जो है लेवल वो मेंटेन करने में उसको हेल्प होता है और ज़्यादा हिस्से कोई एडवर्स इफेक्ट उसके बॉडी पे नहीं आता। जो हिरन का केज है वहाँ पे भी हम लोगों ने पोर्टेबल पानी के छंटकाव के लिए व्यवस्था किया हुआ है, और इसके सिवा जो भी केज के आसपास के एरिया में भी पानी का छंटकाव करते हैं।
4: वहीं आपको बता दें, मैदानों में पड़ रही गर्मी का असर पहाड़ों पर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। देश भर से बड़ी संख्या में सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के हिल स्टेशंस पर्यटकों से पूरी तरीके से गुलजार हैं। पहलगाम, बांदीपुरा, कुल्लू, चंबा सैलानियों से गुलजार हैं। यहां का कूल मौसम पर्यटकों को खूब भा रहा है।
5: मैदानों में गर्मी का मौसम है, पारा हाई है, तो तन मन को कूल करने के लिए पहाड़ों की सैर लाजमी है, लिहाजा सैलानी भी निकल पड़े हैं पहाड़ों पर सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने। कोई जम्मू कश्मीर जा रहा है तो कोई हिमाचल तो कोई उत्तराखंड। बादलों में लिपटी हुई पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियां, चीड़ देवदार के घने जंगल और कलकल बहती नदी, पहलगाम का जर्रा जर्रा खूबसूरत नजारों से भरा पड़ा है। और इन दिलकश नजारों का लुत्फ उठाने के लिए चप्पे चप्पे पर सैलानी पहुंच चुके हैं। कोई इन नजारों को अपने कैमरों में कैद कर रहा है तो कोई खूबसूरत याद के तौर पर इन नजारों के साथ खुद को कैमरे में कैद कर रहे हैं। हर किसी की चाहत हर एक लम्हे को भरपूर जी लेने की है।
6: टूरिस्टों से मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे आए, काफी सारे पिछली कुछ घटनाएं यहाँ पे हुई थी, उस वजह से काफी लोग सोच में पड़ गए, बट मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया चल रहा है सब।
7: तो अच्छा लग रहा है, हम हर साल आते रहते हैं पहलगाम, इस बार भी आए, अभी पहली बार आए इस साल गर्मियों में, बाद में अभी जून जुलाई बाकी पड़ा, आएंगे बीच में, हवा कल आए थे वैसे तो इधर ठंडी ठंडी हवा चल रही है।
5: पहलगाम की फिजा में बह रही ठंडी ठंडी हवाएं और कलकल बहती नदी के ठंडे पानी के बीच सैलानी मैदानों की तपश को मानो भुला चुके हैं, मन पूरी तरह मानो पहलगाम में रम चुका है।
8: जम्मू में इतनी गर्मी है हम आपको बयान नहीं कर सकते, इतनी गर्मी है जम्मू में भी, यहाँ कश्मीर में तो जन्नत है। हम कल आए थे, इतनी ठंड थी कि हमें यहाँ जैकेट्स वेयर करनी पड़ी।
9: अच्छा।
8: हाँ, ब्लैंकेट्स लेने पड़े, सुबह हमने गर्म पानी से नहाया है, इतना अच्छा मौसम है यहाँ पे।
9: अच्छा मौसम है। हाँ?
8: तो पहलगाम, तो वैसे भी पहलगाम और सोनामर्ग मेरी फेवरेट स्पॉट है। हाँ। हम तो हर साल पहलगाम और यहाँ पे आते हैं।
10: मौसम तो बहुत ही बढ़िया है यहाँ का।
9: अच्छा,
10: गुजरात में तो बहुत गर्मी पड़ रही है, यहाँ तो ठंडी है।
11: मैं आवो कश्मीर में बहुत खूबसूरत छे, नेचुरली वातावरण, नेचुरली ब्यूटी, नेचुरली लोगो, बद्दा माटे सेफ्टी पूरे पूरी छे। अमरनाथ नी यात्रा स्टार्ट थवा आवी छे, तो तमे बद्दा फेमिली साथे आवो यहाँ यात्रा माटे, अहींना लोगो कल्चर बधु सेफ्टी छे तमारा माटे, आवो अने खूब एन्जॉय अने मस्ती करो।
5: बांदीपोरा का खुशनुमा मौसम भी सैलानियों को खूब लुभा रहा है, पहाड़ों की चोटियां बर्फ से लग तक है। बांदीपोरा गुरेज रोड पर करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर राजदान पास पर सैलानी यहां के बर्फीली वादियों का दीदार करने पहुंच रहे हैं और कूल मौसम का मजा ले रहे हैं।
12: बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ बर्फ हो रही है, बारिश भी हो रही है, हमने श्रीनगर में गर्मी देख ली, यहाँ पे ऊपर आके बारिश देख ली, अभी बर्फ हो रही है, तो कम से कम 5 डिग्री तो चल रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ठंडी है।
13: जून में वी कैन नॉट एक्सपेक्ट सच टाइप ऑफ बर्फबारी हियर अभी, लेकिन वो गर्मी को देखते हुए लोग यहाँ पर आना चाहिए। और बहुत अच्छा सुहाना वेदर है, बहुत अच्छी जगह है ये, करीब करीब 14,000 फीट पे जगह है राजस्थान, ऑन द वे टू गुरेज।
14: और यहाँ पे इस समय जम्मू में जहाँ पे और हर जगह पूरे इंडिया में जहाँ पे चल रही है, और इस समय आप देखिए कितना ब्यूटीफुल वेदर है यहाँ पे, सबको यहाँ पे आके एक्सपीरियंस करना चाहिए वेदर के बारे में।
5: हिमाचल का कुल्लू मनाली हिल स्टेशन भी इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। कुल्लू और आसपास की ऊंची पहाड़ी इलाकों में इन दिनों रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जिसका लोग लुत्फ तो उठा ही रहे हैं, जिप लाइन, पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग जैसे एडवेंचर टूरिज्म को भी भरपूर एंजॉय कर रहे हैं।
15: और हम लोग फैमिली के साथ राजस्थान से यहाँ आए हैं, राजस्थान से यहाँ हिमाचल को हमने इसलिए चूज किया बिकॉज यहाँ का वेदर अच्छा है, राजस्थान से कंपैरेटिवली काफी कूल वेदर है यहाँ, वहाँ पे 42-43 डिग्रीज टेम्परेचर, हीट वेव्स काफी ज्यादा हो रहे थे, सो समर वेकेशन में हमने घूमने के लिए इसको चूज किया। यहाँ ग्रीनरी अच्छी है, पॉल्यूशन फ्री है, और वेकेशन के लिए हमने मतलब एक कूल प्लेस चाहिए थी, इसलिए हमने हिमाचल को चूज किया।
16: लोग राजस्थान से यहाँ आए हैं, राजस्थान में दिन में इतनी गर्मी है, इतनी हीट वेव चल रही है कि वहाँ दिन में हम लोग बाहर भी नहीं निकल पाते, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। 4-7 दिन हम लोग यहाँ शांति से सुकून से रहने के लिए, छुट्टियाँ एंजॉय करने के लिए आए हैं।
5: कुल्लू मनाली का मौसम सैलानियों को किस कदर भा रहा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मई के महीने में यहाँ 66,000 से ज्यादा पर्यटक वाहनों की एंट्री दर्ज की गई, मतलब कि 1,00,000 से ज्यादा की संख्या में सैलानी पहुँचे होंगे।
17: देखा जाए तो ऑलमोस्ट जो हमारी सारी मेजर लोकेशंस हैं, चाहे कसोल मणिकरण है, जीबी बंजार का एरिया है, मनाली है, हर जगह जो है टूरिस्ट आ रहे हैं। बट स्पेशली क्योंकि रोहतांग पास जो है वो हमारा ओपन हो चुका है, तो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे हमारी जो व्हीकुलर लिमिट है उसको हम व्हीकुलर जो पासिस इशू करते हैं उसको हम ब्रीच कर रहे हैं। 1300 के आसपास जो पासिस हैं हमारे वो डेली इशू हो रहे हैं। साथ ही साथ भारी संख्या में पर्यटक जो हैं वो अटल टनल क्रॉस करके लाहौल स्पीति और क्योंकि लेह लद्दाख का भी रास्ता अब ओपन हो गया है तो वहां के लिए चंद्रताल झील के लिए जो है भारी संख्या में पर्यटक जो है मनाली से आगे का भी रुख कर रहे हैं।
5: बड़ी तादाद में सैलानियों के पहुंचने से यहां के होटल भी खचाखच भरे हैं। मई के आखिरी वीकेंड पर भारी भीड़ उमड़ने से मनाली और आसपास के इलाकों के ज्यादातर होटलों में 100% तक बुकिंग पहुंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
18: और चलिए वो आपको सीधे लेकर चलते हैं कांगड़ा, जहां 4 साल बाद घाटी की हेरिटेज ट्रेन की वापसी हुई है, जिससे पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच ऐतिहासिक रेल संपर्क एक बार फिर से बहाल हो गया। चक्की पुल के पुनर्निर्माण की वजह से ये हेरिटेज ट्रेन 4 साल बंद थी। अब उत्तरी रेलवे ने पंजाब के पठानकोट से हिमाचल के जोगिंदरनगर के बीच नैरो गैज खंड पर हेरिटेज ट्रेन को पूरी तरह से बहाल कर दिया है।

0: हरे भरे पहाड़ और दिलकश नजारों के बीच छुक छुक करती हेरिटेज ट्रेन फिर चल पड़ी है। करीब 4 साल के लंबे इंतजार के बाद हिमाचल की यह ऐतिहासिक धरोहर पटरी पर लौटी है। ब्रिटिश काल के दौरान 1929 में शुरू हुई ये ट्रेन यूनेस्को की विश्व धरोहरों की अस्थायी सूची में शामिल है। 2 जून को चक्की पुल के पुनर्निर्माण और सुरक्षा कार्यों के पूरा होने के बाद पंजाब और हिमाचल के बीच इस ऐतिहासिक टॉय ट्रेन सेवा को पूरी तरह बहाल कर दिया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर सांसद अनुराग सिंह ठाकुर और राज्यसभा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कांगड़ा रेलवे स्टेशन से नैरो गेज ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
1: कांगड़ा क्वीन एक हेरिटेज ट्रेन जो आज 4 साल के बाद दोबारा शुरू हुई और कांगड़ा और हिमाचल प्रदेश के इलाकों को पठानकोट पंजाब से मिला रही है। ये 100 साल पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में बनी हुई ट्रेन नैरो गेज ट्रेन थी और जिसमें कोई भी टनल नहीं और पहाड़ों के दुर्गम इलाके में से इसको बनाते हुए यहाँ पहुँचा दिया गया था। 4 साल के बाद एक रूह भरने वाली बात कि यहाँ की पिलग्रिम टूरिज़्म, यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ के अदर टूरिस्ट को इस ट्रेन का फायदा मिलेगा।
0: पंजाब के पठानकोट से हिमाचल के जोगिंदर नगर तक चलने वाली ये ट्रेन करीब 164 किलोमीटर का सफर तय करती है, जिसमें करीब 10 घंटे का समय लगता है। ये भारत की सबसे लंबी और दुनिया की सबसे लंबी 2 फीट 6 इंच नैरो गेज रेलवे लाइनों में से एक है। इस रूट की खास बात है बिना टनल का अनूठा सफर। शिमला कालका टॉय ट्रेन के विपरीत इस रूट पर केवल 2 सुरंगें हैं। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ट्रेन सुरंग की जगह उसके घुमावों और घाटियों के साथ साथ चलती है, जिससे घाटी का नजारा और भी दिलकश लगता है। सैलानियों के साथ साथ ये ट्रेन यहाँ के बाशिंदों के लिए भी बड़ी सौगात लेकर आई है। इस पहले सफर में कोई गृहिणी थी तो कोई स्टूडेंट तो कोई नई नवेली दुल्हन। 4 साल बाद पहली जर्नी का हिस्सा बनने की खुशी इनके चेहरों पर साफ नजर आई।
2: हम बैजनाथ से पठानकोट जा रहे हैं। हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि ये ट्रेन 4 साल के बाद चली है। हमें बहुत ज़्यादा सुविधा हुई बस में जाना। कभी कभी कभार कभी बस मिलनी नहीं मिलनी, इतनी भीड़ होनी, और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए भी अच्छा हुआ कि ये ट्रेनें चल पड़ी। और हम ये चाहते हैं कि ये बरसात में भी ऐसे चलती रहे ट्रेन। हम
3: ये जो ट्रेन है वो 4 साल बाद चली है, ये इस ट्रेन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है और मैं इसमें ट्रैवल कर रहा हूँ आज ही। काफ़ी ठीक है। मतलब
1: आप कहाँ के रहने वाले हो?
3: मैं बरमाड़ का रहने वाला हूँ।
1: और बरमाड़ के रहने वाले आज सिर्फ इस ट्रेन में सफर कर रहे हैं क्योंकि 4 साल के बाद शुरू हुई है।
3: हाँ जी।
1: और पठानकोट तक जा रहे हैं?
3: हाँ जी।
4: मेरी शादी फैम में हुई है और मैं पठानकोट जा रही हूँ। ऐसे ही घूमने आई थी मायके में, तो सोचा घूमने चलते हैं। तो ट्रेन भी चालू हो गई है सौभाग्य से, तो जा रहे हैं हम सारे।
1: जो 4 साल से ये ट्रेन बंद थी, तो अब आपको कैसा अनुभव हो रहा है कि ये पठानकोट तक पूरी ले जाएगी?
4: सर बहुत अच्छा लग रहा है हमें। हम तो कब से वेट कर रहे थे और ये चालू हो गई, अब तो मौका मिल रहा है हमें जाने का।
0: इस ट्रेन के जरिए कांगड़ा का ऐतिहासिक किला, पालमपुर के हरे भरे चाय के बागान और बैजनाथ के प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन किए जा सकते हैं। तो आप भी अगर पहाड़ों पर घूमने जाने की सोच रहे हैं तो इस ट्रेन की सवारी एक यादगार सफर साबित हो सकती है। कांगड़ा से अशोक रैना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: और इसी के साथ वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए आमिर फिर बनेंगे दूल्हा।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: Die Hard Music Fan? Quello Concerts brings you thousands of full-length concert films and behind-the-scenes music documentaries. From today's icons to yesterday's legends, we have it all. Quello Concerts by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
6: खबरें तो
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट srmup.in।
2: विश्व की पहली योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का शुभारंभ अहमदाबाद के एका अरीना में 8 जून तक चलेगी प्रतियोगिता।
3: आज केरल पहुंच सकता है दक्षिण पश्चिमी मॉनसून। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में भारी बारिश का जताया अनुमान।
2: पर्यटकों को लुभा रहा है पहाड़ों का सुहाना मौसम। नैनीताल में पर्यटकों की भारी भीड़, सड़कों पर लग रहा है लंबा जाम। सैलानियों की बढ़ती भीड़ से स्थानीय कारोबारी खुश।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका शुभ समाचार में। और अब बात बॉलीवुड के आमिर खान की। आमिर खान एक बार फिर से दूल्हा बनने जा रहे हैं। 61 साल के आमिर खान 5 जुलाई को अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रेड के साथ मुंबई में अपने घर पर बिना किसी लाइमलाइट के शादी करेंगे। आमिर खान और गौरी स्प्रेड काफी लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और अब इस कपल ने शादी के बंधन में बंधने का फैसला कर लिया है। आमिर खान की तीसरी शादी होगी किसी बड़े होटल या डेस्टिनेशन वेडिंग की जगह। ये शादी मुंबई में बेहद सादगी के साथ आमिर खान के घर पर ही होगी। शादी को पूरी तरह से लाइमलाइट से दूर रखा जाएगा। इस शादी में सिर्फ करीबी परिवार और दोस्त शामिल होंगे। मेहमानों की लिस्ट अभी जारी नहीं की गई है, लेकिन माना यह जा रहा है कि आमिर के करीबी दोस्त शाहरुख खान और सलमान खान जश्न में शामिल हो सकते हैं, जिनसे गौरी की मुलाकात आमिर पहले ही करवा चुके हैं।
4: करीब 26 साल पुरानी पहचान अब एक खास रिश्ते में बंधने जा रही है। 61 साल के आमिर खान गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रेड से शादी करने जा रहे हैं और इसकी तारीख भी मुकर्रर हो चुकी है। किसी बड़े होटल या डेस्टिनेशन वेडिंग की जगह ये शादी मुंबई में बेहद सादगी के साथ आमिर खान के घर पर ही होगी। शादी को पूरी तरह लाइमलाइट से दूर रखा जाएगा। इस शादी में सिर्फ करीबी परिवार और दोस्त शामिल होंगे। मेहमानों की लिस्ट अभी जारी नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि आमिर के करीबी दोस्त शाहरुख खान और सलमान जश्न में शामिल हो सकते हैं, जिनसे गौरी की मुलाकात आमिर पहले ही करवा चुके हैं।
5: 5 जुलाई को मुंबई में आमिर खान अपने जो है वाउज लेंगे गौरी स्प्रेड के साथ और ये माना जा रहा है कि बहुत ही एक सिंपल फंक्शन होने वाला है, जिसमें उनके सिर्फ परिवार के लोग और करीबी दोस्त शामिल होंगे। ये शादी एक ऑफिशियली कहते हैं ना कि आप अपने रिश्ते को एक नाम देना चाहते हो, बस वही है। क्योंकि सोर्सेस की माने तो ये दोनों बहुत ही एक सिक्योर कपल है और काफी समय से साथ है और वो चाहती थी कि अपने रिश्ते को एक सेलिब्रेट करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और शायद इसीलिए डिसीजन लिया गया कि वो 5 जुलाई को शादी करेंगे। और ऑफ कोर्स गेस्ट लिस्ट अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है, बट सलमान खान और शाहरुख खान जो कि आमिर के बहुत ही करीबी दोस्त हैं, वो भी डेफिनेटली आ सकते हैं। बट हमें ये भी नहीं पता है कि वो शायद शूटिंग कर रहे होंगे, तो उनकी अवेलेबिलिटी पे ये डिपेंड करेगा कि वो ये शादी पे आएंगे कि नहीं, बट आमिर डेफिनेटली उन्हें इन्वाइट तो जरूर करेंगे।
4: आमिर ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बताया जा रहा है कि दोनों पारंपरिक रीति रिवाजों के बजाय रजिस्टर्ड मैरिज करेंगे और अपने रिश्ते को कानूनी मान्यता देंगे। ये आमिर खान की तीसरी शादी होगी। आमिर और रीना दत्ता ने 1986 में भागकर शादी की थी। उनके दो बच्चे हैं, आयरा और जुनैद। 16 साल तक साथ रहने के बाद 2002 में दोनों अलग हुए। इसके 3 साल बाद आमिर ने फिल्म डायरेक्टर किरण राव से शादी की, लेकिन 2021 में ये रिश्ता भी टूट गया। इसके बाद आमिर खान की जिंदगी में गौरी स्प्रेड की एंट्री हुई। हालांकि दोनों की पहचान 26 साल पुरानी थी, लेकिन फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। लेकिन 2023 में दोनों की फिर मुलाकात हुई और फिर एक दूसरे के नजदीक आ गए। पिछले साल अपने 60वें जन्मदिन पर आमिर खान ने खुद मीडिया के सामने इस बात का खुलासा किया था और गौरी को तब पहली बार मीडिया के सामने इंट्रोड्यूस किया। आमिर ने तब बताया था कि वे दोनों पिछले करीब 1.5 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। गौरी के साथ अपने रिश्ते पर बात करते हुए आमिर खान ने एक इंटरव्यू में कहा था,
6: मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे गौरी मिली और हमारा रिश्ता शुरू हुआ। वो बेहतरीन है, और उनके साथ मुझे बहुत शांति मिलती है। हालांकि रीना दत्ता और किरण राव के साथ भी मेरा रिश्ता बहुत गहरा था, लेकिन चीजें आगे नहीं बढ़ पाई। मैं खुद को खुश नसीब मानता हूँ कि गौरी मेरी जिंदगी में आई। मुझे लगता है अब जाकर मैं मुकम्मल हुआ हूँ।
4: बताया जा रहा है कि आमिर और गौरी करीब 2 साल से परिवार की तरह साथ रह रहे हैं और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। अब दोनों इस रिश्ते को एक नाम देना चाहते हैं और शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं।
5: गौरी स्प्राट जो है उनकी पुरानी दोस्त थी और बीच में ऑफकोर्स कुछ सालों तक उनसे कोई कांटेक्ट नहीं था, और आमिर खान ने जब अपनी गर्लफ्रेंड से मीडिया को इंट्रोड्यूस किया था तो उन्हें इन्फॉर्म किया था कि वो एक किसी काम के सिलसिले में बैंगलोर गए थे, जहां उन्हें गौरी फिर से मिली और वो जब रिकनेक्ट किए तो वो दोस्ती जो है वो प्यार में तब्दील हो गई और आज के टाइम पे वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कपल है। और क्योंकि एक मैच्योरिटी वाला रिलेशनशिप है, इसलिए आमिर का ये मानना है कि बहुत ही ग्रोथ और इवॉल्व जो आप कहते हैं एक रिश्ते में होते हैं, वो गौरी के साथ उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। और आज फाइनली 5 जुलाई को उन्होंने अनाउंस किया है कि वो शादी करेंगे।
4: मुंबई से सना फरजीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: जाने माने एक्टर अनुपम खेर ने बॉलीवुड में 45 साल पूरे कर लिए हैं। फिल्म सारांश से शुरू हुआ यह सफर कई उतार चढ़ाव से गुजरा। अनुपम खेर ने अपनी इस जर्नी पर खुलकर बात की। देखिए,
7: संजीव कुमार साहब मुझे रिप्लेस करने वाले थे सारांश में, तो उन्होंने जब फिल्म देख के कहा था कि महेश भट्ट साहब को कि महेश I don't think I could have done this role as good as Anupam has had. तो तब मुझे लगा, but मुझे arrival का एहसास हुआ था जब कर्मा का मुहूर्त शॉट हुआ था महबूब स्टूडियो में। दिलीप साहब एक तरफ, दूसरी तरफ नसीरुद्दीन शाह साहब, श्रीदेवी, पूनम ढिल्लों जी, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर और मैं बीच में था दिलीप साहब के साथ। और जब हाथ उठा के हमने कर्मा बोला था और सतीश कौशिक तो क्राउड में था, तो उसने मुझे पीछे आके कहा कि अब तो तू मेरा दोस्त बन जा, क्योंकि अब मैं तेरे साथ कॉम्पीट नहीं कर सकता। आई थिंक दैट वाज द टाइम व्हेन आई फेल्ट आई हैव अराइव्ड, इफ यू वांट टू लुक इट इनटू फिल्मी लैंग्वेज, अदरवाइज इट्स बीन एन अमेजिंग जर्नी।
8: व्हाट अ रोल सर, डॉक्टर डैन,
7: या
8: आज भी सुनाई देती।
7: हां,
8: आपका सारांश का भी बहुत अप्रिशिएट हुआ। कर्मा इज डिफरेंट।
7: हां, कर्मा, इनफैक्ट सुभाष गई साहब ने मुझे बहुत बड़ा पेडेस्टल दिया था कर्मा में लेकर। फिर उसके बाद राम लखन में जो क्लाइमैक्स का गाना है ए जी ओ जी, वो मुझसे और सतीश कौशिक से गवाया था। सो आई थिंक उसके बाद भी कितने उतार चढ़ाव ये सब देखे हैं। बहुत
8: सेलिब्रिटी बनने की कीमत कितनी चुकानी पड़ती है?
7: कुछ नहीं चुकानी पड़ती सेलिब्रिटी बनने की कीमत। जो ऐसा बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। अब सेलिब्रिटी बनने पूरी जिंदगी आप यही चाहते थे, 37 रुपए लेकर आया था मैं सेलिब्रिटी बन गया, मैं कहूँ जी मेरे को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। क्या कीमत चुकानी पड़ती है? आप एयरपोर्ट पे जाते हो आपको प्यार से लेके जाया जाता है, आप रेस्टोरेंट में जाते हो आपको आसानी से रिजर्वेशन मिल जाता है, आप कहीं जाते हो आपको बुलाए फंक्शनों पर बुलाया जाता है, अवार्ड फंक्शन बुलाया जाता है। इसमें कीमत क्या चुकानी है? क्या कीमत? प्राइवेसी की लोग बात करते हैं, क्या प्राइवेसी? पूरी जिंदगी हम चाहते हैं कि हम कुछ बन जाएं और जैसे ही कुछ बन जाते हैं फिर डार्क ग्लासेस पहन लेते हैं, अब हमें कोई पहचाने नहीं। अरे यार, अरे पहचानने के लिए तो इडियट कुछ बनना चाहा है, और जब बन गए तो वही पहचान छुपाना चाहते हो। कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ी। आई विल वॉन्ट टू बी अगेन एंड अगेन इन एवरी बर्थ इफ आई हैव टू बी एन एक्टर आई वुड लाइक टू हैव द सेम जर्नी। दो चीजें मैंने बहुत साल पहले सोच ली थी कि मुझे क्या चाहिए ज्यादा, पॉपुलैरिटी या रिस्पेक्ट। आई चोज रिस्पेक्ट एंड आई फॉलोड दैट पाथ एंड आई एम हैप्पी दैट आई चोज। पॉपुलर तो आजकल जो हर इंसान कोई ना कोई वायरल हो जाता है वो भी पॉपुलर होता है, पॉपुलर तो सभी होते हैं।
3: और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं यात्रा महोत्सव में। जी हां, पहाड़ों पर इन दिनों आस्था और विश्वास के अनोखे रंग बिखरे हुए हैं। कहीं यात्रा की तैयारियां चल रही हैं तो कहीं रास्ते यात्रियों से जाम है, तो कहीं मंदिर परिसर में आस्था जबरदस्त देखने को मिल रही है। भारी संख्या में श्रद्धालु यात्रा कर रहे हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा से लेकर हेमकुंड साहिब तक भक्तों की आस्था अपार देखने को मिल रही है। पहले के मुताबिक इस साल दर्शन के लिए भारी संख्या में लोग यात्रा करने के लिए पहुंच रहे हैं और बाबा केदार की यात्रा तो इस बार नए कीर्तिमान रच रही है। बहुत कम समय में 10.5 लाख से अधिक भक्त बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। इन दिनों मौसम भी खराब है, लेकिन फिर भी बाबा के भक्तों का उत्साह कम नहीं हो रहा। हर रोज 15,000 से अधिक भक्त धाम पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह बना हुआ है। यात्रियों की संख्या 29 लाख के पार पहुंच गई है। सबसे ज्यादा केदारनाथ में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं भगवान विष्णु के धाम बद्री विशाल में भी इन दिनों बद्री धाम की यात्रा के अद्भुत रंग देखने को मिल रहे हैं।

0: उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में आस्था, विश्वास और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। करीब सवा महीने बाद भी श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। पहाड़ों की ऊंची चोटियां, घुमावदार रास्ते और लंबी पैदल यात्रा, इन सब चुनौतियों के बावजूद श्रद्धालुओं के कदम लगातार चारधाम की ओर बढ़ रहे हैं। कठिन रास्तों और बदलते मौसम की परवाह किए बिना लाखों श्रद्धालु बाबा केदार, बद्री विशाल, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।
1: चारधाम यात्रा के लिए आए, पहला हो गया यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, फिर अभी बद्रीनाथ, फिर अच्छी तरह दर्शन हो गए। मस्त क्लाइमेट अच्छा लगा, लोग अच्छे लगे, पार्किंग वगैरह सब अच्छा है, व्यवस्था अच्छा है, अच्छा लगा उत्तराखंड।
2: यात्रा बहुत सुखद रहा, हम लोग केदारनाथ जी के दर्शन प्राप्त किए और बद्रीनाथ जी के और गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन करने का सौभाग्य भी हमें मिला और एक ये सुखद अनुभव है। हमें ये लगता है कि चार धाम का यात्रा जीवन एक बार जरूर करनी चाहिए, इसी उद्देश्य से हम लोग पधारे।
0: इस साल यात्रा के शुरुआती चरण में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु चारधाम पहुंचे हैं। यात्रा के शुरुआती 44 दिनों की तुलना पिछले साल की यात्रा से करें तो इस बार यात्रा के शुरुआती 44 दिनों में करीब 29,85,000 से ज्यादा तीर्थयात्री चारधाम पहुंचे हैं, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 3 लाख से ज्यादा है। पिछले साल शुरुआती 44 दिनों में करीब 26,34,000 तीर्थयात्री पहुंचे थे। हालांकि चारधाम यात्रा में अब मौसम की दखलंदाजी भी बढ़ने लगी है। लगातार बारिश और खराब मौसम ने केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों की रफ्तार धीमी कर दी है। सुरक्षा कारणों से रुक रुक कर यात्रा हो रही है, बावजूद इसके बाबा केदार के प्रति भक्ति और उत्साह में कोई कमी नहीं है। श्रद्धालुओं का आंकड़ा 10.5 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं मानसून की आहट के मद्देनजर प्रशासन ने भी कमर कस ली है, चुनौतियों से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है।
3: मानसून दस्तक दे चुका है और आने वाले समय में अब और ज़्यादा तेजी से मानसून का आगमन होगा। ऐसी परिस्थिति में जो हमारे शहरी निकाय हैं, जिला पंचायत हैं, उनके साथ बैठक भी की जा चुकी है और फील्ड में ऐसे क्षेत्र जहां पर जल भराव हो सकते हैं वो उसमें साफ सफाई की कार्रवाई की जा रही है और उसकी मॉनिटरिंग भी हम लोग आपदा कंट्रोल रूम से कर रहे हैं और अभी इसका एक रिव्यू बैठक फिर से अगले सप्ताह किया जाएगा। अभी तक की जो तैयारियां हैं उसमें यदि कहीं किसी तरीके की कोई कमी पाई जाती है तो उसको ठीक किया जाए।
0: यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से भले ही इन दिनों यात्रियों की संख्या में कुछ कमी आई है, लेकिन बाबा के धाम में भक्तों की खूब चहलकदमी है। हर रोज 15,000 से ज्यादा श्रद्धालु धाम पहुंच रहे हैं।
4: विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के दर्शन करने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या 10.5 लाख पार पहुँच चुकी है। हालांकि इन दिनों लगातार मौसम भी खराब हो रहा है, बावजूद इसके भारी संख्या में भक्त बाबा केदार के दर्शनों के लिए उमड़ रहे हैं। हर रोज 15,000 से 20,000 तीर्थयात्री बाबा केदार के धाम पहुंचकर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। मौसम विभाग ने भी लगातार मौसम खराब होने की चेतावनी जारी की है, जिसके बाद तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रुद्रप्रयाग डीएम विशाल मिश्रा का कहना है कि पैदल मार्च से धाम में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। डीएम ने यह भी बताया कि मानसून सीजन से निपटने के लिए
0: बद्रीनाथ धाम में तो मानो आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। अब तक करीब 8,33,000 यात्री धाम पहुंच चुके हैं। बद्रीनाथ टोकन काउंटर से लेकर मंदिर तक जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर सड़कों पर भी गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। अच्छी बात यह है कि जोशीमठ में गेट सिस्टम लागू होने से अब श्रद्धालुओं को लंबे जाम का सामना नहीं करना पड़ रहा है।
5: यात्रा विगत वर्षों की अपेक्षा बहुत अच्छी है और इस बार यात्रियों की संख्या अप्रत्याशित रूप से काफी बढ़ी हुई है और हमारे निगम की जितने भी टीआरएच है, पर्यटक आवास गृह है, उनमें यात्रियों की तादाद बहुत ज्यादा है। विशेषकर बद्रीनाथ देवलोक होटल में और यात्री निवास में हमारा लगभग 100% ऑक्युपेंसी है।
0: चारधाम यात्रा केवल धार्मिक यात्रा ही नहीं बल्कि श्रद्धा, धैर्य और आत्मिक शांति का भी प्रतीक है। यही वजह है कि हर साल लाखों श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बनते हैं और अपने जीवन के यादगार अनुभवों में इसे शामिल करते हैं। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सिंहवाल के साथ चमोली से कमल नंदोरी, गुड न्यूज़ टुडे।
6: چلیے کچھ اور خبروں کی بات کرتے ہیں. مہاراشٹر کے امراوتی میں ملکھمب کا انوکھا رومانچ دیکھنے کو ملا. امراوتی کے ہنومان ویایام پرسارک منڈل دوارا آیوجت سمر کیمپ کے سماپن سماروہ میں چھاتروں نے جلتی مشال لے کر ملکھمب کا پردرشن دکھایا. خاص بات اس میں یہ رہی کہ ملکھمب پانی پر تیرتے پلیٹ فارم پر کیا گیا جس میں شکتی اور سنتولن کی بھرپور آوشیکتا ہوتی ہے. ملکھمب کے علاوہ لاٹھی کاٹھی مارشل آرٹس اور دوسرے پارمپرک کھیلوں کی بھی جھلک دیکھنے کو ملی.
0: زمین یا ہوا میں ملکھمب کا کھیل تو آپ نے خوب دیکھا ہوگا. ساہس شکتی اور سنتولن کے اس کھیل کو اب پانی پر دیکھیے. مہاراشٹر کے امراوتی میں ہنومان ویایام پرسارک منڈل کے سمر کیمپ کے سماپن سماروہ میں پانی پر ملکھمب کا ادبھت پردرشن کیا گیا. چھاتروں نے پانی پر تیرتے ہوئے پلیٹ فارم پر ملکھمب کا پارمپرک کوشل دکھایا. ساموہک روپ سے ملکھمب پر یوگاسن اور پیرامڈ بنا کر اپنی پرتیبھا کا پریچے دیا. पारंपरिक मलखंभ के विपरीत वाटर मलखंभ इसलिए भी मुश्किल है कि प्लेटफॉर्म पर स्थापित खंभा हवा और पानी की लहरों के साथ लगातार हिलता रहता है, लिहाजा इसमें संतुलन और एकाग्रता की ज्यादा जरूरत होती है. इतना ही नहीं, छात्रों ने जलती मशालों के साथ मलखंभ का प्रदर्शन कर साबित कर दिया कि ये खेल आसान नहीं, इसमें महारत हासिल करना नियमित साधना से ही संभव है.
7: जो मलखंभ है उसके आजू बाजू गोल आकार में जो हाथ में मशाल लेके जलतरण पटु और मलखाम में मशाल हाथ में लेके मलखाम पटु जो कवायती सादर करते हैं, जो प्रदर्शन करते हैं, वो सच में बहुत देखने लायक रहता है.
0: छात्रों ने हाथ में जलती मशाल लेकर पानी में ओम और स्वास्तिक की आकृति भी बनाई, साथ ही पानी के भीतर संतुलन बनाते हुए अद्भुत करतब दिखाए. अमरावती में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल पिछले 102 सालों से ऐसे शिविर आयोजित कर रहा है. मकसद युवाओं और बच्चों को मलखंभ के जरिए शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाना और इस पारंपरिक प्राचीन भारतीय खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है. अमरावती से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे.
8: और चलिए अब बात टीम इंडिया की कर लेते हैं. T20 टीम में बदलाव पर चर्चा तेज है. इस महीने टीम इंडिया का आयरलैंड और इंग्लैंड दौरा होना है. इसी दौरे के लिए T20 कप्तानी में बदलाव पर चर्चा हो रही है. सूत्रों के मुताबिक श्रेयस अय्यर कप्तान बनने के प्रबल दावेदार हैं. चयनकर्ता T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से अगला कप्तान बनना चाहते हैं. टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जिताने के बावजूद कप्तान सूर्य कुमार यादव पर संकट है. उनकी हालिया फॉर्म खराब रही, इस वजह से उनकी स्थिति पूरी तरह से सुरक्षित नहीं मानी जा रही. वैसे कप्तानी के लिए शुभमन गिल, अक्षर पटेल, ईशान किशन और तिलक पर भी नजरें हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर का नाम सबसे आगे है.
6: دیکھیے 11 جون سے امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں فٹ بال کا مہاکمبھ شروع ہونے جا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے پوری دنیا پر فٹ بال فیور ابھی سے چڑھنا شروع ہو چکا ہے. امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں 9 دن تک چلنے والے ٹورنامنٹ میں دنیا بھر کی 48 ٹیموں کے بیچ 104 میچ کھیلے جانے ہیں. پوری دنیا کی نگاہیں فیفا ورلڈ کپ پر ٹکی رہیں گی. بھارتی ٹیم بھلے ہی ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی نہیں کر پائی، لیکن گڈ نیوز یہ نکل کر آئی ہے کہ بھارتی مول کے 4 کھلاڑی فیفا ورلڈ کپ میں جوہر دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے. اور سرپریت سنگھ نیوزی لینڈ کی ٹیم کے لیے مڈ فیلڈر کے روپ میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے. تو ان کے ماتا پتا تعلق کا جو ہے ان کا وہ جالندھر سے ہے، تمل ناڈو سے سمبندھ رکھنے والے سیموئل جو ہیں کانگو کی ٹیم کا پرتنیدھتو کرتے ہوئے نظر آئیں گے. نشان ولوپلے جو ہیں آسٹریلیا کی ٹیم سے کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے. تحسین محمد جمشید یہ جو ہیں قطر کی راشٹریہ ٹیم میں شامل یوا فارورڈ کھلاڑی ہیں، جن کے ماتا پتا کیرلم میں کنور ضلع سے ہیں.
8: اور چلیے انسٹا سٹوری میں اب آپ کو ان کلاکاروں کی انسٹا ریل دکھاتے ہیں جو ابھینے کی دنیا میں تو کمال کر ہی رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ سوشل میڈیا پر اپنے فینس کو ہنسانے اور گدگدانے میں بھی پیچھے نہیں ہیں. دیکھیے کرشنا ابھیشیک کی فنی انسٹا سٹوری.
9: ہلو، ہاں جی بھائی، کیا حال ہے راج بھائی؟ کیا بینکاک؟ نہیں نہیں بینکاک نہیں، میں اکیلا نہیں، میں کشمیر کے بنا نہیں جاؤں گا، کشمیر کے بنا نہیں جاؤں گا. نہیں آپ لوگ جاؤ.
10: ارے ہاؤ سویٹ یار، मेरे बगैर तो बैंकॉक नहीं जाएगा, इतना बोल रहे राज में तो चले ही जाते।
8: और शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।
6: बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
12: बुध का कौन सा शुभ योग आपको अत्यंत बुद्धिमान बना देता है? बुध का कौन सा शुभ योग आपको जीवन में उच्च पद तक पहुंचा देता है? कौन से हैं बुध के शुभ योग और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
13: म्यूजिक फॉर एवरी मूड लिव्स ऑन ट्यून इन। व्हेदर यू वांट टू रिलैक्स, फोकस और टर्न थिंग्स अप, यू'ल फाइंड द राइट स्टेशन। Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
15: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
16: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
15: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
6: आज केरलम पहुंच सकता है दक्षिण पश्चिम मॉनसून। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटक में भारी बारिश का जताया अनुमान। पर्यटकों को लुभा रहा है पहाड़ों का सुहाना मौसम। नैनीताल में पर्यटकों की भारी भीड़, सड़कों पर लग रहा है लंबा जाम। सैलानियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए स्थानीय कारोबारी खुश। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग का सपना हुआ साकार। जोजिला टनल लगभग बनकर तैयार। 3 घंटे का सफर मात्र 15 मिनट में तय होगा। यातायात के लिए जल्द खोला जाएगा। तमिलनाडु में धूमधाम से बना वैकासी, विशाकम और तिरुकल्याणम विशेष रूप से सजाए गए मुरुगन मंदिर, विशेष महाअभिषेकम और गंडा पुराण पाठ का आयोजन। विश्व की पहली योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का शुभारंभ। अहमदाबाद के एका अरीना में 8 जून तक चलेगी प्रतियोगिता। अपनी फिल्म पैटी की कामयाबी की कामना लेकर तिरुमाला मंदिर पहुंची अभिनेत्री जानवी कपूर। फिल्म में साउथ सुपरस्टार रामचरण के साथ मुख्य किरदार में।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे बुध के शुभ योगों के बारे में। बुध के शुभ योग कौन से होते हैं और अगर आपकी कुंडली में बुध से संबंधित शुभ योग हैं तो इनका प्रभाव क्या है, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 4 जून 2026, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, रात के 11:30 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 7:41 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 4 जून 2026 दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है वृषभ राशि में, बुध और शुक्र मिथुन राशि में, बृहस्पति कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा धनु राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। देखिए, ज्योतिष में बुध से संबंधित बहुत सारे शुभ योग पाए जाते हैं, लेकिन हम आपको बुध के विशेष शुभ योगों के बारे में बता रहे हैं। पहला जो शुभ योग है बुध का, उसको कहते हैं भद्र योग। कैसे बनता है? बुध जब कुंडली में कन्या राशि में हो, 6 में हो, या मिथुन राशि में हो, 3 में हो, तो भद्र योग बनता है। लेकिन इसके लिए बुध को लग्न से केंद्र में होना चाहिए। केंद्र स्थान में होने पर ही ये योग बनता है। भद्र योग होने से व्यक्ति धनवान और अत्यंत बुद्धिमान बनता है और जिनकी कुंडलियों में भद्र योग होता है उनको खूबसूरती, वाणी, बुद्धि और चतुराई का वरदान मिलता है। नॉर्मली आप देखेंगे
कि जो भद्र योग वाले लोग होते हैं ये वाणी के क्षेत्र में समझाने और सलाह देने वाले क्षेत्र में अभिव्यक्ति के क्षेत्र में ज्यादा उन्नति करते हैं। इस योग वाले लोग आर्थिक क्षेत्र में, फाइनेंशियल सेक्टर में, कॉरपोरेट सेक्टर में उच्च पदों पर पाए जाते हैं। भद्र योग वाले अत्यंत बुद्धिमान होते हैं और अपनी बुद्धि के दम पर जीवन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन भद्र योग वालों को सलाह दी जाती है कि आप अपनी बुद्धि का दुरुपयोग मत करिए, अपनी बुद्धि से किसी को भी परेशान ना करें। बुद्ध के अन्य शुभ योगों पर बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी, कोई शुभ सूचना मिल सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, काम में जल्दबाजी ना करें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें।

अत्यंत ताकतवर होता है और लग्न में बैठा हुआ बुध जीवन में अत्यंत शुभ प्रभाव प्रदान करता है। जिन लोगों के लग्न में बुध होता है सामान्यतः ऐसे लोग अत्यंत बुद्धिमान होते हैं और गणित वाले विषयों के कैलकुलेटिव विषयों के जानकार होते हैं। जिनके लग्न में बुध होता है आम तौर पर ऐसे लोग वाणिज्य यानी कॉमर्स, टैक्स, बैंकिंग और वाणी के क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर इस बुध को बृहस्पति का साथ मिल जाए तो व्यक्ति के पास इंट्यूशन आ जाता है, अंतर्ज्ञान आ जाता है। लग्न में अगर बुध बैठेगा तो आप अच्छा बोलेंगे, अच्छा पढ़ेंगे लिखेंगे, आपकी बुद्धि आपका दिमाग काफी तेज होगा। ऐसे लोगों को नियमित रूप से ध्यान करना चाहिए और अगर आपको भगवान ने बुद्धिमान बनाया है तो अपनी बुद्धि का दुरुपयोग ना करें, क्योंकि अगर आप अपनी बुद्धि की शक्ति का दुरुपयोग करेंगे तो आगे चल करके जीवन में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बुध के तीसरे शुभ योग की बात भी करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि काम के नए अवसर मिलेंगे, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि करियर की समस्या दूर होगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब बुध के तीसरे शुभ योग की बात करते हैं, उसका

0: नाम है बुध आदित्य, यानी बुधादित्य योग कैसे बनता है? देखिए, बुधादित्य योग सबसे ज्यादा कुंडलियों में पाया जाने वाला योग है, क्योंकि बुध ज्यादातर सूर्य के निकट रहता है, इसीलिए अक्सर कुंडलियों में एक साथ हो जाता है। तो बुधादित्य योग सबसे ज्यादा कुंडलियों में पाया जाता है। जब कुंडली में सूर्य और बुध एक साथ होते हैं, एक साथ बैठते हैं, तो बुधादित्य योग कुंडली में बन जाता है। इस योग के होने पर व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान की और धन की प्राप्ति होती है और व्यक्ति अत्यंत पराक्रमी होता है, बड़ा साहसी होता है, अपनी साहस और मेहनत के बल पर जीवन में आगे बढ़ता है। बुधादित्य योग ज्यादातर तभी रिजल्ट देता है या ज्यादातर तभी फलित होता है जब ये केंद्र में या त्रिकोण में बना हो। और बुधादित्य योग में बुध अस्त ना हो। अगर बुधादित्य योग में बुध अस्त हो गया तो सारे परिणाम सूर्य देंगे, फिर बुध का ब्लेंड, बुध का होना उसमें कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। अगर कुंडली में परफेक्ट तरीके से बुधादित्य योग बना हो तो व्यक्ति साधारण जगह पर जन्म लेकर भी अत्यंत धनवान हो जाता है, अत्यंत पैसे वाला हो जाता है। और बुधादित्य योग अगर कुंडली के करियर से संबंध बनाए तो बुधादित्य योग वाले लोग अक्सर जीवन में उच्च पदों पर देखे जाते हैं, जीवन में उच्च पदों पर रहते हैं। अगर आपकी कुंडली में बुधादित्य योग है और आप इसका लाभ चाहते हैं तो प्रातः सूर्योदय के पहले उठिए और संभव हो तो सुबह के समय सूर्य को जल चढ़ाइए। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करें तो कुंडली का बुधादित्य योग आपको बेहतर फायदा देगा, जीवन में बेहतर लाभ आप प्राप्त कर सकेंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, करियर में सफलता मिलेगी, रिश्तों में समस्या हो सकती है। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में बड़ी सफलता मिल सकती है, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं, काम के दबाव से परेशानी होगी, महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, करियर की बाधाएं समाप्त होंगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बात की बुध के शुभ योगों के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य और आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या है लकी टिप। अगर बालों की समस्या से परेशान हैं तो रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिए और भोजन में हरी सब्जियों का प्रयोग ज्यादा करिए, आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 4 जून 2026 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से एक पीला फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
2: One more, let's go.
1: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
3: Step into timeless classical music. Works from the masters. Brought to life by world-class orchestras, conductors, and soloists. From past to present, every performance played with depth, precision, and care. Music that has lasted for generations and still feels just as powerful today. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Classical Hits and start listening now.
4: कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

आज हम आपको भक्ति के तीन दुश्मन के बारे में बताना चाह रहे हैं। कल हमने भक्त के तीन लक्षण बताए, भाव, भरोसा, बोलापन। लेकिन भक्ति के तीन दुश्मन भी हैं। नोट करना प्रिय साधको, भक्ति का पहला दुश्मन है कुसंग। क्या है? कुसंग। अजामिल को कुसंग मिला, परम वैष्णव त्रिकाल समझा करने वाला पंडित आचार्य कुसंग के चक्कर में नास्तिक हो। तो भक्ति का पहला शत्रु कौन है? कुसंग। भक्ति का दूसरा शत्रु है अहंकार, मैं। ये मैं बहुत खतरनाक है। मेरे पागलो, जिसे मैं की हवा लगी उसे ना दुआ लगी ना दबा लगी। मैं की हवा बहुत खतरनाक, अहम की हवा बहुत बेकार होती है। भक्त के अंदर ये नहीं होना चाहिए मैं, भक्त के अंदर होना चाहिए भगवान। अभिमान नहीं, भगवान। अंदर भगवान बैठा हो, कुछ भी हो वे, यही भाव मन में रहना चाहिए। सब भगवान करवा रहे, सब भगवान कर रहे हैं, भगवान करवा रहे हैं और भगवान कर रहे हैं। और कोई कहे वाह आपके कारण ऐसा हो गया, सब भगवान की कृपा है। हर पल ये चित्त में बना रहे। और याद रखना, शब्दों के जादूगर बहुत है। तुम लोग बाहर से तो कहते हो, हम किसी के घर, हमने कई बार ये बात बताई, आज फिर बता। मुंबई में एक बहुत अच्छा चेला है हमारा, उसने एक कोठी बनाई बहुत अच्छी। उसके हम घर गए, कोठी को देखकर हम भी बड़े प्रसन्न हुए। तो हमने पूछा ये किसकी है? आपकी ही है, आपकी। हमने कहा तू क्या कर रहा है? आपकी है तो तुम क्या कर रहे? फिर नहीं उसने कभी जिंदगी में कहा कि आपकी है। कुछ भी कहो, आपकी गाड़ी पूछो किसकी, आपकी है, आपकी है, आपकी। ये हम लोग ना बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। मंदिरों में भी यही हाल है। शाम को आरती गाते ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन

0: कितनी अच्छी आरती है, आ क्या लागे मेरा। और लोग भी इतने भाव से गाते कि भगवान विष्णु को नारायण को लगता
1: यही अच्छा भगत है।
0: ऐसे आंख बंद क्या लागे
1: मारा के कहता गाड़ी कहाँ गई है मेरी, चप्पल हिरा गई है मेरी, जेब कट गई है।
0: बताओ अभी कह रहा था सब तेरा है, अब ये मेरा हो गया। कन्फर्म कर भाई, बिंदु जी थोड़ी हो कि बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा बन। ये चेला थोड़ी हो कि तीन तीन लुगाई चलेंगे। पटेल साहब थोड़ी हो, पटेल साहब थोड़ी हो, एक तरफ कहीं रहो। इसके लिए एक सूत्र है हमारे पास बहुत पुराना, बाहर से संसारी रहो अंदर से सन्यासी हो जाओ। बाहर से जगत के रहो अंदर से भगवान के हो जाओ, बस सीधा सा सूत्र है, सीधा सा खेल है। तो दुश्मन है भक्ति के तीन, पहला कुसंग, दूसरा अहंकार और तीसरा आलस। कल करेंगे। और कबीर क्या कहते, कार

0: कल करता तो आज कर, आज करता है तो अभी कर,
1: पल में परलय हो जाएगा, कब क्या हो जाए कोई ठिकाना।
0: आलस मत करो भक्ति में, तीन बातों में कभी आलस, एक भगवान के भजन में, एक वैराग्य में और एक दान, तीन में कोई आलस नहीं। चटपट और अटपट लीला राम की, झटपट समझना आए, जो मन की खटपट मिटे सो चटपट दर्श हो जाए। चटपट करो, तत्क्षण करो, देर मत करो, तुरंत करो। मेरे पागलो, आलस बहुत खतरनाक। एक महात्मा नदी के किनारे बैठे थे, पानी बह रहा था। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तीन दिन हुआ, चार दिन हुआ, पांच दिन हुआ, तो एक सेठ वहां से गुजरते, रोज देखता था कि एक महात्मा ये बैठे ही रहते, ना इधर जाते ना उधर आते ना कुछ करते, बैठे ही रहते, नदी को देखते रहते। तो गांव के लोगों ने जाके उस सेठ ने कहा कि महाराज उस पार जाना है तो हम नाव का प्रबंध कर, और नहीं जाना है तो आप किनारे क्यों बैठे रहते। महात्मा ने कहा हम किनारे इसलिए बैठे रहते हैं कि सोच रहे हैं कि कब नदी का पूरा पानी बह जाए, फिर मैं पार हो जाऊं, उस पार जाऊं। गांव वाले हंसने लगे, बोले ये बहुत पागलपन की बातें हैं, नदी का पानी कभी पूरा जाना ही नहीं है, कभी पूरा पानी बहना ही नहीं है, बरसात आएगी फिर पानी बढ़ जाएगा, पर ना छोटी मोटी धार तो चलती रहेगी, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा, और कभी बीच में बारिश हो जाती है तो बीच में भी पानी बढ़ जाएगा, तो ये तो बेबिजुली की मती है, मूर्खता है। महात्मा बोले यही तो हम तुम्हें कहना चाहे। सेठ और गांव वाले थोड़े परेशान हुए, क्या कहना चाह रहे हैं? बोले जैसे तुम सोचते ना सब काम हो जाए फिर बाबा बनेंगे, फिर भजन करेंगे, अब वो कभी होना ही नहीं। पहले तुम सोचते बेटा की शादी हो जाए, बिटिया की शादी हो जाए, फिर बाबा बनेंगे, दोनों की शादी हो गई अब बन बाबा, महाराज बनना तो है, थोड़ा नाती का मुंह देख ले फिर बन जाए पक्का, और कोई काम ही नहीं बचा, सब भगवान की कृपा से हो गया, गाड़ी बंगला मकान, बेटा की शादी हो गई, बहू बहुत अच्छी है, रोटी गरम बना के देती है, आनंद है, नाती का मुंह देख ले आनंद आ जाए। अब नाती हो गया, बेटी को भी बेटा हो गया, बेटे को भी बेटा हो गया, इधर अब बाबा बन। अच्छा बाबा बनने के लिए बेटे का बेटा बोलता भी है, बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा। तो किसी ने कहा कि अब तो बन, नाती भी बोल रहा है बाबा। बोला महाराज यही तो कंफ्यूजन हो गई। बोले क्या? बोले बेटे का बेटा तो बोलता है बाबा, तब तक बेटी का बेटा आ जाता, वो कहता नाना नाना नाना नाना नाना नाना ना, ना, ना। अब कन्फर्म नहीं हो रहा कि किसकी बात माने, बेटे के बेटा की बात माने कि बेटी के बेटा की बात माने। वो नाना कहता, ये कहता बाबा बाबा बाबा बाबा। ये हम लोगों की प्रवृत्ति है। कबीर की वाणी को याद करना।

भक्ति के ये तीन दुश्मन हैं। पहला शत्रु कुसंग है और कुसंग से बचने का उपाय सत्संग है। आज की कथा भी हमने यहीं से शुरू की थी।

घड़ी भी मिल जाए काम बन जाता। और हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, पंचनाथ में बद्रीनाथ में सत्संग गा रहे हैं, तो हम गा रहे तुम सुन रहे हो, और कितना आनंद लूट रहे हैं, संतों की वाणी सुन रहे, दर्शन और उस जगह पे सुन रहे जहां मोक्ष मिलते ही। हाँ, पितरों को भी यहां मोक्ष मिलता है। यहां एक जगह है ब्रह्म कपाल, बद्रीनाथ जी में अलकनंदा के किनारे, शायद आप लोग गए हो यहां ब्रह्म कपाल। और अपनी तो छोड़ो, यहां शंकर जी की भी ब्रह्म हत्या का दोष मिटा। हाँ, शंकर जी की भी ब्रह्म हत्या का दोष मिटा। शंकर जी ने जब ब्रह्मा जी का सिर काटा तो वो चिबक गया, ब्रह्म हत्या लग गई। और वो हाथ में सिर चिपका तो पूरे पृथ्वी पर भ्रमण महादेव ने किया, गंगा स्नान जो जो होते हैं सब किया, पर वो सिर नहीं निकला। अंत तो गत्वा घूमते घूमते महादेव जब बद्रीनाथ धाम में आए, यहां अलकनंदा के किनारे जैसी शिला पर पहुंचे, वहां के गुरुत्वाकर्षण ने सिर को नीचे खींच लिया, ब्रह्मा जी का जो सिर चिपका था वो नीचे गिर गया और दोष मुक्त हो गए। भगवान शंकर ने उसी दिन कहा कि ये बहुत अद्भुत भूमि है, किसी का कोई पितर प्रेत बन करके कई वर्षों से परेशान हो रहा हो, गया श्राद्धम पुष्कर पर श्राद्धम खूब कर लिया हो, गया में श्राद्ध पुष्कर में प्रयाग में खूब आपने श्राद्ध कर लिया हो, फिर भी मुक्त ना हो रहा हो, तब चारों धाम में बद्रीनाथ की भूमि में अलकनंदा के किनारे शिला पर खड़े होकर के अलकनंदा जी में प्रेत का तर्पण कर दिया जाए तो वो मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। ऐसी भूमि है। तो हम लोग कितने भाग्यशाली कि शत्रु तीन हैं भक्ति के, कुसंग, अहंकार और आलस्य। इन तीनों को जो त्याग देता है वो भक्ति को संजो करके रखता है। ये महीना परम पवित्र है, और इस परम पवित्र महीने में, पुरुषोत्तम मास के महीने में, भगवान श्री हरि का महीना है, और हम लोग भी भगवान हरि के धाम पर। हरि में और हर में अंतर नहीं है, दोनों एक है, हर और हरि दोनों एक। लेकिन वैसे एक बात हम बोलें, बद्रीनाथ तो हर का है, कब्जा कर रखा हरि ने। हाँ, अवैध कब्जा तो नहीं कह सकते, पर है ये हर का। पहले यहां भोले बाबा ही बैठते थे, उनका ही मूल स्थान है, लेकिन एक दिन ठाकुर जी ने सोचा बढ़िया तब की जगह कौन सी है, सोचा बद्रीनाथ। अब ऐसे तो मिलेगी नहीं, क्योंकि भोले बाबा तो भोले बाबा हैं, अवधूत हैं, फक्कड़ हैं, और ये छोड़ेंगे नहीं। तो भगवान हरि बहुत नाटकी है, नाम तो महादेव का नटवर नागर है, नटवर हैं भगवान, नटराज हैं। हर का नाम नटराज है, हरि का नाम नटवर नागर है, क्योंकि ये भी कम नाटक नहीं करते, बहुत नाटक करते। तो इन्होंने क्या किया कि एक छोटे से बालक का रूप धारण किया भगवान विष्णु ने, बद्रीनाथ आ गए बालक बन के। बद्रीनाथ आए सो तो ठीक है, रोने लगे तो पार्वती जी ने भीतर से कहा कि कोई बच्चा बैठा है, जरा मैं देख के आऊं। शंकर जी ने हाथ पकड़ा, मत जाना, क्यों, उसको जितना ये छोटा है उतना ही खोटा है, इसके चक्कर में बिल्कुल मत पड़ जाना, और इसकी भावनाओं में तो तुम बह ही ना जाना। तो पार्वती जी ने कहा कि बालक के पता नहीं माँ बाप से बिछुड़ गया, माँ बाप भी नहीं है, दिख नहीं रहे। बोले इसके माँ बाप सच में ही नहीं, हाँ ये सबका माँ बाप है, मतलब वो मतलब हम बाद में समझाएंगे, जाना मत। पर माँ का तो ममत्व होता है, तो वो जिद पे अड़ गई कि भले ही कैसा भी हो, खोटा हो छोटा हो, बिन माँ बाप मैं माँ हूं। और कोई बालक रोए, ये मां से देखा नहीं जाता है, गुण होता है, ममत्व का गुण होता है। तो भगवती आदि शक्ति जगत जननी मां पार्वती बाहर आई, रोता हुआ देखा, ये तो विष्णु जी है, नाटक करके आए, स्नान ध्यान करवाया, भोजन भोजन पवाया, सब ठीक है, कहां के हो, कोई अता पता नहीं बताया। अंत तो गत्वा, जब तक भगवान दोनों बाहर स्नान करने गए तब तक ये भीतर घुस करके दरवाजा बंद कर लिए। जब शंकर जी वापस आए तो दरवाजा भीतर से बंद बद्रीनाथ जी का, तो पार्वती जी ने कहा कि ये दरवाजा किसने बंद किया। शंकर जी बोले उसी खोटे ने, छोटे ने, उसने दरवाजा क्यों बंद किया। अरे देवी, वो कोई बालक थोड़ी था, क्षीर सागर के अधिपति है,
हमारे प्रिय श्री हरि नारायण थे, उनको ये भूमि चाहिए थी तप के लिए। अब एक काम करो, अपने यहां से खिसको। तो बोले क्यों? बोले अब वो यही रहेंगे और हमको खिसकना चाहिए। तो भगवान यहां से भोले भूत भावन महादेव, बल्कि रामस्य हृदयम शिवा, शिवस्य हृदयम रामः, दोनों के अंदर एक दूसरे। वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में परम शंभु कोई है तो भगवान महादेव है, परम वैष्णव महादेव है। पर भगवान की लीला है तो भगवान शंकर केदारनाथ में बैठ गए और बद्रीनाथ में नारायण बैठ गए। तो हम एक दृष्टि और रखते हैं इस भूमि पर, हर की दृष्टि पर हरि का वास है, हर की भूमि पर हरि का वास है। और देखो बद्रीनाथ में नाथ शब्द, भगवान पांच नाथ हुए श्री हरि के, पंचनाथ कितने बोलो बोलो बोलो, जगन्नाथ, रंगनाथ, जगन्नाथ, रंगनाथ, द्वारकानाथ, गोवर्धन नाथ और बद्रीनाथ, पांच नाथ श्री हरि के अवतार के पांच नाथ हैं। रंगनाथ, रंगनाथ दक्षिण और रंगनाथ के, अच्छा पांचों की मुद्रा अलग अलग। रंगनाथ की जो मुद्रा है अनंत शयनम, ये रंगनाथ, तो रंगनाथ में अनंत शयनम भगवान एकदम आनंद में डूबे हुए शयन कर रहे। लेकिन जगन्नाथ में वेलकम टू यू, कम हियर माय डियर, इस मुद्रा में, स्वागत की मुद्रा में भगवान दोनों हाथ ऐसे किए खड़े हुए। कभी कभी जगन्नाथ जी को देख करके हमको लगने लगता वो कह रहे हो कहां भाग रहा, आ जा गले लग जा। वो एक कोई फिल्मी गीत है, अब गाएंगे नहीं, आ जा गले से, हा?

0: shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
1: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits. Classic rock. Coffee house. And more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
2: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
3: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
4: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
5: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
2: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
6: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
7: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है। डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
2: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
8: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
2: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
9: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
2: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
10: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
11: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
10: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना क्या मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आए हूँ हॉस्पिटल में।
2: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
8: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
2: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
6: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है, मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
2: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
12: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
13: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
14: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
15: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
2: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
16: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 ईयर्स बैक व्हेन वी शिफ्टेड टू इंडिया, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, वी स्टार्टेड यूजिंग इट। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
2: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
17: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई गई है, ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है। और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा। आप अपनी समस्या बताइए, अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
2: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
9: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं, तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है। मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं, बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं, तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
18: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी, तो बहुत दर्द रहता था पेट में। डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
4: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ, और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था। पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता। बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
2: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
19: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
20: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी। पर जब से ये फौजी 360 लिया है, कमर में, घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ। अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
21: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
2: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
3: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है, और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दमो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
2: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
4: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
5: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
2: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो या कंधे का दर्द हो या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
8: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
2: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
21: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।

0: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
10: आज केरला पहुंच सकता है दक्षिण पश्चिम मॉनसून। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक में जारी की बारिश की संभावना। पर्यटकों को लुभा रहा है पहाड़ों का सुहाना मौसम। नैनीताल में पर्यटकों की भारी भीड़, सड़कों पर लग रहा लंबा जाम, सैलानियों की बढ़ती भीड़ से स्थानीय कारोबारी खुश। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग का सपना हुआ साकार। जोजला टनल लगभग बनकर तैयार, 3 घंटे का सफर अब 15 मिनट में होगा तय। यातायात के लिए जल्द खोला जाएगा। तमिलनाडु में धूमधाम से मना वैकासी, विशाखम और तिरु कल्याणम विशेष रूप से सजाए गए मुरुगन मंदिर, विशेष मां अभिषेकम और कंडापुराण पाठ का आयोजन। विश्व की पहली योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का शुभारंभ अहमदाबाद के एका अरीना में 8 जून तक चलेगी प्रतियोगिता।

0: अपनी फिल्म पेटी की कामयाबी की कामना लेकर तिरुमाला मंदिर पहुंचे अभिनेत्री जानवी कपूर। फिल्म में साउथ के सुपरस्टार रामचरण की मुख्य भूमिका में हैं जानवी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
0: आज केरला पहुंच सकता है दक्षिण पश्चिम मानसून। मौसम विभाग ने आज मानसून के केरला पहुंचने का जताया अनुमान। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक में भारी बारिश का जताया अनुमान। मौसम विभाग ने देश भर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। भीषण गर्मी झेल रहे इलाकों में लोगों को मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने देश के उत्तर पश्चिम इलाकों में आंधी बारिश का जताया अनुमान। केंद्रीय और पूर्वी भारत में भी बारिश, आंधी बारिश की संभावना। दिल्ली एनसीआर में आज आंधी बारिश का अलर्ट जारी। यूपी बिहार समेत 15 राज्यों में बारिश की चेतावनी। मनाली में जोरदार बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। बारिश के बाद लगातार बढ़ रही सैलानियों की संख्या, कारोबारियों में खुशी की लहर। कुल्लू में बदला मौसम का मिजाज, भारी बारिश से गर्मी से मिली बड़ी राहत। पर्यटकों को लुभा रहा जम्मू कश्मीर का सुहाना मौसम। उत्तर भारत में पड़ रही प्रचंड गर्मी से राहत के लिए छुट्टियां मनाने जम्मू कश्मीर पहुंच रहे लोग। खूबसूरत वादियां, साफ हवा और कलकल बहते पानी के बीच छुट्टियों को यादगार बनाने पहलगाम घाटी पहुंच रहे हैं पर्यटक। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। 45 दिनों में अब तक 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंचे सबसे ज्यादा भक्त, आंकड़ा पहुंचा करीब 11 लाख। बद्रीनाथ धाम को लेकर भी भक्तों में जोरदार उत्साह। अब तक करीब 9 लाख से ज्यादा लोगों ने किए दर्शन। यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम में लगा भक्तों का तांता। अब तक दोनों जगहों पर 10 लाख से ज्यादा भक्तों ने लगाई हाजिरी। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में भी भक्तों का लगा मेला। 48,000 से ज्यादा लोगों ने किए दर्शन। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। बाबा महाकाल का भांग चंदन, ड्राई फ्रूट, सिंदूर और आभूषणों से किया गया साज श्रृंगार। फूलों से सजाए गए बाबा। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए सुबह से भक्तों की लगी लंबी कतारें। भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। तिरुचिरापल्ली में सीएम विजय का दिखा अनोखा फैन, अपने घर में लगाया सीएम विजय की प्रतिमा। सुकुमार शगमुग प्रतिदिन सुबह शाम करते हैं सीएम विजय की प्रतिमा की पूजा। शाम को विजय की उतारी जाती है आरती। तमिलनाडु के मायिलादुतुरई के मयूरंतर मंदिर में फ्लोट उत्सव की रौनक देखने को मिली, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। फ्लोट उत्सव पर देवी देवताओं की प्रतिमा को पानी से सजे तालाबों में कराया गया नौका विहार। भक्तों ने लगाई जयकारे। फ्लोट उत्सव में भगवान शिव और पार्वती का पारंपरिक अनुष्ठान देखने को मिला। उत्सव को लेकर लोगों ने जमकर आतिशबाजी। तमिलनाडु में धूमधाम से मना वैकासी, विशाखम और तिरुकल्याणम, विशेष रूप से सजाए गए मुरुगन मंदिर। मंदिरों में विशेष महाअभिषेकम और पिंडा पुराण पाठ का आयोजन, भगवान की उतारी गई आरती। खराब मौसम के बावजूद केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं के पहुंचने का नया रिकॉर्ड। रोजाना 15,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं भगवान केदार के धाम। अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर, सुरक्षा के चलते हेलीकॉप्टर सेवा पर लगी रोक, 1 जुलाई से नो फ्लाइंग जोन घोषित हुआ यात्रा मार्ग। पंजाब के फरीदकोट में अचानक बदल गई एक मोटर मैकेनिक की जिंदगी, 21 लाख रुपए की लॉटरी निकलने से घर में आई खुशियां। 21 लाख रुपए की लॉटरी लगने से खुश मोटर मैकेनिक रवि ने केक काटकर लड्डू बांटकर मनाई खुशी, बोले माता पिता के सपने पूरे करूंगा। अभिनेता अनुपम खेर ने फिल्म इंडस्ट्री में पूरे किए 45 साल, इस मौके पर अनुपम ने स्ट्रगल के दिनों से लेकर सफल होने तक के सफर पर बात की। अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए रामलला के दर्शन। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रतिदिन चलाया जा रहा है स्वच्छता अभियान, कर्मचारी पूरे मंदिर परिसर की कर रहे हैं साफ सफाई।

0: राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया उद्घाटन। उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा में उधम सिंह नगर की बेटी जसमीत कौर ने किया टॉप, परिवार में खुशी की लहर। हरियाणा पुलिस ने क्राइम इंटेलिजेंस मॉडल किया लॉन्च, पिछले एक दशक में जघन्य अपराधों में शामिल अपराधियों का एक व्यापक डिजिटल डेटाबेस तैयार। गुजरात में आज विश्व की पहली योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 का किया जाएगा आयोजन, अहमदाबाद के एका एरिना में 8 जून तक चलेगी प्रतियोगिता। इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता में 60 से ज्यादा देशों के 500 से ज्यादा एथलीट लेंगे हिस्सा, 7 कैटेगरी में अपनी कला एथलीटिज्म का करेंगे प्रदर्शन। प्रतियोगिता में पारंपरिक योगासन के साथ कई तरह की प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन होगा, वीर द लायन रखा गया पहली विश्व योगासन खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ। योगासन को प्रतिस्पर्धी वैश्विक खेल के रूप में स्थापित करना और 2036 के ओलंपिक में शामिल कराने की दिशा में कदम बढ़ाना प्रतियोगिता का मकसद। शाम 6:40 पर कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे पीएम मोदी, पीएम ने कार्यक्रम के आयोजकों को बधाई और प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
2: सास बहू और बेटियां में आज देखिए बनते बिगड़ते रिश्तों की कहानियां। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
3: You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
4: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the 3 little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
6: Which may he hit?
7: Aur durbhagya kehta hai.
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर।

0: राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे,
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
6: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है, और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए, और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूं गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना, जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूल, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूरनकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हरड़ के फायदे। ये हरड़ है औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक। चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लेग्जेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद। यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू। लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में, ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन। यह है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: सास बहू और बेटियां में आज देखिए बनते बिगड़ते रिश्तों की कहानियां। दोपहर 1:28 से लेकर 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
7: प्रिंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
8: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
9: आज केरल पहुंच सकता है दक्षिण पश्चिम मानसून। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में भारी बारिश का जताया अनुमान। पर्यटकों को लुभा रहा पहाड़ों का सुहाना मौसम। नैनीताल में पर्यटकों की भारी भीड़, सड़कों पर लगा लंबा जाम। सैलानियों की बढ़ती भीड़ से स्थानीय कारोबारी खुश। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग का सपना हुआ साकार। रोजिला टनल लगभग बनकर तैयार। 3 का सफर अब 15 में होगा तय। यातायात के लिए जल्द खोला जाएगा इसको। तमिलनाडु में धूमधाम से मना वैकासी, विशाखम और तिरुकल्याणम। विशेष रूप से सजाए गए मुरुगन मंदिर, विशेष महाभिषेकम और कुंडा पुराण पाठ का आयोजन। अपनी फिल्म पेटी की कामयाबी की कामना को लेकर तिरुमाला मंदिर पहुंची अभिनेत्री जाह्नवी कपूर। फिल्म में साउथ सुपरस्टार रामचरण के साथ मुख्य भूमिका में है जाह्नवी।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। और जीएनटी स्पेशल में आज बात संघर्ष, सफलता और लगातार खुद को साबित करने की कहानी की। और ये कहानी है हिंदी सिनेमा के उस कलाकार की जिसने अपने अभिनय से हर किरदार को यादगार बना दिया है। देखिए, फिल्म सारांश से बॉलीवुड में पहचान बनाने वाले अनुपम खेर ने इंडस्ट्री में अपने सफर के कई दशक पूरे कर लिए हैं। इस लंबे सफर में उन्होंने सफलता भी देखी, असफलता भी देखी, लेकिन हर चुनौती का सामना हमेशा मुस्कुराकर किया। और देखिए, खास बात यह है कि ऐसे बहुत ही कम कलाकार होते हैं जो हर पीढ़ी के दर्शकों के बीच अपनी पहचान बनाए रखते हैं, उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। अनुपम खेर उन्हीं चुनिंदा अभिनेताओं में शामिल हैं। अपनी जर्नी को लेकर अनुपम खेर ने खास बातचीत की, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।
1: बड़े से बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स ने देखी थी वो फिल्म। संजीव कुमार साहब ने भी देखी थी और संजीव कुमार साहब मुझे रिप्लेस करने वाले थे सारांश में। तो उन्होंने जब फिल्म देख के कहा था कि महेश भट्ट साहब को कि महेश, आई डोंट थिंक आई कुड हैव डन दिस रोल एज गुड एज अनुपम हैज।
2: व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट।
1: तो तब मुझे लगा, बट मुझे अराइवल का एहसास हुआ था जब कर्मा का मुहूर्त शॉट हुआ था महबूब स्टूडियो में। दिलीप साहब एक तरफ, दूसरी तरफ नसीरुद्दीन शाह साहब, श्रीदेवी, पूनम ढिल्लों जी, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर और मैं बीच में था दिलीप साहब के साथ। और जब हाथ उठा के हमने कर्मा बोला था और सतीश कौशिक तो क्राउड में था, तो उसने मुझे पीछे आके कहा कि अब तो तू मेरा दोस्त बन जा, क्योंकि अब मैं तेरे साथ कॉम्पीट नहीं कर सकता। आई थिंक दैट वॉज द टाइम व्हेन आई फेल्ट आई हैव अराइव्ड, इफ यू वॉन्ट टू लुक इट इन टू फिल्मी लैंग्वेज। अदरवाइज It's been an amazing journey.
2: What a role, sir. Dr. Dang, Thappad ki Goonj, aaj bhi sunai deti hai. Aapka Saransh ka bhi bahut appreciate hua, magar Karma is a different.
1: Karma. In fact, Subhash Ghai sahab ne mujhe bahut bada pedestal diya tha Karma mein lekar. Phir uske baad Ram Lakhan mein jo climax ka gaana hai, AG OG, wo mujhse aur Satish Kaushik se gawaya tha. सो आई थिंक उसके बाद भी कितने उतार चढ़ाव ये सब देखे हैं, बहुत अलग है। मैंने पहला घर लिया था B23 कालूमल एस्टेट, रमेश बहल साहब जी के का फ्लैट था वो, रोज मूवीज वालों का, तो उनसे लिया था। फिर मैं शुरू में किरण के फ्लैट में रहता था सिकंदर के। बट एवरी टाइम आई हैव फेल्ट लो, द सिटी हैज गिवन मी। मैं कितने दिन मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे रहा, कितने दिन मैं बीच पे जाता। मैंने समुंदर में जिंदगी में समुंदर देखा ही नहीं था। मैंने पहली बार समुंदर देखा था और इसलिए मैं समझता हूँ कि जब बीच पे बहुत भीड़ होती है शुरू में थोड़ा सा लगता है अरे यार ट्रैफिक होगा, फिर मैं कहता हूँ अरे भाई आज से कुछ साल पहले तुम ही यहाँ खड़े थे, तो जितने लोग यहाँ आए हुए हैं समुंदर देखने उनकी आंखों में भी वही चमक है या वही अभिलाषा है जो आज से बहुत साल पहले मेरे सालों में था। दिल की शूटिंग हुई थी ना इंद्र कुमार जी की, वो बंगला आज शाहरुख खान का है। हाँ,
2: अच्छा।
1: तो वहाँ का चप्पे चप्पे को मैं जानता हूँ बिफोर इट बिकेम मन्नत। और अब और उसके बाद जब ऑफकोर्स जब मैं शाहरुख साहब के घर गया था तो मैंने देखा था। बट दिल की कितनी शूटिंग हमने उसके ड्राइंग रूम में की है, वो जितने भी सीन हमने किए हैं वहीं पर, बाहर उसकी मेरी और अन्नू कपूर जी की जो फाइट होती है, बेटा की भी शूटिंग वहाँ पर की थी। या हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं यहाँ पर, सी रॉक में कितनी पार्टीज हुई थी। सी रॉक की पार्टी में सुभाष घई साहब पार्टी से निकल रहे थे और मैं पार्टी में जा रहा था और उन्होंने मुझे, जब लंबी वॉक थी मेरी गाड़ी, मेरे पास MAP 5068 Fiat थी पिस्ताशियो कलर की, उसके बाद किसी गाड़ी का नंबर याद नहीं रहा। तो मुझे जब देख के आया तो मुझे सुभाष घई साहब ने कहा कल मेरे ऑफिस में आओ। तो मैं नेक्स्ट डे ऑफिस में आया तो उन्होंने मुझे कहा कि कर्मा के मेन विलन हो। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों आपने मुझे लिया, तो कहते हैं कि मैंने तेरी वॉक देखी ना तो मुझे ऐसा ही चाहिए था विलन। तो आपको पता ही ऐसा नहीं कि मेरी कोई बहुत धुरंधर, मेरी माधुरी से मुलाकात भी सी रॉक में के डबिंग थिएटर में हुई थी। वो अबोध की डबिंग कर रही थी और मैं सारांश की डबिंग कर रहा था। कितने सारे इसके यहाँ पर, ऑफकोर्स गेटवे ऑफ इंडिया, ये शिवाजी पार्क, ये सब तो हैं ही, महालक्ष्मी टेम्पल। महालक्ष्मी टेम्पल के पास एक छोटा सा टेम्पल था नीचे, अब तो मैंने अभी परसों में वहां से गुजरा तो बड़ा हो गया, पर पहले सिर्फ सड़क पे था इतना सा। तो मैं उस टेम्पल में बहुत जाता था कि मेरा भाई कुछ कर दो, कुछ हो जाए। द फर्स्ट पर्सन हु स्पोक टू मी नाइसली वाज राही मासूम रजा, द ग्रेट राइटर, लिरिसिस्ट, महाभारत के राइटर। और तो उनको मैंने फोन किया था, तो उनको मैंने, नदीम खान साहब के कैमरामैन के फादर, तो मैं फोन करता था। उन दिनों तो ये कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं होते थे, कोई प्लेटफॉर्म नहीं होते थे, फोन करना होता था, एक डायरेक्टरी आती थी, फिल्म डायरेक्टरी। तो राही साहब को मैंने फोन किया था, तो उन्होंने मुझसे कहा था, अरे हाँ भाई बोलिए आप कहाँ से हैं। मैंने कहा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, आइए आइए कल आ जाइए। सो दैट फेल्ट वेरी गुड। वो उधर बैंड्रा चर्च के पास रहते थे, तो मैं उनके घर गया था। यश चोपड़ा जी मेरा प्ले देखने आए थे, किरण की मुलाकात मेरी मुंबई में हुई थी, यश चोपड़ा जी प्ले देखने आए थे, डिजायर अंडर द एल्म्स, और उन्होंने मुझे कहा था कि तू सवेरे कार चला जाएं। और मैं जब घर गया तो उनके घर के बाहर एक छोटा सा रूम है, उन्होंने मुझे याद है लस्सी पिलाई थी। फिर उन्होंने कहा तेरा प्ले देखा कल, यू आर देयर फॉर बिगर थिंग्स, डोंट डू दिस रोल जो मैं तेरे को ऑफर करने की सोच रहा था। फिर उन्होंने मुझे विजय फिल्म में रोल दिया जो ओरिजिनली दिलीप साहब करने वाले थे। तो आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू दिस सिटी, मुंबा देवी, दिस सिटी, यहाँ। ये वो जो गाना ना, एक अकेला इस शहर में रात में या दोपहर में आबो दाना ढूंढता है, वो बिल्कुल फिट है।
2: खेर साहब, एक सेलिब्रिटी बनने की कीमत कितनी चुकानी पड़ती है?
1: कुछ नहीं चुकानी पड़ती सेलिब्रिटी बनने की कीमत। जो ऐसा बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। अब सेलिब्रिटी बनने पूरी जिंदगी आप यही चाहते थे, 37 रुपए लेकर आया था मैं, सेलिब्रिटी बन गया, मैं कहूँ जी मेरे को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। क्या कीमत चुकानी पड़ती है? आप एयरपोर्ट पे जाते हो, आपको प्यार से लेके जाया जाता है, आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आपको आसानी से रिजर्वेशन मिल जाता है, आप कहीं जाते हो आपको बुलाए, फंक्शनों पे बुलाया जाता है, अवार्ड फंक्शन बुलाया जाता है, इसमें कीमत क्या चुकानी है? क्या कीमत? प्राइवेसी की लोग बात करते हैं, क्या प्राइवेसी? पूरी जिंदगी हम चाहते हैं कि हम कुछ बन जाएं, और जैसे ही कुछ बन जाते हैं फिर डार्क ग्लासेस पहन लेते हैं, अब हमें कोई पहचाने नहीं। अरे यार, अरे पहचानने के लिए तो इडियट कुछ बनना चाहा है, और जब बन गए तो वही पहचान छुपाना चाहते हो। कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ी। आई विल वॉन्ट टू बी अगेन एंड अगेन इन एवरी बर्थ, इफ आई हैव टू बी एन एक्टर आई वुड लाइक टू हैव द सेम जर्नी। दो चीजें मैंने बहुत साल पहले सोच ली थी कि मुझे क्या चाहिए ज्यादा, पॉपुलैरिटी या रिस्पेक्ट। आई चोज रिस्पेक्ट एंड आई फॉलोड दैट पाथ एंड आई एम हैप्पी दैट आई चोज। पॉपुलर तो आजकल जो हर इंसान, कोई ना कोई वायरल हो जाता है वो भी पॉपुलर होता है, पॉपुलर तो सभी होते हैं। सॉरी, आप
2: अभी हमने डेविड जी का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा मेरे हिसाब से मेरी लास्ट फिल्म है, मतलब मैं रिटायर हूं।
1: मैंने डेविड को डांटा भी था फोन पे, मैंने कहा क्या मतलब मेरी लास्ट फिल्म है? हु आर यू टू डिसाइड ये तेरी लास्ट फिल्म है? इफ ऑडियंस लव्स यू, डोंट से दैट दिस ये मेरी लास्ट फिल्म है।
2: उन्होंने बोला बच्चे चाहते हैं मैं रिलैक्स करूं, रेस्ट करूं।
1: बच्चे जो चाहते हैं वो कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं कि वो भी एक दिन बाप बनेंगे, बच्चे भूल जाते हैं कि वो भी एक दिन ग्रैंडफादर बनेंगे। वरुण को या रोहित को कैसा लगेगा कि अगर आज से 50 साल पहले उनका बेटा या उनकी बेटी बोलेंगी पापा आपने बहुत काम कर लिया है अब आप रिटायर हो जाइए। मेरे फादर की फिलॉसफी थी कि रिटायर्ड क्या होता है, जब तक टांगों पे आप खड़े हो सकते हैं आप रिटायर नहीं होते। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली फेल सिक, बट रिटायरमेंट क्या होती है? और हम तो लकी हैं उस प्रोफेशन में जहां रिटायरमेंट की एज नहीं है। कैन यू इमेजिन कि कितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनको 58 साल की या 55 साल की उन्हें बता दिया जाता है कि यू आर नाउ इनकेपेबल ऑफ वर्किंग सो यू नीड टू रिटायर। बट इन आवर प्रोफेशन 96 की उम्र में क्लिंट ईस्टवुड, अब उन्होंने कहा है कि मैं फिल्म नहीं बनाऊंगा, 94 की उम्र तक बना रहे थे। तो डेविड तो अभी 80 भी नहीं पहुंचा। डेविड यू शुड कंटिन्यू टू डायरेक्ट फिल्म्स। व्हाट डू यू मीन मेरे बच्चों ने मुझे बोला है रिटायर हो जाना चाहिए? क्या होता है रिटायरमेंट? उनको बोलो चुप करो, रिश्ते में मैं तुम्हारा बाप लगता हूं। योर माइंड इज सो अलाइव, योर माइंड इज सो अमेजिंग, योर माइंड इज सो फर्टाइल। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे शरीर का तो होता ही रहता है, वो तो यंग लोगों का भी होता है। कंटिन्यू
2: जिनकी आपने बात की, रिश्ते में तुम्हारे बाप लगते हैं, बच्चन साहब के साथ आपके कैसे?
1: बच्चन साहब इज अ ग्रेट इंस्पिरेशन, व्हाट एन इंस्पिरेशन। बच्चन साहब क्यों नहीं रिटायर हो रहे? बच्चन साहब आज भी दौड़ते हुए अंदर एंट्री लेते हैं, कौन बनेगा करोड़पति में, दौड़ते हुए एंट्री लेते हैं। उड़ा ये मैंने ऊंचाई फिल्म की थी, उन्होंने किक कभी भी वैसी मारी थी जो मेरे सिर के ऊपर से गई थी। उन्होंने मुझे सिखाया था ना कि गर्मी के बारे में सोचता हूँ तो लगती है, नहीं सोचता तो नहीं लगती। बच्चन साहब इज एन इंस्पिरेशन, ही विल ऑलवेज रिमेन एन इंस्पिरेशन एवरी टाइम. एक दिन मैंने उनके मैं वॉक पे गया था, मैं उनके बहुत सारे लोग फोटो खिंचाते ना वो खड़े होकर जलसा के बाहर, तो मैंने भी वीडियो बनाया था और सब लोग को भेज दिया था, जया जी को भेज दिया था, अमित जी को भेज दिया था, अभिषेक को भेज दिया था, सब लोग हंसे कि तुम पागल हो. मैंने कहा अमिताभ जी बच्चन ये आप मेरी इंस्पिरेशन हो, मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ, चाहे मैं संडे की भीड़ में नहीं हूँ लेकिन मैं उसी भीड़ का मेंबर हूँ जो आपके दर्शन के लिए हर संडे को यहाँ आते हैं. कहाँ ऐसे लोग बनते हैं, कहाँ बनते हैं ऐसे लोग. इवन अनिल आई थिंक इज सो इंस्पायरिंग. सो ऐसी कुछ लोग चाहिए होते हैं लाइफ में ऐसी.
2: बट किसी से आपका जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है उसके साथ काम करना कितना आसान होता है या मुश्किल होता है?
1: Professionalism is separate from your personal life. And to since you asked me this question, I'm a very great admirer of Nasiruddin Shah Sahab. I like him both as a person and of course as an actor. और वो जो मेरे बारे में छोटा छोटा छोटा छोटा करते रहते हैं ना, आई थिंक वो बुजुर्ग के हैसियत से करते हैं, हालांकि वो बुजुर्ग इतने हुए नहीं अभी, बट वो थोड़े से ऐसे ही हैं. मैं उनको प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा, और वो अभी मुझे मिले थे रिसेंटली हमारे पाठक साहब के प्रेयर सेरेमनी में, तो उन्होंने कहा यार तू छोड़ दे फिर गले वाले लगे. तो आई थिंक उनसे मैंने बहुत सीखा है. मुझे वो विजुअल कभी भूलता ही नहीं है, जब हम चर्च के पास महबूब स्टूडियो से पहले वो अपनी गाड़ी में जा रहे थे और मैंने नई गाड़ी खरीदी थी और मैं चला रहा था गाड़ी, तो उन्होंने मुझे देखा और बड़े खुश हुए थे. उन्होंने कहा या दैट्स वेरी गुड. सो मुझे एज ए प्रोफेशनल एक्टर यू आर टॉट टू वर्क विद एनीबडी दैट यू डोंट लाइक. सो मेनी पीपल यू डोंट लाइक सर्टन एट सम स्टेजेस और द अदर, यू ह्यूमन है, बट काम करना होता है. मैं बहुत सारे ऐसे लोगों का बाप बना हूं जो मेरे से उम्र में बड़े हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि मैंने, बट वो प्रोफेशन है. मैंने तो शुरुआत ही अपने 65 साल के बुजुर्ग के हैसियत से की थी. मैं ऋषि कपूर जी को बहुत मजाक उड़ाता था, मुझसे 3 साल बड़े थे वो, तो मैं कहता था ये आप, मैं आपके बाप का रोल कर रहा हूँ. मैं उनके दादा का भी रोल किया था विजय फिल्म में, हाँ हेमा जी के फादर का रोल किया था. बट दैट्स अ प्रोफेशन, दैट्स अ रोल दैट आई हैव टू डू, दैट्स ऑल राइट.
2: बट आप रखते कुछ नहीं हो अपने पास, जवाब देने में आप एक्सपर्ट हो,
1: जरूरी है जवाब देना बहुत जरूरी है. मैं अपने अंदर क्यों रखूं, मैं क्यों मरता रहूं कि अरे यार मुझे इसको ये बोलना चाहिए था. कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये बोल सकता था मगर बोलते नहीं है. इफ ए पर्सन लव्स यू देन ही शुड लव यू ऑल्सो आफ्टर यू हैव रिप्लाइड टू दैट पर्सन. मैं उस बात का बोझ अपने अंदर क्यों रखूं, ये आपको सिखाता है, खुददारी से ये सिखाती है, इसको खुददारी भी कहते हैं. सो बट ह्यूमिलिटी भी है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है.
2: जज साहब को भी डांट दिया था एक फंक्शन में.
1: हाँ मतलब जरूरी था, मुझे लगा मैं तो दूसरी स्पीच लेकर गया था, मैं कोई और स्पीच लेके गया था तैयार करके, जब वो इनटॉलरेंस की नॉनसेंस चल रही थी, तो उसमें मुझे लगा कि वो कुछ जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है. ही वॉज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन पे थे वो, तो आदमी वो डरता है. मेरे ग्रैंडफादर ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि इफ़ यू वॉन्ट टू बी इक्वल विद एनीबडी इन द वर्ल्ड, अगर आप किसी के भी समान किसी के बराबर होना चाहते हो तो उससे कुछ एक्सपेक्ट मत करो. मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, तो मैं आपके बराबर का हुआ, फिर आप किसी पर बड़े ओहदे से बड़े ओहदे पर हो, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, तो बोल देना चाहिए. और मैं तो गटर से आया हूँ, यहाँ पर मैं सड़कों पे आज नीचे सड़क देते हैं इन पर मैं कितना चला हूँ, अपने बलबूते पे बनाऊँ. ऑफकोर्स मुझे बहुत सारे लोगों ने मेरा साथ दिया, डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स एक्टर्स सब लोगों ने, बट आया मैं बिल्कुल ज़ीरो तरीके से हूँ. और मैं आज जिस भी मुकाम में पहुँचा हूँ, 552वीं फिल्म कर रहा हूँ, 45 साल इस शहर में हो गए हैं, ये पीछे अवार्ड्स वार्ड सब लगे हुए हैं, आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम, बट आई डू नॉट कैरी द बर्डन ऑफ अनुपम खेर ऑन माई शोल्डर्स. आई लाइक टू फ्लाई हाई, और उसके लिए बोझ उतारना बहुत ज़रूरी है.
2: जब आप मेहनत करते हैं सर एज ए डायरेक्टर या एज ए एक्टर, कोई फिल्म सफल नहीं होती, मैंने तब भी आपको निराश नहीं देखा, कभी दुखी नहीं देखा, ये इंस्पिरेशन कैसे मिलती, कहाँ से आता है ये?
1: मैं वो दिन याद करता हूँ, 3 जून 1981 को मैं इस शहर में 37 रुपीस लेके उतरा था. आज आप मेरे ऑफिस के 6th फ्लोर पे बैठे हुए हैं, आपने मेरा ट्रॉफी वाला रूम भी देखा होगा. तो अब मैं इस बात से परेशान हो जाऊं। मैंने पूरी मेहनत की थी तन्वी द ग्रेट में, बहुत मेहनत की थी, और मेरी जिंदगी के 3 बेहतरीन साल थे वो। उसने मुझे इतना कुछ सिखाया। यस, इट डिड नॉट डू कमर्शियली वेल, बट इट इज डन वेरी वेल ऑन Amazon Prime. Now we have sent it to another place. Devanand साहब ने एक बात की थी यार, आगे बढ़ते रहना चाहिए अनुपम, आगे बढ़ते रहना चाहिए। What is important is आगे बढ़ते रहना। हम इसी बात पे अफसोस, अरे अरे मैं नहीं, मैं भैया तू 37 रुपए लेके आया था इस शहर में, आज तू 45 सालों में कहाँ से कहाँ पहुँच गया, उस बात से खुश रह। तो दुखी होना सबसे आसान होता है, पर मैं कहता हूँ कि खुश होना भी सबसे आसान होता है। मैं आज जो भी हूँ थिएटर की वजह से, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, कुछ भी हो सकता था, पहले भी मैंने एक प्ले किया था सालगिरह किरण के साथ। थिएटर मुझे और मेरे, मुझे एज ए पर्सन और मुझे एज एन एक्टर जिंदा रखता है, क्योंकि स्टेज पर जब आप होते हैं तो लाइव ऑडियंस आपका प्ले देख रही होती है, कोई रीटेक नहीं होता है, और जाने पहचाने, और जो भी मैंने प्ले चुना है वो हमेशा ऐसा चुना है जिससे ऑडियंस जो है वो आइडेंटिफाई कर सके। जाने पहचाने अनजाने जब मैंने शुरू किया था तो मुझे नहीं पता था कि, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आपने अभी असफलता की बात की, इसकी सफलता की कोई हद ही नहीं है। जहां जा रहे हैं हम, हाउसफुल शोज हो रहे हैं, हमने दिल्ली में 3 दिन में 6 शोज किए हाउसफुल, अभी हम 7 तारीख को अनदर प्ले ऑलरेडी हाउसफुल, 13 तारीख को NCPA में ऑलरेडी हाउसफुल। तो सिर्फ इसलिए नहीं कि इसमें अनुपम खेर काम कर रहे हैं, बिकॉज प्ले अच्छा है, प्ले देखते वक्त लोग उसमें आइडेंटिफाई कर रहे हैं। प्ले 3 हिस्सों में बटा हुआ है, लोग जो रिटायर हो चुके हैं, लोग जो मिडिल एज में हैं, और लोग जो यंग हैं। तो हर तबका जो ऑडियंस में बैठा होता है वो उससे आइडेंटिफाई करता है। और मेरे फादर, ग्रैंडफादर कहते थे, ए बिजी मैन हैज टाइम फॉर एवरीथिंग, बोल रहे थे।
2: पर हर कोई आप जैसा नहीं होता ना, जब से आपके बाल गए तो रेड लाइट पे कंघी खरीदना आपका एक नया शक्ल हो गया, जस्ट बिकॉज उस आदमी से हेलो करने के लिए।
1: वो राजू जो मेरा बुजुर्ग इंसान, वो उसकी मुस्कुराहट इतनी कमाल है, जब भी रेड लाइट पे खड़ी होती मुझे कंघी बेचता है। तो शुरुआत में तो मैंने उसको कहा कि मेरे को कंघी खेता, ये बात भी सही है, आपको तो नहीं बेचनी चाहिए।
2: बट आपने खरीदी?
1: मैं लिया, हाँ खरीदा, दत्तू को दे देता हूँ, मेरे असिस्टेंट को।
2: तो ये जो कॉमन मैन आपके अंदर जिंदा रहता है, कई बार हमने देखा सिग्नल से आप बच्चों को लेके बाकायदा एक 5 स्टार में खाना खिलाने जाते हैं आप, शायद उनको 5 स्टार होटल वालों को, एक
1: उन बच्चों में मैं अपने आप को देखता हूं।
2: वो क्या रीजन है, क्यों आप ऐसा करते हैं?
1: आई थिंक इट इज अ लॉट टू डू विद माय बैकग्राउंड। मेरे घर वाले, जहाँ दादा दादी पिताजी माताजी, उनको, उन्होंने हमें हमेशा ग्राउंडेड रहना सिखाया है। सक्सेस जो है वो बहुत ही फ्रेजाइल है, आती है जाती है, और लोगों से जो कांटेक्ट है दैट इज योर रिचनेस। उन बच्चों को जो मैं, उनमें मैं अपने आप को देखता हूँ। हालांकि जब मैं यहाँ आया था तो मैं 24-25 साल का था, बट आई सी देन, एंड इट इज, मेरे फादर कहा करते थे, द इजिएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज टू मेक समबडी हैप्पी। आई ट्राई एंड डू दैट। बड़ा आसान होता है लोगों को खुश करना, और हम उसमें इतना डिफिकल्ट बना देते हैं।
2: खेर साहब कहते हैं इस शहर में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, खासकर बॉलीवुड में बोलते हैं, बट आपने तो एक दोस्ती बनाई भी, निभाई भी। सतीश कौशिक जी, अनिल कपूर साहब, मुझे 2 दोस्त तो पता है, और पता नहीं कितने लिस्ट है आपकी। और आफ्टर सतीश जी के जाने के बाद सबसे ज़्यादा आप उनको मिस करते हैं।
1: बहुत मिस करता
2: आप उनकी बिटिया के साथ जिस तरह से रिलेशन मेंटेन करते हैं, बहुत मुश्किल होता है ये कहना कि दोस्त नहीं होता। दोस्त तो होता है, हर इंसान का दोस्त होता है ना।
1: देखिए आप, दोस्त आपके दोस्त आपको ज़मीन पर रखते हैं। सतीश कौशिक मेरे दोस्त, 2 दोस्त और हैं जो बचपन के दोस्त हैं, विजय सहगल, सतीश मल्होत्रा। सतीश मल्होत्रा मोहाली में रहता है, विजय सहगल दिल्ली में रहता है। ये आपको ग्राउंडेड रखते हैं, ये आपसे कभी कुछ नहीं मांगते, ये आपको अभी भी साफ बोलते हैं, यार बड़ा बकवास काम किया तूने इस फिल्म में, या ये तुमको नहीं करना चाहिए था। तो वो बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको पहले भी बताया कि आई एम ए पीपल्स पर्सन, मुझे अच्छा लगता है, मुझे दोस्त बनाना अच्छा लगता है। बट ऑफकोर्स सतीश के जाने का बहुत तकलीफ होती कभी कभी कभी कभी मैं उसके ऑफिस से गुजरता हूँ। उसका बर्थडे था अभी रिसेंटली 13 अप्रैल को, मैं उसके बर्थडे पे उसको विश नहीं करता हूँ ऐसे, बट आई डू मिस हिम, आई मिस हिम बिकॉज ही वॉज लाइक ए हैबिट, ही वॉज लाइक ए बैड हैबिट। अच्छी हैबिट फिर भी छूट जाती है, बुरी हैबिट नहीं छूटती है, बट इट्स ओके, मीन्स That's what life is all about.
2: अनिल कपूर साहब से क्या बातें होती हैं ऐसे दोस्ती में आपकी?
1: रैंडम नॉर्मल चीजें, आज कितना सोया, कितने घंटे सोया, ऑरा पहनी है, 7 घंटे सोया, अच्छा मैं तो 8 घंटे सोया, अच्छा तू 8 घंटे ज्यादा सोया, वर्कआउट कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, और क्या हो रहा है, और क्या हो रहा है, कभी कभी साइलेंट भी बैठे रहते हैं। खाना उसके घर खाता रहता हूँ, उसके घर बड़ा अच्छा खाना बनता है, सुकून है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है यू लुक फॉर सुकून। फिल्मों में जो रिश्ते होते हैं वो उस दौरान होते हैं जब आप फिल्में, एंड अगर आप अपनी अपनी सेम लेवल पर या सेम फ्रीक्वेंसी पे के दोस्त आपको मिल जाए या लोग मिल जाए तो लाइफ बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो आई हैव ग्रेट मेमोरीज ऑफ वर्किंग विद शाहरुख खान, वेदर इट वॉज दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वेदर इट वॉज चाहत, वेदर इट वॉज सो मेनी, कुछ भी कुछ कुछ होता है। आई हैव ग्रेट मेमोरीज ऑफ, बिकॉज आई हैव मेमोरीज ऑफ पीपल एंड पीपल गिव यू बिगर मेमोरीज। सलमान के साथ मुझे बड़ा अच्छा लगा, आमिर के साथ मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं, दिल दिल है कि मानता नहीं, कुछ डिफरेंसेस होते रहते हैं मगर ऐसे जैसे जैसे जिंदगी गुजरती है वो आयरन आउट हो जाता है। मैंने नसीर साहब के साथ भी काम किया है अवेयरनेस डे में, मिसाल में एक बहुत पहले काम किया, अक्षय के साथ बड़ा मजा, अक्षय इज अ वेरी फनी मैन। अक्षय मुझे कहीं भी हो मेरे बर्थडे पे वो मुझे फ़ोन करता है और उसके बर्थडे पे मैं करता हूँ स्पेशल 26। अमेजिंग, आई लव वर्किंग विद हिम। बेबी नीरज पांडे के साथ मैंने कितना काम किया है। अक्षय इज़ अ ग्रेट गाय टू वर्क विद। एक तो मेरे को भी सुबह जल्दी उठने की बीमारी है, टाइम पे पहुँचने की बीमारी है, एंड इट्स वंडरफुल टू सी, एंड ही इज़ वेरी ईजी पर्सन टू वर्क विद। ही हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ चार्म, ग्रेट सेंस ऑफ पंजाबी वार्म्थ, एंड ही इज रेडी टू इम्प्रोवाइज एंड ही हैज जेन्युइन लव फॉर मी। सो आई थिंक इट्स ग्रेट। इवन टुडेज जनरेशन ऑल्सो आई वर्क विद सिद्धार्थ मल्होत्रा, आई वर्क विद वरुण धवन, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अदर यंगर जनरेशन बिकॉज यू गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम। जी के साथ मैंने बहुत, मेरे यश जी बहुत अच्छे दोस्त।
3: बहू और बेटियां में आज देखिए बनते बिगड़ते रिश्तों की कहानियां। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: Step into timeless classical music. Works from the masters. Brought to life by world-class orchestras, conductors, and soloists. From past to present. Every performance played with depth, precision, and care. Music that has lasted for generations and still feels just as powerful today. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Classical Hits and start listening now.
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देशवासियों से फॉरेन ट्रिप के बजाय स्वदेश घूमने की अपील की, तो जेएनटी भी आप लोगों से अपने आसपास की खूबसूरत ऐतिहासिक जगहों की तस्वीरें और वीडियोस को शेयर करने की लगातार अपील कर रहा है, और हम आपके भेजे गए उन वीडियोस को जेएनटी पर लगातार दिखा भी रहे हैं। तो चलिए आज आपको बिहार के बेगूसराय लेकर चलते हैं, जहां का एक ऐतिहासिक राम जानकी मंदिर आस्था और विश्वास की जीती जागती मिसाल है।

0: हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिनी ब्लॉग। तो आपका स्वागत है एक छोटा सा ब्लॉग में घुमक्कड़ विशाल। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे सलोना बड़ी ठाकुरबाड़ी
1: का मुख्य द्वार है, तो मैं इससे अंदर प्रवेश कर रहा हूँ और सामने में ये प्यारा सा महल का यह दृश्य काफी सुंदर दिख रहे हैं, तो मैं इससे अंदर की ओर और बढ़ रहा हूँ।
0: सामने आप देख सकते हैं नागर शैली में निर्मित प्यारा सा लाल पत्थर से नक्काशी गई मंदिर जो ठाकुर जी को समर्पित है। यह मंदिर लगभग 300 साल पुराना है। इसे बनवाने में 16 वर्षों का समय लगा था, जो इस मूर्ति कला और स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना प्रदर्शित करता है।
1: तो आप देख सकते हैं यह मंदिर ठाकुर जी राम लला को समर्पित है। काफी सुंदर पत्थर की नक्काशी मूर्ति स्थापित है अंदर, तो आपको हम नजदीक से दिखा रहे हैं। मंदिर में सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान के साथ अन्य भी भगवान विराजमान हैं। राम लला का आशीर्वाद लेके अब मैं आगे मंदिर परिसर का भ्रमण करूंगा और आपको भी दिखाऊंगा। तो देखते रहे मंदिर को कितने अद्भुत तरीकों से तराशा गया है। काफी सुंदर कलाकृति आप देख सकते हैं मंदिर की। मंदिर के शिखर की छत पे आ चुका और यहाँ से आपको यह अद्भुत कलाकृतियाँ लाल पत्थर से निर्मित यह मंदिर आपको नजदीक से दिखा रहा हूँ। सामने आप देख सकते हैं पत्थर की बनी हुई गेट है। सब देखने के बाद इस परिसर में स्थित यह तालाब देख रहे हैं, यह काफी सुंदर हरा भरा चारों ओर वृक्ष लगा हुआ है।
2: तो आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प में आप भी भागीदार बने। बस आपको करना सिर्फ इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने का कोई खास कारण है, तो उठाइए अपना कैमरा और बना दीजिए ब्लॉग और फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। हम उसे गुड न्यूज टुडे पर जरूर दिखाएंगे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: Stay in the game with TuneIn. Hear nonstop sports talk, live games, and coverage that never slows down. Keep up with your favorite teams from every play to every post-game breakdown. Listen to sports stations like ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, catch live games all year round, so you never miss a moment of sports action. Start listening on TuneIn.
1: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
9: भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग का सपना हुआ साकार। जोजिला टनल लगभग बनकर तैयार। 3 घंटे का सफर 15 मिनट में होगा तय। यातायात के लिए जल्द खोला जाएगा। पर्यटकों को लुभा रहा पहाड़ों का सुहाना मौसम। नैनीताल में पर्यटकों की भारी भीड़, सड़कों पर लग रहा लंबा जाम। सैलानियों की बढ़ती भीड़ से स्थानीय कारोबारी खुश। मॉनसून ने भारत में दी दस्तक। केरल में पहुंचा मॉनसून। मौसम विभाग ने दी जानकारी, अगले कुछ दिन केरल तमिलनाडु कर्नाटक में भारी बारिश का जताया गया अनुमान। तमिलनाडु में धूमधाम से मना वैकासी, विशाखम और तिरुकल्याणम। विशेष रूप से सजाए गए मुरुगन मंदिर, विशेष महाअभिषेकम और कंडा पुराण पाठ का आयोजन। अपनी फिल्म पेडी की कामयाबी की कामना लेकर तिरुमला मंदिर पहुंची अभिनेत्री जानवी कपूर। फिल्म में साउथ सुपरस्टार रामचरण के साथ मुख्य भूमिका में हैं जानवी।
8: एनईसीसी, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
9: सज गई है खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज के मेन्यू। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा पाराशु। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषा नहीं है। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे 5 मिनट सच्ची खबरों के साथ।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें।
9: आज केरल पहुंच सकता है दक्षिण पश्चिम मानसून। मौसम विभाग ने आज मानसून की केरल पहुंचने का जताया है अनुमान। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में भारी बारिश का जताया अनुमान। दिल्ली एनसीआर में आज आंधी बारिश का अलर्ट। यूपी, बिहार समेत 15 राज्यों में बारिश की चेतावनी। मनाली में जोरदार बारिश, लोगों को गर्मी से मिली यहां पर राहत। पर्यटकों को लुभा रहा जम्मू कश्मीर का सुहाना मौसम। उत्तर भारत में पड़ रही प्रचंड गर्मी से राहत के लिए छुट्टियां मनाने जम्मू कश्मीर पहुंच रहे लोग। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। 45 दिनों में अब तक 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे सबसे ज्यादा भक्त। आंकड़ा पहुंचा करीब 11 लाख। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल। तमिलनाडु के मायिलादुथूरई के मयूरनंतर मंदिर में फ्लोट उत्सव की रौनक। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल। तमिलनाडु में धूमधाम से मनाया गया वैकासी, विशाखम और तिरुकल्याणम। विशेष रूप से सजाए गए मुरुगन मंदिर। द्रास में द्रास समर कार्निवल का आगाज किया गया। कई तरह के खेलों में बड़ी संख्या में सैलानियों ने और खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा में उधम सिंह नगर की बेटी जसमीत कौर ने किया टॉप। परिवार में खुशी की लहर। मुंबई में 2.5 अक्षर राष्ट्रपत्र लेखन प्रतियोगिता के विजेताओं को किया गया सम्मानित। दीनदयाल स्पर्श योजना पुरस्कार का वितरण भी किया गया। बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर में विद्यासागर विश्वविद्यालय के 23वें दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि इसमें शामिल हुए। ओडिशा के 6 उम्मीदवारों का अग्निवीर योजना में चयन हुआ। भद्रक की दीप्तिमयी सारंगी ने हासिल किया 5वां स्थान। फूलों की खुशबू से महक रहा है जामनगर जिले का मुखाड़ा गांव। यहां पर पारंपरिक खेती से हटकर फूलों की खेती कर रहे किसान। हरियाणा के करनाल की सीता बनी महिला सशक्तिकरण की कहानी। ड्रोन पायलट बनकर किसानों में करती है छिड़काव। प्रति एकड़ 350 रुपए होती है कमाई। गुजरात में आज विश्व की पहली योगासना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 का किया गया आयोजन। अहमदाबाद के एका एरेना में 8 जून तक चलेगी प्रतियोगिता। इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता में 60 से ज्यादा देशों के 500 से ज्यादा एथलीट लेंगे हिस्सा। 7 कैटेगरी में अपनी कला एथलेटिज्म का करेंगे प्रदर्शन। इंदौर में प्रदेश की सबसे बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज। आदित्य बिरला ग्रुप एमपीएल टी20 सिंधिया कप 2026 के नाम से भी जानी जाती है प्रतियोगिता।
5: सिनेमाघर में रिलीज हुई फिल्म पेडी। फिल्म में रामचरण, जानवी कपूर, शिवा, राजकुमार, जगपति बाबू समेत तमाम एक्टर्स आपको नजर आएंगे। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के दरबार में पहुंची अभिनेत्री जानवी कपूर। फिल्म पैडी की सफलता की कामना की। कल सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म बंदर। बॉबी देओल ने फिल्म में समर का किरदार निभाया। धुरंधर फ्रेंचाइजी के फैन हुए मुकेश अंबानी। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 की तारीफ कर रहे। जम्मू कश्मीर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को मंजूरी मिल गई है। 7 से 11 सितंबर तक होगा इसका आयोजन।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: खबरों के बाद खबरें विस्तार से आपके लिए, खबरों की प्लेट तैयार है।
2: तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ट्रेंडिंग न्यूज के साथ।
1: मौसम विभाग ने दी मॉनसून की गुड न्यूज, मॉनसूनी बादलों ने दी केरल में दस्तक, अगले कुछ दिन तटीय राज्यों में बारिश के आसार।
2: जून के महीने में सैलानियों से गुलजार हुए ज्यादा हिल स्टेशन, पर्यटन से जुड़े कारोबार में भी बहार देखी जा रही।
1: अब पूरे साल सड़क मार्ग से जुड़ा रहेगा लद्दाख, कारगिल को श्रीनगर से जोड़ने वाली जोजिला टनल तैयार हो चुकी है।

0: कर रहे हैं, कई बार आपने उनको साथ में स्पॉट किया होगा और अब इस कपल ने शादी के बंधन में बंधने का फैसला कर लिया है।
1: आमिर खान की ये तीसरी शादी होगी किसी बड़े होटल या डेस्टिनेशन वेडिंग की जगह। ये शादी मुंबई में बेहद सादगी के साथ आमिर खान के घर पर ही होने वाली है। शादी को पूरी तरह लाइमलाइट से दूर रखा जाएगा और इस शादी में सिर्फ करीबी परिवार दोस्त शामिल होंगे। मेहमानों की लिस्ट अभी जारी नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि आमिर के करीबी दोस्त शाहरुख और सलमान में शामिल हो सकते हैं, जिनसे गौरी की मुलाकात आमिर पहले ही करवा चुके हैं।
2: करीब 26 साल पुरानी पहचान अब एक खास रिश्ते में बंधने जा रही है। 61 साल के आमिर खान गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रेड से शादी करने जा रहे हैं और इसकी तारीख भी मुकर्रर हो चुकी है। किसी बड़े होटल या डेस्टिनेशन वेडिंग की जगह ये शादी मुंबई में बेहद सादगी के साथ आमिर खान के घर पर ही होगी। शादी को पूरी तरह लाइमलाइट से दूर रखा जाएगा। इस शादी में सिर्फ करीबी परिवार और दोस्त शामिल होंगे। मेहमानों की लिस्ट अभी जारी नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि आमिर के करीबी दोस्त शाहरुख खान और सलमान जश्न में शामिल हो सकते हैं, जिनसे गौरी की मुलाकात आमिर पहले ही करवा चुके हैं।
3: 5 जुलाई को मुंबई में आमिर खान अपने जो है वाउज लेंगे गौरी स्प्रेड के साथ और ये माना जा रहा है कि बहुत ही एक सिंपल फंक्शन होने वाला है, जिसमें उनके सिर्फ परिवार के लोग और करीबी दोस्त शामिल होंगे। ये शादी एक एक ऑफिशियली कहते हैं ना कि आप अपने रिश्ते को एक नाम देना चाहते हो, बस वही है, क्योंकि सोर्सेस की माने तो ये दोनों बहुत ही एक सिक्योर कपल है और काफी समय से साथ है और वो चाहती थी कि अपने रिश्ते को एक सेलिब्रेट करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और शायद इसीलिए डिसीजन लिया गया कि वो 5 जुलाई को शादी करेंगे। और ऑफ कोर्स गेस्ट लिस्ट अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है, बट सलमान खान और शाहरुख खान जो कि आमिर के बहुत ही करीबी दोस्त हैं, वो भी डेफिनेटली आ सकते हैं। बट हमें ये भी नहीं पता है कि वो शायद शूटिंग कर रहे होंगे, तो उनकी अवेलेबिलिटी पे ये डिपेंड करेगा कि वो ये शादी पे आएंगे कि नहीं, बट आमिर डेफिनेटली उन्हें इन्वाइट तो जरूर करेंगे।
2: आमिर ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बताया जा रहा है कि दोनों पारंपरिक रीति रिवाजों के बजाय रजिस्टर्ड मैरिज करेंगे और अपने रिश्ते को कानूनी मान्यता देंगे। ये आमिर खान की तीसरी शादी होगी। आमिर और रीना दत्ता ने 1986 में भागकर शादी की थी। उनके दो बच्चे हैं, आयरा और जुनैद। 16 साल तक साथ रहने के बाद 2002 में दोनों अलग हुए। इसके 3 साल बाद आमिर ने फिल्म डायरेक्टर किरण राव से शादी की, लेकिन 2021 में ये रिश्ता भी टूट गया। इसके बाद आमिर खान की जिंदगी में गौरी स्प्रेड की एंट्री हुई। हालांकि दोनों की पहचान 26 साल पुरानी थी, लेकिन फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, लेकिन 2023 में दोनों की फिर मुलाकात हुई और फिर एक दूसरे के नजदीक आ गए। पिछले साल अपने 60वें जन्मदिन पर आमिर खान ने खुद मीडिया के सामने इस बात का खुलासा किया था और गौरी को तब पहली बार मीडिया के सामने इंट्रोड्यूस किया। आमिर ने तब बताया था कि वे दोनों पिछले करीब 1.5 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। गौरी के साथ अपने रिश्ते पर बात करते हुए आमिर खान ने एक इंटरव्यू में कहा था,
4: मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे गौरी मिली और हमारा रिश्ता शुरू हुआ। वो बेहतरीन है और उनके साथ मुझे बहुत शांति मिलती है। हालांकि रीना दत्ता और किरण राव के साथ भी मेरा रिश्ता बहुत गहरा था, लेकिन चीजें आगे नहीं बढ़ पाई। मैं खुद को खुश नसीब मानता हूँ कि गौरी मेरी जिंदगी में आई। मुझे लगता है अब जाकर मैं मुकम्मल हुआ हूँ।
2: बताया जा रहा है कि आमिर और गौरी करीब 2 साल से परिवार की तरह साथ रह रहे हैं और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। अब दोनों इस रिश्ते को एक नाम देना चाहते हैं और शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं।
3: गौरी स्प्रेड जो है उनकी पुरानी दोस्त थी और बीच में ऑफकोर्स कुछ सालों तक उनसे कोई कांटेक्ट नहीं था, और आमिर खान ने जब अपनी गर्लफ्रेंड से मीडिया को इंट्रोड्यूस किया था तो उन्हें इन्फॉर्म किया था कि वो एक किसी काम के सिलसिले में बैंगलोर गए थे, जहां उन्हें गौरी फिर से मिली और वो जब रिकनेक्ट किए तो वो दोस्ती जो है वो प्यार में तब्दील हो गई और आज के टाइम पे वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कपल है। और क्योंकि एक मैच्योरिटी वाला रिलेशनशिप है, इसलिए आमिर का ये मानना है कि बहुत ही ग्रोथ और इवॉल्व जो आप कहते हैं एक रिश्ते में होते हैं, वो गौरी के साथ उन्होंने एक्सपीरियंस किया है और आज फाइनली 5 जुलाई को उन्होंने अनाउंस किया है कि वो शादी करेंगे।
2: मुंबई से सना फरजीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: तो आमिर भले ही अब तीसरी शादी करने जा रहे हो, लेकिन इससे पहले वो रीना दत्ता और किरण राव के साथ शादी के बंधन में रह चुके हैं। हालांकि इन दोनों शादियों का नतीजा भले ही तलाक रहा, लेकिन इसके बावजूद आमिर का अपनी

0: दोनों पूर्व पत्नियों से रिश्ता आज भी दोस्ताना है।
1: बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान अक्सर अपनी फिल्मों, अपने किरदारों और बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन फिल्मों से इतर आमिर की निजी जिंदगी भी हमेशा सुर्खियों में रही है। रीना दत्ता से पहली शादी, फिर किरण राव से दूसरा विवाह, लेकिन आमिर की ये दोनों ही शादियां भले ही लंबे वक्त तक न चली हों, उनकी एंडिंग हैप्पी ही रही है। यानी तलाक के बाद भी उनका अपनी पूर्व पत्नियों के साथ गहरा और दोस्ताना रिश्ता रहा है। साल था 1986। आमिर खान ने तब बॉलीवुड में कदम ही रखा था। फिल्म कयामत से कयामत तक रिलीज भी नहीं हुई थी कि आमिर ने अपनी पड़ोसी रीना दत्ता से लव मैरिज कर ली। ये प्यार धर्म की दीवारों से परे था। दोनों का रिश्ता करीब 16 साल तक बेहद खूबसूरती से चला। रीना और आमिर के दो बच्चे हुए, जुनैद और इरा खान। लेकिन सालों बाद साल 2002 में इस रिश्ते में दरार आ गई और दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया।
2: तो 16 साल हम साथ में थे रीना और मैं, और जिस दिन का आप जिक्र कर रहे हैं जब रीना और मैं अलग हुए, तो घर एकदम खाली था। वो बच्चों के साथ बगल में एक बिल्डिंग है, हम लोग ने वहाँ पे उनके लिए फ्लैट लिया था, तो वो वहाँ शिफ्ट हो गई। और वो दिन बड़ा मुश्किल, वो रात बड़ी मुश्किल थी मेरे लिए, क्योंकि घर पे कोई नहीं था, मैं अकेला था बिल्कुल। एक्चुअली कुक वो साथ में ले गई थी, और जो मेरा ड्राइवर था मैंने साथ में भेजा था, क्योंकि वो मेरे बहुत भरोसे का ड्राइवर था। मैं चाह रहा था कि वो रीना के साथ रहे, बच्चों के साथ रहे। तो अकेला था मैं घर में, और मैं इतना शैटर्ड था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वैसे तो तब तक मैंने एक आध दफा अल्कोहल मैंने पिया था काम के लिए। तो खैर वो बहुत ही मुश्किल दौर था। करीब 2-3 साल मैंने काम नहीं किया।
1: आमिर और रीना का तलाक उस दौर में बॉलीवुड के लिए एक बड़ा शौक था, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि दोनों ने कभी एक दूसरे पर कोई कीचड़ नहीं उछाला। रीना आज भी आमिर के परिवार का अहम हिस्सा है, अक्सर आमिर और रीना को साथ देखा भी जाता है। रीना से अलग होने के बाद आमिर की जिंदगी में एंट्री हुई किरण राव की। फिल्म लगान के सेट पर दोनों की मुलाकात हुई और साल 2005 में दोनों ने शादी कर ली। किरण और आमिर का एक बेटा है आजाद। किरण और आमिर को बॉलीवुड का सबसे सॉर्टेड कपल माना जाता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के 15 साल बाद जुलाई 2021 में आमिर और किरण ने एक साझा बयान जारी कर सबको चौंका दिया। दोनों ने अलग होने का फैसला लिया, लेकिन इस तलाक की तस्वीर बाकी दुनिया से जुदा थी। दोनों ने हाथ पकड़ कर वीडियो बनाया और कहा, रिश्ता बदला है, खत्म नहीं हुआ। आमिर की दोनों शादियां भले ही मुकम्मल हो नहीं पाई हों, लेकिन उनका अंत खुशगवार ही रहा है। आज भी आमिर खान अपनी दोनों पूर्व पत्नियों रीना और किरण के करीब हैं। बेटी इरा खान की शादी हो या आमिर के प्रोडक्शन की फिल्में, रीना और किरण न सिर्फ आमिर के साथ खड़ी दिखती हैं, बल्कि आपस में भी एक बेहतरीन बॉन्ड शेयर करती हैं। आमतौर पर शादियों का टूटना कड़वाहट और विवादों के साथ होता है, लेकिन आमिर खान ने जैसे इस रिवाज को ही बदल दिया है। अपनी पूर्व पत्नियों के साथ उनका रिश्ता आज भी दोस्ताना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: तो आमिर खान की लगान इसी महीने अपनी सिल्वर जुबली मना रही है। 25 साल पहले आई लगान ने बड़े पर्दे पर धमाल मचा दिया था। सिल्वर जुबली को खास बनाने के लिए लगान एक बार फिर से थिएटर्स में रिलीज की जा रही है। आमिर खान प्रोडक्शंस ने इस री रिलीज को लेकर एक नया ट्रेलर भी जारी किया है।
3: ये खेल की आखिरी गेंद है और अब काबी जीतने के लिए 5 दौड़ बाकी है।
4: कहीं तुम हार गया तो तुम हमको 3 गुना लगान देगा।
5: समझ गए। स्टडी बुवन, स्टडी।
6: खाने को रोटी नहीं होगा, पहने को कपड़े नहीं होगा।
7: पच्चीस साल पहले आमिर खान की कल्ट क्लासिक लगान ने दर्शकों के दिलों को छू लिया था।
0: अब 25 साल बाद एक बार फिर क्रिकेट और लगान का ये अनोखा संगम बड़े पर्दे पर जादू बिखेरने आ रहा है।
7: अली और का?
8: बाप रे, नाम लो तो ससरी जीप टेढ़ी हो जाए।
9: गोरे पतलून पहन के ही खेल का क्रिकेट कहते हैं और हम लंगोटी बांध के
0: 15 जून को लगान की रिलीज के 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस मौके को और खास बनाने के लिए आमिर ने फैंस को दोगुना सरप्राइज दे दिया है।
10: तो तुम्हारे ये कहने हैं कि ये क्रिकेट तुम खेल सकते हो?
0: आमिर खान प्रोडक्शन के इंस्टाग्राम हैंडल से फिल्म का एक नया ट्रेलर रिलीज किया गया है। साथ ही ऐलान किया गया है कि लगान को एक बार फिर थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा।
11: शर्त मंजूर है।
12: मानित है कि हमारा पलड़ा हल्का है।
13: कचरा, गेंद फेंक।
12: मगर ये उम्मीद तो है।
0: लगान के नए ट्रेलर को रिलीज करने के साथ ही आमिर ने बताया कि ये फिल्म 12, 13 और 14 जून को सिनेमा घरों में री रिलीज की जा रही है। 25 साल पहले लगान ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचाया था। दर्शकों के बेहतरीन रिस्पांस के साथ ही इस फिल्म की कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी स्क्रीनिंग हुई। लगान ने उस वक्त 40 से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीते। मदर इंडिया और सलाम बॉम्बे के बाद लगान ऐसी पहली फिल्म थी जो ऑस्कर में उस दौर की बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट हुई थी। बेस्ट पॉपुलर फिल्म समेत कुल 8 नेशनल अवार्ड्स भी लगान ने अपने नाम किए थे। ड्रामा और इमोशन से भरी इस फिल्म के किरदारों ने भी दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ दी थी। फिल्म में आमिर और ग्रेसी सिंह की जोड़ी भी दर्शकों को खूब पसंद आई थी। कुलभूषण खरबंदा, रघुवीर यादव जैसे भारतीय एक्टर्स के साथ साथ इस फिल्म को ब्रिटिश एक्टर्स ने भी अपने अभिनय से सजाया था। फिल्म के कुछ डायलॉग्स आज भी दर्शकों के जहन में ताज़ा हैं। फिल्म के गाने तो दर्शकों के दिलों पर आज भी राज कर रहे हैं। रिलीज की सिल्वर जुबली मना रही लगान की गिनती अपने दौर के सबसे कामयाब फिल्मों में होती है। ग्रामीण पृष्ठभूमि, ब्रिटिश शासन और क्रिकेट को एक साथ पिरोना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन आशुतोष गोवारिकर ने अपने बेहतरीन निर्देशन से इस फिल्म को कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुँचा दिया। बड़े पर्दे पर लगान की ये धमक आज भी जारी है और ये फिल्म अब भारतीय सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
14: चलिए अब बात कर लेते हैं पेडी की, क्योंकि साउथ सुपरस्टार रामचरण और जानवी की फिल्म पेडी आज रिलीज हो गई है। इस फिल्म के प्रमोशन के लिए दोनों स्टार्स ने अपना पूरा जोर लगाया। फिल्म की कामयाबी के लिए जानवी कपूर आज तिरुपति बालाजी मंदिर भी पहुंची। यहां पर जानवी ने पूरे विधि विधान के साथ भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की आराधना की। जानवी की पेडी से दर्शकों को काफी उम्मीदें भी हैं।
15: देखिए, उम्मीद ये भी की जा रही है कि ओपनिंग में ही फिल्म कमाई के कई सारे रिकॉर्ड भी बना सकती है। अब देखिए, कुछ दिन पहले तो साउथ सुपरस्टार रामचरण और जानवी अपनी फिल्म पेडी के प्रमोशन को लेकर विजयवाड़ा भी पहुंचे थे। इसी दौरान स्टेज पर अचानक से रामचरण जैसे दिखने वाला एक फैन उनकी तरफ तेजी के साथ आता नजर आया, जिन्हें देखकर जानवी काफी डर गई। लेकिन तभी रामचरण के बॉडीगार्ड एमएमए फाइटर केविन कुंटा ने तुरंत एक्शन लिया। अब बॉडीगार्ड का एक्शन ही सोशल मीडिया पर काफी वायरल है।
16: ये तस्वीर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुकी है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पेडी फिल्म की प्रमोशन के बीच आखिर हुआ क्या था, और साउथ के सुपरस्टार रामचरण की ओर तेजी से बढ़ने वाला ये शख्स था कौन। इस सवाल के बीच चर्चा रामचरण के उस बॉडीगार्ड की भी हो रही है, जिसकी फुर्ती ने सबको हैरान कर दिया। सोशल मीडिया में इस घटना के बाद से अब इस बॉडीगार्ड की कुंडली भी खंगाली जा रही है। दरअसल रामचरण की आने वाली फिल्म पेडी के प्री रिलीज इवेंट के दौरान इसने सभी का ध्यान खींच लिया। विजयवाड़ा में हुए इस इवेंट में रामचरण का एक जबरा फैन सुरक्षा घेरा तोड़कर अपने पसंदीदा स्टार तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। अचानक हुई इस घटना से जानवी कपूर भी कुछ पल के लिए घबरा सी गई और पूरा माहौल तनावपूर्ण हो गया। लेकिन अगले ही पल मैदान में उतरे रामचरण के पर्सनल बॉडीगार्ड केविन कुंटा और उन्होंने फैन को तुरंत उठाया और एक्टर से दूर कर दिया। इस इवेंट के बाद से ही रामचरण के बॉडीगार्ड की चर्चा है। करीब 6 फीट से ज्यादा लंबे मजबूत कद काठी वाले केविन की फुर्ती ने उन्हें स्टार बना दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में केविन की स्पीड और प्रोफेशनल अंदाज की जमकर तारीफ हो रही है। कई यूजर्स उन्हें रियल लाइफ बॉडीगार्ड हीरो बता रहे हैं। दरअसल रामचरण के साथ साई की तरह नजर आने वाले केविन मूल रूप से गेम्बिया के रहने वाले हैं और फिलहाल इटली के फ्लोरेंस में रहते हैं। इंस्टाग्राम प्रोफाइल के मुताबिक वो एक इंटरनेशनल प्रोफेशनल एमएमए फाइटर हैं। उनकी दमदार पर्सनालिटी और फाइटिंग स्किल्स ने उन्हें सोशल मीडिया पर भी काफी लोकप्रिय बना दिया। कई रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया गया है कि केविन की कमाई करोड़ों में है।
14: देखिए, जिस किरदार ने कभी टीवी स्क्रीन पर बच्चों की कल्पनाओं को उड़ान दी थी वो अब सिनेमाघरों में लौटने की तैयारी कर चुका है। 4 दशक पुरानी लोकप्रियता और नई पीढ़ी की उत्सुकता के साथ ही मैन फिर से सुर्खियों में है। क्या है इसकी वापसी की कहानी, देखिए हमारी रिपोर्ट।
16: एक वक्त था जब ये 4 शब्द सुनते ही करोड़ों बच्चों की आंखों में चमक आ जाती थी। हाथ में जादुई तलवार, ताकत पर शरीर और बुराइयों को हराने का जज्बा। ही मैन सिर्फ एक कार्टून किरदार नहीं था बल्कि 80 और 90 के दशक की पीढ़ी का सुपर हीरो था। भारत में भी ही मैन का क्रेज किसी सुपर हीरो से कम नहीं था। कॉमिक्स, खिलौने, पोस्टर और टीवी स्क्रीन, हर जगह ही मैन छाया हुआ था और अब वही ही मैन एक बार फिर लौट रहा है, लेकिन इस बार टीवी स्क्रीन पर नहीं बल्कि बड़े पर्दे पर। करीब 4 दशक तक बच्चों और युवाओं की कल्पनाओं का हिस्सा रहने वाला ही मैन अब हॉलीवुड फिल्म मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स के जरिए सिनेमा घरों में दस्तक देने जा रहा है। फिल्म 5 जून 2026 को दुनिया भर के थिएटरों में रिलीज हो रही है। यानी जिन लोगों ने बचपन में ही मैन को टीवी पर देखा था अब वो उसी किरदार को बड़े पर्दे पर देख सकेंगे। साथ ही आज की युवा पीढ़ी यानी जेन ज़ी भी अपने पापा के जमाने के सुपर हीरो से रूबरू हो सकेगी। भारत में उन दिनों विदेशी एनिमेटेड किरदारों की संख्या भले ही कम थी लेकिन जो कुछ चेहरे घर घर तक पहुंचे उनमें ही मैन सबसे लोकप्रिय नामों में शामिल था। उसकी ताकत, उसके दोस्त और बुराई के खिलाफ उसकी जंग, भारतीय बच्चों को किसी पौराणिक योद्धा की कहानी जैसी लगती थी। नई फिल्म में प्रिंस एडम यानी ही मैन की भूमिका निभा रहे हैं। निकोलस गैलेटजन उस पीढ़ी से नहीं है जिसने ही मैन का सुनहरा दौर देखा था, लेकिन इस किरदार की लोकप्रियता ने उन्हें भी इसका प्रशंसक बना दिया है।
7: I was born in 94, so I just really missed out on the initial wave of He-Man, but in a way was kind of raised with He-Man because Master of the Universe has always had kind of an internet presence. You know, I sent a lot of He-Man memes, Skeletor memes in my day. But obviously, you know, when hearing what this meant to so many people and then getting the script along and you know, starting to become a fan of the original animation as well as Dolph's interpretation, and then falling in love with the script, really. That was when I think the love and I would say the desperation to play the character kind of grew.
11: I know it sounds crazy, but that sword is gonna show me the way home.
16: समय बदला, तकनीक बदली, मनोरंजन के तरीके भी बदल गए, लेकिन कुछ नायक ऐसे होते हैं जो कभी पुराने नहीं पड़ते। और अब वही ही मैन जिसने 80 और 90 के दशक में बच्चों की कल्पनाओं को ताकत दी थी कल एक बार फिर सिनेमा घरों में अपनी ताकत दिखाने आ रहा है। शायद इसीलिए क्योंकि 4 दशक बाद भी उसके नाम में वही रोमांच, वही जादू और वही पावर बरकरार है। Bureau Report, Good News Today.
11: You protect them.
15: गर्मी से परेशान लोगों के लिए गुड न्यूज मौसम विभाग की तरफ से सामने आई है। केरल के तट पर आज मानसूनी बादलों ने दस्तक दे दी। अनुमान जताया जा रहा है कि केरल के साथ तमिलनाडु और दूसरे तटीय राज्यों में भी अगले कुछ दिन अच्छी खासी बारिश हो सकती है। तो जाहिर सी बात है, इसी के साथ ही देश के बड़े हिस्से में मौसम में तब्दीली होने का अनुमान भी लगाया गया है।
14: खासकर दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में मानसूनी फुहारें गर्मी से राहत दे सकती है। इस बीच दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। राजधानी समेत यूपी, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और आंधी चलने का अनुमान है।
15: और देखिए, कुछ एक जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने की आशंका भी यहां पर जताई है।
14: तो देखिए, मैदानों में पड़ रही गर्मी का असर पहाड़ों पर देखा जा रहा है। देश भर से बड़ी संख्या में सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के हिल स्टेशन पर्यटकों से भरे पड़े हैं।
15: पहलगाम, बांदीपुरा, कुल्लू, चंबा सैलानियों से गुलजार हैं। यहां का कूल कूल मौसम पर्यटकों को खूब पसंद आ रहा है।
17: मैदानों में गर्मी का मौसम है, पारा हाई है, तो तन मन को कूल करने के लिए पहाड़ों की सैर लाजमी है। लिहाजा सैलानी भी निकल पड़े हैं पहाड़ों पर सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने। कोई जम्मू कश्मीर जा रहा है, तो कोई हिमाचल, तो कोई उत्तराखंड। बादलों में लिपटी हुई पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियां, चीड़ देवदार के घने जंगल और कल कल बहती नदी, पहलगाम का जर्रा जर्रा खूबसूरत नजारों से भरा पड़ा है। और इन दिलकश नजारों का लुत्फ उठाने के लिए चप्पे चप्पे पर सैलानी पहुंच चुके हैं। कोई इन नजारों को अपने कैमरों में कैद कर रहा है, तो कोई खूबसूरत याद के तौर पर इन नजारों के साथ खुद को कैमरे में कैद कर रहे हैं। हर किसी की चाहत हर एक लम्हे को भरपूर जी लेने की है।
18: टूरिस्टों से मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे आए, काफी सारे पिछली कुछ घटनाएं यहाँ पे हुई थी, उस वजह से काफी लोग सोच में पड़ गए, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया चल रहा है सब।
19: तो अच्छा लग रहा है, हर साल आते रहते हैं पहलगाम, इस बार भी आए, अभी पहली बार आए इस साल गर्मियों में, बाद में अभी जून जुलाई बाकी पड़ा, आएंगे बीच में। हवा कल आए थे वैसे, तो इधर ठंडी ठंडी हवा चल रही है।
17: पहलगाम की फिजा में बह रही ठंडी ठंडी हवाएं और कल कल बहती नदी के ठंडे पानी के बीच सैलानी मैदानों की तपश को मानो भुला चुके हैं। मन पूरी तरह मानो पहलगाम में रम चुका है।
20: जम्मू में इतनी गर्मी है, हम आपको बयान नहीं कर सकते, इतनी गर्मी है जम्मू में भी। यहाँ कश्मीर में तो जन्नत है। हम कल आए थे, इतनी ठंड थी कि हमें यहाँ जैकेट्स वेयर करनी पड़ी।
21: अच्छा।
20: हाँ, ब्लैंकेट्स लेने पड़े। सुबह हमने गर्म पानी से नहाया है, इतना अच्छा मौसम है यहाँ पे।
21: अच्छा मौसम है। हा?
20: तो पहलगाम, तो वैसे भी पहलगाम और सोनामर्ग मेरी फेवरेट स्पॉट है। हा? हम तो हर साल पहलगाम और यहाँ पे आते हैं।
22: मौसम तो बहुत ही बढ़िया है यहाँ का।
21: अच्छा।
22: गुजरात में तो बहुत गर्मी पड़ रही है, यहाँ तो ठंडी है।
23: मैं आवो कश्मीर में, बहुत खूबसूरत छे, नेचुरली वातावरण, नेचुरली ब्यूटी, नेचुरली लोगो, बद्दा माटे सेफ्टी पूरे पूरी छे। अमरनाथ नी यात्रा स्टार्ट थवा आवी छे, तो तमे बद्दा फेमिली साथे आवो यहाँ यात्रा माटे। अहींना लोगो, कल्चर बधु सेफ्टी छे तमारा माटे। आवो अने खूब एन्जॉय अने मस्ती करो।
17: बांदीपुरा का खुशनुमा मौसम भी सैलानियों को खूब लुभा रहा है। पहाड़ों की चोटियां बर्फ से लकदक हैं। बांदीपुरा गुरेज रोड पर करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर राजदान पास पर सैलानी यहां के बर्फीली वादियों का दीदार करने पहुंच रहे हैं और कूल मौसम का मजा ले रहे हैं।
24: बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ बर्फ हो रही है, बारिश भी हो रही है। हमने श्रीनगर में गर्मी देख ली, यहाँ पे ऊपर आके बारिश देख ली, अभी बर्फ हो रही है, तो कम से कम 5 डिग्री तो चल रहा है यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ठंडी है।
25: जून में वी कैन नॉट एक्सपेक्ट सच टाइप ऑफ बर्फबारी हियर अभी, लेकिन वो गर्मी को देखते हुए लोग यहाँ पर आना चाहिए। और बहुत अच्छा सोना वेदर है, बहुत अच्छी जगह है ये, करीब करीब 14,000 फीट पे जगह है राजस्थान, ऑन द वे टू गुरेज।
26: और यहाँ पे इस समय जम्मू में जहाँ पे और हर जगह पूरे इंडिया में जहाँ वेव चल रही है, और इस समय आप देखिए कितना ब्यूटीफुल वेदर है यहाँ पे। सबको यहाँ पे आके एक्सपीरियंस करना चाहिए वेदर के बारे में।
17: हिमाचल का कुल्लू मनाली हिल स्टेशन भी इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। कुल्लू और आसपास की ऊंची पहाड़ी इलाकों में इन दिनों रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जिसका लोग लुत्फ तो उठा ही रहे हैं। जिप लाइन, पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग जैसे एडवेंचर टूरिज्म को भी भरपूर एंजॉय कर रहे हैं।
1: और हम लोग फैमिली के साथ राजस्थान से यहाँ आए हैं। राजस्थान से यहाँ हिमाचल को हमने इसलिए चूज किया बिकॉज यहाँ का वेदर अच्छा है। राजस्थान से कंपैरेटिवली काफी कूल वेदर है यहाँ। वहाँ पे 42-43 डिग्रीज टेम्परेचर, हीट वेव्स काफी ज्यादा हो रहे थे। सो समर वेकेशन में हमने घूमने के लिए इसको चूज किया। यहाँ ग्रीनरी अच्छी है, पॉल्यूशन फ्री है और वेकेशन के लिए हमने मतलब एक कूल प्लेस चाहिए थी, इसलिए हमने हिमाचल को चूज किया।
2: हम लोग राजस्थान से यहाँ आए हैं। राजस्थान में दिन में इतनी गर्मी है, इतनी हीट वेव चल रही है कि वहाँ दिन में हम लोग बाहर भी नहीं निकल पाते थे, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। 4-7-8 दिन हम लोग यहाँ शांति से सुकून से रहने के लिए, छुट्टियाँ एंजॉय करने के लिए आए हैं।
17: कुल्लू मनाली का मौसम सैलानियों को किस कदर भा रहा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मई के महीने में यहाँ 66,000 से ज्यादा पर्यटक वाहनों की एंट्री दर्ज की गई, मतलब कि 1,00,000 से ज्यादा की संख्या में सैलानी पहुंचे होंगे।
3: देखा जाए तो ऑलमोस्ट जो हमारी सारी मेजर लोकेशंस हैं, चाहे कसोल मणिकरण है, जीबी बंजार का एरिया है, मनाली है, हर जगह जो है टूरिस्ट आ रहे हैं। बट स्पेशली क्योंकि रोहतांग पास जो है हमारा ओपन हो चुका है, तो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे हमारी जो व्हीकुलर लिमिट है उसको हम व्हीकुलर जो पासिस इशू करते हैं उसको हम ब्रीच कर रहे हैं। 1300 के आसपास जो पासिस हैं हमारे वो डेली इशू हो रहे हैं। साथ ही साथ भारी संख्या में पर्यटक जो हैं वो अटल टनल क्रॉस करके लाहौल स्पीति, और क्योंकि लेह लद्दाख का भी रास्ता अब ओपन हो गया है तो वहां के लिए चंद्रताल झील के लिए जो है भारी संख्या में पर्यटक जो है मनाली से आगे का भी रुख कर रहे हैं।
17: बड़ी तादाद में सैलानियों के पहुंचने से यहां के होटल भी खचाखच भरे हैं। मई के आखिरी वीकेंड पर भारी भीड़ उमड़ने से मनाली और आसपास के इलाकों के ज्यादातर होटलों में 100% तक बुकिंग पहुँच गयी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
15: और चलिए इसके साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए जल्द खुलेगी जोजिला टनल।
4: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
5: सास बहू और बेटियां में आज देखिए बनते बिगड़ते रिश्तों की कहानियां। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: good to be in control, no matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
3: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
3: मानसून ने भारत में दी दस्तक, केरलम पहुंचा मानसून। मौसम विभाग ने दी जानकारी, अगले कुछ दिन केरल तमिलनाडु कर्नाटक में भारी बारिश का जताया गया अनुमान। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग का सपना हुआ साकार, जोजिला टनल लगभग बनकर तैयार। 3 घंटे का सफर अब 15 मिनट में होगा तय, यातायात के लिए जल्द खोला जाएगा। बद्रीनाथ धाम में हर रोज बढ़ रही दर्शन करने वालों की संख्या, प्रतिदिन औसतन 29,000 भक्त कर रहे दर्शन। अब तक 8,61,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। विदेशी पूंजी बढ़ाने के लिए सरकार का बड़ा कदम, विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को मिलेगी कैपिटल गेन टैक्स में राहत, सरकारी सेक्टर में निवेश पर छूट, कैबिनेट ने दी मंजूरी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियां अपने अंतिम चरण में, कनाडा के वैंकूवर शहर में लगाई गई विशाल फीफा वर्ल्ड कप बॉल, पहाड़ी पर लगाया गया कनाडा का विशाल राष्ट्र ध्वज भी। अपनी फिल्म बेटी की कामयाबी की कामना लेकर तिरुमाला मंदिर पहुंची अभिनेत्री जाह्नवी, फिल्म में साउथ सुपरस्टार रामचरण के साथ मुख्य भूमिका में जाह्नवी।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: तो देखिए, लद्दाख को दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाला जोजिला टनल जल्द अब खुलने वाला है। इस टनल का काम लगभग पूरा हो चुका है। इस टनल के खुल जाने से लद्दाख पूरे साल देश के दूसरे हिस्सों से सड़क मार्ग के जरिए जुड़ा रहेगा।
4: इससे पूरे क्षेत्र के विकास के साथ साथ सरहदों की सुरक्षा में भी बड़ी मदद मिलेगी। देश की सीमा तक सेना के बड़े वाहनों का पहुंचना भी इससे काफी आसान हो जाएगा।
5: श्रीनगर करगिल रोड पर बनने वाली जोजिला टनल लगभग तैयार हो गई है। कुछ ही हफ्तों के भीतर जोजिला टनल को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। जोजिला टनल पूरे लद्दाख क्षेत्र की तस्वीर ही बदल देगा, क्योंकि लद्दाख क्षेत्र सड़क के माध्यम से देश और दुनिया के साथ पूरे साल जुड़ा रहेगा। वरना ये रास्ता कई हफ्तों तक सर्दियों के दौरान बंद हो जाता था और रास्ता भी काफ़ी कठिन था, क्योंकि वरना जोजिला पास के होते हुए गाड़ियों को चलना पड़ता था। लेकिन अब इस टनल के बनने के बाद जोजिला पास यह या जोजिला दर्रा जो हम कहें, उससे इस सड़क पर चलने वाले लोगों को राहत मिल जाएगी। जोजिला टनल के बनने से न सिर्फ पर्यटन में लद्दाख क्षेत्र में बढ़ावा होगा, बल्कि साथ ही साथ हजारों की तादाद में सेना के जवान जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात है, उनके लिए भी ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस टनल के माध्यम से बहुत जल्द न सिर्फ हथियार और साज सामान, बल्कि सब तरह की चीज़ें लद्दाख के कोने कोने तक पहुंच पाएंगी। गुड न्यूज टुडे के लिए अशरफानी।
4: तो वहीं चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह बना हुआ है। यात्रियों की संख्या 29,00,000 के पार पहुंच गई है। सबसे ज्यादा केदारनाथ में श्रद्धालु पहुंचे, तो वहीं भगवान विष्णु के धाम बद्रीनाथ में इन दिनों बद्री विशाल की यात्रा के अद्भुत रंग देखने को मिल रहे हैं।

0: देवभूमि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में आस्था, विश्वास और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। करीब सवा महीने बाद भी श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। पहाड़ों की ऊंची चोटियां, घुमावदार रास्ते और लंबी पैदल यात्रा, इन सब चुनौतियों के बावजूद श्रद्धालुओं के कदम लगातार चारधाम की ओर बढ़ रहे हैं। कठिन रास्तों और बदलते मौसम की परवाह किए बिना लाखों श्रद्धालु बाबा केदार, बद्री विशाल, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।
1: चार धाम यात्रा के लिए आए, पहला हो गया यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, फिर अभी बद्रीनाथ, फिर अच्छी तरह दर्शन हो गए। मस्त क्लाइमेट अच्छा लगा, लोग अच्छे लगे, पार्किंग वगैरह सब अच्छा है, व्यवस्था अच्छा है, अच्छा लगा उत्तराखंड।
2: यात्रा बहुत सुखद रहा, हम लोग केदारनाथ जी के दर्शन प्राप्त किए और बद्रीनाथ जी के और गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन करने का सौभाग्य भी हमें मिला और एक ये सुखद अनुभव है। हमें ये लगता है कि चार धाम का यात्रा जीवन एक बार जरूर करनी चाहिए, इसी उद्देश्य से हम लोग पधारे।
0: इस साल यात्रा के शुरुआती चरण में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु चारधाम पहुंचे हैं। यात्रा के शुरुआती 44 दिनों की तुलना पिछले साल की यात्रा से करें तो इस बार यात्रा के शुरुआती 44 दिनों में करीब 29,85,000 से ज्यादा तीर्थयात्री चारधाम पहुंचे हैं, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 3,00,000 से ज्यादा है। पिछले साल शुरुआती 44 दिनों में करीब 26,34,000 तीर्थयात्री पहुंचे थे। हालांकि चारधाम यात्रा में अब मौसम की दखलंदाजी भी बढ़ने लगी है। लगातार बारिश और खराब मौसम ने केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों की रफ्तार धीमी कर दी है। सुरक्षा कारणों से रुक रुक कर यात्रा हो रही है, बावजूद इसके बाबा केदार के प्रति भक्ति और उत्साह में कोई कमी नहीं है। श्रद्धालुओं का आंकड़ा 10.5 लाख के पार पहुँच गया है। वहीं मानसून की आहट के मद्देनजर प्रशासन ने भी कमर कस ली है, चुनौतियों से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है।
3: मानसून दस्तक दे चुका है और आने वाले समय में अब और ज़्यादा तेजी से मानसून का आगमन होगा। ऐसी परिस्थिति में जो हमारे शहरी निकाय हैं, जिला पंचायत हैं, उनके साथ बैठक भी की जा चुकी है और फील्ड में ऐसे क्षेत्र जहां पर जल भराव हो सकते हैं वो उसमें साफ सफाई की कार्रवाई की जा रही है और उसकी मॉनिटरिंग भी हम लोग आपदा कंट्रोल रूम से कर रहे हैं और अभी इसका एक रिव्यू बैठक फिर से अगले सप्ताह किया जाएगा। अभी तक की जो तैयारियां हैं उसमें यदि कहीं किसी तरीके की कोई कमी पाई जाती है तो उसको ठीक किया जाए।
0: यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से भले ही इन दिनों यात्रियों की संख्या में कुछ कमी आई है, लेकिन बाबा के धाम में भक्तों की खूब चहल पहल है। हर रोज 15,000 से ज्यादा श्रद्धालु धाम पहुंच रहे हैं।
4: विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के दर्शन करने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या 10.5 लाख पार पहुँच चुकी है। हालांकि इन दिनों लगातार मौसम भी खराब हो रहा है, बावजूद इसके भारी संख्या में भक्त बाबा केदार के दर्शनों के लिए उमड़ रहे हैं। हर रोज 15,000 से 20,000 तीर्थयात्री बाबा केदार के धाम पहुंचकर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। मौसम विभाग ने भी लगातार मौसम खराब होने की चेतावनी जारी की है, जिसके बाद तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रुद्रप्रयाग डीएम विशाल मिश्रा का कहना है कि पैदल मार्च सहित धाम में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। डीएम ने यह भी बताया कि मानसून सीजन से निपटने के लिए
0: बद्रीनाथ धाम में तो मानो आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। अब तक करीब 8,33,000 यात्री धाम पहुंच चुके हैं। बद्रीनाथ टोकन काउंटर से लेकर मंदिर तक जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर सड़कों पर भी गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। अच्छी बात यह है कि जोशीमठ में गेट सिस्टम लागू होने से अब श्रद्धालुओं को लंबे जाम का सामना नहीं करना पड़ रहा है।
5: यात्रा विगत वर्षों की अपेक्षा बहुत अच्छी है और इस बार यात्रियों की संख्या अप्रत्याशित रूप से काफी बढ़ी हुई है और हमारे निगम की जितने भी टीआरएच है, पर्यटक आवास गृह है, उनमें यात्रियों की तादाद बहुत ज्यादा है। विशेषकर बद्रीनाथ देवलोक होटल में और यात्री निवास में हमारा लगभग 100% ऑक्युपेंसी है।
0: चारधाम यात्रा केवल धार्मिक यात्रा ही नहीं बल्कि श्रद्धा, धैर्य और आत्मिक शांति का भी प्रतीक है। यही वजह है कि हर साल लाखों श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बनते हैं और अपने जीवन के यादगार अनुभवों में इसे शामिल करते हैं। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सिंहवाल के साथ चमोली से कमल लोड़ी, गुड न्यूज टुडे।
6: अमरनाथ यात्रा शुरू होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। दरअसल जम्मू से लेकर कश्मीर घाटी तक तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं। यात्रा के लिए शहर भी सजने लगे हैं।
7: कठुआ में दीवारों पर कलाकृतियां उकेरी जा रही हैं। शहर में जगह जगह यात्रा से जुड़े काम शुरू हो गए हैं। सुरक्षा और यात्री सुविधा के लिए अलग अलग टीमें भी मैदान पर लगातार काम कर रही हैं।
8: करीब आ गई है बाबा बर्फानी के पावन दर्शन की घड़ी। शिवभक्तों पर बरसेगी बाबा बर्फानी की कृपा। यात्रियों के स्वागत के लिए सजने लगे हैं शहर। चाक चौबंद हो रही है सुरक्षा व्यवस्था। 3 जुलाई यानी करीब एक महीने बाद पावन अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। यात्रियों के स्वागत के लिए शहर सजने लगे हैं। सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है ये स्वागत गेट। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में लखनपुर गेटवे पर एक भव्य 3D वॉल म्यूरल बनाया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर की प्राचीन संस्कृति की झलक मिलती है।
9: म्युनिसिपल कमेटी है लखनपुर की, उसके थ्रू वहाँ पे एक 3D कुछ पिक्चर्स भी बनाई जा रही हैं वहाँ पे, वो भी है जिसमें हमारी लोकल कल्चर जो है उसको शो किया जाएगा, शो केसिंग कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ हमारा जो एंट्रेंस गेट होंगे उनको भी हम थोड़ा सा अपग्रेड कर रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं प्रॉपरली, कि यात्रा जो है उसमें एक थोड़ा सा वो वाला फील देने का यात्रा वाला वो प्रयास रहेगा।
8: इसके अलावा डोगरा आर्ट और कल्चर को जीवंत करने वाली पेंटिंग्स दीवारों पर भी उकेरी जाएंगे। स्वागत गेट पर तो मानो डोगरा संस्कृति जीवंत हो उठी है। ऐसी ही तस्वीरें पेंटिंग्स शहर की लगभग हर दीवार हर गलियों पर लगाई जा रही है।
10: जम्मू में जो जो फेमस जगहें हैं ना उनका एक यहाँ पे म्यूरल बना रहे हैं, ताकि जो भी लोग एंटर करें यहाँ पे, ये बॉर्डर हो गया बेसिकली J&K का, तो लोग देखेंगे दूर से उनको पता चलेगा कि जम्मू में क्या क्या चीज़ देखने की है। तो उसी बेस उसी को ध्यान में रखते हुए जैसे यहाँ पे जम्मू में महल हैं, वहाँ के किले हैं, और जम्मू में जैसे पहले राज्य हुआ था तो उस टाइम बोलते थे इतनी शांति थी उनके पूरे राज्य में जम्मू में कि शेर और बकरी एक ही तालाब में पानी एक साथ पीते थे, तो उसका भी यहाँ नीचे दिखाया हुआ हमने बनाया हुआ।
8: जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में भी इंतजामों को पुख्ता किया जा रहा है। पूरे भवन में रंगाई पुताई और सफाई का काम जोर शोर से किया जा रहा है। यात्रियों का पहला जत्था 2 जुलाई को जम्मू में मौजूद इसी भगवती नगर यात्री निवास भवन से रवाना किया जाएगा। देश के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए उत्साह के साथ कश्मीर घाटी पहुंचते हैं। ऐसे में भक्तों के लिए जम्मू में तैयारियां तो चरम पर हैं ही, उनके सुरक्षा के लिए भी व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने यात्रा की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 670 कंपनियां तैनात करने का फैसला किया है। केंद्रीय बलों की टुकड़ियां जम्मू कश्मीर पहुंचना भी शुरू हो गई हैं। सोमवार को जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार और IGP जम्मू भीम सेन टूटी ने भगवती नगर बेस कैंप का दौरा किया और वहां चल रही तैयारियों का जायजा लिया।
11: के दौरान सुरक्षा व्यवस्था जो पूर्व के सालों में जिस तरह से हम लोग मुहैया कराते रहे हैं उससे बेहतर व्यवस्था इस बार मुहैया कराने की कोशिश करेंगे, और इसमें अर्धसैनिक बल भारतीय सेना सभी का रोल होता है, तो सुरक्षा ग्रिड जो है वो पहले की भांति ही हम लोग चाक चौबंद रखेंगे।
8: बाबा बर्फानी तक पहुंचने के लिए पारंपरिक पहलगाम और बालटाल रूट से जाने की व्यवस्था है। करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचने का सफर जितना कठिन है उतना ही अलौकिक और आध्यात्मिक भी। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: चलिए इसी के साथ यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए लंच टाइम।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
0: सास बहु और बेटियां में आज देखिए बनते बिगड़ते रिश्तों की कहानियां। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहु और बेटियां में।
12: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Buyers Auto, driving the next generation of buyers.
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
7: महाराष्ट्र के अमरावती की तस्वीरें देख लीजिए। मलखम का अनोखा रोमांच यहां पर देखने को मिला। अमरावती के हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा आयोजित समर कैंप के समापन समारोह में छात्रों ने जलती मशाल लेकर मलखम का यहां पर प्रदर्शन किया।
6: खास बात यह रही कि ये मलखम पानी पर तैरते प्लेटफॉर्म पर किया गया, जिसमें शक्ति और संतुलन की भरपूर आवश्यकता होती है। मलखम के अलावा लाठी काठी मार्शल आर्ट्स और दूसरे पारंपरिक खेलों की भी झलक देखने को मिली।
8: जमीन या हवा में मलखम का खेल तो आपने खूब देखा होगा। साहस, शक्ति और संतुलन के इस खेल को अब पानी पर देखिए। महाराष्ट्र के अमरावती में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के समर कैंप के समापन समारोह में पानी पर मलखम्ब का अद्भुत प्रदर्शन किया गया। छात्रों ने पानी पर तैरते हुए प्लेटफॉर्म पर मलखम्ब का पारंपरिक कौशल दिखाया। सामूहिक रूप से मलखम्ब पर योगासन और पिरामिड बनाकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। पारंपरिक मलखम्ब के विपरीत वाटर मलखम्ब इसलिए भी मुश्किल है कि प्लेटफॉर्म पर स्थापित खम्बा हवा और पानी की लहरों के साथ लगातार हिलता रहता है, लिहाजा इसमें संतुलन और एकाग्रता की ज्यादा जरूरत होती है। इतना ही नहीं, छात्रों ने जलती मशालों के साथ मलखम्ब का प्रदर्शन कर साबित कर दिया कि ये खेल आसान नहीं, इसमें महारत हासिल करना नियमित साधना से ही संभव है।
14: आज जो मलखम्ब है उसके आजू बाजू गोल आकार में जो हाथ में मशाल लेके जलतरण पटु और मलखाम में मशाल हाथ में लेके मलखाम पटु जो कवायती सादर करते हैं, जो प्रदर्शन करते हैं, वो सच में बहुत देखने लायक रहता है।
8: छात्रों ने हाथ में जलती मशाल लेकर पानी में ओम और स्वास्तिक की आकृति भी बनाई, साथ ही पानी के भीतर संतुलन बनाते हुए अद्भुत करतब दिखाए। अमरावती में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल पिछले 102 सालों से ऐसे शिविर आयोजित कर रहा है। मकसद युवाओं और बच्चों को मलखम्ब के जरिए शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाना और इस पारंपरिक प्राचीन भारतीय खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। अमरावती से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: के साथ तमाम खबरों के बाद लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही।
7: और चलिए हम दोनों को इजाजत दीजिए, अच्छी और पॉजिटिव खबरें जा रही हैं, आप देखते रहिए लंच टाइम।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: Hey, Buzz, you hear about the Switch?
1: He's right over there.
0: Not that Switch, our Switch, to APG&E.
2: Well, we can do that?
0: Customers can switch electric suppliers anytime. To find a better rate, lock in pricing.
2: I don't want new wires. I'm very attached to ours.
0: Only the part of the bill that covers electricity supply changes.
2: To APG&E?
0: People love their flexible, affordable electricity.
2: Nice.
3: Learn more at APGE.com.
4: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
5: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
6: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
5: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
7: You're listening to MSNBC.
5: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love anytime you want. Try it now and thank us later.
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
10: देश देख रहा है
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच. सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
12: मॉनसून ने भारत में दी दस्तक. केरलम पहुंचा मॉनसून. मौसम विभाग ने दी जानकारी, अगले कुछ दिन केरलम तमिलनाडु और कर्नाटक में भारी बारिश का जताया अनुमान. भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग का सपना हुआ साकार. जोजिला टनल लगभग बनकर तैयार. 3 घंटे का सफर अब महज 15 मिनटों में होगा तय. यातायात के लिए जल्द खोला जाएगा. बद्रीनाथ धाम में हर रोज बढ़ रही है दर्शन करने वालों की संख्या. प्रतिदिन औसतन 29,000 भक्त कर रहे हैं दर्शन. अब तक 8,61,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन. विदेशी पूंजी बढ़ाने के लिए सरकार का बड़ा कदम. विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को मिलेगी कैपिटल गेन टैक्स में राहत. सरकारी सेक्टर में निवेश पर छूट, कैबिनेट ने दी मंजूरी. फीफा वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियां अपने अंतिम चरण में. कनाडा के वैंकूवर शहर में लगाई गई विशाल फीफा वर्ल्ड कप बॉल. पहाड़ी पर लगाया गया कनाडा का विशाल राष्ट्रीय ध्वज.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: मॉनसून ने भारत में दी दस्तक, केरला में पहुंचा मॉनसून, मौसम विभाग ने दी जानकारी। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटक में भारी बारिश का जताया अनुमान। मौसम विभाग ने देशभर में भारी बारिश की चेतावनी दी, भीषण गर्मी झेल रहे इलाकों में लोगों को मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने देश के उत्तर पश्चिम इलाकों में आंधी बारिश का जताया अनुमान, केंद्रीय और पूर्वी भारत में बारिश आंधी की संभावना। दिल्ली एनसीआर में आज आंधी बारिश का अलर्ट, उत्तर प्रदेश बिहार समेत 15 राज्यों में बारिश की चेतावनी। मनाली में जोरदार बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। बारिश के बाद लगातार बढ़ रही है सैलानियों की संख्या, कारोबारियों में खुशी की लहर। कुल्लू में बदला मौसम का मिजाज, भारी बारिश से गर्मी से मिली बड़ी राहत। पर्यटकों को लोबारा, जम्मू कश्मीर का सुहाना मौसम, उत्तर भारत में पड़ रही प्रचंड गर्मी से राहत के लिए छुट्टियां मनाने जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं लोग। खूबसूरत वादियां, साफ हवा और कल बहते पानी के बीच छुट्टियां मनाने के लिए यादगार पल जुटाने में जुटे हैं पर्यटक। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, 45 दिनों में 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बाबा केदार के दर्शन करने के लिए सबसे ज्यादा भक्त पहुंचे, आंकड़ा 11 लाख के पार। बद्रीनाथ धाम को लेकर भी भक्तों में जबरदस्त उत्साह, अब तक करीब 9 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम में लगा भक्तों का तांता, अब तक दोनों जगहों पर 10 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में भी भक्तों का तांता, अब तक 48,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु शामिल हुए। बाबा महाकाल का भांग, चंदन, ड्राई फ्रूट, सिंदूर और आभूषणों से किया गया राजा स्वरूप का श्रृंगार, फूलों से सजाया गया। बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए सुबह से भक्तों का तांता, भक्तों ने लगाया हर हर महादेव के जयकारे।

तिरुचिरापल्ली में मुख्यमंत्री विजय का दिखानू का फैन अपने घर में लगाया, मुख्यमंत्री विजय की प्रतिमा। सुकुमार षणमुगम प्रतिदिन सुबह शाम करते हैं मुख्यमंत्री विजय की प्रतिमा की पूजा अर्चना। तमिलनाडु के मायिलादुतुरई के मयूरंतर मंदिर में फ्लोट उत्सव की रौनक। फ्लोट उत्सव पर देवी देवताओं की प्रतिमा को पानी से सजे तालाबों में कराया गया नौका विहार, भक्तों ने लगाए जयकारे। फ्लोट उत्सव में भगवान शिव और पार्वती के पारंपरिक का अनुष्ठान, उत्सव को लेकर लोगों में जबरदस्त आतिशबाजी। तमिलनाडु में धूमधाम से मना वैकासी विशाकम और तिरुकल्याणम, विशेष रूप से सजाए गए मुरुगन भगवान। मंदिरों में विशेष महाअभिषेकम और कंडा पुराण का पाठ का आयोजन किया गया। खराब मौसम के चलते केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं के पहुंचने का नया रिकॉर्ड लगातार जारी, रोजाना 15,000 से ज्यादा श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या, सुरक्षा के चलते हेलीकॉप्टर सेवा पर लगी रोक, 1 जुलाई से नो फ्लाइंग जोन घोषित हुआ यात्रा मार्ग। पंजाब के फरीदकोट में अचानक बदल गई एक मोटर मैकेनिक की जिंदगी, 21 लाख रुपए की लॉटरी निकलने से घर में खुश। 21 लाख रुपए की लॉटरी निकलने से खुश नजर आया मोटर मैकेनिक रवि ने केक काटकर लड्डू बांटकर मनाई खुशी। अभिनेता अनुपम खेर ने फिल्म इंडस्ट्री में पूरे किए 45 साल, इस मौके पर अनुपम ने स्ट्रगल के दिनों को लेकर सफल होने तक का सफर तय बताया। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रतिदिन चलाया जा रहा है स्वच्छता अभियान, कर्मचारी पूरे मंदिर परिसर में कर रहे हैं साफ सफाई। जनजातीय विकास एजेंसियों को सशक्त बनाने पर चर्चा को लेकर दिल्ली में राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया उद्घाटन। उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा में उधम सिंह नगर की बेटी जसमीत कौर ने किया टॉप, परिवार में खुशी की लहर। हरियाणा पुलिस ने क्राइम इंटेलिजेंस मॉडल का लॉन्च किया, पिछले एक दशक में जघन्य अपराधों में शामिल अपराधियों का एक व्यापक डिजिटल डेटाबेस तैयार। गुजरात में आज विश्व की पहली योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता में 60 से ज्यादा देशों के 500 से ज्यादा एथलीट शामिल हो रहे हैं, 7 कैटेगरी में अपनी कला एथलेटिज्म का प्रदर्शन। प्रतियोगिता में पारंपरिक योगासन के साथ साथ कई तरह की प्रतिस्पर्धाओं का भी आयोजन होगा। योगासन को प्रतिस्पर्धा वैश्विक खेल के रूप में स्थापित करना, 2036 के ओलंपिक में शामिल कराने की दिशा में कदम बढ़ाने की प्रतियोगिता का मकसद है। शाम 6:40 पर कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के आयोजकों को बधाई देकर

0: में तैयार औद्योगिक विकास प्राधिकरण की योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स एंड ईडब्ल्यूएस एलआईजी आवासीय परिसर का उद्घाटन भी किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में लगाया जनता दरबार, लोगों की फरियाद सुनी, जल्द निपटारे के आदेश। भारत और लाओस के बीच कई मामलों में सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति, विदेश मंत्री एस जयशंकर और लाओस के डिप्टी पीएम दिल्ली में कई समझौतों पर उन्होंने दस्तखत किए। मुंबई में 2.5 एकड़ राष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया, दीनदयाल स्पर्श योजना पुरस्कार का भी वितरण। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग सपना साकार हो गया, जोजिला टनल लगभग बनकर तैयार। 3 घंटे का सफर अब महज 15 मिनटों में तय होगा, यातायात के लिए जल्द खुला जाएगा। मैदानी इलाकों में गर्मी से राहत पाने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं लगातार सैलानी, बड़ी संख्या में पर्यटक कर रहे हैं रुख। नैनीताल में कार से खतरनाक स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के तुरंत बाद पुलिस ने एक्शन लिया, ड्राइवर पर कार्रवाई, गाड़ी जब्त। विश्व साइकिल दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर की पुंछ में बच्चों ने निकाली साइकिल रैली, बड़ी संख्या में बच्चे और युवक शामिल हुए। बिहार सरकार की बड़ी पहल, मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 11 मेगा पार्क और फूड पार्क बनाने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने काफिले में शामिल की इलेक्ट्रिक कार। दिल्ली पहुंची वेनेजुएला की कार्यकारी राष्ट्रपति डेल्सी, शानदार स्वागत। राष्ट्रपति भवन में लाओस पीडीआर के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंग सावन का भव्य स्वागत किया गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुलाकात की। पंचकूला के श्री नाडा साहिब गुरुद्वारा पहुंचे टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर। फूलों की खुशबू से महक रहा है जामनगर जिले का मुखाणा गांव, यहां पारंपरिक खेती से हटकर फूलों की खेती हो रही है। गांव के 50 से 60 किसानों ने रंग बिरंगे फूलों की खेती की, कम जमीन में फूलों की खेती से ज्यादा मुनाफा। गेंदा, गुलाब और दूसरे सजावटी फूलों की बड़े पैमाने पर खेती हो रही है। हरियाणा के करनाल में सीता बनी महिला सशक्तिकरण की कहानी, ड्रोन पायलट बनकर किसानों में करती है छिड़काव। ड्रोन दीदी के नाम से मशहूर है करनाल की सीता, मेहनत से बनाई अपनी अलग पहचान। भारत का एयर डिफेंस हुआ और मजबूत, देश को मिला रूस से बना S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम का 4th स्क्वाड्रन। भारतीय सेना ने S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम को नाम दिया सुदर्शन चक्र। इस साल नवंबर में आने वाला है S-400 का 5वां और आखिरी स्क्वाड्रन। वायुसेना के एकीकृत हवाई कमांड और कंट्रोल सिस्टम से जुड़ा गया है S-400, स्वदेशी आकाश और MRSAM के साथ मिलकर बनाता है मजबूत डिफेंस लेयर। S-400 ने पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान निभाई थी अहम भूमिका। देश को कल मिलेगी 18,000 करोड़ रुपए विकास कार्यों की सौगात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत में 18,000 करोड़ की योजनाओं का करेंगे उद्घाटन शिलान्यास। सूरत के बाद केंद्रीय प्रशासित प्रदेश दमन पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दमन को करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्यों की मिलेगी सौगात। दमन को मिलेगी नए नागरिक हवाई अड्डे की सौगात, कल शाम 6 बजे हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। हवाई अड्डे के बाद 300 बिस्तर वाले अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 8वीं बार दमन दौरे पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर दमन में जबरदस्त तैयारियां।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: सास बहू और बेटियां में आज देखिए बनते बिगड़ते रिश्तों की कहानियां।

0: दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: Are you ready to tackle those home projects? Whether it's a new patio, fresh paint, or just some more space, now's the perfect time to make it happen. With a home equity loan from CME Federal Credit Union, you'll get an introductory 3.99% APR for 12 months, giving you the flexibility to take on those dream house projects. Your home's next chapter starts at CME. Visit cmefcu.org to apply today and to get your plans underway.
2: Terms and conditions apply. Federally insured by NCUA. Equal housing lender.
3: Hear what the world is listening to. Global Hits brings together music in motion. From pop to K-pop, Latin dance, and Afrobeats. Chart-topping tracks to hidden gems. Whatever the globe is listening to, it's all right here. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's Global Hits to start listening now.
4: खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को,
11: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देशवासियों से फॉरेन ट्रिप की बजाय स्वदेश घूमने की अपील की, तो गुड न्यूज टुडे भी आप लोगों से अपने आसपास की खूबसूरत ऐतिहासिक जगहों की तस्वीरों को शेयर करने की अपील कर रहा है, और हम आपके भेजे गए उन वीडियोस को गुड न्यूज टुडे पर लगातार दिखा भी रहे हैं। तो चलिए आज आपको बिहार के बेगूसराय लेकर चलते हैं, जहां आपका एक ऐतिहासिक राम जानकी मंदिर आस्था और विश्वास की जीती जागती मिसाल है।

0: हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिनी ब्लॉग। तो आपका स्वागत है एक छोटा सा ब्लॉग में घुमा कर विशाल। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे सलोना बड़ी ठाकुरबाड़ी
1: का मुख्य द्वार है, तो मैं इससे अंदर प्रवेश कर रहा हूँ और सामने में ये प्यारा सा महल का यह दृश्य काफी सुंदर दिख रहे हैं, तो मैं इससे अंदर की ओर और बढ़ रहा हूँ।
0: सामने आप देख सकते हैं नागर शैली में निर्मित प्यारा सा लाल पत्थर से नक्काशी गई मंदिर जो ठाकुर जी को समर्पित है।
1: यह मंदिर लगभग 300 साल पुराना है। इसे बनवाने में 16 वर्षों का समय लगा था, जो इस मूर्ति कला और स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना प्रदर्शित करता है।
0: तो आप देख सकते हैं यह मंदिर ठाकुर जी राम लला को समर्पित है। काफी सुंदर पत्थर की नक्काशी मूर्ति स्थापित है अंदर, तो आपको हम नजदीक से दिखा रहे हैं।
1: मंदिर में सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान के साथ अन्य भी भगवान विराजमान हैं। राम लला का आशीर्वाद लेके अब मैं आगे मंदिर परिसर का भ्रमण करूंगा और आपको भी दिखाऊंगा। तो देखते रहे मंदिर को कितने अद्भुत तरीकों से तराशा गया है।
0: काफी सुंदर कलाकृति आप देख सकते हैं मंदिर की।
1: मंदिर के शिखर की छत पे आ चुका और यहाँ से आपको यह अद्भुत कलाकृतियाँ, लाल पत्थर से निर्मित यह मंदिर आपको नजदीक से दिखा रहा हूँ।
0: सामने आप देख सकते हैं पत्थर की बनी हुई गेट है।
1: सब देखने के बाद इस परिसर में स्थित यह तालाब देख रहे हैं, यह काफी सुंदर हरा भरा, चारों ओर वृक्ष लगा हुआ है।
2: तो आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प में भागीदार बने। बस आपको सिर्फ इतना सा करना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह हो या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह आपको नजर आती है, कैमरा उठाइए, ब्लॉग बनाइए, फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों

0: Shop the Sherwin-Williams Memorial Day Sale and get 30% off paints and stains May 15th through the 28th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
1: Take it easy with Soft Hits. Soft Hits brings together relaxing pop favorites from the 70s, 80s, and 90s. Familiar songs, easy melodies, and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
5: मॉनसून ने भारत में दी दस्तक, केरलम पहुंचा मॉनसून, मौसम विभाग ने दी जानकारी, आज दिल्ली में हल्की बारिश का अलर्ट। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग का सपना हुआ साकार, जोजिला टनल लगभग बनकर तैयार, 3 घंटे का सफर अब महज 15 मिनटों में होगा तय, यातायात के लिए जल्द खोला जाएगा। बद्रीनाथ धाम में हर रोज बढ़ रही है दर्शन करने वालों की संख्या, प्रतिदिन औसतन 29,000 भक्त कर रहे हैं दर्शन, अब तक 8,61,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। विदेशी पूंजी बढ़ाने के लिए सरकार का बड़ा कदम, विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को मिलेगी कैपिटल गेन टैक्स में राहत, सरकारी सेक्टर में निवेश पर छूट, कैबिनेट ने मंजूरी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियां अपने अंतिम चरण में, कनाडा के वैंकूवर शहर में लगाई गई विशाल फीफा वर्ल्ड कप बॉल, पहाड़ी पर लगाया गया कनाडा का विशाल राष्ट्रीय ध्वज।
6: वाडीलाल आइसक्रीम, जरा मुस्कुराइए, वाडीलाल खाइए।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: गुड आफ्टरनून, नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त पारुल चौधरी, लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए सास बहू और बेटियां यानी एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज। वैसे जिस तरह ये परफ्यूम्स महका देते हैं हमें और आपको, उसी तरह एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज महका देती है हमारे शो सास बहू और बेटियां को। तो आज तो लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की महक, तो चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट का ये सफर हेडलाइंस के साथ।
8: ऐसा हरगिज नहीं मुझे तुमसे प्यार नहीं।
9: एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज से सजे सास बहू और बेटियां में आज देखिए क्या रक्षित के आंसुओं पर झूम कर नाचेगी अपराजिता, मनाएगी खुशियां।

0: तुझे अंदाजा नहीं है कि घरेलू औरत क्या कर सकती है।
1: सौम्या के जुर्मों का मुंह तोड़ जवाब देगी मंगल।
0: जो चाहे कर ले, ये झूला चौका संभालने वाले हाथ जो बच्चों को प्यार से पालते हैं, बड़ों का सहारा बनते हैं, वो कमजोर नहीं होते सौम्या।
1: और साथ ही करेंगे मुलाकात अपराजिता पर जुल्म ढाने वाले उनके पति ललित यानी कि मनोज चंदेला से मुलाकात, जो रियल लाइफ में बताएंगे अपने फिटनेस का राज सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियों में।

0: अगर हमारी मंगल को एक परफ्यूम गिफ्ट किया जाए तो उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से होना चाहिए। इनकी पर्सनालिटी है जेंटल भी और स्ट्रांग भी, तो यानी यहाँ पर तो होना चाहिए एक ऐसा परफ्यूम जिसमें हो परफेक्ट मिक्सचर ऑफ राइट नोट्स। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको मंगल के पास और देखते हैं ऐसा क्या हो रहा है उनकी कहानी में। आज कहानी में फिर आई है एक नई सिचुएशन, क्या ये नई सिचुएशन बदलेगी इस कहानी का मोड? लेट्स चेक इट आउट।
1: लगा तुम्हें मंगल कि तुम मुझे चकमा दोगी, मेरी आंखों में धूल झोंकोगी तुम? और क्या क्या सीखा है तुमने, और क्या क्या सीखा है बताओ? पुलिस की जासूसी करना,
2: मंगल सौम्या और दर्शनबाजी,
1: खबरी बना, बताओ मुझे। मुझे लगा था जो हमारे मिशन को फेल कर रहा है वो कोई बहुत बड़ा मास्टरमाइंड आदमी होगा, लेकिन वो तो तुम निकली।
2: कुसुम पर हुआ हमला।
3: मैं खून निकल रहा।
1: तुम मेरे लिए मेरे 70 करोड़ लेकर आओगी मंगल।
2: सौम्या की 70 करोड़ की डिमांड पर मंगल का तोहफा।
1: जाओ मेरे 70 करोड़ लेकर आओ। पैसे अब ये सारे के सारे पैसे मेरे हैं, सिर्फ मेरे। खवार औरत, नौवीं फेल, एक गज की सूती साड़ी पहनी भी, अनपढ़ गवार, ना हिंदी बोलने आती है ना कोई क्लास है।
2: कलर्स टीवी के सीरियल मंगल लक्ष्मी में भाई मंगल के एजेंट होने का राज सौम्या के सामने आ गया है, और भाई ये खबर सुनते ही उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि एक हाउसवाइफ एजेंट भी बन सकती है। तभी तो देखिए कैसे भाई उसने तो मंगल को खूब खरी खोटी सुनाई।
1: क्योंकि अब तुमने धोखा देना भी सीख लिया है। मैजिक सीख कर आई थी तुम, हाँ जादूगर बन के आई थी तुम, हाँ? लगा तुम्हें मंगल कि तुम मुझे चकमा दोगी, मेरी आंखों में धूल झोंकोगी तुम? और क्या क्या सीखा है तुमने, हाँ? और क्या क्या सीखा है बताओ? पुलिस की जासूसी करना, हाँ? पुलिस की एजेंट बन, खबरी बना, बताओ मुझे। मुझे लगा था जो हमारे मिशन को फेल कर रहा है वो कोई बहुत बड़ा मास्टरमाइंड आदमी होगा, लेकिन वो तो तुम निकली। तुम एजेंट मंगल, सुचंदर के सर पे चमेली का तेल लग गया।
2: लेकिन मंगल अब इतनी बहादुर हो गई है कि वो कहां किसी की सुनने वालों में से। देखिए कैसे उसने भी सौम्या को दिया करारा जवाब।
1: कि घरेलू औरत क्या कर सकती है, उसकी हिम्मत का ना तो सोच भी नहीं सकते। जो चाहे कर ले, ये झूला चौका संभालने वाले हाथ जो बच्चों को प्यार से पालते हैं, बड़ों का सहारा बनते हैं, वो कमजोर नहीं होते सौम्या। समय आने पर बंदूक भी उठा सकते हैं, समझ गई? और एक बात सुन ले, जब हम दोनों को एक दूसरे की सच्चाई पता ही चल गई है तो खत्म करते हैं ना ये खेल, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा सौम्या।
2: ऐसे में मंगल के बदले बदले अंदाज को देखकर सौम्या को आ गया गुस्सा, और देखिए कैसे उसने मंगल पर बंदूक तान दी। भाई इतना ही नहीं, उसने तो ट्रिगर भी दबाया, लेकिन ये पहली और आखिरी धमकी थी। जी हाँ, इसीलिए तो सौम्या ने मंगल से की है 70 करोड़ की डिमांड, क्योंकि मंगल ने सौम्या के सभी प्लान को फेल जो किया है। ऐसे में अगर मंगल सौम्या को 70 करोड़ ला कर देगी तो वो सभी हॉस्टेजेस को छोड़ देगी, वरना फिर सबका अंजाम होगा बुरा।
1: क्या फायदा मंगल, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक गवर्नमेंट का बैंक है, वहां जाओ और किसी भी तरह मेरे 70 करोड़ लेकर आओ। और ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास, डोंट वेस्ट टाइम, जाओ जाओ।
2: भाई सौम्या ने मंगल के पूरे परिवार को हॉस्टेज तो बनाया ही, यहाँ पर उसने आदित्य को भी कैद कर लिया, लेकिन देखिए कैसे भाई हर बार की तरह इस बार भी आदित्य अपने रंग बदलते हुए नजर आए और वो फिर एक बार सौम्या से मांग रहे हैं माफी। लेकिन यहाँ आदित्य अपने रंग कैसे बदलता है जरा देखिए तो। पहले माफी मांगते हुए नजर आया और फिर उसने भी तान दी सौम्या पर बंदूक।
3: तुम लोग अपना बंदूक नीचे रखो, बंदूक नीचे करो, अभी के अभी नीचे करो। देखो अगर तुम लोगों ने बंदूक नीचे नहीं किया तो मैं इसका भेजा उड़ा दूंगा। बंदूक नीचे करो
2: भाई। मंगल तो निकल पड़ी थी लेकिन फिर एक बार देखिए कैसे उसने प्लान बनाया कि वो किस तरीके से सौम्या को चकमा दे सके। और इसी भगदड़ के बीच हॉस्टेजेस में एक लीडर सौम्या की गैंग का ही था जिसने कुसुम पर वार कर दिया और बस फिर क्या शुरू हो गया हंगामा।
4: अबे तू अपनी औकात में रह, समझ में आया?
3: अरे तू मुझे बताएगा मेरी औकात?
4: तेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए था।
3: अरे चार पैसे क्या इन्वेस्ट कर लिए अपने को, बहुत कंपनी का मालिक
4: हूं मैं। तेरी कंपनी तो है ही नहीं।
3: अरे मेरी कंपनी है, कंपनी है। तू बताएगा मेरी कंपनी है कि नहीं? तू बताएगा?
2: ऐसे में अब आने वाले वक्त में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि किस तरीके से मंगल सौम्या को चकमा देती है।
5: पैसे लेकर आ गई? ये पैसे, अब ये सारे के सारे पैसे मेरे हैं, सिर्फ मेरे।
2: मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
0: तेरी यादों की खुशबू से हम महकते रहते हैं, जब जब तेरे बारे में सोचते हैं हम तो बहकते रहते हैं। कुछ ऐसा ही होता है प्यार का एहसास, और ऐसा ही रिश्ता है यहाँ पर सूरज और ईशा का। लेकिन देखिए ना, इनके रिश्ते में कितने सारे ट्विस्ट, कितनी सारी सिचुएशंस, कितनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स। हे भगवान, हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर हो जाए सब कुछ ठीक। क्या बाई चांस आ रही है यहाँ से हमारे लिए कोई गुड न्यूज़? चलिए देखते हैं, लेकर चलते हैं आप सबको पति ब्रह्मचारी के सेट पर।

0: घर वालों का हुआ सूरज से सामना। सच के बाद अब बनेगा मास्टर प्लान। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में आज ईशा बहुत खुश है और देखिए कैसे खुशी के मारे वो सीधा आ गई है अपने घर के मंदिर के पास और हाथ जोड़कर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रही है क्योंकि उसका सूरज जिंदा जो है। ऐसे में मुन्ना सिर्फ अपनी खुशी जाहिर करती है, शंख बजाती है और अब जंग का ऐलान भी कर रही है, यानी कि अब आकाश की बैंड बजने वाली है।
1: बहुत समझाया था तुम्हें आकाश, सूरज आग है, उससे मत खेलो, वो तुम्हें जला दे, पर तुमने एक नहीं सुना। अब अपनी उल्टी गिनती शुरू कर, अब मेरा सूरज तुम्हें छोड़ेगा।
0: यहाँ ईशा को पता है कि सूरज अब क्या कर गुजरेगा। वहीं दूसरी ओर सूरज के घर में मातम छाया हुआ है क्योंकि घर वालों को अब तक सच जो नहीं पता। ऐसे में घर वाले सूरज की अस्थि विसर्जन करने की प्लानिंग कर रहे हैं कि तभी वहाँ पर आ जाती है मोनिका और सभी को ऐसी न्यूज देती है कि सभी हैरान हो जाते हैं और सीधा बाहर जाते हैं। और जैसे ही सभी बाहर आते हैं तो सामने सूरज को पाते हैं, उसे देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। ऐसे में सूरज सभी को पूरी कहानी बताता है और ये भी बताता है कि ईशा ने आकाश के साथ नकली शादी की है। ये सुनकर सभी हैरान हैं और ये सोचकर अपने आप को कोस रहे हैं कि सच जाने बिना ही उन्होंने ईशा को बुरा भला कहा था।
2: बेटी का नाम रोशन किया, हमें समाज में मान सम्मान दिलवाया, मैंने उसकी इतनी इज्जत की, इतनी खरी खोटी सुनाई, बहुत बड़ा पाप हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया। सूरज मुझे उसके पास लेके चल, मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ, ले चल बेटा।
3: वहाँ वो आकाश सोच रहा होगा कि वो ईशा जी से शादी करेगा, लेकिन अब मैं उसके साथ क्या क्या करूँगा ये सोच भी नहीं सकता। अगले 48 घंटे में ईशा जी यहाँ अपने परिवार के साथ होंगे।
4: सूरज को सारी सच्चाई पता चल चुकी है, मतलब कि एक्चुअली वाकई में हुआ क्या था कि ईशा जी और आकाश की जो शादी थी वो झूठी शादी थी एंड ईशा जी कहीं ना कहीं एक मतलब कि गलत शादी में है एंड उसके पीछे का सारा रीज़न जो है सूरज को अच्छी तरह से पता चल चुका है, जिसमें बंटी ने भी काफ़ी साथ दिया एंड अब सूरज आके ये सारी चीज़ें अपनी फैमिली को बताता है और पूरी फैमिली एकजुट होकर एक साथ खड़े होते हैं इस मुसीबत के दौर पर एंड सभी लोग मिलके बोलते हैं कि हम कुछ भी करके ईशा जी को वापस लेकर आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।
0: यहाँ सूरज ने अपना मास्टर प्लान बनाया आकाश का काला चिट्ठा सभी के सामने खोलने का, तो वहाँ परिवार वाले भी अब सूरज का साथ दे रहे हैं। ऐसे में सूरज ने अपने प्लान में सभी को शामिल कर लिया है।
1: शाबाश, बहुत औसम प्लान
3: है। ये कैमरा हमें ईशा जी तक पहुंचाना होगा।
5: मैं पहुंचाऊंगा ये कैमरा।
3: तुम नहीं आ, तुम नहीं, आकाश को देख के तुम अपनी गुस्से पर काबू नहीं करना।
5: भैया मुझे नहीं देख रही, मैं पूछूंगा।
4: सूरज प्लानिंग बताता कि हमें इस तरह से प्लान करना है, ये प्लॉट है, ऐसा है वैसा है, हमें ये कैमरा ईशा जी तक पहुंचाना होगा ताकि यू नो सबूत कैच कर पाए एंड हर एक पल का खबर रख पाए ईशा जी का कि कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है आकाश एंड ऑल। तो इसी के लिए ये सारी प्लानिंग चल रही है और इसमें पूरी फैमिली मतलब कि जो भी सूरज की फैमिली है, सूरज का दोस्त बंटी जो भी है, सभी लोग मिल के ये साथ दे रहे हैं और इसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहावत है ना कि जब 10 हाथ एक साथ मिल जाए तो चाहे 100 हाथ सामने क्यों ना आए, लड़ने का पावर रहता है। तो या ऑफ कोर्स यहाँ पे तो कुछ नहीं, बस एक आईपीएस आकाश है तो इजीली वो मतलब कि चीजों को बाहर निकाल लेगा, ईशा जी को बाहर लेकर आ जाएगा।
0: अब देखना होगा कि कैसे सूरज सभी परिवार वालों के साथ मिलकर अपनी ईशा को वापस 48 घंटे में अपने घर लेकर आएगा। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
6: हम तो फूलों की तरह बेबस हैं अपनी आदत से दोस्तों, तोड़ने वालों को भी खुशबू की सजा देते हैं, वाह वाह वाह वाह, वैसे वाह वाह तो आप भी कहेंगे जब देखेंगे इस जुनूनी का ये अपडेट। अब आप भी सोच रहे होंगे ऐसा क्या हो रहा है गुरु और रूहानी की इस कहानी में आज। चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको इन दोनों के पास और दिखाते हैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बिहाइंड द सीन्स।
7: बेटे पर फूटा नागेश्वर का गुस्सा। पापा के कारनामों पर गुरु की बगावत।
8: इस तरह से रोने का भी आपकी अपनी बहू को ये सजा देते हुए उसे मौत के द्वार पे खड़ा करते हुए। अरे वो तो छोड़ो आप तो हमें रोकते रहे।
7: घर लौटी कुसुम्मा लगा जोरदार झटका। दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में गुरु घर क्या लौटा, तेजस्वी ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। वो गुरु के सामने लेकर आ गई है उनकी शादी की वो तस्वीर जो रूहानी ने शॉप से बनवाकर मंगवाई है। ये देखकर गुरु इमोशनल होने लगता है। इतना ही नहीं उसे तो गुस्सा भी आ जाता है और तो और वो उस फ्रेम से अपनी फोटो निकाल कर फाड़ भी देता है। इतना ही नहीं अपनी फोटो को जला कर अपना दाह संस्कार करने लगता है क्योंकि रूहानी के बिना गुरु कुछ भी नहीं है। ऐसे में ये देख गुरु का भाई गुरु को रोकने की कोशिश करता है, उस पर चिल्लाता है। गुरु के पापा नागेश्वर भी चीजें फेंक कर अपना गुस्सा दिखाते हैं। इतना ही नहीं वो तो अपनी छड़ी भी उठा लेते हैं गुरु को मारने के लिए।
9: दूरिया तो देखिए पहले तो हमें लगा कि अच्छा किया उन्होंने फोटो वोटो फाड़ी आग लगाई, लेकिन अपनी फोटो को आग लगाने लगा तो हमारा खून खौल गया। भाई ऐसे कैसे कर सकते हो तुम, तो हमने उसे रोकने की कोशिश भी की और बहुत मारा भी उस बेचारे को, लेकिन क्या है ना उसका जो जुनून है वो आज खुल के सामने आ गया और उसने मतलब पिता को ललकारा है, पूरे परिवार को ललकारा है कि हमारी वजह से ये सब हुआ है।
7: भाई नागेश्वर की छड़ी की बरसात से गुरु टस से मस नहीं हुआ, वो तो उल्टा अपने पापा को ही अपनी अकड़ दिखा रहा है और तो और बगावत भी कर रहा है। इतना ही नहीं उसने तो सभी घर वालों के सामने अपने पापा पर ऐसा गुस्सा उतारा कि नागेश्वर भी देखते रह गए।
8: हमारे पापा को हमारे कंपाउंडर के खिलाफ आज सर्दी पड़ी, उसे जाल में फंसाना पड़ा जिसमें वो फंस कर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो ये हमारी दादी किस घर की पड़ी, इस कोठी की मुखिया है, इनकी जुबान इस कोठी का कानून है, हम सबके लिए सच्चाई की मूर्त है ये, उनको भी हमें हमारे प्यार से अलग करने के लिए झूठ बोलना पड़ा।
7: गुरु ना सिर्फ अपने पापा और दादी पर भड़का है बल्कि आज तो उसने अपनी कुसुम माँ पर भी गुस्सा उतारा है, क्योंकि वो तो इस बात से अनजान है कि वो उसकी कुसुम माँ है ही नहीं, वो तो पुष्पी है, इसीलिए अनजाने में ही वो अपनी माँ को दोषी करार दे रहा है। इतना ही नहीं जैसे ही उसे ये पता चला कि उसके पापा ही रूहानी को पागल खाने भेज कर आए हैं तो वो अपने पापा पर इस बात का भी गुस्सा उतार रहा है।
8: कर दिए तू हमें हमारे कंपाउंडर से, हमारे प्यार से।
9: شروع میں تو ہم نے اس پہ حاوی ہونے کی کوشش کی, اس کی پٹائی بھی کی, لیکن پھر وہ پھیل گیا, اس نے ہماری اصلیت ہمارے سب کے سامنے دکھا دی اور ہماری کیا پورے پریوار کے دکھا دی. تو کہیں نہ کہیں تھوڑی مطلب شرمندگی تو ہے تھوڑا سا, لیکن وہ کیا ہے نا باہوبلی خون ہے تو ماننے کو تیار نہیں ہے. ہمیں لگ رہا کہ ہم نے اچھا کیا, لیکن ہمارے بیٹے نے ہمیں بتا دیا کہ آپ نے بہت برا کیا اور ایک لڑکی کو خام خواہ آپ نے ایسے اس طرح سے پاگل خانے بیچکوں سے پاگل بنا دیا, آج وہ مرنے کے کگار پہ کھڑی ہوئی ہے, کچھ ایسا ہے. تو کہیں نہ کہیں شرمندگی تو ہے ناگیشور کو, لیکن اپنی اکڑ تو اکڑ ہی ہے, وہ تو جائے گی نہیں, تو دیکھتے ہیں آگے سین میں کیا ہوتا ہے. پھر
7: بیچارہ گرو وہ تو ہار گیا ہے, اور اب تو اس نے سبھی گھر والوں کے سامنے اپنی اور روحانی دونوں کی ہی تصویر جلانی شروع کر دی, کیونکہ گھر والوں کے لیے روحانی مر چکی ہے اور گرو گھر والوں کے سامنے اپنے آپ کو مرا ہوا گھوشت ثابت کر رہا ہے.

0: लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वहाँ पर पहुँच जाती है कुसुम। बस फिर क्या, कुसुम को अपने सामने देखकर गुरु तो हैरान है ही, बाकी सब भी हैरान हो जाते हैं।
1: पगला गए हो क्या तुम? अपनी और बहुरिया की फोटो क्यों चला रहे हो? जानते नहीं हो जिंदा लोगों की फोटो चलाना अपशगुन होता है?
2: हिदायत देने वाली तो बहुत ही कौन हो?
1: माँ जी, आपकी बहुरिया कुसुम।
0: पर यहाँ तो घर में सभी को झटका लगा ही है, और पुष्पी वो तो डरी हुई है, कोशिश करेगी अपने आप को कुसुम साबित करने की। तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी पहुँच गई है रूहानी के भाई के पास उसे भड़काने के लिए, वो भी नागेश्वर के खिलाफ। ऐसे में देखिए कैसे सच जानने के बाद संदीप भी तेजस्वी के साथ निकल पड़ा है अपनी बहन से मिलने के लिए। इतना ही नहीं, वो तो पागलखाने पहुँच भी जाता है जहाँ पर रूहानी ऊपर वाले से मनोकामना कर रही है। लेकिन जैसे ही अपने भाई को अपने सामने देखती है तो वो खुश तो होती है, लेकिन उसकी तबीयत इतनी बिगड़ी हुई है कि संदीप ये देखकर हैरान है, क्योंकि उसकी बहन उसकी नजरों के सामने ही बेहोश हो जाती है।
3: वही है, रूहानी बीमार थी, मैं जाता हूँ उसको उठा के लेके आता हूँ, गुरुगुंडों से बचा के लाता है वहाँ से। तो हम हॉस्पिटल आते हैं तो हॉस्पिटल में कई चीज़ें होती हैं, रूहानी बहुत ज़्यादा तो क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है, तो मैं गुरु को समझाता हूँ कि ये वो अब मैं रूहानी का पीछा छोड़ दो, तुम्हारे घर पर नहीं जा सकती वगैरह वगैरह, और गुरु चला जाता है वहाँ से। तो वही रूहानी अब उठती है तो वापस जिद करती है वहाँ जाने की, तो वही समझा रहा था मैं उसे कि वहाँ जाना सेफ नहीं था।
0: अब देखना होगा कि रूहानी की इस हालत का जिम्मेदार संदीप किसको ठहराएगा। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: जब पहुंचते हैं हम एक परफ्यूम स्टोर में, ट्राई करते हैं अलग अलग परफ्यूम्स, इतने सारे फ्रेग्रेंसेस, तो हमारी लाइफ में भी आ जाता है ड्रामा। बताइए कैसे? क्योंकि हो जाता है कंफ्यूजन। तभी तो होते हैं वो कॉफी बीन्स जो देते हैं हमें हर परफ्यूम के बीच में एक ब्रेक। वैसे ब्रेक तो डिजर्व करते हैं इस कहानी के किरदार भी, बिकॉज यहाँ भी है अनलिमिटेड ड्रामा। कैसे? ऐसे
5: आज सजे आए वे सारा शहर, आज हो गया वे रब दी महर।
0: व्योम और तन्वी की शादी।

शादी में तूफान का ट्विस्ट। युग बना शादी ब्रेकर। दंगल टीवी के सीरियल 30 के पार जब मिला प्यार में आज हो रही है व्योम और तन्वी की शादी। पूरा घर सज चुका है, मंडप भी तैयार है, घरवाले कर रहे हैं इंतजार और देखिए दुल्हन बन तन्वी भी मौजूद है मंडप के नीचे। और तभी ढोल नगाड़ों के साथ करते हैं दूल्हे राजा व्योम एंट्री, वो भी नाचते गाते क्योंकि आज वो तन्वी से ब्याह जो रचाने वाले हैं।

ऐसे में अक्का साहिब और घर वाले फ्योम का स्वागत करते हैं। फिर शुरू होती है शादी की रस्में। उन रस्मों में दूल्हा दुल्हन सामने होते हैं। जय माला होती है। व्योम तो खुश है, लेकिन तन्वी उसके चेहरे से खुशी नदारद है।

0: ऑफकोर्स हमारा महाराष्ट्रियन कल्चर है, तो महाराष्ट्रियन लुक है, नववारी है, ये जो महाराष्ट्रियन ज्वेलरी है, नथ है, अंबाड़ा है, गजरा है, मुंडावड़ा है, ये सब पूरा महाराष्ट्रियन अटायर है। और इसका
1: महाराष्ट्रियन अटायर में नहीं हूँ मैं, पिट के आया हूँ या पीट के आया हूँ पता नहीं, बट यस आप देख सकते हैं बहुत सारा खून खून है, यहाँ पे भी खून है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह खून है। देखो पहली बात तो यहाँ पे आंधी तूफान चल रहा है, सो आंधी तूफान चलते ही हमें पता चल जाता है कि कुछ तो होने वाला है, एंड क्या होने वाला है वो इनसे
0: होने क्या वाला है ये तो मुझे भी एक एक करके पता चल रहा है कि क्या हो रहा है मेरे लाइफ में। मैं जब से सरपोदार घर में आई हूँ कुछ ना कुछ रस्म चल रही है, और उस दौरान मुझे ही सरप्राइजेस पे सरप्राइजेस मिलते जा रहे हैं, और शादी में भी मुझे एक बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, और उसके बारे में ये पूरी सरपोदार फैमिली जानती है, और इसीलिए वो मुझे बचाने आता है, फ्रेंड
2: अब तन्वी चाह कर भी कुछ कर नहीं सकती क्योंकि शादी का मंडप भी तैयार है। ऐसे में दोनों दूल्हा दुल्हन पहुंच गए हैं मंडप में ब्याह रचाने के लिए। शादी के फेरे भी शुरू हो जाते हैं।

लेकिन तभी अचानक आ जाता है कहानी में ट्विस्ट। चलने लगती है तेज हवाएं, आने लगते हैं आंधी तूफान। तन्वी और घरवाली ये देखकर है हैरान, और तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि शादी का हवन कुंड बुझ जाता है।

0: ऐसे में सभी बातचीत कर ही रहे थे कि अक्का साहब बीच में आकर इस शादी को संपन्न करने की बात कहती हैं।
1: अभी काफ़ी रिचुअल्स तो हमारे हो चुके हैं और जो होम होता है वो बुझ जाता है और फिर ऐसा सब होता है कि अरे ये तो अपशकुन हो गया, फिर अक्का साहब जो है वो बोलते अभी सिंदूर बाकी है, जब सिंदूर भरा जाएगा तब हम इसे शादी मानेंगे, तो वो एक रस्म जो है वो हम पूरी कर लेते हैं और उसी वक्त युग जो है वो वहाँ आ जाते हैं और खून से हमारी मांग भरते और ये शादी होती है। इसके एक डिसीजन की वजह से ना सबका दिमाग घूमने वाला है अपने अपने थॉट्स के हिसाब से, तो सभी लोगों के लिए बहुत ही शॉकिंग रहने वाला है।
2: यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा रिएक्शन देते हैं ना इस सीरियल में मेरे को, वो है मेरे पिताजी। एंड अभी तो सिर्फ खून ही देख रहे हैं आप, ये सीन के बाद आप मेरे गाल भी देखोगे, वो भी लाल लाल हो गए होंगे, बस इतना कहना चाहूँगा और कुछ।
0: भाई अक्का साहब की बात मानकर व्योम तन्वी की मांग भरने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी आता है कहानी में ट्विस्ट। खून से लथपथ युग की होती है एंट्री, जो शादी पर लगाता है ब्रेक

0: लेकिन शादी में ट्विस्ट है क्योंकि युग के खून से तन्वी की मांग भर जाती है। अब देखना होगा कि इसके बाद घर में और क्या नया तमाशा होगा। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: आप सबकी जिंदगी में एंटरटेनमेंट की खुशबू बिखेरने आ रहे हैं आप ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा के ललित यानी मनोज चंडीला। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको इनके पास और देखते हैं किस तरह बिता रहे हैं ये अपना छुट्टी वाला दिन। यहाँ तो है बाइक राइड, जिम एंड सम परफेक्ट डांस मूव्स। लेकर चलते हैं आपको फटाफट इनके पास।

0: पर्दे का विलन लेकिन रियल लाइफ में हीरो।
1: आंधियां कई दिल में है मेरे।
0: पर्दे पर अहंकारी लेकिन रियल लाइफ में संस्कारी।

0: मिले मनोज चंदीला से, जिन्हें आप देख रहे हैं स्टार प्लस के शो ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा में बतौर ललित, जो है अपराजिता का सबसे बड़ा दुश्मन। रक्षित और अपराजिता के प्रेम कहानी में सबसे ज्यादा रोड़े अटकाने का काम करता है ललित, और इस किरदार को बखूबी निभाते हैं अभिनेता मनोज चंदीला। लेकिन रियल लाइफ में मनोज चंदीला बिल्कुल वैसे नहीं है जैसा वो किरदार निभाते हैं। भाई वो है बड़े संस्कारी, वो है फिटनेस फ्रीक, इनकी सिक्स पैक ऐब है, ये हमेशा खुश रहते हैं और इंश्योर करते हैं कि प्रकृति इनका साथ दे। इसलिए मुंबई जैसे शहर में एक हरी भरी जगह इन्होंने अपना आशियाना बसाया है। इन्हें बाइक चलाने का शौक है, ये अपने जिम को अपना दूसरा मंदिर मानते हैं, जिसका नतीजा है ये एब्स और ये कसरती बदन जो इनके रोल्स में काम आता है। तो इस जाबाज पर्सनालिटी के पीछे कैसी है मनोज की रियल पर्सनालिटी, ये जानने के लिए आज हम पूरा दिन बिता रहे हैं मनोज के साथ, वो भी इनके छुट्टी वाले दिन, क्योंकि सेट पर तो उन्हें वक्त मिलता नहीं है, वो हमेशा शूटिंग बिजी रहते हैं। इसलिए आज उन्हें मिला है छुट्टी का दिन, जो उन्होंने दिया है सास बहू और बेटिया को। तो सीधा चलते हैं मनोज के घर पर, जो कर रहे हैं सास बहू और बेटिया का इंतजार।
1: आप खुद सांस ले या छोड़ नहीं रहे हो, देयर इज समवन मैनेजिंग ऑल दिस, और मुझे ऐसा लगता है कि दिन की शुरुआत भी उनके नाम से होनी चाहिए। आप भले या तो टेंपल आएँ, ये मेरे घर के सामने मंदिर आप दिखा सकते हैं, रघुवीर जी का मंदिर, या फिर आप सुबह उठते ही आप नाम लेके कर सकते हैं, दैट्स ऑल अप टू यू। तो बस मैं भी ऐसे करता हूँ, नहा धो के, आई होप मैं नहाया धोया लग रहा हूँ, नीचे आता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और अगर मैं नहीं भी आ पाता हूँ तो आते जाते मैं इनको प्रणाम करता ही रहता हूँ, यहाँ से मेरा दिन शुरू होता है बेसिकली।
2: चलिए तो शुरुआत करते हैं, जय श्री राम।
1: जय श्री राम, लेट्स गो।
0: मनोज रहते हैं मुंबई के बोरीवली इलाके में, और बिल्डिंग के ठीक सामने एक मंदिर, इसलिए इनकी सुबह सुबह की शुरुआत होती है इस मंदिर के साथ।

0: अब अगर कॉल टाइम आपका अर्ली मॉर्निंग का है तो उतना वक्त आप नहीं दे पाते, लेकिन हाँ कोशिश ये रहती है कि जितना वक्त आप दे सकें एक हनुमान चालीसा का पाठ हो जाए, या अगर ना भी हो तो आप कुछ नाम जप कर लें, जस्ट बिकॉज आप बस यहाँ आ जाएं और यहाँ की अच्छी पॉजिटिविटी को ग्रैब करके अपने साथ लेके चलें बेसिकली, अगर कुछ ना भी कर पाए तो बेसिकली द पर्पस इज टू बी हियर। कम
1: हाथ में प्रसाद लेकर ये सब भगवानों का नमन करते हैं और सबसे पहले भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं।

चंदन। उसके बाद हनुमान जी की खास पूजा अर्चना करते हैं। ज्ञान गुण सागर भाई, हनुमान चालीसा ये दिल से पढ़ते हैं और मंदिर में वक्त बिताकर अपने इष्ट देव को याद करते हैं।

बेसिकली आने का पर्पस ये है कि आप ध्यान लगा सको, बैठ सको, टू कनेक्ट विद इन, आई थिंक जो आपके अंदर की जो एनर्जी है. और इन्होंने कहा है कि मैं आपके अंदर हूँ, तो यस इट फील्स गुड. कुछ टाइम के लिए ऐसा लगता है कि यार यू आर नॉट योर स्ट्रेस, यू आर नॉट योर टेंशन ऑफ एवरी डे लाइफ, यू नो आप यहाँ के थोड़ा सा सबको भूल ही जाते हो. और जो ऐसा कहते हैं कि चोर भी यहाँ के जो है अच्छा हो जाता है, उसका दिमाग भी बदल जाता है. सो देयर इज लॉट ऑफ पॉजिटिविटी हियर. सो या, और ये मुझे कंठस्थ याद है हनुमान चालीसा, मैं काफ़ी टाइम से इसका पाठ कर रहा हूँ.

मेन काम हो गया है, अब चलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अपना एरिया, थोड़ी सी झलकी दिखाता हूँ मैं कहाँ रहता हूँ। और मुझे, आई एम अ फ्री बर्ड, तो मुझे आसमान दिखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बाइक राइडिंग बहुत अच्छी लगती है मेरे को। सो लेट्स यू नो गो एंड टेक माई बाइक आउट, लेट्स गो।

मनोज चंदीला हरियाणा के रहने वाले हैं, लेकिन काफी दिनों से मुंबई में हैं। बतौर अभिनेता उन्हें लॉन्च किया था हेमा मालिनी ने अपने टीवी सीरियल माटी की बन्नू के साथ। उसके बाद उन्होंने ढेर सारे शोज में काम किया, लेकिन अब वो मुंबई के हो गए हैं। यहाँ वो अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ रहते हैं। मनोज ने नेगेटिव और पॉजिटिव सब किए हैं, लेकिन ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा में बतौर ललित उनके किरदार को काफी अप्रिसिएशन मिल रहा है।

0: वो कॉम्प्लीमेंट्स इजी नहीं है लेने के लिए, बट हाँ आई टेक दैट हेट एज कॉम्प्लीमेंट्स ओनली, क्योंकि मैंने अगर काम अच्छा किया है तभी मुझे यू नो हेट मिलेगा, राइट? तो यस आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट. मैं उनको लिख भी रहा हूँ एक्चुअली अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं, मतलब वो थोड़े कन्फ्यूज भी हैं कि आप से हम प्यार करें या नफरत करें समझ में नहीं आ रहा, पर हाँ अच्छा कर रहे हैं आप. कि मुझे एक और मौका मिला है इस विलन को, द कैरेक्टर ऑफ विलन, द विलन ऑफ द टीवी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का, तो वो ही कोशिश कर रहा हूँ. आई एम एंजॉयिंग दिस वेरी मच.
1: भगवान का नाम लेकर अब मनोज अपने दिन की शुरुआत करते हैं अपनी बाइक राइड पर. जी हाँ, मनोज को बाइक का शौक है और आज वो सास बहू और बेटिया को अपना एरिया दिखाएंगे भाई कैसे मुंबई के बीचों बीच वो एक हरी भरी लोकेलिटी में रहते हैं, इसका एक टूर लेते हैं. यह है मनोज चंदीला का घर और उनकी पार्किंग में उनकी बाइक हमेशा चमचमाती हुई खड़ी रहती है. तो चलिए देखते हैं कैसी है उनकी ये बाइक.
0: बुलेट को बुलेट ही बोलते हैं, बट हाँ मैं इसको वायु बुलाता हूँ बेसिकली. जैसे वायु एयर जैसे मैंने लिए, आई बॉट इट आई थिंक 2015 आई गेस आई बॉट इट. हाँ ये जरूर लेके चलना भाई, बिना इसके कागज के बाहर नहीं निकलना है. जब शुरू में ली थी तो बहुत शौक था, काफी राइड की थी मैंने. जब लगता है कि मैं इसको निकाल सकता हूँ, क्योंकि आजकल गाड़ी निकालना बहुत मुश्किल है यार, मतलब रोड पे आप बैठे रहो और थोड़े से यू नो उनको लगता है कि यार सिंस आई एम इन दिस प्रोफेशन, तो उनको लगता है यार बाल बाल खराब हो जाएंगे आपके. मैं ओके भाई फिर मैं गाड़ी में आता हूँ. बट हाँ कोशिश ये रहती है कि एज मच एज आई कैन टेक माई वायु आउट आई आई आई डू. सो या दिस इज काइंड ऑफ बिनी विच आई वेयर फॉर माई हेयर सेफ्टी. बाल जरूरी है भाई, एंड क्योंकि आप जब हेलमेट पहनते हो तो सीधा हेलमेट नहीं पहनना चाहिए, बिकॉज उससे फिट अच्छा आता है और आपके हेयर भी सेफ रहते हैं बेसिकली. ऑलवेज ऑलवेज वेयर हेलमेट. मैंने देखा है काफ़ी लोग विदाउट हेलमेट भी बाइक जो राइड करते हैं, विच इज़ वेरी डेंजरस एंड अगेंस्ट द लॉ एज वेल. तो ये आप मतलब ठीक है, आप किसी और चीज़ को ना सोचें, अपने सर को ज़रूर बचाएं और उसको दिमाग में ज़रूर रखें. उसके लिए फर्स्ट एंड फोरमोस्ट हेलमेट इज़ नेसेसरी.

0: मनोज रहते हैं मुंबई के दहिसर इलाके में, जो काफी खुला और हरा एरिया है। भाई ये मैंग्रोव का एरिया है, इसलिए यहाँ पर हरियाली भरपूर है। बाकी कलाकारों की तरह मनोज मुंबई के लोखंड वाला अंधेरी जुहू इलाके में रहकर थोड़ा अलग एरिया में रहते हैं, क्योंकि वो प्रकृति के पास रहना चाहते हैं। वैसे यहाँ पर खुलकर अपनी बाइक चला सकते हैं, यहाँ पर ट्रैफिक भी नहीं है और थोड़ा शोर कम है।
1: So yes, एक अच्छी सी बाइक राइड हो गई है एंड दिस इज वेयर आई लिव एंड दिस इज समथिंग आई लाइक वेरी मच। पेड़ों के बीच में, मतलब जैसे कि मैंने कहा कि मुझे आसमान और पेड़ दिखने चाहिए, तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, सैर सपाटा करा देता हूँ आपका। ट्रीज आर रियली इम्पॉर्टेंट बेसिकली। आई मीन मेरे घर पे भी काफ़ी छोटे छोटे पौधे हैं जो लगाए हुए हैं मेरी वाइफ ने और मैंने भी, एंड दे ऐड टू योर हेल्थ बेसिकली। अगर आप हो सके कुछ अगर नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे ख्याल से एक पौधा अगर आपने लगा दिया, यू नो, साल में या 6 महीने में, आई थिंक वो भी बहुत हो गया है। टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी, टूवर्ड्स एनवायरनमेंट, हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, कॉन्शियस रहना चाहिए, क्योंकि दिस इज ऑल दैट काउंट्स। आप काट रहे हो पेड़ों को, ठीक है, बट जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे हमें लगाने भी चाहिए। यू नो, दिस इज़ व्हाट वी ब्रीद, एंड विजुअली तो खैर अच्छा लगता ही है, बट दिस इज़ समथिंग, एज आई सेड, एड्स टू योर हेल्थ अ लॉट। सो लाइक आई सेड, मैनग्रोव्स की इम्पोर्टेंस बहुत है, और मैं शुरू में अंधेरी में रहा था, नॉट दैट अंधेरी इज़ बैड, बट मुझे ये एरिया पसंद आ गया था बिकॉज मेरी शूट्स भी यहीं होती थी। आई शिफ्टेड टू बोरीवली लाइक इन 2010 एंड तब से मुझे ये एरिया बहुत अच्छा लगता है, ऑल बिकॉज ऑफ दिस, यू नो, खुला है, यू हैव अ ब्रीदिंग स्पेस, आप चल फिर सकते हो। अभी तो वैसे थोड़ा सा इंक्रोचमेंट यहाँ भी हो गया है, बट हाँ, कंपेयर टू अदर एरियाज दिस इज़ स्टिल बेटर। आप यहाँ

0: मनोज एक फिटनेस फ्रीक है, उनके सिक्स पैक एब्स हैं और लीन फिजिक है, जिसके लिए वो रोजाना जिम जाना नहीं भूलते। तो भले ही छुट्टी हो या फिर शूटिंग हो, जिम जाना उनका तय है। तो इट्स टाइम टू गो टू जिम।
1: ऑलराइट, तो भगवान जी के दर्शन हो गए, प्रभु का नाम ले लिया, आप घूम फिर लिए, बाइक की राइड होगी। अब आते हैं शरीर पे, बॉडी पे। अब दिन में थोड़ा टाइम वर्कआउट के लिए निकालना ही चाहिए, चाहे आप आधे घंटे के लिए जिम जाएं या कुछ और भी करें, या वॉक करें, एनीथिंग। सो यस, आई मेक श्योर कि मैं भले ही लाइक आई सेड आधे घंटे के लिए जिम जाऊं, लेकिन मैं जाता जरूर हूं। सो लेट्स गो होम, चेंज इनटू माय जिम क्लोथ्स एंड हेड स्ट्रेट इनटू द जिम।
0: वापस मनोज ने अपनी बाइक उठाई और पहुंचे अपने घर, क्योंकि वो चेंज वेंज करके जिम के कपड़े पहनकर जाएंगे अपने दूसरे मंदिर में, जो उनके काम के लिए और उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है।

0: small change and come back. Stay tuned.
1: All right, तो मैं आ गया हूँ अपने जिम के कपड़ों में और हमने बाइक रख दी है. अब हम चलते हैं इस तपती धूप में गाड़ी में, क्योंकि हर जगह बाइक पे जाना ठीक नहीं है. सो लेट्स गो टू द जिम.
2: मनोज का जिम बिल्कुल उनके घर के बगल में ही है, तो चलते हैं और देखते हैं कि उनका ये दूसरा टेंपल यानी जिम कैसा है.

0: So here we are at my gym, the beautiful Jirai Fitness. Let's go inside. That's the beautiful temple I come into every day. And I've been coming here since 2015. So you can guess ki main kitna purana member hoon inka yahan. That's Bharati. Ye hamare ye humse paise leti hain. And that's Sachin. That's the man I keep coming back to basically. Bahut hi mazakiya insaan hai aur bahut hi acha ladka hai. और कभी भी कुछ पूछना होता है तो मैं सचिन के पास आता हूँ बिकॉज इन्होंने पढ़ाई की है, इन्होंने मेहनत की है, इन्होंने हर चीज़ के बारे में जाना है और एक्सरसाइज को बारीकी से पहचाना है. सो यस, ही इज़ माई गो टू मैन एंड देर आर अदर ट्रेनर्स एज वेल इन द जिम जिनको मैं टाइम टाइम पर इरिटेट करते रहता हूँ अपने सवालों से. सो लेट्स गो इनसाइड. या
1: अब चलते हैं और देखते हैं कि मनोज की जिम में क्या क्या खास है.
0: So that's Sushant. ये हमारे जो और ट्रेनर्स हैं उनमें से हैं और इनको मैं टाइम टू टाइम अपने इरिटेटिंग क्वेश्चन से इरिटेट करता रहता हूँ. है सुशांत?
2: नॉट रियली, बट एक्चुअली अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं सो मुझे आंसर देने में और मज़ा आता है.
0: तो यस, ये हमारे सैनिक हैं जिन पर मैं भरोसा करता हूँ. जब मैं प्रॉब्लम में होता हूँ तो इनसे सवाल पूछता हूँ. सो लेट्स स्टार्ट द वर्कआउट. आज मैं चेस्ट करने वाला हूँ यार. चेस्ट एंड ट्राइसेप्स.
1: मनोज ने अपनी फिजिक को बहुत ही मेहनत से बनाया है और अपनी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले वो बॉडी को वार्म अप करते हैं. इसी के साथ उन्होंने अपना फिजिक भी दिखाया जो उन्होंने कई सालों की मेहनत से बनाया है, जिसके लिए डाइट और

कर तो वैसे मैं 9th स्टैंडर्ड से रहा हूँ, लेकिन होता ही है कि जब शूट्स होते हैं तो आपको टाइम नहीं मिल पाता है, यू नो, बट आई स्टिल ट्राई, आई मीन वी ऑल ट्राई, वी ऑल एक्टर्स एक्चुअली, कि जब मौका मिले तो चौका मार दो. जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हाफ एन आवर के लिए भी अगर टाइम मिल रहा है आपको तो प्लीज़ प्लीज़ गो. क्योंकि जैसे हम ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं, यू नो, कपड़े भी धोते हैं रोज़, तो वाई नॉट दिस, दिस हैज़ टू बिकम योर लाइफ स्टाइल, यू नो. मैं तो हैबिट भी नहीं बोलूँगा, दिस शुड बी योर लाइफ स्टाइल. सो यस, जैसे बोलते हैं कि अगर आप कुछ गलत कर लेते हो तो आपके पास, आप खींच के वापस भगवान के पास जाओ और माफ़ी मांगो, राइट. ऐसे ही आपने बहुत ज़्यादा जंक खा लिया है, छुट्टी भी चले गए हो आप, तोड़ निकल आई है, जिम नहीं आ पा रहे हो, अब मैं बोलता हूँ जब वो टाइम ख़त्म हो जाए, यू कम बैक टू, यू नो, एंड हिट हार्डर. सो दैट्स लाइक दैट. है तो ये टेम्पररी, बट क्या है कि जैसे हम कारखाने में जाते हैं, काम करते हैं और फिर घर जाके खाना खाते हैं, राइट. तो दिस इज़ योर 30-40% आपकी बॉडी आपकी किचन में ही बनती है, वो कहावत सच है. तो आप जो अपनी बॉडी में डाल रहे हैं तो वो ध्यान से डालिए, जो कुछ भी आप खा रहे हैं या पी रहे हैं, इवन आपके जो थॉट्स हैं वो भी बहुत सोच समझ के दिमाग में लेके आइए, बिकॉज उनसे ही आपका पूरा जो ये यू नो हेड टू टो बना हुआ है वो उससे ही बना हुआ है. सो यस, मेन जो बॉडी आपकी बनती है वो आपकी किचन में बनती है, आपके घर में बनती है. व्हाटएवर यू ईट, कुछ नहीं खा पाओ तो बाहर लेके जाओ. यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. गर्मियों में आई लाइक मैंगो शेक्स एंड गन्ने का जूस वेरी मच. आई ट्राई टू हाइड्रेट माई सेल्फ एज मच एज आई कैन, एंड आई हैव माई प्रोटीन शेक, आई हैव पनीर एज वेल, एंड आई ईट अ लॉट ऑफ रॉ वेजिटेबल्स, यू नो, चाहे वो क्यूकम्बर हो, टमेटो हो, आई ईट अ लॉट ऑफ दैट, आई मेक श्योर दैट, बिकॉज हम रॉ बहुत कम खाते हैं. एंड हाँ, दलिया इज़ अगेन माई फेवरेट. सो यस, इन सबको मिला जुला के अच्छा दिन बीत जाता है.

0: मनोज का वार्म अप हो गया, लेकिन अब वक्त है असली एक्सरसाइज शुरू करने का, और उससे पहले थोड़े प्रिकॉशन जरूरी हैं।
1: सो दिस इज फॉर योर हैंड्स सो दैट योर दीज थिंग्स डोंट गेट कैलस्ड। वी हैव टू जस्ट स्ट्रेचिंग भी जरूरी है, आई थिंक वार्म अप भी जरूरी है, बिकॉज आप आते ही वेट नहीं कर सकते, कहीं कोई नस उल्टी सीधी खींच सकती है। बिकॉज क्या होता है कि हमें लगता है कि नहीं यार सब जल्दी है, टाइम नहीं है, बट आई थिंक वार्म अप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम जब एक्टिंग करते हैं उसमें भी थोड़ा सा वार्म अप, एक आध सीन में रिहर्सल करते हैं तब जाके एक्टर वार्म अप होता है, यस, एंड देन हम टेक करते हैं, तो उसका मजा ही कुछ और होता है बेसिकली।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस।

0: Get ready.
1: पहली सेट ऑफ एक्सरसाइज हो गई, अब मनोज के साथ करते हैं उनकी दूसरी सेट ऑफ एक्सरसाइज।
2: तो मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारा एक लेग सेक्शन है, बहुत ही कोजी सा अच्छा सा है, जहाँ पे लेग्स की सारी मशीन हमारे पास। दिस इज लेग प्रेस एंड दैट्स लेग एक्सटेंशन, दैट्स लेग कर्ल्स एंड दैट्स फॉर काब्स। तो छोटी सी जगह है लेकिन बहुत स्वीट है और बहुत अच्छी है। जो हमारे जिम के ओनर हैं राजेश भाई, बहुत ही मेहनत से, बहुत ही प्यार से मशीनों को बनाते हैं, जैसे कोई इंसान कपड़ा बनाता है। तो उसका असर हमें, जब इसे हम मशीन्स पे वर्कआउट करते हैं, उसका असर हमें तब महसूस होता है बिकॉज राइट अमाउंट ऑफ प्रेशर आता है और राइट मसल पे पड़ता है वो प्रेशर। तो दैट्स व्हाट शोज, बेसिकली जब आप अपने काम के लिए मेहनती हैं और पैशनेट हैं तो आपके काम में दिखता ही है। दैट्स द बाय प्रोडक्ट। सो यस, आई एम हैप्पी बीइंग हियर।

तो वैसे तो मैंने कहा था कि मैं आज चेस्ट और ट्राइसेप्स करने वाला हूँ, लेकिन क्योंकि अपने पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं आपको एक अपने जिम का टूर भी करा देता हूँ और हल्का फुल्का फुल बॉडी वर्कआउट भी हम कर ही लेते हैं, सो दैट यू विल ऑल्सो गेट टू नो कि क्या क्या इक्विपमेंट मेरे जिम में है एंड मैं कैसे कैसे अपना वर्कआउट अचीव करता हूँ। लेट्स गो।

0: तो जैसा कि मैंने कहा कि बिना ब्रश के हमारा दिन शुरू नहीं होता है, राइट? बिना नहाए हम घर के बाहर नहीं निकलते हैं, करेक्ट? तो ऐसे ही कैसे भी करके अपने आप को जिम तक खींच के लेके आओ। मेन जो स्ट्रगल है वो यही है, यहाँ आके वर्कआउट हो ही जाता है। सो ड्रैग योरसेल्फ एंड कम हियर। चाहे आपका मूड है या नहीं है, मैं बहुत ही ख़राब मूड में भी आया हूँ और मैंने आके देखा कि मेरे मूड, जब मैं एक्सरसाइज मैंने कर ली है, वर्कआउट कर लिया है, तो मेरा मूड एकदम सही हो गया। आप चाहे थके हुए भी हो या मूड ख़राब है या किसी ने कुछ कह दिया है, दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, सब भूल जाने का, बस अपने आप को खींच के यहाँ लेके आने का। क्योंकि आप नहीं करोगे वर्कआउट तो आपका ट्रेनर करा देगा। सो यू कम हियर एंड फिटनेस को अपनी ज़िंदगी में उतारें, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हम इस शरीर में हैं हमें अच्छे से रहना है। हमारी गाड़ी की हम सर्विसिंग कराते हैं लेकिन बॉडी को कहीं भूल जाते हैं, बॉडी की सर्विसिंग यहाँ होती है। सो प्लीज़ कम एंड अच्छे से अपने जो खाना है उस पर ध्यान दें, बिकॉज इसके बाद का जो मेन काम है वो आपका खाना है। जस्ट ईट क्लीन, यू नो, कुछ भी आप तला भुना ना खाएं, ठीक है, वंस इन अ वीक चलता है, बट उसको आप रेगुलर हैबिट में ना डालें तो वो जल जाता है बेसिकली। अच्छा खाएं, अच्छा पहने और राम को राम लेते रहें, आगे चलते रहें।
1: तो ऐसा होता है मनोज चंदीला का दिन और जिम है उनका आखिरी डेस्टिनेशन, क्योंकि इसके बाद वो अपनी कम मिलने वाली छुट्टी को फुल अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं, यानी अपनी पत्नी और बेटी के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं।
0: तो ये था मेरा डे आउट और मेरा नॉर्मल रूटीन जब मैं शूट नहीं कर रहा होता हूँ, और जब मैं कर रहा होता हूँ तो आपने देखा ही है, यू नो, व्हेन आई गो टू माय सेट्स एंड व्हेन आई बिकम ललित, यू ऑल नो फिर मैं क्या करता हूँ। सो ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, हमारे कुछ फैंस दे टेक इट टू देयर हार्ट्स और वो वैसा ही समझ लेते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि हम भी जब कोई फिल्म देखते हैं इमोशनली, यू नो, इंटेंस फिल्म होती है तो हम भी कुछ ऐसा फील करते हैं, बिकॉज काम ही ऐसा है, यू नो, एंड आई ट्राई टू पुट माई बेस्ट वेन आई डू माई सीन्स। तो कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा जान डाल दी तो इस वजह से लोग आपसे हेट करना शुरू कर देते हैं, एंड दिस हेट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। आगे की मुझे लॉन्ग स्टोरी तो पता नहीं है, बट हाँ ये है कि कुछ ना कुछ खुराफात करता रहेगा जैसा कि अब तक इसने किया है, यू नो, क्योंकि ये बहुत ही नार्सिसिस्टिक है, अपना अपने में, मतलब सेल्फ में टू मच इनटू हिमसेल्फ है, तो और कंट्रोलिंग भी है बेसिकली। तो अपराजिता को इतनी आसानी से छोड़ेगा तो नहीं, बिकॉज इसको लगता है कि नहीं यार, वुमेन एक ऑब्जेक्ट है और वो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, जो कि आम लाइफ में बहुत ही गलत चीज़ है, बट इसे ऐसा लगता है, तो ये आसानी से छोड़ेगा तो नहीं। फॉर मोर कीप वॉचिंग मी एंड आर शो एंड कीप गिविंग अस लव द वे यू बीन गिविंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।
1: तो भाई जिम से ही हम मनोज को करते हैं अलविदा, अब मिलते हैं उनके सेट पर, क्योंकि सास बहू और बेटिया आपके उनके शो ओ अमनवा तुम देना साथ मेरा के हर नज़ारे दिखाता रहेगा। मुंबई से नुपुर मावची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: आज परफ्यूम्स के बारे में बातें करते करते मेरा मन किया कि क्यों ना अपराजिता और रक्षित को भी दे दिया जाए एक परफ्यूम का सेट। वो होता है ना फॉर हिम एंड फॉर हर, और कितने अच्छे से करते हैं ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट। एग्जैक्टली इसी तरह कॉम्प्लीमेंट करते हैं परफ्यूम्स भी आपकी पर्सनैलिटी को। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा के सेट पर, और देखते हैं क्या कुछ इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग हो रहा है इस कहानी में आज।
3: अभी मुझ में कहीं
4: एक तरफ टूटा रक्षित का दिल तो दूसरी तरफ अपराजिता को मिली मंजिल। बिलकता रक्षित तो झूमती नाचती अपराजिता। स्टार प्लस के सीरियल ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा में आज रक्षित का दिल टूट गया है, क्योंकि उसे ये सच पता चल गया है कि अपराजिता पहले से ही शादीशुदा है। ऐसे में देखिए कैसे बारिश में भीगे भागे रक्षित अपना टूटा दिल लिए आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, अपने आप को संभालने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उनका दिल उनका साथ नहीं दे रहा। ऐसे में देखिए कैसे वो एक जगह बैठकर न सिर्फ रोते बिलखते हैं बल्कि ऊपर वाले से भी अपनी नाराजगी जताते हैं। घर वालों का भी कॉल आ रहा है ये जानने के लिए कि अपराजिता ने क्या कहा, लेकिन रक्षित उनका भी कॉल नहीं उठा रहे।
5: क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्या गलत किया था मैंने जो आपने मेरे दिल के इतने टुकड़े कर दिए कि उससे समेट में मैं पूरी जिंदगी निकल जाएगी? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? आप से मेरा परिवार जाना चाहता है कि राजा ने कहा कैसे पता कुछ कहा ही नहीं क्योंकि वो पहले ही किसी और को कह चुकी है।
4: यहाँ रक्षित बिलक बिलक के रो रहा है तो वहाँ अपराजिता इसी बारिश में झूम रही है, नाच रही है क्योंकि वो बहुत खुश है। असल में उसकी नौकरी जो लग गई है ऐसे में उसका नाचना गाना बनता है। इतना ही नहीं वो तो ये खबर सबसे पहले रक्षित को बताना चाहती है, इसलिए देखिए कैसे उसने रक्षित को कॉल भी लगा दिया और वहाँ बारिश में रोता बिलकता रक्षित अपराजिता का फोन उठा भी लेता है। ऐसे में अपराजिता उसे गुड न्यूज देती है और तो उसे मिलने के लिए कहती है।
6: हेलो,
5: हेलो,
6: कहाँ हैं आप? मैं मिलना चाहती हूँ अभी। हर बार कुछ नहीं पर तो मैं लगा के आ रही हूँ, प्लीज मना मत कीजिएगा। कहाँ हैं आप? मैं आ रही हूँ।

अपराजिता की सवारी निकल पड़ी है रक्षित से मिलने के लिए, तो वहाँ रक्षित भी अपराजिता को मना नहीं कर पाया मिलने से। ऐसे में अपराजिता रक्षित से मिलने पहुँच भी जाती है, बारिश भी बंद हो जाती है और अपराजिता रक्षित से अपने दिल की बात कहती है क्योंकि वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहती है। ऐसे में रक्षित अब भी कहीं न कहीं इंतजार ही कर रहा है कि जो हुआ है वो झूठा साबित हो जाए, लेकिन उसे भी पता है कि वो सब सच है। ऐसे में अपराजिता न सिर्फ धन्यवाद करती है बल्कि उसका हाथ पकड़ हमेशा उसका साथ देने की बात कहती है क्योंकि वो रक्षित को अपना दोस्त जो मानती है, खैर अब दोस्त मानती है, जॉब लगी है इसीलिए वो रक्षित को टी ट्रीट देने के लिए ले गई है चाय की टपरी के पास। और देखिए कैसे दोनों चाय की चुस्कियाँ लेकर बातें कर रहे हैं और रक्षित अब भी अपने आप को संभाल ही रहा है। खैर अपराजिता अपनी खुशी जाहिर कर वहाँ से निकल जाती है ये खबर अपने मम्मी पापा को देने के लिए, लेकिन रक्षित वो अपने आंसू रोक नहीं पाया और फूट फूट कर फिर से रो रहा है।

0: हमारे।
1: इसी बीच वहाँ पर आ जाता है रक्षित का दोस्त मैक्स भी, जिसे देखकर रक्षित अपना हाल दिल उसे बयां कर रहा है और तो और अपनी किस्मत की लकीर भी उसे दिखा रहा है। फिलहाल तो रक्षित अपनी किस्मत पर रो जरूर रहा है, लेकिन इस बात से अनजान है कि अपराजिता अपनी शादी में खुश नहीं है। वो तो जबरन उस रिश्ते में बंधी हुई है। वहीं दूसरी ओर अपराजिता घर पहुंचकर जॉब लगने की गुड न्यूज अपने घर वालों को देती है। ऐसे में अपराजिता की मम्मी पापा और घर वाले सभी बहुत खुश होते हैं। भाई ये गुड न्यूज सुनकर सभी ये उम्मीद लगा रहे हैं कि अब इनका भविष्य अच्छा होगा और अपराजिता भी अपने परिवार की खुशी के लिए सब करेगी। अगले ही दिन वो तैयारी भी कर लेती है ऑफिस जाने की, क्योंकि उसका पहला दिन है, इसीलिए उसकी मम्मी उसका मुंह भी मीठा करा रही है। अब देखना होगा कि अपराजिता की राहों में जो मुश्किलें थी वो हट रही हैं या फिर बढ़ रही हैं। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
2: हमारी डॉक्टर आरंभी के आसपास तो है कंफ्यूजन्स और परेशानियों का परफ्यूम, सच में इनकी लाइफ में भी बिल्कुल नहीं है चैन। अरे हमेशा रहती हैं ये स्ट्रेस्ड। हम तो देखना चाहते हैं इनके चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कुराहट खैर हो गई है। अब यहाँ पर एक नए किरदार की एंट्री, क्या हो जाएगा अब डॉक्टर आरंभी की जिंदगी में सब कुछ ठीक, क्या फिर से आ जाएगा इनकी जिंदगी में प्यार? लेट्स चेक इट आउट।
1: ध्रुव और नायरा की डांस जुगलबंदी।

यूनिवर्स के सीरियल आरंभ ही में आज होने वाली है राज और नायरा के रोके की रस्म, और ऐसे में ध्रुव ने लगा दिया है अपने डांस का तड़का। जरा देखिए कैसे ध्रुव और नायरा दोनों ने ही न सिर्फ अपने डांस की जुगलबंदी दिखाई बल्कि ताल से ताल मिलाकर रोके की रस्म में चार चांद लगा दिए।

0: सबसे पहले डीसी ने इनिशिएट किया और मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ. मुझे डांस वांस रील्स बनाना बहुत ज्यादा पसंद है, तो फिर मैंने डीसी को ज्वाइन किया. फिर राज अपने आप से आया, विच वॉज अ सरप्राइज फॉर मी एज वेल. बट या मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि राज ने फाइनली मेरे साथ डांस किया. सो
1: भाई, ध्रुव और नायरा डांस तो कर ही रहे थे, लेकिन असली मजा तब आया जब ध्रुव ने एक एक कर पूरे परिवार को इस डांस में शामिल कर लिया.

0: वीडियो भी बनाया है, अब उस वीडियो के पीछे उनके मन में क्या है वो तो मुझे नहीं पता, बट जो भी है मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं उस मोमेंट को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी बिकॉज मुझे जो भी चाहिए था वो मुझे मिल रहा था। आरंभी भाभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रही होंगी बिकॉज मैं तो नायरा हूँ ना, मैं तो अपने में ही मस्त रहती हूँ अभी, मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं हूँ।
1: भाई नायरा के चेहरे की खुशी देखकर तो यही लग रहा है कि नायरा बहुत खुश है, लेकिन ट्विस्ट तो तब आएगा जब राज को सच पता चलेगा और वो इस शादी से दूर भागेगा। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: मेरे दिल की धड़कन अक्सर बढ़ जाती है जब तेरी खुशबू हवाओं में मिलकर मुझे छू जाती है। आहा हा हा, कुछ ऐसा ही कह रहे हैं यहाँ पर श्रीनिवास लक्ष्मी के लिए, लेकिन क्या हो रहा है लक्ष्मी निवास के अंदर, चलिए पता कर आते हैं। लेकर चलते हैं आपको लक्ष्मी निवास के सेट पर और दिखाते हैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बिहाइंड द सीन्स।
3: राधिका का हुआ किडनैप, वीर की परेशानी, राधिका वीर और टेंशन, जी टीवी के सीरियल लक्ष्मी निवास में वे हर रोज की तरह लक्ष्मी अपने घर से निकली थी ऑफिस जाने के लिए, लेकिन उसे क्या पता था कि आज उसकी जिंदगी में आ जाएगा नया तूफान और ऑफिस पहुंचने की जगह वो हो जाएगी किडनैप। जी हाँ, जरा देखिए तो कहानी में आ गया है हाई वोल्टेज ड्रामा, क्योंकि गाड़ी से उतरकर दो लोगों ने कर लिया है राधिका का किडनैप। मार्केट में इतने लोगों की भीड़ के बीच भी इन गुंडों ने राधिका को किडनैप किया। भाई उसने अपने आप को बचाने की तो बहुत कोशिश की लेकिन कुछ कर नहीं पाई। ऐसे में वहीं पीछे वीर आ जाता है जिसे हो जाती है कुछ गलत होने की भनक।

0: 快点，
1: 快点，你要不出来的？到我。
2: मैडम को जब रसूल आगे बीच में लेके ये मैंने वीडियो बना रखा है
0: भाई।
3: वीर की जिंदगी में ये तो एक ही बहुत ही हार्ड रिटन फैक्ट है कि जब भी वो कुछ अच्छा करने जाता है तो कुछ ना कुछ पनौती आ जाती है। तो हाल फिलहाल वीर को ये रियलाइजेशन हुआ है कि उसे कैसे भी करके राधिका जी को सब कुछ सच सच बताना है। ही नीड्स टू कन्फेस कि उसने वो मंगलसूत्र पहनाया था, किस परिस्थिति में पहनाया था, आउट ऑफ लव पहनाया था। और बाकी अब राधिका जी का क्या रिएक्शन रहेगा उससे अब उसको वो नहीं है कि घबराहट नहीं है, डर नहीं है, अब बस बताना है। तो वो सच बताने ही आया यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे राधिका जी है ही नहीं, गायब है, उनका ब्रेसलेट मिल रहा है, उनकी चप्पल मिल रही है। वीर परेशान, वीर ने पता किया तो पता चला उनका किडनैप हो गया है। तो बस वीर अब उसी ढूंढाई में लग गया है कि राधिका जी को कैसे भी करके बचाना है। और दैट्स द होल सीन, आगे देखते हैं क्या ड्रामा खुलता है।
4: भाई राधिका को किडनैप होता हुआ देख वीर का खून खौल गया। ऐसे में अब उसे ये भी पता है कि कहीं ना कहीं अखिल के गुंडों ने ही राधिका का किडनैप किया है। ऐसे में आने वाले टाइम में क्या कुछ हंगामे होंगे ये देखना दिलचस्प होगा।
5: देर हो गई आज हमें, पर आज हम राधिका जी से सब कुछ सच सच कह ही देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। राधिका जी का ब्रेसलेट यहाँ, जरूर उनके साथ कुछ ना कुछ हुआ है।
0: काका सुनिए, यहाँ कुछ हुआ है का?
2: हाँ हुआ है।
0: क्या हुआ?
2: एक जीप आई, उसमें से दो लोग उतरे, एक मैडम को जबरदस्ती उठा के जीप में लेके गए।
4: भाई वैसे इन सब हंगामों के पहले राधिका और वीर घर पर ही थे, जहां पर राजू की शादी के बाद घर वालों ने पूजा करने का फैसला कर लिया। लेकिन इन दिनों राधिका मंगलसूत्र को लेकर इतनी परेशान है कि राजू उसके लिए फिक्रमंद है और उसने घर में कोई भी पूजा करने से मना कर दिया। लेकिन फिर भी राधिका राजू की खुशी चाहती है, इसीलिए उसने पूरे परिवार को कन्विंस कर लिया कि इस खुशी के मौके पर घर पर पूजा जरूर होगी।
6: कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है कि इस मंगलसूत्र के रिगार्डिंग राधिका बहुत अपसेट हो जाती है। वही सारी चीज़ें, घर से निकालना भैया का, बहुत सारी चीज़ें उसको हिट करते हैं बिकॉज ऑफ दिस मंगलसूत्र, जितना भी कुछ हुआ है। तो राजू डिसाइड करता है कि नहीं, हम कोई पूजा वूजा नहीं करवाएंगे क्योंकि राधिका बहुत सैड है और ऐसे टाइम पर कोई सेलिब्रेशन या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करना है। तो राधिका बोलती है कि नहीं, ये सारी चीज़ें एक तरफ है पर आपकी शादी हुई है नई नवेली और ज़रूरी है, तो प्लीज़ आई एम हैप्पी, आप लोग, हम लोग पूजा का प्लान कंटिन्यू करते हैं। तो राधिका उन्हें बेसिकली मना लेती है।
4: ऐसे में देखना होगा कि क्या वीर सही समय पर राधिका को इन गुंडों के चंगुल से बचाएगा या फिर घर वालों को पता लगने के बाद राधिका की किडनैपिंग की खबर और हंगामे होंगे। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा और कैमरामैन अजय उग्रेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
7: जब कभी भी हम सब पहुंचते हैं परफ्यूम स्टोर में तो इतनी सारी वैरायटी और इतनी सारी फ्रेग्रेंसेस ट्राई करके हो जाता है ना कंफ्यूजन। वैसे कंफ्यूजन तो है यहाँ इस कहानी में, मैं तो बात कर रही हूँ राधे और प्रथम की। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको मन अति सुंदर के सेट पर और पता कर आते हैं ऐसा क्या हो रहा है कहानी में आज। देखिए हम तो यही चाहते हैं कि हर कन्फ्यूजन हो जाए दूर, लेकिन कभी कभी एक कन्फ्यूजन आता है तो उसे और भी बढ़ा देता है, आई मीन टू से सिचुएशन को। लेकर चलते हैं आपको सीधा यहाँ

0: ऐसा का तमाचा। कामनी का खुलासा
1: कि सीधे साधे शरीफ पति ने हमें अपने प्यार का झांसा देकर प्रेग्नेंट किया है।
0: राधिया पर फूटा दादी का गुस्सा,
2: मिल गई शांति, अभी कुछ और तोड़ना बाकी है।
0: दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में आज अहम और कामिनी की जोड़ी पकड़ी गई है। दोनों नशे की हालत में स्टोर रूम में पाए गए हैं। घर वाले उनको ऐसे देखकर हैरान हैं और एकता उसके तो पैरों तले जमीन खिसक गई है। ऐसे में दादी एकता के सामने राधिया पर इल्जाम मढ़ देती है। राधिया ने ही आम पन्ना में मिलावट की है। बस फिर क्या, एकता को गुस्सा आ जाता है और वो राधिया पर भड़कने लगती है।
2: कामिनी और अहम के बीच में कुछ चल रहा है, है? और इतनी नीच हरकत कैसे कर सकती हो तुम?
3: नहीं नहीं दादी, कुछ भी नहीं किया, हमारा कोई इरादा नहीं था इसे करने का, हमारा यकीन कीजिए आप।
4: माँ एक मिनट, ये सारी बातें हम बाद में भी कर सकते हैं, पहले इन दोनों को होश में लाइए, उनके इनके कमरे में लेकर जाइए।
3: सही कह रहे पापा, एम जी चलिए।
5: कामिनी का कुछ ना कुछ प्लान तो चलता ही रहता है। फिलहाल तो मुझे भी आइडिया नहीं है कि कामिनी का क्या प्लान चल रहा है। बिल्कुल कट टू कट सीन्स आ रहे हैं तो मैं भी ज्यादा नहीं बता पाऊंगी उसके बारे में।
0: भाई पापा की बात मानकर एकता अहम को उठाने तो गई, लेकिन तभी कामिनी ने अपना खेल खेल दिया। नशे की हालत में उसने ऐसी बातें कह दी जिससे एकता हैरान रह गई, और तो और उर्मी भी कामिनी और अहम के ऊपर पानी डाल देती है, जिसके चलते कामिनी को होश आने लगता है। बस फिर क्या, ये देखकर एकता कामिनी के ऊपर भड़कने लगती है। इतना ही नहीं, गुस्से के मारे तो वो कामिनी के ऊपर हाथ भी उठा देती है। इससे पहले कि कामिनी नीचे गिरती, दादी उसे संभाल लेती है। दादी का यूं कामिनी की तरफ झुकाव देखकर एकता हैरान है, और इसी हैरानी का इंतजार कर रही थी कामिनी। और देखिए कैसे मौका पाते ही कामिनी ने सभी के सामने खुलासा कर दिया।
3: आप इस घटिया सी लड़की की चिंता कर रही हैं, जिसकी ना ही कोई इज्जत है ना ही स्वाभिमान, देखा नहीं ये कैसे चिपकी हुई थी एमजी से? बेशरम गई, तुम्हारा तो सब शर्म है, मुंह तोड़ रही है शरीफ लोग।
1: आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके सीधे साधे शरीफ पति ने हमें अपने प्यार का झांसा देकर प्रेग्नेंट किया है। हम इनके बच्चे की मां बनने वाले हैं।
5: सीन ऐसा है कि आज बहुत ड्रामा हुआ है घर में। कामिनी ने ना नशे की दवाई मिला के अहम के ड्रिंक में डाल दी है और वो पूरा फुल ऑन नशे में है। अब उसका प्लान है कि अब वो घर वालों के सामने पूरी सच्चाई बताने वाली है। तो पूरे घर वाले आते हैं, वो सबके सामने कन्फेस कर लेती है कि शी इज़ प्रेग्नेंट एंड उसके बच्चे का बाप अहम है। तो यही सारा ड्रामा चल रहा है फिलहाल और बहुत मज़ा आएगा, आप लोग देखिएगा। शूट करने में भी हम लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है।
0: अब कामिनी के लिए तो ये गुड न्यूज़ है, लेकिन ये गुड न्यूज़ सुनकर एकता को बैड वाला झटका लगा है। वो तो फिर से कामिनी के ऊपर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन कामिनी उसका हाथ रोक लेती है।
3: तुम्हें शर्म नहीं आती इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए मेरे एमजी पे? तुम्हारा तो सच्चे में मैं मुंह ही तोड़ दूंगी।
1: बकवास नहीं कर रहे हम, होश में लाइए अपने पति को और पूछिए उनसे।
0: अब कामिनी का ये कॉन्फिडेंस देखकर एकता तो हिल गई है। वो तो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही है और राध्या भी उसे संभाल रही है, लेकिन एकता राध्या को भी झटका देकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे में ओमकार को भी गुस्सा आता है और वो प्रथम को आदेश देता है कि वो अहम को यहाँ से लेकर जाए। जैसे ही प्रथम अहम को लेकर वहाँ से जाता है, दादी सारा इल्जाम राध्या के ऊपर मढ़ देती है और बेचारी राध्या अपने आप को बेगुनाह बताने की कोशिश करने लगती है।
2: और एकता का घर तोड़ के मिल गई शांति, या भी कुछ और तोड़ना बाकी है?
3: अब दोनों चाहिए।
1: सॉरी दादी, हमें पता नहीं हमारे मुंह से इतनी बड़ी बात कैसे निकल गई। सर बहुत भारी भारी सा हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ नशे वाली चीज पी ली हो हमने।
2: श्रद्धा ने पता नहीं क्या पिला दिया इन्हें, इतना बड़ा कांड हो गया।
5: दादी, रजनी और हमारी प्लानिंग तो कुछ और थी कि हम लोग प्रथम के राध्या को प्रथम से दूर करके और मेरी शादी प्रथम से करवाने वाले, बट अब जैसा हम प्लान करते वैसा तो ऑल द टाइम होता नहीं है। तो अब दादी ने ना अननोइंगली हम दोनों को रूम में लॉक कर दिया था, तो अब कामिनी ने अपना कुछ प्लान बनाया है एंड उसने पूरी फैमिली के सामने कन्फेस कर दिया है। तो अब राध्या और प्रथम वापस से एक हो जाएंगे। अब कामिनी तो देखिए क्या होता है उसका।
0: अब दादी को लग रहा है कि ये सब राध्या ने किया है, पर उन्हें क्या पता कि ये सारा खेल कामिनी का ही है। वो तो बस इस घर में राज करना चाहती है। अब देखना होगा कि कैसे राध्या कामिनी का सच जानेगी और कैसे घर के रिश्तों को संभालेगी। मुंबई से कैमरामैन राम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
6: वैसे जब हमारे कहानियों के किरदार लगाते हैं प्लानिंग, प्लॉटिंग, जाल बिछाने और षड्यंत्र के परफ्यूम, तो क्या होता है, तभी तो कहानी में आते हैं नए नए ट्विस्ट। तो चलिए फिर दिखा देते हैं आपको ये तमाम ट्विस्ट, वो भी एक साथ, क्योंकि जितनी सारी कहानियां हैं हमारे पास उतने ही सारे हैं उन कहानियों में आए हुए ट्विस्ट। लेट्स ट्विस्ट।
7: दर्शकों के लिए फिर एक बार आ गया है सीरियल्स का टीआरपी चार्ट, जहां हम देखेंगे कि किसने जीता है इस हफ्ते दर्शकों का दिल और किस सीरियल की कहानी ने किया है दर्शकों को बोर। लगातार पांचवे हफ्ते भी नंबर वन की पोजीशन पर बरकरार है जी टीवी का सीरियल वसुधा। भाई इन दिनों वसुधा में चल रहा है बेहद ही इंटरेस्टिंग ट्रैक। भाई अब तो वो घर की बहुरानी भी बन गई है और बहुत जल्द बनेंगी बिजनेस वुमेन।
8: खुशबू से बता सकता हूँ कि आपके अचार का स्वाद बहुत लाजवाब होगा।
9: आज भी अपनी गंगा माई की आज्ञा का पालन कर।
7: पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी गंगा माई है पोजीशन नंबर टू पे।
9: कि अगर हमारा बस चलता नहीं मंगल सूत्र उतार के फेंकते हूँ माँ बेटे के मुंह। इसे बोलो एक भी कदम इसने आगे बढ़ाया ना तो इस घर से आरती उठेगी हमारी।
7: लेकिन इस बार उन्हें टक्कर देने के लिए आ गया है जी टीवी का सीरियल तुम से तुम तक। भाई इसी हफ्ते हुई है अनु और आर्यवर्धन की शादी, जिसने जीत लिया है दर्शकों का दिल।
10: हर एक सप्ताह सिर्फ तुम्हारा नहीं हमारा।
11: घर छोड़ के जा रहा
7: हूँ। तीसरे नंबर की पोजीशन पर है क्योंकि सास भी कभी बहू थी, जो दूसरे नंबर से अब तीसरी पारी पर आ गया है।
12: तुम्हारी सच्चाई पर अब कभी सवाल नहीं उठाऊंगी।
7: और चौथे नंबर पर बना हुआ है सीरियल अनुपमा।
13: क्या दोस्ती में आएगा एक नया ट्विस्ट,
7: जिन्हें टक्कर दे रहा है नागिन 7। भाई बहुत जल्द होने वाला है नागिन 7 का ग्रैंड फिनाले। ऐसे में देखना होगा कि क्या ये टीआरपी चार्ट में ऊपर जाएगा या फिर नीचे।
14: ये बिग बॉस में घोड़ा बना।
7: पांचवे नंबर की पोजीशन पर है लाफ्टर शेफ अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट, और उसी के साथ है सोनी सब का पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा। यानी कि पांचवे नंबर की पोजीशन बनाई है कॉमेडी के कलाकारों ने।
15: आपको जानता हूँ।
7: इसी के साथ बात करते हैं पोजीशन नंबर 6 की। इस पर आ रहा है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो पिछले हफ्ते टीआरपी चार्ट में पांचवी नंबर की पोजीशन पर था। यानी कि मायरा और ऋषभ की कहानी ने दर्शकों का दिल नहीं जीता है।
16: एक मैडम को जबरदस्ती उठा के जीप में ले।
7: इन्हीं के साथ साथ छठे नंबर की पोजीशन पर है जी टीवी का सीरियल लक्ष्मी निवास और जगधात्री।
17: और उसके बारातियों का स्वागत पूरे ढोल धमाके गोली बारूद से होगा।
18: कैसा लग रहा है।
7: बात करें पोजीशन नंबर 7 की, तो यहाँ अपनी जगह बनाई है उड़ने की आशा सपनों का सफर और सीरियल डॉक्टर आरंभी ने।
19: बढ़ाएगा मुश्किल या बनेगा आरंभी का सहारा।
7: आठवें नंबर की पोजीशन पर है सीरियल उड़ने की आशा।
20: देने के लिए तेजस देशमुख से पैसे लिए थे।
7: पोजीशन नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर है कई सारे सीरियल्स। जी हाँ, कलर्स टीवी का सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की। महादेव एंड सन्स,
15: घर के शांत तुमसे वापस लेकर रहेंगे।
7: स्टार प्लस का सीरियल ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा, जहर होने को है। मंगल लक्ष्मी,
15: मैं कहूंगी
18: अरे जी, और सौम्य
7: और तू जूलियट जड्डी,
15: हम अलग नहीं हो सकते नवा, कोई अलग नहीं कर सकता हमें।
7: सही बात करें पोजीशन नंबर 10 की, तो इस पर अपनी जगह बनाई है पुष्पा इम्पॉसिबल ने। भाई हर हफ्ते नई कहानी लेकर आता है सोनी सबका ये सीरियल, जो कहीं ना कहीं दर्शकों को खूब पसंद आता है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट,
21: अपना घर परिवार।
6: तो देखा आपने, आज तो एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज ने महका दिया ना हमारे शो सास बहू और पेटिया को, लेकिन क्या करें, अब तो घड़ी कर रही है इशारा कि वक्त आ गया है आपको बाय बाय कहने का। तो मुलाकात होगी आपसे कल सेम टाइम सेम जगह, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार। आप रखिए अपना अच्छे से ख्याल, हमेशा महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।
22: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
3: Khabrein कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
3: NCR में बदला मौसम का मिजाज, दिन में छाया अंधेरा, तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में हल्की बारिश, तापमान में भी गिरावट, सुहाने मौसम का आनंद लेते हुए नजर आए लोग। केरल में मॉनसून की पहली बारिश, मौसम विभाग ने भारत में मॉनसून पहुंचने की पुष्टि की, अगले कुछ दिन केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक में भारी बारिश का जताया अनुमान। इतिहास में पहली बार नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान, नागरिक उड्डयन के बुनियादी ढांचे में IAF की बढ़ती पहुंच का प्रदर्शन। भारतीय सेना की ताकत में इजाफे की तैयारी, जल्द 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की स्वदेशी सैन्य ड्रोन खरीदने की तैयारी, देश के इतिहास की सबसे बड़ी ड्रोन खरीद। सरिस्का टाइगर रिजर्व में पहली बार नजर आया सफेद मोर, बना चर्चा का विषय, बफर जोन में घूमने वाले सैलानियों ने फोटो ली। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियां अपने अंतिम चरण में, कनाडा के वैंकूवर शहर में लगाई गई विशाल फीफा वर्ल्ड कप बॉल, पहाड़ी पर लगाया गया कनाडा का विशाल राष्ट्रीय ध्वज।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। सबसे पहली खबर मौसम से जुड़ी हुई। आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक से करवट ले ली है। तेज आंधी और बारिश ने पूरे इलाके में लोगों को गर्मी से राहत दी है। कई जगहों पर जनजीवन भी प्रभावित हुआ है, तो वहीं तेज हवाओं के चलते ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी पड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें, विजिबिलिटी भी कई जगहों पर बेहद कम हो चुकी है। हालांकि गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है, एक अच्छा एस्पेक्ट है। जिस तरह से बारिश हो रही है उसकी तस्वीरें आप देखिए, कई जगहों पर जलभराव की तस्वीरें, आंधी की तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं। ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी होती हुई दिखाई दी है और कई लोग गर्मी कम होने की वजह से खुश हैं, तो वहीं कई जगहों पर स्थिति बिगड़ती हुई भी नजर आई है। दिल्ली एनसीआर की तस्वीर आप देख रहे हैं, मौसम ने अचानक से मिजाज बदला है, अचानक से करवट ली है। तेज आंधी आई और बारिश आई, जिससे पूरे इलाके में लोगों को गर्मी से बड़ी राहत देखने को मिली है। पिछले कुछ दिनों से नौतपा चल रहा था, भीषण गर्मी पड़ रही थी, लोग इससे जूझ रहे थे, लेकिन अब राहत की बूंदें बरसी हैं। कई जगहों पर जनजीवन भी प्रभावित होता हुआ दिखाई दिया है, कई जगहों पर थोड़ा जलभराव भी हुआ है, लेकिन दूसरी ओर लोगों को गर्मी से राहत मिली है, ये एक अच्छी और बड़ी खबर है। तेज हवाएं भी चली हैं और ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी पड़ती हुई दिखाई दी है। दिल्ली एनसीआर की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग इलाकों से। कई जगहों पर अंधेरा भी छा गया है। आज शाम यहां पर बारिश आई है, हालांकि गर्मी से यहां पर लोगों को राहत मिलती हुई दिखाई दी है। दिल्ली वालों के लिए एक राहत भरी खबर है ये, राहत की बूंदें बरसती हुई, दिल्ली वालों को कुछ राहत इससे मिलती हुई। भीषण गर्मी से जूझ रहे थे लोग, किस तरह से परेशान थे, और उसके बाद अचानक से मौसम ने करवट ली है, जिसकी वजह से लोगों को राहत की सांस मिली। वहीं कई जगहों पर ट्रैफिक भी इसकी वजह से प्रभावित होता हुआ दिखाई दिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर किस तरह से परिवहन प्रभावित हुआ है, लोगों को कुछ जगहों पर परेशानियों का सामना करना पड़ा है।
1: हाँ, बोलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक सेकंड।
0: वहीं दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी चली है, घने बादल देखने को मिले हैं और यहां पर अंधेरा छाया हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं आपको बता दें, कई इलाकों में तेज बारिश हुई है, कई इलाकों में ओले भी पड़े हैं, ये एक बड़ी खबर है आपको बताने दिल्ली एनसीआर से, जहां पर मौसम ने अचानक से अपना मिजाज बदला है। कई जगहों पर ओले तक पड़े हैं और तेज आंधी की तस्वीरें भी सामने आई हैं, किस तरह से यहां पर आंधी और कई जगहों पर जलभराव की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां से होकर गुजरना पड़ रहा है वाहन चालकों को। ये तस्वीरें आप देखिए, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। जीएनटी की स्क्रीन पर हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं थोड़ा जलभराव देखने को मिल रहा है, दूसरी तस्वीर में किस तरह से बारिश हो रही है। तो एक तरफ जहां दिल्ली एनसीआर में मौसम बदला हुआ है, वहीं केरलम की बात करें तो यहां पर मौसम की पहली बारिश भी पड़ चुकी है। आपको बता दें, कई इलाकों में बारिश पड़ रही है, तेज हवाओं के साथ यहां पर बारिश हो रही है, कई जगहों पर आंधी भी आई है और लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दी है।

0: चिलचिलाती गर्मी और उमस भरी हवाओं के बाद मौसम एक बार फिर से पूरी तरीके से बदल चुका है। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से इस वक्त मौसम बेहद ही सुहाना हो चुका है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो है बारिश की शुरुआत हो चुकी है और ये पहले से ही मौसम विभाग का अनुमान था कि आज बारिश जो है वो देखी जा सकती है, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ जो है इस वक्त जो है सर्कुलेशन जो है वो पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है, जिसका अदर जो असर था वो देखने को पहाड़ी राज्य पर मिलेगा, लेकिन उसका कहीं ना कहीं असर जो है मैदानी इलाकों पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। और मौसम विभाग ने इसी चीज को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया था कि पहाड़ी राज्यों में चाहे हिमाचल की बात हो, उत्तराखंड की बात हो या जम्मू कश्मीर की बात हो, हर तरफ अच्छी बारिश जो है देखी जाएगी। आंधी तूफान जो है वो भी देखा जा सकता है, लेकिन बात अगर मैदानी राज्यों की जाए तो यूपी हो, पंजाब की बात हो, राजस्थान की बात हो या दिल्ली एनसीआर की बात हो, यहाँ पर भी ऑरेंज अलर्ट बारिश का जो है वो दिया गया था। और आप देख सकते हैं कि तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ इस वक्त, सीपी की तस्वीरें दिखा रही हूँ कि किस तरीके से झमाझम बारिश की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और कहीं ना कहीं अब लोगों को राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि अगर हम तापमान की बात करें तो तापमान सामान्य से कम जरूर बने हुए थे, लेकिन उमस की स्थिति जो है वो लगातार लोगों को परेशान कर रही थी, क्योंकि अरब सागर से जो लगातार हवाएं आ रही थी उसकी वजह से तापमान कम होने के बावजूद लोगों को गर्मी परेशान कर रही थी। लेकिन जो ये बारिश की शुरुआत हुई है इसी तरीके से आने वाले 3-4 दिन तक मौसम जो है सुहाना रहेगा, लगातार बारिश जो है वो हो सकती है, साथ ही साथ हवाएं चलेगी, लेकिन तापमान में जो है थोड़ी कमी जरूर देखी जाएगी। मौसम जो है पूरी तरीके से बदल चुका है, क्योंकि आज 4 जून है और आज केरल के तट पर जो है मॉनसून दस्तक दे चुका है और वहां पर भी जो है कोस्टल कर्नाटक की बात हो या फिर केरला की बात हो, वहां पर बारिश की जो है शुरुआत हो चुकी है और मौसम विभाग का यह अनुमान है कि 12 सेंटीमीटर से ज्यादा की वर्षा जो है वहां पर देखी जाएगी और धीरे धीरे इसी तरीके से मॉनसून आगे बढ़ेगा और पूर्वोत्तर भारत के भी कुछ हिस्सों में जो है दस्तक देगा। तो कुल मिलाकर लोगों को खासी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उमस लोगों को बहुत परेशान कर रही थी, चिलचिलाती गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा था, लेकिन अब से राहत के दिन जो है शुरू हो चुके हैं। कैमरा पर्सन सचिन चंदोक के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।
1: तो देखिए जिस तरह से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया कि अब राहत के दिन लोगों के लिए शुरू हो चुके हैं, जिस तरह से भीषण गर्मी से जूझना पड़ रहा था अब वो दिन खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आईएमडी की ओर से इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया था कि कल से 3 दिनों तक आंधी बारिश तूफान देखने को मिल सकता है और सिर्फ दिल्ली ही नहीं कई राज्यों में कुछ ये स्थिति बनी रहने वाली है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक 15 राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया गया था और ओले गिरेंगे ये संभावना भी आईएमडी की ओर से जताई गई थी। तो वहीं 3 जून को दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में तेज आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया था। तो वहीं लोगों से अपील भी की गई थी कि लोग सावधानी बरतें ऐसे मौसम में। और चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: पर पहुंचा देता है। बृहस्पति का कौन सा शुभ योग आदमी को जबरदस्त ज्ञानी और धार्मिक बना देता है? कौन से हैं बृहस्पति के शुभ योग और कैसा है इनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: और स्कैल्प करे मॉइस्चराइज, बालों को दे हेल्दी शाइन, जस्ट द वे वी लाइक इट।
2: A good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game, from all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूँ, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है, और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए, और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी

0: से पुरानी फाइल्स ठीक होगी और ये मेरी गारंटी है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है, बवासीर क्या है। हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है, इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है, तो सुनिए इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना, जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूली। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्णकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक। चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है, यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूर्णकंद। यह है सूर्णकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालु। लज्जालु पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो, सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन। ये है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: At DSW, we ask the important questions, like, what shoes are you going to wear? Whether you're prepping for wedding season, festival season, or just planning the ultimate vacay, the right shoes can make or break an RSVP. So own the moment. You've got big plans, and we've got just the shoes. At the perfect price, of course. Get ready to get ready with Designer Shoe Warehouse. Head to your DSW store or DSW.com today, and let us surprise you.
3: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
1: एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
10: दिल्ली NCR में बदला मौसम का मिजाज, दिन में छाया अंधेरा, तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में हल्की बारिश, तापमान में भी गिरावट, सुहाने मौसम का आनंद लेते हुए नजर आए लोग। केरलम में मॉनसून की पहली बारिश, मौसम विभाग ने भारत में मॉनसून पहुंचने की पुष्टि की, अगले कुछ दिन केरला तमिलनाडु कर्नाटक में भारी बारिश का जताया अनुमान। इतिहास में पहली बार नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान, नागरिक उड्डयन के बुनियादी ढांचे में IAF की बढ़ती पहुंच का प्रदर्शन। भारतीय सेना की ताकत में इजाफे की तैयारी, जल्द 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के स्वदेशी सैन्य ड्रोन खरीदने की तैयारी, देश के इतिहास की सबसे बड़ी ड्रोन खरीद। सरिस्का टाइगर रिजर्व में पहली बार नजर आया सफेद मोर, बना चर्चा का विषय, बफर जोन में घूमने वाले सैलानियों ने फोटो ली। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियां अपने अंतिम चरण में, कनाडा के वैंकूवर शहर में लगाई गई विशाल फीफा वर्ल्ड कप बॉल, पहाड़ी पर लगाया गया कनाडा का विशाल राष्ट्रीय ध्वज।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रहा।
11: नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश प्रार्थना हो स्वीकार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। देखिए धर्मग्रंथ कहते हैं कि श्री हरि से ही सभी भगवानों ने अवतार लिया है, इसीलिए श्री हरि को जगत का पालनहार भी माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पालनहार भगवान विष्णु शेष नाग पर ही क्यों विराजते हैं, उनके भक्त प्रभु को नारायण क्यों बुलाते हैं, श्री हरि का विराट स्वरूप कैसा है, श्री हरि से जुड़ी ऐसे ही तमाम रोचक बातें आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए करते हैं श्री हरि की आराधना की शुरुआत।

0: वो सांसारिक दुखों को हरने वाले हैं, इसलिए वो श्री हरि हैं। वो मन से पाप और संताप को मिटाकर अंधकार रूपी माया का पर्दा हटाने वाले हैं, इसलिए वो श्रीमन नारायण हैं। वो नाथों के नाथ हैं, उनकी दया से ही संसार गतिमान है, क्योंकि वो जगत के पालनहार हैं। भगवान नारायण की कृपा से ही ब्रह्मांड में जीवन का संचार है। करुणा निधान कमल नयनम भगवान की दया से ही जीवन चलायमान है। माना जाता है कि जिस भक्त पर श्री हरि की कृपा हो जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है। वो भय बाधा और कष्टों से मुक्त हो जाता है। ऐसे ही दयावान हैं करुणा निधान भगवान विष्णु। शास्त्र भी कहते हैं कि हरि हरति पापानि, अर्थात जो सभी पापों और कष्टों का नाश कर दे वो हरि हैं। धर्म ग्रंथ के जानकार और ज्ञानी विद्वान बताते हैं कि जो भी सच्चे मन से श्री हरि का सुमिरन करता है उसकी सारी बाधाओं को दूर कर देते हैं श्री हरि।
1: आसमंता दुखानि पापानि कष्टानि हरितः यस्य असौ हरि रामचंद्र। दुख है, कष्ट है, क्लेश है, पाप है, रोग है, उनको काटने की शक्ति कहाँ है? वो हरि, हरि माने हरण करना। वो भक्तों के अंदर के दुख पाप क्लेश रोग को हरण कर ले, वही हरि, वो विष्णु है, वही हरि श्री रामचंद्र है।
0: पुराण कहते हैं कि श्री हरि तो समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आज हम अपनी इस खास पेशकश में आपको बताएंगे श्री हरि और नारायण के नामों का आखिर रहस्य क्या है। जानकार बताते हैं कि श्री हरि की महिमा को समझ पाना बड़े से बड़े ज्ञानी मनीषियों और तपस्वियों के लिए भी सहज नहीं रहा।
1: हरि के रहस्य इतने हैं कि हम लोग नखून के अग्रभाग के बराबर भी नहीं जान सकते। भगवान के स्वरूप को तो तत्त्वम न जानामि कि दिशोसि महेश्वर या दिशोसि महादेव तादृशाय नमो नमः। हे महादेव, हे भगवान, हम आपके रहस्य को नहीं जानते। जैसे आप दिख रहे हैं बस महादेव की तरह आपको समझ करके हम आपका पूजन कर रहे हैं, यही भाव हम वहाँ प्रकट करते हैं।
0: पुराणों में भगवान विष्णु के दो रूप बताए गए हैं। एक रूप में तो उन्हें बहुत शांत प्रसन्न और कोमल बताया गया है। दूसरे रूप में प्रभु को बहुत विकराल बताया गया है। जहां श्री हरि काल स्वरूप शेषनाग पर आरामदायक मुद्रा में बैठे हैं। प्रभु का रूप कोई भी हो उनका हृदय तो कोमल है, और तभी तो उन्हें कमलाकांत और भक्त वत्सल कहा जाता है। शास्त्रों में भगवान विष्णु के बारे में लिखा है कि शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभानगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी भिर्ध्यान गमयम वंदे विष्णुम भव भयहरम सर्वलोकेकनाथम। इसका अर्थ है कि भगवान विष्णु शांत भाव से शेषनाग पर आराम कर रहे हैं। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर मन में ये प्रश्न उठता है कि सर्पों के राजा पर बैठकर कोई इतना शांत कैसे रह सकता है।
1: चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पंचभिरेव च हुए देति पुनर्द्वाभ्यां तस्मै यज्ञात्मने नमः। जो श्री क्षीर सागर में भगवान विराजमान है शेषनाग के ऊपर, वह यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का स्वरूप है, आदि विष्णु उनको कहा जाता है। वह केवल सृष्टि के कल्याण के लिए समय समय पर आते हैं, बाकी समय जा करके ध्यानगम में हो करके उसी क्षीर सागर में वह भगवान आनंद से रहते हैं।
0: कहते हैं कि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, जिनका आदि और अनंत समझ पाना मानव के बस की बात नहीं। धर्म ग्रंथ के जानकार मानते हैं कि श्री हरि की कृपा पानी हो तो मन में निश्चलता और ईश्वर के प्रति भाव सहित अनुराग होना चाहिए, तभी आप पर नारायण की कृपा बरस सकती है।
1: हरि का रहस्य, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहां ही सुनाई बहुविधि सब संता। हजारों हजार हरि है, जैसे हरि ही ओम बा सहस्रशी रेखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपाद सभो मेघो सर्व दशांगुलांबा। तो कहा सहस्रशी रेखा, एक हजार सिर हो जिसके, मतलब हजारों हजार सिर हैं भगवान हरि के। सहस्रशी रेखा पुरुखाओ है वह पुरुष जिसके हजारों हजार सिर हैं। सहस्रशी रेखा पुरुखा सहस्राक्ष, हजार आंख है। अब ये हजारों हजार सिर हैं तो एक सिर में दो आंख होगी, हजारों आंख कहता है, हजार आंख नहीं, हजारों हजार आंख है जिनकी।
0: वो तो भगवान है और उनके लिए सब कुछ संभव है। श्री विष्णु के पास कई अन्य शक्तियाँ और राज हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर सकती हैं। यूं तो नारायण के रहस्य की था पता करना संभव ही नहीं, ये तो सूरज को दिया दिखाने के समान है। लेकिन पुराणों और धर्म ग्रंथों से मिली जानकारी से आज हम आपका परिचय नारायण के उन्हीं रहस्यों से करवाने की कोशिश करेंगे। जीवन का प्रत्येक क्षण कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से संबंधित होता है। इनमें परिवार, सामाजिक और आर्थिक कर्तव्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को बहुत प्रयास करना पड़ता है, अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो काल रूपी शेषनाग के समान डरावनी होती है। इसके कारण चिंता उत्पन्न होती है। भगवान विष्णु का शांत चेहरा ऐसी कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति को शांत रहने की प्रेरणा देता है। समस्याओं का समाधान शांत रहकर ही सफलतापूर्वक ढूंढा जा सकता है। तो इसलिए नारायण के इस रहस्य में छिपी सीख को अपने जीवन और अपने सोच में ढाल लीजिए। आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा। आगे हम श्री हरि और नारायण के नामों की महिमा और रहस्य को विस्तार से जानेंगे। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: श्री हरि को प्रसन्न करने की कई विधियां शास्त्रों में बताई गई हैं। सनातन संस्कृति में मान्यता भी है, शुभ कार्यों का आरंभ और अंत श्री हरि की कृपा से ही माना गया है। भगवान विष्णु को उनके भक्त नारायण भी बुलाते हैं और श्री हरि के नाम से भी पुकारते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि प्रभु के नारायण और श्री हरि नाम का क्या महत्व है? नहीं तो चलिए आपको बताते हैं।

0: यत्र तत्र सर्वत्र है नारायण। भाव विभोर भक्त के हृदय में है नाथ। जबकि अभिमानी के सम्मुख होते हुए भी उसकी दृष्टि से विमुख है ईश्वर। कौन भूल सकता है भक्त प्रहलाद की निश्चल भक्ति। सच्चे भक्त की सहायता ईश्वर किस रूप में आकर करेंगे ये कोई नहीं जानता।
1: हमारे अंदर भी हरि है, आपके अंदर भी हरि है, इस खंभे के अंदर भी हरि है। जैसे प्रहलदवा के कारण भगवा, प्रहलदवा के कारण रघवा बघवा बन गई लो। जैसे प्रहलाद भक्त प्रहलाद के बुलाने पर भगवान बघवा बाघ का रूप धारण किए, नरसिंह का रूप धारण किए और आकर के भक्त की रक्षा किया। उसी प्रकार भगवान अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए नाना प्रकार के स्वरूप को ग्रहण करते हुए अपने भक्तों के कष्ट को दूर किया करते हैं।
0: विष्णु पुराण और वेदों के अनुसार नारायण ही परम ब्रह्मा हैं। उन्होंने ही सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और प्रलय के देवता शिव को उत्पन्न किया। वो दया, सिंधु और करुणा के सागर हैं। वो जगत पिता और सृष्टि के पालनहार हैं। वो जगन्नाथ और वही दीनानाथ हैं। अद्भुत हैं भगवान नारायण के रहस्य।
1: भगवान श्री हरि जैसे भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव को भजले जो बंदे भाव से बेड़ा पार है। अहम भक्त पराधीना, भगवान ने कहा है श्रीमद् भागवत में कि भगवान भक्त के पराधीन रहते हैं। नारद जी ने एक बार पूछा भगवान से, प्रभु आप कहाँ, वेयर आर यू लिविंग, आप कहाँ रहते हैं भगवान? मैं बैकुंठ में नहीं रहता, ना हम बसामि बैकुंठे, योगी नाम हृदय न जा, न तो योगियों के हृदय में रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ? तो मधुभक्ता यत्र गायन्ति, हरि भक्त जहाँ पर बैठ करके भजन कीर्तन किया करते हैं भगवान वहाँ रहते हैं।
0: लक्ष्मीपति भगवान विष्णु अपने भक्तों पर हर रूप और हर स्वरूप से कृपा बरसाते हैं और इसीलिए वो जगत के पालनहार कहलाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु का नाम नारायण क्यों है? उनके भक्त उन्हें नारायण क्यों बुलाते हैं? श्री हरि के नारायण नाम में क्या रहस्य है? तो गौर से देखिए। कथा है जल का जन्म भगवान विष्णु के पैरों से हुआ है। इसके अलावा पानी को नीर या नर भी कहा जाता है। भगवान विष्णु भी जल में ही निवास करते हैं, इसलिए नर शब्द से उनका नारायण नाम पड़ा है। गंगा नदी का एक नाम विष्णु पदोत्की भी है, अर्थात भगवान विष्णु के पैरों से निकली हुई, जो इस बात को सही सिद्ध करती है। इसका अर्थ ये है कि पानी में भगवान निवास करते हैं। धर्म ग्रंथ के जानकार बताते हैं कि जो सभी जीवों का आधार, आश्रय और अंतिम लक्ष्य है, जो क्षीर सागर में विश्राम करते हैं और जो सभी जीवों के भीतर और बाहर व्याप्त हैं, वे ही सर्वशक्तिमान नारायण हैं। और इसीलिए भगवान विष्णु को उनके भक्त नारायण नाम से बुलाते हैं।
1: सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है भगवान लक्ष्मी नारायण के द्वारा। सब हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रकट होत मैं जाना। भगवान कहाँ रहते हैं? तो हर जगह भगवान रहते हैं। अब भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो अपने अंदर आप प्रेम तत्व को बढ़ाइए, भजन करिए। भजन बिना जीना है बेकार, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन।
0: लेकिन भगवान विष्णु को हरि क्यों कहा जाता है? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको हरि नाम का रहस्य भी समझाते हैं। भगवान विष्णु को हरि नाम से भी बुलाया जाता है। हरि की उत्पत्ति हर से हुई है। हरि का अर्थ है दूर करने वाला या चुराया हुआ। ऐसा कहा जाता है कि हरि हरति पापानी, जिसका अर्थ है हरि भगवान हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं और पापों को दूर करते हैं, और इसीलिए भगवान विष्णु को हरि कहा जाता है, क्योंकि सच्चे मन से श्री हरि का स्मरण करने वालों को कभी निराशा नहीं मिलती। कष्ट और मुसीबत चाहे जितना भी बड़ा हो, श्री हरि सब दुख हर लेते हैं। हरि का एक अर्थ भौतिक सुखों और ऐश्वर्य को नष्ट करना भी है, क्योंकि सांसारिक मोह माया जीवन को परमात्मा से दूर करती है, और इसलिए हरि का नाम इस अज्ञान रूपी अंधकार और वासनाओं का हरण कर लेता है।
1: भाव सहित शंकर जप करी कुभाव शिशुपाल, कुंभकरण आलस जपऊं अनक सहित दस भाल। भाव सहित भगवान शंकर 24 आवर्स 24 घंटा राम राम राम राम राम राम राम राम अनंग आराती 24 घंटा भगवान दिन रात राम राम जपते रहते हैं। भाव सहित शंकर जपाए और शिशुपाल ने गरियाए की जपा करी कुभाव शिशुपाल, 101 गाली दिया था शिशुपाल ने। अकुंभकरण आलस जपहूं, अकुंभकरण सोए सोए जपता था। कलयुग में केवल जप के द्वारा भगवान की सिद्धि होती है। एक नाम को बार बार हटा जाए उसी को कहा गया जप।
0: रामचरित मानस की चौपाई में लिखा भी है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसका आशय है कि ईश्वर हर किसी को उसकी अपनी सोच और भाव के अनुसार ही प्रतीत होते हैं। श्री विष्णु तो एक ही हैं, लेकिन उनके सहस्त्रों नाम हैं। आप उनके किसी भी नाम का जाप सुख में दुख में दोनों अवस्थाओं में कर सकते हैं, तो कीजिए श्री हरि के नामों का गुणगान, वो हमेशा करेंगे आपका कल्याण। आगे हम आपको श्री हरि की पूजा उपासना की विधि बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ।
2: देखिए, माना जाता है कि भगवान श्री हरि की उपासना से पापों का नाश हो जाता है। मान्यता तो ये भी है कि भगवान लक्ष्मी नारायण की संयुक्त उपासना से जीवन में समृद्धि आती है। इसीलिए जीवन में सुख शांति के लिए नारायण की कृपा जरूरी है। तो कैसे करें भगवान नारायण को प्रसन्न, चलिए आपको बताते हैं।

0: देव गुरु बृहस्पति हैं श्री हरि। गुरुवार का दिन सुख समृद्धि और सौभाग्य का दिन माना गया है। भगवान विष्णु की उपासना के लिए बृहस्पतिवार की तिथि समर्पित है। जानकार बताते हैं कि इस दिन की गई उपासना से कुंडली का बृहस्पति भी शुभ हो जाता है। शास्त्रों में भी श्री हरि को प्रसन्न करने के बेहद आसान उपाय बताए गए हैं, जिनके प्रयोग से आप प्रभु की कृपा के पात्र बन सकते हैं। तो वो खास उपाय क्या हैं? चलिए आपको बताते हैं। गुरुवार के दिन स्नान करने के बाद पीला वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें, पूजा में पीले फूलों का प्रयोग करें, श्री हरि के सामने घी का दीपक जलाएं, श्री हरि के किसी भी मंत्र का जाप करें। माना जाता है कि विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का जाप करने से साधक भव सागर पार उतर जाते हैं। कहा भी गया है कि कलिजुग केवल नाम अधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। कलियुग में केवल भगवान का नाम ही सबसे बड़ा आधार है, जिसका निरंतर जाप करके मनुष्य अपनी मुक्ति का मार्ग खोल सकता है।
1: ओम नमो नारायणाय, सात अक्षर का मंत्र हो या 12 अक्षर का मंत्र हो तो श्री राम जय जय राम 12 अक्षर हो जाता है। जैसे नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षरी है। 12 अक्षर का नाम लेने से व्यक्ति का मृत्यु और जीवन से मुक्ति प्राप्त होती है, कष्ट से निवृत्ति होती है। उसी प्रकार सात नाम अक्षर नमो नारायणाय, या केवल एक अलग से बोले केवल नारायणाय, तो इन शब्दों को कहने से ही व्यक्ति का जो उद्धार निहित है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र से को देने से सारे प्रकार की सिद्धियां उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती हैं। हम लोग गुरु मंत्र में भी इस मंत्र को देते हैं वैश्य इत्यादि को।
0: भगवान विष्णु की सच्चे मन से आराधना कीजिए, ताकि आपको मिल सके श्री हरि के आशीर्वाद की छाया, क्योंकि जिस पर श्री हरि की कृपा हो जाए उसे इस संसार में सब कुछ हासिल हो सकता है जिसकी उसने कामना की है।
2: तो श्री हरि की कृपा आप पर बरसती रहे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
4: Tune in radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. From what's happening now to what you want to hear next. Enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.
3: Good news today is really good. In this case, there are no news about the news. There are no news about the
2: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देशवासियों से फॉरेन ट्रिप की बजाय स्वदेश घूमने की अपील की, तो जीएनटी भी आप लोगों से अपने आसपास की खूबसूरत ऐतिहासिक जगहों की तस्वीरों को शेयर करने की अपील कर रहा है, और हम आपके भेजे गए उन वीडियोज को जीएनटी पर लगातार दिखा रहे हैं। तो चलिए आज आपको बिहार के बेगूसराय लिए चलते हैं, जहां पर एक ऐतिहासिक राम जानकी मंदिर आस्था और विश्वास की जीती जागती साल बना हुआ है।

0: हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिनी ब्लॉग। तो आपका स्वागत है एक छोटा सा ब्लॉग में घुमक्कड़ विशाल। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे सलोना बड़ी ठाकुरबाड़ी
1: का मुख्य द्वार है, तो मैं इससे अंदर प्रवेश कर रहा हूँ और सामने में ये प्यारा सा महल का यह दृश्य काफी सुंदर दिख रहे हैं, तो मैं इससे अंदर की ओर और बढ़ रहा हूँ।
0: सामने आप देख सकते हैं नागर शैली में निर्मित प्यारा सा लाल पत्थर से नक्काशी गई मंदिर जो ठाकुर जी को समर्पित है। यह मंदिर लगभग 300 साल पुराना है। इसे बनवाने में 16 वर्षों का समय लगा था, जो इस मूर्ति कला और स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना प्रदर्शित करता है।
1: आप देख सकते हैं यह मंदिर ठाकुर जी राम लला को समर्पित है। काफी सुंदर पत्थर की नक्काशी मूर्ति स्थापित है अंदर, तो आपको हम नजदीक से दिखा रहे हैं। मंदिर में सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान के साथ अन्य भी भगवान विराजमान है। राम लला का आशीर्वाद लेके अब मैं आगे मंदिर परिसर का भ्रमण करूंगा और आपको भी दिखाऊंगा। तो देखते रहे मंदिर को कितने अद्भुत तरीकों से तराशा गया है। काफी सुंदर कलाकृति आप देख सकते हैं मंदिर की। मंदिर के शिखर की छत पे आ चुका और यहाँ से आपको यह अद्भुत कलाकृतियाँ, लाल पत्थर से निर्मित यह मंदिर आपको नजदीक से दिखा रहा हूँ। सामने आप देख सकते हैं पत्थर की बनी हुई गेट है। सब देखने के बाद इस परिसर में स्थित यह तालाब देख रहे हैं, यह काफी सुंदर हरा भरा, चारों ओर वृक्ष लगा हुआ है।
2: तो आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए। अब टूरिज्म को बढ़ावा देने के इस संकल्प में भागीदार बनिए। बस आपको करना सिर्फ इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है, तो उठाइए अपना कैमरा और बनाइए ब्लॉग और फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। हम उसे GNT पर जरूर दिखाएंगे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: Turn your TV into a portal to serenity with Zen Life by Stingray. Enjoy wellness videos for yoga, sleep, meditation, and more, tailored to every moment of your day. Zen Life by Stingray, now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.
3: खबरें तो
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
11: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements।
12: एनसीआर में तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश, दिन में ही छाया अंधेरा, तापमान में गिरावट से मौसम सुहावना। पहाड़ों पर भी बदला मौसम का मिजाज, शिमला में तेज बारिश के साथ गिरे ओले, खुशनुमा मौसम में सैर सपाटा करते नजर आए सैलानी। केरलम में मॉनसून की पहली बारिश, मौसम विभाग ने की पुष्टि, अगले 7 दिन भारी बारिश का अनुमान, इस बार 3 दिन लेट हुई मॉनसून की एंट्री। पहली बार नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड किया सुखोई Su-30 MKI, लड़ाकू विमान, वायुसेना ने किया शक्ति प्रदर्शन, आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखा। सेना की ताकत में होगा और इजाफा, जल्द 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का स्वदेशी सैन्य ड्रोन खरीदने की तैयारी, इतिहास की ये सबसे बड़ी ड्रोन खरीद। सरिस्का टाइगर रिजर्व में पहली बार दिखा दुर्लभ सफेद मोर, पर्यटकों के बीच बना चर्चा का विषय, बफर जोन में घूमने वाले सैलानियों ने ली तस्वीर।

0: एवरीवन, नमस्कार। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। आज का टॉपिक यही है और इसी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बात आमिर खान की शादी को लेकर हो रही है और ये उनकी तीसरी शादी है। जैसे ही शादी की खबर सामने आई, तभी से सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। आखिर आमिर पर सोशल मीडिया में क्यों छिड़ी है बहस? मिस्टर परफेक्शनिस्ट की शादी पर बवाल क्यों हो रहा है? उम्र का ताना, रिश्तों पर तंज क्यों कसे जा रहे हैं? इसी पर है हमारी आज की ये खास पेशकश। हमारे साथ फिल्म और डिजिटल जगत से जुड़े जानकार रहेंगे मौजूद। दरअसल आमिर खान को लेकर सोशल मीडिया पर कमेंट्स की भरमार आई हुई है। दरअसल आमिर खान फिर से शादी करने वाले हैं और उनकी शादी 5 जुलाई को मुंबई में होगी। आमिर अपनी दोस्त गौरी स्ट्रेट के साथ शादी करेंगे। यह आमिर की तीसरी शादी है। बता दें कि उन्होंने साल 1986 में रीना दत्त से पहली शादी की थी, फिर उसके बाद साल 2002 में वो दोनों अलग हो गए थे। इसके बाद साल 2005 में किरण राव से उन्होंने दूसरी शादी की, जो 2021 तक चली, क्योंकि 2021 में दोनों का तलाक हो गया था। अभी आमिर की उम्र 61 साल है तो गौरी की उम्र 47 साल है। अब दोनों की शादी को लेकर सोशल मीडिया पर बहस हो रही है। कुछ यूजर्स आमिर को ट्रोल कर रहे हैं और कुछ आमिर के पक्ष में भी आ खड़े हुए हैं। वैसे ट्रोल करने वालों को भी ये समझना चाहिए कि जब मियां बीवी राजी तो क्यों ट्रोलबाजी? तो निजी मामलों में बेवजह का कमेंट क्यों होना चाहिए? सबकी अपनी अपनी जिंदगी होती है, तो निजी रिश्तों पर क्यों बाहरी दखल होना चाहिए? आज इसको लेकर इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सितारों को भी कानून और संविधान के दायरे में रहकर अपनी जिंदगी के हर फैसले लेने का पूरा हक है।
1: वो अपने रिश्ते को छुपाए नहीं रखना चाहते और शायद यही प्यार है जो अब तीसरी बार आमिर खान शादी कर रहे हैं और इस बार उन्होंने चूज किया है एक बहुत ही क्लोज नेट इंटीमेट शादी। 5 जुलाई को मुंबई में आमिर खान अपने जो है वाउज लेंगे गौरी स्प्रैट के साथ और ये माना जा रहा है कि बहुत ही एक सिंपल फंक्शन होने वाला है जिसमें उनके सिर्फ परिवार के लोग और करीबी दोस्त शामिल होंगे।
0: और चलिए आइए आपको बताते चलें कि कौन है गौरी स्ट्रेट जिनकी शादी आमिर खान के साथ हो रही है। गौरी दरअसल मूल रूप से बेंगलुरु से ताल्लुक रखती हैं। उनकी उम्र है 47 साल। गौरी के पिता तमिल ब्रिटिश हैं तो माँ पंजाबी आयरिश हैं। गौरी ने ब्लू माउंटेन स्कूल ऊटी से एजुकेशन ली है और साथ ही साथ वो लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट से फैशन स्टाइलिंग और फोटोग्राफी की भी पढ़ाई कर चुकी हैं। वो हेयर ड्रेसिंग ब्यूटी बिजनेस से जुड़ी हुई हैं, साथ ही साथ आमिर खान प्रोडक्शंस में भी सक्रिय भूमिका निभाती रही हैं। गौरी की पहली शादी से 7 साल का एक बेटा भी है। अब गौरी जिंदगी की नई पारी की शुरुआत करने जा रही हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। पंकज शुक्ला फिल्म क्रिटिक, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। डॉक्टर निशा खन्ना साइकोलॉजिस्ट और मैरिज काउंसलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मीनल पाठक सोशल एक्टिविस्ट हैं, लेजली त्रिपाठी एक्ट्रेस भी हैं और सोशल मीडिया से भी जुड़ी हैं। आप सबके पास आऊं उससे पहले जरा सना फरजीन हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। सना, आपसे जानना चाहेंगे, शादी 5 जुलाई को होने वाली है लेकिन इसको लेकर जिस तरीके से सोशल मीडिया पर कुछ लोग फेवर में हैं, कुछ लोग कमेंट लगातार कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर इसको लेकर क्या माहौल है?
2: जी बिल्कुल, आमिर खान ने डेफिनेटली सरप्राइज कर दिया ये अनाउंस करके कि वो शादी करना चाहते हैं। उन्होंने फाइनली मीडिया पर कंफर्म भी किया है कि 5 जुलाई को उनकी शादी है। डेफिनेटली अब तक एक जो ऑफिशियली एक सेलिब्रेशन या एक एक्साइटमेंट जो इंडस्ट्री से आती है वो हमें नहीं मिला है। बट जब उन्होंने गौरी स्प्रैट को इंट्रोड्यूस किया था मीडिया से तो शाहरुख सलमान से भी उन्होंने मिलवाया था और अभी पब्लिक फोरम में वो दिखते हैं हमेशा उनके साथ और कहीं ना कहीं बहुत खुशी की एक बात है कि एक 61 इयर्स पे वो चाह रहे कि एक कंपेनियनशिप जो है वो एक ऑफिशियलाइज हो एंड इंडस्ट्री ऐसी है कि आई थिंक इन सब मामलों में वो बहुत ज्यादा खुश होती है कि कोई किसी को प्यार मिल गया, किसी को जीवन साथी मिल गया। तो एक पॉजिटिविटी जो है वो हमें जरूर देखने को मिल रही है और क्योंकि ये थोड़ी सी इंटीमेट वेडिंग होने वाली है तो आई एम श्योर बहुत लोग कंप्लेन करेंगे कि उन्हें शादी की जो है दावत नहीं मिली। बट आमिर खान जाने जाते हैं अपने ग्रैंड पार्टीज के लिए तो वो डेफिनेटली एक सेलिब्रेशन तो वो जरूर रखेंगे अपने दोस्तों के लिए। बट आगे की माने तो गौरी स्टार के साथ जब से पिछले साल उन्होंने अपना रिलेशनशिप अनाउंस किया है, वो काफी सारे पब्लिक इवेंट्स में हमें दिखे हैं उनके साथ, और उनकी जो एक केमिस्ट्री है वो सब बहुत ज्यादा सब पसंद करते हैं। एक जो कंफर्ट लेवल आपको उन दोनों के बीच दिखता है वो एक बहुत ही एक साइन है कि एक बहुत सिक्योर रिलेशनशिप है, स्पेशली एक मैच्योर रिलेशनशिप है। एंड ये न्यूज एक सरप्राइज की तरह आया है क्योंकि आमिर खान ने पिछले कुछ इंटरव्यूज में ये मेंशन किया था कि उन्हें नहीं लगता कि 60 साल में उनके लिए शादी उन्हें सूट करेगी, या वो चाहते हैं कि शादी में वो तब्दीली हो उनके रिलेशनशिप को, क्योंकि वो दोनों काफी सिक्योर और एक कंफर्ट जोन में है। बट जब जब ऐसा कुछ न्यूज आता है तो आई एम श्योर सब के सब खुश है। और जैसे आप बता रही थी कि सोशल मीडिया पे तो डिवाइडेड फीडबैक है, बट इंडस्ट्री एक फैमिली की तरह है एंड सब बहुत ज्यादा खुश है कि आमिर ने ये डिसीजन लिया है कि वो अपना रिलेशनशिप एक ऑफिशियली एक शादी में उसे चेंज करेंगे।
0: बिल्कुल सना, लेकिन एक और बड़ी बात, क्योंकि सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के व्यूज आ रहे, हालांकि फिल्म इंडस्ट्री इसको बहुत पॉजिटिवली ले रही है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री जहां इस बात का इंतजार करती है वहां कहीं ना कहीं छोटी छोटी गॉसिप्स भी होती है। क्या इस तरह की कोई खबरें भी वहां से आई अभी तक?
2: जी गॉसिप्स तो नहीं आई है, बट आप बिल्कुल सही कह रही है कि सोशल मीडिया पे, क्योंकि आई थिंक एज फैक्टर जो है ना, हम इंडियन सोसाइटी अभी तक उसको अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाए। जब आप कुछ एक कन्वेंशनल एज के बाहर आप जाकर जब भी कुछ करते हो तो वो टोल डेफिनेटली होता है, एंड शायद इसीलिए आमिर खान जो कि अभी 61 साल की उम्र में वो सोच रहे कि वो शादी करेंगे तो वो ट्रोल हो रहे हैं। लेकिन ये ऑफकोर्स एक खुशी की बात है। एंड अगर गॉसिप की बात करो तो जब ऑफकोर्स गौरी स्टार्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वो काफी एक बहुत एक्साइटिंग फेज था, क्योंकि उससे पहले रूमर्स थे कि वो किसी को सीक्रेटली डेट कर रहे हैं, वो किसी से बैंगलोर मिलने जाते थे, एंड शायद यही सारी गॉसिप को बंद करने के लिए आमिर खान ने डिसाइड किया था कि वो जाके ऑफिशियली मिलवा देंगे गौरी स्टार से। तो आमिर को डेफिनेटली बहुत अच्छे से पता है कि वो किस तरीके से गॉसिप बंद करके एक ऑफिशियल ये करे, एंड शायद मुझे यही लगता है कि अभी इससे पहले इनके रिलेशनशिप पे और गॉसिप बनती तो उन्होंने यही डिसाइड कर लिया कि चलो हम शादी कर लेते हैं।
0: लेकिन आमिर के इस स्टेप को कैसे देखा जा रहा है, क्योंकि एक बहुत

0: रिश्ते को शादी का नाम देना चाहिए। इसीलिए थोड़े से सरप्राइज सब डेफिनेटली थे, क्योंकि पिछले साल से हमें यही लग रहा था कि एक ये अफेयर, एक रिलेशनशिप बन के रह जाएगा, बट कहीं ना कहीं शायद ये इतना स्ट्रांग रिलेशनशिप है कि आमिर को जरूरत हुई कि चलो मैं इसे ऑफिशियलाइज करता हूँ। एंड ऑफकोर्स गौरी स्ट्रैट क्योंकि आमिर खान प्रोडक्शंस के साथ अब जुड़ चुकी है, तो हम उन्हें पब्लिक इवेंट्स पे देखते हैं, फिल्म की जब रीडिंग होती है उसमें वो इन्वॉल्व रहती है, तो जो अब वो एक बिजनेस वुमन, जो एक पार्टनर जो एक सही मामले में बन रही है, वो मायने में वो दिखने को मिल रहा है। तो शायद अब प्रोफेशनली वो इतनी ज्यादा इन्वॉल्व थी, पर्सनली उनके सारे फंक्शंस में हमें गौरी स्ट्रैट देखने को मिलती है, उनके बर्थडे सेलिब्रेशन पे अभी हाल फिलहाल हमें देखी थी। एंड शायद यही है कि कहीं ना कहीं इतना सिक्योर एक रिलेशनशिप था कि उन्हें लगा कि अब शायद हम इसे ऑफिशियलाइज कर सकते हैं। आमिर हमेशा सरप्राइज ही करते हैं जब उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को।
1: हाँ जी सना, हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ, हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं, आप रहिए हमारे साथ क्योंकि इस पर बातचीत आपसे आगे करेंगे। लेजली, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं आप और सोशल मीडिया की सारी हलचल पर नजर भी आपकी रहती है, जेन जी को आप रिप्रेजेंट करती हैं। आमिर खान की शादी की जब खबर आई, कल आई खबर कि 5 जुलाई को शादी कर रहे हैं, तो पहली बात जो आपके दिमाग में आई?
2: नमस्ते मैम एंड रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट, नमस्कार मैम। इट्स अ ग्रेट न्यूज, एक्चुअली गुड न्यूज, टुडे में गुड न्यूज ही है। एंड कल जैसे ये न्यूज आए तो हमारे घर में क्या, मेरे फ्रेंड्स सबका एक ही बात था कि आमिर खान दिल से बहुत बच्चे हैं, उनका दिल बच्चा है। एंड वो अनाउंस करते खुले आम कि यू नो आई एम इन लव, जब कुछ साल पहले उन्होंने अनाउंस किया था उनकी गर्लफ्रेंड बनी थी, फिर अभी शादी हो रही है, आई वांट टू गेट मैरिड। एंड वो एक्चुअली केयर नहीं करते कौन क्या सोचता है, जैसे आपका टॉपिक भी है जब मियां बीवी राजी तो ट्रोल बाजी, इन सबसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आमिर खान जी का जैसा माइंडसेट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ही डजंट हाइड हिज रिलेशनशिप्स, क्योंकि बहुत सारे स्टार्स या बहुत सारे लोग सोसाइटी में, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े पोजिशंस में ओपनली बोल नहीं सकते जो दिल की बात होती है, किसी को प्यार करते हैं तो सोसाइटी के लिए पीछे छोड़ आते हैं सब कुछ रिलेशनशिप्स और आगे बढ़ते हैं। बट आमिर खान दुनिया के साथ लड़ भी पड़ते हैं अपने प्यार के लिए, दैट्स अ ब्यूटिफुल थिंग। एंड आजकल का ये सोसाइटी ऐसा हो गया, बस जेन जी नहीं, ये माइंड सेट हो गया है कि इफ आई एम फीलिंग कंफर्टेबल किसी के साथ तो मैं ट्रेडिशन ये सबको भूल रहा हूँ और मुझे जो कंफर्टेबल लग रहा है इमोशनल सिक्योरिटी।
1: लेकिन बहुत सारे लोग आमिर को इस आमिर की इस कदम को लेकर उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। पंकज शुक्ला जी, आपका इस पर क्या कहना है?
3: आमिर एक सुपरस्टार हैं और उनके लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं। अब चाहने वाले का हक होता है अपने स्टार के ऊपर कि वो कैसे उसको देखेगा, उसकी उम्मीदें टूटती हैं तो ट्रोल करता है, उसको अच्छा लगता है तो उसकी तारीफ भी करता है। तो ट्रोलिंग किसी भी फिल्म स्टार की पर्सनालिटी का, उसके करियर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और ट्रोलिंग कई बार अच्छी भी होती है, कई बार उसकी गलत भी तरीके से देखा जाता है। अभी आमिर जो ट्रोल हो रहे हैं शायद अपनी उम्र की वजह से हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है चूंकि इतना पर्सनल मामला है और आमिर, अगर गौरी स्प्रेड की बात की जाए, गौरी स्प्रेड से उनका रिश्ता करीब 3 दशक पुराना है। बहुत कम लोगों को ही पता है कि जब पहली शादी रीना दत्ता के साथ आमिर की चल रही थी तब गौरी स्प्रेड उनको पहली बार मिली थी, बाद में बात आई गई होगी, ये अभी फिर से रिजोनेट हुआ है 3-4 साल पहले, क्योंकि उनका करीब 28 साल पुरानी जान पहचान है। 28 साल पुरानी जान पहचान में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया गौरी स्प्रेड को दूसरी शादी के तलाक के बाद। और अगर आप दोनों शादियों का अंतर देखें तो रीना दत्ता के साथ पहली शादी 1986 में हुई, तलाक 2002 में हुआ, 16 साल
1: का दोनों।
3: सेकेंड मैरिज 2005 में हुई किरण राव के साथ, तलाक 2021 में, 16 साल।
1: ठीक है,
3: तो दोनों तलाक उन्होंने 16 साल करा। अब 2026 में उनकी तीसरी शादी होने जा रही है, तीसरी शादी उनको दोनों पत्नियों को तलाक दे चुके हैं। वो लगान उनकी जो पहली फिल्म थी जिसमें किरण राव ने काम किया था उसके 25 साल पूरे हो रहे हैं 15 जून को, रीना दत्ता उसकी प्रोड्यूसर थी, तो कई सारे संयोग हैं। उस हिसाब से मुझे लगता है आमिर खान ने डेट भी चूज की होगी 5 जुलाई की, क्योंकि 15 जून को 25 साल पूरे होंगे लगान के और 5 जुलाई तक उनका एक थोड़ा सा बना रहेगा, बातों की बातों में लोग चर्चा करते रहेंगे उसकी।
1: लेकिन सर इसमें फिर एक बात है, अब आपने इस बात का खुलासा किया कि बहुत पहले से, इन 3 दशक से जान रहे थे, यानी उस टाइम शायद गौरी की उम्र 16 साल रही होगी फिर।
3: करेक्ट करेक्ट,
1: है ना।
3: और
1: तो क्या ये पुराना प्यार तो नहीं,
3: वही कहा जा सकता है कि इनकी पुरानी प्यार था नहीं था, जान पहचान तो थी।
1: हाँ।
3: और काफी बातें इनकी होती थी कि बाद में शायद किरण राव के आने के बाद वो आमिर उनसे दूर होते चले गए, क्योंकि ये मैं जो बात कर रहा हूँ आई थिंक 1998-99 की बात है, तो वहां से बात शुरू हुई। बाद में कैसे दोनों के बीच में बातचीत बंद हुई, वो बेंगलुरु चली गई और उनका अपना बिजनेस शुरू हो गया, आमिर यहाँ बिजी हो गए
1: और फिर उनकी शादी भी हो गई उधर।
3: करेक्ट,

0: तो ये होता है ना, कई बार दो लोग अलग अलग रास्तों में निकल जाते हैं, बाद में जाके कहीं आगे जाके फिर से उनका संगम होता है, दो नदियां बह गई अपने अपने
1: तो
0: रास्तों पर,
1: फाइनली
0: किसी ने
1: अब
0: अपने को फिर।
1: दोनों साथ आ गए। चलिए मैं आपके पास आऊंगी, और भी अपडेट्स हैं आपके पास, बहुत सारी किस्से कहानियां इससे जुड़ी। लेकिन डॉक्टर निशा, हमारी सोसाइटी इस तरह की है कि अगर कोई औरत या मर्द किसी की भी बात कर ले, ये तो सेलिब्रिटी है, तीसरी शादी को लेकर जहां एक तरफ खुशी का माहौल है, जहां अभी देखिए बहुत अच्छी बात पता चली कि 3 दशक पुराना दोनों का रिलेशन है, पहले से जानते थे, पंकज जी ने यह बताया, तो हम कह सकते हैं कि हो सकता है पहला पुराना प्यार हो जो कि वापस से उनको मिल गया है। लेकिन जो ट्रोलर्स हैं उनको देखिए, कमेंट्स पॉजिटिव भी आ रहे हैं, नेगेटिव भी आ रहे हैं। क्या एक सेलिब्रिटी को भी जीने का हक नहीं? क्या वो अपनी खुशी, अपना प्यार वापस से नहीं पा सकता है? क्या 61 साल की उम्र में शादी करना गलत बात है?
2: देखिए, आई वुड से शादी किसी भी उम्र में करना गलत बात नहीं है, बट ये देखिए उनका पर्सनल चॉइस है और ये किसी भी इंसान की पर्सनल चॉइस हो सकती है। जैसा कि मेरे कड़ी कह रहे थे कि उनकी अगर मैरिज का पीरियड देखें तो पहली शादी भी उनकी 16 ईयर्स चली, दूसरी शादी भी उनकी 16 ईयर्स चली, अब वो आई वुड से दैट उनको लग रहा है कि 61 ईयर्स की एज में भी उनको थर्ड मैरिज करने की जरूरत है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कई बार रिश्तों में मुझे लगता है उनका प्यार में कुछ ज्यादा ही विश्वास है कि ही इज रेडी टू गिव द थर्ड चांस टू
1: हिमसेल्फ। सबसे बड़ी बात देखिए, रीना, किरण राव एंड इनफैक्ट गौरी, जब तीनों को हम कभी कभी पब्लिकली देखते भी हैं आमिर के साथ, तो सबकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है।
2: मैम देखिए, कई बार क्या होता है, प्यार रीजन नहीं होता है दो लोगों के अलग होने का, दो लोगों के अलग होने के मल्टीपल रीजन हो, प्यार सिर्फ 5% केसेस में रीजन होता है दो लोगों के अलग होने का, अधिकतर केसेस में अंडरस्टैंडिंग या कई बार हम रिलेशनशिप में ग्रोन अपार्ट हो जाते हैं, जैसे क्योंकि हमें भी पता है कि रीना ने भी साथ पे काम किया, बच्चे हैं और ऑब्वियस है, अब किरण राव से भी उनका बच्चा है, तो आप पेरेंट तो हमेशा रहेंगे, और अगर उसमें भी अगर आप कॉर्डियल रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे तो आपके बच्चे सफर करेंगे। अगर आपने आमिर खान की इंटरव्यू सुनी हो तो जब वो मेंटल हेल्थ को कई बार काउंसलिंग के लिए प्रमोट कर रहे होते तो उन्होंने कई बार बोला है कि मुझे कई बार एहसास हुआ है कि मैं बच्चे के ग्रोन अप के टाइम पर उनके साथ था ही नहीं। अब ये लेडी भी मैरिड है, उनका भी एक बच्चा है, शायद उनको लग रहा है कि वो अपने आप को एक थर्ड चांस देना चाहते हैं और उनका लव में होप अभी भी खत्म नहीं हुआ है, उनको लग रहा है कि इस बार शायद ये बॉन्ड टिल डेथ होगा उनके साथ, तो इट्स अ गुड थिंग, उनका पर्सनल चॉइस है। और आई थिंक सो, सेलिब्रिटीज के भी दिल होते हैं, उन्हें भी तकलीफ होती है, वो भी एक इंसान है, और ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी हैं जिन्होंने दो दो तीन तीन शादियां की हैं। देखिए, ये किसी का पर्सनल चॉइस है अगर वो शादी करना चाहता है। मुझे ये चीज लग रही है कि रिश्ते में उनकी अभी भी इतनी पॉजिटिव उम्मीद है कि मेरा ये रिश्ता होगा, और कई बार ऐसा भी होता है अगर कोई आपके साथ डेट कर रहा है, स्पेशली अगर उसकी एज भी कम है, तो उसकी अपनी इनसिक्योरिटीज हो सकती हैं, वो चाह सकती है कि मुझे गर्लफ्रेंड बनकर नहीं रहना है, मैं भी एक वाइफ का दर्जा चाहती हूँ, तो शायद इसलिए भी उनको लग रहा हो कि शादी मैं कर ही लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग साथ तो रह ही रहे और पब्लिक आई में भी आ ही रहे हैं। तो हो सकता है कई बार मैरिज, देखिए रिलेशनशिप आज की डेट में, आई थिंक सो ये लेज़ली भी इस बात से सहमत होगी, जब लोग प्यार में होते हैं तो वो शादी के जितना ही होता है, बस उस प्यार में हम एक दूसरे के साथ होते हैं, जब हम लिव इन में रहते हैं तो वो कमिटमेंट लेवल थोड़ा सा पब्लिक हो जाता है, और जब हम मैरिज करते हैं तो एक सोशल स्टैंप लग जाता है। लोगों को, जब आप सोसाइटी की बात करते हैं, सोसाइटी इस चीज को अपनाती नहीं है, उनको लगता है स्पेशली हमारे हिंदुस्तान में, अगर आपकी शादी हुई है तो टिल डेथ आप अपने पार्टनर के साथ रहने चाहिए, पार्टनर अच्छा है, बुरा है, अच्छी है, बुरी है, पर आई थिंक सो इससे निकलना जरूरी है। अब जैसे त्विशा शर्मा का केस है, वो भी इसी बात पर हाईलाइट करता है कि शादी जिंदगी का हिस्सा है, अपनी लाइफ खत्म करने से अच्छा है आप एटलीस्ट रिश्ते से बाहर आ जाइए। तो मुझे लग रहा है इट्स नॉट ए गुड थिंग और अ बैड थिंग, ही वांट्स टू डू इट, बहुत अच्छी बात है, आवर बेस्ट विशेस आर विद हिम।
1: बिल्कुल पंकज जी, एक चीज जो बहुत अच्छी और पॉजिटिव आती है आमिर खान और उनके तमाम रिलेशंस जो भी रहे हैं, चाहे रीना दत्त के साथ रहा, किरण राव के साथ रहा, या फिर यहाँ अभी हाल फिलहाल में जब उनकी बेटी की शादी हुई थी तो देखा गया था कि कैसे पूरा परिवार एक साथ था, उनकी दोनों पत्नियां किरण भी और रीना भी, इनफैक्ट रिचुअल्स भी दोनों कर ही रहे थे, और अभी भी जब भी इनको देखा गया है गौरी के साथ भी, तब भी लगता है कि गौरी और रीना दोनों कंफर्टेबल हैं। ये आमिर खान ने एक तरीके से एक संदेश भी दिया है कि ठीक है, हम सेपरेट तो हो रहे हैं लेकिन वो घर जुदा हो सकते हैं, लेकिन रिश्ते बिल्कुल वैसे ही रहेंगे।
0: रिश्ते बनाना और रिश्ते निभा कर रखना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो आमिर खान रिश्ते बनाते तो हैं बहुत जल्दी, जैसा कि उनके बारे में सब जानते हैं इंडस्ट्री में, रिश्ते बनाने के बाद रिश्ते निभाना उसमें जहां तक मुझे लगता है आमिर थोड़ी देर बाद बोर होने लगते हैं, जो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस बाकी लोगों के साथ भी इंडस्ट्री में रहा है। जरूरी नहीं किसी एक स्त्री के साथ ही मैं बात कर रहा हूँ, उनकी पत्नी के साथ रिश्ता रहा, किरण के साथ रिश्ता रहा, तीसरा रिश्ता उनका बना हुआ है, वैसे भी वो रिश्तों में बोर जल्दी होते हैं और एडवेंचर के शौकीन है। जितना मैं आमिर को जानता हूँ पिछले 25-30 साल में, जब आमिर के साथ रिश्ते बनते हैं, आपकी जान पहचान होगी, तो दिन में वो आपको 50-60 मैसेज भी भेज सकते हैं, फिर वो आपको बता भी सकते हैं कि उनको कहाँ जरूरत पड़ रही है आपकी, वो जरूरत पूरी होने के बाद वो टोटली कट ऑफ भी हो सकते हैं आपसे, फिर आपके मैसेज का रिप्लाई देना भी बंद कर सकते हैं। सेम उनके साथ हुआ, अगर आप शुरुआत से देखें दिल चाहता है के समय जब बन रही थी फिल्म, रीना दत्ता के साथ उनका पहला विवाद हुआ, जो बहुत कम लोगों को पता है कि वो कह के निकले थे कि मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया नहीं और एक दिन और रुक गए बंबई में, कहाँ रुके उसकी डिटेल में मैं नहीं जाता हूँ। रीना दत्ता ने शुरुआत की थी तलाक देने की, रीना दत्ता ने खुद कहा था कि मैं आपको तलाक देना चाहती हूँ। उसके बाद लगान की शूटिंग हुई, लगान की शूटिंग पे किरण राव उन्हें मिली, उस समय उनको पता होगा रीना दत्ता को क्या हो रहा है, किरण राव के साथ उनका रिश्ता बनता है, किरण राव से उनका बेटा है। अगर आप ईरा की एज देखें, ईरा का डेट ऑफ बर्थ देखें, और जो मैंने आपको सबसे पहला फैक्ट बताया गौरी स्प्रेड के साथ उनका जो पहला रिलेशन है, आई गेस जब ईरा रही होंगी पेट में उस समय उनका पहला रिलेशन आमिर के साथ गौरी स्प्रेड का बना होगा, तब उनकी जान पहचान हुई होगी, वो टाइम फ्रेम अगर आप ध्यान रखें। तो ईरा की शादी में सारे लोग इकट्ठा हुए, गौरी स्प्रेड भी हो सकता आई हो, इन्वाइट की गई हो, चूंकि मीडिया में नहीं आ पाई, अभी लास्ट उनको इंट्रोड्यूस किया है, तो आमिर को यह पता है किस मौके पे किसको बुलाना है, किसको कैमरे के सामने रखना है, किसको नहीं रखना है। ब्रांडिंग और मार्केटिंग और अपना परसेप्शन बनाना आमिर को बखूबी आता है, वो चाहे पारिवारिक मसला हो चाहे उनका कारोबारी मसला हो, तो आमिर अच्छी तरह से जानते हैं कि फोटो फ्रेम अच्छा कैसे बनेगा, कैमरे के सामने कैसे फ्रेम अच्छा बनाएगा।
1: में भी फोटो फ्रेम को ज्यादा तवज्जो दी जाती है।
0: करेक्ट करेक्ट। ये मुंबई फिल्म इंडस्ट्री जो है, मुझे अभी निशा जी हैं साइकोलॉजिस्ट हैं, वो और इसको गहराई से बता सकती हैं।
1: बोलना बेचारी, आप अपनी बात खत्म कीजिए फिर उनके पास जाते हैं।
0: फिल्म सेलिब्रिटी जो होती है, जैसे एक बार अमिताभ बच्चन से प्रश्न किया गया था कि आप एक्टिंग कब नहीं कर रहे होते हैं, क्या कभी आप 24 घंटे में ऐसा होता है कि जो अमिताभ बच्चन जो रियल अमिताभ बच्चन है वो है। सेम आमिर खान के साथ मैंने आमिर खान से प्रश्न किया था कि आप आमिर खान कब नहीं होते हैं, क्योंकि इन लोगों को अभिनय करने की इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, हर तीसरा आदमी जो उनसे मिलने आ रहा है वो उनके घर का नहीं है, तो उन्हें उसी के साथ मिलना है। आमिर खान द एक्टर के रूप में मिलना है, आमिर खान द पर्सन के रूप में बहुत कम मिलते हैं वो, और बहुत गिनती के लोग हैं जो उनसे मिल पाए आमिर खान एज द पर्सन। तो वो एक उनके सामने जो एक मिथ बना हुआ, जो मिस्टीरियस उन्होंने बना रखी है, अपने आभा मंडल जो बना रखा है, उसको छेद पाना, उसके बारे में पता कर पाना बहुत आसान नहीं है।
1: बिल्कुल। अब बताइए निशा जी, क्योंकि चर्चा रिलेशनशिप की हो रही है, पंकज जी की बात को लेकर एक तो आप कुछ कहना भी चाह रही थी, और सवाल मेरा ये भी है, जैसे उन्होंने कहा कि एक रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहते, वो बोर हो जाते, कहां पर कंपैटिबिलिटी इश्यूज आते हैं?
2: देखिए, जब मैंने भी सेलिब्रिटीज के साथ काम किया है, क्योंकि मुझे लगता है इमोशंस, मैं ना थोड़ा सा सहमत नहीं करती हूँ सर की बात से। देखिए, वो भी एक इंसान है, जब आप एक्टिंग करते हो तो आपका इमोशंस पर और आपके रोल्स का भी असर पड़ता है। कई बार आप रोल्स में या इमोशंस में या अपने काम में इतना ज्यादा बह जाते हो कि एज ए पर्सन भी आपको अपनी इमोशंस को कैरी डाउन करने में प्रॉब्लम होता है। अब उस समय में अगर आप काम में ज्यादा उलझे हुए, क्योंकि सबको पता है कि आमिर खान की पर्सनालिटी ऐसी है कि वो वर्कहोलिक है, तो जब वो काम करते हैं तो सिर्फ काम में घुस जाते हैं, तो ऐसे समय में अगर कोई इंसान आपको समझता है तो मुझे लग रहा है वो जब उनको समझता है तो गलत फैसले भी होते हैं। अब आपके इमोशनल इंटेलिजेंस का भी उसमें रोल होता है, वो खुद को कितना समझते हैं और उन्हें कितना, जैसा कि सर ने एक चीज बोली कि हाँ किसको कितना दिखाना है, डेफिनेटली एक प्राइवेट लाइफ उनकी बहुत क्लोज लाइफ होती है और वो सबको दिखाना भी नहीं चाहते, बट कई बार वो इमोशंस के साथ खुद ही गलतियां करते हैं ऐसे लोग। मैंने बहुत सारे लोग देखा है जो, क्योंकि मल्टीपल अगर आप रिलेशनशिप में एट अ टाइम जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप ही अपनी इमोशंस में उलझ जाते हो। बट एक चीज है, कहीं ना कहीं ये भी इंसान है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो इंसान है, और अगर वो बोर हो जाता है कि बात नहीं हो सकता है, आपका किसी एक इंसान से इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन के बाद आपको लगता है, आप इतने प्रैक्टिकल हो, आपको लगता है इसकी अब जरूरत नहीं है, या ये रिश्ता मेरी लाइफ में कुछ ज्यादा इंटरवीन कर रहा है या मेरी डेली रूटीन में, अब मैं इसको इतना ज्यादा तवज्जो ना दूं, तो आप उस अकॉर्डिंग पर्सन को अपनी लाइफ से आउट कर देते हो, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, क्योंकि रिश्ते ना दो तरफा होते हैं। रही बात उनके दोनों डाइवोर्सेस की, चाहे वो रीना के तलाक की बात हो या किरण राव की, हिंदुस्तान में ऐसा होता है और आई हैव सीन केसेस जहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, अगर पार्टनर दूसरे पार्टनर के पास जा रहा है कुछ समय के लिए, शायद कई बार वाइफ्स जो है या पार्टनर जो है वो कंफर्टेबल होता है, शायद पार्टनर आ जाएगा उस उम्मीद से, और जब उन्हें लगता है कि पार्टनर नहीं आने वाला है पर मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है मैन काउंसलिंग के दौरान भी ये बोलते हैं, आई एम गिविंग यू रिस्पेक्ट द ड्यू रिस्पेक्ट विच यू रिक्वायर्ड, बट मैं शायद तुम्हारे साथ उस तरह का प्यार नहीं है, मैं ग्रोन आउट ऑफ लव हो चुका हूँ। तो वो रियलिटी को एक्सेप्ट करना, और मुझे लगता है इन दोनों पत्नियों ने उस रियलिटी को एक्सेप्ट किया है क्योंकि इनके बच्चे भी हैं, तो ये फ्रेम वाली बात ना होके, क्योंकि उनके बच्चे हैं दोनों पार्टनर से, तो उनको एक रिश्ता बना के रखना पड़ेगा, और जितना आप रिश्ते को कॉर्डियल रखोगे उतना आप अपने बच्चों के लिए आसान होगा आगे जिंदगी में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको ये ना लेकर कि वो एक फ्रेम के लिए कर रहे हैं, वो भी एक इंसान है, इमोशंस हैं, हर्ट होती हैं, उनको एक मशीन ना देकर एक इंसान देखे। तो अगर वो रिलेशनशिप से ग्रोन आउट हो रहे हैं और वो फैसला कर रहे हैं मुझे इस रिश्ते से बाहर निकलना है, या उनका पार्टनर कह रहा है ठीक है तो मेरे साथ नहीं रह सकते, तो बेटर है अगर दो अलग रूम्स में रहें और तुम मुझे अपनी लाइफ के बारे में ना बताओ और ट्रांसपेरेंट ना हो, तो बेटर है हम खुशी खुशी अलग हो जाओ और एक ऐसा रिश्ता रखें जो एक स्टेबल कम से कम रहे, जिसमें हम इज्जत से बात कर सके और इज्जत से रह सके। तो मुझे लग रहा है बच्चे इन्वॉल्व है, हम उस चीज को ना भूलें और पेरेंटिंग का रोल उनको जिंदगी भर निभाना होगा।
1: लेस्ली एक बार आपके पास आते हो, देखिए जो तो वेलकम कर रहे हो ठीक है, लेकिन अब सवाल यही है, यहाँ पर चर्चा हम इसी को लेकर कर रहे हैं कि ये सबका निजी फैसला है, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, आम जिंदगी में भी लोग दो या तीन शादियां करते ही हैं, लेकिन आमिर खान को ट्रोल क्यों किया जा रहा है, और आमिर खान पहले ऐसे एक्टर नहीं है, किशोर कुमार की चार शादियां हुई, कबीर बेदी ने, और कबीर बेदी का तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, उन्होंने भी चार शादियां की और जो लास्ट शादी थी उसमें एज डिफरेंस बहुत ज्यादा था, संजय दत्त की तीन शादियां, करण सिंह ग्रोवर ने तीन शादियां की, लास्ट में बिपाशा बसु के साथ उनकी शादी हुई, एक बेटी उनकी वहां पर है, तो फिर आमिर खान को इतना ट्रोल क्यों किया जा रहा है, पहले कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी को लेकर कोई इतना बवाल हुआ हो।
3: मैम स्टार पावर पे भी डिपेंड करता है और उनकी फिल्में भी आ रही है, तो एक्चुअली उससे क्या होता है कि ऑडियंस के साथ उनका एक रिश्ता भी है, तो ऑडियंस जब उनकी फिल्में भी देखने जा रही है, पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो आई थिंक इन अ वे दे आर लाइक अच्छा आपका पर्सनालिटी ऐसा है, तो लोग सवाल कर रहे हैं, जैसे होता है कि हम किसी के साथ पर्सनल लेवल में सवाल जब आप कर सकते हैं तो लोग अपना व्यू दे रहे हैं, एंड अभी जमाना ऑब्वियसली थोड़ा और मच्योर हो गया है जहाँ पे वो समझ रहे हैं कि पीस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हो सकता है इसी वजह से आमिर खान जी ने ऐसे कुछ डिसीजन लिए होंगे, बट वो भी पूछ रहे कि इज दिस अ राइट थिंग टू डू ये उम्र में ये एग्जाम्पल सेट करना, क्योंकि आगे जाके बहुत सारे फैमिलीज में हो सकता है कि पीपल विल बी लाइक अच्छा 60 की उम्र, यूजुअली क्या होता है कि 50s के बाद अगर एक फैमिली चल आ रही है उनको लगता है कि जिंदगी लाइक निभाते रहेंगे लाइक एंड तक, बट अभी क्या हो रहा है लोगों को डर भी है कि एनी टाइम अ हस्बैंड कैन वॉक आउट ऑफ अ रिलेशनशिप एंडेड डिवोर्सेड और एक यंगर लेडी से शादी करेंगे, तो इसका भी एक डर रहता है सोसाइटी में, सो लॉट ऑफ इंटेलिजेंट पीपल एवरीबडी विल बी आस्किंग हिम कि क्या ये सही डिसीजन है, क्या आप अपने दिल से करो या आपका एक चलता रहता है कि आई एम बोर्ड एंड मैं शादी करूं, तो आई थिंक एवरीबडी इज आस्किंग दिस क्वेश्चन, बट आमिर खान आई थिंक ही कीप्स सेइंग दैट ही कांट स्टे अलोन एंड दैट इज हिज माइंडसेट, और उनका बनता नहीं है किसी के साथ, तो ही इज ऑल्सो वेरी वोकल, तो लोग भी उनके साथ वोकल होकर पूछ रहे हैं, जैसे आपने कुछ एग्जाम्पल्स दिए दूसरे आर्टिस्ट का, सबने ट्रोलिंग देखा है, इवन करण सिंह ग्रोवर सबको ट्रोलिंग मिला है, इवन जेनिफर लोपेज हॉलीवुड में आई थिंक 50s में है, उनकी तो चार शादियां हो चुकी है, उनको बहुत ट्रोलिंग होती है, तो आर्टिस्ट को ट्रोलिंग तो होता ही रहता है, वो कैसे आगे बढ़ते हैं कान बंद करके।
1: ये भी हो सकता है ना कि आजकल हर चीज सोशल मीडिया पर है और लोगों के पास एक तरीके से आजादी आ गई कि हम कुछ भी कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन यहीं से चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए, फिलहाल एक ब्रेक, तुरंत आते हैं।

0: Are you ready to tackle those home projects? Whether it's a new patio, fresh paint, or just some more space, now's the perfect time to make it happen. With a home equity loan from CME Federal Credit Union, you'll get an introductory 3.99% APR for 12 months, giving you the flexibility to take on those dream house projects. Your home's next chapter starts at CME. Visit cmefcu.org to apply today and to get your plans underway.
1: Terms and conditions apply. Federally insured by NCUA. Equal housing lender.
2: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
3: मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: वर्सेज आमिर खान, इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। पंकज जी, आपके पास आऊंगी, यही सवाल जो मैंने लेजली से किया था। हमारे पास ऐसे तमाम सेलिब्रिटीज की एक लिस्ट है, आप भी वाकिफ होंगे। कबीर बेदी को ही ले लीजिए, 4 शादियां। करण सिंह ग्रोवर, 3 शादियां। और जब पहली 2 शादियां टूटी थी तो तब भी हंगामा काफी हुआ था। बिपाशा बसु के साथ उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल भी रहा है, लेकिन यहां पर भी 3 शादियां।
1: क्या होता है कि जैसे लेज़ली ने कहा कि आपका स्टेटस क्या है इंडस्ट्री में और बिटवीन अमंगस्ट द ऑडियंस। आज की तारीख में अगर आप पॉपुलेशन काउंट करें इंडिया की, तो 60+ के जो लोग हैं उनकी पॉपुलेशन करीब 10% हो चुकी है ऑलरेडी। आने वाले 10 साल में हिंदुस्तान में बुजुर्गों की संख्या और बढ़ने वाली है, जिसके ऊपर अभी बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं गया है। तो 60+ का कोई आदमी जब तीसरी शादी करता है तो सबसे पहला रिएक्शन ये होता है, क्या ये इसके रिपल इफेक्ट सोसाइटी में हो सकते हैं, या ये एक एग्जाम्पल सेट हो रहा सोसाइटी में, या किसी सिर्फ एक का पर्सनल डिसीजन है और वही रुक जाएगा। तो अगर कोई अननोन आदमी है जो साइडलाइंस पे है, कोई एक्टर जो ऐसा कुछ काम कर रहा है, तो शायद पब्लिक उतना उसको नोटिस नहीं करती है। लेकिन आमिर खान एक ऐसे हैं जो अपनी पहली फिल्म कयामत से कयामत तक से लेकर के पिछली सितारे जमीन पर तक, उनकी तरफ लोगों का हमेशा ध्यान रहता है, हर फिल्म पर रहता है। तो मेरा ये मानना है कि एक सोशियोलॉजी पढ़ने वाला अगर छात्र जो है उसको देखेगा, या सोसाइटी पर नजर रखने वाले लोग जब इसको देखेंगे, तो उसको एक शायद एग्जाम्पल पे उनको आपत्ति हो, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है और पब्लिक के बीच में है। पर्सनल डिसीजन आमिर खान का जो भी है उनका पर्सनल डिसीजन है, वो एक शादी करें, 2 शादी करें, 4 शादी तक उनको शायद माफ है। लेकिन आप बीइंग ए सेलिब्रिटी, क्या आप अपने फैंस को कोई बात कहना चाह रहे हैं, या आपका ये एक पर्सनल लाइफ अलग है और आप अपनी सेलिब्रिटी लाइफ अलग रखना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो फिर पहली फिल्म जब रिलीज हुई तो आपको ऑटो पे जाके खुद पोस्टर नहीं चिपकाने चाहिए थे। अगर आपको शादी में बिलीव था तो आप 50 पैसे की टिकट खरीद करके और बस से बांद्रा वेस्ट स्टेशन गए, फिर बांद्रा वेस्ट क्रॉस करके बांद्रा ईस्ट के गौरी से शादी कर लें, और उसके पहले आप दोनों लोग घर से गायब भी रहे। तो जो आदमी प्रेम में इतना डिवोटेड है, वो कैसे हो सकता है कि पहला प्रेम उसका 16 साल में खत्म हो गया, फिर दूसरे आदमी से प्रेम कर रहा है, उससे भी उतना ही ज्यादा प्रेम कर रहा है, फिर वो भी उससे अलग हो जा रहा है, फिर तीसरी शादी करने जा रहा है और कह रहा है कि अब मैं मुकम्मल हो गया हूँ। ये आमिर खान के शब्द हैं कि जब उन्होंने गौरी प्रेत को इंट्रोड्यूस कराया था तो उन्होंने कहा था, मुझे लगता है अब मैं जाकर मुकम्मल हो गया हूँ। तो किसी आदमी के मुकम्मल होने की या परफेक्ट होने के, कंप्लीट होने का एक पैरामीटर अगर अब जाके सेट हो पा रहा है, तो पिछले 35 साल में जो भी कुछ किया उस पर सवाल तो उठेंगे ही। और लोग ट्रोल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने समय समय पर ऐसी बातें कही हैं गौरी खान के लिए भी, उसकी गौरी प्रेत के लिए भी सेम बात आप रिपीट कर चुके हैं, किरण राव के लिए सेम बात है, एचपी रीना दत्ता के लिए। तो क्या एक सेम डायलॉग रिपीट हो रहा है, क्या ये एक जो एग्जाम्पल ऐसा कोई सेट हो रहा है, या हम इसको सिर्फ एक पर्सनल मामला मान के छोड़ सकते हैं, जो शायद बहुत मुश्किल है आज की तारीख में जो सोशल मीडिया इतना ज्यादा सर्जिकल एक्टिव है।
0: बिल्कुल निशा जी, अब पंकज जी की बात से मुझे फिल्म का ही एक डायलॉग याद आ गया, शाहरुख खान की फिल्म है, प्यार सिर्फ एक बार होता है, शादी सिर्फ एक बार होती है। लेकिन ये सिर्फ फिल्मी डायरेक्टर जी, पंकज जी
1: कह रही है कि प्यार एक बार किया तो क्या किया।
0: निशा जी देखिए, कभी भी किसी भी उम्र में प्यार हो सकता है और कितनी बार भी हो सकता है।
2: ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है, देखिए मैं अभी भी कह रही हूँ, प्यार ना सबसे होता है। अब आप जो बात कर रहे हैं वो है पैशनेट रिलेशनशिप की, इंटीमेट रिलेशनशिप की। लव की फीलिंग के साथ तो हम सब पैदा होते हैं, बट आप जिस पर्सनल रिलेशनशिप और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, अगर हम उसकी बात करें तो डेफिनेटली क्या होता है कि जब आप 16, 17 साल या 20 साल के होते हैं, जितना कि आप सेल्फ अवेयर होते हैं, तो मेरे ख्याल से जैसे लेज़ली भी कहेगी कि अट्रैक्शन, जब आप किसी के साथ काम करते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं, तो उसके प्रति अट्रैक्ट होना बहुत स्वाभाविक होता है। उस अट्रैक्शन को कई बार हम प्यार का नाम दे देते हैं, कई बार शादी की उम्र हो गई, अब किसी को जानते हैं और किसी के साथ अपना सेफ स्पेस है, या उससे अपने दिल की बात शेयर करते हैं हम, क्योंकि उसके साथ कंफर्टेबल है और हमें लगता है शादी की उम्र हो गई तो चलो शादी कर लेते हैं, तो उसे भी हम प्यार का नाम दे देते हैं। थोड़े वक्त के बाद अगर मान लीजिए आजकल की जो जनरेशन है, या कभी कपल के आपस में फिजिकल इंटीमेट रिलेशनशिप हो जाते हैं, कई बार अगर आपने सुना हो बहुत सारे मुद्दों में ऐसा होता है कि पार्टनर प्रेग्नेंट हो गया है तो इसलिए शादी कर ली, तो ये बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिससे इंसान या अकेलेपन से दुखी होकर, या अकेलापन है और उसे लग रहा है कि कोई प्यार दे रहा है तो मैं उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लूं। अब मैं शादी करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ वो नहीं है मेरे, तो ऐसे में हम प्यार अगर बार बार हो रहा है तो पहली चीज वो प्यार नहीं है, प्यार बार बार नहीं होता है। फिजिकल अट्रैक्शन है जिसे हम अटैचमेंट भी कह सकते हैं, प्यार बार बार नहीं होता है, बट हाँ हमें किसी की फिजिकल प्रॉक्सिमिटी ऐसी अच्छी लग सकती है, हम किसी की तरफ फिजिकल अट्रैक्ट हो सकते हैं, हमें किसी का इंटेलिजेंस लेवल अच्छा लग सकता है, हमें किसी की पर्सनैलिटी टाइप अच्छी लग सकती है, उसके प्रति जब वो हम उसकी प्रॉक्सिमिटी में होते हैं या उसके साथ रहना पसंद करते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो हम उसे प्यार का नाम देते हैं। अब आप उस रिलेशनशिप को, मैंने जैसे भी कहा कि जब हम प्यार में होते हैं तो दो लोग आपस में कमिटेड होते हैं, जब लिव इन में होते हैं थोड़ा सा पब्लिकली स्टैंड ले लेते हैं कि ओके वी आर टूगेदर, वी वॉन्ट टू प्रूव दैट, और फिर शादी कर लेते हैं, वो एक सोशल कमिटमेंट है। नहीं तो आजकल जो प्यार वाले रिलेशनशिप है और यार लिव इन वाले रिलेशनशिप है वो कोई शादी से कम नहीं है, ये भी हमें रियलिटी को मानना होगा। आज की डेट में लड़का और लड़की अगर शादी करते हैं तो उससे पहले दो तीन अफेयर होना, सीरियस अफेयर होना बहुत नॉर्मल हो गया है, और ये आपको समझ में आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होता है कि जो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी होता है किसी की सोच है ओके मैंने इसे पसंद किया, मैं इसके साथ रह रहा हूँ या मैं घूम रहा हूँ तो मुझे इसी के साथ शादी करनी है। अब हो सकता है सामने वाले पार्टनर को आपके साथ अगर एक साल डेढ़ साल बिताया, हो सकता है आपका नेचर पसंद नहीं है, आपकी कुछ आदतें पसंद नहीं है, या उसको लग रहा है कुछ एडजस्टमेंट इश्यूज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम प्यार का नाम देकर हर चीज को कवर नहीं कर सकते। हाँ ठीक है वो एक्सप्रेसिव है, हो सकता
0: है तो हर बार कमिटमेंट भी की है क्योंकि उस रिलेशनशिप को नाम भी दिया उन्होंने।
2: हाँ वही कह रही हूँ, रोमांटिक पार्टनर शायद उनको रोमांस करना ज्यादा पसंद है, सिर्फ फिल्मों में ही नहीं रियल लाइफ में भी, अच्छी बात है। आई वुड से बेस्ट ऑफ लक टू हिम दैट वो प्यार में इतना विश्वास रखते, नहीं तो दो शादियों के बाद किसी इंसान का आई वुड से मनोबल कम हो जाता है और उसको लगता है मुझे अपनी लाइफ पर कंसंट्रेट करना है, अगर मेरे बच्चे हैं तो मुझे उन पर कंसंट्रेट करना है, या मैं ये जो चीजें नहीं कर पाया रिलेशनशिप में मुझे वो करना है। मे बी आमिर खान के दिमाग में क्या है मैं ये नहीं तो कह सकती, बट हाँ अगर वो कुछ सोच रहे हैं तो ठीक है चलने दीजिए। डेफिनेटली ये पॉइंट आउट करता है अगर कोई भी इंसान अगर बार बार प्यार प्यार प्यार बोल रहा है तो हो सकता है उसको अपने अवेयरनेस का कितना पता है कि ये प्यार है, और हाउ श्योर ही इज, क्योंकि एवरी टाइम अब वो ऑब्सेशन भी हो सकता है। मैं अभी एक क्लाइंट का केस कर रही हूँ जो थर्ड गर्ल से वही रिलेशनशिप में है और प्लानिंग टू गेट मैरिड, उसकी दो शादियां अनसक्सेसफुल हो चुकी हैं, शी इज वेल एस्टेब्लिश्ड पर्सन, वेल नोन पर्सन, सेटलिंग अब्रॉड, बट थर्ड रिलेशनशिप में आकर जब उसने मुझे थर्ड रिलेशनशिप का बताया तो आई सेड इट, डू यू आर यू श्योर इज इट लव, एंड यू कांट इमेजिन आई वी डिड हर हिज क्लिनिकल टेस्टिंग एंड फाउंड ही हैज ऑब्सेसिव ट्रेट्स, और जब उसकी हिस्ट्री में गए उसने पहली पत्नी से शादी करने के लिए हाथ में चाकू पकड़ लिया था कि अगर मेरी इस लड़की से शादी नहीं होगी तो मैं सुसाइड कर लूंगा। सेकेंड शादी में उसने 10 दिन के बाद उस लड़की को छोड़ दिया, वो भी एक लव मैरिज थी जिसमें उसे लगा कि सामने वाले ने वीजा के लिए मुझसे शादी की है। तो मैं ये आपको ये बताना चाहती हूँ कि कई बार, और वो एक अभी फोर्थ एक रिलेशनशिप की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, तो आई हैव टू हाईलाइट हिम दैट डू यू नॉट सीइंग दिस इज योर पैटर्न, यू आर गेटिंग इनटू ऑल एवरी टाइम इनटू फीमेल्स। सो समटाइम्स जो मैं पैटर्न देखती हूँ वो है लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, लैक ऑफ इमोशनल कंट्रोल,
0: ठीक है
2: एक बार एम्पैथी भी कम होता है,
0: लेकिन हाँ यही से एक बार पंकज जी आमिर खान, निशा जी की ही बात को आगे बढ़ाएगा, लेकिन आमिर खान तो मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहलाते हैं ना,
3: उनका काम हर बार वो फ्रेम जो है उतनी परफेक्शन से करते हैं, जितनी बार भी करते हैं पूरे परफेक्शन से करते हैं, और शायद वही गड़बड़ हो जाती है क्योंकि सोना 24 कैरेट अगर होगा तो उसका गहना बनेगा नहीं, थोड़ी मिलावट उसमें रखनी पड़ती है ताकि उसका गहना बन सके, तो इतना परफेक्शन नहीं होना चाहिए लाइफ में कि आप उस चीज को यूज ही ना कर पाए। वही बात आमिर खान की, आमिर खान को सब जानते हैं लवर बॉय इनकी इमेज है और वो कमिटेड होते हैं, ऐसी बात नहीं कि किससे उन्होंने प्रॉमिस किया कमिट किया तो उससे भाग जाएंगे, और उनका पर्सनल लाइफ में मुझे लगता है उनको जीने देना चाहिए। हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं उनके ऊपर 1 घंटे का, ये भी बड़ी बात है कि हम और सारे पहलुओं को डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रेम की बात कर रहे हैं शादी की बात कर रहे हैं, एक सोशल इफेक्ट क्या होगा इसका, जो सोशल मीडिया पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसकी बात कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये किसी भी चीज का 360 डिग्री एनालिसिस करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ताकि जो भी व्यूअर इसको देख रहे हो उसके सारे पहलू समझ पाए, सिर्फ एक स्टार के प्रेम के उसमें प्रभाव में न बहे ये भी समझ पाए, जो निशा जी कह रही हैं जो लेस्ली कह रही हैं उसका क्या असर पड़ा है, जेंजी समझ पाएगी कि प्रेम क्या होता है और कमिटमेंट क्या होता है
0: जी।
3: तो इस कार्यक्रम को बनाने का उद्देश्य मुझे लगता है अपने आप में बहुत अच्छा है, बहुत प्रशंसनीय है।
0: हाँ।
3: और जो काम आमिर खान कर रहे हैं, आमिर खान को अगर हम सोशल पर्सन या एक सेलिब्रिटी के तौर पे देखेंगे तो हमारा नजरिया कुछ और होगा, हम आमिर खान को अपने मित्र के तौर पे देखेंगे या एक
0: तो नजरिया कुछ और होगा, बिल्कुल
3: नजरिया कुछ,
0: लेकिन
3: नजरिए का फर्क है।
0: जेंजी को प्यार होता भी है या अब जेंजी कंफ्यूज है, और जेंजी क्या मानता है कि प्यार कितनी बार भी हो सकता है या प्यार जिंदगी में एक ही बार होता है?
2: मैम वो एक ही वाला प्यार तो अभी कॉन्सेप्ट आउट हो चुका है
0: हाँ, वो
2: मैम,
0: 90s वाला
2: इवन
0: कंसेप्ट
2: मैम वो फिल्म में भी आप देखिए जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसमें भी दोबारा शादी किए
0: हाँ,
2: हैं हीरो
0: उसमें
2: ने, बट
0: एग्जैक्टली
2: एक्चुअली मैम और ये बात भी सही है कि अभी क्या हो रहा है, कंपैटिबिलिटी मैटर करता है, इमोशनल कंपैटिबिलिटी, कि अगर आप मुझे समझ रहे हो, और सबका एक थिंकिंग है आई एम मेन कैरेक्टर, मुझे समझो, ये मेरी थिंकिंग है, ये मेरे लाइफ में हो रहा है, क्या आप मुझे समझ रहे हो, आप नहीं समझ रहे हो, देन यू नो वी कांट वर्क टुगेदर. आजकल ये चल रहा है, पीपल आर लाइक कि मुझे जो नहीं समझेगा मैं उनके साथ नहीं
0: तो
2: रहना
0: फिर आमिर
2: चाहूंगा.
0: खान तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल जेंजी के लिए सेट कर रहे हैं
2: इसीलिए उनको जेंजी सपोर्ट भी करेगा. जो थोड़े पुराने हैं दे वोंट बी हैप्पी, क्योंकि उनको लगेगा कि व्हाट इफ जो 50-60s में स्पेशली वाइफ्स हो या हस्बैंड हो, वो सोचेंगे अरे मेरी वाइफ अगर चली जाएगी 50-60s में किसी और से शादी करेगी, या कोई पत्नी डर के रहेगी कि मेरा हस्बैंड अभी 60s में अगर नई शादी करे उसको नया प्यार हो जाए तो क्या करेगा. आई थिंक यहाँ पे जो लोग पहले सोचते थे कि 30s के बाद अभी शादी मतलब हस्बैंड सेटल हो गया, बच्चे बड़े हो गए तो यू नो हस्बैंड इज सेटल, वो कहीं नहीं जाएगा, अभी बात बदल गया है, बच्चे बड़े हो जो भी, हस्बैंड इज सेइंग, वाइफ इज सेइंग, व्हाट अबाउट मी, मेरी फीलिंग्स का क्या, मुझे कोई समझ रहा है, मुझे नहीं समझते आप, तो यू नो मुझे वो समझ रहे, तो आई एम गोइंग टू गो बैक, गो मैरी दैट पर्सन, उनके साथ मैं खुश हूं. तो अभी इट्स ऑल अबाउट मी मी मी कल्चर चल रहा है, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, मेन कैरेक्टर एनर्जी, अभी एक टर्म चल रहा है मेन कैरेक्टर. आई फील लाइक मेन कैरेक्टर, अगर आप मुझे मेन हीरो हीरोइन की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हो आपके स्टोरी में, मेरी स्टोरी में, मैं आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, जो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे ब्लॉक. तो इसीलिए रिलेटिव्स को लोग ब्लॉक कर रहे हैं, और अभी नोबडी कैस बार दो, चार लोग क्या कहेंगे, नोबडी कैस, तो बस अभी अपने दिल के सुन रहे, कान बंद कर रहे, सोशल मीडिया में भी कुछ दिनों के लिए लोग मेंटल हैरेसमेंट बोल के, मेंटल ब्रेक बोल के चले भी चले जाते हैं, डिटॉक्स, सोशल डिटॉक्स, बिकॉज वो किसी बात की, किसी और की बात सुनना ही नहीं चाहते, बिकॉज वो अपनी बात ही सुनना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, और जो उनको सम्मान देते हैं उनकी बात सुनते हैं तो वो उनके साथ ही रहते हैं, और जो उनकी
0: इन अदर वेज. आपने पंकज जी वाली बात ही रिपीट कर दी यहाँ पर. जी निशा जी,
4: मैं ये कहना चाह रही थी, एक डेयर जिंदगी करके मूवी आई थी, उसमें शाहरुख खान थेरेपिस्ट बने थे और उन्होंने आई थिंक सो आलिया भट्ट को कहा था,
0: साथ
4: जब तक तुम्हें परफेक्ट कुर्सी ना मिल जाए तो तब तक तुम ट्राई करते रहना. तो मुझे लग रहा है उससे आमिर खान को इंस्पायर हुए हैं, वो परफेक्ट परफेक्शनिस्ट है तो परफेक्ट रिश्ता ढूंढ रहे हैं और उसी परफेक्शन में वो रिलेशनशिप ट्राई कर रहे हैं.
0: इस रिलेशनशिप में भी उन्होंने यही बात कही है कि अब मैं मुकम्मल हुआ हूँ,
3: मुकम्मल हुआ हूँ.
4: हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ कि वो परफेक्शनिस्ट है तो वो परफेक्शन ढूंढ रहे हैं, बल्कि रिश्तों में परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती है, हम सब इम्परफेक्ट है अपनी ही इम्परफेक्शंस में.
0: लेकिन निशा जी, चलिए वक्त की कमी, एक सवाल का जवाब दीजिए, बड़ा अच्छा पॉइंट पंकज जी ने उठाया था, इसका समाज पर क्या असर रहता है, पॉजिटिव या नेगेटिव रहता है?
4: देखिए नेगेटिव असर
0: बहुत से लोग फॉलो करते हैं, ये लोग मेंटोर होते हैं सबके.
4: बिल्कुल बिल्कुल, पॉजिटिव असर भी है, नेगेटिव असर भी है. अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो डेफिनेटली रिश्ते से बाहर आ जाना चाहिए. अगर देखिए पहले क्या होता था, वुमेन मोस्ट ऑफ द टाइम सेमी ओपन मैरिजेस में रहती थी, जहां पर अगर एक पार्टनर इनफिडेलिटी कर रहा है तो उनको लगता था मुझे पार्टनर को माफ करके शादी में ही रहने चाहिए क्योंकि मेरे बच्चे हैं. आज का समय बदल गया है, अगर एक पार्टनर चाहे मेन और ये वुमेन, मतलब मैं थोड़ा सा वुमेन के बारे में ये बोलूंगी, वो फिर भी माफ कर देती है. आजकल मेन भी बहुत सारे हैं जो पार्टनर को माफ कर देते हैं क्योंकि बच्चे हैं, चांस देते हैं. अगर वो रिलेशनशिप में चांस अगर दोबारा हो, नहीं रेपिटेटिवली वो मिस्टेक होती है, तो पार्टनर डिसाइड करते हैं बच्चे हैं, हम पेरेंट बन के रहेंगे, हम रिश्ते में साथ नहीं रहेंगे. तो एक मैसेज जो है वो टॉक्सिक रिलेशनशिप के लिए कि आप वॉकआउट करना अच्छा है, पर अगर हम हर रिश्ते में, जैसे लेस्ली कह रही है, अगर रिश्ता नहीं चल रहा है तो हम दूसरा पार्टनर ढूंढ ले, ऐसा नहीं होता है. कुछ चीजें हैं जिसे वर्कआउट किया जा सकता है, जहां कंपैटिबिलिटी इश्यूज है
0: वक्त की कमी है. निशा जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए. तो 5 जुलाई को आमिर खान कर रहे हैं शादी, हालांकि बहुत ही एक तरीके से निजी अफेयर ही होगा, बहुत लोगों को इनवाइट नहीं किया जाएगा, लेकिन इसी को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर रिएक्शंस भी आ रहे हैं जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे. फिलहाल एक ब्रेक.

0: Atlas Beller has convenient 2-hour service windows for heating, cooling, and plumbing service. Because nobody likes waiting around. You listening, BMB? Nobody likes waiting around. Call 1-800-FURNACE.
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने जब देशवासियों से फॉरेन ट्रिप के बजाय स्वदेश घूमने की अपील की, तो जीएनटी भी आप लोगों से अपने आसपास की खूबसूरत और ऐतिहासिक जगहों की तस्वीरों को शेयर करने के लिए कह रहा है, और हम आपके भेजे गए उन वीडियोस को गुड न्यूज टुडे पर लगातार दिखा रहे हैं। तो चलिए आज आपको बिहार के बेगूसराय लिए चलते हैं, जहां का एक ऐतिहासिक राम जानकी मंदिर आस्था और विश्वास की जीती जागती मिसाल है।

0: हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिनी ब्लॉग। तो आपका स्वागत है एक छोटा सा ब्लॉग में घुमक्कड़ विशाल। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे सलोना बड़ी ठाकुरबाड़ी
1: का मुख्य द्वार है, तो मैं इससे अंदर प्रवेश कर रहा हूँ और सामने में ये प्यारा सा महल का यह दृश्य काफी सुंदर दिख रहे हैं, तो मैं इससे अंदर की और बढ़ रहा हूँ।
0: सामने आप देख सकते हैं नागर शैली में निर्मित प्यारा सा लाल पत्थर से नक्काशी गई मंदिर जो ठाकुर जी को समर्पित है। यह मंदिर लगभग 300 साल पुराना है। इसे बनवाने में 16 वर्षों का समय लगा था, जो इस मूर्ति कला और स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना प्रदर्शित करता है। तो आप देख सकते हैं यह मंदिर ठाकुर जी राम लला को समर्पित है। काफी सुंदर पत्थर की नक्काशी मूर्ति स्थापित है अंदर, तो आपको हम नजदीक से दिखा रहे हैं।
1: मंदिर में सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान के साथ अन्य भी भगवान विराजमान हैं। राम लला का आशीर्वाद लेके अब मैं आगे मंदिर परिसर का भ्रमण करूंगा और आपको भी दिखाऊंगा। तो देखते रहे मंदिर को कितने अद्भुत तरीकों से तराशा गया है।
0: काफी सुंदर कलाकृति आप देख सकते हैं मंदिर की।
1: मंदिर के शिखर की छत पे आ चुका और यहाँ से आपको यह अद्भुत कलाकृतियाँ लाल पत्थर से निर्मित यह मंदिर आपको नजदीक से दिखा रहा हूँ। सामने आप देख सकते हैं पत्थर की बनी हुई गेट है। सब देखने के बाद इस परिसर में स्थित यह तालाब देख रहे हैं, यह काफी सुंदर हरा भरा चारों ओर वृक्ष लगा हुआ है।
2: तो आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा करने, अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट करना चाहते हैं, टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, संकल्प के भागीदार बनना चाहते हैं, तो बस आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है, तो उठाइए अपना कैमरा, बनाइए एक ब्लॉग, हमें भेज दीजिए 7303409922 पर व्हाट्सएप करके। हम आपका वीडियो सोशल GNT पर दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़े उससे पहले आपको दिखा देते हैं तमाम ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
3: गाड़ी ना है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं बहुत ज्यादा पैसे, थोड़ी कम भी तो होते पैसे, थोड़ी कम पैसे दे लो ना।
4: गाड़ी में आए हैं तो क्या हुआ, अमीर थोड़ी है। इस नन्हे बच्चे की यही बात सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है। लीची खरीदने पहुंची बच्ची बड़े ही आत्मविश्वास के साथ दुकानदार से दाम कम करने की गुजारिश कर रही है।
3: हम अपने साथ के पैसे दे रहे हैं आपको।
4: उसकी मासूम दलीलें और बेबाक अंदाज सुनकर दुकानदार भी मुस्कुरा देता है। छोटी सी उम्र में इतनी समझदारी और बातूनी अंदाज देखकर हर कोई कह रहा है कि आजकल के बच्चे वाकई बड़े स्मार्ट हो गए हैं। भारत घूमने आया ये नन्हा विदेशी मेहमान इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। सड़क पर चलते रिक्शा को देखकर बच्चे की इच्छा हुई कि वो भी इसे चलाकर देखे। फिर क्या था, रिक्शा चालक ने प्यार से हैंडल उसके हवाले कर दिया। रास्ते भर दोनों अंग्रेजी में बात करते रहे और बच्चे ने पूरे उत्साह के साथ रिक्शा चलाने का मजा लिया।
5: So, how are you? I'm fine. How like you feel the rickshaw? It's good? So, it's no hard work? It's okay? But I'm help you. So, very easy for you. I will not be help you very hard.
4: पीछे बैठी माँ और बड़ा भाई भी इस अनोखे अनुभव का आनंद लेते नजर आए।
5: So, this is the old area, the Silver Market, Silver Street. Okay, you my dost. You know, dost means friend. It's good friend.
4: स्टोर में खरीदारी के दौरान इस नन्ही सी बच्ची की नज़र एक असली आकार की गुड़िया पर पड़ी और उसने उसे अपनी नई दोस्त मान लिया। बच्ची ने बड़ी सावधानी से गुड़िया को उठाया और ट्रॉली में छिपा कर रख दिया। इतना ही नहीं, उसने साथ खड़े व्यक्ति को चुप रहने का इशारा भी कर दिया। उसकी शरारती हरकतें और मासूम एक्सप्रेशन देख कर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। ये वीडियो इंटरनेट पर लोगों का खूब मनोरंजन कर रहा है।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Tune In is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: नमस्कार, स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। आज की चाय बहुत खास है क्योंकि आज मॉनसून वाली चाय है और मॉनसून वाली गुड न्यूज के साथ चाय की चुस्कियां लेंगे क्योंकि केरलम के तट पर पहुंच चुका है मॉनसून। हालांकि 4 दिन बाद आया है, देरी से आया है, लेकिन मौसम विभाग की अगर माने तो अभी तक मॉनसून बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहा है। आगे कैसा रहेगा इसका हाल ये भी बताएंगे, साथ ही साथ दिल्ली और आसपास के इलाकों में कैसी मेहरबानी हुई है मॉनसून से पहले वो भी आपको दिखाएंगे।
3: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। देखिए, आज वैसे तो चाय का कोई समय नहीं होता है, आप कभी भी चाय पी सकते हैं और खास करके जब चाय पर चर्चा हो तो यहाँ चाय पीना इज अ मस्ट, राइट?
2: और ऐसा मौसम हो तो चाय पीना इज अ मस्ट फॉर ऑल ऑफ यू।
3: बिल्कुल, आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे बहुत तेज झमाझम बारिश हुई है अभी, तो मॉनसून ने केरल में दस्तक तो दी है। लेकिन थोड़ी देर पहले, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि बारिश ने धमाल मचा दिया है दिल्ली में, कुछ देर पहले तूफानी बारिश के बाद पारा जबरदस्त तरीके से लुढ़का है, तो दिल्ली में अचानक मौसम के बदलने के पीछे की वजह क्या है ये हम आपको आगे बताएंगे।
2: देखिए, वजह कुछ भी हो लेकिन आ चुका है फाइनली, जो जिसका इंतजार था वो फाइनली पूरा हो गया है। बहुत अच्छा मौसम है। नमस्कार, मैं हर्षा गुप्ता। मैदानों में बारिश का दौर शुरू हो गया है, जिसका इंतजार था वो आ गया है। सैलानियों का सैलाब उमड़ा पड़ा है पहाड़ों पर, कश्मीर से लेकर हिमाचल उत्तराखंड की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पर्यटक पहुंचे हैं, गर्मी के बीच में पहाड़ लोगों के लिए सुकून की जगह बने हुए हैं, तस्वीरें आपको दिखाएंगे।
4: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। तो देखिए, मौसम की मेहरबानी हो चुकी है तो बात मॉनसून की तो हम करेंगे ही, और साथ ही में आगे आपको कश्मीर में बन रही जोजिला टनल का भी अपडेट देंगे। देखिए, ये टनल जल्द ही आवाजाही के लिए खुलने वाली है, तो क्यों अभी से इस टनल को कश्मीर और लद्दाख की लाइफलाइन कहा जा रहा है, इसे भी समझाने की कोशिश आपको करेंगे।
5: और चलिए आगे बात करेंगे उस मिशन की भी जो एक महिला ने खंडित मूर्तियों को सम्मान दिलाने के लिए शुरू किया है। दिल्ली की ये महिला खंडित मूर्तियों को इकट्ठा करती हैं और उसका विधि विधान से विसर्जन करती हैं। ये कहानी भी आगे होगी, लेकिन पहले जल्दी से देख लेते हैं अभी की हेडलाइंस।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
8: TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
9: दिल्ली NCR में तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश, दिन में ही छाया अंधेरा, तापमान में गिरावट से मौसम सुहाना। पहाड़ों पर भी बदला मौसम का मिजाज, शिमला में तेज बारिश के साथ गिरे ओले, खुशनुमा मौसम में सैर सपाटा करते नजर आए सैलानी। केरल में मॉनसून की पहली बारिश, मौसम विभाग ने की पुष्टि, अगले 7 दिन भारी बारिश का अनुमान, इस बार 3 दिन लेट हुआ मॉनसून। सेना की ताकत में होगा इजाफा, जल्द 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के स्वदेशी सैन्य ड्रोन खरीदने की तैयारी, इतिहास की यह सबसे बड़ी ड्रोन खरीद। सरिस्का टाइगर रिजर्व में पहली बार दिखा दुर्लभ सफेद मोर, पर्यटकों के बीच बना चर्चा का विषय, बफर जोन में घूमने वाले सैलानियों ने ली फोटो।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आ गया है मॉनसून। जी हाँ, झमाझम बारिश हुई है, सभी के चेहरे देखे खिले रहे हैं। कुछ लोग भीग के आए हैं, कुछ लोग रुक के आए हैं। क्योंकि मैं रुक के इसलिए आई हूँ कि जैसे ही मैं ऑफिस के लिए निकली थी, अब सही आपको बताऊं, इतनी तेज हवा और आंधी, क्योंकि बारिश तो हो ही रही थी लेकिन हवा बहुत तेज थी। सीरियसली आई थिंक 60-70 किलोमीटर की रफ्तार से लगभग
1: हवा चल रही थी। सच आने का मन कर रहा था, रुकने का मन कर रहा होगा ना।
0: मुझे लगा आप लोग वहाँ आ जाओ तो चाय पर चर्चा वहीं से कहीं किसी टपरी से हम कर लेते हैं। आपका कैसा रहा? आप लोग तो ऑफिस में रहे होंगे।
2: ऑफिस में थी, मुझे अभी याद है कि मैं खाना ही खा रही थी और इतनी जोर की आंधी तूफान और हर कोई इधर उधर भाग रहा था। और मैंने कहा चलो फाइनली, मैं बहुत टाइम से बोल रही थी ना गर्मी है गर्मी है गर्मी है,
0: आप तो कल गर्मी
2: है आपको पता, अब अगले हफ्ते फिर एक बार गर्मी होने वाली है। बट चलिए, ऑल थैंक्स टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कि थोड़े समय के लिए सही लेकिन गर्मी से राहत जरूर
0: मिली।
3: जी बिल्कुल, राहत तो बहुत मिली है। मतलब इतने टाइम से बहुत ज्यादा भीषण गर्मी हो रही थी, नौतपा चल रहा था, लेकिन ये बारिश जो आई है वो एक रिवॉर्ड के जैसी है हमारे लिए। बहुत अच्छी बारिश आज हुई है और IMD ने जिस तरह से बताया है कि 3 दिनों तक ऐसी बारिश होती रहेगी। उम्मीद है कि लोगों के लिए मौसम बहुत खुशनुमा रहेगा।
1: बिल्कुल, तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए दिल्ली कैसे भीगी है, पूरी दिल्ली नहीं बल्कि दिल्ली के साथ NCR। केरलम में मानसून ने दस्तक दे दी है, बहुत अच्छी खबर है, देर से सही लेकिन मानसून ने वहां पर दस्तक दे दी है। और वहीं दक्षिण के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर धीरे धीरे मॉनसून आगे बढ़ रहा है लेकिन प्री मॉनसून शावर्स वहां पर भी शुरू हो चुके हैं। ये तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर।
4: बिल्कुल, देखिए स्क्रीन तो खिली है, लड़कियों के चेहरे भी खिल गए हैं, मूड भी खिल गए हैं, है ना। ऐसे माहौल में मूड आपका अच्छा हो जाता है।
1: बिल्कुल,
4: आपका ये जो आपने बात कही ना कि बाहर जाके चाय पे चर्चा करते हैं, आई जस्ट वांट टू डू कि चाय पे चर्चा एक बार मौसम में छाते लिए हुए हम खड़े हों और वहां पे करें।
1: लेकिन
4: आई एम श्योर कि चैलेंजेस होंगे।
1: नहीं नहीं, हाँ हाँ, मैं उसी पे आ रही थी कि खासतौर पर अगर हम दिल्ली NCR की बात करें ना, बहुत से लोग जो बाइक से भी ट्रेवल करते हैं उनके लिए आपको याद होगा कि ऐसी तस्वीरें बहुत आती है कि होर्डिंग्स गिर गए।
4: अभी भी आ रही है,
1: आ रही होंगी। तो एक बार दर्शकों को ये कह दें कि अगर इस तरह की कोई स्थिति है तो बारिश का मजा लीजिए, आप थोड़ा रुक सकते हैं, रुक रुक के भी अपने सफर को तय कर सकते हैं क्योंकि बारिश का मजा वैसे भी लिया जा सकता है। तो भाई गुड न्यूज यही है कि केरलम पहुंच चुका है मॉनसून, लेकिन असर दिल्ली तक नजर आ रहा है। तो आज दिल्ली में दोपहर से ही बारिश हो रही है, दिल्ली में तूफानी बारिश भी हो रही है। हालांकि ये बारिश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हो रही है, इसको हम प्री मॉनसून शावर्स नहीं कहेंगे क्योंकि अभी हाल फिलहाल में केरलम में दस्तक दी है। प्री मॉनसून शावर्स इस वक्त साउथ में देखे जा सकते हैं, यहां पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो बारिश ने एटलीस्ट लोगों को गर्मी से राहत दे दी है।
2: बिल्कुल, देखिए गर्मी से राहत थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन मिल गई है। दिल्ली NCR की अगर हम बात करें तो देखिए प्री मॉनसून इसे शावर्स नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पहले चलिए मॉनसून का स्वागत हम कर लेते हैं। 4 दिन की देरी से मॉनसून ने केरलम में दस्तक दे दी है, वेलकम हो गया मॉनसून का, वहां झमाझम बारिश हो रही है। और देखिए जिस तरह से मॉनसून का आगाज हुआ है उसी अंदाज में उसके आगे बढ़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है।

0: समझ लीजिए आज से भारत का मेघ मल्हार शुरू हो चुका है। मॉनसून ने दस्तक दे दी है। केरलम में बादलों का कारवां पहुंच चुका है। अब इंतजार इन बादलों के पूरे हिंदुस्तान पर छाने का है। पहले मॉनसून के 25 मई को केरलम में पहुंचने की भविष्यवाणी थी, लेकिन मॉनसून ने दस्तक देने के लिए 4 जून की तारीख चुनी और ऑफिशियली देश में आज से बारिश का मौसम शुरू हो गया है।
1: तपती गर्मी से झुलस रहे हिंदुस्तान के लिए 4 जून एक अच्छी खबर लेकर के आया है और वो खबर ये है कि दक्षिण पश्चिम मानसून भारत पहुंच चुका है, उसने केरल में दस्तक दी है। हालांकि 3-4 दिनों की देरी है, लेकिन मौसम का जो आंकड़ा है जिस तरह हम इसे जोड़ते हैं उसमें इस 3-4 दिन की देरी को बहुत ज्यादा देरी नहीं मानते हैं। अभी मौसम विभाग का कहना है कि वो अपनी दिशा में है और परिस्थितियां इतनी अनुकूल हैं कि वो आगे उत्तर तमिलनाडु कर्नाटक होते हुए पश्चिमी घाट के इलाके में अगले 2-3 दिनों में उसकी रफ्तार बढ़ेगी। धीरे धीरे वो महाराष्ट्र कोंकण और उसी के साथ साथ इसकी दिशा जो है वो आगे उत्तर पूर्व तक जाएगी। जैसे ही बंगाल की खाड़ी पार करने के बाद उत्तर पूर्व भारत की ओर मानसून बढ़ेगा, हिमालय से टकरा करके उसकी दिशा फिर पश्चिम लौटेगी और उसके बाद उसी मानसून का असर हम गंगा के जो मैदानी इलाके वहां देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड और उसी के साथ साथ आगे मध्य प्रदेश हरियाणा दिल्ली पंजाब और उसी के साथ जल्दी मानसून पूरे देश पर छा जाएगा। तो मानसून की रफ्तार अपनी पकड़ चुका है, भारत में उसने दस्तक दे दी है। इसी के साथ जाहिर अगले 2-3 दिनों केरल और तमिलनाडु में भारी बारिश हो सकती है और धीरे धीरे जैसे उत्तर में आएगा अगले 4-5 दिनों में ये मानसून महाराष्ट्र कोंकण होते हुए आगे अपनी रफ्तार पकड़ेगा, उत्तर की ओर आगे बढ़ेगा। तो जहां गर्मी का एहसास अभी हो रहा है, अब दक्षिण में मानसून रफ्तार पकड़ी है, उत्तर में भी थोड़ा इंतजार करना होगा।
0: इस बार मानसून थोड़ा देर से पहुंचा है, लेकिन अभी तक तो यही लग रहा है कि बिल्कुल दुरुस्त पहुंचा है। मौसम विभाग ने पहले ही संकेत दे दिया था कि केरलम और आसपास के क्षेत्रों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। इसके बाद राज्य के कई हिस्सों में व्यापक बारिश दर्ज की गई। जब मानसून की घोषणा के सारे मानक पूरे हो गए तो उसके आने का ऐलान भी हो गया। मई महीने में IMD ने अंदाजा लगाया था कि मानसून 25 या 26 मई के आसपास केरल में पहुंच सकता है, लेकिन तमाम वजहों से मानसून की रफ्तार अचानक धीमी पड़ गई। बाद में मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बदलाव किया और 4 जून के आसपास मानसून के केरलम पहुंचने की भविष्यवाणी की गई, जो आखिरकार सही साबित हुई।
2: दिखाती हूँ, हर किसी को इंतजार था 26 मई की जो है तारीख पहले दी गई थी कि केरल में मॉनसून जो है 26 मई को दस्तक देगा, लेकिन देरी हुई, फिर 1 जून की तारीख आई, लेकिन अब फाइनली जो है 4 जून आज हो चुका है और 4 जून को जो मॉनसून है वो केरल में दस्तक दे चुका है। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको कर्नाटका के हिस्से हुए, कोस्टल कर्नाटका जो हो गया, तमिलनाडु का कुछ हिस्सा जो है कवर करते हुए बे ऑफ बंगाल, और इस साइड पर जो है आपको दिखेगा ये जो ब्लू लाइन आप जो देख रहे हैं ये इस वक्त हमारा ऑनसेट है। ये जो डेट आज की जो हिट कर गई है क्योंकि आज से जो मानसूनी बारिश है उसकी शुरुआत हो चुकी है और अब आने वाले 6-7 दिन अच्छा मौसम जो है वो रहने की उम्मीद है। अच्छी खासी बारिश जो है वो देखी जाएगी, 12 सेंटीमीटर से ज्यादा जो बारिश है वो जो है उसका अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही मैं ये चीज भी आपको दिखाऊंगी कि जो लगातार जो मानसून है वो आगे बढ़ते हुए नजर आएगा। तो इसके साथ ही साउथ से शुरू हुआ है लेकिन धीरे धीरे जो है वो नॉर्थ ईस्ट साइड में भी जो है मानसून जो है वो देखा जाएगा। लेकिन अगर मैं बाकी पूरे आपको देश की मैं स्थिति इस वक्त दिखाना चाहूँ कि किस तरीके से मौसम का हाल है वो आप इस मैप में देख सकते हैं। ये पूरा आपको ऑरेंज अलर्ट जो है जगह जगह आपको नजर आने वाला है, ऑरेंज या फिर येलो, लेकिन बारिश का अलर्ट जो है देश के अलग अलग राज्यों में इस वक्त आपको नजर आ जाएगा।
0: केरल में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग मानसून की औपचारिक घोषणा के लिए जरूरी स्टैंडर्ड की निगरानी कर रहा था। जब ये मानक पूरे हुए तब जाकर मानसून का ऑफिशियली ऐलान किया गया। गुरुवार सुबह भी केरलम के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है। अलपुजा कोट्टायम और एर्नाकुलम जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मानसून के केरलम पहुंचने के बाद अब देश के

0: झुलसाती गर्मी और उमस भरी हवाओं के बीच आखिरकार मॉनसून जो है वो केरल में दस्तक दे चुका है और इसके साथ ही देश के बाकी राज्यों का जो मौसम है वो भी बदलने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार इस वक्त हमारे साथ है। सर, सबसे पहले तो हम केरल से ही शुरुआत करेंगे क्योंकि जिस तरीके से देरी हुई लेकिन आखिरकार मॉनसून वहां दस्तक दे चुका है।
1: जी बिल्कुल, आज 4 जून को अगर आप जो फिगर में देखेंगे कि मानसून केरला और कुछ कर्नाटक के हिस्से भी कवर किया है और इसके अलावा तमिलनाडु के हिस्से आज कवर हुए हैं और थोड़ा ब्यो बंगाल की ब्रांच कवर हुई है। तो इसका रीज़न यही है कि कंटिन्यूज अब जो कन्वेक्टिव एक्टिविटी है जहां इंक्रीज हो गई है, उसका रीज़न क्या है कि जो जहां वेस्टर्ली हवाओं की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी बढ़ गई है, 4.5 तक है। लो लेवल में जो विंड्स हैं वो 20-25 नॉट्स हैं और ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो मानसून है जहाँ उसके कारण वाइड स्प्रेड रेनफॉल एक्टिविटी रहा इस रीजन में, तो हमने मानसून को जहाँ कवर किया है। अगर आप आने वाले दिनों की बात करें तो हमारा अनुमान ये है कि केरला, कोस्टल कर्नाटका, वहाँ पे वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी, वेरी हैवी मीन 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी ऑलमोस्ट पूरा वीक होती रहेगी। उसके साथ ही कर्नाटक, कोंकण, गोवा, वहाँ भी रेनफॉल एक्टिविटी, हैवी रेनफॉल होने का अनुमान है। तमिलनाडु, देन इंटीरियर कर्नाटका, जहाँ रेनफॉल एक्टिविटी ऑलमोस्ट हैवी रहने का अनुमान है। इसके अलावा भी जहाँ भी जो मानसूनल विंड फेवरेबल हो रही है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी, जैसे भी आज मानसून थोड़ा नॉर्थ ब्यो बंगाल तक टच किया जो नॉर्थ पे की लाइन है, और आने वाले 2-3 दिनों में जहाँ भी रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ जाएगी, हैवी वेरी हैवी रेनफॉल होने का अनुमान है। तो हमारा आने वाले दिनों में यही फोरकास्ट है, 2-3 दिन जो मानसून है जो इवन इंटायर गोवा और कोंकण के कुछ हिस्से, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से और कवर कर सकता है, कर्नाटक के हिस्से कवर हो सकते हैं, आंध्रा के, तमिलनाडु के जो हिस्से वो और कवर हो जाएंगे और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के कुछ हिस्से कवर होने का अनुमान।
2: देखिए फिलहाल तो देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों में आज दोपहर अचानक से मौसम बदला, मूड बदला और माहौल बदल गया। सुबह तक जहां तेज धूप थी, उमस थी, गर्मी से लोग परेशान थे, वहीं दोपहर होते होते यही तस्वीरें सामने आई हैं जिस वक्त आप देख रहे हैं। कई इलाकों में दिन के समय ही अंधेरा सा हो गया, फिर शुरू हुआ धूल भरी आंधी का ये दौर।
3: तो दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, दिल्ली में देखिए किस तरह से तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश हुई। मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को गर्मी और उमस से काफी राहत मिली, हालांकि तेज हवाओं की वजह से कुछ जगहों पर ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। बता दें कि मौसम विभाग ने आज और कल के लिए गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। और हमारे संवाददाता मनीषा लड्डा हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनीषा, सबसे पहले तो ये बताइए क्योंकि आप लोगों के लिए खासकर, क्योंकि आप रिपोर्टिंग करते हैं, दिन भर आप बाहर रहते हैं, जब ये तेज आंधी और बारिश आई, एक बार के लिए हमने तो अपनी रफ्तार रोक ली थी क्योंकि तभी हम ऑफिस के लिए निकले थे, आप लोगों ने क्या कुछ फेस किया वहां पर?
0: बिल्कुल श्वेता, हमने बिल्कुल अपनी रफ्तार नहीं रुकी, हम बाहर निकले, वेदर एंजॉय किया क्योंकि गर्मी भी जब हम जिस तरीके से झेलते हैं तो ये मौसम भी हम मतलब उसको एंजॉय करने का पूरा हक रखते हैं। तो हमने बाहर जाके जो है वेदर बिल्कुल एंजॉय किया। और अगर सीपी की बात करूं क्योंकि उस वक्त हम सीपी में ही मौजूद थे तो यहां पे हर किसी के चेहरे पे जो है खुशी नजर आ रही थी क्योंकि भले ही जून के महीने की जो शुरुआत हुई वो कम तापमान के साथ हुई लेकिन जिस तरीके से उमस बढ़ती जा रही है उसने वाकई में लोगों को परेशान किया हुआ था। और इसकी जो पीछे की वजह है वो ये कि अरब सागर से लगातार जो है हवाएं आ रही है और उसकी वजह से ह्यूमिडिटी सबसे ज्यादा बढ़ गई है और जब भी मॉइस्चर हवा में ज्यादा हो जाता है तो बारिश की जो स्थिति है, परिस्थितियां हैं वो भी बननी शुरू हो जाती है। तो उसको ही देखते हुए मौसम विभाग का ये पहले से ही अनुमान था कि आज एक सर्कुलेशन जो है वो पाकिस्तान, नॉर्थ पाकिस्तान के ऊपर जो है बना हुआ है जिसकी
2: बिल्कुल मनीषा आपकी आवाज ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। जी मनीषा
3: बताएं।
0: बिल्कुल, तो वहां के लिए पहले से अनुमान था कि ऑरेंज अलर्ट जो है वहां के लिए जारी किया गया था पहले से कि बारिश, आंधी, तूफान जो है पहाड़ी राज्यों में देखी जाएगी, चाहे जम्मू कश्मीर की बात की जाए, हिमाचल की बात की जाए या उत्तराखंड की बात की जाए। लेकिन उसी के साथ ही उसका असर मैदानी राज्यों पर भी पड़ता हुआ दिखेगा क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा धूल भरी आंधी जो है राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जो है देखी गई थी, उसके बाद से जो है तापमान वहां पर भी थोड़े से कम हुए लेकिन आज वहां के लिए भी ऑरेंज अलर्ट है, दिल्ली एनसीआर के लिए भी ऑरेंज अलर्ट।

0: इसी तरीके से मौसम अगले 2 से 3 दिन जो है सुहाना रहने वाला है। ये हम बोल सकते हैं श्वेता कि जो लोग परेशान हो रहे थे गर्मी से, उनको लग रहा था कि राहत नहीं मिलने वाली है, तो अब उस चिलचिलाती गर्मी में अब ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है।
1: ये फौरी राहत हम कह सकते हैं मनीषा, लेकिन आपने आज मौसम विभाग से भी बातचीत की है, मौसम विभाग के डायरेक्टर से भी बातचीत की है। जरा ये बताइए कि जैसे आज केरलम के तट पर 4 दिन देरी से मानसून टकराया है, उत्तर भारत में कब तक पहुंच सकता है और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कितने दिन और रह देगा?
0: अगर हम पश्चिमी विक्षोभ की बात करें नवजोत, तो अभी ये 2 से 3 दिन जो है दिल्ली एनसीआर के सभी आसपास के जो बाकी राज्य हैं उनको राहत मिलने वाली है। तापमान में भी जो है थोड़ी कमी जरूर दर्ज होगी, क्योंकि बारिश जो है उसका ऑरेंज अलर्ट जो है मौसम विभाग ने जारी किया है। लेकिन जिस तरीके से आपने बोला कि केरल में मानसून की जो डेट थी सबसे पहले आईएमडी की ओर से दी गई 26 मई, कि इस बार मानसून जो है वो पहले से दस्तक जो है वो देने वाला, लेकिन उसमें देरी जो है वो देखी गई, 1 जून भी हो गया, 1 जून के बाद 4 जून जो है देरी से मतलब जो है मानसून केरल में आया है, तो उसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि थोड़ी देरी शायद यहां पर भी देखी जो है दिल्ली एनसीआर में जा सकती है, क्योंकि मानसून जो है धीरे धीरे आगे बढ़ने की अब उसकी शुरुआत हो गई है। वो धीरे धीरे जो है नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ हिस्सों को जो है वो जल्द ही अगले 3 से 4 दिन में कवर करेगा। लेकिन बात अगर उत्तर भारत की जाए तो अभी थोड़ा सा समय जरूर जो है वो लगने वाला है। हालांकि एंड जो है इस महीने के अंत तक जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में मानसून जो है दस्तक दे देगा, लेकिन अभी आज की राहत की मैं बात करूं तो काफी लोगों को राहत मिली है आज की बारिश के बाद से, लेकिन अगले 2 से 3 दिन इसी तरीके से मौसम रहने वाला है।
1: चलिए, यानी गुड न्यूज ये है कि वीकेंड एक बार फिर से सुहावना होने वाला है। शुक्रिया मनीषा पूरी जानकारी के लिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। वैसे अमूमन अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में हर साल 27 जून रहती है तारीख जब मानसून दस्तक देता है, लेकिन इस बार अब क्योंकि देरी से केरलम में दस्तक दिया है तो उत्तर भारत के लिए हालांकि अभी तक मौसम विभाग कह रहा है कि समय से रफ्तार चलती रहेगी। इस बीच इस वक्त क्योंकि गर्मी से बड़ी राहत मिल रही है पहाड़ों पर और इसीलिए देश भर से बड़ी संख्या में सैलानी वहां रुक कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हर जगह पर अच्छी खासी भीड़ है पर्यटकों की।
2: तो वहीं पहलगाम, बांदीपुरा, कुल्लू, चंबा में सैलानियों से ये इलाके अब गुलजार हैं और यहाँ का कूल मौसम पर्यटकों को खूब भा रहा है। बस ये मानिए कि पहाड़ों पर मौसम में कोई जादू है जो सबके सिर चढ़कर बोल रहा है।
3: मैदानों में गर्मी का मौसम है, पारा हाई है, तो तन मन को कूल करने के लिए पहाड़ों की सैर लाजमी है, लिहाजा सैलानी भी निकल पड़े हैं पहाड़ों पर सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने। कोई जम्मू कश्मीर जा रहा है तो कोई हिमाचल तो कोई उत्तराखंड। बादलों में लिपटी हुई पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियां, चीड़ देवदार के घने जंगल और कलकल बहती नदी, पहलगाम का जर्रा जर्रा खूबसूरत नजारों से भरा पड़ा है और इन दिलकश नजारों का लुत्फ उठाने के लिए चप्पे चप्पे पर सैलानी पहुंच चुके हैं।
4: टूरिस्टों से मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे आए, काफी काफी सारे पिछली कुछ घटनाएं यहाँ पे हुई थी उस वजह से काफी लोग सोच में पड़ गए, बट मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया चल रहा है सब।
5: तो अच्छा लग रहा है, हर साल आते रहते हैं पहलगाम, इस बार भी आए, अभी पहली बार आए इस साल गर्मियों में, बाद में अभी जून जुलाई बाकी पड़ा आएंगे बीच में, हवा कल आए थे वैसे तो इधर ठंडी ठंडी हवा चल रही है।
3: पहलगाम की फिजा में बह रही ठंडी ठंडी हवाएं और कलकल बहती नदी के ठंडे पानी के बीच सैलानी मैदानों की तपिश को मानो भुला चुके हैं, मन पूरी तरह मानो पहलगाम में रम चुका है। बांदीपुरा का खुशनुमा मौसम भी सैलानियों को खूब लुभा रहा है, पहाड़ों की चोटियां बर्फ से लकदक हैं। बांदीपुरा गुरेज रोड पर करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर राजदान पास पर सैलानी यहां के बर्फीली वादियों का दीदार करने पहुंच रहे हैं और कूल मौसम का मजा ले रहे हैं।
6: बहुत अच्छा है क्योंकि यहां बर्फ हो रही है, बारिश भी हो रही है, हमने श्रीनगर में गर्मी देख ली, यहां पे ऊपर आके बारिश देख ली, अभी बर्फ हो रही है तो कम से कम 5 डिग्री तो चल रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ठंडी है।
7: जून में वी कैन नॉट एक्सपेक्ट सच टाइप ऑफ बर्फबारी हियर अभी, लेकिन वो गर्मी को देखते हुए लोग यहाँ पर आना चाहिए और बहुत अच्छा सोहना वेदर है, बहुत अच्छी जगह है ये, करीब करीब 14,000 फीट पे जगह है राजस्थान ऑन द वे टू ग्रेस।
8: और यहाँ पे इस समय जम्मू में जहाँ पे और हर जगह पूरे इंडिया में जहाँ की प्रेयर चल रही है, और इस समय आप देखिए कितना ब्यूटीफुल वेदर है यहाँ पे, सबको यहाँ पे आके एक्सपीरियंस करना चाहिए इस वेदर के बारे में।
3: हिमाचल का कुल्लू मनाली हिल स्टेशन भी इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। कुल्लू और आसपास के ऊंची पहाड़ी इलाकों में इन दिनों रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जिसका लोग लुत्फ तो उठा ही रहे हैं। जिप लाइन, पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग जैसे एडवेंचर टूरिज्म को भी भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो देखिए मौसम के बाद अब बात उस टनल की जिसके पूरा होने का इंतजार पूरे हिंदुस्तान को है। देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाली जोजरा टनल 9 जून को एक बड़े पड़ाव पर पहुंचने जा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस दिन टनल के ब्रेक थ्रू ब्लास्ट को ट्रिगर करेंगे, जिसके साथ सुरंग की खुदाई का सबसे अहम चरण भी पूरा हो जाएगा।
6: बिल्कुल, देखिए 13 से 15 किलोमीटर लंबी ये सुरंग जोजिला दर्रे के नीचे लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही है। निर्माण पूरा होने के बाद ये दुनिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब दो तरफा सड़क सुरंग बन जाएगी। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच साल भर निर्बाध सड़क संपर्क संभव होगा। परियोजना पूरी होने पर यह क्षेत्र में कनेक्टिविटी, पर्यटन, व्यापार, आर्थिक गतिविधियों को नई गति देगी और हर मौसम में सुरक्षित आवाजाही को सुनिश्चित भी करेगी।
9: अब जोजरा टनल की प्रमुख खूबियां क्या हैं, चलिए हम आपको एक एक करके वो भी समझा देते हैं। टनल की कुल लंबाई की बात की जाए तो 13.15 किलोमीटर है। ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण सड़क सुरंग परियोजना में से एक है। ये सुरंग समुद्र तल से लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही है। इतनी ऊंचाई पर बनने वाली ये दुनिया की सबसे बड़ी सुरंगों में से एक है। इसमें दोनों दिशा बनाई जा रही है। इतनी ऊंचाई पर बनने वाली ये दुनिया की सबसे बड़ी सुरंगों में से एक है। निर्माण पूरा होने पर यह दुनिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब दो तरफा सड़क सुरंग बनेगी। इसमें दोनों दिशाओं का यातायात एक ही ट्यूब के भीतर संचालित होगा। सुरंग जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच साल भर सड़क संपर्क सुनिश्चित करेगी और इससे सर्दियों में भी दोनों क्षेत्रों के बीच आवागमन जारी रहेगा।
10: इस बीच आपको बता दें कि भारी बर्फबारी और खराब मौसम के दौरान भी यातायात प्रभावित यहां नहीं होगा। यात्रियों और सेना को हर मौसम में सुरक्षित मार्ग उपलब्ध होगा। टनल को अत्याधुनिक वेंटिलेशन और सुरक्षा प्रणालियों से लैस किया जा रहा है। इससे यात्रियों की सुरक्षा और आपातकालीन प्रबंधन बेहतर होगा। ये कश्मीर घाटी और कारगिल के बीच यात्रा को अधिक सुरक्षित और तेज बनाएगी। साथ ही क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी इससे बढ़ावा मिलेगा।
11: श्रीनगर करगिल रोड पर बनने वाली जोजिला टनल लगभग तैयार हो गई है। कुछ ही हफ्तों के भीतर जोजिला टनल को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। जोजिला टनल पूरे लद्दाख क्षेत्र की तस्वीर ही बदल देगा, क्योंकि लद्दाख क्षेत्र सड़क के माध्यम से देश और दुनिया के साथ पूरे साल जुड़ा रहेगा। वरना ये रास्ता कई हफ्तों तक सर्दियों के दौरान बंद हो जाता था और रास्ता भी काफ़ी कठिन था, क्योंकि वरना जोजिला पास के होते हुए गाड़ियों को चलना पड़ता था। लेकिन अब इस टनल के बनने के बाद जोजिला पास यह या जोजिला दर्रा जो हम कहें, उससे इस सड़क पर चलने वाले लोगों को राहत मिल जाएगी। जोजिला टनल के बनने से न सिर्फ पर्यटन में लद्दाख क्षेत्र में बढ़ावा होगा, बल्कि साथ ही साथ हजारों की तादाद में सेना के जवान जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात है, उनके लिए भी ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस टनल के माध्यम से बहुत जल्द न सिर्फ हथियार और साज सामान बल्कि सब तरह की चीजें लद्दाख के कोने कोने तक पहुंच पाएंगी। गुड न्यूज टुडे के लिए अशरफानी।
2: तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देशवासियों से फॉरेन ट्रिप की बजाय स्वदेश घूमने की अपील की, तो जीएनटी भी आप लोगों से अपने आसपास की खूबसूरत, ऐतिहासिक और दूसरी सैर सपाटा करने वाली जगहों की तस्वीरों को शेयर करने की अपील कर रहा है और हम आपके भेजे गए उन वीडियोस को जीएनटी पर लगातार दिखा रहे हैं।
9: बिल्कुल, तो चलिए आज आपको लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन कसौली। यहाँ की खूबसूरत वादियां यकीनन आपको भी वहां जाने के लिए जरूर खींचेंगी। ये ब्लॉग हमारे एक दर्शक ने भेजा है।

0: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897, built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: K-pop takes center stage. Bold sounds, global energy, and hits that move fast. Today's K-pop plays the biggest tracks, breakout anthems, and chart toppers. Fresh music on repeat, so you never miss a beat. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's K-pop to start listening now.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। इससे पहले आगे बढ़े, नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
1: दिल्ली NCR में तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश, दिन में ही छाया घना अंधेरा, तापमान में गिरावट से मौसम हुआ सुहाना। पहाड़ों पर भी बदला मौसम का मिजाज, शिमला में तेज बारिश के साथ गिरे ओले, भी खुशनुमा मौसम में सैर सपाटा करते नजर आए सैलानी। केरला में मॉनसून की पहली बारिश, मौसम विभाग ने की पुष्टि, अगले 7 दिन भारी बारिश का अनुमान, इस बार 3 दिन लेट हुआ मॉनसून। तो चलिए अब बात फुटबॉल विश्व कप 2026 की कर लेते हैं, जिसकी शुरुआत 11 जून से होने जा रही है। देखिए वैसे तो फीफा विश्व कप फैंस के बेहद खास होता है उन सभी के लिए, लेकिन इस बार विश्व में नए नियमों के साथ पुराने इमोशंस भी साथ जुड़ गए हैं।
4: बिल्कुल, आपको बता दें एक तरफ मेसी और रोनाल्डो जैसे खिलाड़ी लगातार छठा विश्व कप खेल इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएंगे, तो दूसरी तरफ आपको बता दें फीफा ने विश्व कप के लिए नए नियमों का ऐलान भी किया है।
5: शहर, अत्याधुनिक स्टेडियम और दुनिया के अरबों फैंस की सांसें थाम लेने वाला फुटबॉल का महारोमांच। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का बिगुल बज चुका है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तैयारियां मुकम्मल हैं, टीम्स भी तैयार हो चुकी हैं और फैंस के दिलों की धड़कनें भी बढ़ रही हैं। अब बस इंतजार है उस ऐतिहासिक पल का जब दुनिया के इस सबसे बड़े टूर्नामेंट का शंखनाद होगा। लेकिन इस बार का फीफा वर्ल्ड कप पहले से ज्यादा खास होगा, पहले से ज्यादा बड़ा होगा और पहले से ज्यादा इमोशनल भी होगा, क्योंकि अगर चर्चाओं की माने तो मौजूदा वक्त के दो सबसे बड़े फुटबॉल स्टार्स लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ये अंतिम विश्व कप हो सकता है। अगर चर्चाओं को सही मान लिया जाए तो अर्जेंटीना के कैप्टन लियोनेल मेसी और पोर्टुगल के कैप्टन क्रिस्टियानो रोनाल्डो आखिरी बार अपने देश की जर्सी में नजर आएंगे। एक तरफ फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मेसी और रोनाल्डो को खेलते हुए देखने का क्रेज फैंस के सिर पर चढ़कर बोल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ 11 जून से शुरू होने जा रहा ये टूर्नामेंट कई मायनों में खास होने वाला है। ये पहला मौका होगा जब फुटबॉल विश्व कप का आयोजन एक साथ 3 देशों में किया जा रहा है, इनमें अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको शामिल हैं। प्रतियोगिता के दायरे को बढ़ाया गया है और इस बार 4 नए देशों की टीमें विश्व कप का हिस्सा हैं। पहली बार कैप वर्दे, कुराकाओ, जॉर्डन और उज्बेकिस्तान की टीमें फीफा विश्व कप का हिस्सा बनेंगी, जिसके बाद कुल टीमों की संख्या 48 हो गई है। सभी टीमों को 12 ग्रुप में बांटा गया है, जबकि नॉकआउट एंट्री राउंड ऑफ 16 की जगह इस बार राउंड ऑफ 32 होगा। टीमों की संख्या बढ़ने की वजह से इस बार पूरे टूर्नामेंट के दौरान रिकॉर्ड 104 मुकाबले खेले जाएंगे, जबकि 11 जून 2026 को मेक्सिको के ऐतिहासिक मेक्सिको सिटी स्टेडियम में टूर्नामेंट का पहला मैच खेला जाएगा। ये मैच मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। मेक्सिको सिटी स्टेडियम में जब पहली फुटबॉल किक की जाएगी तो एक नया इतिहास बनेगा। मेक्सिको दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाएगा जो तीसरी बार पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करेगा। फीफा विश्व कप 2026 और भी कई मायनों में खास होने वाला है, क्योंकि इस बार फीफा ने कई सख्त और कड़े नियम खिलाड़ियों के लिए लागू किए हैं। इनमें सबसे पहला और अनोखा नियम है कि अब खिलाड़ी मैदान में अपने मुंह पर हाथ नहीं रख सकेंगे। अगर किसी खिलाड़ी को ऐसा करते हुए देखा गया तो रेफरी रेड कार्ड दिखा सकता है, जिसका मतलब सीधे मैच से बाहर और उनकी टीम को 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ेगा। दूसरा नियम ये है कि अगर रेफरी कोई गलत कॉर्नर किक देता है या किसी प्लेयर को 2 येलो कार्ड मिलते हैं तो उस फैसले को चुनौती दी जा सकती है। साथ ही कॉर्नर किक, पेनल्टी या किसी थ्रो के दौरान ग्राउंड पर आने से पहले खिलाड़ी फाउल करता है तब भी जांच मुमकिन है। अगर कोई टीम प्लेयर सब्स्टिट्यूट करती है तो ये 10 सेकंड के अंदर खिलाड़ी को मैदान में पहुंचना होगा। अगर गोलकीपर या दूसरा प्लेयर 5 सेकंड से ज्यादा समय लेता है तो विरोधी टीम को कॉर्नर किक या थ्रो इन मिलेगी। अगर गोलकीपर को चोट लगने पर मेडिकल टीम जांच कर रही हो तो मैदान पर मौजूद प्लेयर्स डगआउट में कोचिंग स्टाफ से बात नहीं कर सकते। कोई टीम रेफरी के फैसले से नाराज होकर मैदान से बाहर चली जाती है तो पूरी टीम को रेड कार्ड दिया जाएगा। इन नए नियमों का मकसद खिलाड़ियों और खेल के दौरान अनुशासन बनाए रखना है, जिससे खेल की गरिमा को ठेस न पहुंचे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला अमेरिकी शहर न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में 19 जुलाई को खेला जाएगा, लेकिन उससे पहले फुटबॉल प्रेमियों में वर्ल्ड कप 2026 का इंतजार बेसब्री से है, क्योंकि जैसे ही स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैदान में उतरेंगे, एक नया इतिहास रच देंगे। इससे पहले किसी भी पुरुष फुटबॉलर ने फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लिया है, और यही वजह है कि इस बार का टूर्नामेंट इन दोनों महान खिलाड़ियों के लिए भी बेहद खास माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: हम अक्सर देखते हैं कि जिन भगवानों की मूर्तियों और तस्वीरों को हम अपने घर में लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनसे अपनी खुशियों का आशीर्वाद मांगते हैं, ऐसे में वही मूर्तियां और तस्वीरें जब पुरानी और खंडित हो जाती हैं तो उन्हें घर से बाहर सड़क किनारे पेड़ के नीचे जैसी जगहों पर रख दिया जाता है, जो लोगों की एक अजीब सी ही प्रैक्टिस हो गई है।
6: बिल्कुल, ऐसी तस्वीरें आप देखते रहते हैं, लेकिन ऐसे ही हालात को बदलने के लिए एक महिला एक अनोखी लेकिन सराहनीय मुहिम चला रही हैं, जो पिछले कई सालों से आस्था को सम्मान देने के काम में लगी हैं। यानी देवी देवताओं की क्षतिग्रस्त मूर्तियों का कलेक्शन करती हैं, फिर उसका विसर्जन। इनका नाम है प्रीति सिंह।
7: सनातन धर्म में ये मान्यता है कि भगवान की मूर्ति पुरानी हो सकती है, कोई प्रतिमा खंडित भी हो सकती है, लेकिन ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास कभी पुराने नहीं होते। भक्त और भगवान का वो रिश्ता अटूट ही रहता है। लेकिन सोचिए, जिस ईश्वर से हम खुद के लिए दुनिया भर की खुशियाँ, गाड़ी, शोहरत और सेहतमंद रहने का आशीर्वाद मानते हैं, उनकी मूर्ति या तस्वीर घर में पुरानी हो जाए तो उन्हें रास्ते, मंदिरों के आसपास, दीवारों पर या फिर किसी ऊंची जगह पर लावारिस छोड़ने में भी कोई संकोच नहीं करते। जाहिर है, इस सोच को किसी भी तरीके से उचित ठहराया नहीं जा सकता। यही वजह रही कि आस्था और श्रद्धा के प्रतीक इन पुरानी मूर्तियों, चित्र और खंडित प्रतिमाओं को उनका उचित स्थान और सम्मान दिलाने के लिए दिल्ली में एक महिला खास मुहिम पर निकली हुई है।
8: देवताओं को जब हम अपने घर में लेके आते हैं तो बड़ी धूमधाम से लाते हैं। कभी कभी तो ढोल नगाड़ों के साथ अपने घर के मंदिर में किसी मूर्ति की स्थापना करते हैं, लेकिन जब कभी किसी भी वजह से इन्हें घर से विदा करना होता है तो विदाई बड़ी दुखदायी होती है। कई बार तो उन्हें किसी नदी के गंदे पानी में प्रवाहित कर देते हैं, तो कई लोग पीपल या बरगद के बड़े पेड़ के नीचे यूं ही मूर्तियों को रखकर चले आते हैं, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। और कई लोग देवताओं के उन मूर्तियों को इस तरह से लावारिस रखा देखकर दुखी होते हैं। दिल्ली की एक ऐसी ही महिला इन तस्वीरों को देखकर दुखी हुई और फिर उसने वो काम करने की ठानी जो कई लोगों के लिए आज नसीहत बन चुकी है।
7: प्रीति सिंह के लिए भगवान के इन पुराने प्रतीकों को लेकर श्रद्धा और स्मृतियाँ अमूल्य हैं। वो मानती हैं कि इनके प्रति सम्मान बनाए रखना हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक जिम्मेदारी है। प्रीति साल 2004 से इस नेक काम में जुटी हैं। घरों, दुकानों से बाहर जहाँ तहाँ पड़ी ऐसी मूर्तियों को इकट्ठा कर उनकी साफ सफाई करते हुए पूरे विधि विधान के साथ विसर्जन करती हैं। वहीं तस्वीरों के अलग अलग पार्ट्स निकालकर रिसाइकलिंग भी करवाती हैं।
9: पहले अपने क्षेत्रों से, आप क्षेत्र के बाहरों से भी उठाती हूं और उठाकर इनको एकत्रित करती हूं। जहां हमारा देवस्थान है वहां पे इनकी बाकायदा छटाई होती है, उसके बाद धुलाई होती है। धुलाई होने के बाद फिर ब्राह्मण पूजन के साथ बाकायदा जो मिट्टी की हैं वो हमारी नेचर्स की हैं, तो वो मिट्टी की हैं वो मिट्टी में मिल जाती हैं विसर्जन के बाद। कुछ होती हैं जो भूमि विसर्जन उनका होता है, भूमि विसर्जन की जाती है।
7: प्रीति सिंह की ये कोशिश दर्शा रही है कि प्रतिमा भले ही खंडित हो जाए, तस्वीरें फीकी पड़ जाएं, लेकिन श्रद्धा की रोशनी कभी धुंधली और खंडित नहीं होती। यही वजह है कि प्रीति सिंह के इस सराहनीय काम को दिल्ली सरकार का साथ मिला है। इसके तहत आने वाले वक्त में राजधानी में कई कलेक्शन सेंटर्स बनाए जाएंगे। उम्मीद है आम लोग भी प्रीति सिंह की इस मुहिम से जुड़ेंगे, अपनी धार्मिक जिम्मेदारियों को समझेंगे।
8: ये पहली मुहिम प्रीति जी की थी और आज उनकी उस मुहिम को सरकार का भी साथ मिल रहा है। उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले वक्त में हमें कहीं भी ना तो किसी गंदे पानी में किसी मूर्ति को विसर्जित करना पड़ेगा और ना ही किसी पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे हम अपने देवताओं को रखा हुआ देखेंगे, क्योंकि इसका एक बड़ा सोल्यूशन अब दिल्ली सरकार भी लेकर आ रही है।
6: दो जुड़वा भाई जिन्होंने कोटा में 3 साल तक मेहनत की, लक्ष्य था IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस में दाखिला। मेहनत के बल पर दोनों भाइयों की अच्छी रैंक आई, एक को IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस में दाखिला मिल रहा है, मगर दूसरे की रैंकिंग की वजह से मनचाहा कोर्स नहीं मिल पा रहा था। फिर बड़े भाई ने अपने छोटे भाई के लिए IIT बॉम्बे जाने का फैसला छोड़ दिया।
1: देखिए अब ये दोनों भाई IIT मद्रास में पढ़ेंगे। सुनने में जो कहानी है काफी फिल्मी लग रही होगी आपको, मगर ये 100% सच्ची बात है, सच्ची कहानी है। ओडिशा के रहने वाले दो भाइयों ने साथ में पढ़ने के लिए IIT बॉम्बे जाने का अपना सपना ही छोड़ दिया। अब इनके भाईचारे की चारों ओर चर्चा हो रही है।
7: कोटा शहर का नाम सुनते ही आंखों के सामने एक तस्वीर उभर आती है, देर रात तक चलते कोचिंग सेंटर, हॉस्टल की बालकनीज में किताब लिए बैठे छात्र और चेहरों पर सपनों की चमक। इसी कोटा में पढ़े ओडिशा के जुड़वा भाइयों ने सफलता की एक अलग मिसाल पेश की है। महरूफ और मसरूर ने JEE एडवांस्ड में न सिर्फ शानदार रैंक हासिल की बल्कि भाईचारे की ऐसी कहानी भी लिख दी जिसकी चर्चा हर तरफ है।
10: तो मैंने अपने भाई के साथ ही पढ़ने का डिसीजन लिया क्योंकि बचपन से ही हम दोनों साथ साथ पढ़ते आए, तो अभी हॉस्टल में भी एक साथ ही कंटिन्यू करना चाहते थे पढ़ना, तो हमने IIT मद्रास से कंप्यूटर साइंस करने का डिसीजन लिया।
7: वायुओं की महरूफ की JEE एडवांस्ड में ऑल इंडिया रैंक 32 आई। इस रैंक के साथ IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस ब्रांच उनके हाथ में थी। ये वो चांस था जिसके लिए लाखों बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन महरूफ का दिल कुछ और ही कह रहा था। उनके भाई मसरूर की ऑल इंडिया रैंक 169 आई थी जिससे IIT बॉम्बे की अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही थी। महरूफ ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने भाई के लिए IIT बॉम्बे की सीट छोड़ी। दोनों ने फैसला लिया कि वो IIT मद्रास में साथ में कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे। इनके परिवार के लिए ये सिर्फ कामयाबी नहीं बल्कि गर्व का पल है। इनके पेरेंट्स का कहना है कि दोनों भाइयों ने रिश्ते को करियर से ऊपर रखा और एक दूसरे की मदद करना हमेशा उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है। अब दोनों IIT मद्रास में कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे, एक ही हॉस्टल और एक ही क्लास में रहकर एक ही सपने को जिएंगे। कोटा से चेतन गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि आगे आपको दिखाएंगे क्या है एलन मस्क का फिल्म मेकिंग को लेकर AI प्लान।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897, built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
3: उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे,
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: जिंदगी का कोई भी पहलू अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अछूता नहीं रहा। फिल्मों में भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होने लगा है। ऐसे में दुनिया के मशहूर सबसे अमीर बिजनेसमैन एलन मस्क ने एआई जनरेटेड एक फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया है, जिससे भविष्य में फिल्मों में एआई के इस्तेमाल की चर्चा तेज हो गई है। मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर द इलियड का एआई जनरेटेड सिनेमैटिक ट्रेलर जारी किया है। इस ट्रेलर का हर सीन ग्रॉक इमेजिन 1.5 का इस्तेमाल करके तैयार किया गया है। मस्क ने ट्रेलर शेयर करके लोगों से पूछा है कि क्या वे पूरी फिल्म देखना चाहते हैं।
10: फिलहाल इलॉन मस्क ने एलियट का ट्रेलर जारी करके ये संकेत दिया है कि भविष्य में एआई की मदद से पूरी फीचर फिल्म बनाना मुमकिन हो सकता है, और एलियट का ये ट्रेलर इसका प्रमाण बन गया है। यानी वो दिन अब दूर नहीं जब फिल्मों के भारी भरकम और महंगे सेट बेमानी साबित होंगे और पूरी फिल्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सिर्फ कंप्यूटर पर तैयार हो जाएगी। आपको बताते हैं कि आखिर ये एआई जनरेटेड सिनेमैटिक फिल्म एलियट किससे प्रभावित है। यह फिल्म होमर के प्राचीन महाकाव्य एलियट पर आधारित है। साहित्य में रुचि रखने वाले मस्क ने एलियट को अब तक की सबसे अच्छी कहानी बताया है। फिल्म के ट्रेलर में प्राचीन ट्रोजन युद्ध और ट्रॉय की कहानी को एआई के जरिए सिनेमा के अंदाज में पेश किया गया है। इस फिल्म पर एलन मस्क का पोस्ट इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि मस्क ने कुछ दिन पहले क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म द ओडिसी को लेकर टिप्पणी की थी।
11: और देखिए, ओडिसी और इलियट दोनों ही होमर की रचनाएं हैं, लेकिन ओडिसी की आलोचना करने के बाद इलियट का एआई ट्रेलर जारी करके मस्क ने इस चर्चा को एक नया मोड़ दे दिया। अब फिलहाल तो किसी हॉलीवुड फिल्म की फील देने वाली और एआई बेस्ड इलियट का ट्रेलर शानदार सेट, बेहतरीन एक्सप्रेशंस और दिल को छू लेने वाला है।
5: फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, चाय पर चर्चा जारी है, रहिए हमारे साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: Get in
12: into the huddle with TuneIn. TuneIn brings you nonstop sports talk, live games, and expert analysis all in one place, from kickoff to final whistle. Follow your favorite teams all season long with ESPN Radio, Talk Sport, Big 12 Radio, and more. Plus, listen to your favorite sports broadcasts on over 200 devices, so you never miss a moment of sports action with TuneIn. Stay in the game with TuneIn and start listening now.
5: बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: गर्मी के दौरान इंसान के साथ पशु पक्षी भी प्यासे हैं, तो ऐसे में हर कोई अपने अपने स्तर से इन बेजुबानों के लिए पानी का इंतजाम कर रहा है। प्यासे पंछियों के लिए कुछ ऐसे इंतजाम राष्ट्रपति भवन में भी किए गए हैं।
2: यहाँ अमृत उद्यान और राष्ट्रपति भवन के दूसरे स्थानों पर उनके लिए पानी के बर्तन रखे गए हैं, ताकि ये पंछी इस गर्मी में राहत और सुकून पा सके। जाहिर है ये कदम जीवों के प्रति दया और जिम्मेदारी का भाव दर्शाता है।

0: देखिए आज मौसम सुहावना, अगर किसी ने कहा है कि अगर मुझे थोड़ी सी मोहलत मिलती तो मैं घर से चाय ले आती। वैसे कल का ऑप्शन है आपके पास, कल भी मौसम बाकी यही प्रेडिक्शन,
1: कल हमने दूसरा प्लान भी करना वैसे, इफ यू ऑल अग्री।
0: सरप्राइज है आपके लिए, तो आइएगा जरूर शाम 5 बजे चाय पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: बृहस्पति का कौन सा शुभ योग छोटी जगह से बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है? बृहस्पति का कौन सा शुभ योग आदमी को जबरदस्त ज्ञानी और धार्मिक बना देता है? कौन से हैं बृहस्पति के शुभ योग और कैसा है इनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
4: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
5: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
6: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
5: Big 12 Radio.
7: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
5: and
7: down.
5: And talk sports.
8: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
5: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
9: Good news today. अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: बृहस्पति का कौन सा शुभ योग छोटी जगह से बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है? बृहस्पति का कौन सा शुभ योग आदमी को जबरदस्त ज्ञानी और धार्मिक बना देता है? कौन से हैं बृहस्पति के शुभ योग और कैसा है इनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
13: सेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
14: दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश, दिन में ही छाया घना काला अंधेरा, तापमान में गिरावट के साथ मौसम हुआ सुहाना। पहाड़ों पर भी बदला मौसम का मिजाज, शिमला में तेज बारिश के साथ गिरे ओले भी, खुशनुमा मौसम में सैर सपाटा करते नजर आए सैलानी। केरलम में मानसून की पहली बारिश, मौसम विभाग ने की पुष्टि, अगले 7 दिन भारी बारिश का अनुमान, इस बार 3 दिन लेट हुआ मानसून। शिरडी के साईं दरबार से आई आस्था की अनोखी तस्वीर, श्रद्धालुओं ने साईं बाबा को अर्पित किया सोने का मुकुट, करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही इसकी कीमत। सेना की ताकत में होगा इजाफा, जल्द 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के स्वदेशी सैन्य ड्रोन खरीदने की तैयारी, इतिहास की ये सबसे बड़ी ड्रोन खरीद।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुप्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात कॉमिक्स और सुपर हीरोज की दुनिया की करते हैं, उस बाहुबली की करते हैं जिसकी चर्चा अमेरिका से लेकर भारत तक हो रही है। ये पीछे बैकग्राउंड को देखकर आप समझ ही जाएंगे। एक ऐसा सुपर हीरो जिसके फैन इस दौर के बच्चे तो हैं ही, लेकिन उनसे भी बड़े फैन हैं वो बच्चे जो आज खुद मम्मी पापा बन चुके हैं। कल यानी 5 जून को दुही मैन सीरीज की फिल्म मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। ही मैन ने 80 और 90 के दशक में ना दुनिया भर के बच्चों के दिलों पर राज किया। पहले ही मैन टॉय आया, फिर ही मैन कॉमिक्स आई, बाद में टीवी पर ही मैन एनिमेशन सीरीज ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। अब एक बार फिर से ही मैन दुनिया भर के बच्चों के दिलों पर राज करने के लिए पूरी तरह से और एक बार फिर से तैयार है।

0: मानो ना मानो पावर तो थी, पावर भी ऐसी कि गर्मी की छुट्टियों में कभी न शांत होने वाले 80-90 के उन शोर भरे मोहल्लों में थोड़ी देर के लिए शांति हो जाती थी। हॉलिडे होमवर्क बाद में, दूध का ग्लास बाद में, खाना और खेलना बाद में, सबसे पहले ही मैं। ऐसा था ही मैन का जादू। और अब वही ही मैन एक बार फिर लौट रहा है अपना जादू लेकर। लेकिन इस बार टीवी स्क्रीन पर नहीं बल्कि बड़े पर्दे पर।
1: This obsession with nerd stuff and sword things, it's not a good look.
0: करीब चार दशक तक बच्चों और युवाओं की कल्पनाओं का हिस्सा रहने वाला ही-मैन अब हॉलीवुड फिल्म मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स के जरिए सिनेमा घरों में दस्तक देने जा रहा है। 5 जून 2026 को दुनिया भर के थिएटर्स में ये फिल्म रिलीज हो रही है। यानी अब इटर्निया की जादुई दुनिया, क्रिस्कल का किला और अच्छाई बुराई की वही क्लासिक लड़ाई नए अंदाज में दिखेगी।
2: All that stuff that only exists in legends and bedtime stories.
0: He-Man फिर दिखेगा, तलवार उठाएगा। दुश्मनों से लड़ेगा, लेकिन सच्चाई तो ये है कि उन बच्चों के मन से कभी ही-मैन वास्तव में गया ही नहीं जो भारत में 80 और 90 के दशक में बड़े हुए और अब खुद मम्मी पापा बन चुके हैं। ही-मैन के पर्दे पर लौटने की खबर उनके लिए ऐसे ही आई जैसे कोई पुराना दोस्त लौट आया हो। ही-मैन को लेकर फैंस में जबरदस्त नॉस्टैल्जिया और उत्साह देखने को मिल रहा है। जिन लोगों ने बचपन में ही-मैन को टीवी पर देखा था, अब वे तो उस किरदार को बड़े पर्दे पर देखेंगे ही। लेकिन उनके साथ ही आज के बच्चे भी अपने पेरेंट्स के जमाने के सुपर हीरो की मौज सिनेमा के पर्दे पर देख पाएंगे।
1: Now you're ready.
3: मूवी बेटर है अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन करते हैं इंडियन मूवीज के अकॉर्डिंग। एक्शन लाइक जो हमें एक्शन सीन्स मिलते हैं वहाँ पे बेटर है, उसके अंदर डिटेलिंग ज्यादा बेटर है, लाइक 3D है, एक्सपीरियंस अलग रहता है उसका। विजन के साथ आती है सारी मूवी कंटेंट जितने भी होते हैं, और इस मूवी का इंतजार भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखनी। जैसी लॉन्च होगी सबसे पहले स्टार्टिंग करें।
4: जा रहे हैं मूवी देखने, हमारे को बहुत क्रेज है इस मूवी का। हमने इसका भी प्रोमो देखा है, बहुत अच्छा लगा प्रोमो हमें देख के, मजे आ गए।
5: बहुत ही अच्छा मूवी है ये, मैं इसका बेसब्री से इंतजार है, बस ये 5 जून को रिलीज होने वाला है। मैं जब ये आ जाएगा तो मैं इसको देखने के लिए जाऊंगा कल, और बहुत ही अच्छा मूवी है, इसको आप लोग भी देखिएगा।
6: इफेक्ट वगैरह कैसे लगे?
5: इफेक्ट्स इसके अच्छे हैं, 3D में है, अच्छा है। और भी अच्छी चीज है, बहुत चीज। मुझे तो इसका बहुत कुछ अच्छा लगता है देखने में, इसका 3D इफेक्ट्स और बाकी जो भी है, जो मारपीट होती रहती है उसमें, वो सब अच्छी लगती है मुझे।
0: ही-मैन का नाम सुनते ही दिमाग में एक साथ कई चीजें चलने लगती हैं। क्रिस्कल का किला, बिजली से चमकती तलवार और वो डायलॉग जिसे बोलते वक्त हर बच्चा खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान समझने लगता था। जो ही-मैन को नहीं जानते उन्हें बता दें कि ही-मैन मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स फ्रेंचाइजी का एक बेहद लोकप्रिय काल्पनिक सुपर हीरो किरदार है। ही-मैन का असली नाम प्रिंस एडम है, जो जादुई ग्रह इटर्निया का राजकुमार है। जब प्रिंस एडम अपनी जादुई तलवार को हवा में लहराकर आई हैव द पावर वाला डायलॉग बोलता है, तो वो ही-मैन में बदल जाता है। कॉमिक्स में हीमैन को ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति दिखाया गया है, जिसका मुख्य साथी एक डरपोक शेर होता है जो जादुई शक्ति से खूंखार बैटल कैट में बदल जाता है। हीमैन की कहानी का मुख्य विलन है स्केलेटर, जो कासल ग्रेस्कल की जादुई शक्तियों पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन हीमैन हर बार उसे हराता है। और 90 के दशक में मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स की लोकप्रियता ने हीमैन को ग्लोबल आइकन बना दिया था। उस दौर में हीमैन सिर्फ कार्टून नहीं था, वो स्टेटस सिंबल था। हीमैन की प्लास्टिक की तलवार, एक्शन फिगर या स्कूल बैग पर छपा हीमैन बच्चों को दीवाना बना देता था। हर बच्चा उसे पाने की जिद अपने मम्मी पापा से करता था। अब हीमैन की दीवानगी का वही दौर फिर से लौटा है। नई फिल्म में प्रिंस एडम यानी हीमैन की भूमिका निभा रहे निकोलस गैलेजीन उस पीढ़ी से नहीं है जिसने हीमैन का सुनहरा दौर देखा, लेकिन उस किरदार की लोकप्रियता ने उन्हें भी इसका फैन बना दिया।
6: Well, I was born in 94, so I just really missed out on the initial wave of He-Man. But in a way, was kind of raised with He-Man because Master of the Universe has always had kind of an internet presence. You know, I sent a lot of He-Man memes, Skeletor memes in my day.
7: You are he who will restore peace to Eternia.
0: वास्तव में हीमैन फ्रेंचाइजी की वापसी की खबर इसलिए भी खास है क्योंकि ये सिर्फ रीमेक नहीं है, बल्कि ये कोशिश है उस कहानी को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की, जिसने एक पूरी पीढ़ी को साधारण होकर भी हीरो होने का मतलब समझाया था। सवाल यही है, क्या नया हीमैन वही एहसास दे पाएगा? फिलहाल कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना तय है कि दुनिया भर में इस फिल्म को देखने बड़ी संख्या में हर उम्र के दर्शक सिनेमा घरों में उमड़ेंगे, क्योंकि कुछ कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन नहीं होती बल्कि वो पीढ़ियों को जोड़ती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: आज जब बच्चे स्क्रीन पर सब कुछ देख रहे हैं पर सीख कम रहे हैं, लेकिन तब हीमैन जैसा किरदार बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जो ताकत के साथ साथ जिम्मेदारी भी दिखाए, जो ये बताए कि हीरो होने का मतलब अकेले सब कुछ कर लेना नहीं होता बल्कि सही लोगों के साथ खड़े होना भी होता है। आज हीमैन की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि वो कहता है कि ताकत का मतलब सिर्फ मारना नहीं बल्कि सही के लिए खड़ा होना है। वो बताता है कि हर कोई अंदर से प्रिंस एडम होता है, लेकिन हालात आने पर हीमैन भी बन सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर दुनिया को कैसे मिला ये कमाल का सुपरहीरो जिसने देखते ही देखते दुनिया भर के बच्चों को दीवाना सा बना दिया। ही-मैन कैरेक्टर को मूल रूप से अमेरिका की टॉय कंपनी मेटल ने बनाया था। मेटल ने कॉनन द बारबेरियन और स्टार वॉर्स की सफलता से प्रेरित होकर मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स के नाम से खिलौने बनाए। ही-मैन उसी सीरीज का हिस्सा था। खिलौना कंपनी मेटल के लिए डिजाइनर मार्क टेलर और रॉजर स्वीट ने ही-मैन को डिजाइन किया था। फिर मेटल ने 1981 में मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स एक्शन फिगर्स की फ्रेंचाइजी के हिस्से में इसको पेश किया था। 1981 में खिलौनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए मेटल ने ही-मैन एंड द पावर सॉर्ड नाम की मिनी कॉमिक पेश की, जो इस किरदार की पहली आधिकारिक कॉमिक्स थी। बाद में मेटल ने डीसी कॉमिक्स के साथ एक साझेदारी की, जिसके बाद ही-मैन उसके खलनायक स्केलेटोर के बीच की कहानी को दुनिया भर में पहचान भी मिली। कॉमिक्स की सफलता को देखते हुए

0: था, दूसरी काफी डाउट था इनकी कास्टिंग को लेके, क्योंकि उनकी काफी बॉडी लीन थी और ईमैन जैसे कि हम सब जानते हैं काफी मसल्स और काफी मतलब टोन्ड बॉडी होती है उनकी, तो बहुत डाउट्स थे लोगों को कि वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी जो पहले रिएक्शन आ रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि मैंने फिल्म भी देखी है और मैं बता सकती हूँ कि उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। मेरे बातचीत में मैंने उनसे वही पूछा कि ये सिनिसिज्म के तौर पे ये जब डाउट्स थे तो उनको कैसे उन्होंने हैंडल किया, और उनका काफी पॉजिटिव आउटलुक रहा। कमीला जो कि टीला प्ले करती है ये म्यूजिक में, उनका भी काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो डायरेक्टर है ट्रैविस, उनको बहुत बड़ा जोखिम एक तरीके का रिस्क लेना पड़ा उनको भी टीला कास्ट करते हुए, क्योंकि उनकी बॉडी ऑफ वर्क में कहीं पे भी उन्होंने कभी ऐसा काम नहीं किया है, कोई सुपर हीरो प्ले नहीं किया है। तो दोनों के साथ ही जो बातचीत थी वो काफी पॉजिटिव रही। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें पता है कि इंडिया में भारत में उन्हें बहुत प्यार किया जाता है, तो वो एक तरीके से शॉक सरप्राइज भी रहे, और उन्होंने ये मुझे प्रॉमिस किया है कि जो अगली फिल्म बनेगी ह्यूमैन की जिनमें वो दोनों रहेंगे वो इंडिया में शूट करेंगे। अब वो शायद मजाक में हो या जैसे भी बोला हो, उन्होंने ये कंफर्म तो कर ही दिया है चलो कि नेक्स्ट जो फिल्म होगी वो भारत में शूट करेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा है कि उन्हें बॉलीवुड डांस नंबर भी करना है, तो मैंने उन्हें प्रॉमिस किया है कि मैं उन्हें जरूर एक टेक्निकल सिखाऊंगी।
1: भावना, आई जस्ट होप कि ये मजाक तो बिल्कुल ना हो जो बात उन्होंने कही है ना, कि ये होनी चाहिए, इंडिया में शूट भी होनी चाहिए और इंडिया की ऑडियंस को भी एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ के सुपर हीरो हैं, हम कॉमिक्स लेके आए हैं। मैं आपको बता रही हूँ, ये चीज जब सामने आई है ना तो हम लोगों के लिए बड़ा नॉस्टैल्जिक हो गया है, ये नॉस्टैल्जिया में हम चले गए हैं कि हमने उस वक्त कॉमिक्स भी पढ़ी हैं, हमने पहले फिल्में भी देखी हैं। अब इस फिल्म में और पुरानी फिल्मों में कोई क्या फाइन लाइन और क्या डिफरेंस आप देख पा रही हैं, क्योंकि आपने कहा कि आपने फिल्म देखी है, क्या कुछ नया होगा, कुछ बता सकते हैं? प्लॉट ट्विस्ट मुझे पता है आप नहीं बता सकते, लेकिन हल्का सा कुछ बता दीजिए कि प्लॉट ट्विस्ट क्या होने वाला है।
0: आई थिंक कोई ट्विस्ट नहीं है, ह्यूमैन की स्टोरी हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि जब भी कोई इटर्निया पे जब भी कोई प्रॉब्लम आई है तो वो हमेशा खड़े रहे हैं, ये स्टोरी हम सब जानते हैं। लेकिन इस बार का जो ह्यूमैन है, जो नया ह्यूमैन है, निकोलस वाला जो ह्यूमैन है, ये काफी मॉडर्न है। मतलब जब हम प्रिंस एडम को देख रहे हैं तो वो स्टार्टिंग में जब हम उनसे मिल रहे हैं तो वो एक ऑफिस गोइंग आम आदमी है जो कि अपने काम से परेशान है। आई थिंक ये इमोशन को हम सभी रिलेट कर पाएंगे, तो इस तरीके से वो थोड़ा सा अलग है। जेन जी जो नया जनरेशन है उनके लिए बनाया गया है ताकि वो भी रिलेट कर पाए इन सुपर हीरोज के साथ। तो बस वही एक, अगर मैं आपको मोटा मोटी कहूँ तो यही एक मेजर डिफरेंस है। बट उसके अलावा एक्टिंग, स्टोरी लाइन, एवरीथिंग इज वेरी मच जो आप एक ह्यूमैन फिल्म से एक्सपेक्ट करोगे, जो सीरीज से एक्सपेक्ट करोगे।
1: जी चलिए, आई जस्ट होप एंड फिंगर्स क्रॉस कि बहुत मजा आने वाला है ये फिल्म देखकर। भावना, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए आपका। तो ये तो थी बात ही मैन की, लेकिन ही मैन के अलावा भी वेस्टर्न सिनेमा में पिछले कई दशकों में एक के बाद एक कई शानदार साइंस फिक्शन और सुपर हीरो फिल्में बनाई गई हैं। बेहतरीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बनने वाली ये फिल्में भारी भरकम बजट में बनकर तैयार होती हैं, लेकिन सारी दुनिया में अपनी लागत से कई गुना ज्यादा का बिजनेस भी करती हैं। दुनिया भर के देशों में लोग इन फिल्मों के दीवाने हैं। कौन सी हैं हॉलीवुड की बेहतरीन सुपर हीरो साइंस फिक्शन फिल्में जिनके हीरो दुनिया के दिल पर राज करते हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।
2: We must reach far beyond our lifespans.

0: हॉलीवुड के फिल्म मेकर्स को साइंस फिक्शन बनाने में वो महारत हासिल है कि डीसी कॉमिक्स और मार्वल स्टूडियोज के सुपर हीरोज ने सारी दुनिया को अपना दीवाना बना रखा है। वाओ!
1: इंडियन सर्वेलेंस ड्रोन।
0: हॉलीवुड के कद्दावर फिल्म स्टूडियो, बेहतरीन स्टार कास्ट के जमावड़े और जबरदस्त स्पेशल इफेक्ट्स के साथ हजारों करोड़ की बजट से ये फिल्में तैयार करते हैं। ये फिल्में अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट के मुकाबले कई गुना ज्यादा कमाई करती हैं।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग अब पृथ्वी पर नहीं हैं, आप पेंडोरा पर हैं।
3: अपनी शक्लें देखी तुम लोगों ने?
2: यहाँ बसने वाले स्थानीय लोगों को नावी कहते हैं, जिन्हें मारना बहुत मुश्किल है।

0: हॉलीवुड की सबसे शानदार साइंस फिक्शन फिल्मों में गिनी जाती है डायरेक्टर जेम्स कैमरून की अवतार।
1: तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, चले जाओ, ये सब तुम्हारी गलती है।
0: जेम्स कैमरून ने अपनी बेमिसाल विजन से इस फिल्म में एक दूसरे ग्रह की कहानी को बेहद अनोखे अंदाज में फिल्माया था।
2: कमाल है।
0: कैमरून की इस फंतासी नीली दुनिया ने दुनिया भर में खूब वाहवाही बटोरी थी। ये आज तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में दर्ज है।
2: सब कुछ बदल गया,
3: जेक यहाँ बुरा हाल है, कॉलेज बेकऑफ पड़ रहा है और उसे कोई नहीं रोक सकता।
4: हम जंगी जहाजों का मुकाबला तीर कमानों से करने वाले।
0: इसी तरह मार्वल स्टूडियोज की एवेंजर्स एंडगेम की गिनती आने वाले कई सालों तक हॉलीवुड के सबसे बेहतरीन साइंस फिक्शन के रूप में होगी। विलेन थानोस की मुट्ठी से दुनिया को आजाद करवाने वाले एवेंजर्स की इस कहानी ने लोगों को खूब एंटरटेन किया था।
5: Somebody has to stop it.
6: With great power comes great responsibility.
5: This is my gift.
7: Wow.
5: It is my curse.
7: Who are you?
5: Who am I? I'm Spider-Man.
0: इसी तरह सुपर हीरोज और साइंस फिक्शन मूवीज की सुपर हिट फिल्मों में शामिल है स्पाइडरमैन सीरीज।
7: Do I get to say thank you this time?
0: केवल बच्चे ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हर उम्र के लोग स्पाइडरमैन फिल्मों के दीवाने हैं।
8: Be careful, Diana.
9: Who is this woman?
10: She's my secretary, sir.
11: She's a very good secretary.
12: It is our sacred duty to defend the world. And it's what I'm going to do.
0: तो वही एक लेडी सुपर हीरो को केंद्र में रखकर बनाई गई फिल्म वंडर वुमन हॉलीवुड की सबसे वंडरफुल साइंस फिक्शन फिल्मों में गिनी जाती है।

0: be told, I was ready to hang it up till I met you today. So you're not from around here.
1: वंडर वुमन की तरह ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की कैप्टन मार्वल भी एक महिला सुपर हीरो की कहानी पर आधारित जोरदार साइंस फिक्शन फिल्म है।
2: I see flashes.

0: तो वहीं डायनासोर की फंतासी कहानी पर बनी जुरासिक वर्ल्ड सीरीज ने पिछले 3 दशकों से लोगों को अपना दीवाना बना रखा है। हॉलीवुड के डायरेक्टर्स ने अपनी शानदार तकनीक से डायनासोर की दुनिया को इंसानों की धरती पर इस फिल्म के जरिए अब तक जिंदा बनाए रखा है। इसी क्रम में जॉर्ज क्लूनी और सैंड्रा बुलक की फिल्म ग्रेविटी को बेहतरीन साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म माना जाता है। इस फिल्म में आउटर स्पेस में मिशन पर गए एस्ट्रोनॉट्स की कहानी को बेहद जानदार ढंग से दिखाया गया है। तो वहीं द मार्शियन भी एक अद्भुत साइंस फिक्शन मूवी है जिसमें रिसर्च अभियान के दौरान मार्स पर छूटे एक एस्ट्रोनॉट की कहानी को दिखाया गया है। मंगल ग्रह पर एक लंबे अरसे तक खुद को जिंदा रखने और सकुशल धरती पर वापस लौटने की इस कहानी को दुनिया भर में बेहद पसंद किया गया।
1: We must confront the reality of interstellar travel.
2: Murph, I love you forever.
0: शानदार साइंस फिक्शन फिल्मों की इसी लिस्ट में डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलान की इंटरस्टेलर भी शामिल है। इस फिल्म की कहानी भविष्य में ऐसे समय पर आधारित है जब धरती का पर्यावरण संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का एक दल ब्रह्मांड में धरती के अलावा रहने लायक किसी दूसरे जगह को तलाश करने के मिशन पर निकलता है। इसी कड़ी में क्रिस्टोफर नोलान की ही इंसेप्शन एक और बेमिसाल साइंस फिक्शन है।
3: बात बताओ तुम्हें तुम्हारे किसी भी
0: फिल्म में चोरों की एक टीम ड्रीम शेयरिंग तकनीक के सहारे सपनों के भीतर कई लेयर्स के अंदर जाती है। लियोनार्डो डिकैप्रियो की यह फिल्म देखने वाले को हैरान कर देती है।

0: तो वहीं ट्रांसफॉर्मर सीरीज को भी इसी लिस्ट में रखा जा सकता है। ट्रांसफॉर्मर्स यानी कि ऐसे रोबोट्स जो अपनी पहचान छुपाकर कार या ट्रक के रूप में इंसानों के बीच रहते हैं। ऑटोबोट्स कहे जाने वाले इन अनोखे रोबोट्स पर बनी ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइजी दुनिया भर के दर्शकों के बीच आज तक बेहद पॉपुलर है। हॉलीवुड में ऐसी और भी कितनी ही साइंस फिक्शन फिल्में हैं जो कुछ वक्त के लिए आपके सामने कल्पना और हकीकत के फासले को पूरी तरह मिटा देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: पर तुम्हें सफर के सबसे अच्छे हिस्से थे।
2: चलिए उम्मीद करते हैं आज के इस बेहद इंटरेस्टिंग खास पेशकश में आप सबको बहुत मजा आया होगा। फिलहाल अच्छी खबरें लगातार जा रही हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज।

0: बृहस्पति का कौन सा शुभ योग छोटी जगह से बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है? बृहस्पति का कौन सा शुभ योग आदमी को जबरदस्त ज्ञानी और धार्मिक बना देता है? कौन से हैं बृहस्पति के शुभ योग और कैसा है इनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: K-pop takes center stage. Bold sounds, global energy, and hits that move fast. Today's K-pop plays the biggest tracks, breakout anthems, and chart toppers. Fresh music on repeat, so you never miss a beat. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's K-pop to start listening now.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Tune in how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests, did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
3: दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: दिल्ली NCR में तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश, दिन में ही छाया अंधेरा, तापमान में गिरावट से मौसम हुआ सुहाना। पहाड़ों पर भी बदला मौसम का मिजाज, शिमला में तेज बारिश के साथ गिरे ओले, खुशनुमा मौसम में सैर सपाटा करते नजर आए सैलानी। केरल में मॉनसून की पहली बारिश, मौसम विभाग ने की पुष्टि, अगले 7 दिन भारी बारिश का अनुमान, इस बार 3 दिन लेट हुआ मॉनसून। शिरडी के साईं दरबार से आई आस्था की अनोखी तस्वीरें, श्रद्धालु ने साईं बाबा को अर्पित किया सोने का मुकुट, करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। सेना की ताकत में होगा इजाफा, जल्द 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की स्वदेशी सैन्य ड्रोन खरीदने की तैयारी, इतिहास की ये सबसे बड़ी ड्रोन खरीद।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: दिल्ली NCR में अचानक बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में जबरदस्त बारिश, तापमान में गिरावट। तेज आंधी और बारिश के बीच दिन में ही छाया अंधेरा, दिल्ली NCR में लोगों को गर्मी से राहत। कुछ ही देर की बारिश से सड़कों पर भरा पानी, राजधानी में धीमी पड़ी ट्रैफिक की रफ्तार। तेज हवाओं और आंधी के बीच जड़ से उखड़े सड़क किनारे लगे कई पेड़, मौसम विभाग ने कल तक के लिए जारी किया येलो अलर्ट। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के कारण पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में ऐसा ही रहेगा मौसम, आंधी तूफान, गरज चमक और हल्की बारिश का दौर देखने को मिलेगा। नोएडा में भी तेज आंधी के साथ हुई झमाझम बारिश, लोगों को जलती गर्मी से राहत। पूरे इलाके में मूसलाधार बारिश, लेकिन जलभराव के कारण यातायात हुआ धीमा, जाम की स्थिति। नोएडा से सटे गाजियाबाद में भी तेज हवाओं के साथ चली धूल भरी आंधी, विजिबिलिटी बेहद कम। सोनीपत में भी मौसम ने अचानक करवट ली, तेज हवाओं और आंधी के बीच जोरदार बारिश। पहाड़ों पर भी राहत की फुहार, शिमला में झूम के बरसे बादल। मनाली में जोरदार बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। बारिश के बाद लगातार बढ़ रही सैलानियों की संख्या, कारोबारियों में खुशी की लहर। कुल्लू में बदला मौसम का मिजाज, भारी बारिश से गर्मी से मिली बड़ी राहत। पर्यटकों को लुभा रहा जम्मू कश्मीर का सुहाना मौसम, उत्तर भारत में पड़ रही प्रचंड गर्मी से राहत के लिए छुट्टियां मनाने जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं लोग। खूबसूरत वादियों और साफ हवा के बीच छुट्टियों को यादगार बनाने पहलगाम घाटी पहुंच रहे हैं पर्यटक। मॉनसून ने भारत में दी दस्तक, केरलम पहुंचा मॉनसून, मौसम विभाग ने दी जानकारी। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक में भारी बारिश का जताया अनुमान। मौसम विभाग ने देश भर में भारी बारिश की चेतावनी दी, भीषण गर्मी झेल रहे इलाकों में लोगों को मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने देश के उत्तर पश्चिम इलाकों में आंधी बारिश का जताया अनुमान, केंद्रीय और पूर्वी भारत में बारिश, आंधी बारिश की संभावना। आने वाले 2 से 3 दिन पहाड़ी राज्यों में बारिश और आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में भक्त ने किया बेशकीमती दान, साईं बाबा मंदिर को अर्पण किया सोने का मुकुट। 237 ग्राम सोने से बना है ये सुंदर मुकुट, करीब 34,70,000 रुपए बताई गई है कीमत। इस शानदार मुकुट पर की गई है सुंदर नक्काशी, सफेद नगों के बीच रंग नगों से लिखा है ओम। पंजाब के अजय कुमार गोयल ने साईं को चढ़ाया है सुंदर मुकुट। कैंसर से पीड़ित पिता के लिए 2 साल की ज्यादा जिंदगी की मुराद पूरी करने पर किया दान। देश दुनिया में हैं साईं के लाखों भक्त। हर साल अपनी मनोकामना पूरी होने पर साईं के दरबार में अनगिनत चीजें करते हैं भेंट। कोटा की शान जग मंदिर बना पर्यटकों की पहली पसंद। अपनी खूबसूरती और ऐतिहासिक विरासत से पर्यटकों को कर रहा आकर्षक। 680 साल पुराने किशोर सागर आज आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 1346 में बने किशोर सागर तालाब का इतिहास 7 शताब्दियों पुराना। 1739-40 में निर्मित जग मंदिर कोटा नरेश ने रानी ब्रिज कुंवर की पसंद और प्रकृति प्रेम को ध्यान में रखकर बनवाया था। रात की रोशनी में और निखरता है जग मंदिर, तो वहीं लाल पत्थरों से बना महल तालाब के बीच तैरते राजमहल जैसा दिखाई देता है। धार्मिक और पर्यटन गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना क्षेत्र जग मंदिर के आसपास मंदिर उद्यान और शांत वातावरण पर्यटकों को देते हैं सुकून। केदारनाथ धाम में स्वच्छता की दिशा में जिला प्रशासन की नई पहल, अब यात्री भी गौरीकुंड ला सकेंगे धाम से सूखा कूड़ा। केदारनाथ धाम में स्वच्छता को लेकर कैरी मी बैक नाम से अभियान चलाया गया। श्रद्धालु स्वेच्छा से केदारनाथ धाम से सूखा कूड़ा अपने साथ गौरीकुंड लाकर रहे हैं कूड़ा। इस अभियान के तहत 50 से ज्यादा यात्री केदारनाथ से कूड़े के बैग को गौरीकुंड पहुंचा चुके हैं। भक्तों को किया जा रहा है जागरूक। कैरी माई बैक अभियान का उद्देश्य केदारनाथ धाम को कूड़ा कचरा मुक्त करना है, साथ ही यात्रा को अधिक व्यवस्थित और पर्यावरण अनुकूल बनाना। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं से अभियान में सहभागिता करने की अपील की। नगर पंचायत केदारनाथ और सहयोगी संस्थाओं को जुड़ने को कहा। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। 45 दिनों में अब तक 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंचे सबसे ज्यादा भक्त, आंकड़ा पहुंचा करीब 11 लाख। बद्रीनाथ धाम को लेकर भी भक्तों में जोरदार उत्साह देखने को मिला, करीब 9 लाख से ज्यादा लोगों ने किए दर्शन। यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम में लगा भक्तों का मेला, अब तक दोनों जगहों पर 10 लाख से ज्यादा भक्तों ने लगाई हाजिरी। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में भी भक्तों का लगा तांता, 48,000 से ज्यादा लोगों ने किए दर्शन। मारुति सुजुकी ने पेश की देश की पहली परप्लेसिक्स फ्यूल कार वैगनार। एडवांस डीसीयू कैलिब्रेशन के साथ आती है शानदार कार E20 यानी 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से लेकर E100 यानी लगभग शुद्ध इथेनॉल पर चलने के लिए खुद को ढालने में सक्षम। लॉन्च के दौरान केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी रहे मौजूद। नितिन गडकरी ने कहा कच्चे तेल प्रदेश की निर्भरता कम करेंगे, इथेनॉल जैसे जैव ईंधन और साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम। देश का एक पसंदीदा ब्रांड है मारुति का वैगनार, जिसने देश में लंबे समय से सीएनजी और एलपीजी वाली गाड़ियों के क्षेत्र में निभाई अहम भूमिका। सेना की ताकत में होगा इजाफा, जल्द 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के स्वदेशी सैन्य ड्रोन खरीदने की तैयारी। इस साल स्वदेशी कंपनियों से लगभग 16,000 करोड़ से ज्यादा कीमत के सैन्य ड्रोन खरीदने की तैयारी कर रहा है भारत। ये देश के इतिहास में ड्रोन की अब तक की सबसे बड़ी खरीद। आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान भारत में 600 से ज्यादा कंपनियां बना रही हैं ड्रोन और उनके पुर्जे, जिनमें से 100 से ज्यादा कंपनियां रक्षा क्षेत्र के लिए कर रही हैं काम। आज भारतीय वायुसेना ने रचा इतिहास, पहली बार नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा IAF का Sukhoi-30 MKI विमान। लड़ाकू विमान लैंड करते ही जोरदार गड़गड़ाहट से गूंज उठा आसमान, IAF की जबरदस्त ऑपरेशनल क्षमता का उदाहरण है नजारा। उत्तर प्रदेश में नीम करौली बाबा सर्किट और बुंदेलखंड फोर्ट सर्किट का होगा विकास, सीएम योगी ने प्रदेश के टूरिज्म विभाग के साथ मीटिंग में मंजूरी। बैठक में चित्रकूट स्थित प्राचीन सोमनाथ मंदिर के संरक्षण कार्यों की भी हुई समीक्षा, मुख्यमंत्री ने प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण की जिम्मेदारी पर दिया जोर। सहारनपुर में किसानों को मिल रहा किसान योजनाओं का फायदा, खेती की लागत कम करने और आर्थिक सहायता मिलने में मददगार है केंद्रीय किसान योजनाएं। आधुनिक तरीके अपनाकर खेती को फायदेमंद बना रहे हैं किसान, पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड और सोलर पंप योजना जैसी पहले किसानों के बीच काफी लोकप्रिय है। गढ़चिरौली में भी केंद्र और राज्य की योजनाओं का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं किसान, बीज दवाई और मजदूरी के भुगतान में मिल रही बड़ी राहत। द्रास में द्रास समर कार्निवल का आगाज हुआ, कई तरह के खेलों में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस आयोजन में हॉर्स पोलो, तीरंदाजी और टेंट पेंगिंग सहित पारंपरिक खेल प्रतियोगिताएं शामिल। भारतीय सेना के फॉरएवर इन ऑपरेशंस डिवीजन ने इंदिरा समर कार्निवल का किया आयोजन, गांव के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर में विद्यासागर विश्वविद्यालय के 23वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, राज्यपाल आर एन रवि हुए शामिल। ओडिशा के 6 उम्मीदवारों का अग्निवीर योजना में चयन हुआ, भद्रक की दीप्तिमयी सारंगी ने हासिल किया 5वां स्थान। एक बार फिर से पर्दे पर छाने वाला है डेविड धवन का 90 का जादू, कल सिनेमा घरों में रिलीज होगी फिल्म है जवानी तो इश्क होना है। एक बार फिर से दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए आ रही है सबकी चहेती मिश्रा फैमिली, कल सोनी लिव पर रिलीज होगी वेब सीरीज।
3: तुम मम्मी थोड़ी हो जो पिना।
2: एक्ट्रेस करिश्मा कपूर अब एक पुलिस ऑफिसर के रोल में आएंगी नजर, G5 पर रिलीज होगी ब्राउन। दृश्यम 3 के बाद एक्टर मोहन लाल अब OTT पर दिखाएंगे जादू, कल Z5 पर रिलीज हो रही है उनकी फिल्म पैट्रियट। कल Amazon Prime पर स्ट्रीम होगी वेब सीरीज द पिरामिड स्कीम, जिसमें मुख्य भूमिका में हैं परमवीर सिंह चीमा, रणवीर शौरी, शेखर सुमन। सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म पेडी, फिल्म में रामचरण, जानवी कपूर, शिवा राजकुमार, जगतपति बाबू, दिव्येंदु, बोमन रानी और रवि किशन का अहम रोल। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के दरबार में पहुंची अभिनेत्री जानवी कपूर, फिल्म पेडी की सफलता की कामना। कल सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म बंदर, बॉबी देओल ने फिल्म में समर का किरदार निभाया। धुरंधर फ्रेंचाइजी के फैन हुए मुकेश अंबानी, रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 की तारीफ की। जम्मू कश्मीर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को मंजूरी दी गई, 7-11 सितंबर तक होगा आयोजन। टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, विराट कोहली ODI सीरीज से बाहर। हैमस्ट्रिंग में चोट लगने के कारण विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से हुए बाहर, चल रहा है इलाज। छह जून से खेला जाएगा भारत अफगानिस्तान के बीच टेस्ट मैच, चंडीगढ़ में होगा मुकाबला। भारत अफगानिस्तान के बीच खेला जाएगा 3 वनडे मैच, 13 जून से 20 जून तक होगा मैच। भारत को जल्द मिलेगा T20 के लिए नया कप्तान, श्रेयस अय्यर का नाम आगे, सूर्य का जाना लगभग तय। गुजरात में आज विश्व की पहली योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन। इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता में 60 से ज्यादा देशों के 500 से ज्यादा एथलीट लेंगे हिस्सा, 7 कैटेगरीज में अपनी कला एथलीटिज्म का करेंगे प्रदर्शन। प्रतियोगिता में पारंपरिक योगासन के साथ कई तरह की प्रतिस्पर्धाओं का होगा आयोजन, वीर द लायन रखा गया है पहली विश्व योगासन खेल प्रतियोगिता का शुभंकर। योगासन को प्रतिस्पर्धी वैश्विक खेल के रूप में स्थापित करना और 2036 के ओलंपिक में शामिल कराने की दिशा में कदम बढ़ाना प्रतियोगिता का है मकसद। शाम 6:40 पर कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे पीएम मोदी, पीएम ने कार्यक्रम के आयोजकों को बधाई और प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। की सबसे बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज हुआ। आदित्य बिरला ग्रुप MPL T20 सिंधिया कप 2026 के नाम से भी जानी जाती है ये प्रतियोगिता। IPL की तर्ज पर प्रदेश के युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए आयोजन किया गया। होलकर स्टेडियम और डेली कॉलेज में 26 जून तक चलेगी प्रतियोगिता। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के तहत ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन करती है प्रतियोगिता का आयोजन। प्रतियोगिता को BCCI से भी मिली है मंजूरी। मध्य प्रदेश लीग में इस साल पुरुष वर्ग में 10 टीमें और महिला वर्ग में 5 टीमें खिताब जीतने के लिए आजमाएंगी जोर। IPL खेलने वाले खिलाड़ी भी प्रतियोगिता का हिस्सा। प्रतियोगिता जीतने वाली टीम को सिंधिया कप के साथ मिलेगी 50 लाख रुपए की इनामी राशि। उपविजेता टीम को मिलेंगे 25 लाख। फीफा वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह से तैयार है कनाडा का वैंकूवर शहर। इनमें एक विशाल फुटबॉल की कलाकृति और पहाड़ की चोटी पर फहराया गया एक बहुत बड़ा कनाडाई झंडा शामिल। इस मुख्य आकर्षण शहर के साइंस वर्ल्ड का गुंबद है जिसमें अब द ब्यूटीफुल डोम में बदल दिया गया है। यह गुंबद टूर्नामेंट की आधिकारिक मैच बॉल एडिडास ट्रोएंडा का एक विशाल 3000 डिग्री वाला रेप्लिका है। इस विशाल कलाकृति का डायमीटर 40 मीटर है और साथ ही इस ढांचे पर 131 खास आकार के पैनल्स लगाए गए हैं। शहर में एक और जगह ग्रूज माउंटेन पर एक विशाल कनाडाई झंडा फहराया गया। इसे द कट नामक स्की रन के ऊपर लगाया गया है। इस झंडे की लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 80 मीटर है जो कनाडा के लगभग 1.5 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। लंदन में आर्टिस्ट माजा पेट्रिक ने एक नई प्रदर्शनी पेश की जिसमें एक रोबोट द्वारा सिंथेटिक आर्कटिक पॉपीज को एक लाइट बॉक्स में व्यवस्थित किया गया है। द ग्लिच्ड सबलाइम सीरीज का नाम की ये प्रदर्शनी आर्कटिक पॉपी से प्रेरित है जो पृथ्वी पर सबसे उत्तरी इलाकों में खिलने वाले फूलों वाले पौधों में से है। जून तक चलने वाली यह प्रदर्शनी SXSW लंदन का हिस्सा है। इस आयोजन में पूरे शहर में टेक्नोलॉजी संगीत फिल्म और संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम एक साथ पेश किए जाते हैं। चाइना के सिचुआन प्रांत में स्थित चेंगदू रिसर्च बेस ऑफ जायंट पांडा ब्रीडिंग से सामने आया एक क्यूट वीडियो। वैज्ञानिक रिसर्च जन जागरूकता और इको टूरिज्म के लिए दुनिया भर में मशहूर है चेंगदू का ये बेस। जायंट पांडा और रेड पांडा जैसे चाइना की लुप्त होती वन्यजीव प्रजातियों के संरक्षण के लिए मशहूर। चाइना के ग्वांगडोंग प्रांत में अत्याधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन 37 देशों के 60 राजनयिकों ने हिस्सा लिया। एयर ड्रम किट और एक्सोस्केलेटन रोबोट बना आकर्षण का केंद्र। स्मार्ट अनुभव केंद्र में प्रदर्शित चालक रहित कारों और रोबोटिक तकनीकों ने विदेशी राजनयिकों को किया प्रभावित। ग्वांगडोंग में आयोजित तकनीकी प्रदर्शनी में रोबोट पियानो वादक के अपने कला का प्रदर्शन किया। विदेशी प्रतिनिधियों के रोबोटिक्स के बढ़ते प्रभाव को करीब से देखा। 5 जून तक चलेगा अत्याधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
4: बृहस्पति का कौन सा शुभ योग छोटी जगह से बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है? बृहस्पति का कौन सा शुभ योग आदमी को जबरदस्त ज्ञानी और धार्मिक बना देता है? कौन से हैं बृहस्पति के शुभ योग और कैसा है इनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
7: जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देशवासियों से फॉरेन ट्रिप की बजाय स्वदेश घूमने की अपील की तो GNT भी आप लोगों से अपने आसपास की खूबसूरत, ऐतिहासिक और दूसरी सैर सपाटा करने वाली जगहों की तस्वीरों को शेयर करने की अपील कर रहा है, और हम आपके भेजे गए उन वीडियोस को GNT पर लगातार दिखा रहे हैं। तो चलिए आज आपको हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन कसौली लेकर चलते हैं, जहां की खूबसूरत वादियां यकीनन आपको भी वहां जाने के लिए जरूर खींचेंगी। ये व्लॉग हमारे एक दर्शक ने ही भेजा है, देखिए।

0: आज हम आपको लेके आए हैं कसौली के सुंदर वादियों में। हिमाचल प्रदेश का ये एक ऐसा क्षेत्र है जो कि हरियाली, देवदार के पेड़ों, ओक के पेड़ों से सुंदर और शांत वातावरण में स्थित है। यहाँ के पर्यटक स्थल जैसे चर्च, सनसेट, मंकी पॉइंट, गिलबर्ट ट्रेल, जो मंकी पॉइंट है यहाँ का, वो इस क्षेत्र की सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र है और वहाँ का जो नज़ारा है, दृश्य है, वो बहुत ही दर्शनीय है। देश विदेश के यात्री यहाँ पे आते हैं और वहाँ का पूरा दृश्य हम देख सकते हैं। ग्रीनरी, हरियाली, जो कि सबके मन की शांति और विकास, विद्यार्थियों के पढ़ने लिखने के लिए बहुत ही उचित स्थान बताया गया है। और यहाँ पे जो गिलबर्ट ट्रेल है, ये पर्यटक और ट्रैकिंग के लिए बहुत फेमस है। एंड जो सनसेट पॉइंट है, वो सूर्यास्त का एक हसीन दृश्य प्रस्तुत करता है। सभी देशवासियों से अपील करती हूँ कि इस स्थल पे आके अपने एंजॉय कीजिए, अपने परिवार के साथ अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ पे आएं। और देश विदेश से घूमने से अच्छा है कि आप अपने प्रदेश, अपने इंडिया, अपने भारत की स्थल को जाने पहचाने, यहाँ की प्रकृति और संस्कृति से रूबरू होए। ये जो कसौली है, ये चंडीगढ़ से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसे ही आप चंडीगढ़ से शिमला रोड पे आते हो, कसौली चौक पे, वहाँ से एक लेफ्ट टर्न आपको लेना होता है। कसौली चौक से आते आते एक सुंदर और एक बोर्डिंग स्कूल है, कसौली इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, वहाँ से ये थोड़ा सा 7 किलोमीटर की दूरी पर है। आप आए और कसौली के इस सुंदर और शांत वातावरण का इंजॉय लीजिए।
1: तो आप भी अपने ही देश में सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के इस संकल्प में भागीदार बनिए। बस आपको करना सिर्फ इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है, तो उठाइए कैमरा और बनाइए व्लॉग। फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उसे GNT पर जरूर दिखाएंगे।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: Columbus has trusted Atlas Butler for heating and cooling since 1921. They didn't start out doing plumbing because home plumbing wasn't really a thing yet. Yeah, they've been around a while.
4: Call 1-800-FURNACE.
5: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
2: कि मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
9: देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक केदारनाथ धाम पहुंचे करीब 11 लाख श्रद्धालु। धाम में लगातार बदल रहा मौसम का मिजाज। शिरडी के साई दरबार से आई आस्था की अनोखी तस्वीर, श्रद्धालु ने साई बाबा को अर्पित किया सोने का मुकुट, करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। अहमदाबाद में वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप का आगाज, 60 देशों के 400 से ज्यादा एथलीट लेंगे भाग। प्रधानमंत्री मोदी बोले, योग मानवता के लिए सबसे बड़ा तोहफा। दिल्ली NCR में तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश, दिन में छाया अंधेरा, तापमान में गिरावट से मौसम सुहाना। केरल में मॉनसून की पहली बारिश, मौसम विभाग ने की पुष्टि, अगले 7 दिन भारी बारिश का अनुमान, इस बार 3 दिन लेट हुआ मॉनसून।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत।
9: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। मॉनसून का इंतजार कर रहे लोगों के लिए ये गुड न्यूज है। आपको बता दें, आज मॉनसून केरलम में प्रवेश कर गया, वहीं आज पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिल्ली में भी बारिश हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। ऐसे में आज की जो हमारी पहली गुड न्यूज है वो है दिल्ली से केरलम तक झमाझम बारिश। जी हाँ, आज मॉनसून केरलम के तटीय इलाकों में आ गया है। उत्तर दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में मॉनसूनी फुहारें गर्मी से राहत दे रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून के आने के साथ ही तमिलनाडु और कर्नाटक में भी भारी बारिश होने की संभावना है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। मॉनसून वाली गुड न्यूज के साथ ही खबर यह भी है कि एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है, जिसका असर समूचे उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में देखने को मिल रहा है। यह नया पश्चिमी विक्षोभ राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के मौसम को भी प्रभावित करेगा। इसके चलते आने वाले दिनों में धूल भरी आंधी, गरज चमक और हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। इस बीच दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी मौसम में बदलाव देखने को मिला है। राजधानी समेत यूपी, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा के कुछ हिस्सों में बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है।
10: चिलचिलाती गर्मी और उमस भरी हवाओं के बाद मौसम एक बार फिर से पूरी तरीके से बदल चुका है। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से इस वक्त मौसम बेहद ही सुहाना हो चुका है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो है बारिश की शुरुआत हो चुकी है और ये पहले से ही मौसम विभाग का अनुमान था कि आज बारिश जो है वो देखी जा सकती है, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ जो है इस वक्त जो है सर्कुलेशन जो है वो पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है, जिसका अदर जो असर था वो देखने को पहाड़ी राज्यों पर मिलेगा, लेकिन उसका कहीं ना कहीं असर जो है मैदानी इलाकों पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। मौसम जो है पूरी तरीके से बदल चुका है, क्योंकि आज 4 जून है और आज केरल के तट पर जो है मॉनसून दस्तक दे चुका है और वहां पर भी जो है कोस्टल कर्नाटक की बात हो या फिर केरला की बात हो, वहां पर बारिश की जो है शुरुआत हो चुकी है और मौसम विभाग का यह अनुमान है कि 12 सेंटीमीटर से ज्यादा की वर्षा जो है वहां पर देखी जाएगी और धीरे धीरे इसी तरीके से मॉनसून आगे बढ़ेगा और पूर्वोत्तर भारत के भी कुछ हिस्सों में जो है दस्तक देगा। तो कुल मिलाकर लोगों को खासी दिक्कत हो रही थी क्योंकि उमस लोगों को बहुत परेशान कर रही थी, चिलचिलाती गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा था, लेकिन अब से राहत के दिन जो है शुरू हो चुके हैं।
11: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा से लेकर हेमकुंड साहिब तक भक्तों की आस्था अपार है। इस साल दर्शन के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और बाबा केदार की यात्रा तो इस बार नए कीर्तिमान रच रही है। यहां अब तक 10.5 लाख से अधिक भक्त बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंच चुके हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है चारधाम दर्शन के लिए पहुंचे 29 लाख से ज्यादा श्रद्धालु। देवभूमि में चार धाम यात्रा को लेकर भक्तों में भारी उत्साह है। यहां हर रोज हजारों भक्त पहुंच रहे हैं। यात्रियों की संख्या 29 लाख के पार पहुंच गई है। भगवान विष्णु के धाम बद्रीनाथ में इन दिनों बद्री विशाल की यात्रा के अद्भुत रंग देखने को मिल रहे हैं।

0: देवभूमि उत्तराखंड इन दिनों भक्ति और आस्था के रंग में सराबोर है। ऋषिकेश की पावन घाटियों से लेकर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की दिव्य वादियों तक आस्था की बयार बह रही है। हर तरफ जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। चारों धाम में आस्था, आध्यात्म, प्रकृति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है।
1: हम लोग मध्य प्रदेश के इंदौर मध्य प्रदेश से आए हैं। प्रति साल चार धाम यात्रा हेतु यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो काफी अच्छी हैं। बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हो रहे हैं। प्रॉपर तरीके से लाइन में दर्शन करने लगे हुए हैं दर्शालु, और हर प्रकार की व्यवस्था साफ सफाई अच्छी है।
0: बद्रीनाथ धाम की रौनक तो देखने लायक है। जून महीने के सिर्फ पहले तीन दिन में ही करीब 2.5 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच गए हैं। अब श्रद्धालुओं का आंकड़ा 8,61,000 को पार कर चुका है। रोजाना औसतन 29,000 के करीब श्रद्धालु भगवान बद्रीनाथ के दर्शनों को आते हैं। वहीं हेमकुंड साहिब में रोजाना 4,500 से ज्यादा श्रद्धालु माथा टेकने पहुंचते हैं, और अब तक लगभग 50,000 श्रद्धालु यहां पहुंच चुके हैं। यहां हर दिन हेमकुंड साहिब यात्रा में श्रद्धालुओं का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है।
2: बद्रीनाथ धाम की यात्रा इस समय आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ धाम में अब तक 8,61,000 से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंच चुके हैं। 8.5 लाख की संख्या जो है वो पार हो चुकी है, और अब कभी भी 9 लाख की संख्या बद्री विशाल के यात्रियों की पूरी हो सकती है। वहीं सिखों का पवित्र तीर्थस्थल हेमकुंड साहिब में लगभग 50,000 श्रद्धालु मत्था टेकने पहुँच चुके हैं। बड़ी कठिन ये चढ़ाई होती है। 19 किलोमीटर खड़ी पैदल चढ़ाई और ऑक्सीजन की कमी के बावजूद जो श्रद्धालुओं का उत्साह हेमकुंड साहिब में जबरदस्त देखने को मिल रहा है। लगभग 4,500 श्रद्धालु हेमकुंड साहिब रोजाना पहुंच रहे हैं।
0: इस साल यात्रा के शुरुआती चरण में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु चारों धाम पहुंचे। यात्रा के शुरुआती 44 दिनों की तुलना पिछले साल की यात्रा से करें तो इस बार यात्रा की शुरुआती 44 दिनों में करीब 29,85,000 से ज्यादा तीर्थयात्री चार धाम पहुंचे हैं, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 3 लाख से ज्यादा है। पिछले साल शुरुआती 44 दिनों में करीब 26,34,000 तीर्थयात्री पहुंचे थे।
3: बड़ी संख्या में हमारे पास यात्रियों की तादाद आ रही है। बद्रीनाथ में 8.5 लाख से ज्यादा यात्री हमारे पहुंच चुके हैं, और 50,000 से ऊपर हमारे यात्री हेमकुंड साहिब में पहुँच चुके हैं। क्योंकि ये सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में और हमारे उच्च अधिकारियों के लगातार मॉनिटरिंग के क्रम में ही ये उपलब्धि हासिल की गई है। क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं थी वो प्रॉपर इस बार तैयार की गई थी, और अभी भी बद्रीनाथ में हमारा 25,000 के करीब यात्री डेली बेसिस पे आ रहा है।
0: कठिन रास्तों और बदलते मौसम की परवाह किए बिना लाखों श्रद्धालु बाबा केदार, बद्री विशाल, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।
4: चार धाम यात्रा के लिए आए। पहला हो गया यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, फिर अभी बद्रीनाथ। फिर अच्छी तरह दर्शन हो गए। मस्त क्लाइमेट अच्छा लगा, लोग अच्छे लगे, पार्किंग वगैरह सब अच्छा है, व्यवस्था अच्छा है, अच्छा लगा उत्तराखंड।
0: केदारनाथ धाम में एक तरफ जहां बाबा केदार के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है, तो वहीं बढ़ती संख्या के साथ घाटी में गंदगी भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में धाम की पवित्रता और स्वच्छता बनाए रखना प्रशासन के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। इसी को ध्यान में रखते हुए रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया है।
5: काम चल रहा है, इसमें सुलभ की संस्था भी काम कर रही है, सभी नगर पालिका, नगर पंचायत और जिला पंचायत भी काम कर रहे हैं। और प्रयास ये है कि डेली जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसका साइंटिफिकली डिस्पोजल किया जाए। इस संदर्भ में एक जिला लेवल पर एक मॉनिटरिंग सेल भी बनाई गई है, जो हर 15 दिन में इसकी मॉनिटरिंग करके अपडेट करेंगे।
0: अभियान के तहत केदारनाथ धाम से लेकर पूरे पैदल यात्रा मार्ग पर जमा होने वाले कचरे को नियमित रूप से एकत्र कर समय पर नीचे पहुंचाया जा रहा है। सफाई कर्मियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और प्रशासनिक टीमों को इस कार्य में लगा दिया गया है, ताकि यात्रा मार्ग और धाम परिसर स्वच्छ बना रहे और श्रद्धालुओं को भी स्वच्छ और सुंदर वातावरण मिल सके। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सिंबाल के साथ चमोली से कमल लंचलोड़ी, गुड न्यूज टुडे।
6: बर्फीले पहाड़ों के बीच एक ऐसी सुरंग जिसका इंतजार सिर्फ लद्दाख ही नहीं बल्कि पूरा देश कर रहा था, अब वो सपना हकीकत बनने जा रहा है। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनने वाली लंबी सड़क सुरंग जोजिला टनल लगभग तैयार है और जल्द ही वाहनों की आवाजाही के लिए खोल भी दिया जाएगा। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग तैयार। जोजिला टनल बनकर तैयार है और इसके शुरू होने से कश्मीर से लद्दाख तक ऑल वेदर रोड भी शुरू हो जाएगा।

0: जहाँ कभी बर्फ की मोटी चादरें रास्तों को महीनों तक बंद कर देती थी, जहाँ जोजला दर्रा पार करना किसी चुनौती से कम नहीं होता था, वहाँ अब साल भर सफर आसान और सुरक्षित होने वाला है। हिमालय के विशाल चट्टानों के बीच बनाई गई ये सुरंग केवल इंजीनियरिंग का चमत्कार नहीं, बल्कि कश्मीर और लद्दाख के बीच नई जिंदगी की राह भी है। इस टनल के शुरू होते ही श्रीनगर से लद्दाख की दूरी और यात्रा का समय कम हो जाएगा।
1: श्रीनगर करगिल रोड पर बनने वाली जोजिला टनल लगभग तैयार हो गई है। कुछ ही हफ्तों के भीतर जोजिला टनल को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। जोजिला टनल पूरे लद्दाख क्षेत्र की तस्वीर ही बदल देगा, क्योंकि लद्दाख क्षेत्र सड़क के माध्यम से देश और दुनिया के साथ पूरे साल जुड़ा रहेगा। वरना ये रास्ता कई हफ्तों तक सर्दियों के दौरान बंद हो जाता था और रास्ता भी काफी कठिन था।
0: ये टनल बर्फबारी, भूस्खलन और मौसम की मार से जूझने वाले यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आई है, जिससे न केवल पर्यटन को नए पंख लगेंगे बल्कि व्यापार में बढ़ोतरी होगी और सीमावर्ती क्षेत्रों तक जरूरी सामान पहुंचाना आसान हो जाएगा।
1: इस टनल के बनने के बाद जोजिला पास या जोजिला दर्रा जो हम कहें, उससे इस सड़क पर चलने वाले लोगों को राहत मिल जाएगी। जोजिला टनल के बनने से न सिर्फ पर्यटन में लद्दाख क्षेत्र में बढ़ावा होगा, बल्कि साथ ही साथ हजारों की तादाद में सेना के जवान जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात है, उनके लिए भी ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है।
0: श्रीनगर को लेह से जोड़ने के लिए अहम कड़ी के तौर पर बन रही ये सुरंग ऐसी है जिससे मौसम की दुश्वारियां खत्म हो जाएंगी। ये एशिया की सबसे लंबी जोजिला टनल का प्रोजेक्ट है। जोजिला टनल का निर्माण 11,578 फीट की ऊंचाई पर श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे 1 पर

0: हर दिन हर कोई पेशेंट के लिए बड़ा मुश्किल होता था। तो जब श्रीनगर के लिए अगर कोई काम शाम हुआ तो सर्दियों में तो 5-5, 6-6 महीने के लिए बंद रहते थे। बहुत अच्छा हुआ हमारे लिए, बहुत अच्छा फैसिलिटीज हुआ हमारे लिए।
1: जाहिर है कि टनल हजारों लोगों की उम्मीदों और बेहतर भविष्य का रास्ता है। अब लोगों को उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जब जॉर्जिला टनल के दरवाजे खुलेंगे और कश्मीर लद्दाख के बीच सफर नई रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगा। श्रीनगर से अशरफानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: पहले हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में बर्फबारी होने से लाहौल का संपर्क बाहरी दुनिया से कम हो जाता था, लेकिन अटल टनल के बनने के बाद लाहौल के लोगों की जिंदगी में बहार आ गई है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है अटल टनल ने बदल दिया लाहौल। आपको बता दें कि अटल टनल बनने के बाद लाहौल पूरी तरह से बदल चुका है। टनल बनने से इस इलाके में टूरिज्म और रोजगार बढ़ा है। इसके अलावा सामरिक दृष्टि से भी ऑल वेदर रोड तैयार होने से सेना की मूवमेंट भी आसान हो गई है।

0: हिमाचल प्रदेश का लाहौल इलाका, जहां पहले रोहतांग दर्रे की बर्फ जिस घाटी को महीनों तक दुनिया से काट देती थी, आज वहां पर विकास की रफ्तार है। आज लाहौल का चेहरा बदल चुका है और इस बदलाव में अहम भूमिका निभा रहा है अटल टनल रोहतांग।
1: 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित अटल टनल रोहतांग पर है। ये वही टनल है जिसने हिमाचल प्रदेश में सफर की परिभाषा को बदल के रख दिया था। करीब 6 महीनों तक रोहतांग दर्रे में पड़ने वाले बर्फ के बाद लाहौल स्पीति जिला शेष दुनिया से कटा रहता था, लेकिन अब इस पहाड़ को चीरती हुई टनल कुछ ही पलों में लोगों को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने में मदद कर रही है।
0: हिमाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो तो अटल टनल रोहतांग का नाम सबसे पहले आता है। पहाड़ के सीने को चीरती अटल टनल चंद पलों में लोगों को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचा रही है। ये सुरंग हिमाचल में बदलाव का प्रतीक बन चुका है। इस सुरंग ने लाहौल की जिंदगी को नई रफ्तार दी है। जो घाटी कभी सर्दियों के महीने में अलग थलग पड़ जाती थी, वहाँ अब सालों भर बाहर रहती है। इस सुरंग ने न केवल इस इलाके में पर्यटन को बढ़ावा दिया है, बल्कि स्थानीय व्यापारियों के कारोबार में भी इससे बढ़ोतरी हुई है।
2: रोजगार मिल गया। दूसरा, जैसे पहले ऐसा था कि कोई बीमार बुमार हो जाता था तो उसे मुश्किल होता था सर्दियों में, तो आजकल ऐसा दिक्कत नहीं है। एक दो दिन आपका टनल बंद रहेगा तो तीसरे दिन खुल जाता लगभग। पहले तो 6 महीने बंद रहता था, और अब क्योंकि हम रोहतांग होके आते थे, रोहतांग से आना जाना होता था उस समय, तो बीमार हो गए तो फिर तो एलपेड है यहाँ पर, तो हेलीकॉप्टर आता था यहाँ पर, और वो भी मौसम साफ होगा तभी आएगा, अगर नहीं होगा तो फिर वो भी नहीं आएगा।
0: दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंगों में शुमार इस टनल ने लाहौल की जिंदगी को नई दिशा दे दी है। इस इलाके में पर्यटन लगभग नहीं के बराबर था और लोग मुख्य रूप से केवल आलू मटर की खेती पर निर्भर थे। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी बेहद सीमित थी और सर्दियों में मरीजों के लिए हेलीकॉप्टर ही सहारा होता था, लेकिन टनल बनने के बाद अब इस क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार दोनों ही तेजी से बढ़े हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ी है।
3: पहले तो काफी ज्यादा चुनौतियां होती थी, जैसे कि हमको मतलब टॉप क्रॉस करके आना पड़ता था, ये अपना टनल जब नहीं था तो फिर टॉप क्रॉस करके आना पड़ता था, और जो हमारा राशन है वो 6 महीने पहले ही रखना पड़ता था स्टॉक। और आज ऐसा हो गया है कि टनल खुलने के बाद हम कोई भी मनाली जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपना।
0: पहले रोहतांग पार कर मनाली पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं होता था। सर्दियों में लोगों के लिए मनाली पहुंचना बंद हो जाता था, लेकिन अटल टनल खुलने के बाद अब लोग कभी भी मनाली आ जा सकते हैं। यहाँ पर्यटन बढ़ने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है और अब लोगों को यहाँ पर राशन पहले से जमा नहीं करना पड़ता है।
4: अटल टनल खुलने के बाद चेंजेस आए हैं, बहुत लोग आ रहे हैं, मतलब लोग अच्छा यहाँ घूमने भी आ रहे हैं। इससे हमारा इनकम सोर्स भी बढ़ गया है, एंड जैसे जितने भी हम यूथ है यहाँ पे बेरोजगार है, उनको एक नया रोजगार भी मिल गया है। कृषि के साथ साथ कोई अपना पढ़ाई भी कर रहे हैं, होटल्स खोले हैं, होम स्टेज खोले हैं, फूड वैन्स है, एक्टिविटीज है और भी।
0: अटल टनल रोहतांग केवल लोगों के लिए सुविधाजनक नहीं है, बल्कि इससे सेना का सफर भी सुगम हुआ है। सामरिक दृष्टि से ये सुरंग बेहद अहम है, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों तक सेना की पहुंच हर मौसम में तेज और आसान हुई है।

0: भी अटल टनल बेहद खास मानी जाती रही है। इस सेना की आवाजाही को हर मौसम में सुगम बनाती है और सीमावर्ती क्षेत्रों तक पहुंच को तेज व अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि बढ़ते पर्यटन और ट्रैफिक के बाद काफी चुनौतियां जो सामने आई हैं, लेकिन विकास के आगे कहीं ना कहीं ये चुनौतियां भी अब लोगों को मंजूर है।
1: मरमिंदर अरोड़ा, अटल टनल, हिमाचल प्रदेश, गुड न्यूज टुडे।
2: यदि इंसान में जज्बा हो तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है, ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है उधम सिंह नगर रुद्रपुर के रहने वाली एक युवती जसमीत कौर ने। स्टेबलाइजर की दुकान चलाने वाले की बेटी जसमीत ने उत्तराखंड के पीसीएस परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो पांचवी गुड न्यूज है वो है उधम सिंह नगर की जसमीत पीसीएस टॉपर। उत्तराखंड की पीसीएस परीक्षा में उधम सिंह नगर की जसमीत कौर ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। जसमीत की इस सफलता के बाद जसमीत के घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। लोग इस सफलता पर जसमीत को बधाई देने के लिए उनके घर पहुंच रहे हैं। दरअसल जसमीत का पीसीएस परीक्षा में दूसरा अटेम्प्ट था, पहली बार में उनकी रैंक 52 आई थी और उनका सिलेक्शन बतौर समाज कल्याण अधिकारी के रूप में हुआ था, जिसमें उनकी तैनाती बागेश्वर में जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पर हुई थी। लेकिन इस बार उन्होंने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर माता पिता और अपने शहर का नाम रोशन किया है।
3: क्योंकि मेरी रैंक 1 आई है तो मैं निश्चिंत तौर से ये बोल सकती हूँ कि जो भी सिस्टम है बिल्कुल फेयर है, क्योंकि मेरी पिछली बार रैंक 52 थी, इस बार रैंक 1 है। तो अगर मेहनत करोगे तो कुछ डरने की जरूरत नहीं है, सिस्टम फेयर है और हम मेहनत से ही आगे बढ़ रहे हैं इस सिस्टम में। तो मैं ये भी, और इसके साथ जो हमारे 33% रिजर्वेशन है उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं, क्योंकि मैं जिला समाज की अधिकारी भी रही हूँ तो मैंने देखा है उत्तराखंड की महिलाओं को, तो जिस शिद्दत के साथ वो जो काम करती हैं और जो उनका अंदर का जज्बा है, वैसे ही अगर हम इस एडमिनिस्ट्रेशन में भी बेटियां जो हमारी हैं वो भी इसमें निकल के आएंगी।
4: जब बच्चे के नाम से कोई पेरेंट्स पहचाने जाएं तो उससे ज़्यादा कोई भी किसी पेरेंट्स के लिए खुशी की बात नहीं हो सकती। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ जो अपने बच्चों के नाम से पहचाना जाऊँगा। बच्चों ने जहाँ तक लकीर हमने खींची, हम उसके बाद की लकीर मेरे बच्चे जो है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और जसमीत ने जो ये रैंक नंबर 1 जो अपना पीसीएस क्रैक करा है, नंबर 1 पोजीशन प्राप्त करी है, तो ये सिर्फ इस कॉलोनी या इस क्षेत्र की, पूरे रुद्रपुर, इवन मैं अपने गांव का भी नाम लूंगा रामेश्वरपुर, तो ये सब के लिए सम्मान वाली बात है।
2: महाराष्ट्र के अमरावती में मलखम का अनोखा रोमांच देखने को मिला। अमरावती के हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा आयोजित समर कैंप के समापन समारोह में छात्रों ने जलती मशाल लेकर मलखम का प्रदर्शन किया। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। अमरावती में जल और मलखम का अनोखा संगम। खास बात यह है कि यह मलखम पानी पर तैरते प्लेटफॉर्म पर किया गया, जिसमें शक्ति और संतुलन की भरपूर आवश्यकता होती है। मलखम के अलावा इस समारोह में लाठी, काठी, मार्शल आर्ट्स और दूसरे पारंपरिक खेलों की भी झलक देखने को मिली।
1: जमीन या हवा में मलखम का खेल तो आपने खूब देखा होगा। साहस, शक्ति और संतुलन के इस खेल को अब पानी पर देखिए। महाराष्ट्र के अमरावती में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के समर कैंप के समापन समारोह में पानी पर मलखम्ब का अद्भुत प्रदर्शन किया गया। छात्रों ने पानी पर तैरते हुए प्लेटफॉर्म पर मलखम्ब का पारंपरिक कौशल दिखाया, सामूहिक रूप से मलखम्ब पर योगासन और पिरामिड बनाकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। पारंपरिक मलखम्ब के विपरीत वाटर मलखम्ब इसलिए भी मुश्किल है कि प्लेटफॉर्म पर स्थापित खम्बा हवा और पानी की लहरों के साथ लगातार हिलता रहता है, लिहाजा इसमें संतुलन और एकाग्रता की ज्यादा जरूरत होती है। इतना ही नहीं, छात्रों ने जलती मशालों के साथ मलखम्ब का प्रदर्शन कर साबित कर दिया कि ये खेल आसान नहीं, इसमें महारत हासिल करना नियमित साधना से ही संभव है।
5: जो मलखम्ब है उसके आजू बाजू गोल आकार में जो हाथ में मशाल लेके जलतरण पटु और मलखम्ब में मशाल हाथ में लेके मलखम्ब पटु जो कवायती सादर करते हैं, जो प्रदर्शन करते हैं, वो सच में बहुत देखने लायक रहता है।
1: छात्रों ने हाथ में जलती मशाल लेकर पानी में ओम और स्वास्तिक की आकृति भी बनाई, साथ ही पानी के भीतर संतुलन बनाते हुए अद्भुत करतब दिखाए। अमरावती में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल पिछले 102 सालों से ऐसे शिविर आयोजित कर रहा है। मकसद युवाओं और बच्चों को मलखंभ के जरिए शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाना और इस पारंपरिक प्राचीन भारतीय खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। अमरावती से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: जमशेदपुर के रहने वाले संजय और उनकी बेजुबानों से दोस्ती इन दिनों काफी चर्चा में है। पेशे से अधिवक्ता संजय की बंदरों से दोस्ती है और संजय दलमा के जंगलों में जब भी जाते हैं वो बंदरों के लिए खाने के लिए केला और चने जरूर ले जाते हैं और इसकी वजह से बड़ी तादाद में वहां बंदर जुटते हैं। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि जो सातवीं और आखिरी गुड न्यूज है वो है वकील की बेजुबानों से दोस्ती की अनूठी कहानी। आपको बता दें भागदौड़ की दुनिया में आज लोग छुट्टी के दिनों में परिवार के साथ समय बिताते हैं कुछ घूमने फिरने में, लेकिन वकील संजय सरोज की छुट्टी प्रकृति के बेजुबानों के साथ बीतती है। जमशेदपुर के रहने वाले संजय छुट्टी के दिनों में यानी कि रविवार को अपनी कार में केला चना और कुछ खाने का सामान लेकर शहर से सटे दलमा के जंगलों में निकल पड़ते हैं। दलमा के जंगलों में पहुंचते ही उनके आगमन का एहसास जंगल में रहने वाले बंदरों को मिल जाता है और कार के रुकते ही बड़ी संख्या में बंदर संजय को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इस दौरान अधिवक्ता संजय अपनी कार से केले का कैरेट निकालते हैं और शुरू होता है खाने पीने का सिलसिला।
6: मैं मोटा मोटी शुरुआत 2019 से कर किया हूं और 2020 से निरंतर आ रहा हूं। जैसे 19 में आता था तो एक महीना दो महीना में एक बार आना हुआ, लेकिन 20 से निरंतर आ रहा हूं और यही अब 6 साल से लगातार प्रत्येक रविवार लोग बाग यहाँ मेरे को मंकी मैन बंदर वाले वकील साहब के नाम से जानते हैं। खाने में जो भी यहाँ के वन विभाग हमें परमिट करते हैं, जैसे फल हो गया, सब्जी में टमाटर है, शकरकंद है, गाजर है, ये सब जो बंदर को नुकसान भी नहीं करे और पेट भी भर जाए वैसा आइटम लाते हैं। बहुत बहुत ही सुकून देने वाला काम मेरे हिसाब से, तो मेरे को अंदर आत्मा से। लोग बाग समर वेकेशन में कहीं कहीं जाते हैं और जो भी अपने वीकेंड है कहीं बाहर मनाना चाहते हैं, लेकिन मेरा तो फर्स्ट प्रेफरेंस यही है कि यहीं मैं आऊँ। प्रथम प्राथमिकता के अनुसार मैं यहीं आना चाहूंगा।
2: तो इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़।
8: 9 जून को जॉर्जिला टनल में ब्रेक थ्रू, मानसून देर से आया दुरुस्त आया, मूर्तियों के सम्मान में प्रीति सिंह मैदान। देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रातारे।
9: You're listening Uninterrupted with TuneIn Premium. Enjoy commercial-free news and music plus ad-free ESPN Radio and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go. So you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
11: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है
10: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
13: गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay locked in to the NBA playoffs with ESPN Radio. Get around-the-clock sports talk covering every matchup, every storyline, and every big moment as games unfold. And throughout the playoffs, catch select live games bringing you courtside for some of the biggest showdowns. From nonstop analysis to can't-miss action, ESPN Radio is your home to follow the NBA playoffs. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट srmup.in।
3: देवभूमि में धूमधाम से जारी चार धाम यात्रा, अब तक केदारनाथ धाम पहुंचे करीब 11 लाख श्रद्धालु, धाम में लगातार बदल रहा मौसम का मिजाज। शिरडी के साईं दरबार से आई आस्था की अनोखी तस्वीर, श्रद्धालु ने साईं बाबा को अर्पित किया सोने का मुकुट, करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। अहमदाबाद में वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप का आगाज, 60 देशों के 400 से ज्यादा एथलीट्स लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी बोले, योग मानवता के लिए सबसे बड़ा तोहफा। मिले NCR में तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश, दिन में ही छाया अंधेरा, तापमान में गिरावट से मौसम सुहावना। केरलम में मॉनसून की पहली बारिश, मौसम विभाग ने की पुष्टि, अगले 7 दिन भारी बारिश का अनुमान, इस बार 3 दिन लेट हुआ मॉनसून।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
3: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, तो कभी पुरानी तस्वीरों को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में अब खबरें अखबार के पन्नों या टीवी की स्क्रीन तक सीमित नहीं। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर करते हैं। यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की, जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बच्ची से दुष्कर्म और हत्या से जुड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तीन पुलिस अफसर हंस रहे थे उन्हें सीएम विजय ने सस्पेंड कर दिया। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल तस्वीर से जुड़ी हुई होगी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि बकरीद के दिन ईरानी नौसेना ने समंदर के अंदर सजदा किया। अब इसकी सच्चाई क्या है आगे जानिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
3: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये दावा कर रहे हैं कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बच्ची से दुष्कर्म और हत्या से जुड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तीन पुलिस अफसर हंस रहे थे उन्हें निलंबित कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर जनता के गुस्से को देखते हुए सीएम विजय ने तुरंत ये एक्शन लिया। वायरल हो रहे दावे की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
5: नाबालिग बच्ची की हत्या से संबंधित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीन पुलिसकर्मियों के हंसने का एक वीडियो पिछले कुछ दिनों से खूब वायरल हो रहा है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंसने वाले तीनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। ऐसा कहने वाले विजय की तुलना नायक फिल्म के अनिल कपूर से कर रहे हैं। साथ ही ये भी तंज कस रहे हैं कि उन्होंने आज तक किसी बीजेपी शासित राज्य में इतना त्वरित एक्शन होते नहीं देखा है। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, सीएम फैसले लेने में नायक के अनिल कपूर को भी पछाड़ रहा है। 5 दिन पहले कोयम्बटूर में एक 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म और फिर मर्डर हुआ था। घटना की ब्रीफिंग के लिए रखी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीन आईपीएस अफसरों को सबने हंसते देखा, सबको बुरा लगा। पर विजय ने इस मामले में तमाशबीन न बनकर अपना फर्ज निभाते हुए तीनों आईपीएस अफसरों को सस्पेंड किया है और साथ ही साथ परिवार वालों से इस घटना के लिए माफी भी मांगी है। पोस्ट में आगे लिखा है, हंसने वालों में एक महिला आईजी और 2 DIG शामिल थे। क्या आपने मोदी योगी या किसी बीजेपी सीएम को किसी अफसर को सस्पेंड करते देखा है? क्योंकि वहाँ धर्म काम करता है, यहाँ शिक्षा। वर्दी दर्द बांटने के लिए होती है, दर्द बढ़ाने के लिए नहीं। शाबाश विजय। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये पोस्ट इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
3: दरअसल कोयम्बटूर में एक नाबालिग बच्ची की हत्या से संबंधित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीन पुलिसकर्मियों के हंसने का ये वीडियो पिछले कुछ दिनों से खूब वायरल हो रहा है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंसने वाले तीनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। ऐसा कहने वाले विजय की तुलना नायक फिल्म के अनिल कपूर से हो रही है। साथ ही ये भी तंज कसा जा रहा है कि उन्होंने आज तक किसी बीजेपी शासित राज्य में इतना त्वरित एक्शन होते हुए नहीं देखा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल दावे की पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले तमिलनाडु वेस्ट जोन IG ऑफिस में 23 मई को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस का अनकट वीडियो हर फ्रेम गौर से देखा, लेकिन इस दौरान हमें पुलिस अधिकारियों के हंसने का कोई भी हिस्सा नजर नहीं आया। पूरी गंभीरता से पत्रकारों के हर सवाल का जवाब दिया जा रहा था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेस्ट जोन IG RV राम्या भारती, DIG स्वामीनाथन और ग्रामीण SP अल्ला तिपली पवन कुमार रेड्डी मौजूद थे। इसके बाद हमने तमिलनाडु पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाला, लेकिन यहां पर भी हमें दावे को लेकर कोई भी पोस्ट नहीं मिली। क्योंकि अगर वाकई में ऐसा हुआ होता तो फिर ये अपने आप में एक बड़ी खबर होती, हर मीडिया आउटलेट में ये सुर्खियां बनी होती, लेकिन हमें कहीं ऐसा कुछ नहीं मिला। लिहाजा हमने वायरल दावे को सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल ये कि अगर ये दावा सच्चा है तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर पोस्ट के जरिए लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा। देखिए सच और झूठ क्या है।
5: वायरल वीडियो में हंसते दिख रहे तीन पुलिस अधिकारियों में तमिलनाडु वेस्ट जोन की IG राम्या भारती, कोयम्बटूर SP पवन कुमार और DIG स्वामीनाथन शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये वीडियो पिछले कई दिनों से चर्चा में है और अगर वाकई इन पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया गया होता तो इस बारे में तमाम न्यूज आउटलेट्स ने खबरें छापी होती, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। तमिलनाडु के एक प्रमुख न्यूज चैनल ने भी इन पुलिसकर्मियों के निलंबन की खबर को गलत बताया है। हमने इस मामले की ज्यादा जानकारी के लिए गुड न्यूज टुडे के कोयम्बटूर संवाददाता सुधाकर बी से बात की। उन्होंने हमें बताया कि इस मामले में 3 पुलिसकर्मियों के सस्पेंड होने की बात पूरी तरह गलत है। दरअसल ये वाकया प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से ठीक पहले का है। जानकारी के मुताबिक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 23 मई को दोपहर 3:30 बजे होनी थी। तमिलनाडु वेस्ट जोन की IG रम्या भारती, कोयम्बटूर के SP पवन कुमार और DIG स्वामीनाथन कॉन्फ्रेंस रूम में समय से पहले आ गए थे। क्योंकि कुछ सीनियर अधिकारियों के साथ मामले की आखिरी चर्चा बाकी थी, इसलिए IG रम्या भारती ने वहां मौजूद मीडिया कर्मियों से कहा कि आप लोग कृपया थोड़ी देर के लिए कमरे के बाहर इंतजार करें। ज्यादातर पत्रकार बाहर चले गए, लेकिन कुछ कैमरामैन अंदर ही अपनी पोजीशन सेट कर रहे थे। इसी बीच कुछ TV चैनलों की लाइव फीड और कैमरे चालू रह गए। उसी समय वहां मौजूद एक स्थानीय न्यूज चैनल के कैमरामैन ने IG से मजाक में तमिल भाषा में कहा, मैम प्रेस मीट शुरू होने से पहले प्लीज अपना मोबाइल फोन ऑफ कर दीजिएगा। कैमरामैन ने मोबाइल शब्द के लिए जो ठेठ तमिल शब्द इस्तेमाल किया उसे IG तुरंत समझ नहीं पाए। इसी भाषा के फेर और हल्के फुल्के मजाक पर वहां मौजूद IG और बाकी अधिकारी हंस पड़े। इसके ठीक बाद दोपहर 3:40 पर जब आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो सभी अधिकारी पूरी तरह से गंभीर थे और उन्होंने पूरी संवेदनशीलता के साथ केस की जानकारी साझा की। इसके बाद तमिलनाडु के कई प्रमुख न्यूज चैनल्स ने हंसने वाला वीडियो लेकर चला दिया। बाद में उनमें से कई ने पूरा संदर्भ पता लगने पर उसे डिलीट भी कर दिया। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि सोशल मीडिया पर अधूरा वीडियो क्लिप दिखाकर लोगों की भावनाओं को भड़काया गया। पुलिस वाले किसी दुखद घटना या पीड़िता पर नहीं बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले एक कैमरामैन के तमिल भाषा में किए गए हल्के मजाक पर हंसे थे। न तो मुख्यमंत्री विजय ने किसी अधिकारी को सस्पेंड किया है और न ही पुलिस ने असंवेदनशीलता दिखाई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा दावा पूरी तरह से भ्रामक और मनगढ़ंत है। ज्योति द्विवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
3: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है और इस वीडियो को शेयर करते हुए यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि बकरीद के दिन ईरानी नौ सैनिकों ने समंदर की गहराइयों में सजदा किया। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, पड़ताल करती हमारी ये रिपोर्ट।
5: हाल ही में दुनिया भर में बकरीद का त्योहार मनाया गया। अब इसी से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो में कुछ लोगों को समंदर की गहराइयों में सजदा करते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो को असली घटना का बताते हुए शेयर कर ये दावा किया जा रहा है कि ये ईरान का है जहाँ नौसेना ने समंदर की गहराइयों में सजदा किया। एक सोशल मीडिया यूजर ने वायरल वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, समंदर की गहराई में भी नहीं रुका सजदा, ईरानी नौसेना का जज्बा देख दुनिया हैरान। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को जिसने भी देखा वो हैरान हो गया। लोग वीडियो का सच झूठ जाने बगैर इसे धड़ल्ले से शेयर करने लगे। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये तेजी से वायरल होने लगा।
3: दरअसल हाल ही में मनाए गए बकरी त्योहार से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है और इस वीडियो में कुछ लोगों को समंदर की गहराइयों में सजदा करते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो को असली घटना बताते हुए शेयर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ईरान की है जहां नौसेना ने समंदर की गहराइयों में सजदा किया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और इस दौरान हमें वीडियो में ऐसी कोई गलती देखने को नहीं मिली जिससे वीडियो की असलियत पर शक हुआ हो। मसलन जब वीडियो को ध्यान से देखा गया तो इसमें पानी स्थिर नजर आ रहा है। पूरा वीडियो देखने पर भी हमें पानी में कोई हलचल नजर नहीं आती। साथ ही जिस तरह से पानी में सैनिक बैठे हुए हैं वो काफी अटपटा लग रहा है, सीक्वेंस मैच नहीं कर रहा है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल हो रहे दावे की पुष्टि हो, क्योंकि अगर वाकई ऐसा हुआ होता तो फिर कहीं ना कहीं इसके बारे में कोई जरूरी खबर जरूर होती। लिहाजा हमें वायरल वीडियो पर शक हुआ और हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल ये कि अगर दावा सच्चा है तो इसके बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं एडिटेड वीडियो को वायरल करके भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
5: फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की जांच की। सबसे पहले हमने दावे की सच्चाई जानने के लिए लगातार सर्च किया, लेकिन इस दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। क्योंकि अगर वाकई में ऐसा हुआ होता तो इसकी खबरें कहीं ना कहीं जरूर होती, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। ऐसे में हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। हड़ताल को आगे बढ़ाते हुए हमने वीडियो को सिंथ आईडी डिटेक्टर की मदद से चेक किया। इसके एनालिसिस में वीडियो के सभी हिस्सों में सिंथ आईडी के डिटेक्ट होने की पुष्टि हुई। तस्वीर में नजर आ रहा ब्लू एरिया ये बताता है कि इसे एआई से बनाया गया है। हमने वीडियो को जांचने के लिए एक और टूल हाइव मॉडरेशन का भी इस्तेमाल किया। इस टूल ने भी वीडियो के करीब 100% तक एआई से बने होने का संकेत दिया। इसके बाद हमने वीडियो के बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए इसके कई की फ्रेम्स निकाले और उन्हें सर्च किया। हमें वायरल वीडियो एक फेसबुक अकाउंट पर 30 अप्रैल 2026 को पोस्ट किया हुआ मिला। इस पेज को खंगालने पर हमने पाया कि यूजर एआई से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो बनाता है। बायो में यूजर ने खुद को डिजिटल क्रिएटर लिखा है, साथ ही लिखा है कि यूजर एआई की मदद से वीडियो और तस्वीरें बनाता है। यूजर के पेज पर हमें इसी तरह के दूसरे वीडियो अपलोड किए हुए मिले। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा गलत साबित हुआ। वायरल हो रहा वीडियो एआई की मदद से बनाया गया है, जिसे यूजर्स अब गलत दावे के साथ वायरल कर रहे हैं। जांच में इस वीडियो के गूगल एआई टूल से बने होने की पुष्टि हुई है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
3: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
10: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
3: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
11: लंबी छुट्टी के बाद स्कूल का पहला दिन हर स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए खास होता है। ऐसे में अगर स्कूल में बच्चों का वेलकम प्यार और ट्रेडिशनल तरीके से किया जाए तो उनकी खुशी कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में सोशल मीडिया पर हाल ही में केरल के एक स्कूल का ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूल में क्लास गेट पर एक टीचर खड़ी है और स्कूल पहुंचने वाले बच्चों का ट्रेडिशनल तरीके से वेलकम कर रही है। बच्चे एक एक कर टीचर के पास पहुंचते हैं, जिसके बाद टीचर हर एक बच्चे की आरती उतारती है, उसे आशीर्वाद देती है और प्यार के साथ स्कूल के अंदर भेजती है। वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि बच्चे टीचर्स के पैर छूते हैं और फिर अपनी क्लास की ओर बढ़ जाते हैं। टीचर हर बच्चे के साथ बेहद प्यार और अपनापन दिखाती है। यह खूबसूरत सीन देखकर लोग इमोशनल हो रहे हैं और टीचर की जमकर तारीफ कर रहे हैं। छोटी बच्ची का ये वीडियो यूजर्स का दिल जीत रहा है। वीडियो में छोटी बच्ची ने अपनी माँ की डांट के बाद हनुमान जी से मासूमियत से शिकायत करके सबका दिल जीत लिया। बच्ची की भावुक बातचीत और मनमोहक हाव-भाव ने इस प्यारे पल को तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। लोग इस वीडियो को बचपन की मासूमियत का प्रतीक और बेहद प्रासंगिक बता रहे हैं। पहले उसने खुद को संभाला, फिर हंसी। अपने पिता के गिरने पर एक छोटी बच्ची की स्नेहपूर्ण प्रतिक्रिया ने इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत लिया। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि पिता गलती से अपना संतुलन खोकर गिर जाते हैं, लेकिन बेटी तो बेटी ही होती है। उसने तुरंत हंसने के बजाय पहले उन्हें चिंता से देखा, मानो यह सुनिश्चित कर रही हो कि वह सुरक्षित है और चोटिल ना हो। लेकिन अपने पिता को इस घटना पर मुस्कुराते और हंसते हुए देखकर ही वो खुद खिलखिला उठती है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने इंसानियत पर लोगों का भरोसा और मजबूत कर दिया है। वीडियो में एक परिवार तेज आंधी तूफान के बीच हाईवे पर मुश्किल में फंसा दिखाई देता है। धूल भरी हवाओं और खराब मौसम के कारण उनका सफर रुक जाता है। तभी वहां से गुजर रहे एक कार ड्राइवर ने जो किया उसकी लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि हाईवे पर धूल भरी तेज हवाएं चल रही होती हैं। मौसम इतना खराब है कि सामने देखना भी मुश्किल लग रहा है। इसी दौरान एक बाइक सवार परिवार सड़क किनारे रुका हुआ नजर आता है। कुछ ही देर बाद एक कार वहां रुकती है और उसका ड्राइवर परिवार की मदद के लिए आगे आता है। वह महिला और बच्चे को सुरक्षित कार में बैठाता है। वीडियो में यह सीन देखकर लोग कह रहे हैं कि मुश्किल समय में किसी की मदद करना कितना बड़ा काम हो सकता है। साफ पता चल रहा है कार ड्राइवर की छोटी सी लेकिन अहम मदद ने लोगों का दिल जीत लिया।
12: तो हाँ भाइयों, कुछ भाइयों की ख्वाहिश अपन लिया है राइस का दाना। उन्होंने बोलता दम है तो राइस का दाना काट के बताओ, चलो दिखाते हैं।
11: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। वीडियो में एक शख्स चावल के एक छोटे से दाने के साथ ऐसा कारनामा करता नजर आता है कि देखने वाले अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाते। वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि शख्स अपनी उंगलियों के बीच चावल का एक दाना पकड़ता है, जिसके बाद वो चावल के दाने को चाकू से इतनी तेजी और सटीकता के साथ काटना शुरू करता है कि कुछ ही सेकंड में पूरा दाना बारीक टुकड़ों में बदल जाता है। वीडियो देखने वाले कई लोग दावा कर रहे हैं कि उसने चावल के दाने को करीब 50 हिस्सों में काट दिया। सबसे ज्यादा चर्चा उसके हाथों की स्पीड और कंट्रोल को लेकर हो रही है। आमतौर पर लोग चावल का दाना ठीक से पकड़ भी नहीं पाते, लेकिन इस शख्स ने उसे इतनी सफाई से काटा कि इंटरनेट यूजर्स दंग रह गए।

0: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो छाया हुआ है जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और खूब मजे भी ले रहे हैं। वीडियो में कोई महंगी मशीन, कोई नई टेक्नोलॉजी या करोड़ों का उपकरण नहीं दिखता, सिर्फ एक साड़ी, एक बाल्टी और थोड़ा सा देसी दिमाग नजर आता है। यही वजह है कि यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाई देता है कि एक साड़ी को छत से नीचे तक बिछाया गया है। ऊपर मौजूद शख्स बाल्टी से गेहूं साड़ी पर डालता है और देखते ही देखते गेहूं फिसलता हुआ सीधे नीचे रखी बोरी में पहुंच जाता है। पूरा सिस्टम इतना आसान और मजेदार है कि देखने वाले बार बार वीडियो चला रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह जुगाड़ किसी इंजीनियरिंग लैब में नहीं बल्कि गांव के माहौल में तैयार किया गया है।
1: मेरा नाम चार्ली है और हम दक्षिण कोरिया से हैं और पिछले 4 साल से हम गाना गाने का प्रयास कर रहे हैं और आज खास करके आपके लिए एक बहुत ही फेमस हिंदी गाना तैयार किए हैं।
0: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दक्षिण कोरियाई लड़के का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में लड़का इतनी साफ हिंदी बोल और गा रहा है कि सुनकर हर कोई हैरान है।

0: लड़की का नाम चार्ली है और इसकी हिंदी सुनकर जनता दंग हो गई।
1: नमस्ते, मेरा नाम चार्ली है और हम दक्षिण कोरिया से हैं और पिछले 4 साल से हम गाना गाने का प्रयास कर रहे हैं और आज खास करके आपके लिए एक बहुत ही फेमस हिंदी गाना तैयार किए हैं। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर मार दीजिएगा।
0: लेकिन वीडियो में असली सरप्राइज तब मिला जब उन्होंने गाना शुरू किया।

ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक विदेशी लड़की दिख रही है जो दुल्हन के गेटअप में नजर आ रही है। उसने अपने मारवाड़ी दूल्हे को शानदार सरप्राइज देकर सबको हक्का बक्का कर दिया। वीडियो में दुल्हन राजस्थानी गाने पर पारंपरिक अंदाज में डांस करती नजर आती है। उसका डांस देखकर न सिर्फ दूल्हा खुश हो जाता है बल्कि शादी में मौजूद मेहमान भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
1: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices, so you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here on TuneIn.
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे-धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
2: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढकर लाए, ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। अच्छी और सच्ची खबरों में 3 घंटे का सफर अब 15 मिनट में, और वो भी हर मौसम में। आज आपको दिखाएंगे जोजिला टनल के ब्रेक थ्रू की गुड न्यूज। देर आए दुरुस्त आए, मॉनसून की दस्तक के साथ ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से कैसे भीगा दिल्ली और एनसीआर, इसकी तस्वीरें भी आगे देखिए। और खंडित मूर्तियों के लिए सम्मान, विसर्जन के संकल्प लेने वाली प्रीति सिंह से आपकी मुलाकात करवाएंगे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
5: TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
2: देवभूमि में धूमधाम से जारी 4 धाम यात्रा, अब तक केदारनाथ धाम में पहुंचे करीब 11 लाख श्रद्धालु। धाम में लगातार बदल रहा मौसम का मिजाज। शिरडी के साईं दरबार से आई आस्था की अनोखी तस्वीर, श्रद्धालु ने साईं बाबा को अर्पित किया सोने का मुकुट, करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। अहमदाबाद में वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप का आगाज, 60 देशों के 400 से ज्यादा एथलीट्स लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी बोले, योग मानवता के लिए सबसे बड़ा तोहफा। तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश, दिन में ही छाया अंधेरा, तापमान में गिरावट से मौसम सुहावना। केरलम में मॉनसून की पहली बारिश, मौसम विभाग ने की पुष्टि, अगले 7 दिन भारी बारिश का अनुमान, इस बार 3 दिन लेट हुआ मॉनसून। अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बात जोजिला टनल की, जिससे जुड़ी एक गुड न्यूज सामने आई है। खबर यह है कि 9 जून को जोजिला सुरंग प्रोजेक्ट में ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू होने की उम्मीद है। चर्चा तो इस बात की भी हो रही है कि इस खास मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रह सकते हैं, और बताया जा रहा है कि ब्रेक थ्रू के बाद सुरंग के भीतर लाइनिंग, वेंटिलेशन और फिनिशिंग से जुड़े कामों में तेजी आएगी, और इस टनल के पूरा होने के बाद लद्दाख और कश्मीर के जरिए देश के अन्य हिस्सों से ऑल टाइम ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल जाएगी। खास बात यह भी है कि यह सुरंग रणनीतिक रूप से भी बहुत अहम है।

11,578 फीट की ऊंचाई पर बन रही ये सुरंग मॉडर्न इंजीनियरिंग का बेहतरीन शाहकार है। हालांकि अभी इसके द्वार जनता के लिए खुले नहीं हैं, लेकिन इंजीनियरिंग के इस शाहकार से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आई है।

0: खबर ये है कि 9 जून को सुरंग अपने अंतिम चरण में पहुंचेगी। इस दिन सुरंग के मुख्य हिस्से के दोनों सिरों को जोड़ने के लिए आखिरी बार विस्फोट किया जाएगा। इंजीनियरिंग की भाषा में इसे ब्रेक थ्रू कहा जाता है। 5 दिन बाद होने वाले इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के शामिल होने की उम्मीद है।
1: Now only 211 meters away from the breakthrough point means handshake of both portals, when both portals will meet each other, that we call it as breakthrough.
0: जोजिला टनल देश के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में एक है, जो 13.15 किलोमीटर लंबी है, और ये सुरंग श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो

प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों का कहना है कि ब्रेक थ्रू के बाद सुरंग के भीतर लाइनिंग, वेंटिलेशन और फिनिशिंग के कामों में तेजी लाई जाएगी ताकि लोगों के लिए इसे जल्द से जल्द खोला जा सके।

0: जोजिला टनल पूरे लद्दाख क्षेत्र की तस्वीर ही बदल देगा, क्योंकि लद्दाख क्षेत्र सड़क के माध्यम से देश और दुनिया के साथ पूरे साल जुड़ा रहेगा, वरना ये रास्ता कई हफ्तों तक सर्दियों के दौरान बंद हो जाता था और रास्ता भी काफ़ी कठिन था, क्योंकि वरना जोजिला पास के होते हुए गाड़ियों को चलना पड़ता था। लेकिन अब इस टनल के बनने के बाद जोजिला पास यह या जोजिला दर्रा जो हम कहें, उससे इस सड़क पर चलने वाले लोगों को राहत मिल जाएगी।
1: टनल पूरी होने के बाद लद्दाख और कश्मीर के जरिए देश के अन्य हिस्सों से ऑल टाइम ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल जाएगी, जो कि अभी सर्दियों के मौसम में भारी बर्फबारी की वजह से करीब 6 महीने बंद रहती है, मगर इसके शुरू होने के बाद लद्दाख तक हर मौसम में आने जाने की सुविधा मिलेगी। स्थानीय लोगों की जुबानी सुनिए, उनके लिए ये टनल कितनी अहम साबित होने वाली है।
2: पहले तो 6 महीना रोड बंद ही रहता था हमारे यहाँ पे, अभी ये मेगा कंपनी आके ये रोड खुल रहा है जोजिला टनल, तो जोजिला टनल से हमारे लिए सब्जी शब्जी और जो भी हो सामान हमारे यहाँ फैसिलिटीज नहीं होता था, 6 महीने का रास्ता बंद रहता था, और अभी टनल खुलने के बाद हमें ये सब फैसिलिटीज मिलेगा। कोई बीमार होता था बगैर हमें शिफ्ट करना पड़ता था, कोई पेशेंट होता था तो रोड तो बंद ही रहता था हमारे यहाँ, द्रास टू श्रीनगर तो बन ही रहता था सर। अभी जोजिला टनल खुलने के बाद ये फैसिलिटीज होगा हमारे लिए कि कभी भी कोई भी पेशेंट जा सकता है श्रीनगर 12 महीने।
3: अब तक बिल्कुल ये नहीं हो रहा था, अभी जो है जोजिला टनल निकल गया, बहुत फैसिलिटीज हो गया हमारे लिए। नहीं तो हमारे कोई पेशेंट होता तो हम यहाँ से पहले ले जाना पड़ता था, फिर ले से वहाँ से हम फ्लैट ले करके हमें श्रीनगर या जम्मू जाना पड़ता था या दिल्ली में, फिर वहाँ से आकर के हम श्रीनगर में या जम्मू में हमें यहाँ ट्रीटमेंट करना पड़ता था। तो यहाँ से हम जब 3-4 महीने के लिए खुला रहते हैं ये रोड, तो इसमें हर दिन कोई ना कोई हादसा होता था, कोई ना कोई एक्सीडेंट, कोई ना कोई कुछ होता ही होता है इसमें। तो अभी जो जोजिला टनल निकल गया बहुत फायदा है हमारे लिए। 5-6 महीने के लिए हम अक्टूबर नवंबर में हम स्टॉक ही कर लेते थे, लकड़ी लेना राशन पानी जो भी है सब कुछ हम पहले 5-6 महीने के लिए स्टॉक रखते थे। जी सर,
4: और अब
3: अभी तो अब रोजला खुल गया, अभी तो बस इतना जरूरत नहीं, अब तो हम सुबह शाम जा सकते हैं, दिन में हम जा करके वापस भी आ सकते हैं। एक तो कोई पेशेंट हो तो जल्दी जा करके हम सुबह निकला तो 1-2 घंटे में हम श्रीनगर पहुंच सकते हैं, अभी तो बहुत अच्छा ये हो गया हमारे लिए।
1: खास बात यह है कि सुरंग सिर्फ आम लोगों के लिए ही नहीं बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी अहम मानी जा रही है, इसीलिए जोजिला टनल को लद्दाख के लिए गेम चेंजिंग माना जा रहा है। इसके शुरू होने के बाद चीन और पाकिस्तान से लगे बॉर्डर पर सेना को सामान पहुंचाने में आसानी होगी और समय भी बचेगा, यानी रणनीतिक रूप से भी जोजिला टनल काफी अहम है। इसके अलावा इस जोजिला सुरंग से लद्दाख में पर्यटन कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि लोग पूरे साल यहां आसानी से आ जा सकेंगे, यानी ये टनल लद्दाख की तकदीर बदलने वाली साबित होगी। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: आगे बढ़ते अगली खबर मानसून से जुड़ी हुई है। आखिरकार 3 दिन की देरी के बाद आज दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। देशवासियों के लिए ये खुशखबरी मौसम विभाग की तरफ से आई है। मानसून के आते ही केरलम के कई हिस्सों में बादलों ने डेरा डाल लिया और भारी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। मौसम विभाग ने केरलम के कई जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक तरफ केरलम में जहां मानसून ने दस्तक दी है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत के राज्यों में नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर आंधी और बारिश के रूप में दिखाई देने लगा।

0: आसमान में काले घने बादल और झमाझम बारिश, कुछ इसी अंदाज में दक्षिण पश्चिम मानसून ने आज केरलम में एंट्री ली है। मानसून की यह एंट्री इतनी धमाकेदार है कि इसने राज्य के ज्यादातर हिस्सों को एक दिन में ही कवर कर लिया। मानसून के मिजाज को देखते हुए मौसम विभाग ने केरलम के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इनमें अलपुझा, कोट्टायम और एर्नाकुलम जैसे जिले शामिल हैं। मौसम विभाग का कहना है कि इन इलाकों में बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार बारिश होने और तेज हवाएं चलने की आशंका है। ऐसे में लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है।
1: जिस तरीके से देरी हुई लेकिन आखिरकार मानसून वहां दस्तक दे चुका है।
2: जी बिल्कुल, आज 4 जून को अगर आप जो फिगर में देखेंगे कि मानसून केरला और कुछ कर्नाटक के हिस्से भी कवर किया है और इसके अलावा तमिलनाडु के हिस्से आज कवर हुए हैं और थोड़ा ब्यो बंगाल की ब्रांच कवर हुई है। तो इसका रीज़न यही है कि कंटिन्यूज अब जो कन्वेक्टिव एक्टिविटी है जहाँ इंक्रीज हो गई है, उसका रीज़न क्या है कि जो जहाँ वेस्टर्ली हवाओं की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी बढ़ गई है, 4.5 तक है। लो लेवल में जो विंड्स हैं वो 20-25 नॉट्स हैं और ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो मानसून है जहाँ उसके कारण वाइड स्प्रेड रेनफॉल एक्टिविटी रहा इस रीज़न में, तो हमने मानसून को जहाँ कवर किया है। अगर आप आने वाले दिनों की बात करें तो हमारा अनुमान ये है कि केरला, कोस्टल कर्नाटका, वहाँ पे वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी, आल्सो वेरी हैवी मीन 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी ऑलमोस्ट पूरा वीक होती रहेगी।
0: हालांकि इस साल मानसून की चाल थोड़ी धीमी रही जिसके चलते इसकी आधिकारिक एंट्री 1 जून के बजाय 4 जून को हुई। मानसून की मौजूदा चाल को देखते हुए मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 2-3 दिनों में ये कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्से को भी कवर कर सकता है।
2: कोंकण, गोवा, वहाँ भी रेनफॉल एक्टिविटी, हैवी रेनफॉल होने का अनुमान है। तमिलनाडु, देन इंटीरियर कर्नाटका, जहाँ रेनफॉल एक्टिविटी ऑलमोस्ट हैवी रहने का अनुमान है। इसके अलावा भी जहाँ भी जो मानसूनल विंड फेवरेबल हो रही है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी, जैसे भी आज मानसून थोड़ा नॉर्थ ब्यो बंगाल तक टच किया जो नॉर्थ पे की लाइन है, और आने वाले 2-3 दिनों में जहाँ भी रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ जाएगी, हैवी वेरी हैवी रेनफॉल होने का अनुमान है, तो हमारा आने वाले दिनों में यही फोरकास्ट है 2-3 दिन जो मानसून है जो इवन इंटायर गोवा और कोंकण के कुछ हिस्से, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से और कवर कर सकता है, कर्नाटक के हिस्से कवर हो सकते हैं, आंध्रा के, तमिलनाडु के जो हिस्से वो और कवर हो जाएंगे और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के कुछ हिस्से कवर होने का।
0: केरला में मानसून आने के बाद अब उत्तर और मध्य भारत के लोगों की उम्मीदें मानसून को लेकर बढ़ गई, जो बीते कई दिनों से प्रचंड गर्मी और लू का सामना कर रहे हैं। हालांकि इस बीच एक नए वेस्टर्न डिस्टरबेंस ने उत्तर पश्चिम भारत के मौसम को बदल दिया है। ये बदलाव पहाड़ों से लेकर मैदानी राज्यों तक देखने को मिल रही है। ये तस्वीर पर्यटन के लिए मशहूर शिमला से आई है जहां बारिश के साथ ओले भी गिरे। बावजूद इसके घूमने फिरने के शौकीन लोग छाता और रेनकोट पहनकर मॉल रोड पहुंच गए। खास मैदानी राज्यों से पहुंचे सैलानी।
3: बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पे आके, वाकई हमें खुशी मिली है कि ऐसा मौसम वहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता है। अभी हमारे बच्चे भी यहाँ पे आए हैं साथ लेके, हम वो भी काफी खुश हैं, तो हमें काफी अच्छा फील हो रहा है कि हमने ऐसा

0: राजस्थान की बात हो या दिल्ली एनसीआर की बात हो, यहाँ पर भी ऑरेंज अलर्ट बारिश का जो है वो दिया गया था। और आप देख सकते हैं कि तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ इस वक्त, सीपी की तस्वीरें दिखा रही हूँ कि किस तरीके से झमाझम बारिश की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और कहीं ना कहीं अब लोगों को राहत जरूर मिलेगी।
1: ये दिल्ली और यूपी की सीमा है और आप यकीन मानेंगे कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये दिल्ली मेरठ हाईवे है। आप देखिए इसकी तस्वीरें कि महज अभी 5 से 10 मिनट हुए हैं और इतनी तेज बरसात है कि आपको लगेगा यहाँ समंदर। हवा की रफ्तार अगर समझना हो, ये देखिए फ्लेक्स 80 से 100 किलोमीटर की हवा, मतलब इतनी तूफानी बारिश और सूखी के 3 से 4 बजे के बीच आपको ऐसा लग रहा होगा कि रात के 10 बज रहे हो। घूप अंधेरा, सड़कों पर पूरी तरह से विजिबिलिटी एकदम प्रभावित है, सारी गाड़ियों के इंडिकेटर ऑन है और हाईवे पर पूरा एक तरह का जल जमाव दिखाई दे रहा है और ऐसी तस्वीर लगभग आप एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में देखने को मिलेगी।
2: मौसम विभाग ने बताया है कि इस नए वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर 5 और 6 तारीख को भी उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में देखने को मिलेगा। इस दौरान तेज आंधी और बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना जताई गई है।
3: यहाँ जैसे WD बना हुआ है जो हवाएं भी अरेबियन सी से इस एरिया में आ रही है, जिसके कारण आप थोड़ा ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है और विच इज़ फेवरेबल फॉर रेनफॉल एक्टिविटी। तो हमारा यही है कि आने वाले 2 से 3 दिन जहां पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक्टिविटी रहेगा, जिसके लिए हमने जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के लिए हमने रेनफॉल के साथ हेलस्टॉर्म का वार्निंग भी दिया है। पंजाब हरियाणा हम अनुमान लगा रहे हैं जो हवाओं की गति है वो 50 से 60 किलोमीटर रह सकती है। इसके अलावा एनसीआर दिल्ली की बात करें, वहाँ भी हमारा 2 दिन के लिए येलो अलर्ट है, वहाँ भी हमारा यह है कि 40 से 50 किलोमीटर तक हवाएं रहने का अनुमान है।
2: उत्तर पश्चिम भारत में प्री मानसून का एक्टिव होना मानसून के लिए अच्छा संकेत माना जा रहा है। इसके चलते उम्मीद यही जताई जा रही है कि अब मानसून 30 जून तक देश के ज्यादातर हिस्सों को कवर कर सकता है। दिल्ली से मनीषा लड्डा और आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: और अब बात करेंगे दिल्ली के ऐसी पर्यावरण संरक्षण की जो पिछले 22 सालों से देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों को सम्मान से विदाई देने में जुटी हैं। ऐसी परंपरा बन गई है कि विसर्जित करने से के लिए अगर नदी आसपास नहीं होती तो लोग वर्षों तक पूजी जाने वाली देवी देवताओं की खंडित प्रतिमाओं को पेड़ों के नीचे, पार्क में या फिर सड़क किनारे छोड़ देते हैं, जिसे दिल्ली की प्रीति सिंह ने अनादर की तरह देखा और इसके बाद प्रीति ने मूर्तियों को पवित्र स्थानों पर विसर्जित करने का बीड़ा उठाया। वहीं अब दिल्ली सरकार उनकी इस मुहिम को आगे बढ़ाने में तैयार है।

0: देवी देवताओं की ये वो प्रतिमाएं हैं जो खंडित हो चुकी हैं या पुरानी हैं, और इसी वजह से लोगों ने मूर्तियों को बरगद और पीपल के पेड़ों के नीचे छोड़ दिया। हिंदू धर्म में बरगद और पीपल के पेड़ों का विशेष धार्मिक महत्व है। दोनों ही वृक्षों को साक्षात देव स्वरूप माना गया है। यही वजह है कि बरगद या पीपल के पेड़ों के नीचे मूर्तियां रखने की परंपरा रही है, जो जमाने से चली आ रही है। हालांकि पेड़ों के नीचे खुले में प्रतिमाओं के रखने से उनके अनादर की आशंका बढ़ जाती है। देवताओं की मूर्तियां यहां धूप, बारिश, मिट्टी और धूल में पड़ी रहती हैं। देवताओं की प्रतिमाओं का ऐसा हाल दिल्ली की एक महिला से देखा नहीं गया। उन्होंने 22 साल पहले प्रतिमाओं की सम्मानजनक विदाई या विसर्जन की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली।
1: देवताओं को जब हम अपने घर में लेके आते हैं तो बड़ी धूमधाम से लाते हैं। कभी कभी तो ढोल नगाड़ों के साथ अपने घर के मंदिर में किसी मूर्ति की स्थापना करते हैं, लेकिन जब कभी किसी भी वजह से इन्हें घर से विदा करना होता है तो विदाई बड़ी दुखदायी होती है। कई बार तो उन्हें किसी नदी के गंदे पानी में प्रवाहित कर देते हैं, तो कई लोग पीपल या बरगद के बड़े पेड़ के नीचे यूं ही मूर्तियों को रख कर चले आते हैं, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। और कई लोग देवताओं के उन मूर्तियों को इस तरह से लावारिस रखा देखकर दुखी होते हैं। दिल्ली की एक ऐसी ही महिला इन तस्वीरों को देखकर दुखी हुई और फिर उसने वो काम करने की ठानी जो कई लोगों के लिए आज नसीहत बन चुकी है। आइए आपको उसी महिला की कहानी दिखाते हैं।
0: कर्म के सिद्धांत और अध्यात्म में अटूट आस्था रखने वाली प्रीति सिंह की कोशिश है कि किसी भी हाल में देवी देवताओं की टूटी फूटी और खंडित मूर्तियां सड़कों, पार्कों या नदी किनारों पर नजर न आए।
2: जब मैं हर जगह इनको बुरी अवस्था में देखती हूँ और मैंने अपना संघर्ष जारी रखा।

0: करते करते करते करते करते करते जैसे इनको करने का उतना वो नहीं है जितना इनके लिए कष्ट होता है जब इनको जिस पोजीशन में हम पाते हैं, ठीक है। तो मेरा बस ये कहना है कि इनको एक परफेक्ट जो इनका स्थान है वो मिलना चाहिए।
1: साल 2004 में गंगा स्नान के दौरान प्रीति ने विधिवत तरीके से देवी देवताओं की विदाई का संकल्प लिया। तब से इस मुहिम में वो दिलो जान से जुटी हैं। सबसे पहले प्रतिमाओं को जमा किया जाता है, फिर उनकी धुलाई होती है। ब्राह्मण पूजा करने के बाद साफ सुथरे जल यानी स्वच्छ पानी में मूर्तियों को विसर्जित किया जाता है ताकि प्रतिमाएं दोबारा मिट्टी का स्वरूप धारण करें।
0: मिट्टी की हैं वो मिट्टी में मिल जाती हैं विसर्जन के बाद, कुछ होती हैं जो भूमि विसर्जन उनका होता है।
1: देवी देवताओं की प्रतिमा बनाने के लिए मुख्य रूप से मिट्टी, पीतल, तांबा और चांदी के अलावा संगमरमर, ग्रेनाइट पत्थर और लकड़ी का इस्तेमाल होता है। प्रतिमाओं को बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के अलावा फाइबर रेजिन का भी चलन काफी बढ़ गया है।
2: बहुत सारा अलग अलग तरह का मटेरियल होता है, कुछ मिट्टी का है, कुछ पीओपी का है, कहीं प्लास्टिक है, कहीं फोटो फ्रेम है, कई बार श्रृंगार की चीजें लगी हुई है जिसमें अलग अलग तरह का क्रिस्टल है। इन सब का क्या होता है? कई बार पेपर है, सिर्फ पेंटिंग है, उनका क्या होता है?
0: जैसे जो पेपर है उसका
2: मिट्टी का है वो तो हमने मिट्टी का वो विसर्जित करके खोल दिया।
0: जो मिट्टी का होता है उसका तो मिट्टी में होता है, और जो बहुत ज्यादा जैसे कागज है, क्रिस्टल है, इसको भूमि विसर्जन करते हैं ब्राह्मण पूजन के साथ। कई होता है जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल पे भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसे हम डेकोरेशन का सामान कर सकते हैं,
2: क्रश कर देते हैं
0: आराधना, हाँ क्रश करके पूजा आराधना में हम इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी देव को बना सकते हैं, उसमें डेकोरेशन लगा सकते हैं, बहुत अच्छी जगह ये काम आ सकता है।
2: मतलब जो चीज पानी में घुलने वाली नहीं है उसे मशीन के जरिए क्रश करते हैं, और फिर उसी क्रशिंग जो जो मटेरियल है उसको फिर आप कई तरह की दूसरी चीजें उसको बना लेते हैं।
1: कहते हैं कि किसी भी नई शुरुआत में राह हमेशा आसान नहीं होती। जब हम लीक से हटकर कुछ अलग करते हैं तो अक्सर लोगों के तंज और आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से काम भावनात्मक रूप से काफी चुनौती से भरा हो जाता है। लेकिन इस काम में प्रीति सिंह को उनके परिवार का भरपूर साथ मिला।
2: जब इस काम की शुरुआत की थी आपने तो घर से रिश्तेदारों ने क्या कहा कि ये क्या कर रहे हो, क्या कैसा रिएक्शन था?
0: स्टार्टिंग में तो बहुत लोग हंस देते थे कि पन्नी बीन रही है क्या, ऐसे मजाक हो जाता था कई बार। लेकिन हमारा था, हमारी लगन थी, हमें दुनिया दिखती नहीं है, हमें तो हमारे प्रभु दिखते हैं, हमें हमारे भगवान दिखते हैं।
2: आपकी माँ के पास कोई आया एक बार और क्या कहा?
0: मेरी मदर से कहा कि आपके बेटी दामाद तो लग्जरी गाड़ी से आते हैं और पन्नियाँ बीनते हैं। मेरी मदर का हमारे यहाँ से फोन आया कि क्या कर रहे हो तुम लोग, यहाँ पे तो बहुत इंसल्ट हो रही है हमारी। फिर मैंने अपनी मदर को समझाया और उस टाइम से मेरी मदर ने भी ये कहा कि मेरा फुल सपोर्ट है, तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो बेटा। और पीठ थपथपाई, उस टाइम से हमारी फैमिली का सपोर्ट सबसे ज्यादा रहा है, हमारे ससुराल का भी सपोर्ट रहा है, हमारे का भी सपोर्ट रहा है, खासतौर पे हमारे जो ब्रदर हैं उनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है, बाहर रहते हैं वो बाहर से बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज को।
1: प्रीति की ये पहल एक तरफ आस्था का सम्मान तो दूसरी तरफ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देती है। उनकी ये नेक कोशिश अब सरकारी स्तर पर भी अपनाई जा रही है। इस समस्या के समाधान के लिए दिल्ली सरकार ने खंडित मूर्तियों को जमा करने के लिए विशेष संग्रह केंद्र बनाने का फैसला किया है, जहां वैज्ञानिक तरीके से प्रतिमाओं को रिसाइकिल कर जरूरी वस्तुएं बनाई जाएंगी।
2: कैसे आप जिस ईश्वर की पूजा करते हैं, जिनसे आप दुनिया भर की मन्नतें मांगते हैं, आप कहते भी हैं कि धन, दौलत, गाड़ी, शोहरत सब कुछ उन्होंने ही दिया है, तो फिर आखिर उन्हें इस तरह से लावारिश क्यों छोड़ देते हैं? इस पर दिल्ली सरकार ने भी काम करना शुरू किया है, लेकिन ये पहली मुहिम प्रीति जी की थी और आज उनकी उस मुहिम को सरकार का भी साथ मिल रहा है। उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले वक्त में हमें कहीं भी ना तो किसी गंदे पानी में किसी मूर्ति को विसर्जित करना पड़ेगा और ना ही किसी पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे हम अपने देवताओं को रखा हुआ देखेंगे, क्योंकि इसका एक बड़ा सोल्यूशन अब दिल्ली सरकार भी लेकर आ रही है। क्या नाम है? शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे दिल्ली।
3: जिस किरदार ने कभी टीवी स्क्रीन पर बच्चों की कल्पनाओं को उड़ान दी थी वो अब सिनेमा घरों में लौटने की तैयारी कर चुका है। चार दशक पुरानी लोकप्रियता और नई पीढ़ी की उत्सुकता के साथ ही मैन फिर से सुर्खियों में है। क्या है इसकी वापसी की कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में।
4: एक वक्त था जब ये चार शब्द सुनते ही करोड़ों बच्चों की आंखों में चमक आ जाती थी। हाथ में जादुई तलवार, ताकत पर शरीर और बुराइयों को हराने का जज्बा, He-Man सिर्फ एक कार्टून किरदार नहीं था बल्कि 80 और 90 के दशक की पीढ़ी का सुपर हीरो था। भारत में भी He-Man का क्रेज किसी सुपर हीरो से कम नहीं था। कॉमिक्स, खिलौने, पोस्टर और टीवी स्क्रीन, हर जगह He-Man छाया हुआ था। और अब वही He-Man एक बार फिर लौट रहा है, लेकिन इस बार टीवी स्क्रीन पर नहीं बल्कि बड़े पर्दे पर। करीब 4 दशक तक बच्चों और युवाओं की कल्पनाओं का हिस्सा रहने वाला He-Man अब हॉलीवुड फिल्म मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स के जरिए सिनेमा घरों में दस्तक देने जा रहा है। फिल्म 5 जून 2026 को दुनिया भर के थिएटरों में रिलीज हो रही है। यानी जिन लोगों ने बचपन में He-Man को टीवी पर देखा था, अब वो उसी किरदार को बड़े पर्दे पर देख सकेंगे। साथ ही आज की युवा पीढ़ी यानी जेन ज़ी भी अपने पापा के जमाने के सुपर हीरो से रूबरू हो सकेगी। भारत में उन दिनों विदेशी एनिमेटेड किरदारों की संख्या भले ही कम थी, लेकिन जो कुछ चेहरे घर घर तक पहुंचे, उनमें He-Man सबसे लोकप्रिय नामों में शामिल था। उसकी ताकत, उसके दोस्त और बुराई के खिलाफ उसकी जंग। भारतीय बच्चों को किसी पौराणिक योद्धा की कहानी जैसी लगती थी। नई फिल्म में प्रिंस एडम यानी He-Man की भूमिका निभा रहे हैं। निकोलस गैलेटन उस पीढ़ी से नहीं है जिसने He-Man का सुनहरा दौर देखा था, लेकिन इस किरदार की लोकप्रियता ने उन्हें भी इसका प्रशंसक बना दिया है।
5: I was born in 94, so I just really missed out on the initial wave of He-Man, but in a way was kind of raised with He-Man because Master of the Universe has always had kind of an internet presence. You know, I sent a lot of He-Man memes, Skeletor memes in my day. But obviously, you know, when hearing what this meant to so many people and then getting the script along and starting to become a fan of the original animation as well as Dolph's interpretation, and then falling in love with the script, really. That was when I think the love and I would say the desperation to play the character kind of grew.
6: I know it sounds crazy, but that sword is gonna show me the way home.
4: समय बदला, तकनीक बदली, मनोरंजन के तरीके भी बदल गए, लेकिन कुछ नायक ऐसे होते हैं जो कभी पुराने नहीं पड़ते। और अब वही He-Man जिसने 80 और 90 के दशक में बच्चों की कल्पनाओं को ताकत दी थी, कल एक बार फिर सिनेमा घरों में अपनी ताकत दिखाने आ रहा है। शायद इसीलिए क्योंकि 4 दशक बाद भी उसके नाम में वही रोमांच, वही जादू और वही पावर बरकरार है। Bureau report, good news today.
6: You protect them.
3: बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर की फिल्म पैडी आज ग्लोबल रिलीज हो गई है, तो वहीं इस फिल्म की सक्सेस के लिए दुआ मांगने वो तिरुपति मंदिर पहुंची। जानवी के कई वीडियोस सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं जानवी के वो वीडियोस जब वो फिल्म पैडी की कामयाबी के लिए मन्नत मांगने तिरुमल्ला पहुंची।
1: एक तरफ साउथ एक्टर रामचरण की फिल्म पेड्डी आज सिनेमा घरों में रिलीज हुई, तो दूसरी ओर बुच्ची बाबू सना द्वारा निर्देशित इस फिल्म में उनकी को एक्टर जानवी कपूर की तिरुपति मंदिर यात्रा और दर्शन पेड्डी फिल्म की सक्सेस को लेकर बताई जा रही है। 2024 में आई फिल्म देवरा के बाद पेड्डी जानवी की दूसरी साउथ फिल्म है। ऐसे में रिलीज के बीच वो दोबारा ईश्वर का आशीर्वाद और फिल्म की हिट होने की मन्नत मांगने तिरुमला पहुंची। उनका कैजुअल लुक में बालाजी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने का ये वीडियो खूब सुर्खियों में है। वैसे बता दें कि जानवी जब भी तिरुपति मंदिर जाती हैं, तो वीआईपी दर्शन करने की बजाय नंगे पैर चलकर अलीपीरी की 3550 सीढ़ियों का इस्तेमाल करती हैं। वहीं तिरुमला मंदिर पहुंची जानवी का पर्पल कलर की कांजीवरम साड़ी और गहनों के साथ ये पारंपरिक लुक भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है। उनके बालाजी दर्शन के दौरान कई दूसरी महिलाएं भी उनके साथ दिखी। वहीं जानवी ने भी वहां मौजूद लोगों को हाथ जोड़कर सम्मान भी दिया। जानवी अपनी लाइफ के हर बड़े और खास मौकों पर बालाजी दर्शन करने आती हैं और उनकी ईश्वर भक्ति को देख फैंस के बीच अक्सर उनकी सराहना भी होती है। दरअसल उनकी मां श्रीदेवी की भी बालाजी में अटूट आस्था थी, इसलिए जाह्नवी भी शायद बालाजी के दर्शन कर सुकून महसूस करती हैं। फिलहाल तो आज ग्लोबली रिलीज हुई फिल्म पेड्डी के बीच जाह्नवी का तिरुपति दर्शन फिल्म की सफलता के लिहाज से ही देखा जा रहा है। कल इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई जिस पर दर्शकों ने खूब प्यार लुटाया। अब जाह्नवी की पेड्डी को लेकर की गई मेहनत और तपस्या क्या रंग दिखाती है, इसके लिए इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ, आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
3: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे बृहस्पति के शुभ योगों के बारे में, और अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति के शुभ योग हैं तो इसका जीवन पर प्रभाव कैसा पड़ता है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 5 जून 2026, दिन शुक्रवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 5 जून 2026, दिन शुक्रवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य देव विद्यमान हैं वृषभ राशि में, बुध और शुक्र मिथुन राशि में, बृहस्पति कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा मकर राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि फिलहाल विद्यमान हैं मीन राशि में, और मंगल संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। आज हम बृहस्पति के शुभ योगों की बात कर रहे हैं, तो बृहस्पति का पहला शुभ योग कौन सा है और इसके प्रभाव क्या हैं? बृहस्पति का पहला और सबसे सशक्त जो राजयोग है, जो शुभ योग है, उसका नाम है हंस योग। हंस योग जो है ये बृहस्पति का पंच महापुरुष योग है। बृहस्पति जब कुंडली में कर्क राशि, धनु राशि या मीन राशि में हो तो हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनता है, लेकिन इसके लिए बृहस्पति को लग्न से केंद्र में होना चाहिए। अगर कुंडली में हंस नामक योग है तो इससे व्यक्ति तपस्वी, विद्वान और ज्ञानी होता है। जीवन में धर्म के रास्ते पर, ज्ञान और विद्या के रास्ते पर चलता है। जिनकी कुंडलियों में हंस योग होता है ऐसे लोग बिना प्रयास के जीवन में नाम, यश
और सम्मान पा जाते हैं। और जिनकी कुंडलियों में हंस योग होता है ऐसे लोग राजनीति के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, शिक्षा में, धर्म के क्षेत्र में, जीवन में बड़ी सफलताएं प्राप्त करते हैं। ऐसा देखा गया है कि इनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, इनके ऊपर ईश्वर का विशेष वरदान होता है। अगर कुंडली में हंस योग है तो आपके पूर्व संस्कार, ईश्वर की कृपा और जीवन का सहयोग आपको प्राप्त होगा। लेकिन हंस योग वालों को हमेशा अहंकार से बचाव करना चाहिए, अहंकार से बचना चाहिए। इन लोगों को हमेशा खाने की आदत पर भी ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा खाने के चक्कर में कभी कभी ये लोग मोटापे के शिकार भी हो जाते हैं। बृहस्पति के शुभ योगों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन का लाभ हो सकता है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, छोटी छोटी बातों पर परेशान ना हो। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाएं, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जानते हैं बृहस्पति के दूसरे शुभ योग के बारे में और इसके प्रभाव के बारे में। बृहस्पति का जो दूसरा राजयोग है या दूसरा शुभ योग है उसका नाम है गजकेसरी योग। अगर बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में बैठे हों तो गज केसरी योग जीवन में बन जाता है। गज केसरी योग सामान्य व्यक्ति को भी विशेष बना देता है,
सामान्य व्यक्ति के अंदर भी विशेषता पैदा कर देता है। और अगर आपकी कुंडली कर्क लग्न की हो, वृश्चिक लग्न की हो, मीन लग्न की हो और कुंडली में गज केसरी योग हो तो ये विशेष प्रभावशाली होता है। जिनकी कुंडलियों में गज केसरी योग होता है ऐसे लोग शासन में और राजनीति में विशेष रूप से सफलता पाते हैं और ऐसे लोग जीवन में जिस भी क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र में खूब सफल होते हैं। छोटे से छोटे क्षेत्र में भी जाएंगे तो वहां पर करियर की ऊंचाइयां हासिल करेंगे, ऐसा गजकेसरी योग से हो जाता है। इस योग के होने पर व्यक्ति को शिव जी की उपासना करनी चाहिए क्योंकि शिव जी की उपासना करने से इस योग की शुभता बनी रहती है। और अगर संभव हो तो पीला पुखराज भी धारण करना चाहिए, पीला पुखराज धारण करना अच्छा होता है। बृहस्पति के तीसरे शुभ योग की बात भी करेंगे लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर में सफलता मिलेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, धन की स्थिति उत्तम बनी रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की स्थिति में सुधार होगा, परिवार में विवादों से बचाव करें, माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, छोटी यात्रा हो सकती है, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जानते हैं कि बृहस्पति का तीसरा शुभ योग कौन सा है और इसके प्रभाव क्या हैं। बृहस्पति का तीसरा शुभ योग या तीसरा राजयोग है केंद्रस्थ बृहस्पति। क्या होता है ये? देखिए, बृहस्पति केंद्र में
काफी मजबूत माना जाता है। कुंडली के लग्न चतुर्थ सप्तम और दशम भाव को केंद्र कहते हैं। अगर इसमें बृहस्पति बैठे हों विद्यमान हों तो ये बृहस्पति काफी मजबूत होते हैं, और उसमें भी अगर बृहस्पति लग्न में बैठा हो तो अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। केंद्र में बैठा हुआ बृहस्पति कुंडली के तमाम दोषों को नष्ट कर देता है, और केंद्र में बैठा हुआ बृहस्पति व्यक्ति की आयु लंबी कर देता है और व्यक्ति को ज्ञानी बना देता है। लग्न में अगर बृहस्पति बैठा हो, यानी केंद्र में भी लग्न में अगर बैठा हो, तो बृहस्पति कुंडली के सारे दोषों का अकेले नाश करने में सक्षम होता है। अगर आपकी कुंडली में केंद्र में बृहस्पति बैठा है तो ऐसा बृहस्पति होने पर धर्म स्थानों पर जरूर जाएं, और अगर नियमित रूप से आप तिलक लगा सकें, मंदिरों में दर्शन कर सकें, लोगों का आदर और सम्मान कर सकें, तो आपके लिए और भी ज्यादा उत्तम होगा। तो केंद्र में अगर बृहस्पति बैठा है और उसका फायदा लेना चाहते हैं तो जीवन में पवित्रता से रहने पर आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, परिवार में शांति बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, वाद विवाद से बचाव करें, करियर में कोई जोखिम ना लें, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बात की बृहस्पति के शुभ योगों के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए
एक लकी टिप। अगर संतान की उन्नति को लेकर के तनाव रहता हो, संतान की उन्नति को लेकर के चिंताएं रहती हों, तो हर बृहस्पतिवार को शिव मंदिर जाएं, माता या पिता, और शिवलिंग पर पीले फूल अर्पित करके अपनी संतान के लिए प्रार्थना करें, संतान के जीवन में उन्नति होगी। अब जान लेते हैं दिनांक 5 जून 2026 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है।

लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करिए। घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिए। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: are you ready to tackle those home projects? Whether it's a new patio, fresh paint, or just some more space, now's the perfect time to make it happen. With a home equity loan from CME Federal Credit Union, you'll get an introductory 3.99% APR for 12 months, giving you the flexibility to take on those dream house projects. Your home's next chapter starts at CME. Visit cmefcu.org to apply today and to get your plans underway.
1: Terms and conditions apply. Federally insured by NCUA. Equal housing lender.
2: Jack FM, now playing what we want, commercial-free, on TuneIn Premium.
3: What about me, Jack? What about me?
2: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
4: Well played, Jack. Well played.
2: Jack FM, playing what we want.
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: क्या आपके वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी नाराजगियां चलती रहती हैं? क्या आपके वैवाहिक जीवन में बात, वाद, विवाद और झगड़े तक पहुंच गई है? क्या आपका वैवाहिक जीवन टूटने की कगार पर है? कौन सी हैं वैवाहिक जीवन की छोटी बड़ी समस्याएं और क्या है उनका समाधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट।
3: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
6: टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
3: चमोली में गुप्तकाल ट्रैकिंग कर वापस लौटा पहला दल। गमशाली से 26 मई को हुआ था रवाना, टीम में शामिल थे 7 ट्रैकर। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक केदारनाथ धाम पहुंचे करीब 11 लाख श्रद्धालु। धाम में लगातार बदल रहा मौसम का मिजाज। शिरडी के साई दरबार से आई आस्था की अनोखी तस्वीर, श्रद्धालु ने साई बाबा को अर्पित किए सोने का मुकुट, करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद मौसम सुहाना, तापमान में गिरावट से लोगों को मिली गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए जारी किया अलर्ट। इंडोनेशिया के चिड़ियाघर में गूंजी 4 नन्हे मेहमानों की किलकारी, बाघिंदीनी ने 4 शावकों को दिया जन्म। सफारी पार्क में कुल 8 हुई बाघों की संख्या। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है, और चर्चा तमिलनाडु के अलग अलग मंदिरों में भक्ति उत्सव के रंगों की भी है।
7: चार धाम की यात्रा भव्य रूप से चल रही है। चारों धाम में से केदारनाथ धाम में तो इन दिनों श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है, जिससे पूरे धाम में खूब चहल पहल दिखाई पड़ रही है। भक्त यहां पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन कर अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा इस बार नए कीर्तिमान रच रही है। केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। यहां हर दिन 15,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मानसून सीजन को लेकर भी प्रशासन ने यहां पूरी तैयारी होने का दावा किया है। तमिलनाडु में इन दिनों जगह जगह भक्ति उत्सव की छटा बिखरी हुई है। मंदिर दिव्य सजावटों और लाइट से जगमगा रहे हैं। ये भव्य तस्वीरें थूथुकुड़ी स्थित पेची अम्मन मंदिर में आयोजित 108 तिरुविल्कु पूजा की हैं। वहीं श्री नागा कन्निका परमेश्वरी अमन मंदिर की ओर से कदलागुड़ी गांव में 5वां वार्षिक पाल कुदुम महोत्सव आयोजित किया गया। मयिलादु थुराई के ही परिमाला रंगनाथर पेरुमल मंदिर में वसंत उत्सव का आयोजन चल रहा है। मयूनाथ मंदिर में वैकासी महोत्सव तिरुकलायन उत्सवम का उत्सव आयोजित किया गया। यहां फ्लोट फेस्टिवल की दिव्य छटा भी देखने को मिली। उधर कांचीपुरम के वरदराजा पेरुमल मंदिर में वैकासी ब्रह्मोत्सवम का भी धूमधाम से आयोजन हुआ। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अमरावती की हैं, जहां हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में आयोजित जलतरण और मलखम का अनोखा संगम देखने को मिला। ग्रीष्मकालीन शिविर के समापन पर जलतरण में मलखम के पारंपरिक कौशल की प्रस्तुति दी गई, तो दूसरी ओर छात्रों ने हाथों में जलती मशाल लेकर पानी के भीतर और सतह पर संतुलन बनाते हुए शानदार करतब दिखाए। छात्रों ने जलतरण तालाब में मलखम के योगासन और शौर्यपूर्ण मुद्राएं बनाते हुए अपने कौशल का शानदार प्रदर्शन भी किया। करीब 550 तैराकों ने सिंक्रोनाइज स्विमिंग, वाटर पोलो, पानी में मलखम के साथ ही दूसरी जल क्रीड़ाओं के जरिए अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। पिछले 102 सालों से आयोजित की जा रहे इस शिविर का उद्देश्य युवाओं और बच्चों में मैदानी खेलों के प्रति दिलचस्पी बढ़ाने के साथ ही उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाना है। राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में इन दिनों पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, जिन्हें यहां बाघों की अटखेलियों को देखने का मौका मिल रहा है। यहां बाघों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, साथ में और प्रजाति के वन्य जीव भी यहां मौजूद हैं। और अब पहली बार यहां सफेद मोर देखे जाने की बात भी सामने आई। बफर जोन में घूमने वाले पर्यटकों को जब सफेद मोर नजर आया तो उन्होंने उसे अपने कैमरे में कैद कर लिया। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। बेजुबानों से अपनापन की यह तस्वीर झारखंड के जमशेदपुर के पास दलमा जंगल की है, जहां पेशे से अधिवक्ता संजय कुमार सरोज का बेजुबानों से दोस्ती की कहानी की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। जंगल के टॉप पर संजय जैसे ही पहुंचते हैं, बंदरों को इसकी भनक लग जाती है और वो भागकर इनके पास चले आते हैं। फिर संजय उन्हें अपने हाथों से केला समेत दूसरे फल खिलाते हैं। छुट्टियों के दिन के अलावा भी संजय अपनी कार में केला, चना और खाने के दूसरे सामान लेकर इस जंगल में पहुंचते हैं और फिर इन बंदरों को खिलाते हैं। 2017 से यह सिलसिला चल रहा है। इससे संजय और बंदर दोनों एक दूसरे की भावनाओं को अच्छे से समझने लगे हैं।
3: अब बात करते हैं मॉनसून की। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के औपचारिक रूप से एंट्री करते ही दिल्ली एनसीआर का मौसम भी अचानक से बदल गया। राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में तेज हवाओं के साथ घने काले बादल छा गए और झमाझम बारिश हुई। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक केरलम में मॉनसून के आने से उत्तर भारत में भी नमी बढ़ गई है। इससे दिल्ली एनसीआर में प्री मॉनसून गतिविधियां तेज हुई। वहीं दूसरे राज्यों से भी बारिश की खबरें हैं, लेकिन ये मानसूनी बारिश नहीं है, इसलिए दिल्ली समेत कई राज्यों में अभी मानसून के आने का इंतजार है।

0: देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह तक तेज धूप और उमस से लोग परेशान थे, लेकिन दोपहर होते होते आसमान में काले बादल छा गए। कई इलाकों में दिन के समय ही अंधेरा जैसा माहौल बन गया। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और आसपास के क्षेत्रों में तो तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश हुई। मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को गर्मी और उमस से काफी राहत मिली। हालांकि तेज हवाओं की वजह से कुछ जगहों पर ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट पहले ही जारी किया था।
1: चिलचिलाती गर्मी और उमस भरी हवाओं के बाद मौसम एक बार फिर से पूरी तरीके से बदल चुका है। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से इस वक्त मौसम बेहद ही सुहाना हो चुका है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो है बारिश की शुरुआत हो चुकी है, और ये पहले से ही मौसम विभाग का अनुमान था कि आज बारिश जो है वो देखी जा सकती है, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ जो है इस वक्त जो है सर्कुलेशन जो है वो पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है, जिसका अदर जो असर था वो देखने को पहाड़ी राज्यों पर मिलेगा, लेकिन उसका कहीं ना कहीं असर जो है मैदानी इलाकों पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। और मौसम विभाग ने इसी चीज को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया था कि पहाड़ी राज्यों में, चाहे हिमाचल की बात हो, उत्तराखंड की बात हो या जम्मू कश्मीर की बात हो, हर तरफ अच्छी बारिश जो है देखी जाएगी। आंधी तूफान जो है वो भी देखा जा सकता है, लेकिन बात अगर मैदानी राज्यों की जाए तो यूपी हो, पंजाब की बात हो, राजस्थान की बात हो या दिल्ली एनसीआर की बात हो, यहाँ पर भी ऑरेंज अलर्ट बारिश का जो है वो दिया गया था। और आप देख सकते हैं कि तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ इस वक्त, सीपी की तस्वीरें दिखा रही हूँ कि किस तरीके से झमाझम बारिश की जो शुरुआत है वो हो चुकी है, और कहीं ना कहीं अब लोगों को राहत जरूर मिलेगी। क्योंकि अगर हम तापमान की बात करें तो तापमान सामान्य से कम जरूर बने हुए थे, लेकिन उमस की स्थिति जो है वो लगातार लोगों को परेशान कर रही थी।
0: इस प्री मानसून बारिश ने लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी से काफी हद तक राहत पहुंचाई है। वहीं मौसम विभाग ने दावा किया है कि मानसून की केरलम में एंट्री हो गई है। इसके असर से केरलम के अलावा तमिलनाडु और कर्नाटक में कुछ जगहों पर अगले 7 दिन भारी बारिश हो सकती है।
2: आज 4 जून को अगर आप ये फिगर में देखेंगे कि मानसून केरला और कुछ कर्नाटक के हिस्से भी कवर किया है, और इसके अलावा तमिलनाडु के हिस्से आज कवर हुए हैं, और थोड़ा ब्यो बंगाल की ब्रांच कवर हुई है। तो इसका रीज़न यही है कि कंटिन्यूज अब जो कन्वेक्टिव एक्टिविटी है जहां इंक्रीज़ हो गई है, उसका रीज़न क्या है कि जो जहां वेस्टर्ली हवाओं की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी बढ़ गई है, 4.5 तक है। लो लेवल में जो विंड्स हैं वो 20-25 नॉट्स हैं, और ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो मानसून है जहाँ उसके कारण वाइड स्प्रेड रेनफॉल एक्टिविटी रहा इस रीजन में, तो हमने मानसून को जहाँ कवर किया है।
0: मॉनसून की दस्तक से पहले ही देश के ज्यादातर हिस्सों में प्री मॉनसून बारिश देखने को मिल रही है, चाहे दक्षिण भारत हो या उत्तर भारत, चाहे पूर्वी भारत हो या पश्चिम भारत। हालांकि पहले मॉनसून के 25 मई को केरलम में पहुंचने का पूर्वानुमान दिया गया था, लेकिन मॉनसून ने दस्तक देने के लिए 4 जून की तारीख चुनी और देश में आज से बारिश के मौसम की शुरुआत हो गई। हालांकि इस बार मॉनसून थोड़ी देर से पहुंचा है, लेकिन अभी तक तो यही लग रहा है कि बिल्कुल दुरुस्त पहुंचा है। मौसम विभाग ने पहले ही संकेत दे दिया था कि केरलम और आसपास के क्षेत्रों में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। इसके बाद राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश दर्ज की गई। गुरुवार सुबह भी केरलम के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है। अलपुझा और कोट्टायम और अन्नाकुलम जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं जब मॉनसून की घोषणा के सारे मानक पूरे हो गए तो उसके आने का ऐलान भी हो गया। मौसम विभाग ने पहले अंदाजा लगाया था कि मॉनसून 25 या 26 मई के आसपास केरलम पहुंच सकता है, लेकिन तमाम वजहों से मॉनसून की रफ्तार अचानक धीमी पड़ गई। बाद में मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बदलाव किया और 4 जून के आसपास मॉनसून के केरलम पहुंचने की भविष्यवाणी की, जो आखिरकार सच साबित हुई।
2: आने वाले दिनों की बात करें तो हमारा अनुमान ये है कि केरला, कोस्टल कर्नाटका, वहाँ पे वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी, वेरी हैवी मीन 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी ऑलमोस्ट पूरा वीक होती रहेगी। उसके साथ ही कर्नाटक, कोंकण, गोवा, वहाँ भी रेनफॉल एक्टिविटी, हैवी रेनफॉल होने का अनुमान है। तमिलनाडु, देन इंटीरियर कर्नाटका, जहाँ रेनफॉल एक्टिविटी ऑलमोस्ट हैवी रहने का अनुमान है। इसके अलावा भी जहाँ भी जो मानसूनल विंड फेवरेबल हो रही है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी, जैसे भी आज मानसून थोड़ा नॉर्थ बे बंगाल तक टच किया, जो नॉर्थ पे की लाइन है, और आने वाले 2-3 दिनों में जहाँ भी रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ जाएगी, हैवी वेरी हैवी रेनफॉल होने का अनुमान है। तो हमारा आने वाले दिनों में यही फोरकास्ट है, 2-3 दिन जो मानसून है, जो इवन इंटायर गोवा और कोंकण के कुछ हिस्से, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से और कवर कर सकता है, कर्नाटक जैसे कवर हो सकते हैं, आंध्रा के, तमिलनाडु के जो हिस्से वो और कवर हो जाएंगे और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के कुछ हिस्से कवर होने का।
0: मानसून के केरलम पहुंचने के बाद अब देश के दूसरे हिस्सों खासकर उत्तर भारत पर नजरें टिकी हैं, जहां लोग कई सप्ताह से भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं और बादलों के बरसने की आस लगाए बैठे हैं। आमतौर पर मानसून जून के दौरान तेजी से आगे बढ़ता है। ये पहले पश्चिमी तट और पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों को कवर करता है, फिर 15 जून तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पहुंचता है। इसके बाद मानसून पूर्वी और उत्तरी भारत की ओर बढ़ता है। वहीं दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी प्री मानसून एक्टिविटी जारी है।
2: अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, वो समय नॉर्थ पाकिस्तान पे एक सर्कुलेशन की फॉर्म में है, स्ट्रेंथन में है और उसके साथ ही जहाँ जैसे WD बना हुआ है, जो हवाएं भी अरबियन सी से इस एरिया में आ रही है, जिसके कारण आप थोड़ा ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है और विच इज़ फेवरेबल फॉर रेनफॉल एक्टिविटी। तो हमारा यही है कि आने वाले 2 से 3 दिन जहाँ पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक्टिविटी रहेगा, जिसके लिए हमने जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के लिए हमने रेनफॉल के साथ हेलस्टॉर्म का वार्निंग भी दिया है। पंजाब, हरियाणा हम अनुमान लगा रहे हैं जो हवाओं की गति है वो 50 से 60 किलोमीटर रह सकती है। इसके अलावा NCR दिल्ली की बात करें, वहाँ भी हमारा 2 दिन के लिए येलो अलर्ट है, वहाँ भी हमारा यह है कि 40 से 50 किलोमीटर तक हवाएं रहने।
0: हालांकि देश के कई राज्यों में अभी भी गर्मी कम नहीं हुई है। गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में तापमान 40 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। दिल्ली की बात करें तो आमतौर पर मानसून 27 जून के आसपास पहुंचता है, जबकि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और देश के ज्यादातर हिस्सों में जून के आखिर या जुलाई के पहले हफ्ते तक मानसून आ जाता है। केरलम के बाद अब मौसम वैज्ञानिक इस बात पर नजर रखेंगे कि मानसून आगे भी अपने निर्धारित समय के अनुसार बढ़ता है या नहीं। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: पंजाब में निजी स्कूलों में फीस पर लगाम। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
4: पंजाब सरकार के निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर लगाम लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की है कि अब कोई भी निजी स्कूल सालाना 5% से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकेगा। पिछले 3 सालों में तय सीमा से ज्यादा फीस वसूलने वाले स्कूलों को अतिरिक्त राशि अभिभावकों को लौटानी होगी। सरकार इस संबंध में अध्यादेश लाकर बाद में कानून बनाएगी। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना, फीस वापसी और बार बार गलती करने पर मान्यता रद्द करने तक की कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने पद संभालने के बाद बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के स्कूल और कॉलेज छात्रों के लिए मुफ्त बस पास की घोषणा की है। इससे विशेष रूप से गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों के हजारों छात्रों को राहत मिलेगी। पहली कैबिनेट बैठक के बाद उन्होंने बताया कि बी खाता संपत्तियों को ए खाता में बदलने की सुविधा अब पूरे राज्य में लागू होगी। मुख्यमंत्री ने इसे नई शुरुआत बताते हुए विकास और सुशासन का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि सरकार सामूहिक निर्णय और लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर काम करेगी। कश्मीर और लद्दाख के बीच साल भर संपर्क सुनिश्चित करने वाली नई जोजिला टनल लगभग बनकर तैयार हो गई है। श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर बन रही ये सुरंग अगले कुछ हफ्तों में यातायात के लिए खोली जा सकती है। सर्दियों में भारी

0: दिल्ली NCR में झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन उत्तर भारत के कुछ राज्यों में अभी भी पारा हाई है। ऐसे में तन मन को कूल करने के लिए पहाड़ों की सैर लाजमी है, लिहाजा पर्यटक पहाड़ों पर सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने के लिए निकल पड़े हैं। कोई जम्मू कश्मीर जा रहा है तो कोई हिमाचल और उत्तराखंड का रुख कर रहा है। पहलगाम की ऊंची ऊंची चोटियां, चीड़ और देवदार के घने जंगल, कल कल बहती नदी, इन्हीं दिलकश नजारों का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक यहाँ पहुँच चुके हैं। कोई इन नजारों को अपने कैमरों में कैद कर रहा है तो कोई इन खूबसूरत नजारों के साथ खुद को कैमरे में कैद कर रहा है। यहाँ के हर एक लम्हे को भरपूर जी लेने की चाहत हर किसी को है।
1: यहाँ के मौसम की बात करें तो बहुत ही बढ़िया, एकदम खूबसूरत। मेरा तो ये फर्स्ट टाइम है यहाँ पे आने का। टूरिस्टों से मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे आए, काफी सारे पिछली कुछ घटनाएं यहाँ पे हुई थी, उस वजह से काफी लोग सोच में पड़ गए, बट मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया चल रहा है सब।
2: अच्छा लग रहा है, हर साल आते रहते हैं पहलगाम, इस बार भी आए, अभी पहली बार आए इस साल गर्मियों में, बाद में अभी जून जुलाई बाकी बड़ा आएंगे बीच में।
0: पहलगाम की ठंडी हवाएं और नदी के ठंडे पानी के बीच पर्यटक मैदानों की तपिश को भूल चुके हैं, इनका मन पूरी तरह पहलगाम में रम चुका है।
3: जम्मू में इतनी गर्मी है हम आपको बयान नहीं कर सकते, इतनी गर्मी है जम्मू में भी, यहाँ कश्मीर में तो जन्नत है। हम कल आए थे, इतनी ठंड थी कि हमें यहाँ जैकेट्स वेयर करनी पड़ी।
4: अच्छा।
3: हाँ, ब्लैंकेट्स लेने पड़े, सुबह हमने गर्म पानी से नहाया है, इतना अच्छा मौसम है यहाँ पे।
4: अच्छा मौसम है। हाँ?
3: तो पहलगाम, तो वैसे भी पहलगाम और सोनामर्ग मेरी फेवरेट स्पॉट है। हाँ? हम तो हर साल पहलगाम और यहाँ पे आते हैं।
5: वधारे मजा आवे, मने फरवानी मम्मी पापा साथे खूब वधारे मजा आवे छे।
4: मजारो मजो। हां, मौसम कैसा है?
5: मौसम तो बहुत ही बढ़िया है यहाँ का।
4: अच्छा,
5: गुजरात में तो बहुत गर्मी पड़ रही है, यहाँ तो ठंडी है।
0: बर्फ से लकदक बांदीपोरा की पहाड़ी की चोटियां सैलानियों को खूब पसंद आ रही हैं। गुरेज रोड पर करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर राजदान दर्रे पर पर्यटक यहां की बर्फीली वादियों का दीदार करने पहुंच रहे हैं और ठंडे मौसम का मजा ले रहे हैं।
6: बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ बर्फ हो रही है, बारिश भी हो रही है। हमने श्रीनगर में गर्मी देख ली, यहाँ पे ऊपर आके बारिश देख ली, अभी बर्फ हो रही है, तो कम से कम 5 डिग्री तो चल रहा है यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ठंडी है।
7: जून में वी कैन नॉट एक्सपेक्ट सच टाइप ऑफ बर्फबारी हियर अभी, लेकिन वो गर्मी को देखते हुए लोग यहाँ पर आना चाहिए। और बहुत अच्छा सोहना वेदर है, बहुत अच्छी जगह है ये, करीब करीब 14,000 फीट पे जगह है राजस्थान, ऑन द वे टू गुरेज।
0: हिमाचल प्रदेश के चंबा का खजियार भी पर्यटकों से गुलजार है। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, हरा भरा खुला मैदान और बीच में छोटी सी झील पर्यटकों का मन मोह रही है। कोई इन दिलकश नजारों को कैमरे में कैद कर रहा है तो कोई गीत गुनगुना रहा है। कुल्लू और आसपास के पहाड़ी इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, लिहाजा यहाँ भी पर्यटकों की भरमार है। यहाँ पर्यटक जिप लाइन, पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग जैसे एडवेंचर टूरिज्म को जमकर एंजॉय कर रहे हैं।
8: फरमाए और हम लोग फैमिली के साथ राजस्थान से यहाँ आए, राजस्थान से यहाँ हिमाचल को हमने इसलिए चूज किया बिकॉज यहाँ का वेदर अच्छा है। राजस्थान से कंपैरेटिवली काफी कूल वेदर है यहाँ, वहाँ पे 42-43 डिग्रीज टेम्परेचर, हीट वेव्स काफी ज्यादा हो रहे थे। सो समर वेकेशन में हमने घूमने के लिए इसको चूज किया। यहाँ ग्रीनरी अच्छी है, पॉल्यूशन फ्री है और वेकेशन के लिए हमने मतलब एक कूल प्लेस चाहिए थी, इसलिए हमने हिमाचल को चूज किया।
9: मनाली का जो टूरिज्म है वो बड़े पीक सीजन में है और काफी लोगों का व्यवसाय भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी होगी और उसके अलावा भी और भी जो व्यवसाय हमारे से जुड़े हुए हैं, तो ये काफी पीक में।
0: कुल्लू मनाली में सैलानियों का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मई के महीने में यहाँ 66,000 से ज्यादा पर्यटक वाहनों की एंट्री दर्ज की गई थी और बड़ी तादाद में सैलानियों के पहुँचने से यहाँ के होटल खचाखच भरे हैं। गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यटक कश्मीर, हिमाचल ही नहीं बल्कि देवभूमि उत्तराखंड का भी रुख कर रहे हैं और इसका सबसे ज्यादा असर नैनीताल और आसपास के पर्यटन स्थलों में देखने को मिल रहा है। वीकेंड और छुट्टियों के हालात बदतर हो चले हैं। हालात ऐसे हैं कि प्रमुख मार्गों पर

0: लंबा जाम लग रहा है, जिसकी वजह से पर्यटकों को घंटों तक वाहनों में फंसे रहना पड़ रहा है, तो स्थानीय लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है।
1: और किसी भी प्रकार का बाइकर्स और बाइक टैक्सीज को पूर्ण रूप से हमने प्रतिबंधित किया है, और जो उन्हीं व्हीकल्स को हम अलाउ कर रहे हैं जो जिनके पास होटल में कंफर्म्ड बुकिंग है और पार्किंग भी है। इस वजह से ट्रैफिक जो है वन वे सिस्टम भी लागू है शाम के टाइम में, सुगम और सुव्यवस्थित रूप से यातायात का संचालन हो रहा है। नो निश्चित रूप से यातायात का दबाव जरूर है, परंतु व्यवस्थित रूप से चल रहा है।
0: नैनीताल में जहां पर्यटकों की रिकॉर्ड आमद से होटल, रेस्टोरेंट और पर्यटन कारोबार से जुड़े व्यवसायियों के चेहरे खिले हुए हैं, वहीं दूसरी ओर बढ़ता ट्रैफिक प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। फिलहाल नैनीताल और आसपास के इलाकों में जाम से जल्द राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। नैनीताल से लीला सिंह बिष्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: न्यूज पेपर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
3: कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन भारतीय शेयर बाजार में खास बदलाव देखने को नहीं मिला। गुरुवार को 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 13 अंक बढ़कर 74,360 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयर्स वाला एनएसई निफ्टी 10 अंकों की बढ़त के साथ 23,416 पर बंद हुआ। ग्लोबल मार्केट में मांग के कारण गुरुवार को गोल्ड की कीमतों में बढ़त देखने को मिली। ऑल इंडिया एसोसिएशन के अनुसार 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 700 रुपए चढ़कर 1,60,300 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 3800 रुपए लुढ़क कर 2,65,700 रुपए पर पहुंच गई। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़े तनाव के बीच अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में एक बार फिर से गिरावट देखने को मिली है। गुरुवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 7 पैसे कमजोर होकर 95.83 के स्तर पर बंद हुआ।
2: फिल्म लगान के 25 साल पूरे होने पर फैंस को आमिर के प्रोडक्शन का तोहफा। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड पर।
3: फिल्म लगान की रिलीज के 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। फिल्म 15 जून 2001 को रिलीज हुई थी और अब इसको लेकर आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस ने फिल्म का नया ट्रेलर रिलीज करने के साथ ही फिल्म की री रिलीज की घोषणा भी की। फिल्म लगान का ये 4K ट्रेलर एक बार फिर 1893 के उस समय में ले जाता है जब गांव वालों को सूखे की वजह से ब्रिटिश सेना को भारी लगान देना पड़ता था। इस ट्रेलर को रिलीज करने के साथ ही ये जानकारी भी दी गई है कि ये फिल्म 12, 13 और 14 जून को सिनेमाघरों में री रिलीज की जाएगी। विक्रम भट्ट के निर्देशन वाली फिल्म हॉन्टेड 3D गोस्ट ऑफ द पास्ट का स्क्रीमर रिलीज किया गया है। स्क्रीमर यानी इस छोटे टीजर वीडियो की शुरुआत एक भूतिया हवेली से होती है, जिसमें फिल्म के मुख्य किरदार निभाने वाले मीमोह चक्रवर्ती हवेली में अपने प्यार की तलाश में पहुंचते हैं, जहां उनके सामने कुछ ऐसे हालात बनते हैं जिनसे निकल पाना उनके लिए एक बड़ी चुनौती होती है। फिल्म में मीमोह के साथ चेतना पांडे मुख्य किरदार निभाती नजर आएंगी। इसके अलावा श्रुति प्रकाश, गौरव वाजपेयी, प्रणीत भट्ट, हेमंत पांडे भी फिल्म में दिखेंगे। ये फिल्म 12 जून को हिंदी, तमिल और तेलुगु में सिनेमाघरों में आएगी। अभिनेत्री जानवी कपूर त्रिमला पहुंची। उन्हें नंगे पैर मंदिर की 3,550 सीढ़ियां चढ़ते हुए देखा गया। उनके साथ उनकी टीम के लोग और दोस्त भी दिखे। जानवी हर खास मौकों पर यहां पहुंचती हैं। इस बार वो अपनी फिल्म पेड्डी के रिलीज के दिन यहां पहुंची और भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा अर्चना की। जानवी ने फिल्म पेड्डी में रामचरण के साथ काम किया है और इस बार माना जा रहा है कि वो फिल्म की सफलता की कामना को लेकर ही तिरुमला पहुंची और भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के पहाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। हॉलीवुड के डीसी स्टूडियोज ने अपनी फिल्म सुपरगर्ल का आखिरी ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसमें दिखाया गया है कि सुपरगर्ल और सुपरमैन अपने डॉग क्रिप्टो को बचाने के लिए खतरनाक मिशन पर निकलते हैं। इस सफर में उनकी मुलाकात रुथिये नाम की एक एलियन लड़की से होती है जो उनका साथ देती है। क्रेग गिलेस्पी निर्देशित इस फिल्म में मिली एलकॉक सुपरगर्ल का किरदार निभा रही हैं। ये फिल्म 26 जून को अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी।
2: न्यूज वक्त में हम खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
5: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट srmup.in।
2: चमोली में गुपकाल ट्रैकिंग कर वापस लौटा पहला दल। गमशाली से 26 मई को हुआ था रवाना, टीम में शामिल थे 7 ट्रैकर। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक केदारनाथ धाम पहुंचे करीब 11 लाख श्रद्धालु। धाम में लगातार बदल रहा मौसम का मिजाज। शिरडी के साई दरबार से आई आस्था की अनोखी तस्वीर, श्रद्धालु ने साई बाबा को अर्पित किया सोने का मुकुट, करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद मौसम सुहाना, तापमान में गिरावट से लोगों को मिली गर्मी से राहत, मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए जारी किया अलर्ट। इंडोनेशिया के चिड़ियाघर में गूंजी चार नन्हे मेहमानों की किलकारी, बाघिन दीनी ने 4 शावकों को दिया जन्म, सफारी पार्क में कुल 8 हुई बाघिनों की संख्या। चलिए न्यूज पथ में खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
5: वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि शख्स अपनी उंगलियों के बीच चावल का एक दाना पकड़ता है, इसके बाद वो चावल के दाने को चाकू से इतनी तेजी और सटीकता के साथ काटना शुरू करता है कि कुछ ही सेकंड में पूरा दाना बारीक टुकड़ों में बदल जाता है। वीडियो देखने वाले कई लोग दावा कर रहे हैं कि उसने चावल के दाने को करीब 50 हिस्सों में काट दिया। सबसे ज्यादा चर्चा उसके हाथों की स्पीड और कंट्रोल को लेकर हो रही है। आमतौर पर लोग चावल का दाना ठीक से पकड़ भी नहीं पाते, लेकिन इस शख्स ने उसे इतनी सफाई से काटा कि इंटरनेट यूजर्स दंग रह गए। लंबी छुट्टी के बाद स्कूल का पहला दिन हर स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए ही खास होता है। ऐसे में अगर स्कूल में बच्चों का वेलकम प्यार और पारंपरिक तरीके से किया जाए तो उनकी खुशी कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में सोशल मीडिया पर हाल ही में केरलम के एक स्कूल का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूल में क्लास गेट पर एक टीचर खड़ी है और स्कूल पहुंचने वाले बच्चों का ट्रेडिशनल तरीके से वेलकम किया जा रहा है। बच्चे एक एक करके टीचर के पास पहुंचते हैं, जिसके बाद टीचर हर एक बच्चे की आरती उतारती है, उसे आशीर्वाद देती है और फिर प्यार करके स्कूल के अंदर भेजती है। मौसम इतना खराब है कि सामने देखना भी मुश्किल लग रहा है। इसी दौरान एक बाइक सवार परिवार सड़क किनारे रुका हुआ नजर आ रहा है। कुछ ही देर के बाद कार वहां पर रुक जाती है और उसका ड्राइवर परिवार की मदद के लिए आगे आता है। वो महिला और बच्चे को सुरक्षित कार में बैठाता है। वीडियो में ये सीन देखकर लोग कह रहे हैं कि मुश्किल समय में किसी की मदद करना कितना बड़ा काम हो सकता है। साफ पता चल रहा है कि कार ड्राइवर की इस छोटी सी लेकिन अहम मदद ने लोगों का दिल जीत लिया है। वीडियो में दिखाई देता है कि एक साड़ी को छत से नीचे तक बिछाया गया है। ऊपर मौजूद शख्स बाल्टी से गेहूं साड़ी पर डालता है और देखते ही देखते गेहूं फिसलता हुआ सीधे नीचे रखी बोरी में पहुंच जाता है। पूरा सिस्टम इतना आसान और मजेदार है कि देखने वाले बार बार वीडियो चला रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये जुगाड़ किसी इंजीनियरिंग लैब में नहीं बल्कि गाँव के माहौल में तैयार किया गया है। इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक विदेशी लड़की दिखाई दे रही है जो दुल्हन के गेटअप में नजर आ रही है। उसने अपने मारवाड़ी दूल्हे को शानदार सरप्राइज देकर सबको हक्का बक्का कर दिया। वीडियो में दुल्हन राजस्थानी गाने पर पारंपरिक अंदाज में डांस करती नजर आती है। उसका डांस देखकर न सिर्फ दुल्हा खुश हो जाता है बल्कि शादी में मौजूद मेहमान भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते। वीडियो का सबसे खास हिस्सा आखिर में देखने को मिलता है जब दुल्हन प्यार से अपनी दूल्हे का हाथ पकड़कर उसे भी डांस फ्लोर पर ले जाती है।
2: न्यूज वक्त के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी बॉलीवुड स्टार आमिर खान की, जो कि तीसरी बार शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। इस शादी को लेकर बॉलीवुड सितारों से लेकर सोशल मीडिया यूजर्स के बीच खूब चर्चा हो रही है। 61 साल के आमिर खान अपनी पार्टनर गौरी स्प्रैट के साथ शादी करने जा रहे हैं, जो आमिर की तीसरी शादी होगी। आमिर खान और गौरी स्प्रैट पिछले 2 सालों से रिलेशनशिप में हैं और अब दोनों ने अपने रिश्ते को नया नाम देने का फैसला किया है। आमिर खान ने खुद इस खबर पर मुहर लगाते हुए कहा है कि शादी की खबरें बिल्कुल सच है, ये शादी 5 जुलाई को होने जा रही है। आमिर खान और 48 साल की गौरी स्प्रैट ने घर पर ही शादी के लिए बेहद निजी और सादगी भरा रास्ता चुना है। इस खास मौके पर केवल दोनों के परिवार के सदस्य और कुछ बेहद करीबी दोस्त थे शामिल। मूल रूप से बेंगलुरु की रहने वाली गौरी स्प्रैट फैशन, ब्यूटी और वेलनेस के क्षेत्र से जुड़ी हुई है। गौरी एक बेटे की सिंगल मदर भी हैं। हालांकि आम जनता के बीच उनकी पहचान आमिर खान के साथ रिश्ता सामने आने के बाद, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आमिर और गौरी के बीच जान पहचान लगभग 25 साल पुरानी है। दोनों की पहली मुलाकात करीब 2.5 दशक पहले हुई थी, जिसके बाद वे एक दूसरे के संपर्क से दूर हो गए थे। बरसों बाद दोनों की दोबारा मुलाकात हुई, जो पहले दोस्ती और फिर धीरे धीरे एक गंभीर रिश्ते में बदल गई। आमिर खान ने पहली बार मार्च 2025 में अपने 60वें जन्मदिन के जश्न के दौरान गौरी स्प्रैट को मीडिया से मिलवाया था, जिसके बाद से दोनों को कई जगह साथ देखा जाता रहा है। आमिर खान की पहली शादी साल 1986 में रीना दत्ता से हुई थी, जिनसे उनके 2 बच्चे जुनैद खान और ईरा खान। ये शादी 2002 में खत्म हो गई। इसके बाद आमिर खान ने साल 2005 में फिल्म निर्माता किरण राव से शादी की, जिनसे उनका एक बेटा आजाद राव खान है। किरण और आमिर साल 2021 में एक दूसरे से अलग हो गए थे। दोनों शादियां टूटने के बाद आमिर के मन में अपनी दोनों पूर्व पत्नियों के लिए गहरा सम्मान है और वे आज भी दोनों के साथ नजर आते हैं। फिलहाल आमिर खान की तीसरी शादी पर सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा हो रही है। कुछ यूजर्स आमिर खान को ट्रोल कर रहे हैं, तो कई उनकी पर्सनल लाइफ का हवाला देकर उनका बचाव कर रहे हैं। आमिर खान की तीसरी शादी को लेकर हमने लोगों से भी बात की और उनकी राय जानी।
6: क्या हो रहा आमिर खान सर को, मतलब आजकल के लोग शादी से दूर भाग रहे हैं। कितने सारे केसेस मैंने खुद ने देखे, मेरा भी प्लान चेंज हो गया शादी का। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी आमिर खान सर आपसे।
7: आमिर खान मेरे सबसे फेवरेट स्टार रहे हैं बचपन से, और मैंने उनकी काफ़ी फिल्में देखी है, जैसे कि मन दिल और ऐसी बहुत सारी फिल्में और लगान वगैरह, तो उनकी काफ़ी सारी फिल्में मुझे पसंद भी आती है और मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट स्टार है। और वो इस उम्र में तीसरी शादी कर रहे हैं, तो मतलब मैं उसके बारे में क्या कहता हूँ, वो बड़े स्टार है तो वो कुछ भी पता ऐसे कर सकते हैं। तो मतलब तीसरी शादी है तो अभी, हालांकि उनकी 60 की एज हो गई है, फिर भी आज के ज़माने में वो हीरो का ही रोल कर रहे हैं और वो आज भी सबके फेवरेट ही है।
8: हालांकि पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, बड़े लोग हैं कुछ भी कर सकते हैं। मैं भी अभी शादी में ही आया था खाना खाने के लिए, हमें भी बुलाएं, ऐसे 3-4-5 भी शादी करते रहे, हम ज़रूर आएंगे। एंड बहुत बहुत मुबारकबाद। हालांकि बड़े लोगों में शादियाँ तो चलती रहती हैं, और आपने कई इंडस्ट्री में देखा भी होगा कि कई शादियाँ हो रही हैं, टूट रही हैं, और ऐसे समय में वो शादी कर रहे हैं जहाँ पे अपना ये सारी खबरें चल रही हैं, तो सोना बचाने की बात हो रही है और यहाँ शादियाँ हो रही है, तो कोई बात नहीं, बड़ी बात है।
9: मेरा जो कहना वो यही है कि मैं बहुत खुश हूँ, और उन्होंने जो भी डिसीज़न लिया अपने लाइफ के लिए, बहुत अच्छा डिसीज़न लिया। लाइफ एक है, एंजॉय करनी चाहिए। अगर उन्होंने किसी दूसरे को पसंद किया है कि हाँ उसके साथ उनकी लाइफ बेटर हो सकती है, तो बहुत अच्छा डिसीज़न है। हर इंसान को लाइफ जीने का हक है।
2: और अब रुख करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। देश का एक ऐसा इलाका जो कि 6 महीने के लिए दुनिया से कट जाता था, लेकिन एक टनल के निर्माण से अब साल भर कनेक्टिविटी मिल रही है। इस टनल के बनने से आवाजाही आसान होने के साथ ही कई तरह के फायदे लोगों को मिल रहे हैं। सैन्य सेवा के लिहाज से भी ये टनल काफी फायदेमंद साबित हो रही है। देखिए,
0: खूबसूरत वादियों के बीच बनी ये वो टनल है जिससे न सिर्फ गाड़ियां गुजर रही हैं, बल्कि यहां से विकास का रास्ता भी गुजरा है, जिससे हिमाचल को अटल रफ्तार मिली है। पहले जहां रोहतांग दर्रा होकर लाहौल घाटी का सफर बेहद लंबा रहता था, वहीं सर्दियों में कई फीट तक बर्फबारी होने से 6 महीने के लिए लाहौल घाटी दुनिया से कट जाती थी। अब बड़ी संख्या में सैलानी भी अटल टनल रोहतांग का दीदार करने पहुँच रहे हैं।
10: अटल टनल खुलने के बाद चेंजेस आए हैं, बहुत लोग आ रहे हैं, मतलब लोग अच्छा यहाँ घूमने भी आ रहे हैं, इससे हमारा इनकम सोर्स भी बढ़ गया है। एंड जैसे जितने भी हम यूथ है यहाँ पे बेरोजगार है, उनको एक नया रोजगार भी मिल गया है, कृषि के साथ साथ कोई अपना पढ़ाई भी कर रहे हैं, होटल्स खोले हैं, होमस्टेज खोले हैं, टूर वैन्स है, एक्टिविटीज है। और भी
0: साफ है कि इस टनल के बनने से आवाजाही तो आसान हो ही गई है, साथ ही पर्यटन भी फल फूल रहा है। मनाली और लाहौल घाटी को जोड़ने वाली ये टनल अब घाटी के लोगों के लिए राहत बनी हुई है। इस टनल का महत्व सामरिक दृष्टि से भी बेहद अहम है। ये टनल भारतीय सेना के लिए लद्दाख सीमा तक हर मौसम में तेजी से सैनिकों और रसद सामग्री की आवाजाही भी सुनिश्चित करती है।
11: पहाड़ वही है, मौसम भी वही है, लेकिन सफर अब बदल चुका है। शायद इसी वजह से हिमाचल प्रदेश में इस अटल टनल को एक विकास के तौर पर देखा जा रहा है। करीब 9 किलोमीटर बनी इस टनल को देशभर में सबसे लंबी हाईवे टनलों में शुमार माना जाता है, जो सबसे अधिक ऊंचाई पर बनाई गई है। वहीं पर्यटन के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य जरूरी सेवाओं तक पहुंच पहले की तुलना में और अधिक सुगम हो गई है। वहीं सामरिक दृष्टि से भी अटल टनल बेहद खास मानी जाती रही है। ये सेना की आवाजाही को हर मौसम में सुगम बनाती है और सीमावर्ती क्षेत्रों तक पहुंच को तेज व अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि बढ़ते पर्यटन और ट्रैफिक के बाद काफी चुनौतियां जो सामने आई हैं, लेकिन विकास के आगे कहीं ना कहीं ये चुनौतियां भी अब लोगों को मंजूर है।
0: मनाली और लेह राजमार्ग को जोड़ने वाली ये अटल टनल दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित हाईवे सिंगल ट्यूब टनल है, जो घोड़े की नाल के आकार में बनाई गई है। समुद्री तल से करीब 3,100 मीटर की ऊंचाई पर बनी ये सुरंग 9.02 किलोमीटर लंबी है। मनाली और लाहौल स्पीति घाटी के बीच की दूरी को ये 46 किलोमीटर कम करती है। इससे पर्यटन बढ़ा, कारोबार बढ़े तो रोजगार के अवसर भी बढ़े।
12: एक तो रोजगार मिल गया लोगों को, रोजगार मिल गया। दूसरा, जैसे पहले ऐसा था कि कोई बीमार बुमार हो जाता था तो उसे मुश्किल होता था सर्दियों में, तो आजकल ऐसा दिक्कत नहीं है। पहले तो 6 महीने बंद रहता था, और अब क्योंकि हम रोहतांग होके आते थे, रोहतांग से आना जाना होता था उस समय, तो बीमार हो गए तो फिर तो एलपेड है यहाँ पर, तो हेलीकॉप्टर आता था यहाँ पर, और वो भी मौसम साफ होगा तभी आएगा, अगर नहीं होगा तो फिर होगा। टूरिज्म बढ़ गया, टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया।
0: इन सभी के चेहरे पर एक अलग ही चमक नजर आती है, क्योंकि यहाँ के लोगों को पर्यटन बढ़ने से रोजगार तो मिला ही, साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा और जरूरी सेवाओं तक पहुँच भी पहले की तुलना में काफी आसान हो गई है।
11: हम इस वक्त 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित अटल टनल रोहतांग पर है। ये वही टनल है जिसने हिमाचल प्रदेश में सफर की परिभाषा को बदल के रख दिया था। करीब 6 महीनों तक रोहतांग दर्रे में पड़ने वाले बर्फ के बाद लाहौल स्पीति जिला शेष दुनिया से कटा रहता था, लेकिन अब इस पहाड़ को चीरती हुई टनल कुछ ही पलों में लोगों को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने में मदद कर रही है। अगर मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इसे एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में जाना जाएगा। करीब 9 किलोमीटर बनी इस टनल से जहां लाहौल स्पीति के स्थानीय जनजीवन सुधरा है, तो वहीं पर्यटन कारोबार को भी फायदा पहुंचा है।
2: इलॉन मस्क ने एआई की मदद से बने मूवी ट्रेलर पर पूछा लोगों से सवाल। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
3: फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी को लेकर कनाडा का शहर वैंकूवर पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। शहर के प्रतिष्ठित साइंस वर्ल्ड डोम को 131 पैनल्स की मदद से टूर्नामेंट की आधिकारिक मैच बॉल ट्रायुंडा का रूप दिया गया है। वहीं नॉर्थ शोर के ग्राउस माउंटेन पर विशाल कैनेडाई राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया गया है। 40 मीटर ऊंचे जियोडेसिक डोम की ये सजावट पर्यटकों का ध्यान आकर्षित कर रही है। वैंकूवर में कुल 7 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें कनाडा और कतर के बीच होने वाला अहम मैच भी शामिल है। इलॉन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता दिखाते हुए होमर के महाकाव्य इलियट पर आधारित एक एआई जनरेटेड सिनेमैटिक ट्रेलर जारी किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए इस ट्रेलर को रोक इमेजिन 1.5 की मदद से तैयार किया गया। ट्रोजन युद्ध की कहानी को शानदार विजुअल्स और इमोशंस के साथ पेश किया गया है। मस्क ने लोगों से पूछा कि क्या वो इसकी पूरी फिल्म देखना चाहेंगे। ये ट्रेलर संकेत देता है कि भविष्य में एआई की मदद से पूरी फीचर फिल्म्स बनाना संभव हो सकता है।

0: लंदन में कलाकार माजा पेट्रिक की नई प्रदर्शनी द ग्लिस्ट सब्लाइम तकनीक और प्रकृति के अनूठे मेल का उदाहरण बनकर सामने आई है। इस प्रदर्शनी में एक रोबोट सिंथेटिक आर्कटिक पॉपीज को लाइट बॉक्स में सजाता दिखाई देता है। ये सीरीज उन आर्कटिक पॉपीज से प्रेरित है जो पृथ्वी के सबसे उत्तरी इलाकों में खिलने वाले पौधों में शामिल हैं। 6 जून तक चलने वाली ये प्रदर्शनी SXSW लंदन कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसमें तकनीक, संगीत, फिल्म और संस्कृति से जुड़े विविध आयोजनों को एक मंच पर प्रस्तुत किया जा रहा है। चीन के सिचुआन प्रांत स्थित चेंगदू रिसर्च बेस ऑफ जायंट पांडा ब्रीडिंग से एक बेहद प्यारा वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक नन्हा पांडा अपनी मां की पीठ पर खेलता और मस्ती करता दिख रहा है। इस मनमोहक नजारे ने लोगों का दिल जीत लिया है। चेंगदू का ये केंद्र वैज्ञानिक अनुसंधान, जन जागरूकता और इको टूरिज्म के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ जायंट पांडा और रेड पांडा जैसी दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण और प्रजनन पर विशेष काम किया जाता है, जिससे वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा मिलता है।
1: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा से लेकर हेमकुंड साहिब तक भक्तों की आस्था अपार है। इस साल दर्शन के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और बाबा केदार की यात्रा तो इस बार नए कीर्तिमान रच रही है। यहां अब तक 10.5 लाख से अधिक भक्त बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंच चुके हैं।

0: देवभूमि उत्तराखंड इन दिनों भक्ति और आस्था के रंग में सराबोर है। ऋषिकेश के पावन घाटियों से लेकर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की दिव्य वादियों तक आस्था की बयार बह रही है। हर तरफ जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। चारों धाम में आस्था, आध्यात्म, प्रकृति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है।
1: हम लोग मध्य प्रदेश के इंदौर मध्य प्रदेश से आए हैं बद्री विशाल चार धाम यात्रा हेतु। यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो काफी अच्छी हैं। बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हो रहे हैं। प्रॉपर तरीके से लाइन में दर्शन करने लगे हुए हैं दर्शालु, और हर प्रकार की व्यवस्था साफ सफाई अच्छी है।
0: बद्रीनाथ धाम की रौनक तो देखने लायक है। जून महीने के सिर्फ पहले 3 दिन में ही करीब 2.5 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच गए हैं। अब श्रद्धालुओं का आंकड़ा 8,61,000 को पार कर चुका है। रोजाना औसतन 29,000 के करीब श्रद्धालु भगवान बद्रीनाथ के दर्शनों को आते हैं। वहीं हेमकुंड साहिब में रोजाना 4,500 से ज्यादा श्रद्धालु माथा टेकने पहुंचते हैं, और अब तक लगभग 50,000 श्रद्धालु यहां पहुंच चुके हैं। यहां हर दिन हेमकुंड साहिब यात्रा में श्रद्धालुओं का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है।
2: बद्रीनाथ धाम की यात्रा, इस समय आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ धाम में अब तक 8,61,000 से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंच चुके हैं। 8.5 लाख की संख्या जो है वो पार हो चुकी है, और अब कभी भी 9 लाख की संख्या बद्री विशाल के यात्रियों की पूरी हो सकती है। वहीं सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में लगभग 50,000 श्रद्धालु मत्था टेकने पहुँच चुके हैं। बड़ी कठिन ये चढ़ाई होती है, 19 किलोमीटर खड़ी पैदल चढ़ाई, और ऑक्सीजन की कमी के बावजूद जो श्रद्धालुओं का उत्साह हेमकुंड साहिब में जबरदस्त देखने को मिल रहा है। लगभग 4,500 श्रद्धालु हेमकुंड साहिब रोजाना पहुंच रहे हैं।
0: इस साल यात्रा के शुरुआती चरण में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु चारों धाम पहुंचे। यात्रा के शुरुआती 44 दिनों की तुलना पिछले साल की यात्रा से करें तो इस बार यात्रा की शुरुआती 44 दिनों में करीब 29,85,000 से ज्यादा तीर्थयात्री चार धाम पहुंचे हैं, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 3 लाख से ज्यादा है। पिछले साल शुरुआती 44 दिनों में करीब 26,34,000 तीर्थयात्री पहुंचे थे।
3: बड़ी संख्या में हमारे पास यात्रियों की तादाद आ रही है। बद्रीनाथ में 8.5 लाख से ज्यादा यात्री हमारे पहुंच चुके हैं, और 50,000 से ऊपर हमारे यात्री हेमकुंड साहिब में पहुंच चुके हैं। क्योंकि ये सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में और हमारे उच्च अधिकारियों के लगातार मॉनिटरिंग के क्रम में ही ये उपलब्धि हासिल की गई है। क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं थी वो प्रॉपर इस बार तैयार की गई थी, और अभी भी बद्रीनाथ में हमारा 25,000 के करीब यात्री डेली बेसिस पे आ रहा है।
0: कठिन रास्तों और बदलते मौसम की परवाह किए बिना लाखों श्रद्धालु बाबा केदार, बद्री विशाल, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।
4: चार धाम यात्रा के लिए आए, पहला हो गया यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, फिर अभी बद्रीनाथ। फिर अच्छी तरह दर्शन हो गए, मस्त क्लाइमेट अच्छा लगा, लोग अच्छे लगे, पार्किंग वगैरह सब अच्छा है, व्यवस्था अच्छा है, अच्छा लगा उत्तराखंड।
0: केदारनाथ धाम में एक तरफ जहां बाबा केदार के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है, तो वहीं बढ़ती संख्या के साथ घाटी में गंदगी भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में धाम की पवित्रता और स्वच्छता बनाए रखना प्रशासन के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। इसी को ध्यान में रखते हुए रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया है।
5: काम चल रहा है, इसमें सुलभ की संस्था भी काम कर रही है, सभी नगर पालिका, नगर पंचायत और जिला पंचायत भी काम कर रहे हैं। और प्रयास ये है कि डेली जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसका साइंटिफिकली डिस्पोजल किया जाए। इस संदर्भ में एक जिला लेवल पर एक मॉनिटरिंग सेल भी बनाई गई है, जो हर 15 दिन में इसकी मॉनिटरिंग करके अपडेट करेंगे।
0: अभियान के तहत केदारनाथ धाम से लेकर पूरे पैदल यात्रा मार्ग पर जमा होने वाले कचरे को नियमित रूप से एकत्र कर समय पर नीचे पहुंचाया जा रहा है। सफाई कर्मियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और प्रशासनिक टीमों को इस कार्य में लगा दिया गया है, ताकि यात्रा मार्ग और धाम परिसर स्वच्छ बना रहे और श्रद्धालुओं को भी स्वच्छ और सुंदर वातावरण मिल सके। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सिंबाल के साथ चमोली से कमल नंसलोड़ी, गुड न्यूज टुडे।
6: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया, एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक
8: East of the Pacific, making histories of Asian American art. On view now through August 16th at the Columbus Museum of Art. Featuring more than 60 works of artists of Asian descent, the exhibition explores how migration across the Pacific has shaped American art and culture. Experience the stories, perspectives, and artistic contributions that continue to influence our world. Don't miss East of the Pacific, making histories of Asian American art, now through August 16th. Plan your visit today at columbusmuseum.org.
9: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvinciblewiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
10: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
11: खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के।
6: छाने लगा है फुटबॉल वर्ल्ड कप का खुमार। जी हाँ, खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चलें खेल चक्कर।
16: 11 जून से शुरू होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप को लेकर फीफा का एक अहम फैसला सामने आया है, जिसके मुताबिक स्टेडियमों में प्रवेश करने वाले दर्शक अब अपनी रीयूजेबल पानी की बोतल साथ नहीं ले जा पाएंगे। फीफा ने टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले अपने स्टेडियम कोड ऑफ कंडक्ट में बदलाव करते हुए ये फैसला लिया। 11 जून से 19 जुलाई तक होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको साझा रूप से कर रहे हैं। कनाडा का वैंकूवर शहर पूरी तरह से फुटबॉल के रंग में रंग चुका है। अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले वनडे सीरीज में विराट कोहली की उपलब्धता को लेकर चल रही अटकलों पर टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच रयान टेन डोशेट का बयान आया है। डोशेट के अनुसार इस पर आधिकारिक जानकारी जल्द जारी होगी, लेकिन विराट जैसे खिलाड़ी का बाहर होना हमेशा बड़ा झटका होता है। दरअसल आईपीएल के फाइनल मैच में बल्लेबाजी के दौरान विराट कुछ असहज दिखे थे। फाइनल के बाद हुई मेडिकल जांच में सामने आया कि कोहली चोट से जूझ रहे हैं। हालांकि चोट की गंभीरता को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग की शुरुआत हो चुकी है। T20 फॉर्मेट में बुधवार को इसका शुभारंभ हुआ। इस लीग में 10 पुरुष और 5 महिला टीमें भाग ले रही हैं। इंदौर में पहली बार इस लीग के मुकाबले हो रहे हैं, जिसका 26 जून को समापन होगा।
6: प्रधानमंत्री मोदी ने जब देशवासियों से फॉरेन ट्रिप के बजाय स्वदेश घूमने की अपील की, तो GNTV दर्शकों से अपने आसपास की खूबसूरत, ऐतिहासिक और दूसरी सैर सपाटा करने वाली जगहों की तस्वीरों को शेयर करने की अपील कर रहा है और हम आपके भेजे गए उन वीडियोस को GNTV पर लगातार दिखा भी रहे हैं। आज आपको हम हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन कसौली लिए चलते हैं, जहां की खूबसूरत वादियां यकीनन आपको भी वहां जाने के लिए जरूर खींचेगी। ये व्लॉग हमारे एक दर्शक ने भेजा है।

0: आज हम आपको लेके आए हैं कसौली के सुंदर वादियों में। हिमाचल प्रदेश का ये एक ऐसा क्षेत्र है जो कि हरियाली, देवदार के पेड़ों, ओक के पेड़ों से सुंदर और शांत वातावरण में स्थित है। यहाँ के पर्यटक स्थल जैसे चर्च, सनसेट, मंकी पॉइंट, गिलबर्ट ट्रेल, जो मंकी पॉइंट है यहाँ का, वो इस क्षेत्र की सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र है और वहाँ का जो नज़ारा है, दृश्य है, वो बहुत ही दर्शनीय है। देश विदेश के यात्रियाँ यहाँ पे आते हैं और वहाँ का पूरा दृश्य हम देख सकते हैं। ग्रीनरी, हरियाली, जो कि सबके मन की शांति और विकास, विद्यार्थियों के पढ़ने लिखने के लिए बहुत ही उचित स्थान बताया गया है। और यहाँ पे जो गिलबर्ट ट्रेल है, ये पर्यटक और ट्रैकिंग के लिए बहुत फेमस है। एंड जो सनसेट पॉइंट है, वो सूर्यास्त का एक हसीन दृश्य प्रस्तुत करता है। सभी देशवासियों से अपील करती हूँ कि इस स्थल पे आके अपने एंजॉय कीजिए, अपने परिवार के साथ अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ पे आए। और देश विदेश से घूमने से अच्छा है कि आप अपने प्रदेश, अपने इंडिया, अपने भारत की स्थल को जाने पहचाने, यहाँ की प्रकृति और संस्कृति से रूबरू हुए। ये जो कसौली है, ये चंडीगढ़ से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसे ही आप चंडीगढ़ से शिमला रोड पे आते हो, कसौली चौक पे, वहाँ से एक लेफ्ट टर्न आपको लेना होता है। कसौली चौक से आते आते एक सुंदर और एक बोर्डिंग स्कूल है, कसौली इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, वहाँ से ये थोड़ा सा 7 किलोमीटर की दूरी पर है। आप आए और कसौली के इस सुंदर और शांत वातावरण का इंजॉय लीजिए।
1: तो आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट आप कर सकते हैं। टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प में भागीदार बन सकते हैं। बस आपको करना इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है, तो उठाएं अपना कैमरा, बनाएं व्लॉग और हमें व्हाट्सएप करें 7303409922 पर, हम उसे GNT पर दिखाएंगे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ।
3: क्या आपके वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी नाराजगियां चलती रहती हैं? क्या आपके वैवाहिक जीवन में बात, वाद, विवाद और झगड़े तक पहुंच गई है? क्या आपका वैवाहिक जीवन टूटने की कगार पर है? कौन सी हैं वैवाहिक जीवन की छोटी बड़ी समस्याएं और क्या है उनका समाधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: East of the Pacific, making histories of Asian American art on view now through August 16th at the Columbus Museum of Art. Featuring more than 60 works of artists of Asian descent, the exhibition explores how migration across the Pacific has shaped American art and culture. Experience the stories, perspectives, and artistic contributions that continue to influence our world. Don't miss East of the Pacific, making histories of Asian American art, now through August 16th. Plan your visit today at columbusmuseum.org.
5: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries, all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
1: विश्वास बसता है जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
6: गुड न्यूज टुडे.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
2: Get into the huddle with TuneIn. TuneIn brings you nonstop sports talk, live games, and expert analysis all in one place. From kickoff to final whistle, follow your favorite teams all season long with ESPN Radio, Talk Sport, Big 12 Radio, and more. Plus, listen to your favorite sports broadcasts on over 200 devices, so you never miss a moment of sports action with TuneIn. Stay in the game with TuneIn and start listening now.
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
10: TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
11: चमोली में गुप्त काल ट्रैकिंग कर वापस लौटा पहला दल, गमशाली से 26 मई को हुआ था रवाना, टीम में शामिल थे 7 ट्रैकर। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक केदारनाथ धाम पहुंचे करीब 11 लाख श्रद्धालु, धाम में लगातार बदल रहा मौसम का मिजाज। शिरडी के साई दरबार से आई आस्था की अनोखी तस्वीर, श्रद्धालु ने साई बाबा को अर्पित किया सोने का मुकुट, करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद मौसम सुहाना, तापमान में गिरावट से लोगों को मिली गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए जारी किया अलर्ट। इंडोनेशिया के चिड़ियाघर में गूंजी चार नन्हे मेहमानों की किलकारी, बाघिन दी ने चार शावकों को दिया जन्म। सफारी पार्क में कुल आठ हुई बाघों की संख्या।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं आंधी की। आंधी जो कि दिल्ली एनसीआर खास करके नोएडा में आई, और ऐसे आई कि लोग चौंक गए। करीब 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवा के सामने गाड़ियों की रफ्तार थम गई। दिन में अंधेरा हो गया और गाड़ियों के हेडलाइट्स जलानी पड़ी। बात यही नहीं रुकी, इसके बाद बादल जमकर बरसे और ऐसे बरसे कि सड़कों पर पानी जम गया। दिल्ली में मानसून से पहले मौसम का ये तूफानी अंदाज क्यों है और कब तक रहने वाला है, आपको विस्तार से बताएंगे। इसके बाद बात होगी केरल में एंट्री कर चुके मानसून की। आपको बताएंगे कि मानसून कब तक आपके शहर तक आएगा। आखिर में आपको लिए चलेंगे हिमाचल और कश्मीर, जहां हसीन मौसम का लुत्फ उठाने के लिए सैलानियों का जमावड़ा है। चलिए शुरुआत करते हैं दिल्ली एनसीआर के तूफानी मौसम की खबर से। गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे अचानक मौसम ने करवट ली। तेज धूल भरी आंधी, काले बादल और झमाझम बारिश ने पूरा माहौल बदल दिया। अंधेरे होने की वजह से रात का एहसास होने लगा। तेज हवा की वजह से कई जगह पेड़, साइन बोर्ड और बिजली के खंभे गिर गए। मौसम का मिजाज अभी भी जस का तस है। मौसम विभाग ने कल यानी कि शुक्रवार को भी येलो अलर्ट जारी किया है, यानी कि दिल्ली एनसीआर और आसपास गरज चमक के साथ आंधी का अनुमान है। देखिए ये रिपोर्ट।

दोपहर तक धूप थी, आसमान साफ था, पर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि दिन में रात हो गई। घड़ी में 3 बजते ही तेज धूल भरी आंधी चली और देखते ही देखते घुप अंधेरा छा गया। जो सड़क पर थे सहम गए, जो गाड़ियों में थे ठहर गए। हवा की रफ्तार इतनी तेज कि हरे दरख्त उखड़ गए, कुछ सड़कों पर औंधे मुंह गिरे तो कुछ नीचे खड़ी गाड़ियों पर। लेकिन साइन बोर्ड्स की धज्जियां उड़ गई, स्ट्रीट लाइट्स के खंबे भी हवा का प्रहार झेल नहीं सके। हवा की रफ्तार करीब 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसके सामने एक कदम भी आगे बढ़ना मुहाल। अंधेरा ऐसा कि गाड़ियों में हेडलाइट्स तक जलानी पड़ी।

0: इसके बाद शुरू हुई झमाझम बारिश जिसने सड़कों को लबालब कर दिया। समस्या तब हुई जब पानी जमा होने से ट्रैफिक रुक गया। ये तस्वीरें नोएडा की हैं, लेकिन कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें पूरे दिल्ली एनसीआर में नजर आईं, जब ये पूरा इलाका थोड़ी देर के लिए ठहर गया।
1: और आप ये समझिए कि 80 से 100 किलोमीटर की रफ्तार अब मॉनसून ने आज दस्तक दी है केरल में। आपको तस्वीरें दिखाओ, ये देखिए, ये दिल्ली और यूपी की सीमा है और आप यकीन मानेंगे कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये दिल्ली मेरठ हाईवे है। आप देखिए इसकी तस्वीरें कि महज अभी 5 से 10 मिनट हुए हैं और इतनी तेज बरसात है कि आपको लगेगा यहां समंदर। हवा की रफ्तार अगर समझना हो, ये देखिए फ्लेक्स, 80 से 100 किलोमीटर की हवा, मतलब इतनी तूफानी बारिश और सूखी के 3 से 4 बजे के बीच आपको ऐसा लग रहा होगा कि रात के 10 बज रहे हों। घुप अंधेरा, सड़कों पर पूरी तरह से विजिबिलिटी एकदम प्रभावित है, सारी गाड़ियों के इंडिकेटर ऑन है और हाईवे पर पूरा एक तरह का जल जमाव दिखाई दे रहा है। और ऐसी तस्वीर लगभग आप एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में देखने को मिलेगी। और मैं जिस ओर आगे बढ़ रहा था, सिर्फ एक तरफ का नहीं, आप दूसरी तरफ का इलाका अगर देखेंगे तो आपको भी यहां भी वही प्रभाव दिखाई देगा। और खासकर मौसम में जो करवट बदली है, आपको बताऊं, सबसे पहले ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन ऑरेंज अलर्ट धीरे धीरे बदलते हुए उसके बाद जो है अब जिस तरह का चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है कि अगले 2 दिन ऐसी स्थितियां रह सकती हैं। और आज अचानक से मौसम ने जिस तरह करवट ली है उसके बाद से पूरा दिल्ली, आसपास का खासकर इलाका गुरुग्राम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी ज्यादातर इलाके, हरियाणा और इसी के साथ जितने भी इलाके सटे हैं, हर तरफ आंधी पानी तेज तूफान। इसके पहले लगभग 20 मिनट तक जो है वो तूफान ऐसा था कि ऐसा लगा चारों जैसे धूल की एक परत से जम गई हो और इस कतर जो है माहौल था कि विजिबिलिटी नहीं दिखाई देती थी। देखिए बादलों की जो गड़गड़ाहट है आप सुन रहे हैं, तो मौसम विभाग ने ऐसे में ओले गिरने और इसी के साथ साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी दी है। और अगर आप थोड़ी देर, इसीलिए सड़कों पर जो आवाज आई है वो बिल्कुल ठप सी पड़ गई है।
0: जून के शुरुआती दिन है पर मौसम की मेहरबानी से दिल्ली एनसीआर को गर्मी से कुछ राहत थी। हाँ, मगर 40 डिग्री तापमान के साथ उमस मौजूद थी। पर जब आंधी के साथ बादल गरजे और जमकर बरसे तो पलक झपकते ही गर्मी छू मंतर हो गई। ये काले बादल मॉनसून के नहीं हैं, लेकिन असर मॉनसून से कम भी नहीं है। दिल्ली, खासकर दक्षिणी दिल्ली में खूब बारिश हुई।
2: तस्वीरों में आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में मौसम कितना अच्छा आपको होता हुआ नजर आ रहा है। फुहारे पड़ रहे हैं, बारिश हल्की हल्की हो रही है और आप देख सकते हैं इस रिंग रोड पर क्या स्थिति हुई है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, मौसम बिल्कुल सुहाना है, गर्मी से लोगों को राहत मिली है और मौसम बिल्कुल सुहाना हो गया है और बारिश रिमझिम बरसात जो है वो हो रही है।
0: दिल्ली एनसीआर को ये बादलों की सौगात है जिसका अनुमान मौसम विभाग ने पहले ही दे दिया था। पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से ऐसे मौसम का अंदाजा था। मौसम विभाग ने न सिर्फ 4 जून बल्कि 5 जून के लिए भी येलो अलर्ट घोषित किया है, यानी लोगों को खराब मौसम के प्रति सावधान रहना होगा। यानी एनसीआर में ये सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। नोएडा और आसपास के शहरों में 6 जून तक बादल छाए रहेंगे, गरज चमक के साथ एक या दो बार भारी बौछार पड़ने की पूरी संभावना है। आने वाले दिनों में तेज आंधी का दौर जारी रह सकता है। फिलहाल तो तेज हवा की रफ्तार रुकी और बारिश थमी तो मौसम सुहाना हो गया।
3: चिलचिलाती गर्मी और उमस भरी हवाओं के बाद मौसम एक बार फिर से पूरी तरीके से बदल चुका है। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से इस वक्त मौसम बेहद ही सुहाना हो चुका है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो है बारिश की शुरुआत हो चुकी है और ये पहले से ही मौसम विभाग का अनुमान था कि आज बारिश जो है वो देखी जा सकती है, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ जो है इस वक्त जो है सर्कुलेशन जो है वो पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है, जिसका अदर जो असर था वो देखने को पहाड़ी राज्यों पर मिलेगा, लेकिन उसका कहीं ना कहीं असर जो है मैदानी इलाकों पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। और मौसम विभाग ने इसी चीज को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया था कि पहाड़ी राज्यों में, चाहे हिमाचल की बात हो, उत्तराखंड की बात हो या जम्मू कश्मीर की बात हो, हर तरफ अच्छी बारिश जो है देखी जाएगी, आंधी तूफान जो है वो भी देखा जा सकता है। लेकिन बात अगर मैदानी राज्यों की जाए तो यूपी हो, पंजाब की बात हो, राजस्थान की बात हो या दिल्ली एनसीआर की बात हो, यहां पर भी ऑरेंज अलर्ट बारिश का जो है वो दिया गया था। और आप देख सकते हैं कि तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ इस वक्त, सीपी की तस्वीरें दिखा रही हूँ कि किस तरीके से झमाझम बारिश की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और कहीं ना कहीं अब लोगों को राहत जरूर मिलेगी। क्योंकि अगर हम तापमान की बात करें तो तापमान सामान्य से कम जरूर बने हुए थे, लेकिन उमस की स्थिति जो है वो लगातार लोगों को परेशान कर रही थी, क्योंकि अरब सागर से जो लगातार हवाएं आ रही थी उसकी वजह से तापमान कम होने के बाद बावजूद लोगों को गर्मी परेशान कर रही थी, लेकिन जो ये बारिश की शुरुआत हुई है इसी तरीके से आने वाले 3-4 दिन तक मौसम जो है सुहाना रहेगा। लगातार बारिश जो है वो हो सकती है, साथ ही साथ हवाएं चलेगी, लेकिन तापमान में जो है थोड़ी कमी जरूर देखी जाएगी।
0: मौसम अच्छा है, गर्मी से राहत है और आगे भी हल्की या मध्यम बारिश का अनुमान है। हाँ, सावधानी इसलिए जरूरी है क्योंकि कई इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है।
4: अभी एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस है, वो समय नॉर्थ पाकिस्तान पे एक सर्कुलेशन की फॉर्म में है, स्ट्रेंथन में है, और उसके साथ ही जहाँ जैसे WD बना हुआ है, जो हवाएं ली हुई अरबियन सी से इस एरिया में आ रही है, जिसके कारण आप थोड़ा ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है और विच इज़ फेवरेबल फॉर रेनफॉल एक्टिविटी। तो हमारा यही है कि आने वाले 2 से 3 दिन जहाँ पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक्टिविटी रहेगा, जिसके लिए हमने जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के लिए हमने रेनफॉल के साथ हेल स्टॉर्म का वार्निंग भी दिया है। पंजाब, हरियाणा हम अनुमान लगा रहे हैं जो हवाओं की गति है वो 50 से 60 किलोमीटर रह सकती है। इसके अलावा NCR दिल्ली की बात करें, वहाँ भी हमारा 2 दिन के लिए येलो अलर्ट है, वहाँ भी हमारा यह है कि 40 से 50 किलोमीटर तक हवाएं रहने का अनुमान।
0: मॉनसून से पहले ही मौसम ने माहौल बना दिया है, न सिर्फ दिल्ली NCR बल्कि राजस्थान से लेकर बिहार तक बादल गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। और
5: अब बात मॉनसून की। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने आधिकारिक रूप से केरलम में दस्तक दे दी है। हालांकि अनुमान के हिसाब से कुछ देर से हुई है, लेकिन मॉनसून दुरुस्त आया है। केरल के कई जिलों में बारिश हो रही है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अब मॉनसून धीरे धीरे देश के अन्य हिस्सों की ओर बढ़ेगा, जिससे कि गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। आइए समझते हैं मॉनसून का सफर इस रिपोर्ट में।

0: समझ लीजिए आज से भारत का मेघ मल्हार शुरू हो चुका है। मॉनसून ने दस्तक दे दी है। केरलम में बादलों का कारवार पहुंच चुका है। अब इंतजार इन बादलों के पूरे हिंदुस्तान पर छाने का है। पहले मॉनसून के 25 मई को केरलम में पहुंचने की भविष्यवाणी थी, लेकिन मॉनसून ने दस्तक देने के लिए 4 जून की तारीख चुनी और ऑफिशियली देश में आज से बारिश का मौसम शुरू हो गया है।
1: तपती गर्मी से झुलस रहे हिंदुस्तान के लिए 4 जून एक अच्छी खबर लेकर के आया, और वो खबर ये है कि दक्षिण पश्चिम मानसून भारत पहुंच चुका है, उसने केरल में दस्तक दी है। हालांकि 3-4 दिनों की देरी है, लेकिन मौसम का जो आंकड़ा है जिस तरह हम इसे जोड़ते हैं उसमें इस 3-4 दिन की देरी को बहुत ज्यादा देरी नहीं मानते हैं। अभी मौसम विभाग का कहना है कि वो अपनी दिशा में है और परिस्थितियां इतनी अनुकूल हैं कि वो आगे उत्तर तमिलनाडु कर्नाटक होते हुए पश्चिमी घाट के इलाके में अगले 2 से 3 दिनों में उसकी रफ्तार बढ़ेगी। धीरे धीरे वो महाराष्ट्र कोंकण और उसी के साथ साथ इसकी दिशा जो है वो आगे उत्तर पूर्व तक जाएगी। जैसे बंगाल की खाड़ी पार करने के बाद उत्तर पूर्व भारत की ओर मानसून बढ़ेगा, हिमालय से टकरा करके उसकी दिशा फिर पश्चिम लौटेगी और उसके बाद उसी मानसून का असर हम गंगा के जो मैदानी इलाके वहां देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड और उसी के साथ साथ आगे मध्य प्रदेश हरियाणा दिल्ली पंजाब और उसी के साथ जल्दी मानसून पूरे देश पर छा जाएगा। तो मानसून की रफ्तार अपनी पकड़ चुका है, भारत में उसने दस्तक दे दी है। इसी के साथ जाहिर अगले 2 से 3 दिनों केरल और

0: हवाओं की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी बढ़ गई है, 4.5 तक है। लो लेवल में जो विंड्स हैं वो 20-25 नॉट्स हैं, और ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो मानसून है जहाँ उसके कारण वाइड स्प्रेड रेनफॉल एक्टिविटी रहा इस रीजन में, तो हमने मानसून को जहाँ कवर किया है। अगर आप आने वाले दिनों की बात करें तो हमारा अनुमान ये है कि केरला, कोस्टल कर्नाटका, वहाँ पे वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी, आल्सो वेरी हैवी मीन 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी ऑलमोस्ट पूरा वीक होती रहेगी। उसके साथ ही कर्नाटक, कोंकण, गोवा, वहाँ भी रेनफॉल एक्टिविटी, हैवी रेनफॉल होने का अनुमान है। तमिलनाडु, देन इंटीरियर कर्नाटका, जहाँ रेनफॉल एक्टिविटी ऑलमोस्ट हैवी रहने का अनुमान है।
1: मई महीने में आईएमडी ने अंदाजा लगाया था कि मॉनसून 25 या 26 मई के आसपास केरल में पहुंच सकता है, लेकिन तमाम वजहों से मॉनसून की रफ्तार अचानक धीमी पड़ गई। बाद में मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बदलाव किया और 4 जून के आसपास मॉनसून के केरलम पहुंचने की भविष्यवाणी की गई, जो आखिरकार सही साबित हुई।
2: को दिखाती हूँ, हर किसी को इंतजार था 26 मई की, जो है तारीख पहले दी गई थी कि केरल में मॉनसून जो है 26 मई को दस्तक देगा, लेकिन देरी हुई, फिर 1 जून की तारीख आई, लेकिन अब फाइनली जो है 4 जून आज हो चुका है और 4 जून को जो मॉनसून है वो केरल में दस्तक दे चुका है। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कर्नाटका के हिस्से हुए, कोस्टल कर्नाटका जो हो गया, तमिलनाडु का कुछ हिस्सा जो है कवर करते हुए बे ऑफ बंगाल, और इस साइड पर जो है आपको दिखेगा ये जो ब्लू लाइन आप जो देख रहे हैं, ये इस वक्त हमारा ऑनसेट है। ये जो डेट आज की जो हिट कर गई है, क्योंकि आज से जो मानसूनी बारिश है उसकी शुरुआत हो चुकी है, और अब आने वाले 6 से 7 दिन अच्छा मौसम जो है वो रहने की उम्मीद है। अच्छी खासी बारिश जो है वो देखी जाएगी, 12 सेंटीमीटर से ज्यादा जो बारिश है वो जो है उसका अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही मैं ये चीज भी आपको दिखाऊंगी कि जो लगातार जो मानसून है वो आगे बढ़ते हुए नजर आएगा, तो इसके साथ ही साउथ से शुरू हुआ है लेकिन धीरे धीरे जो है वो नॉर्थ ईस्ट साइड में भी जो है मानसून जो है वो देखा जाएगा। लेकिन अगर मैं बाकी पूरे आपको देश की मैं स्थिति इस वक्त दिखाना चाहूँ कि किस तरीके से मौसम का हाल है, वो आप इस मैप में देख सकते हैं। ये पूरा आपको ऑरेंज अलर्ट जो है जगह जगह आपको नजर आने वाला है, ऑरेंज या फिर येलो, लेकिन बारिश का अलर्ट जो है देश के अलग अलग राज्यों में इस वक्त आपको नजर आ जाएगा।
1: केरल में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग मॉनसून की औपचारिक घोषणा के लिए जरूरी स्टैंडर्ड की निगरानी कर रहा था। जब ये मानक पूरे हुए तब जाकर मॉनसून का ऑफिशियली ऐलान किया गया। गुरुवार सुबह भी केरलम के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है। अलपुजा, कोट्टायम और एर्नाकुलम जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मॉनसून के केरलम पहुंचने के बाद अब देश के दूसरे हिस्सों, खासकर उत्तर भारत पर नजरें टिकी हुई है, जहां लोग कई सप्ताह से भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं और बादलों के बरसने की आस लगाए बैठे हैं। आमतौर पर मॉनसून जून के दौरान तेजी से आगे बढ़ता है। ये पहले पश्चिमी तट, फिर पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों को कवर करता है और फिर 15 जून के आसपास मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पहुंचता है। इसके बाद मॉनसून पूर्वी और उत्तर भारत की ओर बढ़ता है। दिल्ली की बात की जाए तो आमतौर पर मॉनसून 27 जून के आसपास पहुंचता है। वहीं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और भारत के अधिकांश हिस्से जून के अंत या फिर जुलाई के पहले सप्ताह तक मॉनसून की चपेट में आ जाते हैं। केरल में स्वागत के बाद अब मौसम वैज्ञानिक इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि मॉनसून आगे भी अपनी निर्धारित वक्त से बढ़ता रहे। दिल्ली से आशुतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: मैदानी इलाकों में मौसम का मिजाज तो बदला है, लेकिन पहाड़ों पर मौसम दिल खुश करने वाला है। शिमला में और आसपास बारिश हो रही है, लोग सतरंगी छतरियों और रेनकोट में मॉल रोड पर मस्ती करते नजर आए। तो वहीं कुल्लू मनाली में पहले से ही सैलानियों का हुजूम है। हिमाचल प्रदेश के साथ कश्मीर में भी इन दिनों पर्यटकों की भारी भीड़ है। चलिए आपको पहाड़ों पर मौसम की हसीन तस्वीर दिखाते हैं।

रंग बिरंगी छतरियां लिए और रेनकोट में घूमते लोग। शिमला के मॉल रोड पर ये नजारा मौसम जैसा ही दिलकश है। यूं भी शिमला में मौसम सुहाना था, पर गुरुवार दोपहर जो मूसलाधार बारिश शुरू हुई, शहर की फिजा ही बदल गई। क्योंकि सिर्फ पानी नहीं बरसा, ओले भी गिरे और देखते ही देखते शिमला की सड़कों पर सफेद चादर बिछ गई। ये मौसम, ये फिजा, ऐसी रौनक

0: सैलानियों को इससे बेहतर भला और क्या चाहिए। लोग रिट्ज़ और मॉल रोड पर घूमने निकल पड़े। शिमला वैसे भी इन दिनों सैलानियों से गुलजार है।
1: बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पे आके, वाकई हमें खुशी मिली है कि ऐसा मौसम वहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता है। अभी हमारे बच्चे भी यहाँ पे आए हैं साथ लेके, हम वो भी काफी खुश हैं, तो हमें काफी अच्छा फील हो रहा है कि हमने ऐसा नहीं देखा है। हम फिरोजपुर, हमारा आरएसजी राजरतन स्कूल है जहाँ से हम आए हैं, हमारे साथ 15 स्टूडेंट है। हम कैंप आए थे यहाँ पे, तो लेकिन यहाँ पे हम आए शिमला बच्चों को घुमाने के लिए माल रोड पे, तो बच्चे भी हमारे इंजॉय कर रहे हैं। वाकई में हमें काफी खुशी हो रही है यहाँ पे और बच्चे भी काफी खुशी मना रहे हैं।
0: शिमला में पानी इतना बरसा कि सड़कों पर जमा हो गया, यहाँ तक कि आवाजाही रुक गई और जून में ठंड का एहसास होने लगा। स्थानीय लोगों के लिए ये परेशानी का सबब हो सकता है और जो घूमने फिरने गए हैं वो मौसम का जश्न मना रहे हैं। शिमला ही नहीं, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर में भी आंधी और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट है। हिमाचल में अगले 6 दिन तक मौसम खराब रहने और बारिश का पूर्वानुमान है, लेकिन ऐसे मौसम में हिमाचल में सैलानियों का हुजूम है। ये तस्वीर चंबा के खजियार की है, जो इन दिनों लोगों की पसंदीदा जगह बना हुआ है। चारों ओर फैले देवदार के पेड़, हरी घास से सजा विशाल मैदान और बीच में मौजूद छोटी झील यहाँ की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। यूं ही इसे हिमाचल का स्विट्जरलैंड नहीं कहते। ऐसी खूबसूरत जगह पर परिवार के साथ फुर्सत के पल बिताना एक अलग एहसास है। ठीक ऐसा ही एहसास लोगों को मनाली में मिलता है, जहां इन दिनों सैलानियों का जमावड़ा है। कुल्लू में नदी किनारे बोटिंग हो रही है, एडवेंचर स्पोर्ट्स का मजा लिया जा रहा है। इलाका सैलानियों से गुलजार है। हिमाचल यूं भी सैलानियों को खूब पसंद आता है और जब मैदानी इलाकों में गर्मी बेहिसाब हो तो कुल्लू मनाली से प्यार हो जाता है। मई के महीने में करीब रिकॉर्ड 66,000 गाड़ियों ने कुल्लू में एंट्री की। जून में भी यही आंकड़ा रहने की उम्मीद है। मौसम के रुख से सैलानी भी खुश हैं और कारोबारी भी।
2: हम लोग राजस्थान से यहाँ आए हैं। राजस्थान में दिन में इतनी गर्मी है, इतनी हीट वेव चल रही है कि वहाँ दिन में हम लोग बाहर भी नहीं निकल पाते थे, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। 4-7 दिन हम लोग यहाँ शांति से, सुकून से रहने के लिए, छुट्टियाँ एंजॉय करने के लिए आए हैं। राजस्थान से यहाँ एनवायरनमेंट काफ़ी चेंज है और काफ़ी कूल है, इसलिए हम लोगों ने मनाली चुना है और यहाँ का एनवायरनमेंट और ग्रीनरी सब कुछ बहुत अच्छी है। राजस्थान से यहाँ काफ़ी चेंज है।
0: हिमाचल की तरह सैलानियों का रुख जम्मू कश्मीर की ओर भी है। बांदीपोरा में बर्फबारी हो रही है, नीचे पहाड़ों पर सफेद बर्फ लिपटी है और तेज ठंडी हवा जैसे सुई चुभा रही है। फिर मैदानी राज्यों से गए सैलानी तो इसी मौसम का मजा लेना चाहते हैं। ऊनी कपड़े और जैकेट से लैस होकर लोग वादी का लुत्फ उठाने इन दिनों करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर राजदान दर्रे के पास है।
3: हम लोग अभी गुरेज जा रहे हैं, आज हमें ये मौका मिला है अच्छा, और इतना सुहाना मौसम और स्नोफॉल हुआ है और यहाँ पर हमें ठहर के मैगी खाने का मौका मिला है और यहाँ के लोग इतने मेहमान नवाजी से हमारा खिदमत किया है, उसके लिए हम उनके भी शुक्र गुजार है।
4: साउथ से पहुँच गए नॉर्थ, जन्नत में कश्मीर जैसे सब कहते हैं, ट्रूली टू द वर्ल्ड कश्मीर इज जन्नत। तो हमें तो इतना अच्छा वेदर लग रहा है, इट्स सो ब्यूटीफुल। हमें वी आर लकी टू हैव स्नोफॉल एंड सच ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर वादियां हैं। हमको लग रहा है कि हम मूवी में है, कोई रील भी बनाते हैं। सो इट्स वंडरफुल, वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम एंड सच रिमोट प्लेसेस आर वेरी गुड टू एक्सप्लोर।
5: सब लोग यहाँ पे आए, विजिट करें, ये जगह को देखें और जगह के यहाँ पे गवर्नमेंट को भी बोलेंगे इस जगह को प्रमोट करें, जिससे सब लोगों को इसके बारे में पता लगे।
6: 11 बजे हम लोग पहुँच के थे गुरेज वैली के लिए, निकल गए थे वहाँ पे, हम लोगों ने रात को स्टे किया एंड अभी जब हम रिटर्न आ रहे थे तो ऊपर हमें बारिश मिली थी एंड यहाँ पे आते आते पूरी स्नो है, तो बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। मुंबई में अभी 40 डिग्री चल रहा है, तो वहाँ से यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है।
7: वातावरण कैसा लग रहा है?
6: बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ बर्फ हो रही है, बारिश भी हो रही है। हमने श्रीनगर में गर्मी देख ली, यहाँ पे ऊपर आके बारिश देख ली, अभी बर्फ हो रही है, तो कम से कम 5 डिग्री तो चल रहा है यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ठंडी है।
0: वादी में मौजूद जानी पहचानी और मशहूर जगहों पर ही नहीं जा रहे बल्कि खूबसूरत वादी में नए इलाकों की भी तलाश है। अनंतनाग जिले में वेरीनाग के करीब ये इलाका सैलानियों को खूब पसंद आ रहा है। डेडबल कपरान नाम के इस इलाके में साफ पानी वाली पहाड़ी नदी है। ऊंचे पहाड़ों के साए में दरख्तों का हरा आंचल है। चलते चलते चाहे जितनी दूर निकल जाइए थकान का एहसास नहीं होता। वादी में ये इलाका एक छिपा हुआ खजाना कहा जाता है जिसकी ओर बड़ी तादाद में सैलानी आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि यहाँ भीड़भाड़ कम है, प्रकृति का एहसास ज्यादा है। गर्मी से राहत पाने के लिए जम्मू कश्मीर से बेहतर जगह भला क्या होगी, लेकिन जब बादल गरज रहे हो, क्लाउड बर्स्ट हो रहा हो तो सैलानियों के लिए सावधानी भी जरूरी है। बूढ़ा में बादल जमकर बरसे और लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे पर कई जगह मलबा जाम हो गया और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, कई सैलानी इसमें फंसे। हालांकि सभी को सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, "Remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific." Two, when it's time, just say, "Play Hot Mics on TuneIn." And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: चमोली में गुपकाल ट्रैकिंग कर वापस लौटा पहला दल, गमशाली से 26 मई को हुआ था रवाना, टीम में शामिल थे 7 ट्रैकर। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक केदारनाथ धाम पहुंचे करीब 11 लाख श्रद्धालु, धाम में लगातार बदल रहा मौसम का मिजाज। शिरडी के साई दरबार से आई आस्था की अनोखी तस्वीर, श्रद्धालु ने साई बाबा को अर्पित किया सोने का मुकुट, करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। दिल्ली NCR में बारिश के बाद मौसम सुहाना, तापमान में गिरावट से लोगों को मिली गर्मी से राहत, मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए जारी किया अलर्ट। इंडोनेशिया के चिड़ियाघर में गूंजी चार नन्हे मेहमानों की किलकारी, बाघिन दीनी ने 4 शावकों को दिया जन्म, सफारी पार्क में कुल 8 हुई बाघिनों की संख्या।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: देश को गर्मी से मिली राहत, मौसम विभाग ने आज केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून के शुरू होने की आधिकारिक घोषणा की। मानसून ने पूरे केरल और लक्षद्वीप द्वीपों को सफलतापूर्वक किया कवर, बड़े हिस्से का उत्तर की ओर बढ़ना तय। मौसम विभाग ने देश भर में भारी बारिश की भी दी चेतावनी, भीषण गर्मी झेल रहे इलाकों में लोगों को मिलेगी राहत। IMD के मुताबिक अगले 48 से 72 घंटों में आगे बढ़ेगा मानसून, 2 से 3 दिनों में गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, चुनिंदा हिस्सों, कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में पहुंचेगा मानसून। आने वाले 2 से 3 दिन पहाड़ी राज्यों में बारिश और आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। दिल्ली NCR में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है, कई इलाकों में जबरदस्त बारिश, तापमान में आई गिरावट। तेज आंधी और बारिश के बीच दिन में ही छाया अंधेरा, दिल्ली NCR में लोगों को गर्मी से राहत। कुछ देर की बारिश से सड़कों पर भरा पानी, राजधानी में धीमी पड़ी ट्रैफिक की रफ्तार। नोएडा में भी तेज आंधी के साथ हुई झमाझम बारिश, लोगों को जलती गर्मी से राहत, लेकिन जल भराव के कारण यातायात हुआ धीमा। नोएडा सटे गाजियाबाद में भी तेज हवाओं के साथ चली धूल भरी आंधी, विजिबिलिटी बेहद कम। जयपुर में सूरज की तपिश से लोगों को मिली राहत, आसमान से बरसे बादल, मौसम सुहाना। देहरादून में भी हुई बारिश, उत्तराखंड के पहाड़ों के साथ मैदानों में भी हल्की ठंडक का एहसास। भोपाल में भी बरसे बादल, बढ़ती गर्मी के बीच लोगों ने ली राहत के सांस। सोनीपत में भी मौसम ने ली अचानक करवट, तेज हवाओं और आंधी के बीच जोरदार बारिश। पहाड़ों पर भी राहत की फुहार, शिमला में छूं के बरसे बादल, मौसम हुआ सुहाना। मनाली में जोरदार बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। बारिश के बाद लगातार बढ़ रही सैलानी की संख्या, कारोबारियों में भी खुशी की लहर। कुल्लू में बदला मौसम का मिजाज, भारी बारिश से गर्मी में मिली बड़ी राहत। पर्यटकों को लुभा रहा जम्मू कश्मीर का सुहाना मौसम, उत्तर भारत में पड़ रही प्रचंड गर्मी से राहत के लिए छुट्टियां मनाने जम्मू कश्मीर पहुंच रहे लोग। खूबसूरत वादियों और साफ हवा के बीच छुट्टियों को यादगार बनाने पहलगाम घाटी पहुंच रहे पर्यटक। गुपकाल ट्रैकिंग कर लौटा इस साल का पहला दल, बर्फबारी और मौसम की चुनौती के बीच की चढ़ाई। वैशाली से 26 मई को गुप्तकाल के लिए रवाना हुआ था ये दल, इसमें 7 ट्रकर शामिल। पांच हजार 807 मीटर की ऊंचाई पर है सबसे दुर्गम ट्रैकिंग रूटों में शुमार गुप्तकाल ट्रैकिंग रूट, इस दिन का था ट्रैकिंग अभियान। इस दल में दिल्ली, पंजाब, कोलकाता और महाराष्ट्र के ट्रैकिंग के शौकीन शामिल। गमशाली से होते हुए जब गुप्तकाल पहुंचा था ये दल, सीक्रेट पास के नाम से मशहूर है ये यात्रा, हिमालय के सबसे जोखिम भरे और साहसिक ट्रकों में नाम शुमार। केदारधाम में दिनों पल पल बदल रहा मौसम, बादलों से घिरा नजर आया मंदिर परिसर। कभी बारिश तो कभी धूप के बीच मौसम की आंख में चौली जारी, धाम में ठंड में भी हुई बढ़ोतरी। धाम के दर्शन करने के बाद लौटे यात्रियों से भी प्रशासन ले रहा फीडबैक, रुद्रप्रयाग के डीएम रुद्रप्रयाग संगम व्यू पॉइंट पर यात्रियों से किया संवाद। बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंचे सबसे ज्यादा भक्त, आंकड़ा पहुंचा करीब 11 लाख। बद्रीनाथ धाम को लेकर भी भक्तों में जोरदार उत्साह, अब तक करीब 9 लाख से ज्यादा लोगों ने किए दर्शन। केदारनाथ धाम में स्वच्छता की दिशा में जिला प्रशासन की नई पहल, अब यात्री भी गौरी कुंड ला सकेंगे धाम से सूखा कूड़ा। केदारनाथ धाम में स्वच्छता को लेकर कैरी मी बैक नाम से अभियान, श्रद्धालु स्वेच्छा से केदारनाथ धाम से सूखा कूड़ा अपने साथ गौरी कुंड लाकर रहे फेंक। अभियान के तहत 50 से अधिक यात्री केदारनाथ से कूड़े के बैग को गौरीकुंड पहुंचा चुके हैं, भक्तों को किया जा रहा जागरूक। गर्मी बैग अभियान का उद्देश्य केदारनाथ धाम को कूड़ा कचरा मुक्त करना है, साथ ही यात्रा को अधिक व्यवस्थित और पर्यावरण अनुकूल बनाना। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं से अभियान में सहभागिता करने की अपील की, नगर पंचायत केदारनाथ एवं सहयोगी संस्थाओं को जुड़ने को कहा। शिरडी साई बाबा मंदिर में भक्त ने किया बेशकीमती दान, साई बाबा मंदिर को अर्पण किया सोने का मुकुट। सैंतीस ग्राम सोने से बना है यह सुंदर मुकुट, करीब 34,70,000 रुपए बताई गई कीमत। इस शानदार मुकुट पर की गई है सुंदर नकाशी, सफेद नगों के बीच रंग नगों से लिखा है ओम। पंजाब के अजय कुमार गोयल लिए साई को चढ़ाया है यह सुंदर मुकुट, कैंसर से पीड़ित पिता के लिए 2 साल की ज्यादा जिंदगी की मुराद पूरी होने पर किया दान। देश दुनिया में है साई के लाखों भक्त, हर साल अपनी मनोकामना पूरी होने पर साई के दरबार में अनगिनत चीजें करते हैं भेंट। कोटा किसान जग मंदिर बना पर्यटकों की पहली पसंद, अपनी खूबसूरती और ऐतिहासिक विरासत से पर्यटकों को कर रहा आकर्षित। सौ 80 साल पुराना किशोर सागर आज भी आकर्षण का केंद्र, 1346 में बने किशोर सागर तालाब का इतिहास 7 शताब्दियों पुराना। से 40 में निर्मित जग मंदिर कोटा नरेश ने रानी ब्रज कुंवर की पसंद और प्रकृति प्रेम को ध्यान में रखकर बनवाया था, कोटा की पहचान बना हुआ यह मंदिर। रात की रोशनी में और निखरता है जग मंदिर, लाल पत्थरों से बना महल तालाब के बीच तैरते राजमहल जैसा दिखाई देता है। धार्मिक और पर्यटन गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना क्षेत्र, जग मंदिर के आसपास मंदिर उद्यान और शांत वातावरण पर्यटकों को देते हैं सुकून। अहमदाबाद में कल से शुरू होने वाली पहली विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के आयोजन पर वर्चुअली जुड़े प्रधानमंत्री, एक अरीना में 8 जून तक चलेगी प्रतियोगिता। मोदी ने दुनिया में योग की बढ़ती लोकप्रियता को सराहा। अपने संबोधन में बोले, योग मानवता के लिए सबसे बड़ा तोहफा। इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता में 60 से ज्यादा देशों के 500 से ज्यादा एथलीट लेंगे हिस्सा। 7 कैटेगरी में अपनी कला एथलेटिक्स का करेंगे प्रदर्शन। प्रतियोगिता में पारंपरिक योगासन के साथ कई तरह की प्रतिस्पर्धाओं का होगा आयोजन। वीर द लायन रखा गया है पहली विश्व योगासन खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ। योगासन को प्रतिस्पर्धी वैश्विक खेल के रूप में स्थापित करना और 2036 के ओलंपिक में शामिल कराने की दिशा में कदम बढ़ाना प्रतियोगिता का मकसद। मारुति सुजुकी ने पेश की देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार वैगनार, जिसे खास तौर पर इथेनॉल मिश्रित ईंधन के साथ चलने के लिए किया गया है डिजाइन। एडवांस ईसीयू कैलिब्रेशन के साथ आती है यह शानदार कार, जो कि E20 यानी कि 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से लेकर E100 यानी कि लगभग शुद्ध इथेनॉल पर चलने के लिए खुद को ढालने में सक्षम। लॉन्च के दौरान केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी रहे मौजूद। कंपनी सीईओ हिसाशी ताकेउची ने आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ाया बड़ा कदम। गडकरी ने कहा कि कच्चे तेल पर देश की निर्भरता कम करेंगे इथेनॉल जैसे जैव ईंधन, साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम। देश का एक पसंदीदा ब्रांड है मारुति का वैगनार, जिसमें देश में लंबे समय से सीएनजी और एलपीजी वाली गाड़ियों के क्षेत्र में निभाई है अहम भूमिका। सेना की ताकत में होगा इजाफा, जल्द 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के स्वदेशी सैन्य ड्रोन खरीदने की तैयारी। इतिहास की यह सबसे बड़ी ड्रोन खरीद। इस साल स्वदेशी कंपनियों से लगभग 16,000 करोड़ से ज्यादा कीमत के सैन्य ड्रोन खरीदने की तैयारी कर रहा है भारत। ये देश के इतिहास में ड्रोन की अब तक की सबसे बड़ी खरीद। आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में भारत में 600 से ज्यादा कंपनियां बना रही है ड्रोन और उनके पुर्जे, जिनमें से 100 से ज्यादा कंपनियां रक्षा क्षेत्र के लिए कर रही काम। आज भारतीय वायुसेना ने रचा इतिहास, पहली बार नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा IAF का Su-30 MKI विमान। लड़ाकू विमान लैंड करते ही जोरदार गड़गड़ाहट से गूंज उठा आसमान। IAF की जबरदस्त ऑपरेशनल क्षमता का उदाहरण है यह नजारा। उत्तर प्रदेश में नीम करोली बाबा सर्किट और बुंदेलखंड फोर्ट सर्किट का होगा विकास। सीएम योगी ने प्रदेश के टूरिज्म विभाग के साथ मीटिंग में दी मंजूरी। बैठक में चित्रकूट स्थित प्राचीन सोमनाथ मंदिर के संरक्षण कार्यों की भी हुई समीक्षा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण की जिम्मेदारी पर दिया जोर। सहारनपुर में किसानों को मिल रहा है किसान योजनाओं का फायदा। खेती की लागत कम करने और आर्थिक सहायता मिलने में मददगार है केंद्र किसान योजनाएं। आधुनिक तरीके अपनाकर खेती को फायदेमंद बना रहे किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड और सोलर पंप योजना जैसी पहले किसानों के बीच काफी लोकप्रिय है। गढ़चिरौली में भी केंद्र और राज्य की योजनाओं का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बन रहे किसान, बीज दवाई और मजदूरी के भुगतान में मिल रही बड़ी राहत। यूपी बोर्ड के छात्रों के पास सुधार का और मौका, इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए 27 जून तक आवेदन। कांवड़ यात्रा के लिए दिल्ली सरकार बढ़ा सकती है आयोजन समिति को दी जाने वाली धनराशि, यात्रा के सुचारू संचालन के लिए फैसला। वेमना जी यात्रा के दौरान पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम, अनंतनाग पुलिस ने लॉन्च किया पहचाना। सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म पेडी, फिल्म में रामचरण, जानवी कपूर, शिवा, राजकुमार, जगपति बाबू, दिव्येंदु, बोमन ईरानी और रवि कृष्णता अहम रोल में। सिनेमाघरों में रिलीज हो गई फिल्म बंदर, बॉबी देओल ने फिल्म में समर का किरदार निभाया। एक बार फिर से पर्दे पर छाने वाला है डेविड धवन का 90 का जादू। कल सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म है जवानी तो इश्क होना है।
3: क्योंकि मुझे एक बच्चा चाहिए सर।
2: एक बार फिर से दर्शकों का मनोरंजन करने आ रही है सबकी चहेती मिश्रा फैमिली। कल सोनी लिव पर रिलीज होगा वेब सीरीज गुल्लक का नया सीजन। एक्ट्रेस करिश्मा कपूर अब एक पुलिस अफसर के रोल में आएंगी नजर। कल Z5 पर रिलीज होगी ब्राउन। के बाद एक्टर मोहनलाल अब OTT पर दिखाएंगे जादू। कल Z5 पर रिलीज हो रही है उनकी फिल्म पैट्रियट। कल Amazon प्राइम पर स्ट्रीम होगी वेब सीरीज द पिरामिड स्कीम, जिसमें मुख्य भूमिका में है परमवीर सिंह चीमा, रणवीर शौर्य, शेखर सुमन। टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, विराट कोहली ODI सीरीज से हुए बाहर। हैमस्ट्रिंग में चोट लगने के कारण विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से हुए बाहर, चल रहा इलाज। जून से खेला जाएगा भारत अफगानिस्तान के बीच टेस्ट मैच, चंडीगढ़ में होगा मुकाबला। भारत अफगानिस्तान के बीच खेला जाएगा 3 वनडे मैच, 13 जून से 20 जून तक होगा मुकाबला। भारत को जल्द मिलेगा T20 के लिए नया कप्तान, श्रेयस अय्यर का नाम आगे, सूर्या का जाना लगभग तय। फीफा वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह तैयार है कनाडा का वैंकूवर शहर, इसमें एक विशाल फुटबॉल की कलाकृति और पहाड़ की चोटी पर फहराया गया एक बहुत बड़ा कनाडाई झंडा शामिल है। मुख्य आकर्षण शहर के साइंस वर्ल्ड का गुंबद है, जिसे अब द ब्यूटीफुल डोम में बदल दिया गया। ये गुंबद टूर्नामेंट के आधिकारिक मैच बॉल एडिडास ट्रियोंडा का एक विशाल और 360 डिग्री वाला रेप्लिका है। विशाल कलाकृति का डायमीटर 40 मीटर है, साथ ही इस ढांचे पर 131 खास आकार के पैनल लगाए गए हैं। शहर में एक और जगह ग्रॉस माउंटेन पर एक विशाल कैनेडाई झंडा फहराया गया है, इसे द कट नामक स्की रन के ऊपर लगाया गया है। इस झंडे की लंबाई 160 मीटर और चौड़ाई 80 मीटर है, जो कि कनाडा के लगभग 1.5 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। सऊदी अरब के खुबार में कैमरों का एक अनोखा म्यूजियम बना चर्चा का विषय। कैमरा के शौकीन माजिद खशखास ने अपने घर को प्राइवेट म्यूजियम में किया तब्दील। इस प्राइवेट म्यूजियम में 2300 से ज्यादा चीजें मौजूद, जिसमें फोटोग्राफी के शुरुआती आइडिया से लेकर आज के ड्रोन और जासूसी कैमरे तक शामिल। इस कैमरा म्यूजियम में कई स्टिल और वीडियो कैमरे मौजूद, इसमें शुरुआती दौर के वीडियो कैमरों के लिए एक खास हिस्सा समर्पित। म्यूजियम में मौजूद एक इंटरैक्टिव प्रिंट फोटो डेवलपिंग स्टेशन, जहां दोहराई जा सकती है प्रिंट फोटोग्राफी डेवलप करने की प्रक्रिया। कलेक्शन में माइकल जैक्सन और सऊदी अरब के राजा सलमान जैसी मशहूर हस्तियों द्वारा इस्तेमाल किए गए कुछ बहुत ही दुर्लभ कैमरे भी शामिल। देश दुनिया के इंटरनेशनल नीलामी से भी इकट्ठा किए हैं कैमरे। जर्मनी के बवेरिया शहर में दिखा सुंदर नजारा, मशहूर स्टेफेलसी झील पर दिखी फूलों और चर्च के बैनरों से सजी नावें। जर्मनी में मनाए जाने वाले कॉर्पस क्रिस्टी पर्व का हिस्सा है ये सजी धजी नावें। इस दौरान ग्रामीणों ने पारंपरिक पोशाक पहनकर एक अनोखे जुलूस में भी लिया हिस्सा। चर्च की प्रार्थना सभा के बाद नाव में सवार होकर झील के पार वूर्थ द्वीप तक जुलूस में शामिल हुए लोग। इस दौरान प्रार्थना गीत और ब्रास बैंड का संगीत ने बांधा समा। कैथलिक पर्व है कॉर्पस क्रिस्टी, जो ईसा मसीह की उपस्थिति का उत्सव के रूप में मनाया जाता है। 1935 से चली आ रही है पर्व की ये प्रथा, स्थानीय पहचान और समुदाय का उत्सव भी है ये पर्व। लंदन में आर्टिस्ट माजा पैट्रिक ने एक नई प्रदर्शनी पेश की, जिसमें एक रोबोट द्वारा सिंथेटिक आर्टिक पॉपीज को एक लाइट बॉक्स में व्यवस्थित किया गया है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
1: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices, so you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here on TuneIn.
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
2: जिस किरदार ने कभी टीवी स्क्रीन पर बच्चों की कल्पनाओं को उड़ान दी थी, वो अब सिनेमाघरों में लौटने की तैयारी कर चुका है। 4 दशक पुरानी लोकप्रियता और नई पीढ़ी की उत्सुकता के साथ हीमैन फिर सुर्खियों में है। क्या है इसकी वापसी की कहानी, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में।
5: एक वक्त था जब ये 4 शब्द सुनते ही करोड़ों बच्चों की आंखों में चमक आ जाती थी। हाथ में जादुई तलवार, ताकत पर शरीर और बुराइयों को हराने का जज्बा। ही मैन सिर्फ एक कार्टून किरदार नहीं था, बल्कि 80 और 90 के दशक की पीढ़ी का सुपर हीरो था। भारत में भी ही मैन का क्रेज किसी सुपर हीरो से कम नहीं था। कॉमिक्स, खिलौने, पोस्टर और टीवी स्क्रीन, हर जगह ही मैन छाया हुआ था। और अब वही ही मैन एक बार फिर लौट रहा है, लेकिन इस बार टीवी स्क्रीन पर नहीं बल्कि बड़े पर्दे पर। करीब 4 दशक तक बच्चों और युवाओं की कल्पनाओं का हिस्सा रहने वाला ही मैन अब हॉलीवुड फिल्म मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स के जरिए सिनेमा घरों में दस्तक देने जा रहा है। फिल्म 5 जून 2026 को दुनिया भर के थिएटरों में रिलीज हो रही है। यानी जिन लोगों ने बचपन में ही मैन को टीवी पर देखा था, अब वो उसी किरदार को बड़े पर्दे पर देख सकेंगे। साथ ही आज की युवा पीढ़ी यानी जेन ज़ी भी अपने पापा के जमाने के सुपर हीरो से रूबरू हो सकेगी। भारत में उन दिनों विदेशी एनिमेटेड किरदारों की संख्या भले ही कम थी, लेकिन जो कुछ चेहरे घर घर तक पहुंचे, उनमें ही मैन सबसे लोकप्रिय नामों में शामिल था। उसकी ताकत, उसके दोस्त और बुराई के खिलाफ उसकी जंग, भारतीय बच्चों को किसी पौराणिक योद्धा की कहानी जैसी लगती थी। नई फिल्म में प्रिंस एडम यानी ही मैन की भूमिका निभा रहे हैं। निकोलस गैलेटजन उस पीढ़ी से नहीं है जिसने ही मैन का सुनहरा दौर देखा था, लेकिन इस किरदार की लोकप्रियता ने उन्हें भी इसका प्रशंसक बना दिया है।
6: I was born in 94, so I just really missed out on the initial wave of He-Man, but in a way was kind of raised with He-Man because Master of the Universe has always had kind of an internet presence. You know, I sent a lot of He-Man memes, Skeletor memes in my day. But obviously, you know, when hearing what this meant to so many people and then getting the script along and starting to become a fan of the original animation as well as Dolph's interpretation, and then falling in love with the script, really. That was when I think the love and I would say the desperation to play the character kind of grew.
7: I know it sounds crazy, but that sword is gonna show me the way home.
5: समय बदला, तकनीक बदली, मनोरंजन के तरीके भी बदल गए, लेकिन कुछ नायक ऐसे होते हैं जो कभी पुराने नहीं पड़ते। और अब वही ही मैन जिसने 80 और 90 के दशक में बच्चों की कल्पनाओं को ताकत दी थी, कल एक बार फिर सिनेमा घरों में अपनी ताकत दिखाने आ रहा है। शायद इसीलिए क्योंकि 4 दशक बाद भी उसके नाम में वही रोमांच, वही जादू और वही पावर बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
2: चमोली में गुप्त काल ट्रैकिंग कर वापस लौटा पहला दल, गमशाली से 26 मई को हुआ था रवाना, टीम में शामिल थे 7 ट्रैकर। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक केदारनाथ धाम पहुंचे करीब 11 लाख श्रद्धालु, धाम में लगातार बदल रहा मौसम का मिजाज। शिरडी के साई दरबार से आई आस्था की अनोखी तस्वीर, श्रद्धालु ने साई बाबा को अर्पित किया सोने का मुकुट, करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद मौसम सुहाना, तापमान में गिरावट से लोगों को मिली गर्मी से राहत, मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए जारी किया अलर्ट। इंडोनेशिया के चिड़ियाघर में गूंजी 4 नन्हे मेहमानों की किलकारी, बाघिन दी ने 4 शावकों को दिया जन्म, सफारी पार्क में कुल 8 हुई बाघों की संख्या।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे वैवाहिक जीवन में छोटी बड़ी समस्याओं के बारे में। जी हाँ, अक्सर ऐसा होता है हमारे जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं जो है वो आती रहती हैं, जिससे पति पत्नी के बीच में तनाव पैदा होता है। तो इन समस्याओं को दूर करने के समाधान क्या हैं और क्या होते हैं ये कारण, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
1: जो कोई भी व्यक्ति चारों समय सुबह, दोपहर, शाम और रात चारों समय ईश्वर से प्रार्थना करता है, कृपा के लिए बार बार कहता है, उसको जीवन के हर क्षेत्र में हमेशा सफलता मिलती ही है। ईश्वर की कृपा उसके ऊपर बनी रहती है।
0: और चलिए अब जान लेते हैं 5 जून 2026 यानी कि शुक्रवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 5 जून 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और आइए अब जानते हैं पंडित जी से कि अगर पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों पर नाराजगी लगातार रहती हो तो इसे दूर करने के उपाय क्या हैं?
1: जी देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि आपके वैवाहिक जीवन में जो छोटी छोटी समस्याएं आती हैं या कभी बड़ी समस्याएं आती हैं उनका कारण क्या है, और अगर आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं तो इससे बचने के उपाय क्या हैं। सबसे पहले जानते हैं, बात अगर नाराजगी की हो, पति पत्नी में छोटी छोटी बातों पर अगर नाराजगी रहती हो तो क्या करेंगे। देखिए, कभी कभी कुछ पति पत्नियों में रोज नाराजगी रहती है, जिस कारण से वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहता, और इसके पीछे भूमिका होती है ग्रह मैत्री की और तत्वों की समस्या होती है। दोनों के एलिमेंट बिल्कुल अपोजिट हो जाएं तो दिक्कतें ज्यादा होती हैं। अगर आपकी पत्नी हर छोटी छोटी बात पर बार बार नाराज होती हो तो पति नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल दें, और सूर्य भगवान को जल देने के बाद ही अन्न ग्रहण करेंगे, ये नियम पतिदेव बना लेंगे। अगर पति बार बार नाराज होते हों, पति हर छोटी बात पर नाराज होते हों, तो पत्नी सोमवार को शिव जी की आराधना करेंगी, एक लोटा जल ले जाकर शिवलिंग पर चढ़ाएंगी और सफेद वस्तुओं का दान करेंगी। चावल, चीनी, दूध, इसका दान हर सोमवार को करेंगी। यानी अगर पत्नी नियमित रूप से शिव जी की पूजा करें और सोमवार को सफेद वस्तुओं का दान करें तो पति की जो बार बार की नाराजगी है वो नाराजगी दूर हो जाएगी।
0: और चलिए वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल।
1: मेष राशि, धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, छोटी छोटी बातों पर परेशान ना हो, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाएं, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
0: और आइए अब जानते हैं कि अगर पति पत्नी के बीच नाराजगी से ऊपर झगड़े तक बात पहुंच जाए तो उसके लिए क्या समाधान करने चाहिए।
1: बहुत बार ऐसा होता है कि छोटी सी नाराजगी होती है और ये नाराजगी बढ़ते बढ़ते झगड़े तक पहुंच जाती है। छोटी सी बात शुरू होती है, झगड़ा भयंकर होने लगता है, पति पत्नी में लगता है कि अब क्या हो जाएगा, कुछ पता नहीं है। तो बात नाराजगी से शुरू होकर झगड़े तक पहुंचे तो कारण क्या है? आम तौर पर इसके पीछे मंगल और सूर्य होते हैं। अगर पति पत्नी के बीच में केवल बहस होती हो, केवल ऊंची आवाज में तेज तेज वाद विवाद करते हो, तो हर शनिवार को पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं, फर्क पड़ेगा। अगर बात मार पीट तक पहुंच जाती हो, शारीरिक बल प्रयोग तक पहुंच जाती हो, चाहे पत्नी मारपीट करे चाहे पति करें, केवल पति ही मारपीट करते हैं ये जरूरी नहीं है। तो पति मारपीट करें या पत्नी मारपीट करें, तो किसी भी तीन शनिवार को अपने वजन के बराबर, दसवें हिस्से के बराबर काले तिल का या काली उड़द की दाल का दान किसी निर्धन व्यक्ति को या धर्म स्थान में जा करके करिएगा। अगर ये उपाय आप करते हैं तो पति पत्नी के बीच में जो मारपीट है, जो हिंसा है, जो वायलेंस है, वो काफी हद तक समाप्त हो जाएगा।
0: और आइए जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल।
1: कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में सफलता मिलेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, धन की स्थिति उत्तम बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की स्थिति में सुधार होगा, लेकिन परिवार में बेवजह के विवाद ना हो, बेवजह का तनाव ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए अब गुड लक में वक्त हो गया आज के सवालों का और पंडित जी द्वारा दिए जाने उनके जवाबों का। तो जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
1: जी, आज का पहला प्रश्न आरती अग्रवाल ने हमें लिखा है, और आरती हमें मेल लिखती हैं गुड़गांव से। इनकी जन्म की तारीख है 14 जून 1980, जन्म का समय रात में 9:20, जन्म स्थान है आगरा। आरती कह रही हैं कि मैं पहले नौकरी करती थी और अब मैं नौकरी छोड़ चुकी हूँ पिछले 2 साल से, और अब मैं अपना कोई व्यापार करना चाहती हूँ, तो कौन सा व्यापार करना मेरे लिए बेहतर रहेगा। आरती, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी बोलने की, समझाने की, सलाह देने की क्षमता अच्छी है। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में जाएं, समझाने या सलाह देने वाले क्षेत्र में जाएं, तो इन क्षेत्रों में आप ज्यादा सफल होंगी। एजुकेशन या एजुकेशन काउंसलर जैसा कोई काम करें अपना स्वयं का, और इसी समय शुरू करें तो आप सफल रहेंगी। आपका करियर और आपका काम बेहतर हो इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें, रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
0: और आइए अब जानते हैं कि अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं पंडित जी से पूछना, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए आज का दूसरा सवाल देखते हैं, पंडित जी किसका लेते हैं।
1: जी अगला प्रश्न विनीता जी ने हमें लिखा है, और विनीता जी हमें मेल लिखती हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 18 सितंबर 1994, जन्म का समय सुबह के 7:35, जन्म स्थान है शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। विनीता जी कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह कब तक होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। विनीता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह की संभावना साल 2027 के मध्य में दिखाई दे रही है। साल 2027 के सेकेंड हाफ में जून से लेके दिसंबर तक आपका समय ज्यादा बेहतर है, इस समय में आपका विवाह होना चाहिए। आपको वैवाहिक जीवन में सावधानी रखनी होगी, और अगर कुंडली मिला करके विवाह करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। एक ओपल बनवा करके पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहने, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का अगर जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
0: और आइए अब जानते हैं अगर पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा आ जाए, मतलब किसी तीसरे की एंट्री हो जाए या दोनों के संबंध जो है वो किसी और से हो जाए, तो इसके कारण क्या होते हैं, किस कारण से ऐसा होता है और उससे बचने के उपाय क्या है।
1: देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने न चाहते हुए भी

0: और इन्वॉल्वमेंट हो जाता है या पत्नी कहीं और अट्रैक्ट हो जाती है। तो अगर पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा आ गया है तो कारण क्या है, निवारण क्या है? आम तौर पर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा आता है या आती है, तो इस तरह की घटनाओं के लिए राहु जिम्मेदार होता है। अगर शुक्र का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, अगर शुक्र भी निगेटिव हो गया, तो ये मामला बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। अगर पति के जीवन में कोई तीसरा व्यक्ति हो, कोई अन्य स्त्री हो, तो पत्नी नियमित रूप से बृहस्पति वार का उपवास रखें और शनिवार को पक्षियों को कैद से, पिंजड़े से मुक्त कराएं। अगर पत्नी के जीवन में कोई तीसरा व्यक्ति आ गया हो तो पति हर शुक्रवार का उपवास रखें और शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को उड़द की दाल के बने हुए बड़े खिलाएं। अगर ये उपाय निरंतर किया जाए तो पति पत्नी के जीवन से तीसरा चला जाता है, पति पत्नी का विश्वास दोबारा मजबूत होता है और दोबारा से जिंदगी बेहतर होनी शुरू हो जाती है।
1: और चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का क्या है राशिफल।
0: तुला राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रह सकती है, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, छोटी यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, परिवार में शांति बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए जानते हैं, अगर पति पत्नी के बीच नाराजगी और लड़ाई झगड़ा इतना ज्यादा हो गया हो कि बात तलाक तक आ गई हो तो उसके कारण क्या है और उसके लिए समाधान क्या है।
0: बहुत

0: बार ऐसा होता है कि पति पत्नी के आपसी संबंधों के खराब होने पर मामला डिवोर्स तक, तलाक तक पहुंच जाता है। देखिए, तलाक के लिए किसी एक ग्रह को जिम्मेदार नहीं कहा जा सकता, फिर भी जो पाप ग्रह हैं, सूर्य, शनि, मंगल, राहु, ये तलाक में बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर तलाक की बात चल रही है पति पत्नी में, मामला न्यायालय तक नहीं पहुंचा है, कोर्ट तक नहीं पहुंचा है, तो जिसको तलाक रोकना है वो सोमवार का उपवास रखें, भगवान शिव को रोज सवेरे 27 बेलपत्र और जल अर्पित करें। अगर मामला कोर्ट तक पहुंच गया है, मुकदमा शुरू हो गया है डिवोर्स का, और आप तलाक रोकना चाहते हैं या चाहती हैं, तो 5 मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर अपनी उम्र के बराबर लड्डू चढ़ाएं, या अगर इतने पैसे नहीं हैं तो 9 लड्डू या 11 लड्डू चढ़ाइएगा रोज सुबह या शाम, जब भी आपको मौका मिले, लगातार 3 महीने तक 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। अगर आप ऐसा करें तो निश्चित रूप से तलाक से बचेंगे, शादी दोबारा से बेहतर रास्ते पर चल पाएगी।
1: और वक्त हो गया है आज के अंतिम राशि के राशिफल को जानने का, तो आइए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का क्या है राशिफल।
0: मकर राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, बेवजह की चिंता हो सकती है, वाद विवाद से बचाव करें, करियर में कोई रिस्क, कोई जोखिम ना लें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।

0: की धन की स्थिति में सुधार होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए जानते हैं पंडित जी से ही आज का तीसरा सवाल, उन्हें कहां से और किसने भेजा है।
0: जी अगला प्रश्न सरयू प्रसाद जी ने हमें लिखा है और सरयू प्रसाद जी हमें मेल लिखते हैं कुशीनगर उत्तर प्रदेश से। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म की तारीख है 3 जनवरी सन 2003। जन्म का समय रात में 9 बजे। जन्म का स्थान है कुशीनगर। ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है, क्या मेरी बेटी को गवर्नमेंट जॉब में सफलता मिलेगी। सरयू जी, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से अगर वो बैंक में, फाइनेंशियल सेक्टर में, रेलवे में या क्लैरिकल कैडर में कोशिश करें तो इन क्षेत्रों में इनको सरकारी नौकरी मिलेगी। साल 2027 और 28 का समय अच्छा है, इस समय प्रयास करने पर ये सफल होंगी। एक इनको माणिक्य बनवा के पहना दीजिए, 6 से 8 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करवाइए और इनको बोलिए कि नित्य प्रातः अगर ये सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: गुड लक में अब वक्त हो गया आज के अंतिम सवाल का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का अंतिम और चौथा प्रश्न वो किसका लेने वाले हैं।
0: जी आज का अंतिम प्रश्न दीप्ति ने हमें लिखा है और दीप्ति हमें जयपुर राजस्थान से मेल लिखती हैं। दीप्ति की जन्म की तारीख है 28 अप्रैल 1979। जन्म का समय दोपहर में 1:45। जन्म स्थान है बांदीकुई, राजस्थान। दीप्ति कह रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से मुझे स्वास्थ्य में समस्याएं चली आ रही हैं और कोई ना कोई समस्या मेरे साथ स्वास्थ्य की लगी रहती है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो सके। दीप्ति, आपकी स्वास्थ्य में ज्यादा मुश्किलें नहीं हैं। शनि राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके मन में चिंताएं और तनाव पैदा कर रहा है और इन चिंताओं और तनाव की वजह से आपकी परेशानी थोड़ी ज्यादा हो गई है। मामला ज्यादातर मेंटल स्ट्रेस का दिखाई दे रहा है। आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें, रोज सुबह 1 राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपके स्वास्थ्य की स्थितियों में सुधार होगा।
1: और आइए जानते हैं जिनका जन्मदिन 5 जून 2026 को आने वाला है, उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा और उन सभी को हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू।

चलिए शुरुआत करते हैं दिल्ली एनसीआर के तूफानी मौसम की खबर से। गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे अचानक मौसम ने करवट ली। तेज धूल भरी आंधी, काले बादल और झमाझम बारिश ने पूरा माहौल बदल दिया। अंधेरे होने की वजह से रात का एहसास होने लगा। तेज हवा की वजह से कई जगह पेड़, साइन बोर्ड और बिजली के खंभे गिर गए। मौसम का मिजाज अभी भी जस का तस है। मौसम विभाग ने कल यानी कि शुक्रवार को भी येलो अलर्ट जारी किया है, यानी कि दिल्ली एनसीआर और आसपास गरज चमक के साथ आंधी का अनुमान है। देखिए ये रिपोर्ट।

दोपहर तक धूप थी, आसमान साफ था, पर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि दिन में रात हो गई। घड़ी में 3 बजते ही तेज धूल भरी आंधी चली और देखते ही देखते घुप अंधेरा छा गया। जो सड़क पर थे सहम गए, जो गाड़ियों में थे ठहर गए। हवा की रफ्तार इतनी तेज कि हरे दरख्त उखड़ गए, कुछ सड़कों पर औंधे मुंह गिरे तो कुछ नीचे खड़ी गाड़ियों पर। लेकिन साइन बोर्ड्स की धज्जियां उड़ गई, स्ट्रीट लाइट्स के खंबे भी हवा का प्रहार झेल नहीं सके। हवा की रफ्तार करीब 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसके सामने एक कदम भी आगे बढ़ना मुहाल। अंधेरा ऐसा कि गाड़ियों में हेडलाइट्स तक जलानी पड़ी।

0: इसके बाद शुरू हुई झमाझम बारिश जिसने सड़कों को लबालब कर दिया। समस्या तब हुई जब पानी जमा होने से ट्रैफिक रुक गया। ये तस्वीरें नोएडा की हैं, लेकिन कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें पूरे दिल्ली एनसीआर में नजर आईं, जब ये पूरा इलाका थोड़ी देर के लिए ठहर गया।
1: और आप ये समझिए कि 80 से 100 किलोमीटर की रफ्तार अब मॉनसून ने आज दस्तक दी है केरल में। आपको तस्वीरें दिखाओ, ये देखिए, ये दिल्ली और यूपी की सीमा है और आप यकीन मानेंगे कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये दिल्ली मेरठ हाईवे है। आप देखिए इसकी तस्वीरें कि महज अभी 5 से 10 मिनट हुए हैं और इतनी तेज बरसात है कि आपको लगेगा यहां समंदर। हवा की रफ्तार अगर समझना हो, ये देखिए फ्लेक्स, 80 से 100 किलोमीटर की हवा, मतलब इतनी तूफानी बारिश और सूखी के 3 से 4 बजे के बीच आपको ऐसा लग रहा होगा कि रात के 10 बज रहे हो। घुप अंधेरा, सड़कों पर पूरी तरह से विजिबिलिटी एकदम प्रभावित है, सारी गाड़ियों के इंडिकेटर ऑन है और हाईवे पर पूरा एक तरह का जल जमाव दिखाई दे रहा है। और ऐसी तस्वीर लगभग एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में देखने को मिलेगी। और मैं जिस ओर आगे बढ़ रहा था, सिर्फ एक तरफ का नहीं, आप दूसरी तरफ का इलाका अगर देखेंगे तो आपको भी यहां भी वही प्रभाव दिखाई देगा। और खासकर मौसम में जो करवट बदली है, आपको बताऊं सबसे पहले ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन ऑरेंज अलर्ट धीरे धीरे बदलते हुए उसके बाद जो है अब जिस तरह का चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है कि अगले 2 दिन ऐसी स्थितियां रह सकती हैं। और आज अचानक से मौसम ने जिस तरह करवट ली है उसके बाद से पूरा दिल्ली, आसपास का खासकर इलाका गुरुग्राम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी ज्यादातर इलाके, हरियाणा और इसी के साथ जितने भी इलाके सटे हैं, हर तरफ आंधी पानी तेज तूफान। इसके पहले लगभग 20 मिनट तक जो है वो तूफान ऐसा था कि ऐसा लगा चारों जैसे धूल की एक परत से जम गई हो और इस कतर जो है माहौल था कि विजिबिलिटी नहीं दिखाई देती। देखिए बादलों की जो गड़गड़ाहट आप सुन रहे हैं, तो मौसम विभाग ने ऐसे में ओले गिरने और इसी के साथ साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी दी है। और अगर आप थोड़ी देर, इसीलिए सड़कों पर जो आवाज आई है वो बिल्कुल ठप सी पड़ गई है।
0: जून के शुरुआती दिन है पर मौसम की मेहरबानी से दिल्ली एनसीआर को गर्मी से कुछ राहत थी। हाँ, मगर 40 डिग्री तापमान के साथ उमस मौजूद थी। पर जब आंधी के साथ बादल गरजे और जमकर बरसे तो पलक झपकते ही गर्मी छू मंतर हो गई। ये काले बादल मॉनसून के नहीं हैं, लेकिन असर मॉनसून से कम भी नहीं है। दिल्ली, खासकर दक्षिणी दिल्ली में खूब बारिश हुई।
2: तस्वीरों में आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में मौसम कितना अच्छा आपको होता हुआ नजर आ रहा है। फुहारे पड़ रहे हैं, बारिश हल्की हल्की हो रही है और आप देख सकते हैं इस रिंग रोड पर क्या स्थिति हुई है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, मौसम बिल्कुल सुहाना है, गर्मी से लोगों को राहत मिली है और मौसम बिल्कुल सुहाना हो गया है और बारिश रिमझिम बरसात जो है वो हो रही है।
0: दिल्ली एनसीआर को ये बादलों की सौगात है जिसका अनुमान मौसम विभाग ने पहले ही दे दिया था। पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से ऐसे मौसम का अंदाजा था। मौसम विभाग ने न सिर्फ 4 जून बल्कि 5 जून के लिए भी येलो अलर्ट घोषित किया है, यानी लोगों को खराब मौसम के प्रति सावधान रहना होगा। यानी एनसीआर में ये सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। नोएडा और आसपास के शहरों में 6 जून तक बादल छाए रहेंगे, गरज चमक के साथ एक या दो बार भारी बौछार पड़ने की पूरी संभावना है। आने वाले दिनों में तेज आंधी का दौर जारी रह सकता है। फिलहाल तो तेज हवा की रफ्तार रुकी और बारिश थमी तो मौसम सुहाना हो गया।
3: चिलचिलाती गर्मी और उमस भरी हवाओं के बाद मौसम एक बार फिर से पूरी तरीके से बदल चुका है। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से इस वक्त मौसम बेहद ही सुहाना हो चुका है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो है बारिश की शुरुआत हो चुकी है और ये पहले से ही मौसम विभाग का अनुमान था कि आज बारिश जो है वो देखी जा सकती है, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ जो है इस वक्त जो है सर्कुलेशन जो है वो पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है, जिसका अदर जो असर था वो देखने को पहाड़ी राज्य पर मिलेगा, लेकिन उसका कहीं ना कहीं असर जो है मैदानी इलाकों पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। और मौसम विभाग ने इसी चीज को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया था कि पहाड़ी राज्यों में, चाहे हिमाचल की बात हो, उत्तराखंड की बात हो या जम्मू कश्मीर की बात हो, हर तरफ अच्छी बारिश जो है देखी जाएगी, आंधी तूफान जो है वो भी देखा जा सकता है। लेकिन बात अगर मैदानी राज्यों की जाए तो यूपी हो, पंजाब की बात हो, राजस्थान की बात हो या दिल्ली एनसीआर की बात हो, यहां पर भी ऑरेंज अलर्ट बारिश का जो है वो दिया गया था। और आप देख सकते हैं कि तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ इस वक्त सीपी की तस्वीरें दिखा रही हूँ कि किस तरीके से झमाझम बारिश की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और कहीं ना कहीं अब लोगों को राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि अगर हम तापमान की बात करें तो तापमान सामान्य से कम जरूर बने हुए थे लेकिन उमस की स्थिति जो है वो लगातार लोगों को परेशान कर रही थी, क्योंकि अरब सागर से जो लगातार हवाएं आ रही थी उसकी वजह से तापमान कम होने के बावजूद लोगों को गर्मी परेशान कर रही थी। लेकिन जो ये बारिश की शुरुआत हुई है इसी तरीके से आने वाले 3-4 दिन तक मौसम जो है सुहाना रहेगा, लगातार बारिश जो है वो हो सकती है, साथ ही साथ हवाएं चलेगी लेकिन तापमान में जो है थोड़ी कमी जरूर देखी जाएगी।
0: मौसम अच्छा है, गर्मी से राहत है और आगे भी हल्की या मध्यम बारिश का अनुमान है। हाँ, सावधानी इसलिए जरूरी है क्योंकि कई इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है।
4: अभी एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस है, वो इस समय नॉर्थ पाकिस्तान पे एक सर्कुलेशन की फॉर्म में है, स्ट्रेंथन में है और उसके साथ ही जहाँ जैसे WD बना हुआ है जो हवाएं भी अरेबियन सी से इस एरिया में आ रही है जिसके कारण आप थोड़ा ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है और विच इज़ फेवरेबल फॉर रेनफॉल एक्टिविटी। तो हमारा यही है कि आने वाले 2 से 3 दिन जहाँ पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक्टिविटी रहेगा, जिसके लिए हमने जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के लिए हमने रेनफॉल के साथ हेलस्टॉर्म का वार्निंग भी दिया है। पंजाब हरियाणा हम अनुमान लगा रहे हैं जो हवाओं की गति है वो 50 से 60 किलोमीटर रह सकती है। इसके अलावा NCR दिल्ली की बात करें, वहाँ भी हमारा 2 दिन के लिए येलो अलर्ट है, वहाँ भी हमारा यह है कि 40 से 50 किलोमीटर तक हवाएं रहने का।
0: मॉनसून से पहले ही मौसम ने माहौल बना दिया है, न सिर्फ दिल्ली NCR बल्कि राजस्थान से लेकर बिहार तक बादल गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। और
5: अब बात मॉनसून की। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने आधिकारिक रूप से केरलम में दस्तक दे दी है, हालांकि अनुमान के हिसाब से कुछ देर से हुई है लेकिन मॉनसून दुरुस्त आया है। केरल के कई जिलों में बारिश हो रही है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अब मॉनसून धीरे धीरे देश के अन्य हिस्सों की ओर बढ़ेगा जिससे कि गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। आइए समझते हैं मॉनसून का सफर इस रिपोर्ट में।

0: समझ लीजिए आज से भारत का मेघ मल्हार शुरू हो चुका है। मॉनसून ने दस्तक दे दी है। केरलम में बादलों का कारवां पहुंच चुका है। अब इंतजार इन बादलों के पूरे हिंदुस्तान पर छाने का है। पहले मॉनसून के 25 मई को केरलम में पहुंचने की भविष्यवाणी थी, लेकिन मॉनसून ने दस्तक देने के लिए 4 जून की तारीख चुनी और ऑफिशियली देश में आज से बारिश का मौसम शुरू हो गया है।
1: तपती गर्मी से झुलस रहे हिंदुस्तान के लिए 4 जून एक अच्छी खबर लेकर के आया, और वो खबर ये है कि दक्षिण पश्चिम मानसून भारत पहुंच चुका है, उसने केरल में दस्तक दी है। हालांकि 3-4 दिनों की देरी है, लेकिन मौसम का जो आंकड़ा है जिस तरह हम इसे जोड़ते हैं उसमें इस 3-4 दिन की देरी को बहुत ज्यादा देरी नहीं मानते हैं। अभी मौसम विभाग का कहना है कि वो अपनी दिशा में है और परिस्थितियां इतनी अनुकूल हैं कि वो आगे उत्तर तमिलनाडु कर्नाटक होते हुए पश्चिमी घाट के इलाके में अगले 2-3 दिनों में उसकी रफ्तार बढ़ेगी। धीरे धीरे वो महाराष्ट्र कोंकण और उसी के साथ साथ इसकी दिशा जो है वो आगे उत्तर पूर्व तक जाएगी। जैसे ही बंगाल की खाड़ी पार करने के बाद उत्तर पूर्व भारत की ओर मानसून बढ़ेगा, हिमालय से टकरा करके उसकी दिशा फिर पश्चिम लौटेगी और उसके बाद उसी मानसून का असर हम गंगा के जो मैदानी इलाके वहां देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड और उसी के साथ साथ आगे मध्य प्रदेश हरियाणा दिल्ली पंजाब और उसी के साथ जल्दी मानसून पूरे देश पर छा जाएगा। तो मानसून की रफ्तार अपनी पकड़ चुका है, भारत में उसने दस्तक दे दी है। इसी के साथ जाहिर अगले 2-3 दिनों केरल और तमिलनाडु में भारी बारिश हो सकती है और धीरे धीरे जैसे उत्तर में आएगा अगले 4-5 दिनों में ये मानसून महाराष्ट्र कोंकण होते हुए आगे अपनी रफ्तार पकड़ेगा, उत्तर की ओर आगे बढ़ेगा। तो जहां गर्मी का एहसास अभी हो रहा है, अब दक्षिण में मानसून रफ्तार पकड़ी है, उत्तर में भी थोड़ा इंतजार करना होगा।
0: इस बार मानसून थोड़ा देर से पहुंचा है, लेकिन अभी तक तो यही लग रहा है कि बिल्कुल दुरुस्त पहुंचा है। मौसम विभाग ने पहले ही संकेत दे दिया था कि केरलम और आसपास के क्षेत्रों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। इसके बाद राज्य के कई हिस्सों में व्यापक बारिश दर्ज की गई। जब मानसून की घोषणा के सारे मानक पूरे हो गए तो उसके आने का ऐलान भी हो गया।
2: फिगर में देखेंगे कि मानसून केरला और कुछ कर्नाटक के हिस्से भी कवर किया है और इसके अलावा तमिलनाडु के हिस्से आज कवर हुए हैं और थोड़ा ब्यो बंगाल की ब्रांच कवर हुई है। तो इसका रीज़न यही है कि कंटिन्यूज अब जो कन्वेक्टिव एक्टिविटी है जहां इंक्रीज हो गई है, उसका रीज़न क्या है कि जो जहां वेस्टर्ली हवाओं की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी बढ़ गई है, 4.5 तक है। लो लेवल में जो विंड्स हैं वो 20-25 नॉट्स हैं और ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो मानसून है जहाँ उसके कारण वाइड स्प्रेड रेनफॉल एक्टिविटी रहा इस रीज़न में, तो हमने मानसून को जहाँ कवर किया है। अगर आप आने वाले दिनों की बात करें तो हमारा अनुमान ये है कि केरला कोस्टल कर्नाटका वहाँ पे वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी, वेरी हैवी मीन 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी ऑलमोस्ट पूरा वीक होती रहेगी। उसके साथ ही कर्नाटक कोंकण गोवा वहाँ भी रेनफॉल एक्टिविटी हैवी रेनफॉल होने का अनुमान है। तमिलनाडु देन इंटीरियर कर्नाटका जहाँ रेनफॉल एक्टिविटी ऑलमोस्ट हैवी रहने का अनुमान है।
0: मई महीने में IMD ने अंदाजा लगाया था कि मानसून 25 या 26 मई के आसपास केरल में पहुंच सकता है, लेकिन तमाम वजहों से मानसून की रफ्तार अचानक धीमी पड़ गई। बाद में मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बदलाव किया और 4 जून के आसपास मानसून के केरलम पहुंचने की भविष्यवाणी की गई, जो आखिरकार सही साबित हुई।
3: को दिखाती हूँ, हर किसी को इंतजार था। 26 मई की जो है तारीख पहले दी गई थी कि केरल में मॉनसून जो है 26 मई को दस्तक देगा, लेकिन देरी हुई, फिर 1 जून की तारीख आई, लेकिन अब फाइनली जो है 4 जून आज हो चुका है और 4 जून को जो मॉनसून है वो केरल में दस्तक दे चुका है। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कर्नाटका के हिस्से हुए, कोस्टल कर्नाटका जो हो गया, तमिलनाडु का कुछ हिस्सा जो है कवर करते हुए बे ऑफ बंगाल, और इस साइड पर जो है आपको दिखेगा ये जो ब्लू लाइन आप जो देख रहे हैं ये इस वक्त हमारा ऑनसेट है। ये जो डेट आज की जो हिट कर गई है क्योंकि आज से जो मानसूनी बारिश है उसकी शुरुआत हो चुकी है और अब आने वाले 6-7 दिन अच्छा मौसम जो है वो रहने की उम्मीद है। अच्छी खासी बारिश जो है वो देखी जाएगी, 12 सेंटीमीटर से ज्यादा जो बारिश है वो जो है उसका अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही मैं ये चीज भी आपको दिखाऊंगी कि जो लगातार जो मानसून है वो आगे बढ़ते हुए नजर आएगा। तो इसके साथ ही साउथ से शुरू हुआ है लेकिन धीरे धीरे जो है वो नॉर्थ ईस्ट साइड में भी जो है मानसून जो है वो देखा जाएगा। लेकिन अगर मैं बाकी पूरे आपको देश की मैं स्थिति इस वक्त दिखाना चाहूँ कि किस तरीके से मौसम का हाल है वो आप इस मैप में देख सकते हैं। ये पूरा आपको ऑरेंज अलर्ट जो है जगह जगह आपको नजर आने वाला है, ऑरेंज या फिर येलो, लेकिन बारिश का अलर्ट जो है देश के अलग अलग राज्यों में इस वक्त आपको नजर आ जाएगा।
0: केरल में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग मानसून की औपचारिक घोषणा के लिए जरूरी स्टैंडर्ड की निगरानी कर रहा था। जब ये मानक पूरे हुए तब जाकर मानसून का ऑफिशियली ऐलान किया गया। गुरुवार सुबह भी केरलम के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है। अलपुजा, कोट्टायम और एर्नाकुलम जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मानसून के केरलम पहुंचने के बाद अब देश के दूसरे हिस्सों खासकर उत्तर भारत पर नजरें टिकी हुई है, जहां लोग कई सप्ताह से भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं और बादलों के बरसने की आस लगाए बैठे हैं। आमतौर पर मानसून जून के दौरान तेजी से आगे बढ़ता है। ये पहले पश्चिमी तट, फिर पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों को कवर करता है और फिर 15 जून के आसपास मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पहुंचता है। इसके बाद मानसून पूर्वी और उत्तर भारत की ओर बढ़ता है। दिल्ली की बात की जाए तो आमतौर पर मानसून 27 जून के आसपास पहुंचता है। वहीं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और भारत के अधिकांश हिस्से जून के अंत या फिर जुलाई के पहले सप्ताह तक मानसून की चपेट में आ जाते हैं। केरल में स्वागत के बाद अब मौसम वैज्ञानिक इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि मानसून आगे भी अपनी निर्धारित वक्त से बढ़ता रहे। दिल्ली से आशुतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: मैदानी इलाकों में मौसम का मिजाज तो बदला है, लेकिन पहाड़ों पर मौसम दिल खुश करने वाला है। शिमला में और आसपास बारिश हो रही है। लोग सतरंगी छतरियों और रेनकोट में मॉल रोड पर मस्ती करते नजर आए, तो वहीं कुल्लू मनाली में पहले से ही सैलानियों का हुजूम है। हिमाचल प्रदेश के साथ कश्मीर में भी इन दिनों पर्यटकों की भारी भीड़ है। चलिए आपको पहाड़ों पर मौसम की हसीन तस्वीर दिखाते हैं।

0: रंग बिरंगी छतरियां लिए और रेनकोट में घूमते लोग। शिमला के मॉल रोड पर ये नजारा मौसम जैसा ही दिलकश है। यूं भी शिमला में मौसम सुहाना था, पर गुरुवार दोपहर जो मूसलाधार बारिश शुरू हुई, शहर की फिजा ही बदल गई। क्योंकि सिर्फ पानी नहीं बरसा, ओले भी गिरे और देखते ही देखते शिमला की सड़कों पर सफेद चादर बिछ गई। ये मौसम, ये फिजा, ऐसी रौनक, सैलानियों को इससे बेहतर भला और क्या चाहिए। लोग रिट्ज़ और मॉल रोड पर घूमने निकल पड़े। शिमला वैसे भी इन दिनों सैलानियों से गुलजार है।
1: बहुत अच्छा मौसम है।

0: फील हो रहा है कि हमने ऐसा नहीं देखा है। हम फिरोजपुर, हमारा आरएसजी राजरतन स्कूल है जहाँ से हम आए हैं, हमारे साथ 15 स्टूडेंट हैं। हम कैंप आए थे यहाँ पे, तो लेकिन यहाँ पे हम आए शिमला बच्चों को घुमाने के लिए माल रोड पे, तो बच्चे भी हमारे इंजॉय कर रहे हैं। वाकई में हमें काफ़ी खुशी हो रही है यहाँ पे और बच्चे भी काफ़ी खुशी मना रहे हैं।
1: शिमला में पानी इतना बरसा कि सड़कों पर जमा हो गया, यहाँ तक कि आवाजाही रुक गई और जून में ठंड का एहसास होने लगा। स्थानीय लोगों के लिए ये परेशानी का सबब हो सकता है और जो घूमने फिरने गए हैं वो मौसम का जश्न मना रहे हैं। शिमला ही नहीं, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर में भी आंधी और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट है और हिमाचल में अगले 6 दिन तक मौसम खराब रहने और बारिश का पूर्वानुमान है। लेकिन ऐसे मौसम में हिमाचल में सैलानियों का हुजूम है। ये तस्वीर चंबा के खजियार की है जो इन दिनों लोगों की पसंदीदा जगह बना हुआ है। चारों ओर फैले देवदार के पेड़, हरी घास से सजा विशाल मैदान और बीच में मौजूद छोटी झील यहाँ की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। यूं ही इसे हिमाचल का स्विट्जरलैंड नहीं कहते। ऐसी खूबसूरत जगह पर परिवार के साथ फुर्सत के पल बिताना एक अलग एहसास है। ठीक ऐसा ही एहसास लोगों को मनाली में मिलता है जहाँ इन दिनों सैलानियों का जमावड़ा है।
2: नमस्कार। देखिए, हम सभी जानते हैं कि लगातार मौसम खुशनुमा रहने की वजह से जिला कुल्लू में पर्यटकों का आवागमन जो है वो काफी अधिक संख्या में हुआ है। और यदि इस विषय पर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो जो हमारा ऑथेंटिक डाटा है वो ग्रीन टैक्स बैरियर जो मनाली में स्थित है उससे प्राप्त आंकड़ों के अनुसार गत वर्ष मई महीने में लगभग 41,700 के आसपास जो है बाहरी राज्यों से पर्यटक वाहन मनाली में आए थे, लेकिन जो संख्या इस वर्ष बढ़कर लगभग 66,600 जो है वाहन इस मई महीने में इस वर्ष के दर्ज किए गए हैं। तो ये एक भारी जो उछाल है लगभग 25,000 का दोनों वर्ष के आंकड़ों में, तो तुलनात्मक तरीके से अधिक संख्या में पर्यटकों ने इस वर्ष घाटी का रुख किया है। और कम बस यही स्थिति हमारे जो अन्य पर्यटक स्थल हैं, चाहे वो बंजार का क्षेत्र हो, सैंज का क्षेत्र हो या कसोल मणिकरण का एरिया हो, तो वहां पर भी अधिक संख्या में बाहरी राज्यों के और अपने राज्य के जो पर्यटक हैं उनकी संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। देखिए, मौसम साफ रहने की वजह से और रोहतांग जो हमारा पास है वो भी टाइमली ओपन हो गया है, तो उसकी वजह से टूरिस्ट जो हैं वो काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। और यदि आंकड़ों पर देखा जाए तो वीकेंड पे तो होटल ऑक्यूपेंसी ऑलमोस्ट हमारी 80-90% के आसपास है। इवन वीकडेज में भी काफ़ी अच्छी जो है ऑक्यूपेंसी दर मनाली और विभिन्न पर्यटक स्थलों के होटल्स और होम स्टेज में चल रही है।
1: कुल्लू में नदी किनारे बोटिंग हो रही है, एडवेंचर स्पोर्ट्स का मजा लिया जा रहा है, इलाका सैलानियों से गुलजार है।
3: और हम लोग फैमिली के साथ राजस्थान से यहाँ आए, राजस्थान से यहाँ हिमाचल को हमने इसलिए चूज किया बिकॉज यहाँ का वेदर अच्छा है। राजस्थान से कंपैरेटिवली काफी कूल वेदर है यहाँ, वहाँ पे 42-43 डिग्रीज टेम्परेचर, हीट वेव्स काफी ज्यादा हो रहे थे। सो समर वेकेशन में हमने घूमने के लिए इसको चूज किया। यहाँ ग्रीनरी अच्छी है, पॉल्यूशन फ्री है और वेकेशन के लिए हमने मतलब एक कूल प्लेस चाहिए थी, इसलिए हमने हिमाचल को चूज किया। और अच्छा लग रहा है यहाँ के, आज ही आए हैं, काफी चेंज मतलब काफी डिफरेंस है वेदर में, वहाँ इतनी गर्मी थी और अभी यहाँ के अच्छा लग रहा है। और अगले 7-8 डेज हम लोग यहीं पर हैं, सो हम लोग वेकेशन यहीं बनाने वाले हैं अभी।
4: काविश शर्मा, होटल शुभला रॉयल, जनरल मैनेजर। सो कुल्लू मनाली का जो टूरिज्म है वो बड़े पीक सीजन में है और काफी लोगों का व्यवसाय भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी होगी और उसके अलावा भी और भी जो व्यवसाय हमारे से जुड़े हुए हैं। तो ये काफी पीक में और खासकर जैसे कि मई महीने में जो बुकिंग्स थी बहुत ज्यादा थी और जैसे अभी जून चल रहा है तो बहुत मतलब मई से ज्यादा मतलब बढ़ोतरी है जून महीने में और वेरी पीक उसमें है। मतलब पूरे ऑल इंडिया से जो टूरिस्ट इंक्वायरीज है दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जैसे मई महीना था उससे ज्यादा बढ़ चुकी है। और खासकर जो आपका महाराष्ट्र हो गया जो, और इसके अलावा जो हमारे साथ के स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार हो गया, फिर नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो काफ़ी लोगों का आना जारी है और नॉर्थ इंडिया काफ़ी लोगों का आना जारी है। और अभी भी मुझे फ़ोन कॉल्स काफ़ी आ रहे हैं कि बुकिंग्स के लिए, और कारण ये भी है क्योंकि एक तो गर्मियाँ बढ़ रही हैं उस करके भी टूरिस्ट का फ्लो ज़्यादा पहाड़ों की तरफ रह रहा है, और

0: खासकर ये भी बहुत अच्छी बात है, और खासकर जो भी हमारे व्यवसाय टूरिज्म से जुड़े हैं उनके लिए भी एक बड़ी अच्छी बात है। और मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में भी ये जो टूरिस्ट की बढ़ोतरी, तो जैसे आपको लग रहा है कि जैसे नॉर्थ ईस्ट और जैसे बाहर जो एरिया है वहां पे टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री टच हो चुका है, उस करके जो टूरिस्ट है वो यहाँ को पहाड़ों की तरफ रुख मोड़ रहे हैं और कुल्लू मनाली आ रहे हैं सर। और जैसे कि काफी स्टेट्स में अभी छुट्टियां होती हैं गर्मियों की बच्चों की, तो उस करके भी काफी टूरिस्ट पहाड़ों की तरफ का रुख करते हैं, और ये मेन कारण है कि इसी बहाने टूरिस्टों के लिए भी एक अच्छा वो रहता है और हमें भी मतलब एक सेवा का मौका मिलता है। और जैसे कि आप जानते हैं अतिथि देवो भव, और खासकर जो हमारी परंपरा है खासकर हिमाचलीज की, हम हमेशा अपने गेस्ट को एक मतलब भगवान का दर्जा देते हैं। और
1: So everything is very beautiful and very nice. So all the people of the south should come here and enjoy a lot. So east or the west, Himachal is the best. Kullu Manali is the very nice place to enjoy.
2: हिमाचल यूं भी सैलानियों को खूब पसंद आता है, और जब मैदानी इलाकों में गर्मी बेहिसाब हो तो कुल्लू मनाली से प्यार हो जाता है। मई के महीने में करीब रिकॉर्ड 66,000 गाड़ियों ने कुल्लू में एंट्री की, जून में भी यही आंकड़ा रहने की उम्मीद है। मौसम के रुख से सैलानी भी खुश हैं और कारोबारी भी।
3: हम लोग राजस्थान से यहाँ आए हैं, राजस्थान में दिन में इतनी गर्मी है, इतनी हीट वेव चल रही है कि वहाँ दिन में हम लोग बाहर भी नहीं निकल पाते थे, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। 4-7-8 दिन हम लोग यहाँ शांति से सुकून से रहने के लिए, छुट्टियाँ एंजॉय करने के लिए आए हैं। राजस्थान से यहाँ एनवायरनमेंट काफ़ी चेंज है और काफ़ी कूल है, इसलिए हम लोगों ने मनाली चुना है, और यहाँ का एनवायरनमेंट और ग्रीनरी सब कुछ बहुत अच्छी है। राजस्थान से यहाँ काफ़ी चेंज है।
2: हिमाचल की तरह सैलानियों का रुख जम्मू कश्मीर की ओर भी है। बांदीपुरा में बर्फबारी हो रही है, नीचे पहाड़ों पर सफेद बर्फ लिपटी है और तेज ठंडी हवा जैसे सुई चुभा रही है। मैदानी राज्यों से गए सैलानी तो इसी मौसम का मजा लेना चाहते हैं। ऊनी कपड़े और जैकेट से लैस होकर लोग वादी का लुत्फ उठाने इन दिनों करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर राजदान दर्रे के पास हैं।
4: लोग अभी गुरेज जा रहे हैं, आज हमें ये मौका मिला है अच्छा, और इतना सुहाना मौसम और स्नोफॉल हुआ है, और यहाँ पर हमें ठहर के मैगी खाने का मौका मिला है, और यहाँ के लोग इतने मेहमान नवाजी से हमारा खिदमत किया है, उसके लिए हम उनके भी शुक्रगुजार है।
5: सम साउथ से पहुंच गए नॉर्थ, जन्नत में कश्मीर जैसे सब कहते हैं, ट्रूली टू द वर्ल्ड कश्मीर इज जन्नत। तो हमें तो इतना अच्छा वेदर लग रहा है, इट्स सो ब्यूटीफुल, हमें वी आर लकी टू हैव स्नोफॉल एंड सच ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर वादियां हैं, हमको लग रहा है कि हम मूवी में है, कोई रील भी बनाते हैं, सो इट्स वंडरफुल, वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम एंड सच रिमोट प्लेसेस आर वेरी गुड टू एक्सप्लोर।
6: सब लोग यहाँ पे आए विजिट करें, ये जगह को देखें, और जगह के यहाँ पे गवर्नमेंट को भी बोलेंगे इस जगह को प्रमोट करें, जिससे सब लोगों को इसके बारे में पता लगे।
7: 11 बजे हम लोग पहुंच के थे गुरेज वैली के लिए, निकल गए थे वहाँ पे, हम लोगों ने रात को स्टे किया, एंड अभी जब हम रिटर्न आ रहे थे तो ऊपर हमें बारिश मिली थी, एंड यहाँ पे आते आते पूरी स्नो है, तो बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। मुंबई में अभी 40 डिग्री चल रहा है, तो वहाँ से यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है।
8: वातावरण कैसा लग रहा है?
7: बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ बर्फ हो रही है, बारिश भी हो रही है, हमने श्रीनगर में गर्मी देख ली, यहाँ पे ऊपर आके बारिश देख ली, अभी बर्फ हो रही है, तो कम से कम 5 डिग्री तो चल रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ठंडी है।
2: वादी में मौजूद जानी पहचानी और मशहूर जगहों पर ही नहीं जा रहे, बल्कि खूबसूरत वादी में नए इलाकों की भी तलाश है। अनंतनाग जिले में वेरीनाग के करीब ये इलाका सैलानियों को खूब पसंद आ रहा है। डेडबल कपरान नाम के इस इलाके में साफ पानी वाली पहाड़ी नदी है, ऊंचे पहाड़ों के साए में दरख्तों का हरा आंचल है, चलते चलते चाहे जितनी दूर निकल जाइए थकान का एहसास नहीं होता। वादी में ये इलाका एक छिपा हुआ खजाना कहा जाता है, जिसकी ओर बड़ी तादाद में सैलानी आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ भीड़ भाड़ कम है, प्रकृति का एहसास ज्यादा है। गर्मी से राहत पाने के लिए जम्मू कश्मीर से बेहतर जगह भला क्या होगी, लेकिन जब बादल गरज रहे हो, क्लाउड बर्स्ट हो रहा हो, तो सैलानियों के लिए सावधानी भी जरूरी है। हुडा में बादल जमकर बरसे और लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे पर कई जगह मलबा जाम हो गया और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, कई सैलानी इसमें फंसे। हालांकि सभी को सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया। रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: दिस इज रेडियो रीइमेजिन्ड विद ट्यून इन, यू गेट म्यूजिक, न्यूज, स्पोर्ट्स, पॉडकास्ट्स एंड लाइव रेडियो फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, ऑल इन वन प्लेस। हियर फ्रॉम स्टेशंस लाइक टुडेज हिट्स, Talk Sport.
11: I think we still can win the World Cup with this squad.
10: The Daily and more. Available on over 200 devices, so you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere. Just sit back and start listening now.
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
13: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
15: अविश्वास में विश्वास बसता है,
16: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
17: गुड न्यूज टुडे।
18: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
19: चमोली में गुप्तकाल ट्रैकिंग कर वापस लौटा पहला दल गमशाली से, 26 मई को हुआ था रवाना, टीम में शामिल थे 7 ट्रैकर। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक केदारनाथ धाम पहुंचे करीब 11 लाख श्रद्धालु, धाम में लगातार बदल रहा मौसम का मिजाज। शिरडी के साई दरबार से आई आस्था की अनोखी तस्वीर, श्रद्धालु ने साई बाबा को अर्पित किया सोने का मुकुट, करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद मौसम सुहाना, तापमान में गिरावट से लोगों को मिली गर्मी से राहत, मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए जारी किया अलर्ट। इंडोनेशिया के चिड़ियाघर में गूंजी 4 नन्हे मेहमानों की किलकारी, बाघिन दी ने 4 शावकों को दिया जन्म, सफारी पार्क में कुल 8 हुई बाघों की संख्या।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी।
19: करते हैं मानसून की, केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के औपचारिक रूप से एंट्री करते ही दिल्ली एनसीआर का मौसम भी अचानक से बदल गया। राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में तेज हवाओं के साथ घने काले बादल छा गए और झमाझम बारिश हुई। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक केरलम में मानसून के आने से उत्तर भारत में भी नमी बढ़ गई है, इससे दिल्ली एनसीआर में प्री मानसून गतिविधियां तेज हुई हैं। वहीं दूसरे राज्यों से भी बारिश की खबरें हैं, लेकिन ये मानसूनी बारिश नहीं है, इसलिए दिल्ली समेत कई राज्यों में अभी मानसून के आने का इंतजार है।

0: देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह तक तेज धूप और उमस से लोग परेशान थे, लेकिन दोपहर होते होते आसमान में काले बादल छा गए। कई इलाकों में दिन के समय ही अंधेरा जैसा माहौल बन गया। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और आसपास के क्षेत्रों में तो तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश हुई। मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को गर्मी और उमस से काफी राहत मिली। हालांकि तेज हवाओं की वजह से कुछ जगहों पर ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट पहले ही जारी किया था।
1: चिलचिलाती गर्मी और उमस भरी हवाओं के बाद मौसम एक बार फिर से पूरी तरीके से बदल चुका है। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से इस वक्त मौसम बेहद ही सुहाना हो चुका है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो है बारिश की शुरुआत हो चुकी है, और ये पहले से ही मौसम विभाग का अनुमान था कि आज बारिश जो है वो देखी जा सकती है, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ जो है इस वक्त जो है सर्कुलेशन जो है वो पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है, जिसका अदर जो असर था वो देखने को पहाड़ी राज्य पर मिलेगा, लेकिन उसका कहीं ना कहीं असर जो है मैदानी इलाकों पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। और मौसम विभाग ने इसी चीज को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया था कि पहाड़ी राज्यों में चाहे हिमाचल की बात हो, उत्तराखंड की बात हो या जम्मू कश्मीर की बात हो, हर तरफ अच्छी बारिश जो है देखी जाएगी। आंधी तूफान जो है वो भी देखा जा सकता है, लेकिन बात अगर मैदानी राज्यों की जाए तो यूपी हो, पंजाब की बात हो, राजस्थान की बात हो या दिल्ली एनसीआर की बात हो, यहाँ पर भी ऑरेंज अलर्ट बारिश का जो है वो दिया गया था। और आप देख सकते हैं कि तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ इस वक्त, सीपी की तस्वीरें दिखा रही हूँ कि किस तरीके से झमाझम बारिश की जो शुरुआत है वो हो चुकी है, और कहीं ना कहीं अब लोगों को राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि अगर हम तापमान की बात करें तो तापमान सामान्य से कम जरूर बने हुए थे, लेकिन उमस की स्थिति जो है वो लगातार लोगों को परेशान कर रही थी।
0: इस प्री मानसून बारिश ने लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी से काफी हद तक राहत पहुंचाई है। वहीं मौसम विभाग ने दावा किया है कि मानसून की केरलम में एंट्री हो गई है। इसके असर से केरलम के अलावा तमिलनाडु और कर्नाटक में कुछ जगहों पर अगले 7 दिन भारी बारिश हो सकती है।
2: आज 4 जून को अगर आप ये फिगर में देखेंगे कि मानसून केरला और कुछ कर्नाटक के हिस्से भी कवर किया है, और इसके अलावा तमिलनाडु के हिस्से आज कवर हुए हैं, और थोड़ा ब्यो बंगाल की ब्रांच कवर हुई है। तो इसका रीज़न यही है कि कंटिन्यूज अब जो कन्वेक्टिव एक्टिविटी है जहां इंक्रीज हो गई है, उसका रीज़न क्या है कि जो जहां वेस्टर्ली हवाओं की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी बढ़ गई है, 4.5 तक है। लो लेवल में जो विंड्स हैं वो 20-25 नॉट्स हैं, और ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो मानसून है जहाँ उसके कारण वाइड स्प्रेड रेनफॉल एक्टिविटी रहा इस रीजन में, तो हमने मानसून को जहाँ कवर किया है।
0: मानसून की दस्तक से पहले ही देश के ज्यादातर हिस्सों में प्री मानसून बारिश देखने को मिल रही है, चाहे दक्षिण भारत हो या उत्तर भारत, चाहे पूर्वी भारत हो या पश्चिम भारत। हालांकि पहले मानसून के 25 मई को केरलम में पहुंचने का पूर्वानुमान दिया गया था, लेकिन मानसून ने दस्तक देने के लिए 4 जून की तारीख चुनी और देश में आज से बारिश के मौसम की शुरुआत हो गई। हालांकि इस बार मानसून थोड़ी देर से पहुंचा है, लेकिन अभी तक तो यही लग रहा है कि बिल्कुल दुरुस्त पहुंचा है। मौसम विभाग ने पहले ही संकेत दे दिया था कि केरलम और आसपास के क्षेत्रों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। इसके बाद राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश दर्ज की गई। गुरुवार सुबह भी केरलम के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है। अलपुझा और कोट्टायम और अन्नाकुलम जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं जब मानसून की घोषणा के सारे मानक पूरे हो गए तो उसके आने का ऐलान भी हो गया। मौसम विभाग ने पहले अंदाजा लगाया था कि मानसून 25 या 26 मई के आसपास केरलम पहुंच सकता है, लेकिन तमाम वजहों से मानसून की रफ्तार अचानक धीमी पड़ गई। बाद में मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बदलाव किया और 4 जून के आसपास मानसून के केरलम पहुंचने की भविष्यवाणी की, जो आखिरकार सच साबित हुई।
2: आने वाले दिनों की बात करें तो हमारा अनुमान ये है कि केरला, कोस्टल कर्नाटका, वहाँ पे वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी, आल्सो वेरी हैवी मीन 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी ऑलमोस्ट पूरा वीक होती रहेगी। उसके साथ ही कर्नाटक, कोंकण, गोवा, वहाँ भी रेनफॉल एक्टिविटी, हैवी रेनफॉल होने का अनुमान है। तमिलनाडु, देन इंटीरियर कर्नाटका, जहाँ रेनफॉल एक्टिविटी ऑलमोस्ट हैवी रहने का अनुमान है। इसके अलावा भी जहाँ भी जो मानसूनल विंड फेवरेबल हो रही है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी, जैसे भी आज मानसून थोड़ा नॉर्थ ब्यो बंगाल तक टच किया जो नॉर्थ पे की लाइन है, और आने वाले 2-3 दिनों में जहाँ भी रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ जाएगी, हैवी वेरी हैवी रेनफॉल होने का अनुमान है, तो हमारा आने वाले दिनों में यही फोरकास्ट है 2-3 दिन जो मानसून है, जो इवन इंटायर गोवा और कोंकण के कुछ हिस्से, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से और कवर कर सकता है, कर्नाटक के हिस्से कवर हो सकते हैं, आंध्रा के, तमिलनाडु के जो हिस्से वो और कवर हो जाएंगे और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के कुछ हिस्से कवर होने का।
0: मॉनसून के केरलम पहुंचने के बाद अब देश के दूसरे हिस्सों खासकर उत्तर भारत पर नजरें टिकी हैं, जहां लोग कई सप्ताह से भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं और बादलों के बरसने की आस लगाए बैठे हैं। आमतौर पर मॉनसून जून के दौरान तेजी से आगे बढ़ता है। ये पहले पश्चिमी तट और पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों को कवर करता है, फिर 15 जून तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पहुंचता है। इसके बाद मॉनसून पूर्वी और उत्तरी भारत की ओर बढ़ता है। वहीं दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी प्री मॉनसून एक्टिविटी जारी है।
2: अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, वो समय नॉर्थ पाकिस्तान पे एक सर्कुलेशन की फॉर्म में है, स्ट्रेंथन में है और उसके साथ ही जहाँ जैसे WD बना हुआ है, जो हवाएं भी अरेबियन सी से इस एरिया में आ रही है, जिसके कारण आप थोड़ा ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है और विच इज़ फेवरेबल फॉर रेनफॉल एक्टिविटी। तो हमारा यही है कि आने वाले 2 से 3 दिन जहाँ पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक्टिविटी रहेगा, जिसके लिए हमने जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के लिए हमने रेनफॉल के साथ हेलस्टॉर्म का वार्निंग भी दिया है। पंजाब, हरियाणा हम अनुमान लगा रहे हैं जो हवाओं की गति है वो 50 से 60 किलोमीटर रह सकती है। इसके अलावा NCR दिल्ली की बात करें, वहाँ भी हमारा 2 दिन के लिए येलो अलर्ट है, वहाँ भी हमारा यह है कि 40 से 50 किलोमीटर तक हवाएं रहने।
0: हालांकि देश के कई राज्यों में अभी भी गर्मी कम नहीं हुई है। गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में तापमान 40 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। दिल्ली की बात करें तो आमतौर पर मानसून 27 जून के आसपास पहुंचता है, जबकि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और देश के ज्यादातर हिस्सों में जून के आखिर या जुलाई के पहले हफ्ते तक मानसून आ जाता है। केरलम के बाद अब मौसम वैज्ञानिक इस बात पर नजर रखेंगे कि मानसून आगे भी अपने निर्धारित समय के अनुसार बढ़ता है या नहीं। दिल्ली से मनीषा नड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: पंजाब में निजी स्कूलों में फीस पर लगाम। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
4: पंजाब सरकार के निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर लगाम लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की है कि अब कोई भी निजी स्कूल सालाना 5% से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकेगा। पिछले 3 सालों में तय सीमा से ज्यादा फीस वसूलने वाले स्कूलों को अतिरिक्त राशि अभिभावकों को लौटानी होगी। सरकार इस संबंध में अध्यादेश लाकर बाद में कानून बनाएगी। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना, फीस वापसी और बार बार गलती करने पर मान्यता रद्द करने तक की कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने पद संभालने के बाद बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के स्कूल और कॉलेज छात्रों के लिए मुफ्त बस पास की घोषणा की है। इससे विशेष रूप से गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों के हजारों छात्रों को राहत मिलेगी। पहली कैबिनेट बैठक के बाद उन्होंने बताया कि बी खाता संपत्तियों को ए खाता में बदलने की सुविधा अब पूरे राज्य में लागू होगी। मुख्यमंत्री ने इसे नई शुरुआत बताते हुए विकास और सुशासन का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि सरकार सामूहिक निर्णय और लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर काम करेगी। कश्मीर और लद्दाख के बीच साल भर संपर्क सुनिश्चित करने वाली नई जोजिला टनल लगभग बनकर तैयार हो गई है। श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर बन रही ये सुरंग अगले कुछ हफ्तों में यातायात के लिए खोली जा सकती है। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण जोजिला दर्रा कई महीनों तक बंद रहता है, जिससे लद्दाख का संपर्क प्रभावित होता है। टनल शुरू होने के बाद हर मौसम में पहाड़ों का रुख संभव होगा। इससे यात्रा का समय कम होगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और लद्दाख क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी।
3: चलिए अब बात करते हैं और बताते हैं आपको कि गर्मी में पहाड़ कैसे दे रहे हैं सुकून। दरअसल गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही ज्यादातर लोग जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों का रुख करते हैं, लेकिन यहाँ पीक समर सीजन में इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है कि घूमने का मजा ही किरकिरा हो जाता है। ट्रैफिक जाम, महंगे होटल और भारी भीड़ आपकी ट्रिप को तनाव भरा बना देते हैं। तो अगर आप भी इस गर्मी इन जगहों पर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो पीक सीजन में यहां जाने से बचना बेहतर होगा।
4: दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन उत्तर भारत के कुछ राज्यों में अभी भी पारा हाई है। ऐसे में तन मन को कूल करने के लिए पहाड़ों की सैर लाजमी है, लिहाजा पर्यटक पहाड़ों पर सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने के लिए निकल पड़े हैं। कोई जम्मू कश्मीर जा रहा है तो कोई हिमाचल और उत्तराखंड का रुख कर रहा है। पहलगाम की ऊंची ऊंची चोटियां, चीड़ और देवदार के घने जंगल, कल कल बहती नदी, इन्हीं दिलकश नजारों का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक यहां पहुंच चुके हैं। कोई इन नजारों को अपने कैमरों में कैद कर रहा है तो कोई इन खूबसूरत नजारों के साथ खुद को कैमरे में कैद कर रहा है। यहाँ के हर एक लम्हे को भरपूर जी लेने की चाहत हर किसी को है।
5: यहाँ के मौसम की बात करें तो बहुत ही बढ़िया, एकदम खूबसूरत। मेरे मतलब मेरा तो ये फर्स्ट टाइम है यहाँ पे आने का। टूरिस्टों से मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे आए, काफी सारे पिछली कुछ घटनाएं यहाँ पे हुई थी, उस वजह से काफी लोग सोच में पड़ गए, बट मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया चल रहा है सब।
6: अच्छा लग रहा है, हर साल आते रहते हैं पहलगाम, इस बार भी आए, अभी पहली बार आए इस साल गर्मियों में, बाद में अभी जून जुलाई बाकी बड़ा आएंगे बीच में।
4: पहलगाम की ठंडी हवाएं और नदी के ठंडे पानी के बीच पर्यटक मैदानों की तपिश को भूल चुके हैं, इनका मन पूरी तरह पहलगाम में रम चुका है।
7: जम्मू में इतनी गर्मी है हम आपको बयान नहीं कर सकते, इतनी गर्मी है जम्मू में भी। यहाँ कश्मीर में तो जन्नत है, हम कल आए थे, इतनी ठंड थी कि हमें यहाँ जैकेट्स वेयर करनी पड़ी।
8: अच्छा।
7: हाँ, ब्लैंकेट्स लेने पड़े, सुबह हमने गर्म पानी से नहाया है, इतना अच्छा मौसम है यहाँ पे।
8: अच्छा मौसम है। हाँ?
7: तो पहलगाम, तो वैसे भी पहलगाम और सोनामर्ग मेरी फेवरेट स्पॉट है। हाँ? हम तो हर साल पहलगाम और यहाँ पे आते हैं।
9: वधारे मजा आवे, ने फरवानी मम्मी पापा साथे खूब वधारे मजा आवे छे।
8: मजा रो मजो।
9: हाँ।
8: मौसम कैसा है?
9: मौसम तो बहुत ही बढ़िया है यहाँ का।
8: अच्छा।
9: गुजरात में तो बहुत गर्मी पड़ रही है, यहाँ तो ठंडी है।
4: बर्फ से लकदक बांदीपोरा की पहाड़ी की चोटियां सैलानियों को खूब पसंद आ रही हैं। गुरेज रोड पर करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर राजदान दर्रे पर पर्यटक यहां की बर्फीली वादियों का दीदार करने पहुंच रहे हैं और ठंडे मौसम का मजा ले रहे हैं।
10: बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ बर्फ हो रही है, बारिश भी हो रही है, हमने श्रीनगर में गर्मी देख ली, यहाँ पे ऊपर आके बारिश देख ली, अभी बर्फ हो रही है तो कम से कम 5 डिग्री तो चल रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ठंडी है।
11: जून में वी कैन नॉट एक्सपेक्ट सच टाइप ऑफ बर्फबारी हियर अभी, लेकिन वो गर्मी को देखते हुए लोग यहाँ पर आना चाहिए। और बहुत अच्छा सोहना वेदर है, बहुत अच्छी जगह है ये, करीब करीब 14,000 फीट पे जगह है राजस्थान, ऑन द वे टू गुरेज।
4: हिमाचल प्रदेश के चंबा का खजियार भी पर्यटकों से गुलजार है। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, हरा भरा खुला मैदान और बीच में छोटी सी झील पर्यटकों का मन मोह रही है। कोई इन दिलकश नजारों को कैमरे में कैद कर रहा है तो कोई गीत गुनगुना रहा है। कुल्लू और आसपास के पहाड़ी इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, लिहाजा यहाँ भी पर्यटकों की भरमार है। यहाँ पर्यटक जिप लाइन, पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग जैसे एडवेंचर टूरिज्म को जमकर एंजॉय कर रहे हैं।
12: और हम लोग फैमिली के साथ राजस्थान से यहाँ आए, राजस्थान से यहाँ हिमाचल को हमने इसलिए चूज किया बिकॉज यहाँ का वेदर अच्छा है, राजस्थान से कंपैरेटिवली काफी कूल वेदर है यहाँ, वहाँ पे 42-43 डिग्रीज टेम्परेचर, हीट वेव्स काफी ज्यादा हो रहे थे, सो समर वेकेशन में हमने घूमने के लिए इसको चूज किया। यहाँ ग्रीनरी अच्छी है, पॉल्यूशन फ्री है और वेकेशन के लिए हमने मतलब एक कूल प्लेस चाहिए थी, इसलिए हमने हिमाचल को चूज किया।
13: मनाली का जो टूरिज्म है वो बड़े पीक सीजन में है और काफी लोगों का व्यवसाय भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी होगी और उसके अलावा भी और भी जो व्यवसाय हमारे से जुड़े हुए हैं, तो ये काफी पीक में।
4: कुल्लू मनाली में सैलानियों का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मई के महीने में यहाँ 66,000 से ज्यादा पर्यटक वाहनों की एंट्री दर्ज की गई थी और बड़ी तादाद में सैलानियों के पहुंचने से यहाँ के होटल खचाखच भरे हैं। गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यटक कश्मीर, हिमाचल ही नहीं बल्कि देवभूमि उत्तराखंड का भी रुख कर रहे हैं और इसका सबसे ज्यादा असर नैनीताल और आसपास के पर्यटन स्थलों में देखने को मिल रहा है। वीकेंड और छुट्टियों के हालात बदतर हो चले हैं। हालात ऐसे हैं कि प्रमुख मार्गों पर लंबा जाम लग रहा है, जिसकी वजह से पर्यटकों को घंटों तक वाहनों में फंसे रहना पड़ रहा है, तो स्थानीय लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है।
14: और किसी भी प्रकार का बाइकर्स और बाइक टैक्सीज को पूर्ण रूप से हमने प्रतिबंधित किया है, और जो उन्हीं व्हीकल्स को हम अलाव कर रहे हैं जो जिनके पास होटल में कंफर्म्ड बुकिंग है और पार्किंग भी है। इस वजह से ट्रैफिक जो है वन वे सिस्टम भी लागू है, शाम के टाइम में सुगम और सुव्यवस्थित रूप से यातायात का संचालन हो रहा है। नो, निश्चित रूप से यातायात का दबाव जरूर है, परंतु व्यवस्थित रूप से चल रहा है।
4: नैनीताल में जहां पर्यटकों की रिकॉर्ड आमद से होटल, रेस्टोरेंट और पर्यटन कारोबार से जुड़े व्यवसायियों के चेहरे खिले हुए हैं, वहीं दूसरी ओर बढ़ता ट्रैफिक प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। फिलहाल नैनीताल और आसपास के इलाकों में जाम से जल्द राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। नैनीताल से लीला सिंह बिष्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: न्यूज पेपर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
0: कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन भारतीय शेयर बाजार में खास बदलाव देखने को नहीं मिला। गुरुवार को 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 13 अंक बढ़कर 74,360 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयर वाला एनएसई निफ्टी 10 अंकों की बढ़त के साथ 23,416 पर बंद हुआ। ग्लोबल मार्केट में मांग के कारण गुरुवार को गोल्ड की कीमतों में बढ़त देखने को मिली। ऑल इंडिया एसोसिएशन के अनुसार 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 700 रुपए चढ़कर 1,60,300 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 3800 रुपए लुढ़ककर 2,65,700 रुपए पर पहुंच गई। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़े तनाव के बीच अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में एक बार फिर से गिरावट देखने को मिली है। गुरुवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 7 पैसे कमजोर होकर 95.83 के स्तर पर बंद हुआ।
3: फिल्म लगान के 25 साल पूरे होने पर फैंस को आमिर के प्रोडक्शन का तोहफा। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड पर।
0: फिल्म लगान की रिलीज के 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। फिल्म 15 जून 2001 को रिलीज हुई थी और अब इसको लेकर आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस ने फिल्म का नया ट्रेलर रिलीज करने के साथ ही फिल्म की री रिलीज की घोषणा भी की। फिल्म लगान का ये 4K ट्रेलर एक बार फिर 1893 के उस समय में ले जाता है जब गांव वालों को सूखे की वजह से ब्रिटिश सेना को भारी लगान देना पड़ता था। इस ट्रेलर को रिलीज करने के साथ ही ये जानकारी भी दी गई है कि ये फिल्म 12, 13 और 14 जून को सिनेमाघरों में री रिलीज की जाएगी। विक्रम भट्ट के निर्देशन वाली फिल्म हॉन्टेड 3D गोस्ट ऑफ द पास्ट का स्क्रीमर रिलीज किया गया है। स्क्रीमर यानी इस छोटे टीजर वीडियो की शुरुआत एक भूतिया हवेली से होती है, जिसपे फिल्म के मुख्य किरदार निभाने वाले मीमोह चक्रवर्ती हवेली में अपने प्यार की तलाश में पहुंचते हैं, जहां उनके सामने कुछ ऐसे हालात बनते हैं जिनसे निकल पाना उनके लिए एक बड़ी चुनौती होती है। फिल्म में मीमोह के साथ चेतना पांडे मुख्य किरदार निभाती नजर आएंगी। इसके अलावा श्रुति प्रकाश, गौरव वाजपेयी, प्रणीत भट्ट, हेमंत पांडे भी फिल्म में दिखेंगे। ये फिल्म 12 जून को हिंदी, तमिल और तेलुगु में सिनेमाघरों में आएगी। अभिनेत्री जानवी कपूर त्रिमला पहुंची। उन्हें नंगे पैर मंदिर की 3,550 सीढ़ियां चढ़ते हुए देखा गया। उनके साथ उनकी टीम के लोग और दोस्त भी दिखे। जानवी हर खास मौकों पर यहां पहुंचती हैं। इस बार वो अपनी फिल्म पेड्डी के रिलीज के दिन यहां पहुंची और भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा अर्चना की। जानवी ने फिल्म पेड्डी में रामचरण के साथ काम किया है और इस बार माना जा रहा है कि वो फिल्म की सफलता की कामना को लेकर ही तिरुमला पहुंची और भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के पहाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। हॉलीवुड के डीसी स्टूडियोज ने अपनी फिल्म सुपरगर्ल का आखिरी ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसमें दिखाया गया है कि सुपरगर्ल और सुपरमैन अपने डॉग क्रिप्टो को बचाने के लिए खतरनाक मिशन पर निकलते हैं। इस सफर में उनकी मुलाकात रुथिये नाम की एक एलियन लड़की से होती है जो उनका साथ देती है। क्रेग गिलेस्पी निर्देशित इस फिल्म में मिली एलकॉक सुपरगर्ल का किरदार निभा रही हैं। ये फिल्म 26 जून को अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी।
3: चलिए न्यूज पथ में खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
0: वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि शख्स अपनी उंगलियों के बीच चावल का एक दाना पकड़ता है। इसके बाद वो चावल के दाने को चाकू से इतनी तेजी और सटीकता के साथ काटना शुरू करता है कि कुछ ही सेकंड में पूरा दाना बारीक टुकड़ों में बदल जाता है। वीडियो देखने वाले कई लोग दावा कर रहे हैं कि उसने चावल के दाने को करीब 50 हिस्सों में काट दिया। सबसे ज्यादा चर्चा उसके हाथों की स्पीड और कंट्रोल को लेकर हो रही है। आमतौर पर लोग चावल का दाना ठीक से पकड़ भी नहीं पाते, लेकिन इस शख्स ने उसे इतनी सफाई से काटा कि इंटरनेट यूजर्स दंग रह गए। छुट्टी के बाद स्कूल का पहला दिन हर स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए ही खास होता है। ऐसे में अगर स्कूल में बच्चों का वेलकम प्यार और पारंपरिक तरीके से किया जाए तो उनकी खुशी कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में सोशल मीडिया पर हाल ही में केरलम के एक स्कूल का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूल में क्लास गेट पर एक टीचर खड़ी है और स्कूल पहुंचने वाले बच्चों का ट्रेडिशनल तरीके से वेलकम किया जा रहा है। बच्चे एक एक करके टीचर के पास पहुंचते हैं, जिसके बाद टीचर हर एक बच्चे की आरती उतारती है, उसे आशीर्वाद देती है और फिर प्यार करके स्कूल के अंदर भेजती है। मौसम इतना खराब है कि सामने देखना भी मुश्किल लग रहा है। इसी दौरान एक बाइक सवार परिवार सड़क किनारे रुका हुआ नजर आ रहा है। कुछ ही देर के बाद कार वहां पर रुक जाती है और उसका ड्राइवर परिवार की मदद के लिए आगे आता है। वो महिला और बच्चे को सुरक्षित कार में बैठाता है। वीडियो में ये सीन देखकर लोग कह रहे हैं कि मुश्किल समय में किसी की मदद करना कितना बड़ा काम हो सकता है। साफ पता चल रहा है कि कार ड्राइवर की इस छोटी सी लेकिन अहम मदद ने लोगों का दिल जीत लिया है। वीडियो में दिखाई देता है कि एक साड़ी को छत से नीचे तक बिछाया गया है। ऊपर मौजूद शख्स बाल्टी से गेहूं साड़ी पर डालता है और देखते ही देखते गेहूं फिसलता हुआ सीधे नीचे रखी बोरी में पहुंच जाता है। पूरा सिस्टम इतना आसान और मजेदार है कि देखने वाले बार बार वीडियो चला रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये जुगाड़ किसी इंजीनियरिंग लैब में नहीं बल्कि गाँव के माहौल में तैयार किया गया है। इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक विदेशी लड़की दिखाई दे रही है जो दुल्हन के गेटअप में नजर आ रही है। उसने अपने मारवाड़ी दूल्हे को शानदार सरप्राइज देकर सबको हक्का बक्का कर दिया। वीडियो में दुल्हन राजस्थानी गाने पर पारंपरिक अंदाज में डांस करती नजर आती है। उसका डांस देखकर न सिर्फ दुल्हा खुश हो जाता है बल्कि शादी में मौजूद मेहमान भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते। वीडियो का सबसे खास हिस्सा आखिर में देखने को मिलता है जब दुल्हन प्यार से अपनी दूल्हे का हाथ पकड़कर उसे भी डांस फ्लोर पर ले जाती है।
3: इलॉन मस्क ने एआई की मदद से बने मूवी ट्रेलर पर पूछा लोगों से सवाल। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
15: फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी को लेकर कनाडा का शहर वैंकूवर पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। शहर के प्रतिष्ठित साइंस वर्ल्ड डोम को 131 पैनल्स की मदद से टूर्नामेंट की आधिकारिक मैच बॉल ट्रायुंडा का रूप दिया गया है। वहीं नॉर्थ शोर के ग्राउस माउंटेन पर विशाल कैनेडाई राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया गया है। 40 मीटर ऊंचे जियोडेसिक डोम की ये सजावट पर्यटकों का ध्यान आकर्षित कर रही है। वैंकूवर में कुल 7 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें कनाडा और कतर के बीच होने वाला अहम मैच भी शामिल है। इलॉन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता दिखाते हुए होमर के महाकाव्य इलियट पर आधारित एक एआई जनरेटेड सिनेमैटिक ट्रेलर जारी किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए इस ट्रेलर को ग्रोक इमेजिन 1.5 की मदद से तैयार किया गया। ट्रोजन युद्ध की कहानी को शानदार विजुअल्स और इमोशंस के साथ पेश किया गया है। मस्क ने लोगों से पूछा कि क्या वो इसकी पूरी फिल्म देखना चाहेंगे। ये ट्रेलर संकेत देता है कि भविष्य में एआई की मदद से पूरी फीचर फिल्म्स बनाना संभव हो सकता है।

0: लंदन में कलाकार माजा पेट्रिक की नई प्रदर्शनी द ग्लिस्ट सब्लाइम तकनीक और प्रकृति के अनूठे मेल का उदाहरण बनकर सामने आई है। इस प्रदर्शनी में एक रोबोट सिंथेटिक आर्कटिक पॉपीज को लाइट बॉक्स में सजाता दिखाई देता है। ये सीरीज उन आर्कटिक पॉपीज से प्रेरित है जो पृथ्वी के सबसे उत्तरी इलाकों में खिलने वाले पौधों में शामिल हैं। 6 जून तक चलने वाली ये प्रदर्शनी SXSW लंदन कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसमें तकनीक, संगीत, फिल्म और संस्कृति से जुड़े विविध आयोजनों को एक मंच पर प्रस्तुत किया जा रहा है। चीन के सिचुआन प्रांत स्थित चिंगदू रिसर्च बेस ऑफ जायंट पांडा ब्रीडिंग से एक बेहद प्यारा वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक नन्हा पांडा अपनी मां की पीठ पर खेलता और मस्ती करता दिख रहा है। इस मनमोहक नजारे ने लोगों का दिल जीत लिया है। चिंगदू का ये केंद्र वैज्ञानिक अनुसंधान, जन जागरूकता और इको टूरिज्म के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ जायंट पांडा और रेड पांडा जैसी दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण और प्रजनन पर विशेष काम किया जाता है, जिससे वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा मिलता है।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छा।
2: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Tune In has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
4: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
8: चमोली में गुप्तकाल ट्रैकिंग कर वापस लौटा पहला दल गमशाली से। 26 मई को हुआ था रवाना, टीम में शामिल थे 7 ट्रैकर। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक केदारनाथ धाम पहुंचे करीब 11 लाख श्रद्धालु। धाम में लगातार बदल रहा मौसम का मिजाज। शिरडी के साई दरबार से आई आस्था की अनोखी तस्वीर, श्रद्धालु ने साई बाबा को अर्पित किया सोने का मुकुट, करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद मौसम सुहाना, तापमान में गिरावट से लोगों को मिली गर्मी से राहत, मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए जारी किया अलर्ट। इंडोनेशिया के चिड़ियाघर में गूंजी 4 नन्हे मेहमानों की किलकारी, बाघिन दीनी ने 4 शावकों को दिया जन्म। सफारी पार्क में कुल 8 हुई बाघों की संख्या।

चलिए शुरुआत करते हैं दिल्ली एनसीआर के तूफानी मौसम की खबर से। गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे अचानक मौसम ने करवट ली। तेज धूल भरी आंधी, काले बादल और झमाझम बारिश ने पूरा माहौल बदल दिया। अंधेरे होने की वजह से रात का एहसास होने लगा। तेज हवा की वजह से कई जगह पेड़, साइन बोर्ड और बिजली के खंभे गिर गए। मौसम का मिजाज अभी भी जस का तस है। मौसम विभाग ने कल यानी कि शुक्रवार को भी येलो अलर्ट जारी किया है, यानी कि दिल्ली एनसीआर और आसपास गरज चमक के साथ आंधी का अनुमान है। देखिए ये रिपोर्ट।

दोपहर तक धूप थी, आसमान साफ था, पर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि दिन में रात हो गई। घड़ी में 3 बजते ही तेज धूल भरी आंधी चली और देखते ही देखते घुप अंधेरा छा गया। जो सड़क पर थे सहम गए, जो गाड़ियों में थे ठहर गए। हवा की रफ्तार इतनी तेज कि हरे दरख्त उखड़ गए, कुछ सड़कों पर औंधे मुंह गिरे तो कुछ नीचे खड़ी गाड़ियों पर। लेकिन साइन बोर्ड्स की धज्जियां उड़ गई, स्ट्रीट लाइट्स के खंबे भी हवा का प्रहार झेल नहीं सके। हवा की रफ्तार करीब 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसके सामने एक कदम भी आगे बढ़ना मुहाल। अंधेरा ऐसा कि गाड़ियों में हेडलाइट्स तक जलानी पड़ी।

0: इसके बाद शुरू हुई झमाझम बारिश जिसने सड़कों को लबालब कर दिया। समस्या तब हुई जब पानी जमा होने से ट्रैफिक रुक गया। ये तस्वीरें नोएडा की हैं, लेकिन कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें पूरे दिल्ली NCR में नजर आईं, जब ये पूरा इलाका थोड़ी देर के लिए ठहर गया।
1: और आप ये समझिए कि 80 से 100 किलोमीटर की रफ्तार अब मॉनसून ने आज दस्तक दी है केरल में। आपको तस्वीरें दिखाऊं, ये देखिए, ये दिल्ली और यूपी की सीमा है और आप यकीन मानेंगे कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये दिल्ली मेरठ हाईवे है। आप देखिए इसकी तस्वीरें कि महज अभी 5 से 10 मिनट हुए हैं और इतनी तेज बरसात है कि आपको लगेगा यहां समंदर। हवा की रफ्तार अगर समझना हो, ये देखिए फ्लेक्स, 80 से 100 किलोमीटर की हवा, मतलब इतनी तूफानी बारिश और सूखी के 3 से 4 बजे के बीच आपको ऐसा लग रहा होगा कि रात के 10 बज रहे हो। घूप अंधेरा, सड़कों पर पूरी तरह से विजिबिलिटी एकदम प्रभावित है, सारी गाड़ियों के इंडिकेटर ऑन है और हाईवे पर पूरा एक तरह का जल जमाव दिखाई दे रहा है। और ऐसी तस्वीर लगभग आप NCR के ज्यादातर इलाकों में देखने को मिलेगी। और मैं जिस ओर आगे बढ़ रहा था, सिर्फ एक तरफ का नहीं, आप दूसरी तरफ का इलाका अगर देखेंगे तो आपको भी यहां भी वही प्रभाव दिखाई देगा। और खासकर मौसम में जो करवट बदली है, आपको बताऊं, सबसे पहले ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन ऑरेंज अलर्ट धीरे धीरे बदलते हुए उसके बाद जो है अब जिस तरह का चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है कि अगले 2 दिन ऐसी स्थितियां रह सकती हैं। और आज अचानक से मौसम ने जिस तरह करवट ली है उसके बाद से पूरा दिल्ली, आसपास का खासकर इलाका गुरुग्राम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी ज्यादातर इलाके, हरियाणा और इसी के साथ जितने भी इलाके सटे हैं, हर तरफ आंधी पानी तेज तूफान। इसके पहले लगभग 20 मिनट तक जो है वो तूफान ऐसा था कि ऐसा लगा चारों जैसे धूल की एक परत सी जम गई हो और इस कतर जो है माहौल था कि विजिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही थी। देखिए बादलों की जो गड़गड़ाहट है आप सुन रहे हैं, तो मौसम विभाग ने ऐसे में ओले गिरने और इसी के साथ साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी दी है। और अगर आप थोड़ी देर, इसीलिए सड़कों पर जो आवाज आई है वो बिल्कुल ठप सी पड़ गई है।
0: जून के शुरुआती दिन है पर मौसम की मेहरबानी से दिल्ली NCR को गर्मी से कुछ राहत थी। हाँ, मगर 40 डिग्री तापमान के साथ उमस मौजूद थी। पर जब आंधी के साथ बादल गरजे और जमकर बरसे तो पलक झपकते ही गर्मी छू मंतर हो गई। ये काले बादल मॉनसून के नहीं हैं, लेकिन असर मॉनसून से कम भी नहीं है। दिल्ली, खासकर दक्षिणी दिल्ली में खूब बारिश हुई।
2: तस्वीरों में आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में मौसम कितना अच्छा आपको होता हुआ नजर आ रहा है। फुहारे पड़ रहे हैं, बारिश हल्की हल्की हो रही है और आप देख सकते हैं इस रिंग रोड पर क्या स्थिति हुई है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, मौसम बिल्कुल सुहाना है, गर्मी से लोगों को राहत मिली है और मौसम बिल्कुल सुहाना हो गया है और बारिश रिमझिम बरसात जो है वो हो रही है।
0: दिल्ली NCR को ये बादलों की सौगात है जिसका अनुमान मौसम विभाग ने पहले ही दे दिया था। पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से ऐसे मौसम का अंदाजा था। मौसम विभाग ने न सिर्फ 4 जून बल्कि 5 जून के लिए भी येलो अलर्ट घोषित किया है, यानी लोगों को खराब मौसम के प्रति सावधान रहना होगा। यानी NCR में ये सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। नोएडा और आसपास के शहरों में 6 जून तक बादल छाए रहेंगे, गरज चमक के साथ एक या दो बार भारी बौछार पड़ने की पूरी संभावना है। आने वाले दिनों में तेज आंधी का दौर जारी रह सकता है। फिलहाल तो तेज हवा की रफ्तार रुकी और बारिश थमी तो मौसम सुहाना हो गया।
3: चिलचिलाती गर्मी और उमस भरी हवाओं के बाद मौसम एक बार फिर से पूरी तरीके से बदल चुका है। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से इस वक्त मौसम बेहद ही सुहाना हो चुका है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो है बारिश की शुरुआत हो चुकी है और ये पहले से ही मौसम विभाग का अनुमान था कि आज बारिश जो है वो देखी जा सकती है, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ जो है इस वक्त जो है सर्कुलेशन जो है वो पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है, जिसका अदर जो असर था वो देखने को पहाड़ी राज्य पर मिलेगा, लेकिन उसका कहीं ना कहीं असर जो है मैदानी इलाकों पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। और मौसम विभाग ने इसी चीज को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया था कि पहाड़ी राज्यों में, चाहे हिमाचल की बात हो, उत्तराखंड की बात हो या जम्मू कश्मीर की बात हो, हर तरफ अच्छी बारिश जो है देखी जाएगी। आंधी तूफान जो है वो भी देखा जा सकता है, लेकिन बात अगर मैदानी राज्यों की जाए तो यूपी हो, पंजाब की बात हो, राजस्थान की बात हो या दिल्ली NCR की बात हो, यहाँ पर भी ऑरेंज अलर्ट बारिश का जो है वो दिया गया था। और आप देख सकते हैं कि तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ इस वक्त, CP की तस्वीरें दिखा रही हूँ कि किस तरीके से झमाझम बारिश की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और कहीं ना कहीं अब लोगों को राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि अगर हम तापमान की बात करें तो तापमान सामान्य से कम जरूर बने हुए थे, लेकिन उमस की स्थिति जो है वो लगातार लोगों को परेशान कर रही थी, क्योंकि अरब सागर से जो लगातार हवाएं आ रही थी उसकी वजह से तापमान कम होने के बाद बावजूद लोगों को गर्मी परेशान कर रही थी, लेकिन जो ये बारिश की शुरुआत हुई है इसी तरीके से आने वाले 3-4 दिन तक मौसम जो है सुहाना रहेगा। लगातार बारिश जो है वो हो सकती है, साथ ही साथ हवाएं चलेगी, लेकिन तापमान में जो है थोड़ी कमी जरूर देखी जाएगी।
0: मौसम अच्छा है, गर्मी से राहत है और आगे भी हल्की या मध्यम बारिश का अनुमान है। हाँ, सावधानी इसलिए जरूरी है क्योंकि कई इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है।
4: अभी एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस है, वो इस समय नॉर्थ पाकिस्तान पे एक सर्कुलेशन की फॉर्म में है, स्ट्रेंथन में है, और उसके साथ ही जहाँ जैसे WD बना हुआ है, जो हवाएं भी अरेबियन सी से इस एरिया में आ रही है, जिसके कारण आप थोड़ा ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है और विच इज़ फेवरेबल फॉर रेनफॉल एक्टिविटी। तो हमारा यही है कि आने वाले 2 से 3 दिन जहाँ पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक्टिविटी रहेगा, जिसके लिए हमने जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के लिए हमने रेनफॉल के साथ हेलस्टॉर्म का वार्निंग भी दिया है। पंजाब, हरियाणा हम अनुमान लगा रहे हैं जो हवाओं की गति है वो 50 से 60 किलोमीटर रह सकती है। इसके अलावा NCR दिल्ली की बात करें, वहाँ भी हमारा 2 दिन के लिए येलो अलर्ट है, वहाँ भी हमारा यह है कि 40 से 50 किलोमीटर तक हवाएं रहने का।
0: मॉनसून से पहले ही मौसम ने माहौल बना दिया है, न सिर्फ दिल्ली NCR बल्कि राजस्थान से लेकर बिहार तक बादल गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। और
5: अब बात मॉनसून की। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने आधिकारिक रूप से केरलम में दस्तक दे दी है। हालांकि अनुमान के हिसाब से कुछ देर से हुई है, लेकिन मॉनसून दुरुस्त आया है। केरल के कई जिलों में बारिश हो रही है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अब मॉनसून धीरे धीरे देश के अन्य हिस्सों की ओर बढ़ेगा, जिससे कि गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। आइए समझते हैं मॉनसून का सफर इस रिपोर्ट में।

0: समझ लीजिए आज से भारत का मेघ मल्हार शुरू हो चुका है। मॉनसून ने दस्तक दे दी है। केरलम में बादलों का कारवां पहुंच चुका है। अब इंतजार इन बादलों के पूरे हिंदुस्तान पर छाने का है। पहले मॉनसून के 25 मई को केरलम में पहुंचने की भविष्यवाणी थी, लेकिन मॉनसून ने दस्तक देने के लिए 4 जून की तारीख चुनी और ऑफिशियली देश में आज से बारिश का मौसम शुरू हो गया है।
1: तपती गर्मी से झुलस रहे हिंदुस्तान के लिए 4 जून एक अच्छी खबर लेकर के आया और वो खबर ये है कि दक्षिण पश्चिम मानसून भारत पहुंच चुका है। उसने केरल में दस्तक दी है। हालांकि 3-4 दिनों की देरी है, लेकिन मौसम का जो आंकड़ा है जिस तरह हम इसे जोड़ते हैं उसमें इस 3-4 दिन की देरी को बहुत ज्यादा देरी नहीं मानते हैं। अभी मौसम विभाग का कहना है कि वो अपनी दिशा में है और परिस्थितियां इतनी अनुकूल हैं कि वो आगे उत्तर तमिलनाडु कर्नाटक होते हुए पश्चिमी घाट के इलाके में अगले 2-3 दिनों में उसकी रफ्तार बढ़ेगी। धीरे धीरे वो महाराष्ट्र कोंकण और उसी के साथ साथ इसकी दिशा जो है वो आगे उत्तर पूर्व तक जाएगी। जैसे बंगाल की खाड़ी पार करने के बाद उत्तर पूर्व भारत की ओर मानसून बढ़ेगा, हिमालय से टकरा करके उसकी दिशा फिर पश्चिम लौटेगी और उसके बाद उसी मानसून का असर हम गंगा के जो मैदानी इलाके वहां देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड और उसी के साथ साथ आगे मध्य प्रदेश हरियाणा दिल्ली पंजाब और उसी के साथ जल्दी मानसून पूरे देश पर छा जाएगा। तो मानसून की रफ्तार अपनी पकड़ चुका है, भारत में उसने दस्तक दे दी है। इसी के साथ जाहिर अगले 2-3 दिनों केरल और तमिलनाडु में भारी बारिश हो सकती है और धीरे धीरे जैसे उत्तर में आएगा अगले 4-5 दिनों में ये मानसून महाराष्ट्र कोंकण होते हुए आगे अपनी रफ्तार पकड़ेगा, उत्तर की ओर आगे बढ़ेगा। तो जहां गर्मी का एहसास अभी हो रहा है, अब दक्षिण में मानसून रफ्तार पकड़ी है, उत्तर में भी थोड़ा इंतजार करना होगा।
0: इस बार मानसून थोड़ा देर से पहुंचा है, लेकिन अभी तक तो यही लग रहा है कि बिल्कुल दुरुस्त पहुंचा है। मौसम विभाग ने पहले ही संकेत दे दिया था कि केरलम और आसपास के क्षेत्रों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। इसके बाद राज्य के कई हिस्सों में व्यापक बारिश दर्ज की गई। जब मानसून की घोषणा के सारे मानक पूरे हो गए तो उसके आने का ऐलान भी हो गया।
2: फिगर में देखेंगे कि मानसून केरला और कुछ कर्नाटक के हिस्से भी कवर किया है और इसके अलावा तमिलनाडु के हिस्से आज कवर हुए हैं और थोड़ा ब्यो बंगाल की ब्रांच कवर हुई है। तो इसका रीज़न यही है कि कंटिन्यूज अब जो कन्वेक्टिव एक्टिविटी है जहां इंक्रीज हो गई है, उसका रीज़न क्या है कि जो जहां वेस्टर्ली हवाओं की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी बढ़ गई है, 4.5 तक है। लो लेवल में जो विंड्स हैं वो 20-25 नॉट्स हैं और ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो मानसून है जहाँ उसके कारण वाइड स्प्रेड रेनफॉल एक्टिविटी रहा इस रीजन में, तो हमने मानसून को जहाँ कवर किया है। अगर आप आने वाले दिनों की बात करें तो हमारा अनुमान ये है कि केरला कोस्टल कर्नाटका वहाँ पे वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी, ऑल्सो वेरी हैवी मीन 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी ऑलमोस्ट पूरा वीक होती रहेगी। उसके साथ ही कर्नाटक कोंकण गोवा वहाँ भी रेनफॉल एक्टिविटी हैवी रेनफॉल होने का अनुमान है। तमिलनाडु देन इंटीरियर कर्नाटका जहाँ रेनफॉल एक्टिविटी ऑलमोस्ट हैवी रहने का अनुमान है।
0: मई महीने में IMD ने अंदाजा लगाया था कि मानसून 25 या 26 मई के आसपास केरल में पहुंच सकता है, लेकिन तमाम वजहों से मानसून की रफ्तार अचानक धीमी पड़ गई। बाद में मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बदलाव किया और 4 जून के आसपास मानसून के केरलम पहुंचने की भविष्यवाणी की गई, जो आखिरकार सही साबित हुई।
3: को दिखाती हूँ, हर किसी को इंतजार था। 26 मई की जो है तारीख पहले दी गई थी कि केरल में मॉनसून जो है 26 मई को दस्तक देगा, लेकिन देरी हुई, फिर 1 जून की तारीख आई, लेकिन अब फाइनली जो है 4 जून आज हो चुका है और 4 जून को जो मॉनसून है वो केरल में दस्तक दे चुका है। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कर्नाटका के हिस्से हुए, कोस्टल कर्नाटका जो हो गया, तमिलनाडु का कुछ हिस्सा जो है कवर करते हुए बे ऑफ बंगाल, और इस साइड पर जो है आपको दिखेगा ये जो ब्लू लाइन आप जो देख रहे हैं ये इस वक्त हमारा ऑनसेट है। ये जो डेट आज की जो हिट कर गई है क्योंकि आज से जो मानसूनी बारिश है उसकी शुरुआत हो चुकी है और अब आने वाले 6-7 दिन अच्छा मौसम जो है वो रहने की उम्मीद है। अच्छी खासी बारिश जो है वो देखी जाएगी, 12 सेंटीमीटर से ज्यादा जो बारिश है वो जो है उसका अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही मैं ये चीज भी आपको दिखाऊंगी कि जो लगातार जो मानसून है वो आगे बढ़ते हुए नजर आएगा। तो इसके साथ ही साउथ से शुरू हुआ है लेकिन धीरे धीरे जो है वो नॉर्थ ईस्ट साइड में भी जो है मानसून जो है वो देखा जाएगा। लेकिन अगर मैं बाकी पूरे आपको देश की मैं स्थिति इस वक्त दिखाना चाहूँ कि किस तरीके से मौसम का हाल है वो आप इस मैप में देख सकते हैं। ये पूरा आपको ऑरेंज अलर्ट जो है जगह जगह आपको नजर आने वाला है, ऑरेंज या फिर येलो, लेकिन बारिश का अलर्ट जो है देश के अलग अलग राज्यों में इस वक्त आपको नजर आ जाएगा।
0: केरल में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग मॉनसून की औपचारिक घोषणा के लिए जरूरी स्टैंडर्ड की निगरानी कर रहा था। जब ये मानक पूरे हुए तब जाकर मॉनसून का ऑफिशियली ऐलान किया गया। गुरुवार सुबह भी केरलम के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है। अलपुजा, कोट्टायम और एर्नाकुलम जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मॉनसून के केरलम पहुंचने के बाद अब देश के दूसरे हिस्सों खासकर उत्तर भारत पर नजरें टिकी हुई है, जहां लोग कई सप्ताह से भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं और बादलों के बरसने की आस लगाए बैठे हैं। आमतौर पर मॉनसून जून के दौरान तेजी से आगे बढ़ता है। ये पहले पश्चिमी तट, फिर पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों को कवर करता है और फिर 15 जून के आसपास मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पहुंचता है। इसके बाद मॉनसून पूर्वी और उत्तर भारत की ओर बढ़ता है। दिल्ली की बात की जाए तो आमतौर पर मॉनसून 27 जून के आसपास पहुंचता है। वहीं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और भारत के अधिकांश हिस्से जून के अंत या फिर जुलाई के पहले सप्ताह तक मॉनसून की चपेट में आ जाते हैं। केरल में स्वागत के बाद अब मौसम वैज्ञानिक इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि मॉनसून आगे भी अपनी निर्धारित वक्त से बढ़ता रहे। दिल्ली से आशुतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: मैदानी इलाकों में मौसम का मिजाज तो बदला है, लेकिन पहाड़ों पर मौसम दिल खुश करने वाला है। शिमला में और आसपास बारिश हो रही है। लोग सतरंगी छतरियों और रेनकोट में मॉल रोड पर मस्ती करते नजर आए, तो वहीं कुल्लू मनाली में पहले से ही सैलानियों का हुजूम है। हिमाचल प्रदेश के साथ कश्मीर में भी इन दिनों पर्यटकों की भारी भीड़ है। चलिए आपको पहाड़ों पर मौसम की हसीन तस्वीर दिखाते हैं।

0: यहाँ पे तो, लेकिन यहाँ पे हम आए शिमला बच्चों को घुमाने के लिए माल रोड पे, तो बच्चे भी हमारे इंजॉय कर रहे हैं। वाकई में हमें काफी खुशी हो रही है यहाँ पे और बच्चे भी काफी खुशी मना रहे हैं।
1: शिमला में पानी इतना बरसा कि सड़कों पर जमा हो गया, यहाँ तक कि आवाजाही रुक गई और जून में ठंड का एहसास होने लगा। स्थानीय लोगों के लिए ये परेशानी का सबब हो सकता है और जो घूमने फिरने गए हैं वो मौसम का जश्न मना रहे हैं। शिमला ही नहीं, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर में भी आंधी और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट है और हिमाचल में अगले 6 दिन तक मौसम खराब रहने और बारिश का पूर्वानुमान है। लेकिन ऐसे मौसम में हिमाचल में सैलानियों का हुजूम है। ये तस्वीर चंबा के खजियार की है जो इन दिनों लोगों की पसंदीदा जगह बना हुआ है। चारों ओर फैले देवदार के पेड़, हरी घास से सजा विशाल मैदान और बीच में मौजूद छोटी झील यहाँ की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। यूं ही इसे हिमाचल का स्विट्जरलैंड नहीं कहते। ऐसी खूबसूरत जगह पर परिवार के साथ फुर्सत के पल बिताना एक अलग एहसास है। ठीक ऐसा ही एहसास लोगों को मनाली में मिलता है जहाँ इन दिनों सैलानियों का जमावड़ा है।
2: नमस्कार। देखिए, हम सभी जानते हैं कि लगातार मौसम खुशनुमा रहने की वजह से जिला कुल्लू में पर्यटकों का आवागमन जो है वो काफी अधिक संख्या में हुआ है। और यदि इस विषय पर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो जो हमारा ऑथेंटिक डाटा है वो ग्रीन टैक्स बैरियर जो मनाली में स्थित है उससे प्राप्त आंकड़ों के अनुसार गत वर्ष मई महीने में लगभग 41,700 के आसपास जो है बाहरी राज्यों से पर्यटक वाहन मनाली में आए थे, लेकिन जो संख्या इस वर्ष बढ़कर लगभग 66,600 जो है वाहन इस मई महीने में इस वर्ष के दर्ज किए गए हैं। तो ये एक भारी जो उछाल है लगभग 25,000 का दोनों वर्ष के आंकड़ों में, तो तुलनात्मक तरीके से अधिक संख्या में पर्यटकों ने इस वर्ष घाटी का रुख किया है। और कम बस यही स्थिति हमारे जो अन्य पर्यटक स्थल हैं, चाहे वो बंजार का क्षेत्र हो, सैंज का क्षेत्र हो या कसोल मणिकरण का एरिया हो, तो वहां पर भी अधिक संख्या में बाहरी राज्यों के और अपने राज्य के जो पर्यटक हैं उनकी संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। देखिए, मौसम साफ रहने की वजह से और रोहतांग जो हमारा पास है वो भी टाइमली ओपन हो गया है, तो उसकी वजह से टूरिस्ट जो हैं वो काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। और यदि आंकड़ों पर देखा जाए तो वीकेंड पे तो होटल ऑक्यूपेंसी ऑलमोस्ट हमारी 80-90% के आसपास है। इवन वीकडेज में भी काफ़ी अच्छी जो है ऑक्यूपेंसी दर मनाली और विभिन्न पर्यटक स्थलों के होटल्स और होम स्टेज में चल रही है।
1: कुल्लू में नदी किनारे बोटिंग हो रही है, एडवेंचर स्पोर्ट्स का मजा लिया जा रहा है, इलाका सैलानियों से गुलजार है।
3: और हम लोग फैमिली के साथ राजस्थान से यहाँ आए हैं। राजस्थान से यहाँ हिमाचल को हमने इसलिए चूज किया बिकॉज यहाँ का वेदर अच्छा है। राजस्थान से कंपैरेटिवली काफी कूल वेदर है यहाँ, वहाँ पे 42-43 डिग्रीज टेम्परेचर, हीट वेव्स काफी ज्यादा हो रहे थे। सो समर वेकेशन में हमने घूमने के लिए इसको चूज किया। यहाँ ग्रीनरी अच्छी है, पॉल्यूशन फ्री है और वेकेशन के लिए हमने मतलब एक कूल प्लेस चाहिए थी, इसलिए हमने हिमाचल को चूज किया। और अच्छा लग रहा है यहाँ के, आज ही आए हैं, काफी चेंज मतलब काफी डिफरेंस है वेदर में। वहाँ इतनी गर्मी थी और अभी यहाँ के अच्छा लग रहा है। और अगले 7-8 डेज हम लोग यहीं पर हैं, सो हम लोग वेकेशन यहीं बनाने वाले हैं अभी।
4: काविश शर्मा, होटल शुभला रॉयल, जनरल मैनेजर। सो कुल्लू मनाली का जो टूरिज्म है वो बड़े पीक सीजन में है और काफी लोगों को व्यवसाय भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी होगी और उसके अलावा भी और भी जो व्यवसाय हमारे से जुड़े हुए हैं। तो ये काफी पीक में और खासकर जैसे कि मई महीने में जो बुकिंग्स थी बहुत ज्यादा थी और जैसे अभी जून चल रहा है तो बहुत मतलब मई से ज्यादा मतलब बढ़ोतरी है जून महीने में और वेरी पीक उसमें है। मतलब पूरे ऑल इंडिया से जो टूरिस्ट इंक्वायरीज है दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जैसे मई महीना था उससे ज्यादा बढ़ चुकी है। और खासकर जो आपका महाराष्ट्र हो गया जो, और इसके अलावा जो हमारे साथ के स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार हो गया, फिर नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो काफ़ी लोगों का आना जारी है और नॉर्थ इंडिया काफ़ी लोगों का आना जारी है। और अभी भी मुझे फ़ोन कॉल्स काफ़ी आ रहे हैं कि बुकिंग्स के लिए, और कारण ये भी है क्योंकि एक तो गर्मियाँ बढ़ रही हैं उस करके भी टूरिस्ट का फ्लो ज़्यादा पहाड़ों की तरफ रह रहा है। और खासकर ये भी बहुत अच्छी बात है और खासकर जो भी हमारे व्यवसाय टूरिज्म से जुड़े हैं उनके लिए भी एक बड़ी अच्छी बात है और मैं चाहूंगा कि

0: आने वाले समय में भी ये जो टूरिस्ट की बढ़ोतरी, तो जैसे आपको लग रहा है कि जैसे नॉर्थ ईस्ट और जैसे बाहर जो एरिया है वहाँ पे टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री टच हो चुका है, उस करके जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ को पहाड़ों की तरफ रुख मोड़ रहे हैं और कुल्लू मनाली आ रहे हैं सर। और जैसे कि काफी स्टेट्स में अभी छुट्टियां होती हैं गर्मियों की बच्चों की, तो उस करके भी काफी टूरिस्ट पहाड़ों की तरफ का रुख करते हैं, और ये मेन कारण है कि इसी बहाने टूरिस्टों के लिए भी एक अच्छा वो रहता है और हमें भी मतलब एक सेवा का मौका मिलता है। और जैसे कि आप जानते हैं अतिथि देवो भव, और खासकर जो हमारी परंपरा है खासकर हिमाचलीज की, हम हमेशा अपने गेस्ट को एक मतलब भगवान का दर्जा देते हैं। और
1: So everything is very beautiful and very nice. So all the people of the south should come here and enjoy a lot. So east or the west, Himachal is the best. Kullu Manali is the very nice place to enjoy.
2: हिमाचल यूं भी सैलानियों को खूब पसंद आता है, और जब मैदानी इलाकों में गर्मी बेहिसाब हो तो कुल्लू मनाली से प्यार हो जाता है। मई के महीने में करीब रिकॉर्ड 66,000 गाड़ियों ने कुल्लू में एंट्री की, जून में भी यही आंकड़ा रहने की उम्मीद है। मौसम के रुख से सैलानी भी खुश हैं और कारोबारी भी।
3: हम लोग राजस्थान से यहाँ आए हैं, राजस्थान में दिन में इतनी गर्मी है, इतनी हीट वेव चल रही है कि वहाँ दिन में हम लोग बाहर भी नहीं निकल पाते थे, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। 4-7-8 दिन हम लोग यहाँ शांति से सुकून से रहने के लिए, छुट्टियाँ एंजॉय करने के लिए आए हैं। राजस्थान से यहाँ एनवायरनमेंट काफ़ी चेंज है और काफ़ी कूल है, इसलिए हम लोगों ने मनाली चुना है, और यहाँ का एनवायरनमेंट और ग्रीनरी सब कुछ बहुत अच्छी है। राजस्थान से यहाँ काफ़ी चेंज है।
2: हिमाचल की तरह सैलानियों का रुख जम्मू कश्मीर की ओर भी है। बांदीपुरा में बर्फबारी हो रही है, ऊंचे पहाड़ों पर सफेद बर्फ लिपटी है और तेज ठंडी हवा जैसे सुई चुभा रही है। मैदानी राज्यों से गए सैलानी तो इसी मौसम का मजा लेना चाहते हैं। ऊनी कपड़े और जैकेट से लैस होकर लोग वादी का लुत्फ उठाने इन दिनों करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर राजदान दर्रे के पास हैं।
4: लोग अभी गुरेज जा रहे हैं, आज हमें ये मौका मिला है अच्छा, और इतना सुहाना मौसम और स्नोफॉल हुआ है, और यहाँ पर हमें ठहर के मैगी खाने का मौका मिला है, और यहाँ के लोग इतने मेहमान नवाजी से हमारा खिदमत किया है, उसके लिए हम उनके भी शुक्र गुजार है।
5: साउथ से पहुंच गए नॉर्थ, जन्नत में कश्मीर जैसे सब कहते हैं, ट्रूली टू द वर्ल्ड कश्मीर इज जन्नत। तो हमें तो इतना अच्छा वेदर लग रहा है, इट्स सो ब्यूटीफुल। हमें वी आर लकी टू हैव स्नोफॉल एंड सच ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर वादियां हैं, हमको लग रहा है कि हम मूवी में है, कोई रील भी बनाते हैं, सो इट्स वंडरफुल। We are having a great time and such remote places are very good to explore.
6: सब लोग यहाँ पे आए विजिट करें, ये जगह को देखें, और जगह के यहाँ पे गवर्नमेंट को भी बोलेंगे इस जगह को प्रमोट करें, जिससे सब लोगों को इसके बारे में पता लगे।
7: 11 बजे हम लोग पहुँच के थे गुरेज वैली के लिए, निकल गए थे वहाँ पे, हम लोगों ने रात को स्टे किया, एंड अभी जब हम रिटर्न आ रहे थे तो ऊपर हमें बारिश मिली थी, एंड यहाँ पे आते आते पूरी स्नो है, तो बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। मुंबई में अभी 40 डिग्री चल रहा है, तो वहाँ से यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है।
8: वातावरण कैसा लग रहा है?
7: बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ बर्फ हो रही है, बारिश भी हो रही है, हमने श्रीनगर में गर्मी देख ली, यहाँ पे ऊपर आके बारिश देख ली, अभी बर्फ हो रही है, तो कम से कम 5 डिग्री तो चल रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ठंडी है।
2: वादी में मौजूद जानी पहचानी और मशहूर जगहों पर ही नहीं जा रहे, बल्कि खूबसूरत वादी में नए इलाकों की भी तलाश है। अनंतनाग जिले में वेरीनाग के करीब ये इलाका सैलानियों को खूब पसंद आ रहा है। डेडबल कपरान नाम के इस इलाके में साफ पानी वाली पहाड़ी नदी है, ऊंचे पहाड़ों के साए में दरख्तों का हरा आंचल है, चलते चलते चाहे जितनी दूर निकल जाइए थकान का एहसास नहीं होता। वादी में ये इलाका एक छिपा हुआ खजाना कहा जाता है, जिसकी ओर बड़ी तादाद में सैलानी आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ भीड़ भाड़ कम है, प्रकृति का एहसास ज्यादा है। गर्मी से राहत पाने के लिए जम्मू कश्मीर से बेहतर जगह भला क्या होगी, लेकिन जब बादल गरज रहे हो, क्लाउड बर्स्ट हो रहा हो, तो सैलानियों के लिए सावधानी भी जरूरी है। बूढ़ा में बादल जमकर बरसे और लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे पर कई जगह मलबा जाम हो गया और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, कई सैलानी इसमें फंसे। हालांकि सभी को सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया। रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: Back to the songs that never left. Jukebox Oldies is your favorite jukebox. For 70s and 80s favorites that still feel young. From Madonna to George Michael to Hall & Oates and Eurythmics. The hits live on. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Jukebox Oldies to start listening now.
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
13: चमोली में गुप्त काल ट्रैकिंग कर वापस लौटा पहला दल, गमशाली से 26 मई को हुआ था रवाना, टीम में शामिल थे 7 ट्रैकर। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक केदारनाथ धाम पहुंचे करीब 11 लाख श्रद्धालु, धाम में लगातार बदल रहा मौसम का मिजाज। शिरडी के साई दरबार से आई आस्था की अनोखी तस्वीर, श्रद्धालु ने साई बाबा को अर्पित किया सोने का मुकुट, करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद मौसम सुहाना, तापमान में गिरावट से लोगों को मिली गर्मी से राहत, मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए जारी किया अलर्ट। इंडोनेशिया के चिड़ियाघर में गूंजी 4 नन्हे मेहमानों की किलकारी, बाघिन दी ने 4 शावकों को दिया जब, सफारी पार्क में कुल 8 हुई बाघों की संख्या।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ। एक
13: बात करते हैं मानसून की, केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के औपचारिक रूप से एंट्री करते ही दिल्ली एनसीआर का मौसम भी अचानक से बदल गया। राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में तेज हवाओं के साथ घने काले बादल छा गए और झमाझम बारिश हुई। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक केरलम में मॉनसून के आने से उत्तर भारत में भी नमी बढ़ गई है, इससे दिल्ली एनसीआर में प्री मॉनसून गतिविधियां तेज हुई हैं। वहीं दूसरे राज्यों से भी बारिश की खबरें हैं, लेकिन ये मॉनसूनी बारिश नहीं है, इसलिए दिल्ली समेत कई राज्यों में अभी मॉनसून के आने का इंतजार है।

0: देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह तक तेज धूप और उमस से लोग परेशान थे, लेकिन दोपहर होते होते आसमान में काले बादल छा गए। कई इलाकों में दिन के समय ही अंधेरा जैसा माहौल बन गया। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और आसपास के क्षेत्रों में तो तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश हुई। मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को गर्मी और उमस से काफी राहत मिली। हालांकि तेज हवाओं की वजह से कुछ जगहों पर ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट पहले ही जारी किया था।
1: चिलचिलाती गर्मी और उमस भरी हवाओं के बाद मौसम एक बार फिर से पूरी तरीके से बदल चुका है। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से इस वक्त मौसम बेहद ही सुहाना हो चुका है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो है बारिश की शुरुआत हो चुकी है, और ये पहले से ही मौसम विभाग का अनुमान था कि आज बारिश जो है वो देखी जा सकती है, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ जो है इस वक्त जो है सर्कुलेशन जो है वो पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है, जिसका अदर जो असर था वो देखने को पहाड़ी राज्य पर मिलेगा, लेकिन उसका कहीं ना कहीं असर जो है मैदानी इलाकों पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। और मौसम विभाग ने इसी चीज को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया था कि पहाड़ी राज्यों में चाहे हिमाचल की बात हो, उत्तराखंड की बात हो या जम्मू कश्मीर की बात हो, हर तरफ अच्छी बारिश जो है देखी जाएगी। आंधी तूफान जो है वो भी देखा जा सकता है, लेकिन बात अगर मैदानी राज्यों की जाए तो यूपी हो, पंजाब की बात हो, राजस्थान की बात हो या दिल्ली एनसीआर की बात हो, यहाँ पर भी ऑरेंज अलर्ट बारिश का जो है वो दिया गया था। और आप देख सकते हैं कि तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, इस वक्त सीपी की तस्वीरें दिखा रही हूँ कि किस तरीके से झमाझम बारिश की जो शुरुआत है वो हो चुकी है, और कहीं ना कहीं अब लोगों को राहत जरूर मिलेगी। क्योंकि अगर हम तापमान की बात करें तो तापमान सामान्य से कम जरूर बने हुए थे, लेकिन उमस की स्थिति जो है वो लगातार लोगों को परेशान कर रही थी।
0: इस प्री मानसून बारिश ने लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी से काफी हद तक राहत पहुंचाई है। वहीं मौसम विभाग ने दावा किया है कि मानसून की केरलम में एंट्री हो गई है। इसके असर से केरलम के अलावा तमिलनाडु और कर्नाटक में कुछ जगहों पर अगले 7 दिन भारी बारिश हो सकती है।
2: आज 4 जून को अगर आप जो फिगर में देखेंगे कि मानसून केरला और कुछ कर्नाटक के हिस्से भी कवर किया है, और इसके अलावा तमिलनाडु के हिस्से आज कवर हुए हैं, और थोड़ा ब्यो बंगाल की ब्रांच कवर हुई है। तो इसका रीज़न यही है कि कंटिन्यूज अब जो कन्वेक्टिव एक्टिविटी है जहां इंक्रीज हो गई है, उसका रीज़न क्या है कि जो जहां वेस्टर्ली हवाओं की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी बढ़ गई है, 4.5 तक है। लो लेवल में जो विंड्स हैं वो 20-25 नॉट्स हैं, और ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो मानसून है जहाँ उसके कारण वाइड स्प्रेड रेनफॉल एक्टिविटी रहा इस रीजन में, तो हमने मानसून को जहाँ कवर किया है।
0: मानसून की दस्तक से पहले ही देश के ज्यादातर हिस्सों में प्री मानसून बारिश देखने को मिल रही है, चाहे दक्षिण भारत हो या उत्तर भारत, चाहे पूर्वी भारत हो या पश्चिम भारत। हालांकि पहले मानसून के 25 मई को केरलम में पहुंचने का पूर्वानुमान दिया गया था, लेकिन मानसून ने दस्तक देने के लिए 4 जून की तारीख चुनी और देश में आज से बारिश के मौसम की शुरुआत हो गई। हालांकि इस बार मानसून थोड़ी देर से पहुंचा है, लेकिन अभी तक तो यही लग रहा है कि बिल्कुल दुरुस्त पहुंचा है। मौसम विभाग ने पहले ही संकेत दे दिया था कि केरलम और आसपास के क्षेत्रों में मानसून आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। इसके बाद राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश दर्ज की गई। गुरुवार सुबह भी केरलम के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है। अलपुझा और कोट्टायम और अन्नाकुलम जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं जब मानसून की घोषणा के सारे मानक पूरे हो गए तो उसके आने का ऐलान भी हो गया। मौसम विभाग ने पहले अंदाजा लगाया था कि मानसून 25 या 26 मई के आसपास केरलम पहुंच सकता है, लेकिन तमाम वजहों से मानसून की रफ्तार अचानक धीमी पड़ गई। बाद में मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बदलाव किया और 4 जून के आसपास मानसून के केरलम पहुंचने की भविष्यवाणी की, जो आखिरकार सच साबित हुई।
2: आने वाले दिनों की बात करें तो हमारा अनुमान ये है कि केरला, कोस्टल कर्नाटका, वहाँ पे वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी, आल्सो वेरी हैवी मीन 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी ऑलमोस्ट पूरा वीक होती रहेगी। उसके साथ ही कर्नाटक, कोंकण, गोवा, वहाँ भी रेनफॉल एक्टिविटी, हैवी रेनफॉल होने का अनुमान है। तमिलनाडु, देन इंटीरियर कर्नाटका, जहाँ रेनफॉल एक्टिविटी ऑलमोस्ट हैवी रहने का अनुमान है। इसके अलावा भी जहाँ भी जो मानसूनल विंड फेवरेबल हो रही है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी, जैसे भी आज मानसून थोड़ा नॉर्थ ब्यो बंगाल तक टच किया जो नॉर्थ पे की लाइन है, और आने वाले 2-3 दिनों में जहाँ भी रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ जाएगी, हैवी वेरी हैवी रेनफॉल होने का अनुमान है। तो हमारा आने वाले दिनों में यही फोरकास्ट है, 2-3 दिन जो मानसून है, जो इवन इंटायर गोवा और कोंकण के कुछ हिस्से, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से और कवर कर सकता है, कर्नाटक जैसे कवर हो सकते हैं, आंध्रा के, तमिलनाडु के जो हिस्से वो और कवर हो जाएंगे और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के कुछ हिस्से कवर होने का।
0: मॉनसून के केरलम पहुंचने के बाद अब देश के दूसरे हिस्सों खासकर उत्तर भारत पर नजरें टिकी हैं, जहां लोग कई सप्ताह से भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं और बादलों के बरसने की आस लगाए बैठे हैं। आमतौर पर मॉनसून जून के दौरान तेजी से आगे बढ़ता है। ये पहले पश्चिमी तट और पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों को कवर करता है, फिर 15 जून तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पहुंचता है। इसके बाद मॉनसून पूर्वी और उत्तरी भारत की ओर बढ़ता है। वहीं दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी प्री मॉनसून एक्टिविटी जारी है।
2: अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, वो समय नॉर्थ पाकिस्तान पे एक सर्कुलेशन की फॉर्म में है, स्ट्रेंथन में है और उसके साथ ही जहाँ जैसे WD बना हुआ है, जो हवाएं भी अरबियन सी से इस एरिया में आ रही हैं, जिसके कारण आप थोड़ा ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है और विच इज़ फेवरेबल फॉर रेनफॉल एक्टिविटी। तो हमारा यही है कि आने वाले 2 से 3 दिन जहाँ पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक्टिविटी रहेगा, जिसके लिए हमने जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के लिए हमने रेनफॉल के साथ हेलस्टॉर्म का वार्निंग भी दिया है। पंजाब, हरियाणा हम अनुमान लगा रहे हैं जो हवाओं की गति है वो 50 से 60 किलोमीटर रह सकती है। इसके अलावा NCR दिल्ली की बात करें, वहाँ भी हमारा 2 दिन के लिए येलो अलर्ट है, वहाँ भी हमारा यह है कि 40 से 50 किलोमीटर तक हवाएं रहने।
0: हालांकि देश के कई राज्यों में अभी भी गर्मी कम नहीं हुई है। गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में तापमान 40 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। दिल्ली की बात करें तो आमतौर पर मानसून 27 जून के आसपास पहुंचता है, जबकि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और देश के ज्यादातर हिस्सों में जून के आखिर या जुलाई के पहले हफ्ते तक मानसून आ जाता है। केरलम के बाद अब मौसम वैज्ञानिक इस बात पर नजर रखेंगे कि मानसून आगे भी अपने निर्धारित समय के अनुसार बढ़ता है या नहीं। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: पंजाब में निजी स्कूलों में फीस पर लगाम। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
4: पंजाब सरकार के निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर लगाम लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की है कि अब कोई भी निजी स्कूल सालाना 5% से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकेगा। पिछले 3 सालों में तय सीमा से ज्यादा फीस वसूलने वाले स्कूलों को अतिरिक्त राशि अभिभावकों को लौटानी होगी। सरकार इस संबंध में अध्यादेश लाकर बाद में कानून बनाएगी। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना, फीस वापसी और बार बार गलती करने पर मान्यता रद्द करने तक की कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने पद संभालने के बाद बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के स्कूल और कॉलेज छात्रों के लिए मुफ्त बस पास की घोषणा की है। इससे विशेष रूप से गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों के हजारों छात्रों को राहत मिलेगी। पहली कैबिनेट बैठक के बाद उन्होंने बताया कि बी खाता संपत्तियों को ए खाता में बदलने की सुविधा अब पूरे राज्य में लागू होगी। मुख्यमंत्री ने इसे नई शुरुआत बताते हुए विकास और सुशासन का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि सरकार सामूहिक निर्णय और लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर काम करेगी। कश्मीर और लद्दाख के बीच साल भर संपर्क सुनिश्चित करने वाली नई जोजिला टनल लगभग बनकर तैयार हो गई है। श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर बन रही ये सुरंग अगले कुछ हफ्तों में यातायात के लिए खोली जा सकती है। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण जोजिला दर्रा कई महीनों तक बंद रहता है, जिससे लद्दाख का संपर्क प्रभावित होता है। टनल शुरू होने के बाद हर मौसम में पहाड़ों का रुख संभव होगा। इससे यात्रा का समय कम होगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और लद्दाख क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी।
3: चलिए अब बात करते हैं और बताते हैं आपको कि गर्मी में पहाड़ कैसे दे रहे हैं सुकून। दरअसल गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही ज्यादातर लोग जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों का रुख करते हैं, लेकिन यहाँ पीक समर सीजन में इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है कि घूमने का मजा ही किरकिरा हो जाता है। ट्रैफिक जाम, महंगे होटल और भारी भीड़ आपकी ट्रिप को तनाव भरा बना देते हैं। तो अगर आप भी इस गर्मी इन जगहों पर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो पीक सीजन में यहां जाने से बचना बेहतर होगा।
4: दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन उत्तर भारत के कुछ राज्यों में अभी भी पारा हाई है। ऐसे में तन मन को कूल करने के लिए पहाड़ों की सैर लाजमी है, लिहाजा पर्यटक पहाड़ों पर सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने के लिए निकल पड़े हैं। कोई जम्मू कश्मीर जा रहा है तो कोई हिमाचल और उत्तराखंड का रुख कर रहा है। पहलगाम की ऊंची ऊंची चोटियां, चीड़ और देवदार के घने जंगल, कल कल बहती नदी, इन्हीं दिलकश नजारों का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक यहाँ पहुँच चुके हैं। कोई इन नजारों को अपने कैमरों में कैद कर रहा है तो कोई इन खूबसूरत नजारों के साथ खुद को कैमरे में कैद कर रहा है। यहाँ के हर एक लम्हे को भरपूर जी लेने की चाहत हर किसी को है।
5: यहाँ के मौसम की बात करें तो बहुत ही बढ़िया, एकदम खूबसूरत। मेरे मतलब मेरा तो ये फर्स्ट टाइम है यहाँ पे आने का। टूरिस्टों से मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे आए, काफी सारे पिछली कुछ घटनाएं यहाँ पे हुई थी, उस वजह से काफी लोग सोच में पड़ गए, बट मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया चल रहा है सब।
6: अच्छा लग रहा है, हर साल आते रहते हैं पहलगाम, इस बार भी आए, अभी पहली बार आए इस साल गर्मियों में, बाद में अभी जून जुलाई बाकी बड़ा आएंगे बीच में।
4: पहलगाम की ठंडी हवाएं और नदी के ठंडे पानी के बीच पर्यटक मैदानों की तपिश को भूल चुके हैं, इनका मन पूरी तरह पहलगाम में रम चुका है।
7: जम्मू में इतनी गर्मी है हम आपको बयान नहीं कर सकते, इतनी गर्मी है जम्मू में भी। यहाँ कश्मीर में तो जन्नत है, हम कल आए थे, इतनी ठंड थी कि हमें यहाँ जैकेट्स वेयर करनी पड़ी।
8: अच्छा।
7: हाँ, ब्लैंकेट्स लेने पड़े, सुबह हमने गर्म पानी से नहाया है, इतना अच्छा मौसम है यहाँ पे।
8: अच्छा मौसम है। हाँ?
7: तो पहलगाम, तो वैसे भी पहलगाम और सोनामर्ग मेरी फेवरेट स्पॉट है। हाँ? हम तो हर साल पहलगाम और यहाँ पे आते हैं।
9: वधारे मजा आवे, ने फरवानी मम्मी पापा साथे खूब वधारे मजा आवे छे।
8: मजा रो मजो। मौसम कैसा है?
9: मौसम तो बहुत ही बढ़िया है यहाँ का।
8: अच्छा।
9: गुजरात में तो बहुत गर्मी पड़ रही है, यहाँ तो ठंडी है।
4: बर्फ से लगदग बांदीपोरा की पहाड़ी की चोटियां सैलानियों को खूब पसंद आ रही हैं। गुरेज रोड पर करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर राजदान दर्रे पर पर्यटक यहां की बर्फीली वादियों का दीदार करने पहुंच रहे हैं और ठंडे मौसम का मजा ले रहे हैं।
10: बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ बर्फ हो रही है, बारिश भी हो रही है, हमने श्रीनगर में गर्मी देख ली, यहाँ पे ऊपर आके बारिश देख ली, अभी बर्फ हो रही है तो कम से कम 5 डिग्री तो चल रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ठंडी है।
11: जून में वी कैन नॉट एक्सपेक्ट सच टाइप ऑफ बर्फबारी हियर अभी, लेकिन वो गर्मी को देखते हुए लोग यहाँ पर आना चाहिए। और बहुत अच्छा सोहना वेदर है, बहुत अच्छी जगह है ये, करीब करीब 14,000 फीट पे जगह है राजस्थान, ऑन द वे टू गुरेज।
4: हिमाचल प्रदेश के चंबा का खजियार भी पर्यटकों से गुलजार है। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, हरा भरा खुला मैदान और बीच में छोटी सी झील पर्यटकों का मन मोह रही है। कोई इन दिलकश नजारों को कैमरे में कैद कर रहा है तो कोई गीत गुनगुना रहा है। कुल्लू और आसपास के पहाड़ी इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, लिहाजा यहाँ भी पर्यटकों की भरमार है। यहाँ पर्यटक जिप लाइन, पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग जैसे एडवेंचर टूरिज्म को जमकर एंजॉय कर रहे हैं।
12: शर्मा और हम लोग फैमिली के साथ राजस्थान से यहाँ आए, राजस्थान से यहाँ हिमाचल को हमने इसलिए चूज किया बिकॉज यहाँ का वेदर अच्छा है, राजस्थान से कंपैरेटिवली काफी कूल वेदर है यहाँ, वहाँ पे 42-43 डिग्रीज टेम्परेचर, हीट वेव्स काफी ज्यादा हो रहे थे, सो समर वेकेशन में हमने घूमने के लिए इसको चूज किया। यहाँ ग्रीनरी अच्छी है, पॉल्यूशन फ्री है और वेकेशन के लिए हमने मतलब एक कूल प्लेस चाहिए थी, इसलिए हमने हिमाचल को चूज किया।
13: मनाली का जो टूरिज्म है वो बड़े पीक सीजन में है और काफी लोगों का व्यवसाय भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी होगी और उसके अलावा भी और भी जो व्यवसाय हमारे से जुड़े हुए हैं, तो ये काफी पीक में।
4: कुल्लू मनाली में सैलानियों का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मई के महीने में यहाँ 66,000 से ज्यादा पर्यटक वाहनों की एंट्री दर्ज की गई थी और बड़ी तादाद में सैलानियों के पहुँचने से यहाँ के होटल खचाखच भरे हैं। गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यटक कश्मीर, हिमाचल ही नहीं बल्कि देवभूमि उत्तराखंड का भी रुख कर रहे हैं और इसका सबसे ज्यादा असर नैनीताल और आसपास के पर्यटन स्थलों में देखने को मिल रहा है। वीकेंड और छुट्टियों के हालात बदतर हो चले हैं। हालात ऐसे हैं कि प्रमुख मार्गों पर लंबा जाम लग रहा है, जिसकी वजह से पर्यटकों को घंटों तक वाहनों में फंसे रहना पड़ रहा है, तो स्थानीय लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है।
14: और किसी भी प्रकार का बाइकर्स और बाइक टैक्सीज को पूर्ण रूप से हमने प्रतिबंधित किया है, और जो उन्हीं व्हीकल्स को हम अलाउ कर रहे हैं जो जिनके पास होटल में कंफर्म्ड बुकिंग है और पार्किंग भी है। इस वजह से ट्रैफिक जो है वन वे सिस्टम भी लागू है शाम के टाइम में, सुगम और सुव्यवस्थित रूप से यातायात का संचालन हो रहा है। नोट, निश्चित रूप से यातायात का दबाव जरूर है परंतु व्यवस्थित रूप से चल रहा है।
4: नैनीताल में जहां पर्यटकों की रिकॉर्ड आमद से होटल, रेस्टोरेंट और पर्यटन कारोबार से जुड़े व्यवसायियों के चेहरे खिले हुए हैं, वहीं दूसरी ओर बढ़ता ट्रैफिक प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। फिलहाल नैनीताल और आसपास के इलाकों में जाम से जल्द राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। नैनीताल से लीला सिंह बिष्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: न्यूज पेपर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
0: कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन भारतीय शेयर बाजार में खास बदलाव देखने को नहीं मिला। गुरुवार को 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 13 अंक बढ़कर 74,360 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयर वाला एनएसई निफ्टी 10 अंकों की बढ़त के साथ 23,416 पर बंद हुआ। ग्लोबल मार्केट में मांग के कारण गुरुवार को गोल्ड की कीमतों में बढ़त देखने को मिली। ऑल इंडिया एसोसिएशन के अनुसार 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 700 रुपए चढ़कर 1,60,300 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 3800 रुपए लुढ़क कर 2,65,700 रुपए पर पहुंच गई। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़े तनाव के बीच अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में एक बार फिर से गिरावट देखने को मिली है। गुरुवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 7 पैसे कमजोर होकर 95.83 के स्तर पर बंद हुआ।
3: फिल्म लगान के 25 साल पूरे होने पर फैंस को आमिर के प्रोडक्शन का तोहफा। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड पर।
0: फिल्म लगान की रिलीज के 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। फिल्म 15 जून 2001 को रिलीज हुई थी और अब इसको लेकर आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस ने फिल्म का नया ट्रेलर रिलीज करने के साथ ही फिल्म की री रिलीज की घोषणा भी की। फिल्म लगान का ये 4K ट्रेलर एक बार फिर 1893 के उस समय में ले जाता है जब गांव वालों को सूखे की वजह से ब्रिटिश सेना को भारी लगान देना पड़ता था। इस ट्रेलर को रिलीज करने के साथ ही ये जानकारी भी दी गई है कि ये फिल्म 12, 13 और 14 जून को सिनेमाघरों में री रिलीज की जाएगी। विक्रम भट्ट के निर्देशन वाली फिल्म हॉन्टेड 3D गोस्ट ऑफ द पास्ट का स्क्रीमर रिलीज किया गया है। स्क्रीमर यानी इस छोटे टीजर वीडियो की शुरुआत एक भूतिया हवेली से होती है, जिसपे फिल्म के मुख्य किरदार निभाने वाले मीमोह चक्रवर्ती हवेली में अपने प्यार की तलाश में पहुंचते हैं, जहां उनके सामने कुछ ऐसे हालात बनते हैं जिनसे निकल पाना उनके लिए एक बड़ी चुनौती होती है। फिल्म में मीमोह के साथ चेतना पांडे मुख्य किरदार निभाती नजर आएंगी। इसके अलावा श्रुति प्रकाश, गौरव वाजपेयी, प्रणीत भट्ट, हेमंत पांडे भी फिल्म में दिखेंगे। ये फिल्म 12 जून को हिंदी, तमिल और तेलुगु में सिनेमाघरों में आएगी। अभिनेत्री जानवी कपूर त्रिमला पहुंची। उन्हें नंगे पैर मंदिर की 3,550 सीढ़ियां चढ़ते हुए देखा गया। उनके साथ उनकी टीम के लोग और दोस्त भी दिखे। जानवी हर खास मौकों पर यहां पहुंचती हैं। इस बार वो अपनी फिल्म पेड्डी के रिलीज के दिन यहां पहुंची और भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा अर्चना की। जानवी ने फिल्म पेड्डी में रामचरण के साथ काम किया है और इस बार माना जा रहा है कि वो फिल्म की सफलता की कामना को लेकर ही तिरुमला पहुंची और भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के पहाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। हॉलीवुड के डीसी स्टूडियोज ने अपनी फिल्म सुपरगर्ल का आखिरी ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसमें दिखाया गया है कि सुपरगर्ल और सुपरमैन अपने डॉग क्रिप्टो को बचाने के लिए खतरनाक मिशन पर निकलते हैं। इस सफर में उनकी मुलाकात रुथिये नाम की एक एलियन लड़की से होती है जो उनका साथ देती है। क्रेग गिलेस्पी निर्देशित इस फिल्म में मिली एलकॉक सुपरगर्ल का किरदार निभा रही हैं। ये फिल्म 26 जून को अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी।
3: चलिए न्यूज पथ में खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
0: वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि शख्स अपनी उंगलियों के बीच चावल का एक दाना पकड़ता है। इसके बाद वो चावल के दाने को चाकू से इतनी तेजी और सटीकता के साथ काटना शुरू करता है कि कुछ ही सेकंड में पूरा दाना बारीक टुकड़ों में बदल जाता है। वीडियो देखने वाले कई लोग दावा कर रहे हैं कि उसने चावल के दाने को करीब 50 हिस्सों में काट दिया। सबसे ज्यादा चर्चा उसके हाथों की स्पीड और कंट्रोल को लेकर हो रही है। आमतौर पर लोग चावल का दाना ठीक से पकड़ भी नहीं पाते, लेकिन इस शख्स ने उसे इतनी सफाई से काटा कि इंटरनेट यूजर्स दंग रह गए। लंबी छुट्टी के बाद स्कूल का पहला दिन हर स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए ही खास होता है। ऐसे में अगर स्कूल में बच्चों का वेलकम प्यार और पारंपरिक तरीके से किया जाए तो उनकी खुशी कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में सोशल मीडिया पर हाल ही में केरलम के एक स्कूल का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूल में क्लास गेट पर एक टीचर खड़ी है और स्कूल पहुँचने वाले बच्चों का ट्रेडिशनल तरीके से वेलकम किया जा रहा है। बच्चे एक एक करके टीचर के पास पहुंचते हैं, जिसके बाद टीचर हर एक बच्चे की आरती उतारती है, उसे आशीर्वाद देती है और फिर प्यार करके स्कूल के अंदर भेजती है। मौसम इतना खराब है कि सामने देखना भी मुश्किल लग रहा है। इसी दौरान एक बाइक सवार परिवार सड़क किनारे रुका हुआ नजर आ रहा है। कुछ ही देर के बाद कार वहां पर रुक जाती है और उसका ड्राइवर परिवार की मदद के लिए आगे आता है। वो महिला और बच्चे को सुरक्षित कार में बैठाता है। वीडियो में ये सीन देखकर लोग कह रहे हैं कि मुश्किल समय में किसी की मदद करना कितना बड़ा काम हो सकता है। साफ पता चल रहा है कि कार ड्राइवर की इस छोटी सी लेकिन अहम मदद ने लोगों का दिल जीत लिया है। वीडियो में दिखाई देता है कि एक साड़ी को छत से नीचे तक बिछाया गया है। ऊपर मौजूद शख्स बाल्टी से गेहूं साड़ी पर डालता है और देखते ही देखते गेहूं फिसलता हुआ सीधे नीचे रखी बोरी में पहुंच जाता है। पूरा सिस्टम इतना आसान और मजेदार है कि देखने वाले बार बार वीडियो चला रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये जुगाड़ किसी इंजीनियरिंग लैब में नहीं बल्कि गाँव के माहौल में तैयार किया गया है। इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक विदेशी लड़की दिखाई दे रही है जो दुल्हन के गेटअप में नजर आ रही है। उसने अपने मारवाड़ी दूल्हे को शानदार सरप्राइज देकर सबको हक्का बक्का कर दिया। वीडियो में दुल्हन राजस्थानी गाने पर पारंपरिक अंदाज में डांस करती नजर आती है। उसका डांस देखकर न सिर्फ दुल्हा खुश हो जाता है बल्कि शादी में मौजूद मेहमान भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते। वीडियो का सबसे खास हिस्सा आखिर में देखने को मिलता है जब दुल्हन प्यार से अपनी दूल्हे का हाथ पकड़कर उसे भी डांस फ्लोर पर ले जाती है।
3: इलॉन मस्क ने एआई की मदद से बने मूवी ट्रेलर पर पूछा लोगों से सवाल। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
15: फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी को लेकर कनाडा का शहर वैंकूवर पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। शहर के प्रतिष्ठित साइंस वर्ल्ड डोम को 131 पैनल्स की मदद से टूर्नामेंट की आधिकारिक मैच बॉल ट्रायुंडा का रूप दिया गया है। वहीं नॉर्थ शोर के ग्राउस माउंटेन पर विशाल कैनेडाई राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया गया है। 40 मीटर ऊंचे जियोडेसिक डोम की ये सजावट पर्यटकों का ध्यान आकर्षित कर रही है। वैंकूवर में कुल 7 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें कनाडा और कतर के बीच होने वाला अहम मैच भी शामिल है। इलॉन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता दिखाते हुए होमर के महाकाव्य इलियट पर आधारित एक एआई जनरेटेड सिनेमैटिक ट्रेलर जारी किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए इस ट्रेलर को ग्रोक इमेजिन 1.5 की मदद से तैयार किया गया। ट्रोजन युद्ध की कहानी को शानदार विजुअल्स और इमोशंस के साथ पेश किया गया है। मस्क ने लोगों से पूछा कि क्या वो इसकी पूरी फिल्म देखना चाहेंगे। ये ट्रेलर संकेत देता है कि भविष्य में एआई की मदद से पूरी फीचर फिल्म्स बनाना संभव हो सकता है।

0: लंदन में कलाकार माजा पेट्रिक की नई प्रदर्शनी द ग्लिस्ट सब्लाइम तकनीक और प्रकृति के अनूठे मेल का उदाहरण बनकर सामने आई है। इस प्रदर्शनी में एक रोबोट सिंथेटिक आर्कटिक पॉपीज को लाइट बॉक्स में सजाता दिखाई देता है। ये सीरीज उन आर्कटिक पॉपीज से प्रेरित है जो पृथ्वी के सबसे उत्तरी इलाकों में खिलने वाले पौधों में शामिल हैं। 6 जून तक चलने वाली ये प्रदर्शनी SXSW लंदन कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसमें तकनीक, संगीत, फिल्म और संस्कृति से जुड़े विविध आयोजनों को एक मंच पर प्रस्तुत किया जा रहा है। चिंग रिसर्च ऑफ जायंट पांडा ब्रीडिंग से एक बेहद है। चिंगदू का ये केंद्र वैज्ञानिक अनुसंधान, जन जागरूकता और इको टूरिज्म के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ जायंट पांडा और रेड पांडा जैसी दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण और प्रजनन पर विशेष काम किया जाता है, जिससे वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा मिलता है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
2: Tune in how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. Tune in has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
4: तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ Good News Today.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
6: चमोली में गुप्तकाल ट्रैकिंग कर वापस लौटा पहला दल गमशाली से, 26 मई को हुआ था रवाना, टीम में शामिल थे 7 ट्रैकर। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक केदारनाथ धाम पहुंचे करीब 11 लाख श्रद्धालु। धाम में लगातार बदल रहा मौसम का मिजाज। शिरडी के साई दरबार से आई आस्था की अनोखी तस्वीर, श्रद्धालु ने साई बाबा को अर्पित किया सोने का मुकुट, करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। दिल्ली NCR में बारिश के बाद मौसम सुहाना, तापमान में गिरावट से लोगों को मिली गर्मी से राहत, मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए जारी किया अलर्ट। इंडोनेशिया के चिड़ियाघर में गूंजी 4 नन्हे मेहमानों की किलकारी, बाघिन दी ने 4 शावकों को दिया जन्म। सफारी पार्क में कुल 8 हुई बाघों की संख्या।

चलिए शुरुआत करते हैं दिल्ली एनसीआर के तूफानी मौसम की खबर से। गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे अचानक मौसम ने करवट ली। तेज धूल भरी आंधी, काले बादल और झमाझम बारिश ने पूरा माहौल बदल दिया। अंधेरे होने की वजह से रात का एहसास होने लगा। तेज हवा की वजह से कई जगह पेड़, साइन बोर्ड और बिजली के खंभे गिर गए। मौसम का मिजाज अभी भी जस का तस है। मौसम विभाग ने कल यानी कि शुक्रवार को भी येलो अलर्ट जारी किया है, यानी कि दिल्ली एनसीआर और आसपास गरज चमक के साथ आंधी का अनुमान है। देखिए ये रिपोर्ट।

दोपहर तक धूप थी, आसमान साफ था, पर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि दिन में रात हो गई। घड़ी में 3 बजते ही तेज धूल भरी आंधी चली और देखते ही देखते घुप अंधेरा छा गया। जो सड़क पर थे सहम गए, जो गाड़ियों में थे ठहर गए। हवा की रफ्तार इतनी तेज कि हरे दरख्त उखड़ गए, कुछ सड़कों पर औंधे मुंह गिरे तो कुछ नीचे खड़ी गाड़ियों पर। लेकिन साइन बोर्ड्स की धज्जियां उड़ गई, स्ट्रीट लाइट्स के खंबे भी हवा का प्रहार झेल नहीं सके। हवा की रफ्तार करीब 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसके सामने एक कदम भी आगे बढ़ना मुहाल। अंधेरा ऐसा कि गाड़ियों में हेडलाइट्स तक जलानी पड़ी

0: इसके बाद शुरू हुई झमाझम बारिश जिसने सड़कों को लबालब कर दिया। समस्या तब हुई जब पानी जमा होने से ट्रैफिक रुक गया। ये तस्वीरें नोएडा की हैं, लेकिन कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें पूरे दिल्ली एनसीआर में नजर आईं, जब ये पूरा इलाका थोड़ी देर के लिए ठहर गया।
1: और आप ये समझिए कि 80 से 100 किलोमीटर की रफ्तार अब मॉनसून ने आज दस्तक दी है केरल में। आपको तस्वीरें दिखाऊं, ये देखिए, ये दिल्ली और यूपी की सीमा है और आप यकीन मानेंगे कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये दिल्ली मेरठ हाईवे है। आप देखिए इसकी तस्वीरें कि महज अभी 5 से 10 मिनट हुए हैं और इतनी तेज बरसात है कि आपको लगेगा यहां समंदर। हवा की रफ्तार अगर समझना हो, ये देखिए फ्लेक्स, 80 से 100 किलोमीटर की हवा, मतलब इतनी तूफानी बारिश और सूखी के 3 से 4 बजे के बीच आपको ऐसा लग रहा होगा कि रात के 10 बज रहे हो। घुप अंधेरा, सड़कों पर पूरी तरह से विजिबिलिटी एकदम प्रभावित है, सारी गाड़ियों के इंडिकेटर ऑन है और हाईवे पर पूरा एक तरह का जल जमाव दिखाई दे रहा है। और ऐसी तस्वीर लगभग आप एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में देखने को मिलेगी। और मैं जिस ओर आगे बढ़ रहा था, सिर्फ एक तरफ का नहीं, आप दूसरी तरफ का इलाका अगर देखेंगे तो आपको भी यहां भी वही प्रभाव दिखाई देगा। और खासकर मौसम में जो करवट बदली है, आपको बताऊं, सबसे पहले ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन ऑरेंज अलर्ट धीरे धीरे बदलते हुए उसके बाद जो है अब जिस तरह का चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है कि अगले 2 दिन ऐसी स्थितियां रह सकती हैं। और आज अचानक से मौसम ने जिस तरह करवट ली है उसके बाद से पूरा दिल्ली, आसपास का खासकर इलाका गुरुग्राम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी ज्यादातर इलाके, हरियाणा और इसी के साथ जितने भी इलाके सटे हैं, हर तरफ आंधी पानी तेज तूफान। इसके पहले लगभग 20 मिनट तक जो है वो तूफान ऐसा था कि ऐसा लगा चारों जैसे धूल की एक परत से जम गई हो और इस कतर जो है माहौल था कि विजिबिलिटी नहीं दिखाई देती। देखिए बादलों की जो गड़गड़ाहट आप सुन रहे हैं, तो मौसम विभाग ने ऐसे में ओले गिरने और इसी के साथ साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी दी है। और अगर आप थोड़ी देर, इसीलिए सड़कों पर जो आवाज आई है वो बिल्कुल ठप सी पड़ गई है।
0: जून के शुरुआती दिन है पर मौसम की मेहरबानी से दिल्ली एनसीआर को गर्मी से कुछ राहत थी। हाँ, मगर 40 डिग्री तापमान के साथ उमस मौजूद थी। पर जब आंधी के साथ बादल गरजे और जमकर बरसे तो पलक झपकते ही गर्मी छू मंतर हो गई। ये काले बादल मॉनसून के नहीं हैं, लेकिन असर मॉनसून से कम भी नहीं है। दिल्ली, खासकर दक्षिणी दिल्ली में खूब बारिश हुई।
2: तस्वीरों में आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में मौसम कितना अच्छा आपको होता हुआ नजर आ रहा है। फुहारे पड़ रहे हैं, बारिश हल्की हल्की हो रही है और आप देख सकते हैं इस रिंग रोड पर क्या स्थिति हुई है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, मौसम बिल्कुल सुहाना है, गर्मी से लोगों को राहत मिली है और मौसम बिल्कुल सुहाना हो गया है और बारिश रिमझिम बरसात जो है वो हो रही है।
0: दिल्ली एनसीआर को ये बादलों की सौगात है जिसका अनुमान मौसम विभाग ने पहले ही दे दिया था। पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से ऐसे मौसम का अंदाजा था। मौसम विभाग ने न सिर्फ 4 जून बल्कि 5 जून के लिए भी येलो अलर्ट घोषित किया है, यानी लोगों को खराब मौसम के प्रति सावधान रहना होगा। यानी एनसीआर में ये सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। नोएडा और आसपास के शहरों में 6 जून तक बादल छाए रहेंगे, गरज चमक के साथ एक या दो बार भारी बौछार पड़ने की पूरी संभावना है। आने वाले दिनों में तेज आंधी का दौर जारी रह सकता है। फिलहाल तो तेज हवा की रफ्तार रुकी और बारिश थमी तो मौसम सुहाना हो गया।
3: चिलचिलाती गर्मी और उमस भरी हवाओं के बाद मौसम एक बार फिर से पूरी तरीके से बदल चुका है। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से इस वक्त मौसम बेहद ही सुहाना हो चुका है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो है बारिश की शुरुआत हो चुकी है और ये पहले से ही मौसम विभाग का अनुमान था कि आज बारिश जो है वो देखी जा सकती है, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ जो है इस वक्त जो है सर्कुलेशन जो है वो पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है, जिसका अदर जो असर था वो देखने को पहाड़ी राज्य पर मिलेगा, लेकिन उसका कहीं ना कहीं असर जो है मैदानी इलाकों पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। और मौसम विभाग ने इसी चीज को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया था कि पहाड़ी राज्यों में, चाहे हिमाचल की बात हो, उत्तराखंड की बात हो या जम्मू कश्मीर की बात हो, हर तरफ अच्छी बारिश जो है देखी जाएगी, आंधी तूफान जो है वो भी देखा जा सकता है। लेकिन बात अगर मैदानी राज्यों की जाए तो यूपी हो, पंजाब की बात हो, राजस्थान की बात हो या दिल्ली एनसीआर की बात हो, यहां पर भी ऑरेंज अलर्ट बारिश का जो है वो दिया गया था। और आप देख सकते हैं कि तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ इस वक्त, सीपी की तस्वीरें दिखा रही हूँ कि किस तरीके से झमाझम बारिश की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और कहीं ना कहीं अब लोगों को राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि अगर हम तापमान की बात करें तो तापमान सामान्य से कम जरूर बने हुए थे, लेकिन उमस की स्थिति जो है वो लगातार लोगों को परेशान कर रही थी, क्योंकि अरब सागर से जो लगातार हवाएं आ रही थी उसकी वजह से तापमान कम होने के बावजूद लोगों को गर्मी परेशान कर रही थी। लेकिन जो ये बारिश की शुरुआत हुई है इसी तरीके से आने वाले 3-4 दिन तक मौसम जो है सुहाना रहेगा, लगातार बारिश जो है वो हो सकती है, साथ ही साथ हवाएं चलेगी, लेकिन तापमान में जो है थोड़ी कमी जरूर देखी जाएगी।
0: मौसम अच्छा है, गर्मी से राहत है और आगे भी हल्की या मध्यम बारिश का अनुमान है। हाँ, सावधानी इसलिए जरूरी है क्योंकि कई इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है।
4: अभी एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस है, वो इस समय नॉर्थ पाकिस्तान पे एक सर्कुलेशन की फॉर्म में है, स्ट्रेंथन में है, और उसके साथ ही जहाँ जैसे WD बना हुआ है, जो हवाएं भी अरेबियन सी से इस एरिया में आ रही है, जिसके कारण आप थोड़ा ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है और विच इज़ फेवरेबल फॉर रेनफॉल एक्टिविटी। तो हमारा यही है कि आने वाले 2 से 3 दिन जहाँ पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक्टिविटी रहेगा, जिसके लिए हमने जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के लिए हमने रेनफॉल के साथ हेलस्टॉर्म का वार्निंग भी दिया है। पंजाब, हरियाणा हम अनुमान लगा रहे हैं जो हवाओं की गति है वो 50 से 60 किलोमीटर रह सकती है। इसके अलावा NCR दिल्ली की बात करें, वहाँ भी हमारा 2 दिन के लिए येलो अलर्ट है, वहाँ भी हमारा यह है कि 40 से 50 किलोमीटर तक हवाएं रहने का।
0: मॉनसून से पहले ही मौसम ने माहौल बना दिया है, न सिर्फ दिल्ली NCR बल्कि राजस्थान से लेकर बिहार तक बादल गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। और
5: अब बात मॉनसून की। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने आधिकारिक रूप से केरलम में दस्तक दे दी है, हालांकि अनुमान के हिसाब से कुछ देर से हुई है, लेकिन मॉनसून दुरुस्त आया है। केरल के कई जिलों में बारिश हो रही है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अब मॉनसून धीरे धीरे देश के अन्य हिस्सों की ओर बढ़ेगा, जिससे कि गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। आइए समझते हैं मॉनसून का सफर इस रिपोर्ट में।

0: समझ लीजिए आज से भारत का मेघ मल्हार शुरू हो चुका है। मॉनसून ने दस्तक दे दी है। केरलम में बादलों का कारवां पहुंच चुका है। अब इंतजार इन बादलों के पूरे हिंदुस्तान पर छाने का है। पहले मॉनसून के 25 मई को केरलम में पहुंचने की भविष्यवाणी थी, लेकिन मॉनसून ने दस्तक देने के लिए 4 जून की तारीख चुनी और ऑफिशियली देश में आज से बारिश का मौसम शुरू हो गया है।
1: तपती गर्मी से झुलस रहे हिंदुस्तान के लिए 4 जून एक अच्छी खबर लेकर के आया, और वो खबर ये है कि दक्षिण पश्चिम मानसून भारत पहुंच चुका है। उसने केरल में दस्तक दी है। हालांकि 3-4 दिनों की देरी है, लेकिन मौसम का जो आंकड़ा है जिस तरह हम इसे जोड़ते हैं उसमें इस 3-4 दिन की देरी को बहुत ज्यादा देरी नहीं मानते हैं। अभी मौसम विभाग का कहना है कि वो अपनी दिशा में है और परिस्थितियां इतनी अनुकूल हैं कि वो आगे अब उत्तर तमिलनाडु कर्नाटक होते हुए पश्चिमी घाट के इलाके में अगले 2-3 दिनों में उसकी रफ्तार बढ़ेगी। धीरे धीरे वो महाराष्ट्र कोंकण और उसी के साथ साथ इसकी दिशा जो है वो आगे उत्तर पूर्व तक जाएगी। जैसे ही बंगाल की खाड़ी पार करने के बाद उत्तर पूर्व भारत की ओर मानसून बढ़ेगा, हिमालय से टकरा करके उसकी दिशा फिर पश्चिम लौटेगी और उसके बाद उसी मानसून का असर हम गंगा के जो मैदानी इलाके वहां देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड और उसी के साथ साथ आगे मध्य प्रदेश हरियाणा दिल्ली पंजाब और उसी के साथ जल्दी मानसून पूरे देश पर छा जाएगा। तो मानसून की रफ्तार अपनी पकड़ चुका है, भारत में उसने दस्तक दे दी है। इसी के साथ जाहिर अगले 2-3 दिनों केरल और तमिलनाडु में भारी बारिश हो सकती है और धीरे धीरे जैसे उत्तर में आएगा अगले 4-5 दिनों में ये मानसून महाराष्ट्र कोंकण होते हुए आगे अपनी रफ्तार पकड़ेगा, उत्तर की ओर आगे बढ़ेगा। तो जहां गर्मी का एहसास अभी हो रहा है, अब दक्षिण में मानसून रफ्तार पकड़ी है, उत्तर में भी थोड़ा इंतजार करना होगा।
0: इस बार मानसून थोड़ा देर से पहुंचा है, लेकिन अभी तक तो यही लग रहा है कि बिल्कुल दुरुस्त पहुंचा है। मौसम विभाग ने पहले ही संकेत दे दिया था कि केरलम और आसपास के क्षेत्रों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। इसके बाद राज्य के कई हिस्सों में व्यापक बारिश दर्ज की गई। जब मानसून की घोषणा के सारे मानक पूरे हो गए तो उसके आने का ऐलान भी हो गया।
2: फिगर में देखेंगे कि मानसून केरला और कुछ कर्नाटक के हिस्से भी कवर किया है और इसके अलावा तमिलनाडु के हिस्से आज कवर हुए हैं और थोड़ा ब्यो बंगाल की ब्रांच कवर हुई है। तो इसका रीज़न यही है कि कंटिन्यूज अब जो कन्वेक्टिव एक्टिविटी है जहां इंक्रीज हो गई है, उसका रीज़न क्या है कि जो जहां वेस्टर्ली हवाओं की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी बढ़ गई है, 4.5 तक है। लो लेवल में जो विंड्स हैं वो 20-25 नॉट्स हैं और ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो मानसून है जहाँ उसके कारण वाइड स्प्रेड रेनफॉल एक्टिविटी रहा इस रीजन में, तो हमने मानसून को जहाँ कवर किया है। अगर आप आने वाले दिनों की बात करें तो हमारा अनुमान ये है कि केरला कोस्टल कर्नाटका वहाँ पे वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी, आल्सो वेरी हैवी मीन 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी ऑलमोस्ट पूरा वीक होती रहेगी। उसके साथ ही कर्नाटक कोंकण गोवा वहाँ भी रेनफॉल एक्टिविटी हैवी रेनफॉल होने का अनुमान है। तमिलनाडु देन इंटीरियर कर्नाटका जहाँ रेनफॉल एक्टिविटी ऑलमोस्ट हैवी रहने का अनुमान है।
0: मई महीने में IMD ने अंदाजा लगाया था कि मानसून 25 या 26 मई के आसपास केरल में पहुंच सकता है, लेकिन तमाम वजहों से मानसून की रफ्तार अचानक धीमी पड़ गई। बाद में मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बदलाव किया और 4 जून के आसपास मानसून के केरलम पहुंचने की भविष्यवाणी की गई, जो आखिरकार सही साबित हुई।
3: को दिखाती हूँ, हर किसी को इंतजार था। 26 मई की जो है तारीख पहले दी गई थी कि केरल में मॉनसून जो है 26 मई को दस्तक देगा, लेकिन देरी हुई, फिर 1 जून की तारीख आई, लेकिन अब फाइनली जो है 4 जून आज हो चुका है और 4 जून को जो मॉनसून है वो केरल में दस्तक दे चुका है। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कर्नाटका के हिस्से हुए, कोस्टल कर्नाटका जो हो गया, तमिलनाडु का कुछ हिस्सा जो है कवर करते हुए बे ऑफ बंगाल, और इस साइड पर जो है आपको दिखेगा ये जो ब्लू लाइन आप जो देख रहे हैं ये इस वक्त हमारा ऑनसेट है। ये जो डेट आज की जो हिट कर गई है क्योंकि आज से जो मानसूनी बारिश है उसकी शुरुआत हो चुकी है और अब आने वाले 6-7 दिन अच्छा मौसम जो है वो रहने की उम्मीद है। अच्छी खासी बारिश जो है वो देखी जाएगी, 12 सेंटीमीटर से ज्यादा जो बारिश है वो जो है उसका अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही मैं ये चीज भी आपको दिखाऊंगी कि जो लगातार जो मानसून है वो आगे बढ़ते हुए नजर आएगा। तो इसके साथ ही साउथ से शुरू हुआ है लेकिन धीरे धीरे जो है वो नॉर्थ ईस्ट साइड में भी जो है मानसून जो है वो देखा जाएगा। लेकिन अगर मैं बाकी पूरे आपको देश की मैं स्थिति इस वक्त दिखाना चाहूँ कि किस तरीके से मौसम का हाल है वो आप इस मैप में देख सकते हैं। ये पूरा आपको ऑरेंज अलर्ट जो है जगह जगह आपको नजर आने वाला है, ऑरेंज या फिर येलो, लेकिन बारिश का अलर्ट जो है देश के अलग अलग राज्यों में इस वक्त आपको नजर आ जाएगा।
0: केरल में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग मानसून की औपचारिक घोषणा के लिए जरूरी स्टैंडर्ड की निगरानी कर रहा था। जब ये मानक पूरे हुए तब जाकर मानसून का ऑफिशियली ऐलान किया गया। गुरुवार सुबह भी केरलम के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है। अलपुजा, कोट्टायम और एर्नाकुलम जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मानसून के केरलम पहुंचने के बाद अब देश के दूसरे हिस्सों खासकर उत्तर भारत पर नजरें टिकी हुई है, जहां लोग कई सप्ताह से भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं और बादलों के बरसने की आस लगाए बैठे हैं। आमतौर पर मानसून जून के दौरान तेजी से आगे बढ़ता है। ये पहले पश्चिमी तट, फिर पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों को कवर करता है और फिर 15 जून के आसपास मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पहुंचता है। इसके बाद मानसून पूर्वी और उत्तर भारत की ओर बढ़ता है। दिल्ली की बात की जाए तो आमतौर पर मानसून 27 जून के आसपास पहुंचता है। वहीं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और भारत के अधिकांश हिस्से जून के अंत या फिर जुलाई के पहले सप्ताह तक मानसून की चपेट में आ जाते हैं। केरल में स्वागत के बाद अब मौसम वैज्ञानिक इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि मानसून आगे भी अपनी निर्धारित वक्त से बढ़ता रहे। दिल्ली से आशुतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: मैदानी इलाकों में मौसम का मिजाज तो बदला है, लेकिन पहाड़ों पर मौसम दिल खुश करने वाला है। शिमला में और आसपास बारिश हो रही है। लोग सतरंगी छतरियों और रेनकोट में मॉल रोड पर मस्ती करते नजर आए, तो वहीं कुल्लू मनाली में पहले से ही सैलानियों का हुजूम है। हिमाचल प्रदेश के साथ कश्मीर में भी इन दिनों पर्यटकों की भारी भीड़ है। चलिए आपको पहाड़ों पर मौसम की हसीन तस्वीर दिखाते हैं।

रंग बिरंगी छतरियां लिए और रेनकोट में घूमते लो। शिमला के मॉल रोड पर ये नजारा मौसम जैसा ही दिलकश है। यूं भी शिमला में मौसम सुहाना था, पर गुरुवार दोपहर जो मूसलाधार बारिश शुरू हुई, शहर की फिजा ही बदल गई, क्योंकि सिर्फ पानी नहीं बरसा, ओले भी गिरे और देखते ही देखते शिमला

0: फिरने गए हैं, वो मौसम का जश्न मना रहे हैं। शिमला ही नहीं, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर में भी आंधी और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट है। हिमाचल में अगले 6 दिन तक मौसम खराब रहने और बारिश का पूर्वानुमान है, लेकिन ऐसे मौसम में हिमाचल में सैलानियों का हुजूम है। ये तस्वीर चंबा के खजियार की है, जो इन दिनों लोगों की पसंदीदा जगह बना हुआ है। चारों ओर फैले देवदार के पेड़, हरी घास से सजा विशाल मैदान और बीच में मौजूद छोटी झील यहाँ की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। यूं ही इसे हिमाचल का स्विट्जरलैंड नहीं कहते। ऐसी खूबसूरत जगह पर परिवार के साथ फुर्सत के पल बिताना एक अलग एहसास है। ठीक ऐसा ही एहसास लोगों को मनाली में मिलता है, जहाँ इन दिनों सैलानियों का जमावड़ा है।
1: नमस्कार। देखिए, हम सभी जानते हैं कि लगातार मौसम खुशनुमा रहने की वजह से जिला कुल्लू में पर्यटकों का आवागमन जो है वो काफ़ी अधिक संख्या में हुआ है। और यदि इस विषय पर हम आंकड़ों पर नज़र डालें तो जो हमारा ऑथेंटिक डाटा है वो ग्रीन टैक्स बैरियर जो मनाली में स्थित है उससे प्राप्त आंकड़ों के अनुसार गत वर्ष मई महीने में लगभग 41,700 के आसपास जो है बाहरी राज्यों से पर्यटक वाहन मनाली में आए थे, लेकिन जो संख्या इस वर्ष बढ़कर लगभग 66,600 जो है वाहन इस मई महीने में इस वर्ष के दर्ज किए गए हैं। तो ये एक भारी जो उछाल है लगभग 25,000 का दोनों वर्ष के आंकड़ों में, तो तुलनात्मक तरीके से अधिक संख्या में पर्यटकों ने इस वर्ष घाटी का रुख किया है। और कम बस यही स्थिति हमारे जो अन्य पर्यटक स्थल हैं, चाहे वो बंजार का क्षेत्र हो, सैंज का क्षेत्र हो या कसोल मणिकरण का एरिया हो, तो वहां पर भी अधिक संख्या में बाहरी राज्यों के और अपने राज्य के जो पर्यटक हैं उनकी संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। देखिए, मौसम साफ रहने की वजह से और रोहतांग जो हमारा पास है वो भी टाइमली ओपन हो गया है, तो उसकी वजह से टूरिस्ट जो हैं वो काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। और यदि आंकड़ों पर देखा जाए तो वीकेंड पे तो होटल ऑक्यूपेंसी ऑलमोस्ट हमारी 80-90% के आसपास है। इवन वीकडेज में भी काफ़ी अच्छी जो है ऑक्यूपेंसी दर मनाली और विभिन्न पर्यटक स्थलों के होटल्स और होम स्टेज में चल रही है।
0: कुल्लू में नदी किनारे बोटिंग हो रही है, एडवेंचर स्पोर्ट्स का मजा लिया जा रहा है। इलाका सैलानियों से गुलजार है
2: और हम लोग फैमिली के साथ राजस्थान से यहाँ आए हैं। राजस्थान से यहाँ हिमाचल को हमने इसलिए चूज किया बिकॉज यहाँ का वेदर अच्छा है। राजस्थान से कंपैरेटिवली काफी कूल वेदर है यहाँ, वहाँ पे 42-43 डिग्री टेम्परेचर, हीट वेव्स काफी ज्यादा हो रहे थे। सो समर वेकेशन में हमने घूमने के लिए इसको चूज किया। यहाँ ग्रीनरी अच्छी है, पॉल्यूशन फ्री है और वेकेशन के लिए हमने मतलब एक कूल प्लेस चाहिए थी, इसलिए हमने हिमाचल को चूज किया। और अच्छा लग रहा है यहाँ के, आज ही आए हैं, काफी चेंज मतलब काफी डिफरेंस है वेदर में। वहाँ इतनी गर्मी थी और अभी यहाँ के अच्छा लग रहा है। और अगले 7-8 डेज हम लोग यहीं पर हैं, सो हम लोग वेकेशन यहीं बनाने वाले हैं अभी।
3: काविश शर्मा, होटल शुभला रॉयल, जनरल मैनेजर। सो कुल्लू मनाली का जो टूरिज्म है वो बड़े पीक सीजन में है और काफी लोगों का व्यवसाय भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी होगी और उसके अलावा भी और भी जो व्यवसाय हमारे से जुड़े हुए हैं। तो ये काफी पीक में है और खासकर जैसे कि मई महीने में जो बुकिंग्स थी बहुत ज्यादा थी और जैसे अभी जून चल रहा है तो बहुत मतलब मई से ज्यादा मतलब बढ़ोतरी है जून महीने में और वेरी पीक उसमें है। मतलब पूरे ऑल इंडिया से जो टूरिस्ट इंक्वायरीज है दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जैसे मई महीना था उससे ज्यादा बढ़ चुकी है। और खासकर जो आपका महाराष्ट्र हो गया जो, और इसके अलावा जो हमारे साथ के स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार हो गया, फिर नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो काफ़ी लोगों का आना जारी है और नॉर्थ इंडिया काफ़ी लोगों का आना जारी है। और अभी भी मुझे फ़ोन कॉल्स काफ़ी आ रहे हैं कि बुकिंग्स के लिए, और कारण ये भी है क्योंकि एक तो गर्मियाँ बढ़ रही हैं उस करके भी टूरिस्ट का फ्लो ज़्यादा पहाड़ों की तरफ रह रहा है। और खासकर ये भी बहुत अच्छी बात है और खासकर जो भी हमारे व्यवसाय टूरिज्म से जुड़े हैं उनके लिए भी एक बड़ी अच्छी बात है। और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में भी ये जो टूरिस्ट की बढ़ोतरी, तो जैसे आपको लग रहा है कि जैसे नॉर्थ ईस्ट और जैसे बाहर जो एरिया है वहाँ पे टेम्परेचर 40-45 डिग्री टच हो चुका है, उस करके जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ को पहाड़ों की तरफ रुख मोड़ रहे हैं और कुल्लू मनाली आ रहे हैं सर। और जैसे कि काफ़ी स्टेट्स में अभी छुट्टियां होती हैं गर्मियों की, बच्चों की, तो उस करके भी काफ़ी टूरिस्ट पहाड़ों की तरफ

0: का रुख करते हैं। और ये मेन कारण है कि इसी बहाने टूरिस्टों के लिए भी एक अच्छा वो रहता है और हमें भी मतलब एक सेवा का मौका मिलता है। और जैसे कि आप जानते हैं अतिथि देवो भव, और खासकर जो हमारी परंपरा है खासकर हिमाचलीज की, हम हमेशा अपने गेस्ट को एक मतलब भगवान का दर्जा देते हैं। और
1: So everything is very beautiful and very nice. So all the people of the south should come here and enjoy a lot. So east or the west, Himachal is the best. Kullu Manali is the very nice place to enjoy.
2: हिमाचल यूं भी सैलानियों को खूब पसंद आता है और जब मैदानी इलाकों में गर्मी बेहिसाब हो तो कुल्लू मनाली से प्यार हो जाता है। मई के महीने में करीब रिकॉर्ड 66,000 गाड़ियों ने कुल्लू में एंट्री की। जून में भी यही आंकड़ा रहने की उम्मीद है। मौसम के रुख से सैलानी भी खुश हैं और कारोबारी भी।
3: हम लोग राजस्थान से यहाँ आए हैं। राजस्थान में दिन में इतनी गर्मी है, इतनी हीट वेव चल रही है कि वहाँ दिन में हम लोग बाहर भी नहीं निकल पाते, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। 4-7-8 दिन हम लोग यहाँ शांति से सुकून से रहने के लिए, छुट्टियाँ एंजॉय करने के लिए आए हैं। राजस्थान से यहाँ एनवायरनमेंट काफ़ी चेंज है और काफ़ी कूल है, इसलिए हम लोगों ने मनाली चुना है। और यहाँ का एनवायरनमेंट और ग्रीनरी सब कुछ बहुत अच्छी है। राजस्थान से यहाँ काफ़ी चेंज है।
2: हिमाचल की तरह सैलानियों का रुख जम्मू कश्मीर की ओर भी है। बांदीपुरा में बर्फबारी हो रही है, ऊंचे पहाड़ों पर सफेद बर्फ लिपटी है और तेज ठंडी हवा जैसे सुई चुभा रही है। मैदानी राज्यों से गए सैलानी तो इसी मौसम का मजा लेना चाहते हैं। ऊनी कपड़े और जैकेट से लैस होकर लोग वादी का लुत्फ उठाने इन दिनों करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर राजदान दर्रे के पास हैं।
4: लोग अभी गुरेज जा रहे हैं, आज हमें ये मौका मिला है अच्छा, और इतना सुहाना मौसम और स्नोफॉल हुआ है और यहाँ पर हमें ठहर के मैगी खाने का मौका मिला है और यहाँ के लोग इतने मेहमान नवाजी से हमारा खिदमत किया है, उसके लिए हम उनके भी शुक्र गुजार है।
5: साउथ से पहुँच गए नॉर्थ, जन्नत में कश्मीर जैसे सब कहते हैं, ट्रूली टू द वर्ल्ड कश्मीर इज जन्नत। तो हमें तो इतना अच्छा वेदर लग रहा है, इट्स सो ब्यूटीफुल। हमें वी आर लकी टू हैव स्नोफॉल एंड सच ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर वादियां हैं। हमको लग रहा है कि हम मूवी में है, कोई रील भी बनाते हैं। सो इट्स वंडरफुल, वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम एंड सच रिमोट प्लेसेस आर वेरी गुड टू एक्सप्लोर।
6: सब लोग यहाँ पे आए, विजिट करें, ये जगह को देखें और जगह के यहाँ पे गवर्नमेंट को भी बोलेंगे इस जगह को प्रमोट करें जिससे सब लोगों को इसके बारे में पता लगे।
7: 11 बजे हम लोग पहुँच के डेरे गुरेज वैली के लिए निकल गए थे। वहाँ पे हम लोगों ने रात को स्टे किया एंड अभी जब हम रिटर्न आ रहे थे तो ऊपर हमें बारिश मिली थी एंड यहाँ पे आते आते पूरी स्नो है, तो बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। मुंबई में अभी 40 डिग्री चल रहा है, तो वहाँ से यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है।
8: वातावरण कैसा लग रहा है?
7: बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ बर्फ हो रही है, बारिश भी हो रही है। हमने श्रीनगर में गर्मी देख ली, यहाँ पे ऊपर आके बारिश देख ली, अभी बर्फ हो रही है, तो कम से कम 5 डिग्री तो चल रहा है यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ठंडी है।
2: वादी में मौजूद जानी पहचानी और मशहूर जगहों पर ही नहीं जा रहे बल्कि खूबसूरत वादी में नए इलाकों की भी तलाश है। अनंतनाग जिले में वेरीनाग के करीब ये इलाका सैलानियों को खूब पसंद आ रहा है। डेडबल कपरान नाम के इस इलाके में साफ पानी वाली पहाड़ी नदी है। ऊंचे पहाड़ों के साय में दरख्तों का हरा आंचल है। चलते चलते चाहे जितनी दूर निकल जाइए थकान का एहसास नहीं होता। वादी में ये इलाका एक छिपा हुआ खजाना कहा जाता है जिसकी ओर बड़ी तादाद में सैलानी आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि यहाँ भीड़भाड़ कम है, प्रकृति का एहसास ज्यादा है। गर्मी से राहत पाने के लिए जम्मू कश्मीर से बेहतर जगह भला क्या होगी, लेकिन जब बादल गरज रहे हो, क्लाउड बर्स्ट हो रहा हो, तो सैलानियों के लिए सावधानी भी जरूरी है। बूढ़ा में बादल जमकर बरसे और लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे पर कई जगह मलबा जाम हो गया और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, कई सैलानी इसमें फंसे। हालांकि सभी को सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: K-pop takes center stage. bold sounds, global energy, and hits that move fast. Today's K-pop plays the biggest tracks, breakout anthems, and chart toppers. Fresh music on repeat, so you never miss a beat. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's K-pop to start listening now.
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
15: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
16: गुड न्यूज टुडे।
17: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
18: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
19: चमोली में गुप्त काल ट्रैकिंग कर वापस लौटा पहला दल, गमशाली से 26 मई को हुआ था रवाना, टीम में शामिल थे 7 ट्रैकर। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक केदारनाथ धाम पहुंचे करीब 11 लाख श्रद्धालु। धाम में लगातार बदल रहा मौसम का मिजाज, शिरडी के साई दरबार से आई आस्था की अनोखी तस्वीर, श्रद्धालु ने साई बाबा को अर्पित किया सोने का मुकुट, करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद मौसम सुहाना, तापमान में गिरावट से लोगों को मिली गर्मी से राहत, मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए जारी किया अलर्ट। इंडोनेशिया के चिड़ियाघर में गूंजी 4 नन्हे मेहमानों की किलकारी, बाघिन दी ने 4 शावकों को दिया जग, सफारी पार्क में कुल 8 हुई बाघों की संख्या।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
19: बात करते हैं मानसून की, केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के औपचारिक रूप से एंट्री करते ही दिल्ली एनसीआर का मौसम भी अचानक से बदल गया। राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में तेज हवाओं के साथ घने काले बादल छा गए और झमाझम बारिश हुई। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक केरलम में मॉनसून के आने से उत्तर भारत में भी नमी बढ़ गई है, इससे दिल्ली एनसीआर में प्री मॉनसून गतिविधियां तेज हुई। वहीं दूसरे राज्यों से भी बारिश की खबरें हैं, लेकिन ये मॉनसूनी बारिश नहीं है, इसलिए दिल्ली समेत कई राज्यों में अभी मॉनसून के आने का इंतजार है।

0: देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह तक तेज धूप और उमस से लोग परेशान थे, लेकिन दोपहर होते होते आसमान में काले बादल छा गए। कई इलाकों में दिन के समय ही अंधेरा जैसा माहौल बन गया। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और आसपास के क्षेत्रों में तो तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश हुई। मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को गर्मी और उमस से काफी राहत मिली। हालांकि तेज हवाओं की वजह से कुछ जगहों पर ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट पहले ही जारी किया था।
1: चिलचिलाती गर्मी और उमस भरी हवाओं के बाद मौसम एक बार फिर से पूरी तरीके से बदल चुका है। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से इस वक्त मौसम बेहद ही सुहाना हो चुका है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो है बारिश की शुरुआत हो चुकी है, और ये पहले से ही मौसम विभाग का अनुमान था कि आज बारिश जो है वो देखी जा सकती है, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ जो है इस वक्त जो है सर्कुलेशन जो है वो पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है, जिसका अदर जो असर था वो देखने को पहाड़ी राज्यों पर मिलेगा, लेकिन उसका कहीं ना कहीं असर जो है मैदानी इलाकों पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। और मौसम विभाग ने इसी चीज को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया था कि पहाड़ी राज्यों में, चाहे हिमाचल की बात हो, उत्तराखंड की बात हो या जम्मू कश्मीर की बात हो, हर तरफ अच्छी बारिश जो है देखी जाएगी। आंधी तूफान जो है वो भी देखा जा सकता है, लेकिन बात अगर मैदानी राज्यों की जाए तो यूपी हो, पंजाब की बात हो, राजस्थान की बात हो या दिल्ली एनसीआर की बात हो, यहां पर भी ऑरेंज अलर्ट बारिश का जो है वो दिया गया था। और आप देख सकते हैं कि तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ इस वक्त, सीपी की तस्वीरें दिखा रही हूँ कि किस तरीके से झमाझम बारिश की जो शुरुआत है वो हो चुकी है, और कहीं ना कहीं अब लोगों को राहत जरूर मिलेगी। क्योंकि अगर हम तापमान की बात करें तो तापमान सामान्य से कम जरूर बने हुए थे, लेकिन उमस की स्थिति जो है वो लगातार लोगों को परेशान कर रही थी।
0: इस प्री मानसून बारिश ने लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी से काफी हद तक राहत पहुंचाई है। वहीं मौसम विभाग ने दावा किया है कि मानसून की केरलम में एंट्री हो गई है। इसके असर से केरलम के अलावा तमिलनाडु और कर्नाटक में कुछ जगहों पर अगले 7 दिन भारी बारिश हो सकती है।
2: आज 4 जून को अगर आप जो फिगर में देखेंगे कि मानसून केरला और कुछ कर्नाटक के हिस्से भी कवर किया है, और इसके अलावा तमिलनाडु के हिस्से आज कवर हुए हैं, और थोड़ा ब्यो बंगाल की ब्रांच कवर हुई है। तो इसका रीज़न यही है कि कंटिन्यूस अब जो कन्वेक्टिव एक्टिविटी है जहां इंक्रीज हो गई है, उसका रीज़न क्या है कि जो जहां वेस्टर्ली हवाओं की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी बढ़ गई है, 4.5 तक है। लो लेवल में जो विंड्स हैं वो 20-25 नॉट्स हैं, और ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो मानसून है जहाँ उसके कारण वाइड स्प्रेड रेनफॉल एक्टिविटी रहा इस रीजन में, तो हमने मानसून को जहाँ कवर किया है।
0: मॉनसून की दस्तक से पहले ही देश के ज्यादातर हिस्सों में प्री मॉनसून बारिश देखने को मिल रही है, चाहे दक्षिण भारत हो या उत्तर भारत, चाहे पूर्वी भारत हो या पश्चिम भारत। हालांकि पहले मॉनसून के 25 मई को केरलम में पहुंचने का पूर्वानुमान दिया गया था, लेकिन मॉनसून ने दस्तक देने के लिए 4 जून की तारीख चुनी और देश में आज से बारिश के मौसम की शुरुआत हो गई। हालांकि इस बार मॉनसून थोड़ी देर से पहुंचा है, लेकिन अभी तक तो यही लग रहा है कि बिल्कुल दुरुस्त पहुंचा है। मौसम विभाग ने पहले ही संकेत दे दिया था कि केरलम और आसपास के क्षेत्रों में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। इसके बाद राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश दर्ज की गई। गुरुवार सुबह भी केरलम के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है। अलप्पुझा और कोट्टायम और अर्नाकुलम जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं जब मॉनसून की घोषणा के सारे मानक पूरे हो गए तो उसके आने का ऐलान भी हो गया। मौसम विभाग ने पहले अंदाजा लगाया था कि मॉनसून 25 या 26 मई के आसपास केरलम पहुंच सकता है, लेकिन तमाम वजहों से मॉनसून की रफ्तार अचानक धीमी पड़ गई। बाद में मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बदलाव किया और 4 जून के आसपास मॉनसून के केरलम पहुंचने की भविष्यवाणी की, जो आखिरकार सच साबित हुई।
2: आने वाले दिनों की बात करें तो हमारा अनुमान ये है कि केरला, कोस्टल कर्नाटका, वहाँ पे वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी, वेरी हैवी मीन 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी ऑलमोस्ट पूरा वीक होती रहेगी। उसके साथ ही कर्नाटक, कोंकण, गोवा, वहाँ भी रेनफॉल एक्टिविटी, हैवी रेनफॉल होने का अनुमान है। तमिलनाडु, देन इंटीरियर कर्नाटका, जहाँ रेनफॉल एक्टिविटी ऑलमोस्ट हैवी रहने का अनुमान है। इसके अलावा भी जहाँ भी जो मानसूनल विंड फेवरेबल हो रही है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी, जैसे भी आज मानसून थोड़ा नॉर्थ ब्यो बंगाल तक टच किया, जो नॉर्थ पे की लाइन है, और आने वाले 2-3 दिनों में जहाँ भी रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ जाएगी, हैवी, वेरी हैवी रेनफॉल होने का अनुमान है। तो हमारा आने वाले दिनों में यही फोरकास्ट है, 2-3 दिन जो मानसून है, जो इवन इंटायर गोवा और कोंकण के कुछ हिस्से, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से और कवर कर सकता है, कर्नाटक जैसे कवर हो सकते हैं, आंध्रा के, तमिलनाडु के जो हिस्से वो और कवर हो जाएंगे और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के कुछ हिस्से कवर होने का।
0: मानसून के केरलम पहुंचने के बाद अब देश के दूसरे हिस्सों खासकर उत्तर भारत पर नजरें टिकी हैं, जहां लोग कई सप्ताह से भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं और बादलों के बरसने की आस लगाए बैठे हैं। आमतौर पर मानसून जून के दौरान तेजी से आगे बढ़ता है। ये पहले पश्चिमी तट और पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों को कवर करता है, फिर 15 जून तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पहुंचता है। इसके बाद मानसून पूर्वी और उत्तरी भारत की ओर बढ़ता है। वहीं दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी प्री मानसून एक्टिविटी जारी है।
2: अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, वो समय नॉर्थ पाकिस्तान पे एक सर्कुलेशन की फॉर्म में है, स्ट्रेंथन में है और उसके साथ ही जहाँ जैसे WD बना हुआ है, जो हवाएं भी अरबियन सी से इस एरिया में आ रही है, जिसके कारण आप थोड़ा ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है और विच इज़ फेवरेबल फॉर रेनफॉल एक्टिविटी। तो हमारा यही है कि आने वाले 2 से 3 दिन जहाँ पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक्टिविटी रहेगा, जिसके लिए हमने जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के लिए हमने रेनफॉल के साथ हेलस्टॉर्म का वार्निंग भी दिया है। पंजाब, हरियाणा हम अनुमान लगा रहे हैं जो हवाओं की गति है वो 50 से 60 किलोमीटर रह सकती है। इसके अलावा NCR दिल्ली की बात करें, वहाँ भी हमारा 2 दिन के लिए येलो अलर्ट है, वहाँ भी हमारा यह है कि 40 से 50 किलोमीटर तक हवाएं रहेंगी।
0: हालांकि देश के कई राज्यों में अभी भी गर्मी कम नहीं हुई है। गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में तापमान 40 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। दिल्ली की बात करें तो आमतौर पर मानसून 27 जून के आसपास पहुंचता है, जबकि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और देश के ज्यादातर हिस्सों में जून के आखिर या जुलाई के पहले हफ्ते तक मानसून आ जाता है। केरलम के बाद अब मौसम वैज्ञानिक इस बात पर नजर रखेंगे कि मानसून आगे भी अपने निर्धारित समय के अनुसार बढ़ता है या नहीं। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: पंजाब में निजी स्कूलों में फीस पर लगाम। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
4: पंजाब सरकार के निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर लगाम लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की है कि अब कोई भी निजी स्कूल सालाना 5% से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकेगा। पिछले 3 सालों में तय सीमा से ज्यादा फीस वसूलने वाले स्कूलों को अतिरिक्त राशि अभिभावकों को लौटानी होगी। सरकार इस संबंध में अध्यादेश लाकर बाद में कानून बनाएगी। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना, फीस वापसी और बार बार गलती करने पर मान्यता रद्द करने तक की कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने पद संभालने के बाद बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के स्कूल और कॉलेज छात्रों के लिए मुफ्त बस पास की घोषणा की है। इससे विशेष रूप से गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों के हजारों छात्रों को राहत मिलेगी। पहली कैबिनेट बैठक के बाद उन्होंने बताया कि बी खाता संपत्तियों को ए खाता में बदलने की सुविधा अब पूरे राज्य में लागू होगी। मुख्यमंत्री ने इसे नई शुरुआत बताते हुए विकास और सुशासन का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि सरकार सामूहिक निर्णय और लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर काम करेगी। कश्मीर और लद्दाख के बीच साल भर संपर्क सुनिश्चित करने वाली नई जोजिला टनल लगभग बनकर तैयार हो गई है। श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर बन रही ये सुरंग अगले कुछ हफ्तों में यातायात के लिए खोली जा सकती है। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण जोजिला दर्रा कई महीनों तक बंद रहता है, जिससे लद्दाख का संपर्क प्रभावित होता है। टनल शुरू होने के बाद हर मौसम में पहाड़ों का रुख संभव होगा। इससे यात्रा का समय कम होगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और लद्दाख क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी।
3: चलिए अब बात करते हैं और बताते हैं आपको कि गर्मी में पहाड़ कैसे दे रहे हैं सुकून। दरअसल गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही ज्यादातर लोग जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों का रुख करते हैं, लेकिन यहाँ पीक समर सीजन में इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है कि घूमने का मजा ही किरकिरा हो जाता है। ट्रैफिक जाम, महंगे होटल और भारी भीड़ आपकी ट्रिप को तनाव भरा बना देते हैं। तो अगर आप भी इस गर्मी इन जगहों पर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो पीक सीजन में यहां जाने से बचना बेहतर होगा।
4: दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन उत्तर भारत के कुछ राज्यों में अभी भी पारा हाई है। ऐसे में तन मन को कूल करने के लिए पहाड़ों की सैर लाजमी है, लिहाजा पर्यटक पहाड़ों पर सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने के लिए निकल पड़े हैं। कोई जम्मू कश्मीर जा रहा है तो कोई हिमाचल और उत्तराखंड का रुख कर रहा है। पहलगाम की ऊंची ऊंची चोटियां, चीड़ और देवदार के घने जंगल, कल कल बहती नदी, इन्हीं दिलकश नजारों का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक यहाँ पहुँच चुके हैं। कोई इन नजारों को अपने कैमरों में कैद कर रहा है तो कोई इन खूबसूरत नजारों के साथ खुद को कैमरे में कैद कर रहा है। यहाँ के हर एक लम्हे को भरपूर जी लेने की चाहत हर किसी को है।
5: यहाँ के मौसम की बात करें तो बहुत ही बढ़िया, एकदम खूबसूरत। मेरे मतलब मेरा तो ये फर्स्ट टाइम है यहाँ पे आने का। टूरिस्टों से मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे आए, काफी सारे पिछली कुछ घटनाएं यहाँ पे हुई थी, उस वजह से काफी लोग सोच में पड़ गए, बट मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया चल रहा है सब।
6: अच्छा लग रहा है, हम हर साल आते रहते हैं पहलगाम, इस बार भी आए, अभी पहली बार आए इस साल गर्मियों में, बाद में अभी जून जुलाई बाकी पड़ा, आएंगे बीच में।
4: पहलगाम की ठंडी हवाएं और नदी के ठंडे पानी के बीच पर्यटक मैदानों की तपिश को भूल चुके हैं, इनका मन पूरी तरह पहलगाम में रम चुका है।
7: जम्मू में इतनी गर्मी है हम आपको बयान नहीं कर सकते, इतनी गर्मी है जम्मू में भी। यहाँ कश्मीर में तो जन्नत है, हम कल आए थे, इतनी ठंड थी कि हमें यहाँ जैकेट्स वेयर करनी पड़ी।
8: अच्छा।
7: हाँ, ब्लैंकेट्स लेने पड़े, सुबह हमने गर्म पानी से नहाया है, इतना अच्छा मौसम है यहाँ पे।
8: अच्छा मौसम है।
7: हाँ? तो पहलगाम, तो वैसे भी पहलगाम और सोनामर्ग मेरी फेवरेट स्पॉट है। हाँ? हम तो हर साल पहलगाम और यहाँ पे आते हैं।
9: वधारे मजा आवे, ने फरवानी मम्मी पापा साथे खूब वधारे मजा आवे छे।
8: मजा रो मजो। मौसम कैसा है?
9: मौसम तो बहुत ही बढ़िया है यहाँ का।
8: अच्छा,
9: गुजरात में तो बहुत गर्मी पड़ रही है, यहाँ तो ठंडी है।
4: बर्फ से लगदग बांदीपोरा की पहाड़ी की चोटियां सैलानियों को खूब पसंद आ रही हैं। गुरेज रोड पर करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर राजदान दर्रे पर पर्यटक यहां की बर्फीली वादियों का दीदार करने पहुंच रहे हैं और ठंडे मौसम का मजा ले रहे हैं।
10: बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ बर्फ हो रही है, बारिश भी हो रही है, हमने श्रीनगर में गर्मी देख ली, यहाँ पे ऊपर आके बारिश देख ली, अभी बर्फ हो रही है, तो कम से कम 5 डिग्री तो चल रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ठंडी है।
11: जून में वी कैन नॉट एक्सपेक्ट सच टाइप ऑफ बर्फबारी हियर अभी, लेकिन वो गर्मी को देखते हुए लोग यहाँ पर आना चाहिए। और बहुत अच्छा सोना वेदर है, बहुत अच्छी जगह है ये, करीब करीब 14,000 फीट पे जगह है राजस्थान, ऑन द वे टू गुरेज।
4: हिमाचल प्रदेश के चंबा का खजियार भी पर्यटकों से गुलजार है, ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, हरा भरा खुला मैदान और बीच में छोटी सी झील पर्यटकों का मन मोह रही है। कोई इन दिलकश नजारों को कैमरे में कैद कर रहा है तो कोई गीत गुनगुना रहा है। कुल्लू और आसपास के पहाड़ी इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, लिहाजा यहाँ भी पर्यटकों की भरमार है। यहाँ पर्यटक जिप लाइन, पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग जैसे एडवेंचर टूरिज्म को जमकर एंजॉय कर रहे हैं।
12: फरमाए और हम लोग फैमिली के साथ राजस्थान से यहाँ आए, राजस्थान से यहाँ हिमाचल को हमने इसलिए चूज किया बिकॉज यहाँ का वेदर अच्छा है, राजस्थान से कंपैरेटिवली काफी कूल वेदर है यहाँ, वहाँ पे 42-43 डिग्रीज टेम्परेचर, हीट वेव्स काफी ज्यादा हो रहे थे, सो समर वेकेशन में हमने घूमने के लिए इसको चूज किया। यहाँ ग्रीनरी अच्छी है, पॉल्यूशन फ्री है और वेकेशन के लिए हमने मतलब एक कूल प्लेस चाहिए थी, इसलिए हमने हिमाचल को चूज किया।
13: मनाली का जो टूरिज्म है वो बड़े पीक सीजन में है और काफी लोगों का व्यवसाय भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी होगी और उसके अलावा भी और भी जो व्यवसाय हमारे से जुड़े हुए हैं, तो ये काफी पीक में।
4: कुल्लू मनाली में सैलानियों का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मई के महीने में यहाँ 66,000 से ज्यादा पर्यटक वाहनों की एंट्री दर्ज की गई थी और बड़ी तादाद में सैलानियों के पहुंचने से यहाँ के होटल खचाखच भरे हैं। गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यटक कश्मीर, हिमाचल ही नहीं बल्कि देवभूमि उत्तराखंड का भी रुख कर रहे हैं और इसका सबसे ज्यादा असर नैनीताल और आसपास के पर्यटन स्थलों में देखने को मिल रहा है। वीकेंड और छुट्टियों के हालात बदतर हो चले हैं। हालात ऐसे हैं कि प्रमुख मार्गों पर लंबा जाम लग रहा है, जिसकी वजह से पर्यटकों को घंटों तक वाहनों में फंसे रहना पड़ रहा है, तो स्थानीय लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है।
14: और किसी भी प्रकार का बाइकर्स और बाइक टैक्सीज को पूर्ण रूप से हमने प्रतिबंधित किया है, और जो उन्हीं व्हीकल्स को हम अलाउ कर रहे हैं जो जिनके पास होटल में कंफर्म्ड बुकिंग है और पार्किंग भी है। इस वजह से ट्रैफिक जो है वन वे सिस्टम भी लागू है शाम के टाइम में, सुगम और सुव्यवस्थित रूप से यातायात का संचालन हो रहा है। नो निश्चित रूप से यातायात का दबाव जरूर है, परंतु व्यवस्थित रूप से चल रहा है।
4: नैनीताल में जहां पर्यटकों की रिकॉर्ड आमद से होटल, रेस्टोरेंट और पर्यटन कारोबार से जुड़े व्यवसायियों के चेहरे खिले हुए हैं, वहीं दूसरी ओर बढ़ता ट्रैफिक प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। फिलहाल नैनीताल और आसपास के इलाकों में जाम से जल्द राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। नैनीताल से लीला सिंह बिष्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: न्यूज पेपर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
0: कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन भारतीय शेयर बाजार में खास बदलाव देखने को नहीं मिला। गुरुवार को 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 13 अंक बढ़कर 74,360 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयर वाला एनएसई निफ्टी 10 अंकों की बढ़त के साथ 23,416 पर बंद हुआ। ग्लोबल मार्केट में मांग के कारण गुरुवार को गोल्ड की कीमतों में बढ़त देखने को मिली। ऑल इंडिया एसोसिएशन के अनुसार 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 700 रुपए चढ़कर 1,60,300 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 3800 रुपए लुढ़क कर 2,65,700 रुपए पर पहुंच गई। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़े तनाव के बीच अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में एक बार फिर से गिरावट देखने को मिली है। गुरुवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 7 पैसे कमजोर होकर 95.83 के स्तर पर बंद हुआ।
3: फिल्म लगान के 25 साल पूरे होने पर फैंस को आमिर के प्रोडक्शन का तोहफा। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड पर।
0: फिल्म लगान की रिलीज के 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। फिल्म 15 जून 2001 को रिलीज हुई थी और अब इसको लेकर आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस ने फिल्म का नया ट्रेलर रिलीज करने के साथ ही फिल्म की री रिलीज की घोषणा भी की। फिल्म लगान का ये 4K ट्रेलर एक बार फिर 1893 के उस समय में ले जाता है जब गांव वालों को सूखे की वजह से ब्रिटिश सेना को भारी लगान देना पड़ता था। इस ट्रेलर को रिलीज करने के साथ ही ये जानकारी भी दी गई है कि ये फिल्म 12, 13 और 14 जून को सिनेमाघरों में री रिलीज की जाएगी। विक्रम भट्ट के निर्देशन वाली फिल्म हॉन्टेड 3D गोस्ट ऑफ द पास्ट का स्क्रीमर रिलीज किया गया है। स्क्रीमर यानी इस छोटे टीजर वीडियो की शुरुआत एक भूतिया हवेली से होती है, जिसमें फिल्म के मुख्य किरदार निभाने वाले मीमोह चक्रवर्ती हवेली में अपने प्यार की तलाश में पहुंचते हैं, जहां उनके सामने कुछ ऐसे हालात बनते हैं जिनसे निकल पाना उनके लिए एक बड़ी चुनौती होती है। फिल्म में मीमोह के साथ चेतना पांडे मुख्य किरदार निभाती नजर आएंगी। इसके अलावा श्रुति प्रकाश, गौरव वाजपेयी, प्रणीत भट्ट, हेमंत पांडे भी फिल्म में दिखेंगे। ये फिल्म 12 जून को हिंदी, तमिल और तेलुगु में सिनेमाघरों में आएगी। अभिनेत्री जानवी कपूर त्रिमला पहुंची। उन्हें नंगे पैर मंदिर की 3,550 सीढ़ियां चढ़ते हुए देखा गया। उनके साथ उनकी टीम के लोग और दोस्त भी दिखे। जानवी हर खास मौकों पर यहां पहुंचती हैं। इस बार वो अपनी फिल्म पेड्डी के रिलीज के दिन यहां पहुंची और भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा अर्चना की। जानवी ने फिल्म पेड्डी में रामचरण के साथ काम किया है और इस बार माना जा रहा है कि वो फिल्म की सफलता की कामना को लेकर ही तिरुमला पहुंची और भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के पहाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। हॉलीवुड के डीसी स्टूडियोज ने अपनी फिल्म सुपरगर्ल का आखिरी ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसमें दिखाया गया है कि सुपरगर्ल और सुपरमैन अपने डॉग क्रिप्टो को बचाने के लिए खतरनाक मिशन पर निकलते हैं। इस सफर में उनकी मुलाकात रुथिये नाम की एक एलियन लड़की से होती है जो उनका साथ देती है। क्रेग गिलेस्पी निर्देशित इस फिल्म में मिली एलकॉक सुपरगर्ल का किरदार निभा रही हैं। ये फिल्म 26 जून को अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी।
3: चलिए न्यूज पथ में खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
0: वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि शख्स अपनी उंगलियों के बीच चावल का एक दाना पकड़ता है। इसके बाद वो चावल के दाने को चाकू से इतनी तेजी और सटीकता के साथ काटना शुरू करता है कि कुछ ही सेकंड में पूरा दाना बारीक टुकड़ों में बदल जाता है। वीडियो देखने वाले कई लोग दावा कर रहे हैं कि उसने चावल के दाने को करीब 50 हिस्सों में काट दिया। सबसे ज्यादा चर्चा उसके हाथों की स्पीड और कंट्रोल को लेकर हो रही है। आमतौर पर लोग चावल का दाना ठीक से पकड़ भी नहीं पाते, लेकिन इस शख्स ने उसे इतनी सफाई से काटा कि इंटरनेट यूजर्स दंग रह गए। छुट्टी के बाद स्कूल का पहला दिन हर स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए ही खास होता है। ऐसे में अगर स्कूल में बच्चों का वेलकम प्यार और पारंपरिक तरीके से किया जाए तो उनकी खुशी कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में सोशल मीडिया पर हाल ही में केरलम के एक स्कूल का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूल में क्लास गेट पर एक टीचर खड़ी है और स्कूल पहुंचने वाले बच्चों का ट्रेडिशनल तरीके से वेलकम किया जा रहा है। बच्चे एक एक करके टीचर के पास पहुंचते हैं, जिसके बाद टीचर हर एक बच्चे की आरती उतारती है, उसे आशीर्वाद देती है और फिर प्यार करके स्कूल के अंदर भेजती है। मौसम इतना खराब है कि सामने देखना भी मुश्किल लग रहा है। इसी दौरान एक बाइक सवार परिवार सड़क किनारे रुका हुआ नजर आ रहा है। कुछ ही देर के बाद कार वहां पर रुक जाती है और उसका ड्राइवर परिवार की मदद के लिए आगे आता है। वो महिला और बच्चे को सुरक्षित कार में बैठाता है। वीडियो में ये सीन देखकर लोग कह रहे हैं कि मुश्किल समय में किसी की मदद करना कितना बड़ा काम हो सकता है। साफ पता चल रहा है कि कार ड्राइवर की इस छोटी सी लेकिन अहम मदद ने लोगों का दिल जीत लिया है। वीडियो में दिखाई देता है कि एक साड़ी को छत से नीचे तक बिछाया गया है। ऊपर मौजूद शख्स बाल्टी से गेहूं साड़ी पर डालता है और देखते ही देखते गेहूं फिसलता हुआ सीधे नीचे रखी बोरी में पहुंच जाता है। पूरा सिस्टम इतना आसान और मजेदार है कि देखने वाले बार बार वीडियो चला रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये जुगाड़ किसी इंजीनियरिंग लैब में नहीं बल्कि गाँव के माहौल में तैयार किया गया है। इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक विदेशी लड़की दिखाई दे रही है जो दुल्हन के गेटअप में नजर आ रही है। उसने अपने मारवाड़ी दूल्हे को शानदार सरप्राइज देकर सबको हक्का बक्का कर दिया। वीडियो में दुल्हन राजस्थानी गाने पर पारंपरिक अंदाज में डांस करती नजर आती है। उसका डांस देखकर न सिर्फ दूल्हा खुश हो जाता है बल्कि शादी में मौजूद मेहमान भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते। वीडियो का सबसे खास हिस्सा आखिर में देखने को मिलता है जब दुल्हन प्यार से अपने दूल्हे का हाथ पकड़कर उसे भी डांस फ्लोर पर ले जाती है।
3: इलॉन मस्क ने एआई की मदद से बने मूवी ट्रेलर पर पूछा लोगों से सवाल। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
15: फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी को लेकर कनाडा का शहर वैंकूवर पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। शहर के प्रतिष्ठित साइंस वर्ल्ड डोम को 131 पैनल्स की मदद से टूर्नामेंट की आधिकारिक मैच बॉल ट्रायुंडा का रूप दिया गया है। वहीं नॉर्थ शोर के ग्राउस माउंटेन पर विशाल कैनेडाई राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया गया है। 40 मीटर ऊंचे जियोडेसिक डोम की ये सजावट पर्यटकों का ध्यान आकर्षित कर रही है। वैंकूवर में कुल 7 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें कनाडा और कतर के बीच होने वाला अहम मैच भी शामिल है। इलॉन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता दिखाते हुए होमर के महाकाव्य इलियट पर आधारित एक एआई जनरेटेड सिनेमैटिक ट्रेलर जारी किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए इस ट्रेलर को रोक इमेजिन 1.5 की मदद से तैयार किया गया। ट्रोजन युद्ध की कहानी को शानदार विजुअल्स और इमोशंस के साथ पेश किया गया है। मस्क ने लोगों से पूछा कि क्या वो इसकी पूरी फिल्म देखना चाहेंगे। ये ट्रेलर संकेत देता है कि भविष्य में एआई की मदद से पूरी फीचर फिल्म्स बनाना संभव हो सकता है।

0: लंदन में कलाकार माजा पेट्रिक की नई प्रदर्शनी द ग्लिस्ट सब्लाइम तकनीक और प्रकृति के अनूठे मेल का उदाहरण बनकर सामने आई है। इस प्रदर्शनी में एक रोबोट सिंथेटिक आर्कटिक पॉपीज को लाइट बॉक्स में सजाता दिखाई देता है। ये सीरीज उन आर्कटिक पॉपीज से प्रेरित है जो पृथ्वी के सबसे उत्तरी इलाकों में खिलने वाले पौधों में शामिल हैं। 6 जून तक चलने वाली ये प्रदर्शनी SXSW लंदन कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसमें तकनीक, संगीत, फिल्म और संस्कृति से जुड़े विविध आयोजनों को एक मंच पर प्रस्तुत किया जा रहा है। चीन के सिचुआन प्रांत स्थित चिंगदू रिसर्च बेस ऑफ जायंट पांडा ब्रीडिंग से एक बेहद प्यारा वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक नन्हा पांडा अपनी मां की पीठ पर खेलता और मस्ती करता दिख रहा है। इस मनमोहक नजारे ने लोगों का दिल जीत लिया है। चिंगदू का ये केंद्र वैज्ञानिक अनुसंधान, जन जागरूकता और इको टूरिज्म के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ जायंट पांडा और रेड पांडा जैसी दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण और प्रजनन पर विशेष काम किया जाता है, जिससे वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा मिलता है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी
2: म्यूजिक फॉर एवरी मूड लिव्स ऑन ट्यून इन। व्हेदर यू वांट टू रिलैक्स, फोकस और टर्न थिंग्स अप, यू विल फाइंड द राइट स्टेशन। हियर फ्रॉम द टॉप स्टेशंस लाइक टुडेस हिट्स, क्लासिक रॉक, कॉफी हाउस and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
1: Good news today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
3: चमोली में गुप्त काल ट्रैकिंग कर वापस लौटा पहला दल। गमशाली से 26 मई को हुआ था रवाना, टीम में शामिल थे 7 ट्रैकर। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक केदारनाथ धाम पहुंचे करीब 11 लाख श्रद्धालु। धाम में लगातार बदल रहा मौसम का मिजाज। शिरडी के साई दरबार से आई आस्था की अनोखी तस्वीर, श्रद्धालु ने साई बाबा को अर्पित किया सोने का मुकुट, करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद मौसम सुहाना, तापमान में गिरावट से लोगों को मिली गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए जारी किया अलर्ट। इंडोनेशिया के चिड़ियाघर में गूंजी 4 नन्हे मेहमानों की किलकारी, बाघिन दीन ये 4 शावकों को दिया जब। सफारी पार्क में कुल 8 हुई बाघों की संख्या।

चलिए शुरुआत करते हैं दिल्ली एनसीआर के तूफानी मौसम की खबर से। गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे अचानक मौसम ने करवट ली। तेज धूल भरी आंधी, काले बादल और झमाझम बारिश ने पूरा माहौल बदल दिया। अंधेरे होने की वजह से रात का एहसास होने लगा। तेज हवा की वजह से कई जगह पेड़, साइन बोर्ड और बिजली के खंभे गिर गए। मौसम का मिजाज अभी भी जस का तस है। मौसम विभाग ने कल यानी कि शुक्रवार को भी येलो अलर्ट जारी किया है, यानी कि दिल्ली एनसीआर और आसपास गरज चमक के साथ आंधी का अनुमान है। देखिए ये रिपोर्ट।

दोपहर तक धूप थी, आसमान साफ था, पर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि दिन में रात हो गई। घड़ी में 3 बजते ही तेज धूल भरी आंधी चली और देखते ही देखते घुप अंधेरा छा गया। जो सड़क पर थे सहम गए, जो गाड़ियों में थे ठहर गए। हवा की रफ्तार इतनी तेज कि हरे दरख्त उखड़ गए, कुछ सड़कों पर औंधे मुंह गिरे तो कुछ नीचे खड़ी गाड़ियों पर। लेकिन साइन बोर्ड्स की धज्जियां उड़ गई, स्ट्रीट लाइट्स के खंबे भी हवा का प्रहार झेल नहीं सके। हवा की रफ्तार करीब 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसके सामने एक कदम भी आगे बढ़ना मुहाल। अंधेरा ऐसा कि गाड़ियों में हेडलाइट्स तक जलानी पड़ी।

0: इसके बाद शुरू हुई झमाझम बारिश जिसने सड़कों को लबालब कर दिया। समस्या तब हुई जब पानी जमा होने से ट्रैफिक रुक गया। ये तस्वीरें नोएडा की हैं, लेकिन कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें पूरे दिल्ली एनसीआर में नजर आईं, जब ये पूरा इलाका थोड़ी देर के लिए ठहर गया।
1: और आप ये समझिए कि 80 से 100 किलोमीटर की रफ्तार अब मॉनसून ने आज दस्तक दी है केरल में। आपको तस्वीरें दिखाओ, ये देखिए, ये दिल्ली और यूपी की सीमा है और आप यकीन मानेंगे कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये दिल्ली मेरठ हाईवे है। आप देखिए इसकी तस्वीरें कि महज अभी 5 से 10 मिनट हुए हैं और इतनी तेज बरसात है कि आपको लगेगा यहाँ समंदर। हवा की रफ्तार अगर समझना हो, ये देखिए फ्लेक्स, 80 से 100 किलोमीटर की हवा, मतलब इतनी तूफानी बारिश और सूखी के 3 से 4 बजे के बीच आपको ऐसा लग रहा होगा कि रात के 10 बज रहे हों। घुप अंधेरा, सड़कों पर पूरी तरह से विजिबिलिटी एकदम प्रभावित है, सारी गाड़ियों के इंडिकेटर ऑन है और हाईवे पर पूरा एक तरह का जल जमाव दिखाई दे रहा है। और ऐसी तस्वीर लगभग आप एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में देखने को मिलेगी। और मैं जिस ओर आगे बढ़ रहा था, सिर्फ एक तरफ का नहीं, आप दूसरी तरफ का इलाका अगर देखेंगे तो आपको भी यहाँ भी वही प्रभाव दिखाई देगा। और खासकर मौसम में जो करवट बदली है, आपको बताऊं, सबसे पहले ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन ऑरेंज अलर्ट धीरे धीरे बदलते हुए उसके बाद जो है अब जिस तरह का चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है कि अगले 2 दिन ऐसी स्थितियां रह सकती हैं। और आज अचानक से मौसम ने जिस तरह करवट ली है उसके बाद से पूरा दिल्ली, आसपास का खासकर इलाका गुरुग्राम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी ज्यादातर इलाके, हरियाणा और इसी के साथ जितने भी इलाके सटे हैं, हर तरफ आंधी पानी तेज तूफान। इसके पहले लगभग 20 मिनट तक जो है वो तूफान ऐसा था कि ऐसा लगा चारों जैसे धूल की एक परत सी जम गई हो और इस कतर जो है माहौल था कि विजिबिलिटी नहीं दिखाई देती। देखिए बादलों की जो गड़गड़ाहट है आप सुन रहे हैं, तो मौसम विभाग ने ऐसे में ओले गिरने और इसी के साथ साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी दी है। और अगर आप थोड़ी देर, इसीलिए सड़कों पर जो आवाज आई है वो बिल्कुल ठप सी पड़ गई है।
0: जून के शुरुआती दिन है पर मौसम की मेहरबानी से दिल्ली एनसीआर को गर्मी से कुछ राहत थी। हाँ, मगर 40 डिग्री तापमान के साथ उमस मौजूद थी। पर जब आंधी के साथ बादल गरजे और जमकर बरसे तो पलक झपकते ही गर्मी छू मंतर हो गई। ये काले बादल मॉनसून के नहीं हैं, लेकिन असर मॉनसून से कम भी नहीं है। दिल्ली, खासकर दक्षिणी दिल्ली में खूब बारिश हुई।
2: तस्वीरों में आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में मौसम कितना अच्छा आपको होता हुआ नजर आ रहा है। फुहारे पड़ रहे हैं, बारिश हल्की हल्की हो रही है और आप देख सकते हैं इस रिंग रोड पर क्या स्थिति हुई है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, मौसम बिल्कुल सुहाना है, गर्मी से लोगों को राहत मिली है और मौसम बिल्कुल सुहाना हो गया है और बारिश रिमझिम बरसात जो है वो हो रही है।
0: दिल्ली एनसीआर को ये बादलों की सौगात है जिसका अनुमान मौसम विभाग ने पहले ही दे दिया था। पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से ऐसे मौसम का अंदाजा था। मौसम विभाग ने न सिर्फ 4 जून बल्कि 5 जून के लिए भी येलो अलर्ट घोषित किया है, यानी लोगों को खराब मौसम के प्रति सावधान रहना होगा। यानी एनसीआर में ये सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। नोएडा और आसपास के शहरों में 6 जून तक बादल छाए रहेंगे। गरज चमक के साथ एक या दो बार भारी बौछार पड़ने की पूरी संभावना है। आने वाले दिनों में तेज आंधी का दौर जारी रह सकता है। फिलहाल तो तेज हवा की रफ्तार रुकी पर बारिश थमी तो मौसम सुहाना हो गया।
3: चिलचिलाती गर्मी और उमस भरी हवाओं के बाद मौसम एक बार फिर से पूरी तरीके से बदल चुका है। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से इस वक्त मौसम बेहद ही सुहाना हो चुका है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो है बारिश की शुरुआत हो चुकी है और ये पहले से ही मौसम विभाग का अनुमान था कि आज बारिश जो है वो देखी जा सकती है, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ जो है इस वक्त जो है सर्कुलेशन जो है वो पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है, जिसका अदर जो असर था वो देखने को पहाड़ी राज्यों पर मिलेगा, लेकिन उसका कहीं ना कहीं असर जो है मैदानी इलाकों पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। और मौसम विभाग ने इसी चीज को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया था कि पहाड़ी राज्यों में, चाहे हिमाचल की बात हो, उत्तराखंड की बात हो या जम्मू कश्मीर की बात हो, हर तरफ अच्छी बारिश जो है देखी जाएगी। आंधी तूफान जो है वो भी देखा जा सकता है, लेकिन बात अगर मैदानी राज्यों की जाए तो यूपी हो, पंजाब की बात हो, राजस्थान की बात हो या दिल्ली एनसीआर की बात हो, यहाँ पर भी ऑरेंज अलर्ट बारिश का जो है वो दिया गया था। और आप देख सकते हैं कि तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ इस वक्त, सीपी की तस्वीरें दिखा रही हूँ कि किस तरीके से झमाझम बारिश की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और कहीं ना कहीं अब लोगों को राहत जरूर मिलेगी। क्योंकि अगर हम तापमान की बात करें तो तापमान सामान्य से कम जरूर बने हुए थे, लेकिन उमस की स्थिति जो है वो लगातार लोगों को परेशान कर रही थी, क्योंकि अरब सागर से जो लगातार हवाएं आ रही थी उसकी वजह से तापमान कम होने के बाद बावजूद लोगों को गर्मी परेशान कर रही थी, लेकिन जो ये बारिश की शुरुआत हुई है इसी तरीके से आने वाले 3-4 दिन तक मौसम जो है सुहाना रहेगा। लगातार बारिश जो है वो हो सकती है, साथ ही साथ हवाएं चलेगी, लेकिन तापमान में जो है थोड़ी कमी जरूर देखी जाएगी।
0: मौसम अच्छा है, गर्मी से राहत है और आगे भी हल्की या मध्यम बारिश का अनुमान है। हाँ, सावधानी इसलिए जरूरी है क्योंकि कई इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है।
4: अभी एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस है, वो समय नॉर्थ पाकिस्तान पे एक सर्कुलेशन की फॉर्म में है, स्ट्रेंथन में है, और उसके साथ ही जहाँ जैसे WD बना हुआ है, जो हवाएं अरेबियन सी से इस एरिया में आ रही है, जिसके कारण आप थोड़ा ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है और विच इज़ फेवरेबल फॉर रेनफॉल एक्टिविटी। तो हमारा यही है कि आने वाले 2 से 3 दिन जहाँ पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक्टिविटी रहेगा, जिसके लिए हमने जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के लिए हमने रेनफॉल के साथ हेलस्टॉर्म का वार्निंग भी दिया है। पंजाब, हरियाणा हम अनुमान लगा रहे हैं जो हवाओं की गति है वो 50 से 60 किलोमीटर रह सकती है। इसके अलावा NCR दिल्ली की बात करें, वहाँ भी हमारा 2 दिन के लिए येलो अलर्ट है, वहाँ भी हमारा यह है कि 40 से 50 किलोमीटर तक हवाएं रहने का अनुमान।
0: मॉनसून से पहले ही मौसम ने माहौल बना दिया है, न सिर्फ दिल्ली NCR बल्कि राजस्थान से लेकर बिहार तक बादल गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। और
5: अब बात मॉनसून की। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने आधिकारिक रूप से केरलम में दस्तक दे दी है। हालांकि अनुमान के हिसाब से कुछ देर से हुई है, लेकिन मॉनसून दुरुस्त आया है। केरल के कई जिलों में बारिश हो रही है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अब मॉनसून धीरे धीरे देश के अन्य हिस्सों की ओर बढ़ेगा, जिससे कि गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। आइए समझते हैं मॉनसून का सफर इस रिपोर्ट में।

0: समझ लीजिए आज से भारत का मेघ मल्हार शुरू हो चुका है। मॉनसून ने दस्तक दे दी है। केरलम में बादलों का कारवां पहुंच चुका है। अब इंतजार इन बादलों के पूरे हिंदुस्तान पर छाने का है। पहले मॉनसून के 25 मई को केरलम में पहुंचने की भविष्यवाणी थी, लेकिन मॉनसून ने दस्तक देने के लिए 4 जून की तारीख चुनी और ऑफिशियली देश में आज से बारिश का मौसम शुरू हो गया है।
1: तपती गर्मी से झुलस रहे हिंदुस्तान के लिए 4 जून एक अच्छी खबर लेकर के आया है और वो खबर ये है कि दक्षिण पश्चिम मानसून भारत पहुंच चुका है। उसने केरल में दस्तक दी है। हालांकि 3-4 दिनों की देरी है, लेकिन मौसम का जो आंकड़ा है जिस तरह हम इसे जोड़ते हैं उसमें इस 3-4 दिन की देरी को बहुत ज्यादा देरी नहीं मानते हैं। अभी मौसम विभाग का कहना है कि वो अपनी दिशा में है और परिस्थितियां इतनी अनुकूल हैं कि वो आगे उत्तर तमिलनाडु कर्नाटक होते हुए पश्चिमी घाट के इलाके में अगले 2 से 3 दिनों में उसकी रफ्तार बढ़ेगी। धीरे धीरे वो महाराष्ट्र कोंकण और उसी के साथ साथ इसकी दिशा जो है वो आगे उत्तर पूर्व तक जाएगी। जैसे बंगाल की खाड़ी पार करने के बाद उत्तर पूर्व भारत की ओर मानसून बढ़ेगा, हिमालय से टकरा करके उसकी दिशा फिर पश्चिम लौटेगी और उसके बाद उसी मानसून का असर हम गंगा के जो मैदानी इलाके वहां देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड और उसी के साथ साथ आगे मध्य प्रदेश हरियाणा दिल्ली पंजाब और उसी के साथ जल्दी मानसून पूरे देश पर छा जाएगा। तो मानसून की रफ्तार अपनी पकड़ चुका है, भारत में उसने दस्तक दे दी है। इसी के साथ जाहिर अगले 2 से 3 दिनों केरल और तमिलनाडु में भारी बारिश हो सकती है और धीरे धीरे जैसे उत्तर में आएगा अगले 4 से 5 दिनों में ये मानसून महाराष्ट्र कोंकण होते हुए आगे अपनी रफ्तार पकड़ेगा, उत्तर की ओर आगे बढ़ेगा। तो जहां गर्मी का एहसास अभी हो रहा है, अब दक्षिण में मानसून रफ्तार पकड़ी है, उत्तर में भी थोड़ा इंतजार करना होगा।
0: इस बार मानसून थोड़ा देर से पहुंचा है, लेकिन अभी तक तो यही लग रहा है कि बिल्कुल दुरुस्त पहुंचा है। मौसम विभाग ने पहले ही संकेत दे दिया था कि केरलम और आसपास के क्षेत्रों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। इसके बाद राज्य के कई हिस्सों में व्यापक बारिश दर्ज की गई। जब मानसून की घोषणा के सारे मानक पूरे हो गए तो उसके आने का ऐलान भी हो गया।
2: फिगर में देखेंगे कि मानसून केरला और कुछ कर्नाटक के हिस्से भी कवर किया है और इसके अलावा तमिलनाडु के हिस्से आज कवर हुए हैं और थोड़ा ब्यो बंगाल की ब्रांच कवर हुई है। तो इसका रीज़न यही है कि कंटिन्यूज अब जो कन्वेक्टिव एक्टिविटी है जहां इंक्रीज हो गई है, उसका रीज़न क्या है कि जो जहां वेस्टर्ली हवाओं की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी बढ़ गई है, 4.5 तक है। लो लेवल में जो विंड्स हैं वो 20-25 नॉट्स हैं और ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो मानसून है जहाँ उसके कारण वाइड स्प्रेड रेनफॉल एक्टिविटी रहा इस रीजन में, तो हमने मानसून को जहाँ कवर किया है। अगर आप आने वाले दिनों की बात करें तो हमारा अनुमान ये है कि केरला कोस्टल कर्नाटका वहाँ पे वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी, आल्सो वेरी हैवी मीन 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी ऑलमोस्ट पूरा वीक होती रहेगी। उसके साथ ही कर्नाटक कोंकण गोवा वहाँ भी रेनफॉल एक्टिविटी हैवी रेनफॉल होने का अनुमान है। तमिलनाडु देन इंटीरियर कर्नाटका जहाँ रेनफॉल एक्टिविटी ऑलमोस्ट हैवी रहने का अनुमान है।
0: मई महीने में IMD ने अंदाजा लगाया था कि मानसून 25 या 26 मई के आसपास केरल में पहुंच सकता है, लेकिन तमाम वजहों से मानसून की रफ्तार अचानक धीमी पड़ गई। बाद में मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बदलाव किया और 4 जून के आसपास मानसून के केरलम पहुंचने की भविष्यवाणी की गई, जो आखिरकार सही साबित हुई।
3: को दिखाती हूँ, हर किसी को इंतजार था 26 मई की जो है तारीख पहले दी गई थी कि केरल में मॉनसून जो है 26 मई को दस्तक देगा, लेकिन देरी हुई, फिर 1 जून की तारीख आई, लेकिन अब फाइनली जो है 4 जून आज हो चुका है और 4 जून को जो मॉनसून है वो केरल में दस्तक दे चुका है। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कर्नाटका के हिस्से हुए कोस्टल कर्नाटका जो हो गया, तमिलनाडु का कुछ हिस्सा जो है कवर करते हुए बे ऑफ बंगाल, और इस साइड पर जो है आपको दिखेगा ये जो ब्लू लाइन आप जो देख रहे हैं ये इस वक्त हमारा ऑनसेट है। ये जो डेट आज की जो हिट कर गई है क्योंकि आज से जो मानसूनी बारिश है उसकी शुरुआत हो चुकी है और अब आने वाले 6 से 7 दिन अच्छा मौसम जो है वो रहने की उम्मीद है। अच्छी खासी बारिश जो है वो देखी जाएगी, 12 सेंटीमीटर से ज्यादा जो बारिश है वो जो है उसका अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही मैं ये चीज भी आपको दिखाऊंगी कि जो लगातार जो मानसून है वो आगे बढ़ते हुए नजर आएगा। तो इसके साथ ही साउथ से शुरू हुआ है लेकिन धीरे धीरे जो है वो नॉर्थ ईस्ट साइड में भी जो है मानसून जो है वो देखा जाएगा। लेकिन अगर मैं बाकी पूरे आपको देश की मैं स्थिति इस वक्त दिखाना चाहूँ कि किस तरीके से मौसम का हाल है वो आप इस मैप में देख सकते हैं। ये पूरा आपको ऑरेंज अलर्ट जो है जगह जगह आपको नजर आने वाला है, ऑरेंज या फिर येलो, लेकिन बारिश का अलर्ट जो है देश के अलग अलग राज्यों में इस वक्त आपको नजर आ जाएगा।
0: केरल में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग मॉनसून की औपचारिक घोषणा के लिए जरूरी स्टैंडर्ड की निगरानी कर रहा था। जब ये मानक पूरे हुए तब जाकर मॉनसून का ऑफिशियली ऐलान किया गया। गुरुवार सुबह भी केरलम के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है। अलपुजा, कोट्टायम और एर्नाकुलम जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मॉनसून के केरलम पहुंचने के बाद अब देश के दूसरे हिस्सों खासकर उत्तर भारत पर नजरें टिकी हुई है, जहां लोग कई सप्ताह से भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं और बादलों के बरसने की आस लगाए बैठे हैं। आमतौर पर मॉनसून जून के दौरान तेजी से आगे बढ़ता है। ये पहले पश्चिमी तट, फिर पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों को कवर करता है और फिर 15 जून के आसपास मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पहुंचता है। इसके बाद मॉनसून पूर्वी और उत्तर भारत की ओर बढ़ता है। दिल्ली की बात की जाए तो आमतौर पर मॉनसून 27 जून के आसपास पहुंचता है। वहीं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और भारत के अधिकांश हिस्से जून के अंत या फिर जुलाई के पहले सप्ताह तक मॉनसून की चपेट में आ जाते हैं। केरल में स्वागत के बाद अब मौसम वैज्ञानिक इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि मॉनसून आगे भी अपनी निर्धारित वक्त से बढ़ता रहे। दिल्ली से आशुतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: मैदानी इलाकों में मौसम का मिजाज तो बदला है, लेकिन पहाड़ों पर मौसम दिल खुश करने वाला है। शिमला में और आसपास बारिश हो रही है। लोग सतरंगी छतरियों और रेनकोट में मॉल रोड पर मस्ती करते नजर आए, तो वहीं कुल्लू मनाली में पहले से ही सैलानियों का हुजूम है। हिमाचल प्रदेश के साथ कश्मीर में भी इन दिनों पर्यटकों की भारी भीड़ है। चलिए आपको पहाड़ों पर मौसम की हसीन तस्वीर दिखाते हैं।

0: रंग बिरंगी छतरियां लिए और रेनकोट में घूमते लो। शिमला के मॉल रोड पर ये नजारा मौसम जैसा ही दिलकश है। यूं भी शिमला में मौसम सुहाना था, पर गुरुवार दोपहर जो मूसलाधार बारिश शुरू हुई, शहर की फिजा ही बदल गई। क्योंकि सिर्फ पानी नहीं बरसा, ओले भी गिरे और देखते ही देखते शिमला की सड़कों पर सफेद चादर बिछ गई। ये मौसम, ये फिजा, ऐसी रौनक, सैलानियों को इससे बेहतर भला और क्या चाहिए। लोग रिट्ज और मॉल रोड पर घूमने निकल पड़े। शिमला वैसे भी इन दिनों सैलानियों से गुलजार है।
1: बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पे आके, वाकई हमें खुशी मिली है कि ऐसा मौसम वहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता है। अभी हमारे बच्चे भी यहाँ पे आए हैं साथ लेके, हम वो भी काफ़ी खुश हैं, तो हमें काफ़ी अच्छा फील हो रहा है कि हमने ऐसा नहीं देखा है। हम फिरोजपुर, हमारा आदर्शी राजरतन स्कूल है जहाँ से हम आए हैं, हमारे साथ 15 स्टूडेंट हैं। हम कैंप आए थे यहाँ पे, तो लेकिन यहाँ पे हम आए शिमला बच्चों को घुमाने के लिए माल रोड पे, तो बच्चे भी हमारे इंजॉय कर रहे हैं। वाकई में हमें काफ़ी खुशी हो रही है यहाँ पे और बच्चे भी काफ़ी खुशी मना रहे हैं।
0: शिमला में पानी इतना बरसा कि सड़कों पर जमा हो गया, यहाँ तक कि आवाजाही रुक गई और जून में ठंड का एहसास होने लगा। स्थानीय लोगों के लिए ये परेशानी का सबब हो सकता है और जो घूमने फिरने गए हैं वो मौसम का जश्न मना रहे हैं। शिमला ही नहीं, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर में भी आंधी और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट है। हिमाचल में अगले 6 दिन तक मौसम खराब रहने और बारिश का पूर्वानुमान है, लेकिन ऐसे मौसम में हिमाचल में सैलानियों का हुजूम है।

0: पसंदीदा जगह बना हुआ है। चारों ओर फैले देवदार के पेड़, हरी घास से सजा विशाल मैदान और बीच में मौजूद छोटी झील यहाँ की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। यूं ही इसे हिमाचल का स्विट्जरलैंड नहीं कहते। ऐसी खूबसूरत जगह पर परिवार के साथ फुर्सत के पल बिताना एक अलग एहसास है। ठीक ऐसा ही एहसास लोगों को मनाली में मिलता है, जहाँ इन दिनों सैलानियों का जमावड़ा है।
1: नमस्कार। देखिए, हम सभी जानते हैं कि लगातार मौसम खुशनुमा रहने की वजह से जिला कुल्लू में पर्यटकों का आवागमन जो है वो काफी अधिक संख्या में हुआ है। और यदि इस विषय पर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो जो हमारा ऑथेंटिक डाटा है वो ग्रीन टैक्स बैरियर जो मनाली में स्थित है उससे प्राप्त आंकड़ों के अनुसार गत वर्ष मई महीने में लगभग 41,700 के आसपास जो है बाहरी राज्यों से पर्यटक वाहन मनाली में आए थे, लेकिन जो संख्या इस वर्ष बढ़कर लगभग 66,600 जो है वाहन इस मई महीने में इस वर्ष के दर्ज किए गए हैं। तो ये एक भारी जो उछाल है लगभग 25,000 का दोनों वर्ष के आंकड़ों में। तो तुलनात्मक तरीके से अधिक संख्या में पर्यटकों ने इस वर्ष घाटी का रुख किया है और कम बस यही स्थिति हमारे जो अन्य पर्यटक स्थल हैं, चाहे वो बंजार का क्षेत्र हो, सैंज का क्षेत्र हो या कसोल मणिकरण का एरिया हो, तो वहां पर भी अधिक संख्या में बाहरी राज्यों के और अपने राज्य के जो पर्यटक हैं उनकी संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। देखिए, मौसम साफ रहने की वजह से और रोहतांग जो हमारा पास है वो भी टाइमली ओपन हो गया है, तो उसकी वजह से टूरिस्ट जो हैं वो काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। और यदि आंकड़ों पर देखा जाए तो वीकेंड पे तो होटल ऑक्यूपेंसी ऑलमोस्ट हमारी 80-90% के आसपास है। इवन वीकडेज में भी काफ़ी अच्छी जो है ऑक्यूपेंसी दर मनाली और विभिन्न पर्यटक स्थलों के होटल्स और होम स्टेज में चल रही है।
0: कुल्लू में नदी किनारे बोटिंग हो रही है, एडवेंचर स्पोर्ट्स का मजा लिया जा रहा है। इलाका सैलानियों से गुलजार है
2: और हम लोग फैमिली के साथ राजस्थान से यहाँ आए। राजस्थान से यहाँ हिमाचल को हमने इसलिए चूज किया बिकॉज यहाँ का वेदर अच्छा है। राजस्थान से कंपैरेटिवली काफी कूल वेदर है यहाँ, वहाँ पे 42-43 डिग्रीज टेम्परेचर, हीट वेव्स काफी ज्यादा हो रहे थे। सो समर वेकेशन में हमने घूमने के लिए इसको चूज किया। यहाँ ग्रीनरी अच्छी है, पॉल्यूशन फ्री है और वेकेशन के लिए हमने मतलब एक कूल प्लेस चाहिए थी, इसलिए हमने हिमाचल को चूज किया। और अच्छा लग रहा है यहाँ के, आज ही आए हैं, काफी चेंज मतलब काफी डिफरेंस है वेदर में। वहाँ इतनी गर्मी थी और अभी यहाँ के अच्छा लग रहा है। और अगले 7-8 डेज हम लोग यहीं पर हैं, सो हम लोग वेकेशन यहीं बनाने वाले हैं अभी।
3: काविश शर्मा, होटल शुभला रॉयल, जनरल मैनेजर। सो कुल्लू मनाली का जो टूरिज्म है वो बड़े पीक सीजन में है और काफ़ी लोगों को व्यवसाय भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी होगी और उसके अलावा भी और भी जो व्यवसाय हमारे से जुड़े हुए हैं। तो ये काफ़ी पीक में और खासकर जैसे कि मई महीने में जो बुकिंग्स थी बहुत ज़्यादा थी और जैसे अभी जून चल रहा है तो बहुत मतलब मई से ज़्यादा मतलब बढ़ोतरी है जून महीने में और वेरी पीक उसमें है। मतलब पूरे ऑल इंडिया से जो टूरिस्ट इंक्वायरीज है दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, जैसे मई महीना था उससे ज़्यादा बढ़ चुकी है। और खासकर जो आपका महाराष्ट्र हो गया जो, और इसके अलावा जो हमारे साथ के स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार हो गया, फिर नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो काफ़ी लोगों का आना जारी है और नॉर्थ इंडिया काफ़ी लोगों का आना जारी है। और अभी भी मुझे फ़ोन कॉल्स काफ़ी आ रहे हैं कि बुकिंग्स के लिए, और कारण ये भी है क्योंकि एक तो गर्मियाँ बढ़ रही हैं उस करके भी टूरिस्ट का फ्लो ज़्यादा पहाड़ों की तरफ रह रहा है। और खासकर ये भी बहुत अच्छी बात है और खासकर जो भी हमारे व्यवसाय टूरिज्म से जुड़े हैं उनके लिए भी एक बड़ी अच्छी बात है। और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में भी ये जो टूरिस्ट की बढ़ोतरी, तो जैसे आपको लग रहा है कि जैसे नॉर्थ ईस्ट और जैसे बाहर जो एरिया है वहाँ पे टेम्परेचर 40-45 डिग्री टच हो चुका है, उस करके जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ को पहाड़ों की तरफ रुख मोड़ रहे हैं और कुल्लू मनाली आ रहे हैं सर। और जैसे कि काफ़ी स्टेट्स में अभी छुट्टियां होती हैं गर्मियों की बच्चों की, तो उस करके भी काफ़ी टूरिस्ट पहाड़ों की तरफ का रुख करते हैं और ये मेन कारण है कि इसी बहाने टूरिस्टों के लिए भी एक अच्छा वो रहता है और हमें भी मतलब एक सेवा का मौका मिलता है। और जैसे कि आप जानते हैं अतिथि देवो भव, और खासकर जो हमारी परंपरा है खासकर हिमाचली की, हम हमेशा अपने गेस्ट को एक मतलब भगवान का दर्जा देते हैं। और
4: सो एवरीथिंग इज वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी नाइस, सो ऑल द पीपल ऑफ द साउथ शुड कम हियर एंड एंजॉय अ लॉट So, east at the west.

0: Himachal is the best. Yes. Kullu Manali is the very nice place to enjoy.
1: हिमाचल यूं भी सैलानियों को खूब पसंद आता है और जब मैदानी इलाकों में गर्मी बेहिसाब हो तो कुल्लू मनाली से प्यार हो जाता है। मई के महीने में करीब रिकॉर्ड 66,000 गाड़ियों ने कुल्लू में एंट्री की। जून में भी यही आंकड़ा रहने की उम्मीद है। मौसम के रुख से सैलानी भी खुश हैं और कारोबारी भी।
2: हम लोग राजस्थान से यहाँ आए हैं। राजस्थान में दिन में इतनी गर्मी है, इतनी हीट वेव चल रही है कि वहाँ दिन में हम लोग बाहर भी नहीं निकल पाते थे, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। 4-7 दिन हम लोग यहाँ शांति से सुकून से रहने के लिए, छुट्टियाँ एंजॉय करने के लिए आए हैं। राजस्थान से यहाँ एनवायरनमेंट काफ़ी चेंज है और काफ़ी कूल है, इसलिए हम लोगों ने मनाली चुना है और यहाँ का एनवायरनमेंट और ग्रीनरी सब कुछ बहुत अच्छी है। राजस्थान से यहाँ काफ़ी चेंज है।
1: हिमाचल की तरह सैलानियों का रुख जम्मू कश्मीर की ओर भी है। बांदीपुरा में बर्फबारी हो रही है, नीचे पहाड़ों पर सफेद बर्फ लिपटी है और तेज ठंडी हवा जैसे सुई चुभा रही है। मैदानी राज्यों से गए सैलानी तो इसी मौसम का मजा लेना चाहते हैं। ऊनी कपड़े और जैकेट से लैस होकर लोग वादी का लुत्फ उठाने इन दिनों करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर राजदान दर्रे के पास है।
3: लोग अभी गुरेज जा रहे हैं, आज हमें ये मौका मिला है अच्छा, और इतना सुहाना मौसम और स्नोफॉल हुआ है और यहाँ पर हमें ठहर के मैगी खाने का मौका मिला है और यहाँ के लोग इतने मेहमान नवाजी से हमारा खिदमत किया है, उसके लिए हम उनके भी शुक्र गुजार है।
4: साउथ से पहुँच गए नॉर्थ, जन्नत में कश्मीर जैसे सब कहते हैं। ट्रूली टू द वर्ल्ड कश्मीर इज जन्नत। तो हमें तो इतना अच्छा वेदर लग रहा है, इट्स सो ब्यूटीफुल। हमें वी आर लकी टू हैव स्नोफॉल एंड सच ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर वादियां हैं। हमको लग रहा है कि हम मूवी में है, कोई रील भी बनाते हैं। सो इट्स वंडरफुल, वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम एंड सच रिमोट प्लेसेस आर वेरी गुड टू एक्सप्लोर।
5: सब लोग यहाँ पे आए, विजिट करें, ये जगह को देखें और जगह के यहाँ पे गवर्नमेंट को भी बोलेंगे इस जगह को प्रमोट करें, जिससे सब लोगों को इसके बारे में पता लगे।
6: 11 बजे हम लोग पहुँच के थे, गुरेज वैली के लिए निकल गए थे। वहाँ पे हम लोगों ने रात को स्टे किया एंड अभी जब हम रिटर्न आ रहे थे तो ऊपर हमें बारिश मिली थी एंड यहाँ पे आते आते पूरी स्नो है। तो बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, मुंबई में अभी 40 डिग्री चल रहा है, तो वहाँ से यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ बर्फ हो रही है, बारिश भी हो रही है। हमने श्रीनगर में गर्मी देख ली, यहाँ पे ऊपर आके बारिश देख ली, अभी बर्फ हो रही है, तो कम से कम 5 डिग्री तो चल रहा है यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ठंडी है।
1: वादी में मौजूद जानी पहचानी और मशहूर जगहों पर ही नहीं जा रहे बल्कि खूबसूरत वादी में नए इलाकों की भी तलाश है। अनंतनाग जिले में वेरीनाग के करीब ये इलाका सैलानियों को खूब पसंद आ रहा है। डेडबल कपरान नाम के इस इलाके में साफ पानी वाली पहाड़ी नदी है। ऊंचे पहाड़ों के साए में दरख्तों का हरा आंचल है। चलते चलते चाहे जितनी दूर निकल जाइए थकान का एहसास नहीं होता। वादी में ये इलाका एक छिपा हुआ खजाना कहा जाता है, जिसकी ओर बड़ी तादाद में सैलानी आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ भीड़भाड़ कम है, प्रकृति का एहसास ज्यादा है। गर्मी से राहत पाने के लिए जम्मू कश्मीर से बेहतर जगह भला क्या होगी, लेकिन जब बादल गरज रहे हो, क्लाउड बर्स्ट हो रहा हो, तो सैलानियों के लिए सावधानी भी जरूरी है। गोडा में बादल जमकर बरसे और लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे पर कई जगह मलबा जाम हो गया और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, कई सैलानी इसमें फंसे। हालांकि सभी को सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
9: What about me, Jack? What about me?
8: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
10: Well played, Jack. Well played.
8: Jack FM, playing what we want.
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
17: चमोली में गुप्त काल ट्रैकिंग कर वापस लौटा पहला दल, गमशाली से 26 मई को हुआ था रवाना, टीम में शामिल थे 7 ट्रैकर। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक केदारनाथ धाम पहुंचे करीब 11 लाख श्रद्धालु, धाम में लगातार बदल रहा मौसम का मिजाज। शिरडी के साई दरबार से आई आस्था की अनोखी तस्वीर, श्रद्धालु ने साई बाबा को अर्पित किया सोने का मुकुट, करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद मौसम सुहाना, तापमान में गिरावट से लोगों को मिली गर्मी से राहत, मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए जारी किया अलर्ट। इंडोनेशिया के चिड़ियाघर में गूंजी 4 नन्हे मेहमानों की किलकारी, बाघिन दी ने 4 शावकों को दिया जब, सफारी पार्क में कुल 8 हुई बाघों की संख्या।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
17: अब बात करते हैं मॉनसून की, केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के औपचारिक रूप से एंट्री करते ही दिल्ली एनसीआर का मौसम भी अचानक से बदल गया। राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में तेज हवाओं के साथ घने काले बादल छा गए और झमाझम बारिश हुई। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक केरलम में मॉनसून के आने से उत्तर भारत में भी नमी बढ़ गई है, इससे दिल्ली एनसीआर में प्री मॉनसून गतिविधियां तेज हुई हैं। वहीं दूसरे राज्यों से भी बारिश की खबरें हैं, लेकिन ये मॉनसूनी बारिश नहीं है, इसलिए दिल्ली समेत कई राज्यों में अभी मॉनसून के आने का इंतजार है।

0: देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह तक तेज धूप और उमस से लोग परेशान थे, लेकिन दोपहर होते होते आसमान में काले बादल छा गए। कई इलाकों में दिन के समय ही अंधेरा जैसा माहौल बन गया। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और आसपास के क्षेत्रों में तो तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश हुई। मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को गर्मी और उमस से काफी राहत मिली। हालांकि तेज हवाओं की वजह से कुछ जगहों पर ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट पहले ही जारी किया था।
1: चिलचिलाती गर्मी और उमस भरी हवाओं के बाद मौसम एक बार फिर से पूरी तरीके से बदल चुका है। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से इस वक्त मौसम बेहद ही सुहाना हो चुका है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो है बारिश की शुरुआत हो चुकी है, और ये पहले से ही मौसम विभाग का अनुमान था कि आज बारिश जो है वो देखी जा सकती है, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ जो है इस वक्त जो है सर्कुलेशन जो है वो पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है, जिसका अदर जो असर था वो देखने को पहाड़ी राज्य पर मिलेगा, लेकिन उसका कहीं ना कहीं असर जो है मैदानी इलाकों पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। और मौसम विभाग ने इसी चीज को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया था कि पहाड़ी राज्यों में, चाहे हिमाचल की बात हो, उत्तराखंड की बात हो या जम्मू कश्मीर की बात हो, हर तरफ अच्छी बारिश जो है देखी जाएगी। आंधी तूफान जो है वो भी देखा जा सकता है, लेकिन बात अगर मैदानी राज्यों की जाए तो यूपी हो, पंजाब की बात हो, राजस्थान की बात हो या दिल्ली एनसीआर की बात हो, यहां पर भी ऑरेंज अलर्ट बारिश का जो है वो दिया गया था। और आप देख सकते हैं कि तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ इस वक्त, सीपी की तस्वीरें दिखा रही हूँ कि किस तरीके से झमाझम बारिश की जो शुरुआत है वो हो चुकी है, और कहीं ना कहीं अब लोगों को राहत जरूर मिलेगी। क्योंकि अगर हम तापमान की बात करें तो तापमान सामान्य से कम जरूर बने हुए थे, लेकिन उमस की स्थिति जो है वो लगातार लोगों को परेशान कर रही थी।
0: इस प्री मानसून बारिश ने लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी से काफी हद तक राहत पहुंचाई है। वहीं मौसम विभाग ने दावा किया है कि मानसून की केरलम में एंट्री हो गई है। इसके असर से केरलम के अलावा तमिलनाडु और कर्नाटक में कुछ जगहों पर अगले 7 दिन भारी बारिश हो सकती है।
2: आज 4 जून को अगर आप जो फिगर में देखेंगे कि मानसून केरला और कुछ कर्नाटक के हिस्से भी कवर किया है, और इसके अलावा तमिलनाडु के हिस्से आज कवर हुए हैं, और थोड़ा ब्यो बंगाल की ब्रांच कवर हुई है। तो इसका रीज़न यही है कि कंटिन्यूस अब जो कन्वेक्टिव एक्टिविटी है जहां इंक्रीज हो गई है, उसका रीज़न क्या है कि जो जहां वेस्टर्ली हवाओं की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी बढ़ गई है, 4.5 तक है। लो लेवल में जो विंड्स हैं वो 20-25 नॉट्स हैं, और ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो मानसून है जहाँ उसके कारण वाइड स्प्रेड रेनफॉल एक्टिविटी रहा इस रीजन में, तो हमने मानसून को जहाँ कवर किया है।
0: मॉनसून की दस्तक से पहले ही देश के ज्यादातर हिस्सों में प्री मॉनसून बारिश देखने को मिल रही है, चाहे दक्षिण भारत हो या उत्तर भारत, चाहे पूर्वी भारत हो या पश्चिम भारत। हालांकि पहले मॉनसून के 25 मई को केरलम में पहुंचने का पूर्वानुमान दिया गया था, लेकिन मॉनसून ने दस्तक देने के लिए 4 जून की तारीख चुनी और देश में आज से बारिश के मौसम की शुरुआत हो गई। हालांकि इस बार मॉनसून थोड़ी देर से पहुंचा है, लेकिन अभी तक तो यही लग रहा है कि बिल्कुल दुरुस्त पहुंचा है। मौसम विभाग ने पहले ही संकेत दे दिया था कि केरलम और आसपास के क्षेत्रों में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। इसके बाद राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश दर्ज की गई। गुरुवार सुबह भी केरलम के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है। अलपुझा और कोट्टायम और अन्नाकुलम जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं जब मॉनसून की घोषणा के सारे मानक पूरे हो गए तो उसके आने का ऐलान भी हो गया। मौसम विभाग ने पहले अंदाजा लगाया था कि मॉनसून 25 या 26 मई के आसपास केरलम पहुंच सकता है, लेकिन तमाम वजहों से मॉनसून की रफ्तार अचानक धीमी पड़ गई। बाद में मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बदलाव किया और 4 जून के आसपास
3: पंजाब में निजी स्कूलों में फीस पर लगाम। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही है आपका इंतजार।
4: पंजाब सरकार के निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर लगाम लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की है कि अब कोई भी निजी स्कूल सालाना 5% से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकेगा। पिछले 3 सालों में तय सीमा से ज्यादा फीस वसूलने वाले स्कूलों को अतिरिक्त राशि अभिभावकों को लौटानी होगी। सरकार इस संबंध में अध्यादेश लाकर बाद में कानून बनाएगी। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना, फीस वापसी और बार बार गलती करने पर मान्यता रद्द करने तक की कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने पद संभालने के बाद बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के स्कूल और कॉलेज छात्रों के लिए मुफ्त बस पास की घोषणा की है। इससे विशेष रूप से गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों के हजारों छात्रों को राहत मिलेगी। पहली कैबिनेट बैठक के बाद उन्होंने बताया कि बी खाता संपत्तियों को ए खाता में बदलने की सुविधा अब पूरे राज्य में लागू होगी। मुख्यमंत्री ने इसे नई शुरुआत बताते हुए विकास और सुशासन का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि सरकार सामूहिक निर्णय और लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर काम करेगी। कश्मीर और लद्दाख के बीच साल भर संपर्क सुनिश्चित करने वाली नई जोजिला टनल लगभग बनकर तैयार हो गई है। श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर बन रही ये सुरंग अगले कुछ हफ्तों में यातायात के लिए खोली जा सकती है। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण जोजिला दर्रा कई महीनों तक बंद रहता है, जिससे लद्दाख का संपर्क प्रभावित होता है। टनल शुरू होने के बाद हर मौसम में पहाड़ों का रुख संभव होगा। इससे यात्रा का समय कम होगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और लद्दाख क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी।
3: चलिए अब बात करते हैं और बताते हैं आपको कि गर्मी में पहाड़ कैसे दे रहे हैं सुकून। दरअसल गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही ज्यादातर लोग जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों का रुख करते हैं, लेकिन यहाँ पीक समर सीजन में इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है कि घूमने का मजा ही किरकिरा हो जाता है। ट्रैफिक जाम, महंगे होटल और भारी भीड़ आपकी ट्रिप को तनाव भरा बना देते हैं। तो अगर आप भी इस गर्मी इन जगहों पर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो पीक सीजन में यहां जाने से बचना बेहतर होगा।
4: दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन उत्तर भारत के कुछ राज्यों में अभी भी पारा हाई है। ऐसे में तन मन को कूल करने के लिए पहाड़ों की सैर लाजमी है, लिहाजा पर्यटक पहाड़ों पर सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने के लिए निकल पड़े हैं। कोई जम्मू कश्मीर जा रहा है तो कोई हिमाचल और उत्तराखंड का रुख कर रहा है। पहलगाम की ऊंची ऊंची चोटियां, चीड़ और देवदार के घने जंगल, कलकल बहती नदी, इन्हीं दिलकश नजारों का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक यहाँ पहुँच चुके हैं। कोई इन नजारों को अपने कैमरों में कैद कर रहा है तो कोई इन खूबसूरत नजारों के साथ खुद को कैमरे में कैद कर रहा है। यहाँ के हर एक लम्हे को भरपूर जी लेने की चाहत हर किसी को है।
5: यहाँ के मौसम की बात करें तो बहुत ही बढ़िया, एकदम खूबसूरत। मेरा तो ये फर्स्ट टाइम है यहाँ पे आने का। टूरिस्टों से मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे आए, काफी सारे पिछली कुछ घटनाएं यहाँ पे हुई थी, उस वजह से काफी लोग सोच में पड़ गए, बट मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया चल रहा है सब।
6: अच्छा लग रहा है, हम हर साल आते रहते हैं पहलगाम, इस बार भी आए, अभी पहली बार आए इस साल गर्मियों में, बाद में अभी जून जुलाई बाकी बड़ा आएंगे बीच में।
4: पहलगाम की ठंडी हवाएं और नदी के ठंडे पानी के बीच पर्यटक मैदानों की तपिश को भूल चुके हैं। इनका मन पूरी तरह पहलगाम में रम चुका है।
7: जम्मू में इतनी गर्मी है हम आपको बयान नहीं कर सकते, इतनी गर्मी है जम्मू में भी। यहाँ कश्मीर में तो जन्नत है। हम कल आए थे, इतनी ठंड थी कि हमें यहाँ जैकेट्स वेयर करनी पड़ी।
8: अच्छा।
7: हाँ, ब्लैंकेट्स लेने पड़े। सुबह हमने गर्म पानी से नहाया है, इतना अच्छा मौसम है यहाँ पे।
8: अच्छा मौसम है। हाँ?
7: तो पहलगाम, तो वैसे भी पहलगाम और सोनामर्ग मेरी फेवरेट स्पॉट है। हाँ? हम तो हर साल पहलगाम और यहाँ पे आते हैं।
9: वधारे मजा आवे, ने फरवानी मम्मी पापा साथे खूब वधारे मजा आवे छे।
8: मजा रो मजो। हाँ। मौसम कैसा है?
9: मौसम तो बहुत ही बढ़िया है यहाँ का।
8: अच्छा।
9: गुजरात में तो बहुत गर्मी पड़ रही है, यहाँ तो ठंडी है।
4: बर्फ से लकदक बांदीपोरा की पहाड़ी की चोटियां सैलानियों को खूब पसंद आ रही हैं। गुरेज रोड पर करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर राजदान दर्रे पर पर्यटक यहां की बर्फीली वादियों का दीदार करने पहुंच रहे हैं और ठंडे मौसम का मजा ले रहे हैं।
10: बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ बर्फ हो रही है, बारिश भी हो रही है। हमने श्रीनगर में गर्मी देख ली, यहाँ पे ऊपर आके बारिश देख ली, अभी बर्फ हो रही है, तो कम से कम 5 डिग्री तो चल रहा है यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ठंडी है।
11: जून में वी कैन नॉट एक्सपेक्ट सच टाइप ऑफ बर्फबारी हियर अभी, लेकिन वो गर्मी को देखते हुए लोग यहाँ पर आना चाहिए। और बहुत अच्छा सोहना वेदर है, बहुत अच्छी जगह है ये। करीब करीब 14,000 फीट पे जगह है राजस्थान, ऑन द वे टू गुरेज।
4: हिमाचल प्रदेश के चंबा का खजियार भी पर्यटकों से गुलजार है। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, हरा भरा खुला मैदान और बीच में छोटी सी झील पर्यटकों का मन मोह रही है। कोई इन दिलकश नजारों को कैमरे में कैद कर रहा है तो कोई गीत गुनगुना रहा है। कुल्लू और आसपास के पहाड़ी इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, लिहाजा यहाँ भी पर्यटकों की भरमार है। यहाँ पर्यटक जिप लाइन, पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग जैसे एडवेंचर टूरिज्म को जमकर एंजॉय कर रहे हैं।
12: फरमाए और हम लोग फैमिली के साथ राजस्थान से यहाँ आए। राजस्थान से यहाँ हिमाचल को हमने इसलिए चूज किया बिकॉज यहाँ का वेदर अच्छा है। राजस्थान से कंपैरेटिवली काफी कूल वेदर है यहाँ। वहाँ पे 42-43 डिग्रीज टेम्परेचर, हीट वेव्स काफी ज्यादा हो रहे थे। सो समर वेकेशन में हमने घूमने के लिए इसको चूज किया। यहाँ ग्रीनरी अच्छी है, पॉल्यूशन फ्री है और वेकेशन के लिए हमने मतलब एक कूल प्लेस चाहिए थी, इसलिए हमने हिमाचल को चूज किया।
13: मनाली का जो टूरिज्म है वो बड़े पीक सीजन में है और काफी लोगों का व्यवसाय भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी होगी और उसके अलावा भी और भी जो व्यवसाय हमारे से जुड़े हुए हैं, तो ये काफी पीक में।
4: कुल्लू मनाली में सैलानियों का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मई के महीने में यहाँ 66,000 से ज्यादा पर्यटक वाहनों की एंट्री दर्ज की गयी थी और बड़ी तादाद में सैलानियों के पहुँचने से यहाँ के होटल खचाखच भरे हैं। गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यटक कश्मीर, हिमाचल ही नहीं बल्कि देवभूमि उत्तराखंड का भी रुख कर रहे हैं और इसका सबसे ज्यादा असर नैनीताल और आसपास के पर्यटन स्थलों में देखने को मिल रहा है। वीकेंड और छुट्टियों के हालात बदतर हो चले हैं। हालात ऐसे हैं कि प्रमुख मार्गों पर लंबा जाम लग रहा है जिसकी वजह से पर्यटकों को घंटों तक वाहनों में फंसे रहना पड़ रहा है, तो स्थानीय लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है।
14: और किसी भी प्रकार का बाइकर्स और बाइक टैक्सीज को पूर्ण रूप से हमने प्रतिबंधित किया है और जो उन्हीं व्हीकल्स को हम अलाव कर रहे हैं जो जिनके पास होटल में कंफर्म्ड बुकिंग है और पार्किंग भी है। इस वजह से ट्रैफिक जो है वन वे सिस्टम भी लागू है शाम के टाइम में, सुगम और सुव्यवस्थित रूप से यातायात का संचालन हो रहा है। नो निश्चित रूप से यातायात का दबाव जरूर है परंतु व्यवस्थित रूप से चल रहा है।
4: नैनीताल में जहां पर्यटकों की रिकॉर्ड आमद से होटल, रेस्टोरेंट और पर्यटन कारोबार से जुड़े व्यवसायियों के चेहरे खिले हुए हैं, वहीं दूसरी ओर बढ़ता ट्रैफिक प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। फिलहाल नैनीताल और आसपास के इलाकों में जाम से जल्द राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। नैनीताल से लीला सिंह बिष्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: न्यूज वक्त पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
0: कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन भारतीय शेयर बाजार में खास बदलाव देखने को नहीं मिला। गुरुवार को 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 13 अंक बढ़कर 74,360 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयर्स वाला एनएसई निफ्टी 10 अंकों की बढ़त के साथ 23,416 पर बंद हुआ। ग्लोबल मार्केट में मांग के कारण गुरुवार को गोल्ड की कीमतों में बढ़त देखने को मिली। ऑल इंडिया एसोसिएशन के अनुसार 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 700 रुपए चढ़कर 1,60,300 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 3800 रुपए लुढ़क कर 2,65,700 रुपए पर पहुंच गई। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़े तनाव के बीच अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में एक बार फिर से गिरावट देखने को मिली है। गुरुवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 7 पैसे कमजोर होकर 95.83 के स्तर पर बंद हुआ।
3: फिल्म लगान के 25 साल पूरे होने पर फैंस को आमिर के प्रोडक्शन का तोहफा। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड पर।
0: फिल्म लगान की रिलीज के 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। फिल्म 15 जून 2001 को रिलीज हुई थी और अब इसको लेकर आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस ने फिल्म का नया ट्रेलर रिलीज करने के साथ ही फिल्म की री रिलीज की घोषणा भी की। फिल्म लगान का ये 4K ट्रेलर एक बार फिर 1893 के उस समय में ले जाता है जब गांव वालों को सूखे की वजह से ब्रिटिश सेना को भारी लगान देना पड़ता था। इस ट्रेलर को रिलीज करने के साथ ही जानकारी भी दी गई है कि ये फिल्म 12, 13 और 14 जून को सिनेमाघरों में री रिलीज की जाएगी। विक्रम भट्ट के निर्देशन वाली फिल्म हॉन्टेड 3D गोस्ट ऑफ द पास्ट का स्क्रीमर रिलीज किया गया है। स्क्रीमर यानी इस छोटे टीजर वीडियो की शुरुआत एक भूतिया हवेली से होती है, जिसमें फिल्म के मुख्य किरदार निभाने वाले मीमोह चक्रवर्ती हवेली में अपने प्यार की तलाश में पहुंचते हैं, जहां उनके सामने कुछ ऐसे हालात बनते हैं जिनसे निकल पाना उनके लिए एक बड़ी चुनौती होती है। फिल्म में मीमोह के साथ चेतना पांडे मुख्य किरदार निभाती नजर आएंगी। इसके अलावा श्रुति प्रकाश, गौरव वाजपेयी, प्रणीत भट्ट, हेमंत पांडे भी फिल्म में दिखेंगे। ये फिल्म 12 जून को हिंदी, तमिल और तेलुगु में सिनेमाघरों में आएगी। अभिनेत्री जानवी कपूर त्रिमला पहुंची। उन्हें नंगे पैर मंदिर की 3,550 सीढ़ियां चढ़ते हुए देखा गया। उनके साथ उनकी टीम के लोग और दोस्त भी दिखे। जानवी हर खास मौकों पर यहां पहुंचती हैं। इस बार वो अपनी फिल्म पेड्डी के रिलीज के दिन यहां पहुंची और भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा अर्चना की। जानवी ने फिल्म पेड्डी में रामचरण के साथ काम किया है और इस बार माना जा रहा है कि वो फिल्म की सफलता की कामना को लेकर ही तिरुमला पहुंची और भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के पहाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। हॉलीवुड के डीसी स्टूडियोज ने अपनी फिल्म सुपरगर्ल का आखिरी ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसमें दिखाया गया है कि सुपरगर्ल और सुपरमैन अपने डॉग क्रिप्टो को बचाने के लिए खतरनाक मिशन पर निकलते हैं। इस सफर में उनकी मुलाकात रुथिये नाम की एक एलियन लड़की से होती है, जो उनका साथ देती है। ग्रेग गिलेस्पी निर्देशित इस फिल्म में मिली एलकॉक सुपरगर्ल का किरदार निभा रही हैं। ये फिल्म 26 जून को अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी।
3: चलिए न्यूज वक्त में खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
15: वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि शख्स अपनी उंगलियों के बीच चावल का एक दाना पकड़ता है। इसके बाद वो चावल के दाने को चाकू से इतनी तेजी और सटीकता के साथ काटना शुरू करता है कि कुछ ही सेकंड में पूरा दाना बारीक टुकड़ों में बदल जाता है। वीडियो देखने वाले कई लोग दावा कर रहे हैं कि उसने चावल के दाने को करीब 50 हिस्सों में काट दिया। सबसे ज्यादा चर्चा उसके हाथों की स्पीड और कंट्रोल को लेकर हो रही है। आमतौर पर लोग चावल का दाना ठीक से पकड़ भी नहीं पाते, लेकिन इस शख्स ने उसे इतनी सफाई से काटा कि इंटरनेट यूजर्स दंग रह गए। छुट्टी के बाद स्कूल का पहला दिन हर स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए ही खास होता है। ऐसे में अगर स्कूल में बच्चों का वेलकम प्यार और पारंपरिक तरीके से किया जाए तो उनकी खुशी कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में सोशल मीडिया पर हाल ही में केरलम के एक स्कूल का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूल में क्लास गेट पर एक टीचर खड़ी है और स्कूल पहुंचने वाले बच्चों का ट्रेडिशनल तरीके से वेलकम किया जा रहा है। बच्चे एक एक करके टीचर के पास पहुंचते हैं, जिसके बाद टीचर हर एक बच्चे की आरती उतारती है, उसे आशीर्वाद देती है और फिर प्यार करके स्कूल के अंदर भेजती है। मौसम इतना खराब है कि सामने देखना भी मुश्किल लग रहा है। इसी दौरान एक बाइक सवार परिवार सड़क किनारे रुका हुआ नजर आ रहा है। कुछ ही देर के बाद कार वहां पर रुक जाती है और उसका ड्राइवर परिवार की मदद के लिए आगे आता है। वो महिला और बच्चे को सुरक्षित कार में बैठाता है। वीडियो में ये सीन देखकर लोग कह रहे हैं कि मुश्किल समय में किसी की मदद करना कितना बड़ा काम हो सकता है। साफ पता चल रहा है कि कार ड्राइवर की इस छोटी सी लेकिन अहम मदद ने लोगों का दिल जीत लिया है। वीडियो में दिखाई देता है कि एक साड़ी को छत से नीचे तक बिछाया गया है। ऊपर मौजूद शख्स बाल्टी से गेहूं साड़ी पर डालता है और देखते ही देखते गेहूं फिसलता हुआ सीधे नीचे रखी बोरी में पहुंच जाता है। पूरा सिस्टम इतना आसान और मजेदार है कि देखने वाले बार बार वीडियो चला रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये जुगाड़ किसी इंजीनियरिंग लैब में नहीं बल्कि गाँव के माहौल में तैयार किया गया है। इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक विदेशी लड़की दिखाई दे रही है जो दुल्हन के गेटअप में नजर आ रही है। उसने अपने मारवाड़ी दूल्हे को शानदार सरप्राइज देकर सबको हक्का बक्का कर दिया। वीडियो में दुल्हन राजस्थानी गाने पर पारंपरिक अंदाज में डांस करती नजर आती है। उसका डांस देखकर न सिर्फ दुल्हा खुश हो जाता है बल्कि शादी में मौजूद मेहमान भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते। वीडियो का सबसे खास हिस्सा आखिर में देखने को मिलता है जब दुल्हन प्यार से अपनी दूल्हे का हाथ पकड़कर उसे भी डांस फ्लोर पर ले जाती है।
3: इलॉन मस्क ने एआई की मदद से बने मूवी ट्रेलर पर पूछा लोगों से सवाल। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
0: फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी को लेकर कनाडा का शहर वैंकूवर पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। शहर के प्रतिष्ठित साइंस वर्ल्ड डोम को 131 पैनल्स की मदद से टूर्नामेंट की आधिकारिक मैच बॉल ट्रायुंडा का रूप दिया गया है। वहीं नॉर्थ शोर के ग्राउस माउंटेन पर विशाल कैनेडाई राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया गया है। 40 मीटर ऊंचे जियोडेसिक डोम की ये सजावट पर्यटकों का ध्यान आकर्षित कर रही है। वैंकूवर में कुल 7 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें कैनेडा और कतर के बीच होने वाला अहम मैच भी शामिल है। इलॉन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता दिखाते हुए होमर के महाकाव्य इलियट पर आधारित एक एआई जनरेटेड सिनेमैटिक ट्रेलर जारी किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए इस ट्रेलर को रोक इमेजिन 1.5 की मदद से तैयार किया गया। ट्रोजन युद्ध की कहानी को शानदार विजुअल्स और इमोशंस के साथ पेश किया गया है। मस्क ने लोगों से पूछा कि क्या वो इसकी पूरी फिल्म देखना चाहेंगे। ये ट्रेलर संकेत देता है कि भविष्य में एआई की मदद से पूरी फीचर फिल्म्स बनाना संभव हो सकता है।